0: आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार। TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षा रद्द। छात्रों में खुशी की लहर आज तक से, बोले देवेंद्र महतो। तोड़ूंगा अनशन, जारी रहेगा संघर्ष। सोनम वांगचुक से की बात। आज तक की खबर से तेजी से हुआ असर। खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद जारी हुआ ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम। नवीन की नई टीम का ऐलान। स्मृति ईरानी, सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महासचिव। पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा। 22 को होगी पहली मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला है बड़ा दाव। नितिन नवीन की टीम में मिला बंपर प्रतिनिधित्व। 8 चेहरे शामिल। राजस्थान और गुजरात से भी 4-4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। और इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार। चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज। रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि कैबिनेट ने JSSC और CGL परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा 2014 में हुई सभी छोटी बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच की जाएगी। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों में खुशी की लहर है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने यह कहा कि वो आंदोलन तोड़ देंगे, लेकिन संघर्ष उनका ऐसे ही जारी रहेगा।
1: साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है। और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उन वहाँ तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है, हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे।
2: अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था वो सर,
1: देखिए अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही पूरी हो जाएगी, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, तो आगे का जितने भी कार्यक्रम है हम लोग आगे का कार्यक्रम क्यों करेंगे।
2: संतुष्ट है अभी तक?
1: अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम CBI जांच, CID जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, ऐसा सिस्टम का गारंटी चाहिए।
3: DPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
4: वार्ता हुई, लंबी बात बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि CGL एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पर हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि CGL का जो एग्जाम है वो रद्द होगा, मान लिया गया। TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम हुई है सब रद्द होगा,
5: 11-13
4: आज सब होगा। मैं बता रहा हूँ ना, सभी जो भी एग्जाम TDPL ने कंडक्ट किया है वो रद्द होगा। देखिए हमने कहा था ना कि युवा हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं, उनकी जो भी मांग है थोड़ा 19-20 होता है। हर बिंदु पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, बातें हुई, सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखा। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि सीजीएल एग्जाम में है जो उनकी जो प्रथम मांग थी वो रद्द होगा। मान लिया टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है वो सारे एग्जाम रद्द होंगे।
0: नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और खुद एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। इतने भी एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल पा रही हैं। नीट पेपर लीक के बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके चलते एनटीए ने अंग्रेजी कॉमर्स और समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है और दोबारा से परीक्षा कराने का ऐलान किया गया है।
5: तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एनटीए को बंद करना पड़ेगा।
6: 24 में नीट का पेपर लीक होता है, उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, 2026 में नीट का फिर से पेपर लीक होता है।
7: एकदम से आप दो महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ किस बेसिस पे कर रहे हो।
8: एनटीए फिर हो गया फेल, अब की बार यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी। एनटीए के खिलाफ फिर फूटा गुस्सा, एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। क्या परीक्षाएं लेने में नाकाम हो रही है एजेंसी? एनटीए पर फिर उठे सवाल। एनटीए पर पिछली परीक्षा के सवाल, नई परीक्षा में रिपीट करने के आरोप।
9: एनटीए को बैन करवा के रहेंगे।
10: एनटीए को बैन करो।
8: क्या एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल रही? आखिर खोट कहाँ है? ये तस्वीरें दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मुख्यालय की हैं। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
5: जिस तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है, आप समझिए इनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं है, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए कि वो किसके लिए बैठे हैं। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एनटीए को बंद करना पड़ेगा, अन्यथा ये हर साल लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देंगे।
8: एनटीए के पुराने दाग अभी धुले भी नहीं है कि नए धब्बों से एनटीए का दामन फिर से दागदार हो रहा है। जी हाँ, नीट पेपर लीक, उसके चलते 21 छात्रों के सुसाइड के खिलाफ जंतर मंतर पर पूरे 36 दिन कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में आंदोलन चला। छात्रों ने लाठियां खाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये आंदोलन रुकता है। और अब भी नीट यूजी पेपर लीक मामले में इस समय सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक्शन लेते हुए एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त हो चुके हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। अगस्त 2026 से ही आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अदालती सुनवाई शुरू हो चुकी है। प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर एक बार एनटीए फेल हो गया है। जी हां, एनटीए ने फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पात्रता और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून 2026 तक आयोजित की थी। रविवार को इनमें से यूजीसी नेट की अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसका खामियाजा आदित्य सिमरत जैसे परीक्षार्थी, उनके परिवार और दक्षिता जैसे शिक्षकों को उठाना पड़ा है। आप पूछेंगे कैसे, तो पहले सुनिए और सोचिए कि जिस एनटीए के 40 से ज्यादा अधिकारी नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के बाद बदले गए, वो एनटीए सिर्फ भांग खाकर पेपर नहीं सेट कर रहा बल्कि दावा है कि एनटीए के पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। कैसे, सुनिए। यूजीसी नेट जून 2026 को इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि 150 में से 67 सवाल 2024 की यूजीसी नेट परीक्षा से दोहराए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया था कि दोहराए गए सवालों में विकल्पों का क्रम भी समान था। सोशियोलॉजी के पेपर में वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां थी, समाजशास्त्रियों और अवधारणाओं का गलत नाम लिखा था, अस्पष्ट और खराब हिंदी अनुवाद था, कथित तौर पर सिलेबस से बाहर के सवालों को लेकर शिकायतें सामने आई थी। परीक्षा से पहले सोशियोलॉजी के सवालों की पीडीएफ प्रसारित होने का दावा भी किया गया था, हालांकि एनटीए ने लीक के इन आरोपों की पुष्टि नहीं की थी। वहीं कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में सवाल दोहराए जाने का आरोप लगाया था, 80 से अधिक सवाल दोहराए जाने का दावा किया था। एनटीए कहता है कि इन सब की वजह से अब 3 विषय में परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, आगे सितंबर में पेपर करा लेंगे,

0: देते हैं, एग्जाम में गलतियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन रिपीट पाए जाते हैं और अब एकदम कहा जाता है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया,
1: तो ये काफी डिसहार्टनिंग है, हमारे दिल को काफी ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम 2 महीने से वेट कर रहे थे कि आंसर की रिलीज होगी। हमने 25 जून को एग्जाम दिया था और पिछले साइकिल्स को देखा जाए तो एक हफ्ते के अंदर आ जाती थी आंसर की, बट 2 महीने तक नहीं आई। हमको कैंपेन चलाना पड़ा ट्विटर पे, हमको एक्स पे कैंपेन चलाना पड़ा, तब जाके हमको कोई रिस्पांस मिला। मैम यहाँ पे बहुत बारी आई है एनटीए ऑफिस, आंसर की के लिए भी आई है मैम, सो वी वर होपिंग कि आंसर की आएगी, बट एकदम से आप 2 महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ कि किस बेसिस पे कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट जनरलाइज कि टाइपोग्राफिकल एरर्स थे। इंग्लिश में कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स थे ही नहीं, बस क्वेश्चन पेपर जो 2024 के थे वो रिपीट हुए थे, PYQs रिपीट हुए थे, कोई एरर नहीं था, तो उस बेसिस पे आप री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, विच इज अनफेयर।
2: इतना वास्ट सिलेबस है, पेपर 1 भी है उसके साथ, हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें, तो ऐसे। और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि री एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है।
3: अब NTA वाले कह रहे हैं कि पेपर दोबारा करा लेंगे, दोबारा पेपर की फीस बच्चों से नहीं लेंगे, लेकिन इतने सब से क्या छात्रों के वक्त की बर्बादी, दोबारा परीक्षा देने के तनाव समेत दूसरे नुकसानों की भरपाई होगी? चिंता की बात यह है कि जो पेपर पास करके छात्र PhD करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता हासिल करेंगे, उस परीक्षा के पेपर में न अनुवाद सही है न व्याकरण, यहाँ तक कि पुराने पेपर से ही सवाल टीप दिए गए हैं। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि ये सब पता करने में 2 महीने का वक्त क्यों लग गया, या फिर लीक पेपर के दाग को व्याकरण की चूक और रिपीट सवाल के लपेटे में लाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है।
4: यहाँ पे री एग्जामिनेशन का मुद्दा कहीं से भी नहीं आया था। री एग्जामिनेशन उन सिनेरियोज में होता है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की इंटेग्रिटी के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी के बेसिस पे आप लोग री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, जिसमें कि आपने 40 दिन तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया। आपने प्रोविजनल आंसर के लिए जो एक हफ्ते में आती है उसके लिए आपने 30 दिन और लिए हैं। 30 दिन के बाद आपने फिर कमेटी बिठाई है, 4 घंटे में आप डिसीजन ले रहे हो इतने मेजर एग्जामिनेशन का।
3: NTA कहता है कि UGC नेट से जुड़े 3 विषय की परीक्षा में खामियों को केवल कुछ सवाल हटाकर दूर नहीं किया जा सकता था। NTA ने बताया कि कई शिकायतें मिलने के बाद एक समिति बनाई गई थी। समिति ने पेपरों में कई तथ्य संबंधी टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां पाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी पेपर आंख और दिमाग बंद करके बन जा रहा है? इन गलतियों को पहले देखने वाला कोई नहीं था।
5: ये गलती जानने के बाद, मानने के बाद बताने के लिए 2 महीने NTA को लग गए, तो क्या हम ऐसा नहीं सोचें कि हो सकता है ऐसी और भी गलतियां हों जो NTA ने की हो पेपर लीक के मसले में, या कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स, या जिससे देश के युवाओं का, देश के छात्रों के भविष्य खतरे में जाएगा, ऐसी और भी गलतियां होंगी।
3: अब एक तरफ शिक्षा मंत्रालय पोस्ट डालकर ये तो बताता है कि शिक्षा मंत्री का काम भी धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद से देख रहे प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, NTA के महानिदेशक और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री जी को हाल की समस्याओं के बाद NTA की तरफ से उठाए गए कदमों, खासकर पूरे सिस्टम में सुधार के संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि NTA में वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से पहले पेपर लीक हुआ और अब UGC नेट के 3 पेपर भी NTA ढंग से क्यों नहीं बना पाया। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से IT सेल के मुखिया रहे अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है। अमित मालवीय 2015 से IT सेल के प्रमुख थे, उनकी जगह दीपक महस्के को IT सेल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
7: बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। संगठन में हुए इस फेरबदल में डिजिटल और सोशल मीडिया विभाग में भी अहम बदलाव किया गया है। लेकिन नितिन नवीन की टीम में बीजेपी के IT सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को नया IT सेल हेड बनाया गया है। अमित मालवीय साल 2015 से बीजेपी के IT सेल के हेड थे, जबकि छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। दीपक 2014 से छत्तीसगढ़ बीजेपी IT सेल के प्रमुख रहे हैं।
8: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल

0: पीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी।
1: यूथ को कैटर करने के लिए क्या प्लान्स करेंगे?
0: देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।
2: मैस्के की सहायता सोशल मीडिया सह संयोजक के रूप में प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को नियुक्त किया गया, लेकिन नई जिम्मेदारी मिलने के कुछ ही घंटों बाद दोनों नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिए। इसके चलते आम यूजर्स को उनके पुराने ट्वीट्स और पोस्ट दिखने बंद हो गए। हालांकि नए कन्वीनर दीपक मास्के और को कन्वीनर अरुण यादव के एक्स अकाउंट्स सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्रीति गांधी लंबे समय से सोशल मीडिया पर सक्रिय रही हैं और @Mrs. Gandhi हैंडल से पोस्ट करती आई हैं। उनकी पहचान बेबाक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए रही है। वो बीजेपी महिला मोर्चा के सोशल मीडिया से जुड़े काम में भी सक्रिय रही हैं। फिलहाल प्रीति गांधी या आलोक भट्ट की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उनके एक्स अकाउंट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे, इसलिए इसकी वजह को लेकर कोई पक्की बात कहना सही नहीं होगा। हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पुराने पोस्ट की समीक्षा एक संभावित वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पर पहले किए गए किसी निजी बयान को पार्टी की आधिकारिक राय समझे जाने का खतरा रहता है। ऐसे में पुराने कंटेंट की जांच के दौरान अकाउंट की पहुंच सीमित करना एक तरीका हो सकता है। नई भूमिका के साथ सोशल मीडिया पर पार्टी का संदेश भी अधिक व्यवस्थित तरीके से रखने की जरूरत होती है। निजी पोस्ट और पार्टी के आधिकारिक रूप के बीच अंतर साफ रहे, इसके लिए भी अकाउंट की सार्वजनिक पहुंच बदली जा सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम के ऐलान के तुरंत बाद इन अकाउंट्स में बदलाव हुआ। इसके पीछे असल वजह क्या है, इस पर दोनों नेताओं की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए दिमागी नक्सल वर्ग से सावधान रहने की नसीहत दी थी। पीएम ने खास तौर से युवा पीढ़ी को ऐसे वर्ग से बचाने की बात कही थी। इसे लेकर पहले तो जेंजी आंदोलन का चेहरा बने सीजेपी ने एतराज जताया और उसके बाद फिर अचानक पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सली बताकर गर्व किया।
4: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
5: दिमागी नक्सली।
6: लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की नई कामयाबियां, नई चुनौतियां और नए लक्ष्य पर तमाम बातें कही, लेकिन मुल्क के सियासी हालात ऐसे कि सियासत दो लफ्ज ले उड़ी।
5: दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सली,
7: दिमागी नक्सली,
8: दिमागी नक्सल,
5: दिमागी नक्सल,
7: दिमागी नक्सल।
4: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
6: पीएम मोदी का इतना कहना था कांग्रेस और यूपीए के भागीदार राजनीतिक दलों के लिए काफी था और उनकी प्रतिक्रिया तीखी हैरतअंगेज तरीके से मोर्चा उन्हीं पी चिदम्बरम ने खोला जिन्होंने भारत में नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। चिदम्बरम ने खुद को नक्सली बताते हुए गर्व करने की बात कही तो कभी विपक्ष को अरबन नक्सल आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग बताने वाली बीजेपी की ओर से दिमागी नक्सल वाले नए अपशब्दों वाले वेरिएंट का आरोप लगाया। रही सही कसर पीएम के बयान के अगले हिस्से में की गई टिप्पणी ने पूरी कर दी थी, जिसमें विपक्षी दलों ने दिमागी नक्सल का कनेक्शन युवाओं से जोड़ दिया।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
6: दरअसल प्रधानमंत्री के बयान के बाद सीजेपी के सौरव दास ने युवाओं को नक्सली बताने वाले बयान पर टिप्पणी की तो पीछे से कांग्रेस के पी चिदंबरम से लेकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल तक ने खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर दिया।
8: 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकल कर सामने आ गया।
9: प्रधानमंत्री जी ने जिस कॉन्टेस्ट में बात की कि संविधान को ना मानने वाले, समाज के अंदर हिंसा फैलाने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, काटने वाले, प्रधानमंत्री जरा सी निगाह नीची कर लें, अपने इर्द गिर्द सारे वही मिलेंगे।
8: चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है।
6: लाल किले से दिमागी नक्सली का जिक्र करने के पीछे सरकार एक तो नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति की कामयाबी का जिक्र करना चाहती थी तो दूसरी तरफ शहरों कस्बों में पैठ बना चुकी वामपंथी विचारधारा के खतरे को अंडरलाइन कर रही थी क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान 2004 में वामपंथी उग्रवाद के अर्बन पर्सपेक्टिव आवर वर्क इन अर्बन एरियाज और 2013 की स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन नाम से दो खुफिया दस्तावेज में जो खुलासे हुए थे वो संवैधानिक हिंदुस्तान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का ब्लूप्रिंट थे। इन दस्तावेज में तीन प्लान था। पहला था कामकाजी वर्ग, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों को आंदोलन के लिए तैयार करना, दूसरा था सभी शोषित पीड़ितों को एकजुट करना और तीसरा था पीएलजी और पीएलए के सशस्त्र विद्रोह में मदद के लिए गुप्त लोगों की घुसपैठ कराना। हालांकि पिछले 20 साल में भारत से सशस्त्र वामपंथी उग्रवाद धीरे धीरे खत्म हो चुका है लेकिन इत्तफाक है कि वामपंथी उग्रवादी संगठनों की ओर से उठाए जाने वाले सियासी मुद्दे वंचितों, शोषितों और युवाओं के समसामयिक मुद्दों से मेल खाते हैं और इनका समर्थन करने वालों पर सियासी हमले होते हैं। हालांकि किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि दिमागी नक्सली सिर्फ वही हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटना चाहते हैं। दरअसल दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन की बुनियाद जिस तरह पड़ी और अप्रत्याशित रूप से हुकूमत पर जनता का दबाव बना उसमें सरकार के दिमाग की बत्ती ने खतरे का अलार्म बजाया है कि बिना किसी राजनीतिक बुनियाद और समर्थन के अगर एक आंदोलन मंत्री के इस्तीफे को मजबूर कर सकता है तो इसके पीछे की ताकत मामूली नहीं और सरकार को आशंका है कि वर्षों से रोडमैप बनाकर काम कर रही वामपंथी उग्रवादी विचारधारा ऐसे आंदोलनों के पीछे काम कर रही है। आज तक ब्यूरो।
3: 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ कर दिया है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे।
10: वंदे मातरम के कथित अपमान पर शहर शहर बीजेपी में उबाल है। कल बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। उनके निशाने पर रहे कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। राजस्थान में अमित शाह ने भी सोनिया गांधी पर हमला बोला तो आज दिन की शुरुआत ही बीजेपी ने वंदे मातरम विवाद से की है।
8: ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है मगर सर तन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है।
11: तो ये कांग्रेस की सच्चाई है क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा इसीलिए ये सब करती है।
12: सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी है, ये लोग मोटा मोटी देश का विरोध करने का मिशन ले चुका है। जैन जी नाम में लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्साह देने का साथ साथ पूरा देश को माहौल बिगाड़ने का ये लोग संकल्प लेके रखा है।
13: पहले से वंदे मातरम का अपमान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय झंडा, सब चीज का, राष्ट्रीय प्रतीक, अदालत, सबका कांग्रेस बार बार अपमान किया है केवल राजनीतिक हित के कारण।
10: हमला तेज था, कांग्रेस बैकफुट पर थी, इसलिए पलटवार की कोशिश शुरू हुई।
14: हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है।
10: इमरान मसूद तो साफ साफ कह रहे हैं कि उनका धर्म वंदे मातरम पढ़ने की इजाजत नहीं देता, इसलिए वो नहीं पढ़ेंगे।
14: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा।
10: कांग्रेस नेता ठीक से बचाव कर पाते, इसी दौरान कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार बचाव की कोशिश में ऐसा कह गए जिससे पार्टी और मुसीबत में फंस गई। देखिए कांग्रेस सांसद ने क्या कहा।
15: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है।
10: तो वंदे मातरम पर विवाद थमने के बजाय गहराता जा रहा है। आज तक ब्यौरा।
3: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

रांची में आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार, टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द, फैसले पर जमकर झूमे छात्र। रेवेंद्र महतो और अन्य दो छात्रों ने अनशन तोड़ा, अपना आंदोलन खत्म किया। सोरेन सरकार के सामने अभी भी छात्र आंदोलन की चुनौती बरकरार, रांची स्टेडियम में धरना दे रहे छात्र। सीबीआई जांच पर अड़े बोले, आज बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। वंदे मातरम गायन को लेकर सियासी संग्राम जारी, गोवा के कार्यक्रम में खड़गे की मौजूदगी में गाए गए सिर्फ दो पैराग्राफ, कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी शाह पर उठाए सवाल। भारत की तरह फोटो आईडी जैसा चुनावी सिस्टम अब अमेरिका में लागू करने की तैयारी में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, सेव अमेरिका एक्ट को पास करने का आह्वान किया चुनाव आयुक्त, ज्ञानेश कुमार से बातचीत का हवाला दिया। और गोल्ड टेस्ट में आज चौथे दिन पारी की शुरुआत करेगी भारतीय टीम, तीसरे दिन सुधार जडेजा के फिरकी के आगे नतमस्तक श्रीलंकाई टीम, पहली पारी में मेजबान 284 रन पर ढेर, टीम इंडिया को 178 रन की बढ़त।

0: कहते हैं कि लोकतंत्र में जब भी आवाज उठाई जाए तो आवाज सुनी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के सबसे बुलेट पहले बुलेट में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर से, कैसे छात्रों के एक आंदोलन ने एक बार फिर एक सरकार को झुका दिया। तो बड़ी खबर यह है कि झारखंड सरकार ने छात्रों की मांगे मान ली है। 25 दिन तक चला आंदोलन अनशन, जिसके बाद हेमंत सोरेन सरकार झुक गई। इतना ही नहीं, बड़ी घोषणा यह भी कि IDPL के जरिए TDPL के जरिए आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं को सोरेन सरकार ने रद्द करने का ऐलान कर दिया। इसी एजेंसी ने JSSC CGL परीक्षा कराई थी, जिस पर धांधली के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद रांची के जयपाल स्टेडियम में छात्र झूम उठे। देखिए, ये बीती रात वो जश्न की तस्वीरें हैं जब जेन जी आंदोलन अपनी मांगों पर अड़ा रहा और एक के बाद एक सभी मांगों को मानने पर सोरेन सरकार को झुका दिया। छात्रों ने सेलिब्रेट किया। हालांकि दूसरी ओर अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो और अन्य छात्रों ने भी अब अपना अनशन खत्म कर दिया है, आंदोलन खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है। रांची स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों ने अब तक अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है, वो अभी भी CBI जांच की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन उस पर आखिरी फैसला आज होने वाली बैठक में लिया जाएगा। तो देवेंद्र महतो ने अपना अनशन तोड़ा, उनके साथ दो और छात्र जो आंदोलन पर थे उन्होंने भी अपना अनशन तोड़ा। स्टेडियम में बैठे छात्रों का आंदोलन अब CBI मांग को लेकर के जारी है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला, आपको बता दें 25 दिन से चल रहा आंदोलन, ये तमाम सारे छात्र जो पूरे झारखंड से इकट्ठा हुए थे, सबसे पहले JPSC परीक्षा रद्द करवाने के लिए जिस पर मांगे मानी गई, उसके बाद CGL, JSSC CGL जो कि सबसे ज्यादा नौकरियां देती हैं, 2000 से ज्यादा पदों पर जिसने भर्ती की, परीक्षाएं की और 10 साल का बैकलॉग, आप समझिए 2014-15 से शुरू की गई ये JSSC CGL, जिसका आखिरी परिणाम 8 महीने पहले आया और 8 महीने पहले ही जाकर के 2000 से ज्यादा नौकरियां मिली। देखिए तस्वीरें, ये जेन जी की जीत का जश्न है। 25 दिनों का आंदोलन और एक बार को विधानसभा जब मार्च हुआ उसके बाद तो ऐसा लगा कि मानो ये आंदोलन खत्म हो गया है, छात्रों का आंदोलन कमजोर पड़ने लगा है, समर्थन कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, ये छात्रों का अपना जज्बा था, हौसला था, उन्होंने आंदोलन को बनाए रखा पूरे अनुशासन उसकी गरिमा के साथ। और ये वही आंदोलन है जिसकी तारीफ उसी सूबे के मुखिया ने की जिन्होंने उनकी मांगों के आगे अपनी हार मानी। हेमंत सोरेन लगातार ये कहते रहे कि ये छात्र अपने संवैधानिक मूलभूत अधिकारों के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे मान रहे हैं और झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बेहद शांतिपूर्ण अनुशासन गैर राजनीतिक मंच बनाकर ये छात्र अपनी मांगों पर टिके रहे और जब जीत हुई है तो जीत का जश्न क्यों ना हो। 2 दिन पहले ही जब आजादी की सालगिरह मनाई गई है तो हाथों में तिरंगा लेकर के जीत की तस्वीरें आना लाजमी है। JSSC CGL की परीक्षा पर अड़े हुए थे छात्र कि इसको रद्द किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरियां इसी CGL के जरिए मिलती थी और जब हेमंत सोरेन सरकार ने इसको भी रद्द करने का फैसला ले लिया उसके बाद, आपको बता दें छात्रों के अलग अलग धड़ों के साथ हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल की जो डेलीगेशन था, 3 दौर की बातचीत हुई। 2 दौर की बातचीत के बाद पहली मांगे मानी गई और उसके बाद 3रे दौर की बातचीत के बाद इन मांगों के बाद आपको स्टेडियम में जश्न की तस्वीरें दिख रही हैं। लेकिन आखिरकार झारखंड सरकार को झुकना पड़ा। झुकना कैसे पड़ा? रांची में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के 24वें दिन सरकार ने यह फैसला लिया कि JSSC CGL परीक्षा रद्द की जाएगी। आंदोलनकारी छात्रों की यह सबसे अहम और सबसे बड़ी मांग थी, अब सरकार ने परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बीती रात इसका जब ऐलान किया, कहा कि TDPL की आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जाएंगी, CID इसकी जांच करेगी। इसी ऐलान के साथ छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली।
1: TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं कैंसिल किया जाता है, रद्द।
2: ये रांची की उस शाम का लम्हा है जब आंदोलन कर रहे छात्र झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। सोमवार दोपहर तक यहां चल रही विरोध वाली नारेबाजी बदल गई। रात को एक ऐलान के साथ ही वहां सिर्फ और सिर्फ कामयाबी के नारे लगने लगे। छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिन मांगों को लेकर छात्र धरना और प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से एक मांग थी JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की।
3: आज हम लोग बहुत खुश हैं और आज हम लोग का नया त्योहार आज है और असत्य सत्य पे सत्य की जीत है। माननीय हेमंत सोरेन और उनके सभी मंत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जो हमारे दर्द को समझा।
4: कहा गया है कि झुकाने वाला होना चाहिए और ये झारखंड के छात्रों ने दिखा दिया कि देखिए एकजुट होके एकता में ही बल है। हमें बहुत बहुत ये हमेशा से आंदोलनकारियों की धरती रही है।
3: आज सच्चाई का जीत हुआ है, ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया।
5: सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
6: जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
2: मुख्यमंत्री सोरेन ने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ बैठकर प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग मानने का फैसला किया और उसका ऐलान कर दिया।
1: TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितनी भी गतिविधियां या यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
2: छात्रों की मांग के आगे झारखंड सरकार को झुकना ही पड़ा। छात्रों ने 18 अगस्त तक का इंतजार का अल्टीमेटम दिया था। छात्रों को हेमंत सोरेन के इस ऐलान का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। मुख्यमंत्री की घोषणा की खबर जैसे ही उन तक पहुंची, जयपाल सिंह स्टेडियम का नजारा ही बदल गया। छात्रों के चेहरे खिल उठे। अब तक जहां सरकार विरोधी नारे लग रहे थे, मांगे माने जाने के बाद वहां जीत के गीत गाए जाने लगे। सैकड़ों छात्र इस कामयाबी के मौके पर झूमने लगे। किसी ने गुलाल के साथ इस जीत की होली खेली तो साथ साथ आतिशबाजी कर खुशियों की दिवाली भी मनाई गई। आंदोलन के 24वें दिन प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत हुई।
3: हम तमाम छात्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जोहार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही साहसिक कदम उठाए हैं। बस हमारी एक और जो मांगी है, जितनी भी एग्जाम आप लिए, जितनी भी एग्जाम आप जो सो रद्द किए हैं, हमारे जो सो डिमांड लेटर में जितनी भी एग्जाम है, आप सभी एग्जाम को जो रद्द करने का आश्वासन दिए हैं, उन तमाम एग्जाम में माननीय मुख्यमंत्री जी CBI जांच करवा दीजिए। ये हम तमाम छात्रों का ये डिमांड है।
2: इससे पहले झारखंड सरकार ने 10 अगस्त को 14वीं JPC की प्रारंभिक परीक्षा और अन्य दो परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला किया था, लेकिन छात्र डटे हुए थे। उन्होंने दो टुक कह दिया था कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। दो दिन पहले तो उन्होंने 20 अगस्त तक CM आवास तक मार्च करने का भी ऐलान कर दिया था। ऐसे में सरकार ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की मांग मानकर संकट को टालने की पूरी कोशिश की। आकाश कुमार के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: तो सोमवार का दिन काफी अहम रहा क्योंकि छात्रों के प्रदर्शन ने झारखंड सरकार की चुनौतियां बढ़ा रखी थी। अब एक तरफ मांगे माने जाने के बाद सोरेन सरकार थोड़ी बहुत राहत मिली होगी। सोरेन सरकार के इस फैसले से कल के दिन भर बैठकों का दौर चला, लंबी माता मची चली और आखिरकार सरकार ने JSSC CGL की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद अनशन पर बैठे छात्र नेताओं ने अपना अनशन तोड़ा।
3: सरकार जो है छात्रों के सामने झुके हैं, सारी मांगे आज मान ली है, तो आप ये बता दें कि आज यहाँ पर जो रांची का जंतर मंतर ये बना हुआ था जयपाल सिंह स्टेडियम, आज यहाँ पे जश्न का माहौल है। सीधे तस्वीर आपको दिखा दे, ये देखिए छात्रों के बीच तमाम जो छात्र हैं आज अभी गुलाल लेके पूरे जश्न मना रहे हैं। पानी में पानी बारिश के बीच में ये लोग छात्र लोग जो है जश्न मना रहे हैं। आइए कैसा लग रहा है आगे से
7: झाकी है CGL CBI हमें भी बाकी है।
3: ये
7: झांकी है,
8: झांकी है,
7: सीजीएल भी झांकी है, सीबीआई आना भी बाकी है।
8: चारों तरफ आप तस्वीर के माध्यम से देखिए लोग कितने खुश हैं, क्या लग रहा है। हेलो हेमंत सोरेन को क्या कहेंगे,
7: बहुत धन्यवाद हेमंत सोरेन जी, हमारी बात छाते आप ही के बच्चे थे, बहुत देरी थी लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी बात
8: लेकिन दुरुस्त है।
7: बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री सर जी,
8: कितना खुशी लग रहा है,
7: खुशी के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ,
8: बहुत मेहनत कर रहे थे और आज इनकी खुशी हम सबकी खुशी है। यह झारखंड की भविष्य की जीत है आज, और आज से जहाँ झारखंड की सुनते बता दिया कि वो गुलाम भी कर सकते हैं, गांधी जी को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं, बहुत खुशी की बात है। क्या कहेंगे, कितने खुश हैं आज, आज तोहफा दिया है आप लोगों को,
9: तोहफा तो इतना बड़ा दिया है लेकिन दिया नहीं है, लड़के लिया गया है, ये तोहफा कभी नहीं दिया जाता।
8: सोरेन सरकार को दिलों से छात्रों ने आभार जताया है। ये रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम है जो कि पिछले 24 दिनों से जंतर मंतर बना हुआ था, हेमंत सोरेन ने सारी वादे मान ली है। रांची से आज तक के लिए आकाश कुमार।
0: 25 दिन के बाद इंतजार के बाद छात्रों की मांगें पूरी हुई, लेकिन 7 महीने के इंतजार के बाद उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का भी ऐलान हो गया है। इस टीम में युवाओं का जोश है, अनुभवी चेहरे हैं। नितिन नवीन की टीम में क्षेत्रीय, जातीय, सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान दिया गया। लेकिन इस खबर के पहले एक बार फिर आपको रांची लिए चलते हैं, क्योंकि सोमवार को जो प्रदर्शन हुआ, छात्र सड़कों पर थे, आंदोलन किया, उस आंदोलन के बाद सिबुस हेमंत सोरेन सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली, छात्रों को राहत मिली तो सरकार को भी राहत मिली। लेकिन बड़ी मुश्किल ये है कि जिन छात्रों का चयन पहले हो चुका था अब वो क्या करेंगे।
2: जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली के विरोध में देवेंद्रनाथ महतो के साथ साथ कई अन्य छात्र नेता भी अनशन कर रहे थे। लगातार बिगड़ती स्थिति के बाद सभी को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जैसे ही झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला किया, तमाम छात्र नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया।
10: साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है। और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं।
2: तभी देवेंद्रनाथ महतो ने ऐलान कर दिया कि वो जल्द अपना अनशन तोड़ देंगे। इस बीच समाज सेवी सोनम वांगचू की देवेंद्रनाथ महतो से वीडियो कॉल पर बात हुई। सोनम वांगचू ने देवेंद्रनाथ महतो से कहा कि मुझे आपकी जीत पर खुशी है। वांगचू ने देवेंद्र महतो को बधाई दी। देवेंद्र महतो ने वांगचू से अनशन खत्म के अपने फैसले के बारे में बताया। देवेंद्र महतो ने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए संघर्ष जारी रहेंगे।
10: आंदोलन के 23वें दिन हमारे डिमांड पूरी कर ली है सरकार, आपको हम प्रणाम कर रहे हैं और आपसे हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं।
11: मुझे ये खुशखबरी मिली, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा काम आई, रंग लाई। तो इस बारे में मैं सभी छात्रों को बधाई देता हूँ और झारखंड की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को खासकर। तो ऐसे ही हम सब जो भी कमी पेशी है उसको ठीक करते रहे, जनता और सरकार मिलके, ये मेरी आशा और शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपने आवाज।
2: अब सरकार की ओर से भी पहल तेज हो गई है। परीक्षा रद्द करने के ऐलान के बाद सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह सदर अस्पताल पहुंचे ताकि छात्र नेताओं का अनशन खत्म कराया जा सके। इरफान अंसारी ने छात्र नेता हबीबा और राहुल क्रांति का अनशन तोड़वाया, फिर देवेंद्रनाथ महतो को भी जूस पिलाया और उसके साथ ही उनका भूख हड़ताल भी समाप्त हो गया।
10: आपने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना अनशन को समाप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री दीदी दीपिका मैडम जी और हमारे माननीय विधायक जयराम महतो जी के संयुक्त पहल से अपना अनशन को आज स्थगित करते हुए जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे।
2: सुना आपने, देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि सारे मांग पूरे हो गए हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन स्थगित हो गया है।
10: आज जो डिसीजन लिया, यह डिसीजन आसान नहीं था क्योंकि सीजीएल परीक्षा का नियुक्ति हो चुकी थी, ज्वाइनिंग हो चुका था। बहुत डिफिकल्ट था डिसीजन। कुछ छात्र गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हम लोग जेन्युइन हैं। उस बीच में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष जांच करते हुए उन लोग का भी रास्ता निकालते हुए आज इतना बड़ा डिसीजन लिया। पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया आज झारखंड सरकार का इस फैसला को सराहना कर रहे हैं।
2: देवेंद्र महतो ने कहा कि ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि किसी छात्र के साथ धोखा न हो, कोई ठगे न जाए। उन्होंने सरकार से इसकी गारंटी मांगी। वहीं दूसरी ओर भूख हड़ताल करने वाली छात्र नेता हबीबा ने भी सरकार के इस फैसले की तारीफ की।
12: मैं तमाम यहां पे जो हमारी सरकार है और ये सरकार ने साबित कर दिया कि वो आदिवासी, मूलवासी और सदानों की सरकार है, उनके हित के लिए सोचती है, ये हम लोगों ने आज जान लिया है। और इस चीज को उन्होंने साबित कर दिया कि हेमंत है तो हिम्मत है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है और सारे अभ्यर्थी भी आज बहुत ज्यादा खुशी है, खुशी की लहर दौड़ी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ।
2: सरकार के सामने ये अनशन तोड़वाने की बड़ी चुनौती थी। विरोधियों के लगातार दबाव और छात्रों के भावी एक्शन प्लान की वजह से सरकार परेशान थी। अब अनशन खत्म हुआ है तो सरकार ने राहत की सांस ली है।
13: इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया युवाओं के हित में, निश्चित तौर पर जो आंदोलन था समाप्त हुआ है। हम लोग आए हैं मेडिकल बुलेटिन के साथ, अभी इनका पूरा जाँच हुआ और स्वेच्छा से हम लोग इनको अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं। तीनों स्वस्थ हैं, कोई अभी दिक्कत नहीं है, बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है और जो जानकारी मुझे मिली है सब कुछ ठीक ठाक है।
14: सरकार ने आप लोगों के हित में सभी बातों को मानने का काम किया है और यह अश्योर करती है सरकार हमारी कि जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होगी और एक भी दोषी इसमें बचेगा नहीं।
2: अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे छात्र आगे की रणनीति को लेकर क्या फैसला लेते हैं। आकाश कुमार के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: और अब खबर राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी हुई, क्योंकि 7 महीने के इंतजार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपनी नई टीम मिल गई है। उनकी नई टीम में युवाओं का जोश है, अनुभवी चेहरे हैं, जिसमें क्षेत्रीय जाति सामाजिक समीकरण को भी ध्यान में रखा गया और इसलिए भी क्योंकि आने वाला साल इम्तहान का है।
15: कमान ने 20 जनवरी 2026 को जब युवा चेहरे नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया तो संगठन के बाकी नेता भी हैरान रह गए थे, क्योंकि तब तक वो बिहार की राजनीति तक ही सीमित थे। उस समय उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थी। तभी बीजेपी थिंक टैंक ने युवा नेतृत्व को पार्टी की कमान सौंपने का सियासी संदेश दे दिया था। जनवरी से इस बात का इंतजार था कि जब उनकी टीम बनेगी तो उसमें किन किन चेहरों को जगह मिलेगी, लेकिन करीब 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज नितिन नवीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। नितिन नवीन की टीम में 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिव बनाए गए हैं। उनकी टीम में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के साथ महिलाओं की भागीदारी पर फोकस किया गया है। खास बात यह है कि इसमें उन राज्यों को विशेष तरजीह दी गई है जहां इस साल या अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी टीम की तैयारी की है। टीम में यूपी के पदाधिकारी हैं, वहीं राजस्थान से 3, दिल्ली से 6, महाराष्ट्र से 4, उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बंगाल, केरल और बिहार से 2-2 चेहरों को जगह दी गई है।
16: सबसे बड़ा बदलाव तो युवा मोर्चा के अंदर ही है। तेजस्वी सूर्या को हटाकर हिमांग जोशी को रखा गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर ये है, हमको दर्शकों को बतानी चाहिए कि जितने भी मोर्चे हैं उन सभी मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं सबके सब मोर्चों के अध्यक्षों को बदल दिया गया है। हिमांग जोशी जो है वो अब बन गए युवा मोर्चा अध्यक्ष, इससे पहले तेजस्वी सूर्या थे। रूप कुमार चौधरी बन गई है महिला अध्यक्ष, इससे पहले वनती श्रीनिवासन जो है वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। ओबीसी मोर्चा में बदलाव हुआ है, किसान मोर्चा में भी बदलाव हुआ है और लगभग सभी माइनॉरिटी मोर्चे में जमाल सिद्दीकी थे, वहां पर अब कुंवर बासित अली आ गए। एवरेज एज की अगर हम बात करें तो पहले ये कहा जा रहा था, सूत्रों से यह दावा किया जा रहा था कि एवरेज एज इस टीम की होगी लगभग 45 से 50 तक की, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे नेता हैं जिनको मैं देख पा रहा हूं जिनकी उम्र 50 से 60 तक के बीच में भी है। विप्लव देव हो गए लगभग 56 साल के हैं, जय पांडा की भी अच्छी खासी उम्र है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी ये युवा टीम है, ये मिक्स है, ये ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड दोनों का मिक्स है और सभी को प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया है।
15: अब देखिए नितिन नवीन की टीम में किन किन महासचिवों को जगह दी गई है। इनमें सबसे खास नाम स्मृति ईरानी का है जो अमेठी से 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद से साइडलाइन बताई जा रही थी। उसके बाद स्मृति ईरानी ने वापस से टीवी सीरियल में काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने से उनके सियासी कद में काफी इजाफा हुआ है। वहीं उनके अलावा पार्टी ने यूपी के बस्ती से दो बार सांसद रहे हरीश द्विवेदी को भी महासचिव की जिम्मेदारी दी है, जिसका सीधा संदेश है बीजेपी की नजर 2027 में होने वाले यूपी चुनाव पर है। नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय महासचिवों में विनोद तावड़े महाराष्ट्र से, सुनील बंसल दिल्ली से, विप्लव देव त्रिपुरा से, स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश, हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश, सतीश पुनिया राजस्थान, गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश और संजय भाटिया हरियाणा।
17: देखिए हरीश द्विवेदी क्योंकि उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, मैंने पहले भी बताया बिहार के सह प्रभारी थे, उसके बाद असम के प्रभारी के तौर पर वो काम कर रहे हैं और अभी उनको ताजा जिम्मेदारी है राजस्थान में जो पंचायत इलेक्शन है उसका इंचार्ज बनाया गया है, उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। उससे पहले वहां से राधा मोहन दास अग्रवाल जो है वो पार्टी के महासचिव होते थे, अब हरीश द्विवेदी हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक तरीके से दायरा बढ़ा गया और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो एक पार्टी का मुस्लिम चेहरा है तारिक मंसूर, उनको भी उत्तर प्रदेश से लाया गया है। इससे पहले जो उपराष्ट्रपति उपाध्यक्ष थे पार्टी के वो थे कुट्टी जो केरल से आते थे, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो वहां से उनको जगह मिली है। उत्तर प्रदेश की रेखा वर्मा पहले भी उपाध्यक्ष थी, इस बार भी उनको उपाध्यक्ष रखा गया। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी को जो है जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, तो इस बार जो दो जनरल सेक्रेटरी हैं वो उत्तर प्रदेश से है, तो एक आठ अगर जनरल सेक्रेटरी हैं तो दो उत्तर प्रदेश से होना एक बड़ी बात है।
15: वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में मध्य प्रदेश कोटे से राज्यसभा सांसद बने पंजाब के तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। तरुण चुग इलेक्शन स्टेट पंजाब से आते हैं, उनके अलावा पंजाब से मनप्रीत बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।
17: मनप्रीत बादल उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। मनप्रीत बादल जो है वो अकाली दल में थे, अकाली दल से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से जो है वो भारतीय जनता पार्टी आए और अब पार्टी के उपाध्यक्ष है क्योंकि पंजाब में चुनाव है। तो इस तरीके से चुनावों को भी ध्यान में रखते हुए कई निर्णय जो है वो किए गए हैं, कई लोगों को एडजस्ट किया गया है।
15: इधर वरिष्ठ नेता और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र से आने वाले पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि महाराष्ट्र से ही आने वाले विनोद तावड़े को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उनका कद भी बढ़ाया गया है।
18: नितिन नवीन ने खुद के लिए चुनी हुई नई टीम में जो आठ जनरल सेक्रेटरीज है उसमें से दो नाम बरकरार है, एक है सुनील बंसल और दूसरा विनोद तावड़े। तावड़े जो महाराष्ट्र के एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, कभी एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, 2019 के बाद नया दिल्ली तक पहुंची और फिर दिल्ली में पैर जमाया, अमित शाह के साथ तगड़ी बनी और उसके बाद बिहार चुनाव से पहले स्ट्रैटेजी हो या फिर प्रभारी हो सभी काम खूबी से संभाले और अमित शाह के साथ नजदीकियां बढ़ी। अब तावड़े भी इस पूरे संगठन में शामिल है। उसके बाद सुनील बंसल जो है राजस्थान से आते हैं, 2014 में जब अमित शाह खुद यूपी के प्रभारी थे तभी उनके साथ स्ट्रैटेजी प्लानिंग की और अभी 2026 में पश्चिम बंगाल में भी इसी स्ट्रैटेजी उनके काम आई। उसके बाद अब फिर से कायम रहेंगे और अमित शाह हो या फिर बाकी के मंत्री हो, जहां जहां चुनाव होंगे वहां उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी छह में से हम देखें तो स्मृति ईरानी हो जो पहले मंत्री रह चुकी है, उनके साथ भारती पवार का नाम है, भारती पवार भी हेल्थ मिनिस्ट्री संभाली हुई है। भारती पवार तो महाराष्ट्र के उत्तर महाराष्ट्र यानी कि नासिक के ऊपर जो दिंडोरी चुनाव क्षेत्र है वहां से आती है, ट्राइबल चुनाव क्षेत्र है, तो ट्राइबल्स के साथ ही जो आने वाली पीढ़ी है और महिलाएं हैं उनको साथ में लेकर चलने के लिए बीजेपी की ये नई टीम काम करेगी।
15: अब नितिन नवीन की नई टीम पर आने वाले विधानसभा चुनावों में भगवा परचम फहराने की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि मोदी शाह की बीजेपी में परफॉर्मेंस ही वो कसौटी है जिससे किसी नेता का सियासी कद बढ़ाया या घटाया जाता है।
17: नितिन नवीन की नई टीम में जातिगत, सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों के साथ साथ उन राज्यों को ज्यादा तरजीह दी गई है जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात जैसे राज्य हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
19: बुलेट में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी है, आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसे।
21: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
2: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
1: नहीं सर।
2: ट्वेल्थ किससे की हो?
1: ट्वेल्थ सर मेरा PCM से रहा।
2: कंपाउंड क्या होता है?
1: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
2: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
1: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
2: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

रांची में आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार, टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द, फैसले पर जमकर झूमे छात्र, देवेंद्र महतो अन्य दो छात्रों ने अनशन तोड़ खत्म किया अपना आंदोलन। सोरेन सरकार के सामने अभी भी छात्र आंदोलन की चुनौती बरकरार है। रांची स्टेडियम में धरना दे रहे छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं, बोले आज बैठक करेंगे, तय करेंगे आगे की रणनीति।

वंदे मातरम गायन को लेकर सियासी संग्राम जारी। गोवा के कार्यक्रम में खड़गे की मौजूदगी में गाए गए सिर्फ दो पैराग्राफ, कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी शाह पर उठाए सवाल। भारत की तरफ फोटो आईडी कार्ड जैसा चुनावी सिस्टम अब अमेरिका में लागू करने की तैयारी में ट्रंप प्रशासन। सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने का आह्वान किया, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से बातचीत का हवाला दिया। और गोल्टस में आज चौथे दिन पारी की शुरुआत करेगी भारतीय टीम। तीसरे दिन सुधार और जडेजा की फिरकी के आगे नतमस्तक श्रीलंकाई टीम। पहली पारी में मेजबान 284 रन पर ढेर, टीम इंडिया को 178 रन की बढ़त।

0: आशुतोष मिश्रा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इससे सावधान रहें। पीएम ने खासकर युवा पीढ़ी को ऐसे वर्ग से बचाने की बात कही, जिसे लेकर पहले जेंजी आंदोलन का चेहरा बने सीजेपी ने ऐतराज जताया और फिर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सली बताकर गर्व किया। पूरा विपक्ष इस बात पर हमलावर है कि कहीं सरकार हर उस व्यक्ति को दिमागी नक्सली तो नहीं कह रही है जो सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रहा है।
1: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
2: दिमागी नक्सली।
3: लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की नई कामयाबियां, नई चुनौतियां और नए लक्ष्य पर तमाम बातें कही, लेकिन मुल्क के सियासी हालात ऐसे कि सियासत दो लफ्ज ले उड़ी।
2: दिमागी नक्सली।
1: बरसों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
3: पीएम मोदी का इतना कहना था कांग्रेस और यूपीए के भागीदार राजनीतिक दलों के लिए काफी था और उनकी प्रतिक्रिया तीखी। हैरतअंगेज तरीके से मोर्चा उन्हीं पी चिदम्बरम ने खोला जिन्होंने भारत में नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। चिदम्बरम ने खुद को नक्सली बताते हुए गर्व करने की बात कही तो कभी विपक्ष को अरबन नक्सल आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग बताने वाली बीजेपी की ओर से दिमागी नक्सल वाले नए अपशब्दों वाले वेरिएंट का आरोप लगाया। रही सही कसर पीएम के बयान के अगले हिस्से में की गई टिप्पणी ने पूरी कर दी थी, जिसमें विपक्षी दलों ने दिमागी नक्सल का कनेक्शन युवाओं से जोड़ दिया।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
3: दरअसल प्रधानमंत्री के बयान के बाद सीजेपी के सौरव दास ने युवाओं को नक्सली बताने वाले बयान पर टिप्पणी की तो पीछे से कांग्रेस के पी चिदम्बरम से लेकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल तक ने खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर दिया।
4: 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया।
5: प्रधानमंत्री जी ने जिस कॉन्टेस्ट में बात की कि संविधान को ना मानने वाले, समाज के अंदर हिंसा फैलाने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, काटने वाले, प्रधानमंत्री जरा सी निगाह नीची कर लें, अपने इर्द गिर्द सारे वही मिलेंगे।
4: चिदम्बरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है।
3: लाल किले से दिमागी नक्सली का जिक्र करने के पीछे सरकार एक तो नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति की कामयाबी का जिक्र करना चाहती थी तो दूसरी तरफ शहरों कस्बों में पैठ बना चुकी वामपंथी विचारधारा के खतरे को अंडरलाइन कर रही थी, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान 2004 में वामपंथी उग्रवाद के अर्बन पर्सपेक्टिव आवर वर्क इन अर्बन एरियाज और 2013 की स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन नाम से दो खुफिया दस्तावेज में जो खुलासे हुए थे वो संवैधानिक हिंदुस्तान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का ब्लूप्रिंट थे। इन दस्तावेज में तीन प्लान था, पहला था कामकाजी वर्ग, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों को आंदोलन के लिए तैयार करना। दूसरा था सभी शोषित पीड़ितों को एकजुट करना। और तीसरा था पीएलजीए और पीएलए के सशस्त्र विद्रोह में मदद के लिए गुप्त लोगों की घुसपैठ कराना। हालांकि पिछले 20 साल में भारत से सशस्त्र वामपंथी उग्रवाद धीरे धीरे खत्म हो चुका है, लेकिन इत्तफाक है कि वामपंथी उग्रवादी संगठनों की ओर से उठाए जाने वाले सियासी मुद्दे वंचितों, शोषितों और युवाओं के समसामयिक मुद्दों से मेल खाते हैं और इनका समर्थन करने वालों पर सियासी हमले होते हैं। हालांकि किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि दिमागी नक्सली सिर्फ वही हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटना चाहते हैं। दरअसल दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन की बुनियाद जिस तरह पड़ी और अप्रत्याशित रूप से हुकूमत पर जनता का दबाव बना, उसमें सरकार के दिमाग की बत्ती ने खतरे का अलार्म बजाया है कि बिना किसी राजनीतिक बुनियाद और समर्थन के अगर एक आंदोलन मंत्री के इस्तीफे को मजबूर कर सकता है तो इसके पीछे की ताकत मामूली नहीं। और सरकार को आशंका है कि वर्षों से रोडमैप बनाकर काम कर रही वामपंथी उग्रवादी विचारधारा ऐसे आंदोलनों के पीछे काम कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान का मुद्दा भी तूल पकड़ रहा है, बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। दूसरी तरफ कांग्रेस बैकफुट पर तो है, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसून ने दो टूक साफ कर दिया है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे।
6: वंदे मातरम के कथित अपमान पर शहर शहर बीजेपी में उबाल है। कल बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। उनके निशाने पर रहे कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। राजस्थान में अमित शाह ने भी सोनिया गांधी पर हमला बोला, तो आज दिन की शुरुआत ही बीजेपी ने वंदे मातरम विवाद से की है।
7: ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है, मगर सर तन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है।
8: तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है।
9: सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी है, ये लोग मोटा मोटी देश का विरोध करने का मिशन ले चुका है। जैन जी नाम में लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्साह देने का साथ साथ पूरा देश को माहौल बिगाड़ने का ये लोग संकल्प लेके रखा है।
10: पहले से वंदे मातरम का अपमान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय झंडा, सब चीज का, राष्ट्रीय प्रतीक, अदालत, सबका कांग्रेस बार बार अपमान किया है केवल राजनीतिक हित के कारण।
6: हमला तेज था, कांग्रेस बैकफुट पर थी, इसलिए पलटवार की कोशिश शुरू हुई।
11: हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है।
6: इमरान मसूद तो साफ साफ कह रहे हैं कि उनका धर्म वंदे मातरम पढ़ने की इजाजत नहीं देता, इसलिए वो नहीं पढ़ेंगे।
11: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा।
6: कांग्रेस नेता ठीक से बचाव कर पाते, इसी दौरान कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार बचाव की कोशिश में ऐसा कह गए जिससे पार्टी और मुसीबत में फंस गई। देखिए कांग्रेस सांसद ने क्या कहा।
12: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है।
6: तो वंदे मातरम पर विवाद थमने के बजाय गहराता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: जेनरेशन जी अगर अपने भर्ती इम्तिहानों को लेकर चिंतित है तो जेनरेशन जी की तरह जेन अल्फा भी बेचैन है। दुर्भाग्य ये है कि जिन छात्रों को स्कूल में होना चाहिए वो टीचरों की कमी, बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। कल उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, मध्य प्रदेश में धार जिले में इन जेन अल्फा ने सड़कों पर धरना दिया, सरकारों को खबरदार किया।

0: जनरल था, शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर लगातार खबरदार करने सड़क पर उतर रहे हैं। लखनऊ में एक बार फिर ये छात्र उतरे, जहां एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पर धरना देने बैठी ये छात्राएं इस बार जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की हैं, जिन्होंने बालागंज चौराहे पर रास्ता जाम किया, प्रशासन के आश्वासन के बाद ही जो खत्म हुआ। तेज बारिश के बीच 100 से ज्यादा छात्राएं हॉस्टल से निकलकर करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलते हुए दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर पहुंची और धरना देने बैठ गईं। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल में लंबे समय से टीचर की कमी है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्राओं ने मेस में मिलने वाले घटिया खाने और बीमार पड़ने पर सही समय पर इलाज नहीं मिलने की शिकायत भी की। जब कई बार शिकायत के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इन छात्राओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रदर्शन की खबर लगते ही समाज कल्याण अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनमें प्रमुख सचिव अनुराग यादव शामिल रहे। उन्होंने छात्राओं की समस्याएं सुनी, समाधान का वादा किया। अफसरों के समझाने पर फिलहाल ये धरना खत्म हुआ।
1: जो हमारी वार्डन है हम उससे संतुष्ट नहीं है, और स्कूल की टाइमिंग हमारे हिसाब से होनी चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, और कुछ और अपनी समस्याएं बता रही है। इनको लेके ये बच्चे इधर आई हुई थी, इनकी समस्याओं को सुना गया है, और ये अभी हम लोग विद्यालय में बैठ के इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनके बारे में करके और कार्रवाई करेंगे।
2: असीम अरुण जो मंत्री हैं समाज कल्याण, वो कुछ दिन पहले भी गए थे, जिनसे छात्राओं ने ये कहा था कि ये अध्यापकों की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि अगर हम बात करें तो शासन के मुताबिक इस पूरे मामले पर शासन ने पुराने जो टीचर हैं उनको ही कंटिन्यू करने की बात कही है, लेकिन शासन स्तर पर नए टीचरों को भर्ती करने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर ये कोर्ट में है।
0: लखनऊ की ये छात्राएं अधिकारियों से शिकायत, स्कूल प्रबंधन के सामने अर्जी और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के सामने अपनी बात रखने के बाद प्रदर्शन को मजबूर हुए, क्योंकि मंत्री की बातों से भी कुछ बदलता नहीं दिखा। 14 तारीख को लखनऊ में जेनेल्फा के प्रदर्शन की ये तस्वीरें खूब वायरल है, जहां मंत्री असीम अरुण लखनऊ से कन्नौज जाते वक्त जाम में फंस गए, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों को देख उनके पास पैदल ही पहुंच गए। पहले सड़क पर उन्होंने छात्रों से बात की और फिर सभी को स्कूल के अंदर ले जाकर समस्या सुनने चले। लखनऊ की तरह मध्य प्रदेश के धार जिले में भी छात्राएं अव्यवस्था को लेकर सड़क पर उतर आईं। धार के निसरपुर की माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की 40 छात्राएं रात में खिड़की से कूदकर हॉस्टल की अव्यवस्थाओं को लेकर थाने पहुंच गईं। बताया जा रहा है कि यहां 50 बेड की क्षमता वाले हॉस्टल में 140 छात्राओं को रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, साथ ही उन्हें दिया जाने वाला खाना भी अच्छा नहीं होता। रात के अंधेरे में छात्राओं के इस प्रदर्शन की भनक लगते ही तहसीलदार समेत SDOP मौके पर पहुंचे और छात्राओं की समस्या सुनी गई।
3: हमको हॉस्टल हमारा भवन चाहिए, और मतलब खाने पीने की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है, और हॉस्टल में मतलब 50 लड़कियों का रहने का है, और मतलब 140 लड़कियाँ रहती वहाँ पर रह नहीं पाती है।
4: लेकिन बेटा ऐसे रात में अचानक से 10:30 बजे खिड़की से कूद कर भाग के आना कहीं ना कहीं बड़ी बात होगी।
3: लेकिन हमको मतलब निकलने में गेट से बाहर नहीं होने देते, लेकिन हम इसलिए हमने खिड़की का मतलब एक वो तार है ना वो तोड़ के आए हम।
0: देश में जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक शिक्षा में सुधार को लेकर सड़कों पर है। देश में इस वक्त जेन अल्फा अचानक कहीं भी सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने लगते हैं, जिसने शिक्षा में आमूलचूल बदलाव को लेकर उनकी बेचैनी से सरकारों को खबरदार किया है, और अब गेंद हर सरकार के पाले में है कि वो कैसे इन छात्रों की मांगों को सुनती है।
5: बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम में कम से कम एक तस्वीर ऐसी जरूर साफ कर दी है कि सरकार और विपक्ष के बीच मुद्दा चाहे कोई भी हो, देश का मुद्दा शिक्षा सुधार है। देश में 13 तरह की परीक्षाएं कराने वाली सबसे बड़ी एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बार फिर फेल हो गई है। देश के छात्रों के लिए नेशनल टेंशन

0: एजेंसी बन चुकी है। नीट पेपर लीक पर आंदोलन के बाद एनटीए के 40 से ज्यादा कर्मचारियों को बदल दिया गया, लेकिन वहीं पर अब यह पता चलता है कि इस एजेंसी के पूरे सिस्टम को ही बदलने की जरूरत है, क्योंकि एनटीए ने जून में कराई गई यूजीसी नेट की परीक्षा में 3 विषय की परीक्षाओं को रद्द करके सितंबर में फिर से कराने का फैसला किया है।
1: शिक्षा मंत्रालय ही बताता है कि यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले केवल 6% उम्मीदवारों को ही असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है। उसमें भी अगर यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा के 3 विषय में दोबारा इम्तिहान करने की नौबत आती है तो फिर खबरदार करना जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद एक बार फिर अपनी कुव्यवस्था से चर्चा में आई 9 साल पुरानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फिर से टेस्ट लेने वाली कम टेंशन देने वाली एजेंसी बनकर सामने आ रही है, जिसके बाद एनडीए के दफ्तर के बाहर दिल्ली के कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे। एनटीए ने एक बार फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पात्रता और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून तक आयोजित की थी। अब रविवार को इनमें से यूजीसी नेट की अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसका खामियाजा आदित्य, सिमरन जैसे परीक्षार्थी, उनके परिवार और दक्षिता जैसे शिक्षकों को उठाना पड़ा है। आप कहेंगे कैसे, तो पहले सुनिए और सोचिए कि जिस एनटीए के 40 अधिकारी तक नीट पेपर लीक में आंदोलन के बाद सरकार ने बदले, वो एनटीए भांग खाकर पेपर नहीं सेट करा रहा, बल्कि दावा है कि एनटीए के पूरे कुएं में भांग पड़ी है। कैसे, ये अब समझिएगा। यूजीसी नेट जून 2026 में इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 150 में से 67 सवाल 2024 की यूजीसी नेट परीक्षा से दोहरा दिए गए। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया था कि दोहराए गए सवालों में विकल्पों का क्रम तक समान था। सोशियोलॉजी के पेपर में वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां थी, समाजशास्त्रियों और अवधारणाओं का नाम गलत लिखा था, अस्पष्ट और खराब हिंदी अनुवाद था, कथित तौर पर सिलेबस से बाहर के सवालों को लेकर शिकायतें सामने आई थी। परीक्षा से पहले सोशियोलॉजी के सवालों की पीडीएफ भी लीक होने का दावा किया गया, हालांकि एनडीए ने लीक के आरोपों की पुष्टि नहीं की थी। वहीं कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में सवाल दोहराए जाने का आरोप लगाया था, 80 से अधिक सवाल दोहराए जाने का दावा किया गया था। एनटीए कहता है कि अब इन्हीं सब की वजह से 3 विषय में परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, आगे सितंबर में पेपर करा लेंगे, लेकिन 2 महीने तक सन्नाटा खींचे रहे एनटीए को लेकर युवा नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि ये सब तो उनके साथ ठगी है।
2: कितनी मेहनत से आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में गलतियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन रिपीट पाए जाते हैं, और अब एकदम कहा जाता है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया,
3: तो ये काफी डिसहार्टनिंग है। हमारे दिल को काफी ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम 2 महीने से वेट कर रहे थे कि आंसर की रिलीज होगी। हमने 25 जून को एग्जाम दिया था, हमको कैंपेन चलाना पड़ा ट्विटर पे, हमको एक्स पे कैंपेन चलाना पड़ा, तब जाके हमको कोई रिस्पांस मिला। बट एकदम से आप 2 महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ कि किस बेसिस पे कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट जनरलाइज की टाइपोग्राफिकल एरर्स थे। इंग्लिश में कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स थे ही नहीं, बस क्वेश्चन पेपर जो 2024 के थे वो रिपीट हुए थे, PYQs रिपीट हुए थे, कोई एरर नहीं था। तो उस बेसिस पे आप री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, विच इज अनफेयर। मेरा नेट क्वालिफाई हो चुका है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि JRF हो जाएगा इस बारी इस अटेम्प्ट में, अब वो एग्जाम स्क्रैप कर दिया है। अब वो होप जो थी वो मर चुकी है। अब 24 दिन में मैं क्या ही कर लूंगा, कितना ही रिपीट कर लूंगा, क्योंकि 2 महीने का गैप तो ऑलरेडी आ चुका है।
4: इतना वास्ट सिलेबस है, Paper 1 भी है उसके साथ, हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें। तो ऐसे और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि री एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है। अभी नेक्स्ट मंथ में बहुत सारी स्टेट्स की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, तो जिन बच्चों का नहीं हुआ या फिर जो इस एग्जाम का वेट कर रहे थे, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कैसे एग्जाम देंगे।
1: अब एनटीए वाले कह रहे हैं कि वो पेपर दोबारा करा लेंगे, दोबारा पेपर की फीस बच्चों से नहीं लेंगे, लेकिन इतने सबसे क्या छात्रों के वक्त की बर्बादी, दोबारा परीक्षा देने के तनाव समेत दूसरे नुकसानों की भरपाई हो पाएगी? चिंता की बात यह है कि जो पेपर पास करके PhD छात्र करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता हासिल करते हैं, उस परीक्षा के पेपर तक में ना अनुवाद सही था ना व्याकरण, यहाँ तक कि पुराने पेपर से ही सवाल टीप दिए गए। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि ये सब पता करने में 2 महीने एनटीए को क्यों लग गए, या फिर लीक पेपर के दाग को व्याकरण की चूक और रिपीट सवाल के लपेटे में लाकर धो दिया जा रहा है।
4: मैंने काफी क्लोजली स्टूडेंट से बात करी थी, क्योंकि हम लोगों को स्टूडेंट्स पूरा पूरा पेपर बता देते हैं। पेपर में 67 टू 70 क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हुए थे, मतलब ऑप्शंस भी ऊपर नीचे नहीं करे थे। उस चीज पे पहले भी आवाज उठाई गई थी कि रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए आगे से, कि ये पेपर की क्वालिटी डिटोरिएट होती है तो आपका कट ऑफ काफी ज्यादा हाई चला जाता है, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इम्पैक्ट होते हैं अनरीजनेबली। बट यहाँ पे री एग्जामिनेशन का मुद्दा कहीं से भी नहीं आया था। री एग्जामिनेशन उन सिनेरियोज में होता है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की इंटेग्रिटी के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी के बेसिस पे आप लोग री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, जिसमें कि आपने 40 दिन तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया, आपने कोई ऐसी चीज कोई नोटिस नहीं निकाला कि हाँ हम कंसिडर कर रहे हैं, ये कमेटी ये रिकमेंडेशन शायद देगी। कमेटी के बारे में भी 16 अगस्त को बताया जा रहा है, उसी दिन नोटिस आता है, आंसर की आ जाती है, 84 सब्जेक्ट्स की आंसर की आएगी, बट इन 3 की नहीं दे रहे हैं। कमेटी अब बैठी है डिस्कस कर रही है, आप 40 दिन से क्या कर रहे हैं।
1: एनटीए कहता है कि यूजीसी नेट से जुड़े 3 विषय की परीक्षा में खामियों को केवल कुछ सवाल हटाकर दूर नहीं किया जा सकता था। एनटीए कहता है कि कई शिकायत मिलने के बाद एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने पेपर में कई तथ्य संबंधी टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां पाई। सवाल है कि क्या कोई भी पेपर आंख और दिमाग बंद करके बनाया जा रहा है, कहीं पहले कोई देखने वाला नहीं होता है।
5: जो पेपर नक्सल है उसको खत्म करना चाहिए, अगर देश के बारे में मोदी जी कुछ समझते हैं सोचते हैं। 2 महीनों बाद एनटीए को अपनी गलती का रियलाइज होता है कि उन्होंने गलती की और 3 पेपर्स में इतनी मिस्टेक थी कि वो पेपर फिर से करवाने पड़ेंगे, ये एनटीए ने बताया है।
1: इसी के बाद सोमवार को एनटीए के दफ्तर के बाहर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे, मांग रखते हैं कि अब एनटीए को बंद कर देना चाहिए।
6: कांग्रेस का आरोप था कि जो सोशियोलॉजी का पेपर है वो लीक हुआ, वही विद्यार्थियों का ये भी कहना था कि सोशियोलॉजी में ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन कंसेप्ट के एरर है। वही साथ ही अंग्रेजी के पेपर में देखा गया कि 150 में से जो तकरीबन 67 सवाल है वो 2024 के यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन था इंग्लिश का उससे रिपीट किए गए। और साथ ही कॉमर्स के विद्यार्थियों का भी एनटीए पर बड़ा आरोप था कि जो 80 सवाल है वो रिपीट कराए गए। इसी को देखते हुए जो 3 विषयों के एग्जामिनेशन थे यूजीसी नेट के उनको रद्द करा दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस की छात्र का एनएसयूआई का हल्ला बोल यहां पर एनटीए मुख्यालय के बाहर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में जारी है, जहां आप देख सकते हैं बैन एनटीए की तख्तियां लेकर यहां पर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए।
1: अब एक तरफ शिक्षा मंत्रालय पोस्ट डालकर यह तो बताता है कि शिक्षा मंत्री का काम भी धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद से देख रहे प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव एनटीए के महानिदेशक और दूसरे सीनियर अफसरों के साथ बैठक की है। मंत्री जी को हाल की समस्याओं के बाद एनटीए की तरफ से उठाए गए कदमों खासकर पूरे सिस्टम में सुधार के संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एनटीए में वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से पहले पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट के 3 पेपर ही ढंग से ये लोग नहीं बना पा रहे हैं।
7: जिस तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है।
1: राहुल गांधी ने यूजीसी नेट के 3 पेपर दोबारा कराने के फैसले पर एनटीए और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गलती एनटीए की है, सजा छात्रों को भुगतनी पड़ रही है।
7: एनटीए को बंद करना पड़ेगा, एनटीए को बैन करिए, ये एक भ्रष्टाचारी एजेंसी है, ये कामयाब नहीं है।
1: लेफ्ट के छात्र विंग ने भी एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है, जिन्हें बस में भरकर हिरासत में लेकर हटा दिया गया। अब इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि एनटीए के वो लोग कौन है जिनकी वजह से यूजीसी नेट में 3-3 सब्जेक्ट का ऐसा पेपर बना जिसमें गलतियों की भरमार थी, जवाबदेही किसकी थी, उसे फिर हटाया जाएगा या फिर लीपापोती ही चलेगी। अनमोल बाली, दिल्ली आज तक।
0: बुलेट में रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

रांची में आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार, टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द, फैसले पर जमकर झूमे छात्र, देवेंद्र महतो अन्य दो छात्रों ने अनशन तोड़ खत्म किया अपना आंदोलन। सोरेन सरकार के सामने अभी भी छात्र आंदोलन की चुनौती बरकरार है। रांची स्टेडियम में धरना दे रहे छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं, बोले आज बैठक करेंगे, तय करेंगे आगे की रणनीति। वंदे मातरम गायन को लेकर सियासी संग्राम जारी, गोवा के कार्यक्रम में खड़गे की मौजूदगी में गाए गए सिर्फ दो पैराग्राफ, कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी शाह पर उठाए सवाल। भारत की तरफ फोटो आईडी कार्ड जैसा चुनावी सिस्टम अब अमेरिका में लागू करने की तैयारी में ट्रंप प्रशासन, सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने का आह्वान किया, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से बातचीत का हवाला दिया। और गोल्टस में आज चौथे दिन पारी की शुरुआत करेगी भारतीय टीम, तीसरे दिन सुधार और जडेजा के फिरकी के आगे नतमस्तक श्रीलंकाई टीम, पहली पारी में मेजबान 284 रन पर ढेर, टीम इंडिया को 178 रन की बढ़त।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की समस्या के बारे में, यानी रक्तचाप की समस्या के बारे में। ब्लड प्रेशर के बारे में ज्योतिष क्या कहता है और ज्योतिष के अनुसार इसका समाधान क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 5:50 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी रक्तचाप के बारे में। ज्योतिष में रक्तचाप से, ब्लड प्रेशर से किन ग्रहों का संबंध है? देखिए, शरीर में जो खून नलियों में, नसों में बहता है और उससे जो दबाव पड़ता है, उसे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब रक्त का बहाव तेज होता है तो इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं, और निम्न रक्तचाप में, लो ब्लड प्रेशर में, रक्त का बहाव काफी कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर से, रक्तचाप से तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं। रक्त का स्वामी मंगल है, हालांकि चंद्रमा को भी रक्त का मालिक मानते हैं, और दबाव का स्वामी तो चंद्रमा है ही, इसीलिए रक्तचाप में चंद्रमा और मंगल, इन दोनों की बड़ी भूमिका होती है। बृहस्पति के कारण नलिकाओं में, नसों में वसा जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है, और इससे भी रक्तचाप प्रभावित होता है। सूर्य के कारण हृदय की पंपिंग और उससे रक्तचाप प्रभावित होता है। खान पान को और ग्रहों को नियंत्रित करके काफी हद तक ब्लड प्रेशर से, रक्तचाप से बचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ब्लड प्रेशर के लिए चंद्रमा, मंगल, सूर्य और कभी कभी बृहस्पति की भूमिका देखी गई है। ब्लड प्रेशर पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन के महीने में विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी,
स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, खान पान में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। पहले बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की, यानी निम्न रक्तचाप की। कब होता है ऐसा? अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा तो आपको लो ब्लड प्रेशर होगा, निम्न रक्तचाप होगा। सूर्य या शुक्र के कमजोर होने पर भी ब्लड प्रेशर लो होता है, रक्तचाप निम्न होता है। जन्म की तारीख का संबंध अगर 2 अंक से या 6 अंक से हो तब भी ब्लड प्रेशर लो होता है। हथेलियों में चंद्रमा के पर्वत पर अगर कालिमा हो या दाग धब्बे हो तो भी ब्लड प्रेशर लो होता है। अगर घर में सीलन ज्यादा हो या अंधेरा ज्यादा हो, शनि का निगेटिव प्रभाव ज्यादा हो तो भी लो ब्लड प्रेशर होने की समस्या हो सकती है। अब अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो पहली सलाह यही है कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह को मानिए। ज्योतिष के हिसाब से क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, इसके बाद 108 बार ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करें। मोती या ओपल धारण ना करें। दिन में नमक और चीनी पानी का घोल, ORS भी कह सकते हैं, इसको 3 या 4 बार थोड़े थोड़े इंटरवल पर पिए और ढेर सारे रस वाले फल खाने से भी लाभ होगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप नमक और पानी का घोल पीजिएगा या नमकीन नींबू पानी पीजिएगा, फिर आप चीनी का प्रयोग मत करिएगा। आगे उच्च रक्तचाप के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि।

जीवन में धैर्य बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न पूजा ने हमें लिखा है और पूजा हमें मेल लिखती हैं देहरादून से। इनकी जन्म की तारीख है 28 जुलाई 2003, जन्म का समय सुबह के 9 बजे, जन्म स्थान है देहरादून। पूजा कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब में सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पूजा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको या तो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए और या टीचिंग जॉब की तैयारी करनी चाहिए। उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, इसकी तैयारी करिए, इसमें आप सफल होंगी। या एजुकेशन के क्षेत्र की तैयारी करेंगी तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं कुंडली में बेहतर हैं। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि कब हाई ब्लड प्रेशर होता है, कब उच्च रक्तचाप होता है। अगर मंगल कुंडली में ज्यादा मजबूत है, मंगल की प्रधानता ज्यादा है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है, कमजोर है, तो लो बीपी होगी। और अगर चंद्रमा खराब है तो हाई ब्लड प्रेशर होगा। कुंडली में अगर अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बनेगी। अगर राहु का संबंध कुंडली में केंद्र स्थानों से है, राहु केंद्र में है, तो उच्च रक्तचाप हो सकता है, इसकी संभावना बन सकती है।
अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध 4 अंक से, 8 अंक से या 9 अंक से हो तो आपको हाई बीपी, उच्च रक्तचाप हो सकता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, तो पहली बात डॉक्टर से संपर्क करें और जो दवाइयां वो बताते हैं, जो परहेज बताते हैं, उनका ध्यान रखें। ज्योतिष के हिसाब से उच्च रक्तचाप से बचने का उपाय क्या है? भोजन में नमक और तेल का प्रयोग कम से कम करिए। एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए। सूर्योदय के पहले सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए और रात में जल्दी सोइए, नींद अपनी पूरी करिए। हरी सब्जियों का, खास तौर से लौकी का और पत्ता गोभी का रस पीजिए। गले में एक सफेद स्फटिक की माला अगर आप धारण करें तो बहुत बेहतर होगा। शांति से, गंभीरता से बैठ करके सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जप करने से भी लाभ होता है। अगर आपको ईश्वर प्राणिधान करना आता है और आप गंभीरता से, सही तरीके से, नियमित रूप से ईश्वर प्राणिधान करें तो निसंदेह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर ले जाएंगे। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

धन लाभ के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, मित्र के साथ संबंध का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, धन का लाभ होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, करियर में सफलता भी मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो देखिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया है तो आप ज्योतिष के हिसाब से कौन से उपाय कर सकते हैं ये हमने आपको बताया। रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की नौबत ना आए, ब्लड प्रेशर आपको हो ही ना, इसके लिए क्या करें, नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय प्राणायाम करें और ध्यान करें। प्राणायाम करने से और ध्यान करने से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करें, फलों और सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा जल पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी इंटरवल्स पे पीते रहें। एक चांदी का छल्ला या एक चांदी की चेन महीने की किसी भी पूर्णिमा को धारण करें। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का खूब प्रयोग करें, लाइट ब्लू कलर के कपड़ों का जितना प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी।

होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नील।

समस्या हो सकती है। करियर में जोखिम ना लें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा क्यों? लोग ऐसा कहते हैं कि शाम के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है। क्या ऐसा है? देखिए, पहले जमाने में, पहले समय में बिजली के इतने साधन मौजूद नहीं थे। घर में लैंप या लालटेन से काम चलता था, और अगर कोई कीमती सामान गिर गया, कोई कीमती कागज गिर गया, तो शाम को झाड़ू लगाने से वो घर के बाहर चला जाता और बाद में नहीं मिल पाता। इसीलिए सामान्यता एक नियम बनाया गया कि शाम को झाड़ू ना लगाएं। दूसरी बात, जब आप शाम को अपने घर में पूजा के लिए दीपक जला लेते हैं, देवी देवता का आवाहन कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको दीपक जलने के बाद भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं होता है। तो देखिए, अगर आवश्यकता है, कांच टूट गया, कोई चीज टूट गई, तो ऐसी स्थिति में आप झाड़ू लगाकर उसको ठीक कर सकते हैं। बिजली के साधन अब पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन सामान्यतः ये ध्यान रखिए कि शाम का दीपक जलने के बाद घर में झाड़ू ना लगाई जाए।

का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर एक, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर दो, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर तीन, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर चार, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर पांच, काम की अधिकता रहेगी। नंबर छह, विवाह तय हो सकता है। नंबर सात, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। नंबर आठ, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर नौ, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी के सामने सुंदर कांड का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, लाभ होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा।

के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि वालों के लिए, करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को, बेवजह की चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज षष्ठी तिथि है, मंगलवार की षष्ठी अशुभ होती है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें। सावन का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए सावन सूत्र।

विवाह में विलंब हो रहा हो तो सावन के किसी भी मंगलवार को उस बालिका को पार्वती मंगल का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उसका विवाह शीघ्र होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

झारखंड में छात्र आंदोलन के 24वें दिन छात्रों के आगे झुकी सोरेन सरकार। देवेंद्रनाथ महतो समेत कई छात्र नेताओं ने अपना आमरण अनशन खत्म किया। देवेंद्र महतो ने मांग की कि सदन में ऐसा कानून बने जिससे किसी छात्र के साथ धोखा या ठगी न हो, सरकार छात्रों के हितों की गारंटी दे। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं भी रद्द करने का ऐलान किया गया। सीएम सोरेन के ऐलान के बाद छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली। देवेंद्र महतो ने सोना मांगचू से वीडियो कॉल पर बात की। सोरेन सरकार के फैसले की सोना मांगचू ने सराहना की, छात्रों की मांगे मानने पर आभार जताया। आज तक से देवेंद्र महतो ने कहा, छात्रों के हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा, संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का आंदोलन खत्म कराने पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी, देवेंद्र महतो समेत तीनों ने अनशन तोड़ा, सरकार ने सभी मांगे मानी। झारखंड के मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि छात्रों की सभी मांगे मान ली गई हैं, 90 दिन में चार्जशीट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। छात्रों के एक पक्ष रिफॉर्म मंच का ऐलान, धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार सीबीआई जांच का आदेश नहीं देती। छात्र नेता उम्मे हबीबा ने सीएम सोरेन, राहुल गांधी समेत सभी का धन्यवाद जताया। सीजीएल भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के फैसले पर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। रांची में सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा, अनशनकारियों के हालात अब सामान्य है, अपनी जिम्मेदारी पर अस्पताल से चले गए। वंदे मातरम विवाद पर सियासत जारी है, खड़गे का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी को देशभक्ति पर ज्ञान देने का हक नहीं है, देश को बांटने और नफरत फैलाने का आरोप बीजेपी पर लगाया। वंदे मातरम गायन विवाद में शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। वंदे मातरम विवाद पर केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सम्मान को लेकर संसद में कानून बन चुका है, उसका पालन किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता अनूप एंटनी का कांग्रेस पर हमला, बोले मुस्लिम लीग और एक वर्ग को खुश करने की राजनीति कर रही है कांग्रेस। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी हो गया है, बड़े सरकारी कार्यक्रम में करीब 3 मिनट 10 सेकंड की सभी 6 कड़ियां गाई जाएंगी। दिमागी नक्सल विवाद पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है, हिमंता बिश्वा शर्मा ने पी चिदम्बरम पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके बयान की अब जांच होनी चाहिए। हिमंता ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। दिमागी नक्सल बयान पर आप सांसद संजय सिंह का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोले नौकरी और भर्ती परीक्षा पर सवाल उठाने वालों को दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। दिमागी नक्सल विवाद में बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं, बीजेपी सांसद तरुण चुग ने कहा नक्सलवाद का नया रूप है दिमागी नक्सल। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो चुका है, अमित मालवीय तेजस्वी सूर्या की छुट्टी कर दी गई है, 22 को पहली मीटिंग होगी, पीएम मोदी ने बधाई दी। नितिन नवीन ने बीजेपी की नई टीम में बड़ा फेरबदल किया, स्मृति ईरानी सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, पीयूष गोयल अब कोषाध्यक्ष का जिम्मा संभालेंगे। बीजेपी की नई टीम में बड़े बदलाव किए गए, दीपक महास के सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए, हेमंत जोशी को युवा मोर्चा की कमान सौंपी गई। चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी का बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है, नई राष्ट्रीय टीम में अनुभवी और नए चेहरों का संतुलन भी बनाया गया है। बीजेपी के नए आईटी सेल चीफ दीपक मस्के का विपक्ष पर निशाना, बोले प्रोपेगेंडा माहौल बना सकता है लेकिन सच लंबे समय तक नहीं छिप सकता। दिल्ली दौरे में फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री बनने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा, बोले महाराष्ट्र में था हूं और आगे भी महाराष्ट्र में रहूंगा। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों के लिए आज 100 दिन की मियाद खत्म हुई, अब मराठी नहीं बोलने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, यूनियन ने कोर्ट और हड़ताल की चेतावनी दी। 2 लाख गैर मराठी ऑटो टैक्सी ड्राइवरों पर कार्रवाई का रास्ता भी साफ हो गया, सरकार ने कहा पहले नोटिस भेजेंगे फिर लाइसेंस बैच रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ओबीसी आंदोलनकारी नवनाथ वाघमारे मराठा युवतियों पर विवादित बयान से बवाल मच गया, जालना में केस दर्ज हो गया, मराठा क्रांति मोर्चा ने प्रदर्शन किया। मुंबई में एमआरडीए परीक्षा के रिजल्ट पर सवाल उठा है, कुछ अभ्यर्थियों के 200 में से 200 अंक पर पारदर्शिता की मांग उठी है। मॉडल त्विशा शर्मा मामले में सीबीआई के चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया गया है, पति समर्थ और सास गिरबाला पर मानसिक प्रताड़ना और अपशब्द कहने का आरोप लगाया गया है। सीबीआई के मुताबिक त्विशा गर्भावस्था को लेकर असमंजस में थी, 16 अप्रैल को प्रेगनेंसी का पता चला और 17 अप्रैल को अस्पताल में इसकी जांच भी कराई। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, फेशियल रिकॉग्निशन के इस्तेमाल पर भी सवाल उठे हैं। प्रदर्शनकारियों की पहचान और डेटा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली पुलिस पर फेशियल रिकॉग्निशन इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। गोरखनाथ मंदिर में प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हुआ, सीएम योगी ने युवाओं को संदेश दिया।
योगी ने कहा माफिया प्रवृत्ति से युवा शक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान है, युवाओं को बचाने के लिए खेल संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी है। आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में श्री रविशंकर ने जीएमआरबीएफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। हर साल युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। भोगापुरम के युवाओं के लिए रोजगार की नई राह भी खोली गई है। स्किल सेंटर में इंडस्ट्री आधारित ट्रेनिंग, भारत विदेश में प्लेसमेंट की सुविधा भी दी गई। राजस्थान में मिलावट पर वार हुआ है। 18 पैकेट खाद्य उत्पाद की बिक्री पर 2 महीने की रोक लगाई गई है। 26 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस को भी निलंबित कर दिया गया है। बंगाल के कालिम्पोंग में बड़ा भूस्खलन हुआ, पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिर गया। इस हादसे के बाद मलबे की चपेट में एक बाइक सवार आ गया, सूझबूझ से उसने अपनी जान बचाई। भूस्खलन की खौफनाक वीडियो सामने आई है। उधर ऋषिकेश में भारी बारिश के बीच उफनती बीन नदी में एक कार पलट गई। तेज बहाव के बीच 2 लोग फंस गए, उन्हें रेस्क्यू किया गया। इस उफनती नदी के बीच एसडीआरएफ का हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन सामने आया। जान जोखिम में डालकर दोनों फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चमोली टीएचडीसी टनल हादसे में 2 लोग अभी भी लापता है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 8 की मौत हो चुकी है। देहरादून में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। सड़कों पर पानी भरा, जनजीवन प्रभावित हुआ। वाराणसी में तीसरे दिन भी गंगा का जलस्तर बढ़ा रहा। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ता रहा। नाव के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। शाहजहांपुर में भारी बारिश से एक मकान ढह गया। मलबे में दबकर चाचा से उसके भतीजे की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। चंपावत इलाके में कुफंती नदी पार करते दिखे स्कूली बच्चे, वीडियो से हड़कंप मचा। प्रशासन ने कहा सुरक्षित पैदल पुल भी उपलब्ध है। देहरादून में नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। आईएमएम के सामने वाहन पर एक विशालकाय पेड़ गिर गया। चंबा में बादल फटने की घटना हुई है। लोहे का पुल बह गया है। 40 से 50 श्रद्धालु रास्ते में फंसे थे। स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। उड़ीसा में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हुए हैं। भद्रक में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बाढ़ के बीच उड़ीसा में राहत बचाव कार्य को भी तेज किया गया है। उत्कल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मछुआरों को फिलहाल समंदर में नहीं जाने की सलाह दी गई है। कुरेज में इंटरविलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ। 1.0 का शानदार समापन में लेकर के युवाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल में बड़ा सम्मान मिला है। काठमांडू में नेपाली सेना की मानक रैंक दी गई। दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, नितिन नवीन और रेखा गुप्ता भी मौजूद थे। गुरुग्राम में 6.5 साल के स्कूली बच्चे ने लिखी किताब लियो द काइंड जायंट में दयालुता और खुश रहने का संदेश दिया गया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सीएम विष्णुदास आय का किसान अवतार देखने को मिला। खेतों में सीएम ने खुद हल चलाया, धान की रोपाई भी की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। एक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। बिजनौर के एक मंदिर में सत्संग भवन में भीषण आग लग गई। बाजार में अफरा तफरी मच गई। धधकती लपटों के बीच अपनी जान बचाकर लोग भागते हुए दिखाई दिए। आसमान को छूती हुई आग की लपटें नजर आ रही थी। घटना की जानकारी मिली तो दमकल विभाग ने मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया। सूरत के होटल में रिसेप्शन पर अचानक एक 26 साल का युवक गिर गया। आईडी देते वक्त वो बेहोश हुआ। हार्ट अटैक की आशंका जताई गई। भोपाल की त्विशा शर्मा केस में सीबीआई की चार्जशीट पर

0: बच गया। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर जुटी रहीं, आग पर काबू पाया गया। मुंगेर के अशोकधाम मंदिर भगदड़ में मुंगेर की महिला की मौत हो गई है। बेटे के साथ अशोकधाम पूजा करने गई थी, पति की पहले ही मौत हो चुकी है। हरदोई में पत्नी को अस्पताल ले जाने के बहाने पति ले गया जंगल में गला घोंट दिया। अवैध संबंधों के शक में हत्या की गई है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बांदा के आवासीय स्कूल में 2 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। मोमोज खाने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ी थी, फूड पॉइजनिंग की आशंका भी है। अलीगढ़ में बेकाबू ट्रक का कहर आया सामने, सब इंस्पेक्टर समेत 3 की मौत हो गई। ड्यूटी पर तैनात थे श्रवण कुमार तोमर। लखीमपुर में एक ही बाइक से जा रहे 5 छात्रों के बाइक से टकराई वैगनार कार, 2 छात्रों की मौत, 3 की हालत गंभीर। कोल्हापुर में बस के नीचे कुचले एक मैकेनिक की मौत हो गई, बस ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ। मुजफ्फरनगर में बीसीए परीक्षा देने जा रही 20 साल की छात्रा सड़क हादसे में मारी गई, पिता की हालत गंभीर, अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। पुष्कर में छेड़छाड़ के आरोप में एक प्रिंसिपल की जमकर पिटाई हुई, छात्रा ने मुंह काला किया, पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम यूपी के हापुड़ में एक युवक के साथ जमकर मारपिटाई की गई, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कानपुर में एसडीएम के ड्राइवर के पैर दबाते होमगार्ड का एक वीडियो वायरल हुआ, वायरल वीडियो पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। सूरत में होटल में ठहरने पर पहुंचे 26 साल के युवक की रिसेप्शन पर अचानक गिरकर मौत हो गई, मौत की लाइव घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका जताई गई है। तेलंगाना के सिद्दीपेट में मां बेटे की खूनी साजिश का खुलासा हुआ, 2 हत्याओं का पर्दाफाश किया गया, 4 और महिलाएं भी निशाने पर थीं। सोनीपत में विवाद के दौरान एक युवक पर गोली चल गई, एक युवक घायल हो गया, जबकि बीच बचाव करने उसका भाई आया था वो भी घायल हो गया, आरोपी मौके से फरार हो गया, पुलिस जांच में जुटी। अभिनेता रणवीर सिंह ने शुरू की प्रलय की शूटिंग, फिल्म में कल्याणी प्रदर्शन अहम भूमिका में नजर आएंगी। मालावाल वीकली 2 का ऐलान कर दिया गया, फिल्म में परेश रावल, रितेश देशमुख, राजपाल यादव और अवीना टंडन पर नीति चोपड़ा, शिल्पा शिरोडकर और एलवी यादव नजर आएंगे। इमरान हाशमी की आवारा पन 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा देखने को मिल रहा, फिल्म ने 3 दिनों में 82 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। हैवान स्टाइल में अक्षय कुमार ने सैफ अली खान का बर्थडे विश किया, लिखा जन्मदिन मुबारक हो सैफ। सनी देओल ने पान मसाला विज्ञापनों को करने से साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरा जमीर ऐसे विज्ञापन करने के लिए नहीं मानता। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही के रास्ते को लेकर ईरान ओमान में समझौता हो गया है, संयुक्त बयान पर अब दोनों देश काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया कि ईरान के पास किसी भी तरह से परमाणु हथियार नहीं दिया जा सकता। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद इलाके में मिसाइलों से हमला किया, कार्यवाहक गवर्नर ने कहा कि रात भर हुए इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई है, 4 से ज्यादा घायल हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप का आभार जताया, मक्का ज्वाइंट डिफेंस के एग्रीमेंट का समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। साउथ कोरिया के साउथ ग्योंगसांग प्रांत में भारी बारिश हुई है, जमीन खिसकने जबरदस्त बाढ़ की वजह से 1 शख्स की मौत हो गई, 3 घायल, कीचड़ के अंदर फंसे कई लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला सहित देश के बड़े इलाके में मूसलाधार बारिश से बाढ़ आई है, सैकड़ों घरों में पानी घुसा, कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। बाढ़ और बारिश में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शनिवार को पूर्वी इंडोनेशिया में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बीएनपीबी के एक अधिकारी ने बताया कि राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है। अप्रैल से जून में जापान की अर्थव्यवस्था उम्मीद से धीमी गति से आगे बढ़ रही है, 2% ग्रोथ के अनुमान के मुकाबले जीडीपी में 1.1% की बढ़ोतरी हुई है, कच्चे माल की बढ़ती लागत और मध्य पूर्व में युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। हीरोज और नैशविल जैसे मशहूर टीवी सीरीज के स्टार हेरन पेंटियर का 36 साल की उम्र में निधन हो गया है, पेंटियर के पिता ने खुद को जानकारी दी, मौत की वजह अब तक नहीं बताई गई है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: नीमाया, लेट्स गो।

0: The new BE6 Sportex.
1: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
2: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद. रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं. पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर. भीम ऐप से करो पे.
3: इट्स द माय वे.
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
7: I wake up wearing someone else again.

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with Hind, bade aaram se.
2: Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
1: विमल बोलो जुबां केसरी।
4: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
5: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
6: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
5: नहीं सर।
6: 12th किससे की हो?
5: 12th सर मेरा PCM से रहा।
6: कंपाउंड क्या होता
5: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती है उसके ऊपर।
6: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है, यही एक मिनट।
5: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
6: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
2: मौका था 15 अगस्त पर देश के नाम संबोधन का, जगह थी लाल किले की प्राचीर। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की उपलब्धियां गिनाई, भविष्य के लक्ष्य बताए तो नए खतरे से आगाह भी किया। पहली बार पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल के बढ़ते खतरे की तरफ देश का ध्यान खींचा। एक बार फिर सुनिए पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा।
1: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
2: जाहिर है पीएम मोदी ने अपने दिमाग से नक्सलवादी विचारधारा को खाद पानी देने वालों पर हमला बोला और इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम खुलकर सामने आए। चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदम्बरम यही नहीं रुके, कुछ घंटे बाद एक्स पर उन्होंने लिखा, दिमागी नक्सल शब्द बीजेपी के पुराने आरोपों जैसे अर्बन नक्सल, आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग का ही एक नया रूप है। अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलन जीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था, ये पुराने अपशब्द विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे। दिमागी नक्सल उन्हीं अपशब्दों का एक नया रूप है। चिदम्बरम के इस बयान पर बीजेपी नेता बुरी तरह भड़क गए। दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, देश के तमाम शहरों से चिदम्बरम पर चौतरफा हमला शुरू हो गया। वार पलटवार के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पी चिदम्बरम के बयान पर आपत्ति जताई। एक्स पर उन्होंने लिखा, भारत के सम्मानित पूर्व गृह मंत्री का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद नुकसानदायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि विपक्ष के नेता दिमागी नक्सल हैं। सिर्फ वो लोग ही दिमागी नक्सल हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों का साथ देते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, चिकन नेक को काट कर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहते हैं। रिजिजू ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया तो पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 370 के समर्थन में आगे आ गईं। महबूबा ने एक्स पर लिखा, मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूं, मैं एक दिमागी नक्सल हूं।
3: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
2: पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल पर हमला कर एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जहां आने वाले दिनों में वार पलटवार का लंबा सिलसिला दिख सकता है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।

झारखंड में छात्रों की मांगों के आगे झुकी सोरेन सरकार। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। फैसले पर जमकर झूमे छात्र देवेंद्र महतो और अन्य दो छात्रों ने अनशन तोड़ खत्म किया अपना आंदोलन। सोरेन सरकार के सामने अभी भी छात्र आंदोलन की चुनौती बरकरार। रांची स्टेडियम में धरना दे रहे छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े। कहा सरकार कर रही है मैदान खाली कराने का प्लान। वंदे मातरम गायन को लेकर सियासी संग्राम जारी। अब गोवा के कार्यक्रम में खड़गे की मौजूदगी में गाए गए सिर्फ दो पैराग्राफ। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी शाह पर उठाए सवाल। भारत की तरह फोटो आईडी कार्ड जैसा चुनावी सिस्टम अब अमेरिका में लागू करने की तैयारी में ट्रंप। सेव अमेरिका एक्ट को पास करने का किया आह्वान। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से बातचीत का दिया हवाला। गोल टेस्ट में आज चौथे दिन पारी की शुरुआत करेगी भारतीय टीम। तीसरे दिन सुथार और जडेजा की फिरकी के आगे नतमस्तक श्रीलंकाई टीम। पहली पारी में मेजबान 284 रन पर ढेर। टीम इंडिया को 178 रन की बढ़त।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 8 बज चुके हैं, अब वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। मैं हूं आपके साथ पूजा। तमाम अहम खबरें इस बुलेटिन में होंगी। सबसे पहले बात करेंगे रांची आंदोलन की, बताएंगे कि कैसे सरकार वहां पर झुक गई है। वहीं देवेंद्रनाथ महतो ने अनशन तोड़ दिया है, इस पर पूरी जानकारी आपको देंगे। बताएंगे कि छात्र सीबीआई जांच की मांग पर आखिर क्यों अड़े हुए हैं। वहीं जिक्र करेंगे बीजेपी की नई टीम का भी, उसकी डिटेल भी आपको देंगे। साथ ही खबर बताएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में थप्पड़ कांड की खबरें, मानसूनी आफत की भी होगी। दिखाएंगे कि कैसे सैलाब में जिंदगी फंस चुकी है। बात करेंगे कलिंगपोंग में हुई तबाही की भी, साथ ही खबरें गोल टेस्ट की भी होंगी। बताएंगे एक एक अपडेट उस खबर पर भी। वही बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रांची की खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि झारखंड सरकार ने छात्रों की एक अहम मांग मान ली है। जी हां, TDPL के जरिए आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं को हेमंत सोरेन सरकार ने रद्द करने का ऐलान कर दिया है। और इसी एजेंसी ने JSSC CGL परीक्षा भी कराई थी, जिस पर धांधली के आरोप लगे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद रांची के जयपाल स्टेडियम में छात्र झूमे नजर आए। उन्होंने जमकर वहां पर सेलिब्रेशन किया। और दूसरी ओर अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र महतो और अन्य जो छात्र हैं, अपना अनशन खत्म कर उन्होंने आंदोलन खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि रांची स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों ने अब तक अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है। TDPL के तहत कराई गई सारी परीक्षाएं रद्द हो चुकी है, यह ऐलान कर दिया गया है। सेलिब्रेशन की तस्वीरें कल वहां से सामने आई। देवेंद्र महतो ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है, कुछ और छात्र भी थे उन्होंने भी अपना अनशन खत्म कर दिया है। तो स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन अभी भी लेकिन जारी है, अनशन पर वो अभी भी है। सीबीआई जांच तो आखिरकार झारखंड सरकार को झुकना पड़ा है। रांची में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के 24वें दिन सरकार ने फैसला कर दिया है कि JSSC CGL परीक्षा रद्द की जाएगी। आंदोलनकारी छात्रों की यह एक अहम मांग थी और अब सरकार ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। ऐसे मुख्यमंत्री ने बीती रात इसका ऐलान किया और कहा है कि TDPL के आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जाएंगी। और इस ऐलान के साथ ही छात्रों में खुशी की लहर है।
2: ये रांची की उस शाम का लम्हा है जब आंदोलन कर रहे छात्र झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। सोमवार दोपहर तक यहां चल रही विरोध वाली नारेबाजी बदल गई। रात को एक ऐलान के साथ ही वहां सिर्फ और सिर्फ कामयाबी के नारे लगने लगे। छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिन मांगों को लेकर छात्र धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से एक मांग थी JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की।
3: जीत है माननीय हेमंत सोरेन और उनके सभी मंत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो हमारे दर्द को समझा।
4: कहा गया है कि झुकाने वाला होना चाहिए और ये झारखंड के छात्रों ने दिखा दिया कि देखिए एकजुट होके एकता में ही बल है।
3: आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत हुआ है।
2: मुख्यमंत्री सोरेन ने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ बैठकर प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग मानने का फैसला किया और उसका ऐलान कर दिया। छात्रों की मांग के आगे झारखंड सरकार को झुकना ही पड़ा। छात्रों ने 18 अगस्त तक का इंतजार का अल्टीमेटम दिया था। छात्रों को हेमंत सोरेन के इस ऐलान का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। मुख्यमंत्री की घोषणा की खबर जैसे ही उन तक पहुंची, जयपाल सिंह स्टेडियम का नजारा ही बदल गया। छात्रों के चेहरे खिल उठे। अब तक जहां सरकार विरोधी नारे लग रहे थे, मांगे माने जाने के बाद वहां जीत के गीत गाए जाने लगे। इससे पहले झारखंड सरकार ने 10 अगस्त को 14वीं JPC की प्रारंभिक परीक्षा और अन्य दो परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला किया था, लेकिन छात्र डटे हुए थे। उन्होंने दो टुक कह दिया था कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। दो दिन पहले तो उन्होंने 20 अगस्त तक CM आवास तक मार्च करने का भी ऐलान कर दिया था। ऐसे में सरकार ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की मांग मानकर संकट को टालने की पूरी कोशिश की। आकाश कुमार के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
1: सेलिब्रेशन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, छात्र कितने ज्यादा खुश वहां पर नजर आ रहे हैं और सेलिब्रेट किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि छात्रों की ज्यादातर जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं के हित में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास किया गया है। तो युवाओं की जो छात्रों की जो मांगे हैं, कई मांगों को मान लिया गया है, ये हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है। वहीं युवाओं के हित में पेपर लीक के खिलाफ भी कानून पास किया गया है, ये भी उन्होंने कहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ सुधार किए जाएंगे, यह आश्वासन उन्होंने दिया। छात्रों की शिकायतों के लिए एक पोर्टल पर भी काम किया जा रहा है, सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि शुरू किए गए सुधार कार्यक्रम का नेतृत्व अमिताभ कौशल करेंगे और ऐसे में छात्रों को भरोसा हुआ और उसके बाद वहां पर सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई। क्या कुछ हेमंत सोरेन ने कहा है सुनिए।
5: सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्य को समझ बूझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी।
1: तो सोमवार का दिन काफी ज्यादा अहम रहा है क्योंकि छात्रों के प्रदर्शन ने झारखंड सरकार की चुनौतियां बढ़ा रखी थी। अब एक और मांग माने जाने के बाद सोरेन सरकार, थोड़ी बहुत राहत उनको मिली होगी सोरेन सरकार के फैसले से पहले, दिन भर बैठकों का दौर चला। लंबी माथापच्ची के बाद आखिरकार सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है और उसके बाद अनशन पर बैठे छात्र नेताओं ने अपना अनशन तोड़ा भी है।
6: 16 दिनों से भूख हड़ताल पर थे देवेंद्रनाथ महतो, अब उनका अनशन खत्म हो चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली के विरोध में देवेंद्रनाथ महतो के साथ साथ कई अन्य छात्र नेता भी अनशन कर रहे थे। लगातार बिगड़ती स्थिति के बाद सभी को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जैसे ही झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला किया, तमाम छात्र नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया।
7: साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।
6: तभी देवेंद्रनाथ महतो ने ऐलान कर दिया कि वो जल्द अपना अनशन तोड़ देंगे। इस बीच समाज सेवी सोनम वांगचू की देवेंद्रनाथ महतो से वीडियो कॉल पर बात हुई। सोनम वांगचू ने देवेंद्रनाथ महतो से कहा कि मुझे आपकी जीत पर खुशी है। वांगचू ने देवेंद्र महतो को बधाई दी। देवेंद्र महतो ने वांगचू से अनशन खत्म के अपने फैसले के बारे में बताया। देवेंद्र महतो ने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए संघर्ष जारी रहेंगे। अब सरकार की ओर से भी पहल तेज हो गई है। परीक्षा रद्द करने के ऐलान के बाद सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह सदर अस्पताल पहुंचे ताकि छात्र नेताओं का अनशन खत्म कराया जा सके। इरफान अंसारी ने छात्र नेता हबीबा और राहुल क्रांति का अनशन तोड़वाया, फिर देवेंद्रनाथ महतो को भी जूस पिलाया और उसके साथ ही उनका भूख हड़ताल भी समाप्त हो गया।
7: जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं।
6: सुना आपने, देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि सारे मांग पूरे हो गए हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन स्थगित हो गया है। देवेंद्र महतो ने कहा कि ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि किसी छात्र के साथ धोखा न हो, कोई ठगे न जाए। उन्होंने सरकार से इसकी गारंटी मांगी।
8: यह अश्योर करती है सरकार हमारी कि जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होगी और एक भी दोषी इसमें बचेगा नहीं।
6: अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे छात्र आगे की रणनीति को लेकर क्या फैसला लेते हैं। आकाश कुमार के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
1: चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने छात्रों से अपील की है कि धरना स्थल पर वो पहुंचे क्योंकि भारी संख्या में पुलिस लगाया जा रहा है। छात्र नेताओं का आरोप है कि धरना स्थल को खाली कराने का प्लान है। उनके मुताबिक जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वो वहां से हटने वाले नहीं है। धरना स्थल खाली कराने का प्लान है ऐसा माना जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल को भी लगाया जा रहा है इस वक्त की बड़ी खबर। जो दूसरी तरफ छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उन्होंने कहा है कि वो धरना स्थल को खाली नहीं करेंगे। ऐसे में छात्रों से अपील की जा रही है और सीबीआई जांच के नोटिफिकेशन तक हटना नहीं है ये माना जा रहा है। तो आज छात्रों के आंदोलन का 25वां दिन है। बीती रात झारखंड सरकार के ऐलान के बाद स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि उनका आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार उनकी एक एक मांग माने और जो मांग बची है वो ये कि परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच कराई जाए। इसे लेकर गतिरोध अभी भी जारी है।
2: क्या झारखंड सरकार की मुसीबतें टल गई हैं? क्या छात्र आंदोलन वाला संकट खत्म हो गया है? इन तमाम सवालों का जवाब आज 25वें दिन मिलने की संभावना है। बीती रात मुख्यमंत्री सोरेन ने छात्रों की अहम मांगों में से एक को मान लिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन टेंशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दरअसल छात्रों का आंदोलन मुख्य रूप से दो मंचों के माध्यम से चल रहा है। एक ओर न्यायिक मंच के तहत छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो अनशन कर रहे थे, तो दूसरी ओर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल स्टेडियम में धरना दे रहे थे। देवेंद्रनाथ महतो ने तो ऐलान कर दिया है कि अब ये आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच अब भी एक मांग को लेकर अड़ा हुआ है। वो मांग है सीबीआई जांच की। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के जश्न के बीच सोरेन के दोनों मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह आधी रात को जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे। देवेंद्रनाथ महतो अब तक अनशन तोड़ चुके थे, अब स्टेडियम में जारी धरना खत्म कराने की बारी थी। रिफॉर्म मंच के धरना स्थल पर पहुंचे मंत्रियों ने वहां मौजूद छात्रों से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन छात्रों ने अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया।
9: जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, लड़ाई जारी रहेगा।
2: छात्रों का सवाल है कि सरकार जेपीएससी में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने से पीछे क्यों हट रही है। उनका ये भी कहना है कि जब तक उनके प्रमुख मांगों को पूरा नहीं किया जाता और सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जाता, तब तक रिफॉर्म मंच अडिग है।
10: सीबीआई जांच के लिए अडिग है।
11: सीबीआई के लिए हम लोग अभी भी हम लोग का मांग तटस्थ सीबीआई होना चाहिए।
2: छात्रों के जिद से साफ है कि सरकार की चुनौती कम नहीं हुई। मंत्री अपील कर रहे हैं कि वे अन्य छात्र भी अपना प्रदर्शन खत्म करें। अब रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों के आंदोलन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आकाश कुमार के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
1: रांची में एक तरफ परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों का प्रदर्शन, तो दूसरी ओर उन लोगों का प्रदर्शन जिन्होंने 2025 में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में कामयाबी हासिल की और अब नौकरी भी कर रहे हैं। सीएम के परीक्षा रद्द करने के फैसले को लेकर अब उनका गुस्सा फूटा है। नौकरी जाने पर वो रो रहे हैं, लिहाजा सरकार के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरी रात सफल लोगों का धरना प्रदर्शन चला और वो परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ प्रोजेक्ट भवन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वही वंदे मातरम को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच कल गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में सिर्फ दो पैराग्राफ ही गाए गए हैं। इस पूरे मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद थे और इस कार्यक्रम में बोलते हुए खड़गे ने कल पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला है।
12: मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। उनका कितना 57-58 है, कितना हा? ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े, बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तुम? हम देशभक्त नहीं है, ये लोग देश के खिलाफ है, एंटी इंडिया। अरे एंटी इंडिया तो तुम है, एंटी रिलीजन तुम है।
1: तो वंदे मातरम विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने वंदे मातरम के अपमान को आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनिया गांधी से क्या उम्मीद की जा सकती है।
13: सोनिया गांधी इंदन बैसक साध्य? ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದವರ? ಅವರೇನೋ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಬಂದರು, ಆದರೆ ಅವ್ರ ರಕ್ತ ಹರಿತದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಲಿರುತ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ನೆ ಪನ್ನೆಗಳು ಏನೇನು ನಡೆದವೆ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೆ.
1: लंबे इंतजार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम में युवाओं का जोश है तो अनुभवी चेहरे भी हैं। दरअसल नितिन नवीन की टीम में क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है।
14: बीजेपी की नई टीम बदलाव परक बताई जा रही है। अगले साल यूपी, पंजाब समेत 7 राज्यों में चुनाव है। ये नितिन नवीन के नेतृत्व वाली बीजेपी की पहली बड़ी परीक्षा होगी। उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे। उस लिहाज से बीजेपी में बदलाव काफी अहम है। बीजेपी में फिर से विनोद तावड़े को महामंत्री बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में भारी विजय दिलाने वाले सुनील बंसल को भी दोबारा महामंत्री का पद सौंपा गया है। आदिवासी समाज के गजेंद्र पटेल को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्मृति ईरानी की भी महामंत्री के रूप में वापसी हुई है तो संघ के राम माधव उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत और बिप्लव देव को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। वहीं नितिन नवीन की नई टीम में बीजेपी के आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक मस्के को नया आईटी सेल हेड बनाया गया है। बीजेपी की नवीन टीम से अमित मालवीय के साथ साथ दुष्यंत गौतम, राधा मोहन दास अग्रवाल, संजय मयूख, सरोज पांडे, तेजस्वी सूर्या, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अरुण सिंह को भी जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिला है। नितिन नवीन ने इस बदलाव को भविष्य का बदलाव करार दिया है।
15: ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करें।
14: अमित मालवीय को पद से हटाए जाने पर कांग्रेस ने तंज किया है।
16: वेलकम चेंज इसमें है कि अमित मालवीय जी की छुट्टी कर दी गई है। जिस इंसान ने सिंगल हैंडेडली अपने पूरे आईटी सेल के द्वारा पूरे देश में नफरत फैलाई है, कांग्रेस के खिलाफ एक जो प्रोपेगेंडा चलाया, राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, जिस तरीके से झूठी अफवाहें फैलाई, गलत खबरें फैलाई, तो उनका जाना तो बनता था।
14: अब देखना है कि बीजेपी की नई टीम कैसे पार्टी को और मजबूत करती है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: और अब कुछ खबरें यूपी और पंजाब के सियासी समर की। इस खास रिपोर्ट में देखिए दोनों राज्यों में कैसा है चुनावी हलचल।
14: दो हजार 2027 चुनाव को साधने के लिए बीजेपी ने अपने संगठन में किए बदलाव में यूपी को तवज्जो दी है। नितिन नवीन की नई टीम में ओबीसी, जेन जी यानी युवा और महिला पर फोकस है। अहम पदों पर कुल 8 बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से 3 महिलाओं और 3 ओबीसी नेताओं को जगह मिली है। कुर्मी बिरादरी की रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, तो केशव मौर्य के करीबी और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य को बीजेपी ने ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया है। राष्ट्रीय मंत्री के पद पर संगीता यादव को लाया गया है जो कि यादव बिरादरी से महिला चेहरा है। संगठन के अहम पदों पर 2 मुस्लिम चेहरे तारिक मंसूर और कुंवर वासी ताली को मौका मिला है। बीजेपी के नए संगठन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महामंत्री बनाया गया है। इसे लेकर अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, जमकर आतिशबाजी हुई, बैंड बाजे की धुन पर नेता झूमते दिखे। पार्टी नेता कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को संगठन में जगह मिलने से आगामी विधानसभा चुनाव में अब 4 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। चुनावी राज्य पंजाब से आने वाले तरुण चुप को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया है। उनके अलावा पंजाब से मनप्रीत बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस जिम्मेदारी के मिलने पर बादल ने कहा कि पंजाब में सिर्फ डबल इंजन सरकार ही सफल हो सकती है। इस ऐलान के बाद उनके पैतृक गांव में लोगों ने जश्न मनाया। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बगैर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि जो लोग आज युवा युवा चिल्ला रहे हैं, दरअसल युवा उनके एजेंडे में कभी था ही नहीं, ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं। मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम ने पार्टी सांसद डिंपल यादव को लेकर अजीबोगरीब बयान दे दिया। विधायक ने डिंपल यादव को पूरे देश की मां बताते हुए उन्हें ममता का प्रतीक बता दिया।
1: वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पर हमले का एक मामला सामने आया है। दरअसल लॉ फैकल्टी के एक पीएचडी स्कॉलर पर प्रोफेसर को थप्पड़ मारने और उस पर हमला करने का आरोप है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर ने प्रोफेसर ने छात्र को सस्पेंड करने का आदेश दिया है और जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, जिन्होंने भारतीय वोट आईडी कार्ड का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में अमेरिकी प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका में बिना वैध फोटो पहचान पत्र के चुनाव कैसे हो सकते हैं। इसका हवाला देते हुए ट्रंप ने चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के लिए हर अमेरिकी वोटर के लिए फोटो आईडी अनिवार्य करने की बात कही है। साथ ही ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि भारत में हाल ही में हुए आम चुनावों में 1% से भी कम वोटर्स ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया था और हर वोटर के पास वैध फोटो पहचान पत्र था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बातें सेव अमेरिका एक्ट के तहत की है और इसके लिए समर्थन जुटाने के मकसद से उन्होंने कहा है।
17: I just think it's a great idea. Yeah, I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait.
1: ट्रंप से जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि उन्होंने एक बार फिर से होर्मुज को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अभी भी हमारे पास होर्मुज पर पूरा कंट्रोल है। तो ट्रंप ने यह दावा किया है कि होर्मुज पर उनका पूरा कंट्रोल है और ये जानकारी उन्होंने दी है। होर्मुज को लेकर एक बार फिर से ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है कि जो होर्मुज है उस पर अभी भी अमेरिका का पूरे तरीके से कंट्रोल है। और अब खबर मौसम की मार से जुड़ी। दरअसल पश्चिम बंगाल के कलिंगपोंग में बड़ा भूस्खलन हुआ है। बिंदु इलाके में अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर सड़क पर आ गिरा और भूस्खलन के वक्त सड़क से कई लोग वाहन वहां गुजर रहे थे। अचानक से मलबा गिरने के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि सड़क से गुजर रहे लोग और वाहन इसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गए। तो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना का ये डरावना वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें तेजी से गिरता मलबा साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच ऋषिकेश से एक हैरान करने वाला रेस्क्यू वीडियो सामने आया है। बीन नदी में तेज बहाव के बीच मैक्स वाहन पलट गया जिसमें 2 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। अपनी जान की परवाह किए बिना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत उनको करनी पड़ी है जिसके बाद 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और इलाज के लिए उनको तुरंत अस्पताल भेजा गया। अब खबर गोल टेस्ट की, जिस पर टीम इंडिया ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। दरअसल कल टेस्ट के तीसरे दिन मानव सुथार और रविंद्र जडेजा की फिरकी के आगे श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। अब 178 रनों की बढ़त के साथ आज भारत अपनी दूसरी पारी शुरू करेगा।
14: गोल में बजेगा टीम इंडिया का डंका। शुरुआती झटकों से उबर गया श्रीलंका। पहली पारी में भारत को मिली 178 रन की बढ़त। ये पारी की दूसरी ही गेंद थी जब मोहम्मद सिराज ने खाता खुलने से पहले ही ओपनर निशान फर्नांडो को चलता कर दिया था। फिर 90 रन होते होते श्रीलंका के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। एक बार तो लगा कि जल्दी ही श्रीलंका का बोरिया बिस्तर बन जाएगा, लेकिन इस साझेदारी ने शुरुआती झटकों से श्रीलंका को उबार लिया। एक छोर पर सोनल दिनुषा थे तो दूसरे छोर पर डिक्विला रन बना रहे थे। डिक्विला ने 80 रनों की पारी खेली जबकि सोनल ने शानदार शतक जमाया। रविंद्र जडेजा ने शतकवीर सोनल को पवेलियन की राह दिखाई। जडेजा ने पहली पारी में 3 शिकार किए। इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट भी पूरे कर लिए। इसके बाद श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई और भारत को मिल गई 178 रन की बढ़त। आज तक ब्यूरो।
1: इसी के साथ सुपर एट में वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
18: इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: आगे आगे,
21: अरे उधर उधर
20: किधर,
21: करेक्ट करेक्ट,
22: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
2: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद. रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं. पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर. भीम ऐप से करो पे.
3: इट्स द माय वे.

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: झारखंड में छात्रों की मांगे, उनके आगे झुकी सोरेन सरकार। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। महतो और अन्य दो छात्रों ने तोड़ा अनशन, लेकिन सीबीआई जांच पर अड़े स्टेडियम में धरना दे रहे छात्र। 51 नए चेहरों के साथ नितिन नवीन की टीम का 2027 से 29 तक के चुनाव पर फोकस। यूपी से 8 पदाधिकारी। वंदे मातरम गायन को लेकर सियासी संग्राम जारी। अब गोवा के कार्यक्रम में खड़गे की मौजूदगी में गाए गए सिर्फ 2 पैराग्राफ। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी शाह पर उठाए सवाल। हिमाचल में घटाई जाएगी आईएएस आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की संख्या। सीएम सुक्खू ने किया ऐलान, राज्य में काम कम अफसर ज्यादा हैं। सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जाने के इच्छुक अफसरों की फाइलें की जा रही हैं क्लियर। दिल्ली के बुराड़ी में सूटकेस में लड़की की लाश मिलने से सनसनी। बहन की हत्या के बाद भाग रहा युवक पकड़ा गया। बिना रिपोर्ट सिर्फ संदिग्ध गतिविधि के आधार ही अलर्ट, दिल्ली पुलिस ने दबोचा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का। उससे पहले एक बड़ी खबर, दिल्ली के बुराड़ी इलाके से पुलिस ने सूटकेस से एक नाबालिग युवती का शव बरामद किया है। नाइट चेकिंग के दौरान एक युवक की संदिग्ध गतिविधियों की वजह से पुलिस ने उससे पूछताछ की। इस दौरान खुलासा ये हुआ कि उसने अपनी बहन की हत्या की है। हत्या कर उसका शव सूटकेस में बंद किया और सुनसान इलाके में ठिकाने लगाने की वो फिराक में था, लेकिन शव फेंक कर जाते वक्त पुलिस ने उसे पकड़ लिया। युवक की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद किया है। आरोपी का नाम अविनाश है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अविनाश ने बताया कि उसे अपनी चचेरी बहन पर प्रेम प्रसंग का शक था, इसलिए मौत के घाट उसे उतार दिया गया। एक और बड़ी खबर, हिमाचल में आईएएस आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की संख्या घटाई जाएगी। दरअसल सीएम सुक्खू ने यह ऐलान किया है कि सीएम का यह कहना है कि राज्य में काम कम और अफसर ज्यादा है। ऐसे में सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जाने के इच्छुक अफसरों की फाइलें क्लियर की जा रही है।
1: आईएएस के 153 में से 130 पद करने जा रहे हैं, आईएफएस के हम 118 में से 83 पद करने जा रहे हैं, आईपीएस के 96 में से और पद कम करने जा रहे हैं। अधिकारियों की ज्यादा फौज नहीं चाहिए, अधिकारियों की फौज चाहिए हमें, जो हमारे अनुसार जो लगता है कि जो योजनाएं हैं, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारी चाहिए होते, योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, उसके स्वरूप को बदलने के लिए अधिकारी चाहिए होते। तो अच्छी बात है कि हमारे अधिकारी अपने आप ही महसूस कर रहे कि एक एक पोस्ट पर एक आईएएस ऑफिसर बैठ गए हैं। तो काफी ऑफिसर्स ऐसे बैठ गए हैं जिनके पास बेचारों के पास काम नहीं होता, उनका टैलेंट भी खराब होता है। तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा जो अप्रूवल है वो दिल्ली जाने के लिए दे रहा हूँ कि जो
0: चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का।

झारखंड में छात्र आंदोलन के 24वें दिन छात्रों के आगे झुकी सोरेन सरकार। देवेंद्रनाथ महतो समेत कई छात्र नेताओं ने खत्म किया आमरण अनशन। छात्र नेता देवेंद्र महतो की मांग, सदन में ऐसा कानून बने जिससे किसी छात्र के साथ धोखा या ठगी ना हो, सरकार दे छात्रों के हितों की गारंटी। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द, सीएम सोरेन के ऐलान के बाद छात्रों में खुशी की लहर। देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बातचीत की, सोरेन सरकार के फैसले की सोनम वांगचुक ने सराहना की, छात्रों की मांगे मानने पर जताया आभार। आज तक से बोले देवेंद्र महतो, छात्रों के हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा, संघर्ष और आंदोलन रहेगा जारी। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद रांची के जयपाल स्टेडियम में छात्र झूमे, छात्रों ने जमकर किया सेलिब्रेट। इस ऐलान के साथ ही छात्रों में खुशी की लहर, जमकर नाचे छात्र, सड़क पर छोड़े गए पटाखे, हाथों में देश का झंडा लिए झूमे छात्र। फैसले के बाद रांची में जीत का मनाया गया है जश्न। छात्र का आंदोलन खत्म कराने पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी, देवेंद्र महतो समेत तीनों ने तोड़ा अनशन, सरकार ने सभी मांगे मानी। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह बोली, छात्रों की सभी मांगे मानी, 90 दिन में चार्जशीट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। छात्रों के एक पक्ष रिफॉर्म मंच का ऐलान, धरना रहेगा अभी भी जारी जब तक सरकार सीबीआई जांच का आदेश नहीं देती। छात्र नेताओं में हबीबा ने सीएम सोरेन, राहुल गांधी समेत सभी का जताया धन्यवाद। सीजीएल भर्ती परीक्षा रद्द करने के फैसले पर मुख्यमंत्री का जताया गया आभार। रांची में सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट बोले, अनशनकारियों की हालत सामान्य, अपनी जिम्मेदारी पर अस्पताल ले। वंदे मातरम विवाद पर सियासत अभी भी जारी, खड़गे का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी को देशभक्ति पर ज्ञान देने का हक नहीं है, देश को बांटने और नफरत फैलाने का आरोप। वंदे मातरम विवाद में शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग। वंदे मातरम विवाद पर केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी का सोनिया गांधी पर निशाना, बोले सम्मान को लेकर संसद में कानून बन चुका है। बीजेपी नेता अनूप एंटनी का कांग्रेस पर हमला, बोले मुस्लिम लीग और एक वर्ग को खुश करने की राजनीति कर रही है कांग्रेस। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर नया प्रोटोकॉल, बड़े सरकारी कार्यक्रम में करीब 3 मिनट 10 सेकंड की सभी 6 कड़ियां गाई गई। दिमागी नक्सल विवाद पर सियासी घमासान तेज, हिमंत बिस्व शर्मा का पी चिदम्बरम पर हमला, बयान की जांच की मांग। दिमागी नक्सल विवाद पर हिमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, बोले देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। दिमागी नक्सल बयान पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का पीएम मोदी पर हमला, बोले नौकरी और भर्ती परीक्षा पर सवाल उठाने वालों को कहा जा रहा है दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल विवाद में बीजेपी और विपक्ष आमने सामने, बीजेपी सांसद तरुण चुग बोले नक्सलवाद का नया रूप है दिमागी नक्सल। तो वहीं बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान, अमित मालविया तेजस्वी सूर्या की छुट्टी, 22 को होगी पहली मीटिंग, पीएम मोदी ने दी बधाई। नितिन नवीन ने बीजेपी की नई टीम में किया बड़ा फेरबदल, स्मृति ईरानी, सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महासचिव, पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा। बीजेपी की नई टीम में बड़े बदलाव, दीपक बने सोशल मीडिया प्रभारी, हिमंग जोशी को युवा मोर्चे की कमान। चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी का बड़ा संगठनात्मक बदलाव, नई राष्ट्रीय टीम में अनुभवी और नए चेहरों का संतुलन। बीजेपी के नए आईटी सेल चीफ दीपक का विपक्ष पर निशाना, उन्होंने बोला कि प्रोपेगेंडा माहौल बना सकता है लेकिन सच लंबे समय तक छिप नहीं सकता। दिल्ली दौरे में फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री बनने की अटकलों पर लगाया विराम, बोले महाराष्ट्र में था, हूं और रहूंगा। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों के लिए आज खत्म हुई 100 दिन की मियाद, अब मराठी नहीं बोलने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, यूनियंस ने दी कोर्ट और हड़ताल की चेतावनी। 2 लाख गैर मराठी ऑटो टैक्सी ड्राइवर पर कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ, सरकार बोली पहले नोटिस फिर लाइसेंस वैध रद्द करने की प्रक्रिया। ओबीसी आंदोलन को लेकर नवनाथ वाघमारे के मराठा युवतियों पर विवादित बयान से बवाल मचा, जालना में केस दर्ज, मराठा क्रांति मोर्चा ने किया प्रदर्शन। मुंबई में एमएमआरडीए भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर सवाल, कुछ अभ्यर्थियों के 200 में 200 अंक पर उठी पारदर्शिता की मांग। मॉडल त्रिशा शर्मा मामले में सीबीआई की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, पति समर्थ और सास गिरिबाला पर मानसिक प्रताड़ना और अपशब्द कहने का आरोप। सीबीआई के मुताबिक त्रिशा गर्भावस्था को लेकर असमंजस में थी और 16 अप्रैल को प्रेगनेंसी का पता चला, ऐसे में 17 अप्रैल को अस्पताल में जांच कराई गई। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, फेशियल रिकॉग्निशन के इस्तेमाल पर उठे सवाल। प्रदर्शनकारियों की पहचान और डेटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली पुलिस पर फेशियल रिकॉग्निशन इस्तेमाल करने का आरोप। गोरखनाथ मंदिर में प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हुआ, सीएम योगी ने युवाओं को दिया संदेश। सीएम योगी बोले माफिया प्रवृत्ति से युवा शक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान, युवाओं को बचाने के लिए खेल संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी। योगी आदित्यनाथ ने कहा युवाओं को निगल रहा है ड्रग और स्मार्टफोन का नशा, दोनों से दूर रहने की अपील की। भोगापुरम के युवाओं के लिए रोजगार की नई राह, स्किल सेंटर में इंडस्ट्री आधारित ट्रेनिंग और भारत विदेश में प्लेसमेंट की सुविधा। राजस्थान में मिलावट पर बड़ा वार, 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री पर 2 महीने की रोक, 26 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित।
बंगाल के कालिम्पोंग में बड़ा भूस्खलन, पहाड़ का हिस्सा भरभराकर सड़क पर जाकर गिरा। मलबे की चपेट में आया एक बाइक सवार, सूझबूझ से बचाई अपनी जान। भूस्खलन की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। ऋषिकेश में भारी बारिश के बीच उफनती नदी पलटी कार, ऐसे में तेज बहाव के बीच दो लोग फंसे। उफनती नदी में एसडीआरएफ का हैरतअंगेज रेस्क्यू, जान जोखिम में डालकर दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आसनसोल में लगातार बारिश से जलजमाव का खतरा, कई अंडरपास और रेलवे ब्रिज पानी में डूबे, ऑरेंज अलर्ट जारी। आसनसोल में आफत की बारिश और निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। देहरादून में नेशनल हाईवे पर टला बड़ा हादसा, वहां पर सामान वाहनों पर गिरा विशाल कायप। चंबा में बादल फटा, लोहे का पुल बहा, 40 से 50 श्रद्धालु रास्ते में फंसे, स्थानीय लोगों की सहायता के लिए किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। ओडिशा में भारी बारिश से बाढ़ के हालात गंभीर नजर आए, भद्रक में 4 से 5 फीट तक भरा पानी, कई सड़कें डूबी। बाढ़ के बीच ओडिशा में राहत बचाव तेज, उत्कल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द की गई, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की दी गई सलाह। चमोली टीएचबीसी टनल हादसे में दो लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी, अब तक 8 लोगों की मौत। देहरादून में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर भरा पानी, जनजीवन प्रभावित। वाराणसी में तीसरे दिन भी बढ़ा गंगा का जलस्तर, 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, नाव संचालन पर रोक। शाहजहांपुर में भारी बारिश से मकान ढहा, मलबे में दबकर चाचा 3 साल के भतीजे की मौत हुई, महिला गंभीर रूप से घायल। चंपावत में उफनती नदी पार करते दिखे स्कूली बच्चे, वीडियो से मचा हड़कंप, प्रशासन बोला सुरक्षित पैदल पुल उपलब्ध। गुरेज में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल 1.0 का शानदार समापन हुआ, खेल को लेकर युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल में बड़ा सम्मान, काठमांडू में नेपाली सेना की मानद रैंक दी गई। दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन हुआ, कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, नितिन नवीन और रेखा गुप्ता पहुंचे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय का किसान अवतार, खेतों में सीएम ने खुद चलाया हल, धान की रुपाई भी की। पुलवामा में एलजी मनोज सिन्हा ने मेगा तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी, युवाओं ने किया एकता और देशभक्ति का संदेश। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, एक की मौत हुई एक घायल। बिजनौर के एक मंदिर के सत्संग भवन में भीषण आग लगी, बाजार में मची अफरा तफरी, धधकती लपटों के बीच अपनी जान बचाकर भागते दिखे लोग। आसमान को छूती नजर आई आग की लपटें, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम और एसएम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सूरत के होटल में रिसेप्शन पर अचानक से गिरा 26 साल का युवक, आईडी देते वक्त बेहोश हुआ, हार्ट अटैक की आशंका। ओडिशा के गंजम में जेसीबी चोरी का फिल्मी अंदाज में पुलिस ने किया पीछा, 4 थानों की पुलिस को चकमा देकर बैरिगेड तोड़ता रहा आरोपी, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कलयुगी बेटे ने माता पिता की हत्या पर बोरियों में रखी लाश, आरोपी फरार। झांसी में चेन स्नैचिंग के 2 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया सामान। हरदोई में पत्नी को अस्पताल से इलाज के बहाने ले गया पति, जंगल में घोट दिया गला, अवैध संबंधों के शक में हत्या की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांदा के आवासीय स्कूल में 2 बच्चों की मौत से हड़कंप, मोमोज खाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत, फूड पॉइजनिंग की आशंका। नैनीताल में आबादी के बीच बाघ ने घोड़े को बनाया शिकार, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर। दिल्ली के बुराड़ी में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग के शक में युवती की हत्या, सूटकेस से शव बरामद। गोंडा में बुरके में डांस कराने वाला स्कूल किया गया सील, जांच में बिना मान्यता के संचालित मिला विद्यालय। मुजफ्फरनगर में कर्मचारी हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से झुलसा, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बिहार के नवादा में एक ही कमरे से मां और 2 मासूम बेटियों के शव बरामद हुए, हत्या आत्महत्या दोनों एंगल से की जा रही है जांच। देहरादून में पुलिसकर्मी की कार ने युवक को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। अलीगढ़ में बेकाबू ट्रक का कहर और सब इंस्पेक्टर समेत 3 की मौत हुई, ड्यूटी पर तैनात थे श्रवण कुमार तोमर। लखीमपुर में एक ही बाइक से जा रहे 5 छात्रों की बाइक से टकराई वैगनार कार, 2 छात्रों की मौत हुई, 3 की हालत गंभीर। कोल्हापुर में बस के नीचे कुचले मैकेनिक की मौत हुई, बस ड्राइवर की लापरवाही से हुआ पूरा हादसा। मुजफ्फरनगर में बीसीए परीक्षा देने जा रही 20 साल की छात्रा की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर, अज्ञात वाहन की तलाश। पुष्कर में छेड़छाड़ के आरोप में प्रिंसिपल की पिटाई, छात्रा ने किया मुंह काला, पुलिस ने हिरासत में लिया। रणवीर ने शुरू की प्रलय की शूटिंग, फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन भी अहम भूमिका में आएंगी नजर। मालामाल वीकली 2 का ऐलान हुआ, फिल्म में परेश रावल, रितेश देशमुख, राजपाल यादव, रवीना टंडन, परिणीति चोपड़ा, शिल्पा शिरोडकर और एल्विश यादव आएंगे नजर। इमरान हाशमी की आवारापन 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, फिल्म ने 3 दिनों में की 82 करोड़ से ज्यादा की कमाई। हैवान स्टाइल में अक्षय कुमार ने सैफ अली खान को किया बर्थडे विश, लिखा जन्मदिन मुबारक हो सैफ। सनी देओल ने पान मसाला विज्ञापनों को किया साफ इनकार, कहा मेरा जमीर नहीं मानता।
डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका जाएंगे शी जिनपिंग। 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही के रास्ते को लेकर ईरान ओमान में समझौता, संयुक्त बयान पर काम जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया ईरान के पास किसी भी तरह के परमाणु हथियार नहीं हो सकते। यूक्रेन ने रूस के एक इलाके में मिसाइलों से किया फिर से हमला। कार्यवाहक गवर्नर ने कहा रात भर हुए हमले में 6 लोगों की मौत हुई, 4 घायल। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप का जताया आभार। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के समर्थन के लिए दिया।

2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 5:50 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त तो होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कर्क राशि।

वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

लोग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका

होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, मित्र के साथ संबंध का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रीन। धनु राशि, धन का लाभ होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, करियर में सफलता भी मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी।

काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

समस्या हो सकती है। करियर में जोखिम ना लें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
2: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
3: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
2: नहीं सर।
3: 12th किससे की हो?
2: 12th सर मेरा PCM से रहा।
3: कंपाउंड क्या होता
2: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
3: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है, यही। एक मिनट,
2: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
3: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: लखनऊ सर्वोदय विद्यालय के छात्र यूं ही सड़कों पर नहीं उतरे। अधिकारियों से शिकायत, स्कूल प्रबंधन के सामने अर्जी और तो और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के सामने भी छात्र अपनी बात कह चुके हैं। लेकिन हासिल क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहन रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल के छात्र संभव है कि देश में जंतर मंतर से शुरू हुए प्रदर्शन करके अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े हैं। लेकिन असली वजह जंतर मंतर नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी है। 14 अगस्त को लखनऊ में सर्वोदय विद्यालय के छात्र सड़क पर उतरे थे। मुद्दा वही था, स्कूल में शिक्षक नहीं, शुद्ध भोजन नहीं और बीमार पड़ जाओ तो मेडिकल सुविधा नहीं। 14 अगस्त को जब आंदोलन हुआ तो समाज कल्याण मंत्री खुद मौके पर पहुंच गए। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया।
1: यहाँ बच्चों ने बताई है, वो ज्यादातर हमारी जानकारी पहले से है। सभी विद्यालयों में बहुत व्यापक सुधार हुए, लेकिन और सुधार करने की गुंजाइश है, उसको हम लोग पूरा।
0: मंत्री की बात सुनकर छात्रों ने तुरंत रास्ता खोल दिया और असीम अरुण के साथ स्कूल में वापस लौट गए। स्कूल में जाकर समाज कल्याण मंत्री ने सबसे पहले स्कूल के स्टाफ की क्लास लगाई। इसके बाद मंत्री जी ने छात्रों की बात सुनी, आश्वासन दिया और चले गए। लेकिन क्या इससे स्कूल की समस्याओं का समाधान हो गया? 4 दिन में शिक्षक भर्ती तो नहीं हो सकती, लेकिन मेडिकल और मेस की सुविधाएं तो जरूर सुधारी जा सकती हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। आपको हम कन्नौज लेकर चलते हैं। कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जेन अल्फा है जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा। इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह को ढंक लिया। ये इनका अधिकार है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका अपनाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए, फिर समाधान।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झारखंड में छात्रों की मांगों के आगे झुकी सुरेंद्र सरकार। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। महतो और अन्य दो छात्रों ने तोड़ा अनशन, लेकिन सीबीआई जांच पर अड़े स्टेडियम में धरना दे रहे हैं छात्र। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी सीखने की 100 दिन की डेडलाइन आज खत्म। लाइसेंस परमिट रद्द करने के सरकारी ऐलान से हड़कंप। मुंबई समेत राज्य के 2,00,000 गैर मराठी ड्राइवर्स के लिए फरमान। इक्यावन नए चेहरों के साथ नितिन नवीन की टीम का 2027 से 29 तक के चुनाव पर फोकस। यूपी से 8 पदाधिकारी, केमिस्ट्री प्रोफेसर और छत्तीसगढ़ के डेटा मास्टर को बनाएगा सोशल मीडिया चीफ। अमित मालवीय की छुट्टी। वंदे मातरम गायन को लेकर सियासी संग्राम जारी। अब गोवा के कार्यक्रम में खड़गे की मौजूदगी में गाए गए सिर्फ 2 पैराग्राफ। कांग्रेस अध्यक्ष का अमित शाह पर निशाना, कहा जब मैं एमएलए बना तब वो बच्चे थे। दिल्ली में बुराड़ी में सूटकेस में लड़की की लाश मिलने से सनसनी। बहन की हत्या के बाद भाग रहा युवक पकड़ा गया। बिना रिपोर्ट से संदिग्ध गतिविधि के आधार पर अलर्ट, दिल्ली पुलिस ने दबोचा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें विस्तार से और रफ्तार से भी। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। सुरेंद्र सरकार ने एक मांग मांगी, दूसरी मांग छोड़ी, छात्रों के गुट ने अनशन खत्म किया, दूसरा डटा। आज की इस बड़ी खबर पर विस्तार से फोकस रहेगा। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी सीखने की डेडलाइन आज खत्म, जो नहीं सीख पाए उनका क्या होगा। बुलेटिन के आखिरी हिस्से में दिखाएंगे ऋषिकेश का एक हैरान करने वाला वीडियो, जब बीन नदी की उफान में फंस गई दो लोगों की जान। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन की खबर के साथ, क्योंकि ये आंदोलन एक तरीके से खत्म हो गया है। झारखंड सरकार ने छात्रों की एक अहम मांग ली है, TDPL के जरिए आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं को हेमंत सोरेन सरकार ने रद्द करने का ऐलान कर दिया है। इसी एजेंसी ने JSSC CGL परीक्षा कराई थी, जिस पर धांधली के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो और अन्य छात्रों ने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि रांची स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों ने अब तक अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है। छात्रों का कहना है कि गड़बड़ियों की CBI जांच कराने की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है।
1: TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
2: इन छात्रों को इस पल का इंतजार पिछले 24 दिनों से था। आखिरकार 24 दिनों तक छात्रों के धरना प्रदर्शन के बाद सोरेन सरकार ने अपना रुख बदला और छात्रों की एक अहम मांग मानने का ऐलान कर दिया।
1: TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
2: रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्रों ने सोरेन सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था। मांग पूरी न होने पर 20 अगस्त को CM आवास के घेराव की चेतावनी दी गई थी। छात्रों के तेवर को देखते हुए कल सोरेन सरकार ने छात्रों से चौथे दौर की बातचीत शुरू की। अपनी मांगों पर छात्र अडिग रहे। इसके बाद कैबिनेट की मैराथन बैठक में JSSC CGL परीक्षा और 2014 से अब तक TDPL द्वारा संचालित सभी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला ले लिया गया।
3: सरकार ने आप लोगों के हित में सभी बातों को मानने का काम किया है और यह अश्योर करती है सरकार हमारी कि जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होगी और एक भी दोषी इसमें बचेगा नहीं।
2: सरकार के फैसलों से अवगत कराने झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह खुद अनशनकारी छात्रों के बीच सदर अस्पताल पहुंचे और जूस पिलाकर देवेंद्र महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति का अनशन खत्म कराया।
4: देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल ने स्वेच्छा से अनशन तोड़ने का निर्णय लिया। हम लोगों ने उनका अनशन तोड़वाया, जूस पिलाकर हम लोगों ने अनशन को तोड़वाने का काम किया। हमारे साथ दीपिका पांडे जी और हमारे भाई जयराम महतो जी के हम लोग सामूहिक प्रयास से जो आंदोलन चल रहा था विधिवत आज समाप्त हो गया। जो भी इनकी मांगे थी सरकार ने मान लिया।
2: 16 दिन से अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो ने अनशन खत्म करने के बाद सोरेन सरकार के फैसले को साहसिक बताया।
5: सरकार ने जो दिल दिखाया इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आज जो डिसीजन लिया, यह डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि CGL परीक्षा का नियुक्ति हो चुकी थी, ज्वाइनिंग हो चुका था। बहुत डिफिकल्ट था डिसीजन। कुछ छात्र गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हम लोग जेन्युइन हैं। उस बीच में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष जांच करते हुए, उन लोग का भी रास्ता निकालते हुए आज इतना बड़ा डिसीजन लिया। पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया आज झारखंड सरकार का इस फैसला को सराहना कर रहे हैं और धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं।
2: दरअसल बात छात्रों की दो मांगों पर अटकी थी। पहला, JSSC CGL परीक्षा रद्द हो। दूसरा, गड़बड़ी की CBI जांच हो। पहली मांग तो मान ली गई, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई। इसे मुद्दा बनाकर छात्रों के दूसरे गुट ने अपना धरना खत्म करने से इनकार कर दिया है।
6: हमारी सीबीआई से रिलेटेड जो मांग है उस पर हम लोग अभी भी अपना मांग को जारी रखे हैं। कल सरकार के तरफ से जो भी आज जो आश्वासन दिया गया माननीय मुख्यमंत्री तरफ से, उनका जो नोटिफिकेशन आएगा, प्रेस विज्ञापित आएगा, उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद अपने आंदोलन की रणनीति के बारे में आप लोग को बताएं।
2: यानी आधा है, आधे की जरूरत है। आकाश कुमार के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: शशि भूषण में से योगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, एक मांग मान ली गई, महत्वाकांक्षा खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कुछ छात्र डटे हुए धरने पर, उनकी मांग कब तक मानी जाएगी, इस बात की कितनी संभावना है?
7: देखिए, उनका कंसर्न ये है कि एक तो जो नोटिफिकेशन है परीक्षाओं को रद्द करने का जो फैसला किया सरकार ने, हेमंत सरकार ने, और जैसा खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल मीडिया के सामने आकर के ब्रीफिंग करी थी, उस ऐलान का नोटिफिकेशन मतलब परीक्षाओं को रद्द करने का की जो अधिसूचना है वो जारी होने का इंतजार कर रहे हैं छात्र। और दूसरी बात, जो छात्रों का एक धड़ा है वो ये डिमांड पे अभी भी पड़ा हुआ है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीआईडी जांच से वो संतुष्ट नहीं है। देवेंद्र महतो या उनके जो कैंप के लोग हैं, भले ही वो रोल बैक कर गए हों, वो आंदोलन से हट गए या फिर अनशन उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन बीती रात हमने देखा बहुत गहमागहमी की स्थिति रही। जो जेएससीसी जेपीएससी रिफॉर्म मंच है उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी एक पोस्ट आया रात में तकरीबन 1 बजे के आसपास की, बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया जा रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, और धरना स्थल खाली कराने की तैयारी है, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है। एक तो ये कि सरकार परीक्षाओं को रद्द कर रही है, और दूसरा ये कि सीबीआई जांच, मतलब वो मामला अभी कहीं अटका पड़ा है। एक धड़ा जो है वो इस पर सहमत है कि सरकार ने ये तय किया कि परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा, हम आंदोलन को वापस लेते हैं, हम अनशन खत्म करते हैं, लेकिन दूसरा धड़ा अभी भी इंतजार में है कि अनशन खत्म तब होगा या धरना तब खत्म होगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा परीक्षाओं को रद्द करने का, और सीबीआई जांच जो एक अहम मांग रही है उस मांग से अभी भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो देखना होगा सरकार क्या वहां पे कोई फैसला लेती है, क्योंकि कल जो ऐलान हेमंत सोरेन ने किया नया, उसमें कहीं भी सीबीआई जांच की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने एक जुडिशियल इंक्वायरी की बात कही और साथ ही साथ जो सीआईडी की जांच चल रही है।
0: आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच रांची में एक तरफ परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों का प्रदर्शन जारी है, दूसरी ओर उन लोगों का प्रदर्शन है जिन्होंने 2025 में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में कामयाबी हासिल की और अब नौकरी भी कर रहे हैं। सीएम के परीक्षा रद्द करने के फैसले को लेकर अब उनका गुस्सा फूटा है, नौकरी जाने पर वो रो रहे हैं, लिहाजा सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। पूरी रात सफल लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। वो परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ प्रोजेक्ट भवन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
8: मैं अपनी माँ और पापा से कहना चाहूँगा कि कृपया माँ और पापा आप लोग धैर्य रखें, हम फिर से जीतेंगे। सरकार से भी हम अपील करेंगे, कृपया अपने ये कठोर जो निर्णय लिए उसको वापस ले।
9: हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं, आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए साधा न्याय मत कीजिए सर, हम लोग के लिए साधा न्याय मत कीजिए।
10: सर, हम सभी तीन से चार, हम सभी किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, मजदूर पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन इस सरकार ने 3 से 4 साल की हमारी मेहनत को करते हुए और इस भीड़ के आगे, उपद्रव के आगे घुटने टेकते हुए हमें हमारी रोटी, हमारा सम्मान, हमारे जीविका, हमारे जीवन से वंचित किया है। आज हमें इस सरकार पर शर्म आ रही है।
0: शशि भूषण में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, क्या सोरेन सरकार के एक नया सिरदर्द हो सकता है? जिन लोगों की नौकरियां जाएंगी वो भी तो चुप नहीं बैठेंगे, आखिरकार उन्होंने भी परीक्षा दी थी।
7: बिल्कुल सही कहा आपने नेहा, हेमंत सरकार के लिए एक नई परेशानी हो सकती है, और ऐसा नहीं कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं होगी या अंदेशा नहीं था। सरकार पहले से समझ रही थी कि 2014 से अगर नियुक्तियां हुई हैं सीजीएल के तहत अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरियां जिनको मिली है और जो कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, अगर उनके सेवा पे, उनकी नियुक्ति पे संकट आएगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। अभी तो ठीक है, एक पहला प्रोटेस्ट उनकी तरफ से बीती रात ही देखने को मिला, आज भी वो प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उनके सामने एक बड़ा विकल्प खुला है कि वो न्यायालय का रुख कर सकते हैं और फिर बहुत बड़ी फांस जो होगी वो सरकार के लिए भी होगी। आंदोलन करने वाले जो जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच है उन छात्रों के लिए भी होगी, क्योंकि मामला फिर एक बार न्यायालय के पाले में जा सकता है। तो ये एक ऐसा पेच है जिसके बारे में शायद सरकार पहले से आकलन कर रही थी, और यही वजह रही कि हेमंत सरकार ने जो उनके लीगल एडवाइजर है सरकार के विधिक परामर्शी हैं उन लोगों से भी बातचीत करी थी। कल प्रोजेक्ट भवन में हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ जो घंटों मीटिंग करी उसमें इन तमाम बातों पर चर्चा हुई होगी, और यही वजह है कि सरकार ने घोषणा तो की कि 2014 से।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 7 महीने के इंतजार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया कल, और इस टीम में युवाओं का जोश है। और इसके पहले आपको दिखा रहे थे झारखंड में जोश और जश्न की तस्वीरें, वहां पर एक तरफ छात्रों का धरना जारी है, दूसरी तरफ कुछ छात्रों का धरना खत्म हो चुका है। कुछ छात्र जिनकी भर्तियां हो चुकी हैं वो दरअसल धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि अब उनकी उनकी नौकरियां जाएंगी, परीक्षा को रद्द कर दिया गया है।
1: डीडीपीएल द्वारा दिए गए परीक्षाएं कैंसिल किया जाता है, रद्द।
11: ये रांची की उस शाम का लम्हा है जब आंदोलन कर रहे छात्र झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। सोमवार दोपहर तक यहां चल रही विरोध वाली नारेबाजी बदल गई। रात को एक ऐलान के साथ ही वहां सिर्फ और सिर्फ कामयाबी के नारे लगने लगे। छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिन मांगों को लेकर छात्र धरना और प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से एक मांग थी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की।
12: आज हम लोग बहुत खुश हैं और आज हम लोग का नया त्योहार आज है और असत्य पे सत्य की जीत है। माननीय हेमंत सोरेन और उनके सभी मंत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
13: कहा गया है कि झुकाने वाला होना चाहिए और ये झारखंड के छात्रों ने दिखा दिया कि देखिए एकजुट होके एकता में ही बल है। हमें बहुत बहुत ये हमेशा से आंदोलनकारियों की धरती रही है।
12: आज सच्चाई का जीत हुआ है, ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया।
14: सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
15: जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
11: मुख्यमंत्री की घोषणा की खबर जैसे ही उन तक पहुंची, जयपाल सिंह स्टेडियम का नजारा ही बदल गया। छात्रों के चेहरे खिल उठे। अब तक जहां सरकार विरोधी नारे लग रहे थे, मांगे माने जाने के बाद वहां जीत के गीत गाए जाने लगे। सैकड़ों छात्र इस कामयाबी के मौके पर झूमने लगे। किसी ने गुलाल के साथ इस जीत की होली खेली तो साथ साथ आतिशबाजी कर खुशियों की दिवाली भी मनाई गई। आंदोलन के 24वें दिन प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत हुई।
16: तमाम यहाँ पे जो हमारी सरकार है और ये सरकार ने साबित कर दिया कि वो आदिवासी मूलवासी और सदानों की सरकार है, उनके हित के लिए सोचती है, ये हम लोगों ने आज जान लिया है। और इस चीज को उन्होंने साबित कर दिया कि हेमंत है तो हिम्मत है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है और सारे अभ्यर्थी भी आज बहुत ज्यादा खुशी है, खुशी की लहर दौड़ी है।
11: इससे पहले झारखंड सरकार ने 10 अगस्त को 14वीं जेपीसी की प्रारंभिक परीक्षा और अन्य दो परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला किया था, लेकिन छात्र डटे हुए थे। उन्होंने दो टुक कह दिया था कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। आकाश कुमार के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: तो 7 महीने के इंतजार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कल कर दिया और इस टीम में युवाओं का जोश है तो अनुभवी चेहरे भी शामिल हैं। नितिन नवीन की टीम में क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया है। और बीजेपी के नवीन टीम के बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। बीजेपी में फिर से विनोद तावड़े को महामंत्री बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में भारी विजय दिलाने वाले सुनील बंसल को दोबारा महामंत्री पद सौंपा गया है। आदिवासी समाज के गजेंद्र पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्मृति ईरानी को भी महामंत्री पद दिया गया है। वहीं संघ के राम माधव उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तीन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत और बिप्लब देव को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। वहीं नितिन नवीन की नई टीम में बीजेपी के आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है, उन्हें हटा दिया गया है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महेस्के को नया आईटी सेल हेड बनाया गया है। नितिन नवीन ने इस बदलाव को भविष्य का बदलाव करार दिया है। तो तमाम ये बदलाव किए गए हैं, कल इस नई टीम का ऐलान हो गया।
17: भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
0: और बीजेपी की नई टीम में जिन लोगों को नई जिम्मेदारी मिली है उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए।
18: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेंगे।
19: पार्टी के विस्तार को लेकर सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी के जो संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, नए लक्ष्यों के साथ में देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंचे और संगठन का विस्तार हो, ये तमाम विषयों को लेकर पार्टी ने संगठन में दायित्व दिया है और निश्चित तौर पर मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से संगठन में काम कर रहा हूँ, इसलिए इस दायित्व को करते करते जो भी संगठन का निर्देश होगा उसको हम 100% सिचुएशन करने का प्रयास करें।
20: तो हमारा एक ही ध्येय है, ये देश विकसित बने। मोदी जी का जो सपना है भारत विकसित हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो जो हमें जिम्मेदारी मिलेगी हम अपने संगठन के माध्यम से करेंगे और भारत को विकसित बनाने में सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, सब में विश्वास, सबको जोड़ के चलेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे।
21: माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक ऐसी टीम का गठन किया है जो सामाजिक संतुलन भी कहीं ना कहीं बना हुआ है, भौगोलिक संतुलन की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, अनुभव सत्ता की दृष्टि से भी और संगठन की दृष्टि से भी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में संगठन और सत्ता के विस्तार में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ये पूरी टीम हनुमान अंगद की तरह कहीं ना कहीं काम करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की नई टीम को पूरी तरह से संतुलित बताया जिसमें हर क्षेत्र और वर्ग का ख्याल रखा गया।
22: मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपने टीम बनाते हैं और हर स्टेट, हर रीजन, समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले, एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा
23: है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नितिन नवीन जी ने अपनी टीम का ऐलान किया है। एक बहुत ही अच्छी टीम तैयार हुई है, इसमें अनुभवी लोग भी हैं, युवा रक्त भी हमको इसमें दिखाई पड़ता है और विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र से उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भारती पवार, महामंत्री के रूप में विनोद जी तावड़े और कोषाध्यक्ष के रूप में पीयूष जी गोयल, इनके जैसे हमारे जो दिग्गज नेता है इनको भी इस टीम में जगह मिली है।
0: और अभी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम को लेकर विवाद थमा भी नहीं था कि अब गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस के कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के केवल दो ही पैराग्राफ गाए गए। कार्यक्रम के दौरान का मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर मौजूद थे और इसके बावजूद वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती दो अंतरों को गाया गया। इसे लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस का माहौल गर्मा गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान खड़गे मंच पर मौजूद थे, दो अंतरे वंदे मातरम के गाए गए। हाल ही में 15 अगस्त के दिन भी विवाद हुआ था, कांग्रेस उससे अभी उबर भी नहीं पाई है कि नया विवाद शुरू हो गया है। हालांकि जो 15 अगस्त का कार्यक्रम था उसमें कांग्रेस ने कहा था कि पूरा गान गाया गया था। वंदे मातरम विवाद में कांग्रेस पर बीजेपी के हमलों के बीच खड़गे ने गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसा। गोवा में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम के दौरान खड़गे ने कहा कि जब मैं पहली बार एमएलए बना तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन के दौरान विवाद हुआ। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम रोकने को कहा, इसे लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने भी सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। हालांकि कांग्रेस बीजेपी इन आरोपों से इनकार कर रही।
3: चार तो इतने हमारे मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ बात करते, गांधी फैमिली के खिलाफ बात करते। अरे मैं जब एमएलए बना था ये अमित शाह अभी उठा नहीं था, उनका कितना 57-58 है कितना हा? ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े, बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है, कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है, और हमको देशभक्ति सिखाते हो तुम।
0: इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर बुराड़ी इलाके में पुलिस ने सूटकेस से एक नाबालिग युवती का शव बरामद किया। रात में चेकिंग के दौरान एक युवक की संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस ने उसे पूछताछ की। इस दौरान खुलासा हुआ कि उसने अपनी बहन की हत्या कर उसका शव सूटकेस में बंद किया और सुनसान इलाके में ठिकाने लगाने की फिराक में था, लेकिन शव फेंक कर जाते वक्त पुलिस ने उसे दबोच लिया। युवक की निशानदेही पर पुलिस ने अब शव बरामद कर लिया है। आरोपी का नाम अविनाश है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अविनाश ने बताया कि उसे अपनी चचेरी बहन पर प्रेम प्रसंग का शक था, इसीलिए मौत के घाट उतार दिया। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अपनी बहन की हत्या का कारण क्या था?
4: मोटिव को लेकर के जो कुछ भी अभी अविनाश बता रहा है पुलिस पूरी तरीके से यकीन नहीं कर रही, क्योंकि आप देखिए जो पूरा घटनाक्रम है ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि अविनाश ने अकेले अंजाम दिया होगा। ये वो जगह है बुराड़ी का, ये मेन रोड से काफी अंदर है और ये दुकान है जहां बताई जा रहा है कि रविवार रात तकरीबन 8-8:30 बजे बहन के साथ यहां पर वो आया और उसके बाद यहीं पर आशंका है कि उसने गला दबाकर इस जगह पर उसने बहन की हत्या की। फिर वो ब्रीफकेस लेके आता है, ब्रीफकेस में बॉडी यहीं पर पैक किया और तकरीबन 300 से 400 मीटर दूर, क्योंकि ये पिंकी कॉलोनी है और वो जो इलाका है वो मुकुंदपुर पार्ट 2 लगता है बुराड़ी का, वहां पर जाकर के उसने बॉडी को ठिकाने लगा दिया। और उसके बाद कल ये दुकान खुलती है, यहाँ पे बाइक सर्विसिंग का काम होता है, मनीष नाम का लड़का है जो फिलहाल डिटेन है और ये दुकान खुलती भी है और यहाँ पर बाकायदा काम होता है। लेकिन जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तब जाकर के बॉडी बरामद की उसके साथ और इस जगह पर पहुंची। अब वो कह रहा है कि वो फोन पर बात करती थी, उस पर उसे शक था, लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई, जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, इसकी वजह से शक है कि हो सकता है कि इसमें कोई और भी शामिल हो। और कई ऐसी चीजें हैं जो अविनाश छुपा रहा हो, इसलिए लगातार अविनाश से पूछताछ की जा रही है, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मोटिव को जुड़े होने के लिए उसका जो मोबाइल फोन है, जो पीड़िता का मोबाइल फोन है, जो अविनाश का मोबाइल फोन है,
0: पुलिस जांच कर रही है। अभी फिलहाल मोटिव नहीं पता चल पाया। खबर महाराष्ट्र से, यहां पर गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी सीखने के लिए 100 दिन की समय सीमा कल खत्म हो गई और महाराष्ट्र परिवहन विभाग के मुताबिक जो ड्राइवर मराठी नहीं बोल पाएंगे उनका लाइसेंस और परमिट तक रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो ड्राइवर्स मराठी नहीं सीख पाए हैं उनका क्या होगा?
5: महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठी भाषा पर सियासी रण तेज हो गया है। ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए मराठी सीखने वाली 100 दिन की डेडलाइन खत्म हो गई। अब परिवहन विभाग ने मराठी भाषा नहीं बोलने वाले चालकों का लाइसेंस और परमिट रद्द करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत पूरे राज्य में करीब 2,00,000 गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी बोलना अनिवार्य कर दिया। उन्हें इसके लिए 100 दिन दिए गए थे। सरकार ने मराठी भाषा सिखाने के लिए कोचिंग क्लास और वर्कशॉप भी आयोजित की थी, लेकिन बीजेपी ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेता हाजी अराफात शेख ने कहा कि सरकार किसी भी ड्राइवर का लाइसेंस रद्द नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जोर जबरदस्ती की तो यूनियन कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
6: मैं प्रताप सरनायक जी से कहूंगा कि आपने 100 दिन की मोहलत हम लोगों को, रिक्शा चालक और टैक्सी चालक को दी थी, और 100 दिन की मोहलत दो, क्योंकि उसका कारण यह है क्योंकि 100 दिन के अंदर आपने सिर्फ 40 दिन ही ट्रेनिंग हुई, 60 दिन कभी स्कूल नहीं मिला, कई बालवाड़ी नहीं मिली, कई क्लासेस नहीं मिली, कई हॉल नहीं मिला, कई बारिश के कारण 100 दिन कंप्लीट नहीं हुए। मैं आपसे, सरकार से, निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि उन रिक्शा चालक को, टैक्सी चालक जो अमराठी है, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, उनके लिए और 100 दिन का मोहलत दीजिए।
5: दूसरी ओर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि सरकार ने ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए पर्याप्त 100 दिन का समय दिया था, लेकिन 19 अगस्त को ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रतिनिधियों और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसके बाद सख्ती से नियम लागू करने का अभियान शुरू होगा। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में हर टैक्सी और ऑटो चलाने वाले लोगों को सामान्य बातचीत के स्तर की मराठी आना जरूरी होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा, फिर भी भाषा न सीखने पर लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित होगा और दोबारा उल्लंघन करने पर लाइसेंस और परमिट स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
2: मराठी सरकार ने 1989 का जो कानून था उसमें बदलाव किया है, जो मराठी लोग हैं उनको सिखाने के लिए हमने 105 दिन का एक कार्यक्रम भी रखा था। आज वो समारोह उसका हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उदय सामंत जी के माध्यम से आज कर रहे हैं। जो सीखे 101,65,000 लोग, उनके ऊपर तो कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी।
5: सरकार का दावा है कि अब तक करीब 1,65,000 ड्राइवरों को मराठी दक्षता प्रमाण पत्र मिल चुके हैं।
8: बोलचाल की मराठी भाषा सीखने के लिए जो समय दिया गया था वो और बढ़ाया जाए, ऐसी मांग सरकार में ही शामिल कुछ संगठन करते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस मांग को मंजूर करेगी या फिर सख्ती से ये नियम लागू करेगी। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: और अब बात मौसम की मार की करेंगे। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में बड़ा भूस्खलन हुआ है। बिंदु इलाके में अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिर गया। भूस्खलन के वक्त सड़क से कई लोग और वाहन गुजर रहे थे। अचानक मलबा गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि सड़क से गुजर रहे लोग और वाहन की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। घटना का एक डरावना वीडियो सामने आया जिसमें तेजी से गिरता मलबा साफ दिख रहा है। और अब बात उत्तराखंड की, जहां पर भारी बारिश के बीच ऋषिकेश से हैरान करने वाला रेस्क्यू वीडियो सामने आया है। बीन नदी में तेज बहाव के चलते मैक्स वाहन पलट गया जिसमें 2 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और अपनी जान की परवाह किए बगैर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ों पर जारी मानसूनी आफत की तस्वीरें। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के हालात जारी हैं। कहीं नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं भूस्खलन हो रहा है। सैलाब ने वहां मुश्किलें बढ़ा दी। आसमान से बरसती आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया।
9: कुदरत का कहर जब टूटता है तो हालात ऐसे ही बनते हैं। बादल फटा, सैलाबी आफत आई, सैलाब के साथ बहता मलबा। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कई जगहों पर भूस्खलन और सैलाब का खौफनाक मंजर देखने को मिला है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चंबा में बादल फटने के बाद भारी सैलाब देखने को मिला। तेज बहाव में लोहे का पुल बह गया। श्रद्धालुओं के पैदल आने जाने का रास्ता भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। करीब 40 से 50 श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। सूचना मिली तो स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया। नदी के बीच चट्टान पर बैठे दिल्ली के 4 पर्यटक पानी से घिर गए। बाहर निकलने का रास्ता बंद होने के बाद स्थानीय युवाओं और आपदा मित्रों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद 4 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब ये तस्वीरें देखिए, ये टिहरी के बरसाती नाले की हैं जो लगातार बारिश के बाद उफान पर हैं। बरसाती नाले के तेज बहाव के बीच कुछ लोग फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने तुरंत मोर्चा संभाला। संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
0: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
10: प्रेजेंटेड बाय
1: पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
7: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झारखंड में छात्रों की मांगों को के आगे झुकी सुरेंद्र सरकार। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। महतो और अन्य दो छात्रों ने तोड़ा अंचल, लेकिन सीबीआई जांच पर अड़े स्टेडियम में धरने दे रहे हैं छात्र। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी सीखने की 100 दिन की डेडलाइन आज खत्म। लाइसेंस परमिट रद्द करने के सरकारी ऐलान से हड़कंप। मुंबई समेत राज्य के 2 लाख गैर मराठी ड्राइवर्स के लिए फरमान। 51 नए चेहरों के साथ नितिन नवीन की टीम का 2027-29 तक के चुनाव पर फोकस। यूपी से 8 पदाधिकारी, केमिस्ट्री प्रोफेसर और छत्तीसगढ़ के डेटा मास्टर को बनाया गया सोशल मीडिया चीफ। अमित मालविया की छुट्टी। वंदे मातरम गायन को लेकर सियासी संग्राम जारी। अब गोवा के कार्यक्रम में खड़गे की मौजूदगी में गाए गए सिर्फ 2 पैराग्राफ कांग्रेस अध्यक्ष का अमित शाह पर निशाना। कहा, जब मैं एमएलए बना तब वो बच्चे थे। दिल्ली के भराड़ी में सूटकेस में लड़की की लाश मिलने से सनसनी। बहन की हत्या के बाद भाग रहा युवक पकड़ा गया। बिना रिपोर्ट से संदिग्ध गतिविधि के आधार पर अलर्ट, दिल्ली पुलिस ने दबोचा। इस बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कोलकाता हवाई अड्डे पर अचानक आग लग गई है। खबर यह कि हवाई अड्डे पर स्थित एटीसी बिल्डिंग की 3rd मंजिल पर आग लगी है। हादसा तकरीबन सुबह 4 बजे का है। दमकल अधिकारियों के प्रारंभिक आकलन के अनुसार आग इमारत की ट्यूनी लाइट से शुरू हुई। इमारत की 3rd मंजिल का एक हिस्सा जलने लगा। इसके साथ आसपास इलाके में काला धुआं देखा गया। तुरंत हवाई अड्डे से एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू हुआ। बाद में आग पर काबू पाने के लिए 2 और गाड़ियां मौके पर पहुंची। आशंका यह है कि 15 अगस्त के अवसर पर भवन को सजाने के लिए इस्तेमाल की गई बत्तियों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। और वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। बंगाल के कालिम्पोंग में बड़ा भूस्खलन। पहाड़ का हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिरा। मलबे की चपेट में आया एक बाइक सवार, सूझबूझ से बचाई अपनी जान। भूस्खलन की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। ऋषिकेश में भारी बारिश के बीच फंती बीन नदी में पलटी कार। तेज बहाव के बीच 2 लोग फंसे। उफंदी नदी में एसडीआरएफ का हैरत अंगेज रेस्क्यू। जान जोखिम में डालकर 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आसनसोल में लगातार बारिश से जल जमाव का खतरा। कई अंडरपास और रेलवे ब्रिज पानी में डूबे। ऑरेंज अलर्ट जारी। आसनसोल में आफत की बारिश। निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। देहरादून में नेशनल हाईवे पर टला बड़ा हादसा। आईएमएम के सामने वाहनों पर गिरा विशाल काय पेड़। चंबा में बादल फटा, लोहे का पुल बहा। 40 से 50 श्रद्धालु रास्ते में फंसे। साइनों की सहायता से किया गया रेस्क्यू। उड़ीसा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। भद्रक से में 4 से 5 फीट तक भरा पानी। कई सड़कें डूबी। बाढ़ के बीच उड़ीसा में राहत बचाव तेज। उत्कल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। यूपी में बारिश ने रोकी पढ़ाई। भदोही में 12वीं तक के सभी स्कूल आज के लिए बंद। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल में अवकाश घोषित। वाराणसी में छत पर गंगा आरती हुई। गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते लिया गया निर्णय। शाहजहांपुर में भारी बारिश से मकान ढहा। मलबे में दबकर चाचा और 3 साल के भतीजे की मौत। महिला गंभीर रूप से घायल। टिहरी गढ़वाल में लगातार बारिश से बरसाती नाला उफान पर। तेज बहाव के बीच कुछ लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। यूपी के झांसी में रोडवेज की बस ने राहगीर को कुचला। युवक की हालत गंभीर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बिजनौर के एक मंदिर में सत्संग भवन भीषण आग। बाजार में मची अफरा तफरी। धधकती लपटों के बीच अपनी जान बचाकर भागते दिखे लोग। आसमान को छूती नजर आई आग की लपटें। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने संभाला मोर्चा। मेरठ में एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया मुस्लिम युवक। हिंदू संगठन का लव जिहाद का दावा। संभल में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। रसगुल्ले बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी। नकली दूध पनीर का इस्तेमाल कर तैयार किया जा रहा था माल। झारखंड में छात्र आंदोलन के 24वें दिन छात्रों के आगे झुकी सुरेंद्र सरकार। देवेंद्रनाथ महतो समेत कई छात्र नेताओं ने खत्म किया आमरण अनशन। छात्र नेता देवेंद्र महतो की मांग, सदन में ऐसा कानून बने जिससे किसी छात्र के साथ धोखा या ठगी ना हो। सरकार दे छात्रों के हितों की गारंटी। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। सीएम सुरेंद्र के ऐलान के बाद छात्रों में खुशी की लहर। देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर की बात। सुरेंद्र सरकार के फैसले की सोनम वांगचुक ने सराहना की। आज तक से बोले देवेंद्र महतो, छात्रों के हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद रांची के जयपाल स्टेडियम में छात्र झूम उठे। छात्रों ने जमकर किया सेलिब्रेट।
इस ऐलान के साथ छात्रों में खुशी की लहर, जमकर नाचे छात्र, सड़क पर छोड़े पटाखे, हाथों में देश का झंडा लिए झूमे छात्र। फैसले के बाद रांची में जीत का मनाया गया जश्न। छात्रों का आंदोलन खत्म कराने पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी, देवेंद्र महतो समेत तीन ने तोड़ा अनशन, सरकार ने सभी मांगे मान। झारखंड के मंत्री दीपिका पांडे सिंह बोली, छात्रों की सभी मांगे मानी गई, 90 दिन में चार्जशीट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। छात्रों के पक्ष रिफॉर्म मंच का ऐलान, धरना रहेगा जारी जब तक सरकार सीबीआई जांच का आदेश नहीं देती है। छात्र नेता उम्मे हबीबा ने सीएम सोरेन, राहुल गांधी समेत सभी का जताया धन्यवाद। रांची में सदर अस्पताल रिति सुप्रिंटेंडेंट बोले, अनशनकारियों की हालत सामान्य, अपनी जिम्मेदारी पर अस्पताल से गए। वंदे मातरम विवाद पर सियासत तेज, खड़गे का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी को देशभक्ति पर ज्ञान देने का हक नहीं है, देश को बांटने और नफरत फैलाने का आरोप। वंदे मातरम विवाद में शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की जांच शुरू, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वंदे मातरम विवाद पर केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी का सोनिया गांधी पर निशाना, बोले सम्मान को लेकर संसद में कानून बन चुका है। बीजेपी नेता अनूप एंटनी का कांग्रेस पर हमला, बोले मुस्लिम लीग और एक वर्ग को खुश करने की राजनीति कर रही है कांग्रेस। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नया प्रोटोकॉल, बड़े सरकारी कार्यक्रम में करीब 3 मिनट 10 सेकंड की सभी 6 कड़ियां लगाई जाएंगी। दिमागी नक्सल विवाद पर सियासी घमासान तेज, हेमंत विश्वकर्मा का पी चिदम्बरम पर हमला, बोले बयान की जांच हो। दिमागी नक्सल विवाद पर हेमंत विश्वकर्मा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, बोले देश में शांति फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। दिमागी नक्सल बयान पर आप सांसद संजय सिंह का पीएम मोदी पर हमला, बोले नौकरी और भर्ती परीक्षा पर सवाल उठाने वालों को कहा जा रहा है दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल विवाद, बीजेपी और विपक्ष आमने सामने, बीजेपी सांसद तरुण चुग बोले नक्सलवाद को नया रूप दे रही है दिमागी नक्सल। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान, अमित माले तेजस्वी सूर्या की छुट्टी, 22 को होगी पहली मीटिंग, पीएम मोदी ने दी बधाई। नितिन नवीन ने बीजेपी की नई टीम में किया बड़ा फेरबदल, स्मृति ईरानी, सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महासचिव, पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा। बीजेपी की नई टीम में बड़े बदलाव, दीपक महास्के बने सोशल मीडिया प्रभारी, हेमंत जोशी को युवा मोर्चे की कमान। चुनावी तैयारी के बीच बीजेपी का बड़ा संगठनात्मक बदलाव, नई राष्ट्रीय टीम में अनुभवी और नए चेहरों का संतुलन। बीजेपी के नई आईटी सेल चीफ दीपक महास्के का विपक्ष पर निशाना, बोले प्रोपेगेंडा माहौल बना सकता है लेकिन सच लंबे समय तक नहीं छिपा रह सकता। दिल्ली दौरे में फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री बनने की अटकलों पर लगाया विराम, बोले महाराष्ट्र में था, हूं और रहूंगा। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों के इलाज खत्म हुई, 100 दिन की डेडलाइन, अब मराठी नहीं बोलने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। 2 लाख गैर मराठी ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स पर कार्रवाई का रास्ता साफ, सरकार बोली पहले नोटिस फिर लाइसेंस, बैज रद्द करने की प्रक्रिया। ओबीसी आंदोलनकारी नवनाथ वाघमारे के मराठा युवतियों पर विवाद, बयान से बवाल, जालना में केस दर्ज। मुंबई में एमएमआरडीए भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर सवाल, कुछ अभ्यर्थियों के 200 में 200 अंक पर उठी पारदर्शिता की मांग। सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरा, कल दिल्ली में सीएम योगी इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। सीएम योगी जापानी प्रतिनिधिमंडल से करेंगे मुलाकात, जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का समापन, सीएम योगी ने युवाओं को दिया संदेश। सीएम योगी बोले माफिया प्रवृत्ति से युवा शक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान, युवाओं को बचाने के लिए खेल संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी। योगी आदित्यनाथ ने कहा युवाओं को निगल रहा है ड्रग और स्मार्टफोन का नशा, दोनों से दूर रहने की अपील। यूपी सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में अब वार्षिक कैलेंडर के तहत किया जाएगा समयबद्ध, योगी सरकार का फैसला। मध्यप्रदेश के भिंड में हुए हादसे में लखीमपुर के मजदूरों की मौत पर सीएम योगी ने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। लखनऊ के बुधेश्वर इलाके में नगर निगम और पुलिस टीम पर हमले मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज। पुलिस और नगर निगम कर्मचारियों पर हमले के आरोपियों का माफिया अतीक अहमद से कनेक्शन सामने आया, पुलिस लगातार दबिश देकर आरोपियों की कर रही है तलाश। नगर निगम कर्मचारी और पुलिसकर्मी घायल, जबकि 4 सरकारी वाहनों के शीशे टूटे। त्रिशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की चार्जशीट में खुलासा, पति समर्थ और सास गिरिबाला पर मानसिक प्रताड़ना और अपशब्द कहने के आरोप। सीबीआई के मुताबिक त्रिशा गर्भावस्था को लेकर असमंजस में थी, 16 अप्रैल को प्रेगनेंसी का पता चला, 17 अप्रैल को अस्पताल में जांच कराई। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, फेशियल रिकग्निशन के इस्तेमाल पर उठे सवाल। प्रदर्शनकारियों की पहचान और डेटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली पुलिस पर फेशियल रिकग्निशन इस्तेमाल करने का आरोप। सूरत में पार्किंग विवाद को लेकर पड़ोसी के बीच हिंसक झड़प,
स्थानीय पुलिसकर्मी ने वर्दी का रुतबा दिखाते हुए पड़ोसी परिवार और बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की। सूरत के होटल में रिसेप्शन पर अचानक गिरा 26 साल का युवक, आईडी देते वक्त हुआ बेहोश। ओडिशा के गंजम में जेसीबी चोरी का मामला, फिल्मी अंदाज में पुलिस ने किया पीछा, चार थानों की पुलिस को चकमा देकर बैरिकेड तोड़ता रहा आरोपी, वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को पीछे से मारी टक्कर, एक की मौत एक घायल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कलयुगी बेटे ने माता पिता की हत्या कर बोरियों में रखी लाश, आरोपी फरार। झांसी में चेन स्नैच में दो आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया सामान। हरदोई में पत्नी को अस्पताल के इलाज के बहाने ले गया पति, जंगल में घोट दिया गला। बांदा के आवासीय स्कूल में दो बच्चों की मौत से हड़कंप, मोमोज खाने के बाद बिगड़ी तबियत, फूड पॉइजनिंग की आशंका। नैनीताल में आबादी के बीच बाघ ने घोड़े को बनाया शिकार, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर। दिल्ली के बुराड़ी में सनसनीखेज हत्याकांड, प्रेम प्रसंग के शक में युवती की हत्या, सूटकेस में शव बरामद हुआ। गौना में बुरके में डांस कराने वाले स्कूल का किया गया सील, जांच बिना मान्यता के संचालित मिला विद्यालय। मुजफ्फरनगर में कर्मचारी आई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलसा, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बिहार के नवादा में एक ही कमरे में मां और दो मासूम बेटियों के शव बरामद, हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच जारी। देहरादून में पुलिसकर्मी की कार ने युवक को कुचला, सीसी में कैद हुई घटना। गुरेज में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल 1.0 का शानदार समापन, खेल को लेकर युवाओं में दिखा उत्साह। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल ने बड़ा सम्मान, काठमांडू में नेपाली सेना की मानक रैंक दी गई। दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, नितिन नवीन हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय का किसान अवतार, खेतों में सीएम ने खुद चलाया हल। पुलवामा में एलजी मनोज सिन्हा ने मेगा तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी, युवाओं ने दिया एकता और देशभक्ति का संदेश। रणवीर ने शुरू की परेरे की शूटिंग, फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन की अहम भूमिका। मालामाल वीकली 2 का ऐलान, फिल्म में परेश रावल, रितेश देशमुख, राजपाल यादव, रवीना टंडन, परिणती चोपड़ा, शिल्पा शिरोडकर, एल्विश यादव आएंगे नजर। इमरान हाशमी के आवारण पर 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, फिल्म में 3 दिन में 82 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। हैवान स्टाइल में अक्षय कुमार ने सैफ अली खान को किया बर्थडे विश, लिखा जन्मदिन मुबारक हो सैफ। सनी देओल ने पान मसाला विज्ञापन को लेकर किया साफ इनकार, कहा मेरा जमीर नहीं मानता। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका जाएंगे शी जिनपिंग, 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही के रास्ते को लेकर ईरान ओमान में समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया ईरान के पास किसी भी तरह के परमाणु हथियार नहीं हो सकते। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद इलाके मिसाइल से किया हमला, कार्यवाहक गवर्नर ने कहा रात भर हुए हमले में 6 की मौत 4 घायल। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप का जताया आभार, मक्का ज्वाइंट डिफेंस अग्रीमेंट के समर्थन के लिए दिया धन्यवाद।

0: जॉर्ज टाउन इलाका है, आप देखेंगे जॉर्ज टाउन इलाके में थाना भी है, अब उस थाने में पानी भर गया है। कल रात से हुई बारिश के बाद हालात, अधिकतर मोहल्ले बाढ़ के हालात जैसे झेल रहे हैं, वैसे ही प्रयागराज का ये जॉर्ज टाउन थाना भी है, जहां पर आप देखिए पानी भर गया है। और यही है, ये जॉर्ज टाउन थाना ही नहीं, सिविल लाइन्स थाना, महिला थाना, उसमें भी पानी भर गया। लेकिन प्रयागराज का जॉर्ज टाउन थाना हर साल इस बारिश में के पानी की वजह से पानी भर जाता है थाने में, और अधिकतर ये समस्याएं हर साल रहती हैं। कल रात से यानी दो दिन से बारिश हुई, इस बारिश की वजह से भी ये दिक्कतें थाने में भी आई। आप देखिए थाने के कर्मचारी अधिकतर बाहर खड़े हैं, और उनका पांव भी डूब गया, जो जिस पे काम करते हैं उस काम करने वाली सीटों भी टूट गई है, और अधिकतर आप देखेंगे थाने में पानी भर गया है। इसी तरह माल खाना कहा जाता है, माल खाने के अंदर पानी, ये थानेदार साहब का रूम है, उनके रूम तक में पानी घुस गया है। और कर्मचारियों की ये हालत है, पुलिस कर्मचारियों को जूता उतार कर वो थाने के अंदर खड़े हैं। और ये हालात कोई एक दिन का नहीं है, ये जब भी बारिश होती है इस तरह के हालात इस जॉर्ज टाउन थाने का देखने को मिलता है।
1: रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Hey man, let's go.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।

0: बिजली का बिल पेड
1: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
2: इत्ता माही वे।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: Papa.
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ, ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: अनी, इस घर में कुछ है जो

0: टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल, बोलो जुबां केसरी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ओह सॉरी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
6: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
5: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
7: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
8: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
9: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
10: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
5: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। आज तक
11: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
12: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
11: नहीं सर।
12: 12th किससे की हो?
11: 12th सर मेरा PCM से रहा।
12: कंपाउंड क्या होता
11: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
12: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
11: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
12: देख भाई अपनी गारंटी पे छेड़ना।
13: और JNU में कार्यक्रम हुआ था जहां जिन लोगों ने हमला किया था स्वागत की होता थी। चिदंबरम साहब आप देश के अप्रिय मंत्री हैं, रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के CBI वोके थे, कानून समझते हैं, आप संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा के हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? सीधा मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है उसी का चेहरा बने हैं पिता चिदंबरम।
14: पुली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है। ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
15: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
16: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झारखंड में छात्रों की मांगों के आगे झुकी सुरेंद्र सरकार। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। महतो और अन्य दो छात्रों ने तोड़ा अनशन, लेकिन सीबीआई जांच पर अड़े स्टेडियम में धरना दे रहे हैं छात्र। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए मराठी सीखने की 100 दिन की डेडलाइन आज खत्म। लाइसेंस परमिट रद्द करने के सरकारी ऐलान से हड़कंप। मुंबई समेत राज्य के 2 लाख गैर मराठी ड्राइवर्स के लिए फरमान।

0: एसपी से 8 पदाधिकारी, केमिस्ट्री प्रोफेसर और छत्तीसगढ़ के डेटा मास्टर को बनाया गया सोशल मीडिया चीफ, अमित मालवीय की छुट्टी। वंदे मातरम गायन को लेकर सियासी संग्राम जारी। अब गोवा के कार्यक्रम में खड़गे की मौजूदगी में गाए गए सिर्फ दो पैरा। कांग्रेस अध्यक्ष का अमित शाह पर निशाना, कहा जब मैं एमएलए बना तब वो बच्चे थे। दिल्ली के बुराड़ी में सूटकेस में लड़की की लाश मिलने से सनसनी। बहन की हत्या के बाद भाग रहा युवक पकड़ा गया, बिना रिपोर्ट से संदिग्ध गतिविधि के आधार पर अलर्ट, दिल्ली पुलिस ने दबोचा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, आज सुबह देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां पर पुलिस और नगर निगम की टीम पर हुए जानलेवा हमले में फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। केस में करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और अब तक 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बाकी आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश में लगी है। दरअसल सोमवार को यूपी की राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके में नगर निगम की टीम पुलिस वालों के साथ गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची। इस दौरान 20 से 25 लोगों ने नगर निगम और पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। आरोपियों ने टीम पर धारदार हथियार से हमला किया और इस दौरान एक तस्वीर में एक आरोपी दरोगा की गर्दन दबाते दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एक महिला ने लोहे की जंजीर और दरोगा के सिर पर वार किया, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने इस केस में 20 साल की खुशबू और 27 साल की आफरीन को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपी की तलाश में छापेमारी इस वक्त जारी। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, क्या तमाम आरोपियों की पहचान कर ली गई? क्योंकि एक तस्वीर जिसमें पुलिस वाले की गर्दन पकड़े युवक दिख रहा है, वो तस्वीर अब वायरल है।
3: आप बिल्कुल देखिए नेहा, अभी तक वो आरोपी नहीं पकड़ा गया है जो कि मेन मुख्य इसमें है। ऐसे में पुलिस धरपकड़ जरूर कर रही है क्योंकि एक दर्जन से ऊपर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अगर आप मेरे पीछे तस्वीर देखेंगी तो पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जारी है इसी इलाके में, जहां पर पुलिस अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मौके पर यहां पर एक्सक्लूसिव देखिए मौजूद है, जो यहां पर मेयर भी मौजूद है लखनऊ की, और वो खुद लगातार यहां पर आकर इन डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ जो पुलिस के आला अधिकारी है वो सभी मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से ये पुलिस पर अटैक हुआ है उसको लेकर पूरी तरीके से शासन प्रशासन गंभीर है और इसी को लेकर ये सभी आज इस मौके पर पहुंचे। हालांकि इसमें जो और आरोपी है वो सभी फरार है और ऐसे में अब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ जो पुलिस के और अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो एरिया है, इस पूरे एरिया में पाएंगे कि अवैध डेयरियां थी, जहां पर की पुलिस यहां पर हटाने जब आई थी तब उस दौरान पुलिस पर ही अटैक हुआ था और उसके बाद अब ये कार्रवाई जारी है, जिसमें आप देखेंगे क्योंकि मौके पर अभी भी पुलिसकर्मी पहुंचे हैं साथ साथ सेफ्टी में, क्योंकि जिस तरीके से अटैक हुआ है वो माना जा रहा है लगातार जो संबंध है वो कई ऐसी जगह से भी है, यानी कि गुरगू से रहा है, अधिक अहमद तक को बताया गया है इसमें। तो ये पूरा मामला जो है इसको लेकर
0: आशीष बने हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि लखनऊ के जिस बुद्धेश्वर पारा इलाके में पुलिस और नगर निगम टीम पर हमला किया गया, वहां बनी अवैध एरियों के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हो गई है। ताजा तस्वीरें आशीष हम तक पहुंचा रहे थे। आशीष, ये अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई थी, वहां पर पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो जो लोग अवैध डेयरी के मालिक थे उन्होंने ये हमले किए या फिर विभिन्न अन्य लोग भी जो उस इलाके में रहते हैं सभी ने एक तरीके से पुलिस टीम और नगर निगम पर हमला किया?
4: मौजूद है क्योंकि वो कल भी नगर निगम और पुलिस की मौजूदगी में ही यहाँ पर टीम पहुंची थी और वो सभी चाहते थे कि यहाँ पर गंदगी ना हो, इंक्रोचमेंट ना हो और ये अवैध एरिया हटाई जाए, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन ऐसे में करीब तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस पर ही अटैक कर दिया। पुलिस तो जान से मारने की कोशिश तक की और इसी को लेकर पूरे तरीके से ये जो तैयारी थी वो तैयारी पुलिस अचानक से हुई तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई उस समय। लेकिन उसके बाद जैसे ही जानकारी लगती है उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इधर भी देखिए जो डेरिया है वो डेरिया आप पाएंगे कि इधर भी इस तरीके के एरिया में, चूंकि ये रिहायशी एरिया है वहां पर बना ली गई थी डेरिया,
3: और अब उसकी फोर्स यहाँ पर मौजूद है और एक एक चप्पे पर जो डेरिया है उन पर जानकारी की जा रही है, जांच की जा रही है। खुद मेयर और आला अधिकारी जो पुलिस के हैं वो पहुंचे हैं और ये माना जा रहा है कि इसमें जितने भी संदिग्ध लोग शामिल हैं, फिर चाहे वो मुख्य इसके आरोपी रहे हो या जिस व्यक्ति ने अटैक किया था वो हो, इसके अलावा सभी पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। और पुलिस लगातार अगर बात करें तो इनके जो अवैध डेरिया उन पर चिन्हांकन भी किया जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार इसके ऊपर लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है और इसी को लेकर ये सारी आज जो फोर्स है वो मौके पर पहुंची है, कार्रवाई कर
0: ठीक
3: सकती
0: है।
3: है यहाँ पर, चूंकि जो लोग हैं वो फरार है, अभी तकरीबन एक दर्जन लोग अभी भी फरार हैं और पुलिस अलग अलग लोग केवल 2 महिलाएं गिरफ्तार
0: ठीक है,
3: हुई है
0: बदरी हमारे
3: जो
0: साथ।
3: मौके
0: इस
3: पर
0: बीच
3: मौजूद
0: लखनऊ
3: थी।
0: में पुलिस टीम पर हमला करने वालों का अतीक अहमद से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। पता ये चला है कि ये हमलावर अतीक अहमद के गुर्गों के संपर्क में थे। तो हमलावरों के बारे में अब जानकारी जुटाई जा रही है कि कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि पुलिस वालों पर हमला करना और उसके बाद वहां से फरार हो जाना अब ये कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है। इन सभी आरोपियों की पहचान करी जा रही है। आशीष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, अतीक अहमद और उनके गुर्गों से तार किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये जानकारी कैसे सामने आई है?
3: बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ 30 लोगों ने कहा है, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनका मानना है कि इनका जो अतीक अहमद और उनके गुर्गों से संपर्क रहा है, क्योंकि ये गद्दी समुदाय पूरी तरीके से यहाँ पर जो काम कर रहा था, जो यहाँ पर मौजूद था, वो शुरुआत से ही दूध की बेचने का जो डेयरी है वो थी और सारे लोग कहीं ना कहीं प्रयागराज से लेकर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बनारस, अलग अलग जगह से यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और यही अवैध डेरिया चला रहे थे, जिसको लेकर पुलिस को और नगर निगम को शिकायत गई थी, जिसके बाद ही ये संपर्क में आया है कि ये सभी कहीं ना कहीं गुर्गों के संपर्क में भी रहे हैं अतीक के, और जिसकी वजह से इनका मनोबल बढ़ा हुआ था और पुलिस को भी कुछ नहीं समझ रहे थे जब मौके पर पहुंची थी, यहाँ तक नगर निगम की टीम को भी कुछ नहीं पहुंच रहे थे और इसी वजह से पुलिस पर अटैक किया गया, कार्रवाई की गई और इस मामले को लेकर अब पुलिस पूरी तरीके से कार्रवाई की बात कह रही है और लगातार जो कह रही है कि जो जो भी इसमें संलिप्त है, क्योंकि सारे लोग अभी फरार हैं, 4 लोगों को केवल गिरफ्तार कर पाए।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस प्रशासन जल्द हमलावरों के घर पर बुलडोजर चला सकता है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड कर रही है। इस बीच आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी तेज है। जिन हमलावरों की पहचान कर ली गई है उनके घर पर यह बुलडोजर चलाया जाएगा, क्योंकि ये फरार बताए जा रहे हैं। कुछ की फोटोग्राफ सामने आई हैं, क्योंकि पुलिस टीम और नगर निगम की टीम का ये जॉइंट एक्शन था, दोनों के कर्मियों पर हमला किया गया है, कई महिलाएं भी इसमें शामिल बताई जा रही हैं। और बात मथुरा की, जहां बीजेपी विधायक अनिल पराशर और डीएसपी अनिल पराशर के बीच हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना मथुरा के वृंदावन इलाके की है, जहां पर हरियाली तीज के चलते यातायात व्यवस्था के तहत गाड़ियों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा रहा था। इस दौरान विधायक अनिल पराशर के काफिले को रोके जाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विधायक पुलिस अधिकारी से तीखे अंदाज में बात करते दिख रहे हैं।
5: सर आपने नंबर बताया
6: दो नंबर लाठी लाठी लाठी मैं तो कभी नाराजाई कर रहे हैं आप लोग, जनपद को जनपद नहीं समझ रहे,
5: चला
6: रहे हैं आप, कंपनी दे रहे हैं।
5: सर आपने नंबर बताया
6: दो नंबर बताया,
5: दो नंबर नहीं बताया,
6: क्या नंबर बताया,
5: 21 11 क्या नंबर नहीं
7: बताया, आपका व्यवहार तो सर मैं बोल रहा हूँ
5: आपने एक बार तीन गाड़ी खुली हुई, आपने अपनी एक गाड़ी आगे
6: लगाया अपनी गाड़ी का सम्मान कर
0: वही 7 महीने के इंतजार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम की कल घोषणा कर दी। इस टीम में युवाओं का जोश है तो अनुभवी चेहरे भी हैं। नितिन नवीन की टीम में क्षेत्रीय, जातीय, सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया है। बीजेपी की इस नवीन टीम के बारे में अब आपको विस्तार से बताते हैं। बीजेपी में फिर से विनोद तावड़े को महामंत्री बना दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारी विजय दिलाने वाले सुनील बंसल को दोबारा महामंत्री पद सौंपा गया है। आदिवासी समाज के गजेंद्र पटेल को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्मृति ईरानी की भी महामंत्री के रूप में वापसी हुई है। वहीं संघ के राम माधव के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत और बिप्लव देव को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। वहीं नितिन नवीन की नई टीम में बीजेपी के आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को नया आईटी सेल हेड बनाया गया है। नितिन नवीन ने इस बदलाव को भविष्य का बदलाव करार दिया है।
8: ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूँ और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
9: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी।
10: पार्टी के विस्तार को लेकर सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी के जो संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, नए लक्ष्यों के साथ में देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंचे और संगठन का विस्तार हो, ये तमाम विषयों को लेकर पार्टी ने संगठन में दायित्व दिया है और निश्चित तौर पर मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से संगठन में काम कर रहा हूँ, इसलिए इस दायित्व को करते करते जो भी संगठन का निर्देश होगा उसको हम 100% सिचुएशन करने का प्रयास करें।
11: तो हमारा एक ही ध्येय है, ये देश विकसित बने। मोदी जी का जो सपना है भारत विकसित हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो जो हमें जिम्मेदारी मिलेगी हम अपने संगठन के माध्यम से करेंगे और भारत को विकसित बनाने में सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, सब में विश्वास, सबको जोड़ के चलेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे।
12: माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक ऐसी टीम का गठन किया है जो सामाजिक संतुलन भी कहीं ना कहीं बना हुआ है, भौगोलिक संतुलन की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, अनुभव सत्ता की दृष्टि से भी और संगठन की दृष्टि से भी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में संगठन और सत्ता के विस्तार में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ये पूरी टीम हनुमान अंगद की तरह कहीं ना कहीं काम करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें।
13: मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपने टीम बनाते हैं और हर स्टेट, हर रीजन, समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले, एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा
14: है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नितिन नवीन जी ने अपनी टीम का ऐलान किया है। एक बहुत ही अच्छी टीम तैयार हुई है, इसमें अनुभवी लोग भी हैं, युवा रक्त भी हमको इसमें दिखाई पड़ता है और विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र से उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भारती पवार, महामंत्री के रूप में विनोद जी तावड़े और कोषाध्यक्ष के रूप में पीयूष जी गोयल, इनके जैसे हमारे जो दिग्गज नेता है इनको भी इस टीम में जगह मिली है।
0: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, इस टीम में सरप्राइज एलिमेंट दरअसल कौन से हैं और कौन से वो लोग हैं जिन्हें थोड़ी हताशा हुई है, जो उम्मीद कर रहे थे कि इस टीम में शामिल होंगे वो?
15: देखिए, अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो है वो कोषाध्यक्ष के तौर पर पीयूष गोयल का रहना है। ये बात सही है कि 2010 से 2016 तक जो है पीयूष गोयल जो है वो कोषाध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, 2014 में सरकार में मंत्री बने और उसके बाद 2 साल उन्होंने कंटिन्यू जो है वो कोषाध्यक्ष का पदभार जो है वो संभाल के रखा था, उसकी जिम्मेदारी उनके पर थी। स्मृति ईरानी को जो है वो महामंत्री बनाना, विप्लव देव, सतीश पूनिया, उनके साथ साथ जो है संजय भाटिया वो है जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर के लिए अपनी लोकसभा सीट छोड़ी थी। और एक तरीके से देखा जाए तो महासचिवों में 6 महासचिवों को जो है वो बाहर कर दिया गया, 2 ही को रिपीट किया गया, जिनमें सुनील बंसल जो एक तरीके से संगठन को गढ़ने वाले लोगों में जिनकी गिनती होती है पार्टी के, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, इन प्रदेशों में सुनील बंसल ने एक कारनामा करके दिखाया है पार्टी के लिए, एक ऐसा सफल काम किया है जिससे पार्टी बहुत उम्मीदें रखती थी, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 17 का विधानसभा हो, 19 की लोकसभा हो और 22 के विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उन्होंने काम किया, वहां उनकी सरकार बनी। उसके साथ साथ तेलंगाना में 4 सीटें थी, 8 सीटें लोकसभा की हुई है। पश्चिम बंगाल में तो ये कह सकते हैं कि सुनील बंसल उस पूरे मैच के मैन ऑफ द मैच रहे, और उनके साथ विनोद तावड़े, विनोद तावड़े के पास भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, स्मृति ईरानी केंद्र सरकार में मंत्री रही है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है, तो एक तरीके से युवा और एक्सपीरियंस लोगों का, अनुभवी लोगों का समन्वय से बैठाया गया। कुछ ऐसे चेहरों को जगह जिम्मेदारी दी गई है जो पार्टी के प्रदेशों में काम करते थे, उनको लाकर नई जिम्मेदारी दी गई है। संदीप पाठक को लाया गया है जो आम आदमी पार्टी में थे, पंजाब में आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार को और पूरे आम आदमी पार्टी का संगठन का काम जो है वो संदीप पाठक देखते थे, उनको जो है वो सचिव बनाया गया है। तो एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी ने कई जो है एक्सपीरियंस की एक्सपेरिमेंट किए। इन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले और 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव जो अब होंगे 5 राज्यों के, उसकी एक पूरी तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। युवा, अनुभव, क्षेत्रीय, जातिगत और तमाम समीकरणों को साधते हुए और जिन प्रदेशों में चुनाव है उनको भी मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में के लोगों को राष्ट्रीय टीम में जगह दी है, ये कहीं ना कहीं बताता है। और इसमें 4 जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीरथ सिंह रावत है, वसुंधरा राजे हैं, विप्लव देव हैं। ये एक एक्सपीरियंस लोगों को भी लाकर कि यहाँ संगठन को कैसे काम करना है। नितिन नवीन युवा है तो उनके साथ अनुभव, उनके साथ जातिगत समीकरणों का साधने की भी कोशिश जो है वो इस पूरी टीम में की गई।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक बार फिर से रुक करेंगे लखनऊ की खबर का, जहां पर पुलिस और नगर निगम की टीम पर हुए जानलेवा हमले में आरोपियों की तलाश तेज है। वीडियोस अब जारी किए जा रहे हैं जिसमें आरोपी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, पुलिस वालों का गला पकड़ते हुए। कई महिलाओं ने चेन से भी हमला पुलिस वालों पर किया। ये देखिए वीडियो आ गया है, जो तस्वीर आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे आरोपी की, उसी आरोपी का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें ये महिला भी इस पुलिस वाले पर हमला करते हुए नजर आ रही है। ये शख्स देखिए किस तरीके से गला पकड़ रहा है पुलिस वाले का और ये महिला उस पुलिस वाले को मार रही है। दारोगा के जान से मारने की कोशिश का आरोप अब इन दोनों पर है। अब इन दोनों आरोपियों की तलाश तेज है, बताया जा रहा है कुछ महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये जो आरोपी दरअसल आप यहां पर देख रहे हैं, इसे अब वीडियो के जरिए कैप्चर किया गया है कि इसकी पहचान की जा सके। ये वीडियो जारी हो गया है आज तक पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे ये हमलावर और इसके साथ ये महिला चेन से पुलिस वाले को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, लगातार तेज आवाज में ये महिला बोल रही है। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है या फिर तलाश की जा रही है?
16: बिल्कुल नहीं नया, देखिए किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई, केवल 4 लोगों की हुई जिसमें 2 महिलाएं हैं, 2 अन्य पुरुष हैं। मुख्य आरोपी है, जिस तरीके से उसने गला दबा के हत्या करने की कोशिश की है वो अभी भी फरार है और लगातार पुलिस जांच कर रही। तकरीबन 1 दर्जन लोग हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज तक पर जो हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये शख्स जो है वो पुलिस की गर्दन दबाकर उसकी हत्या करना चाहता है। और इसी को लेकर आज पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंची हुई है, सारी नगर निगम की टीम पहुंची कार्रवाई करेगी। हालांकि इसमें केवल अभी 2 महिलाएं और 2 पुरुष ही गिरफ्तार है, बाकी सभी आरोपी फरार है। पुलिस ने बुलडोजर चलाने की भी बात कही है शासन ने, और जिस तरीके से हमला हुआ है उससे इरादे नाकाफी थे, वो चाहते थे कि पुलिस की हत्या करना और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये पूरा मामला तूल पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कई थानों की फोर्स मंगवाई थी तब जाके मामला कंट्रोल हो पाया था। आज भी अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो पुलिस फोर्स पहुंची और अवैध डेयरियों पर कार्रवाई कर रही है, और जब आज कार्रवाई कर रही है तो आज भी वो लोग मना करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी जो है कुछ लोग इकट्ठे हुए, ये देख सकते हैं आप दूर जो आपको तस्वीरें दिख रही होंगी, यहाँ से कार्रवाई पुलिस कर रही है क्योंकि बारिश हो रही है लगातार, इसमें भी पुलिस कार्रवाई लगातार जारी है। और इसमें पुलिस ने तकरीबन जो 1 दर्जन से ऊपर आरोपी हैं जिनकी तलाश के लिए अलग अलग रेड डाली जा रही है, कई टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला आया उसमें पुलिस की हत्या करने जैसा मामला आ गया था, और इसी को लेकर पुलिस अब ये कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। महिलाएं जो थी वो तो लेकिन जो अन्य पुरुष थे वो सभी फरार हैं और तकरीबन इनमें जो संख्या है वो 1 दर्जन से ऊपर है, इसी वजह से ये सभी काफी समय से यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे थे, अवैध तरीके से डेरियां थी इनकी, और पुलिस उन्हीं को हटाने के लिए पहुंची थी, और अब जब पुलिस पहुंचती है तो हत्या जैसी बात सामने आती है। कई और पे लाठी पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी किया जाता है, तकरीबन पथराव की जाती है और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है, और पुलिस भागने पर याद उस समय पुलिस किस तरीके से मैनेज कर पाती है, क्योंकि कई थानों की फोर्स मौके पर बुलाई जाती है। अब आज भी पुलिस की कार्रवाई जारी है, आप देख सकते हैं नगर निगम की कई सारी गाड़ियां, कई सारी टीम, नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो सभी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, और ये सभी बारिश होने के बावजूद भी लगातार एक बड़ी कार्रवाई जारी है। तकरीबन 4 से 5 थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है, खुद मेयर यहाँ पर छाता लेकर खड़ी हुई है वो मौजूद है, पुलिस के जो एसीपी लेवल के अधिकारी हैं वो सभी मौजूद है कार्रवाई के लिए, और ये क्योंकि इसमें सभी जितने लोग आरोपी थे वो अभी भी फरार हैं, इसी वजह से पुलिस अब उनको धरपकड़ कर रही। पुलिस की गाड़ियों पर जो पथराव हुआ था, उनकी गाड़ियां शीशे तोड़ दिए गए थे, उनकी गाड़ियों पर खींच के मारने की जैसी बात आई थी, सभी चीजें सामने निकल कर आई थी, जिसको लेकर लगातार ये कार्रवाई अब अमल में लाई जा रही है, और ये लगातार जो डेयरियों पे कार्रवाई है अब, क्योंकि जितनी सारी अवैध इलीगल डेयरियां चल रही थी उन सभी पे अब कार्रवाई की जा रही है। नगर आयुक्त यहाँ के हैं वो पहुंचे हुए हैं, यहाँ के जो एसीपी हैं वो पहुंचे हैं, साथ साथ मेयर पहुंची हुई है, जो डीसीपी रेंज के हैं वो आए हुए हैं, ये सभी पुलिस के आला अधिकारी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अभी भी अगर आप देखेंगे तस्वीरों में, देखिए सामने ये भैंसों को ले जाया जा रहा है, जो अवैध डेयरियां थी उन पर, और इन्हीं की जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है अंदर उस पर कार्रवाई की जानी है। अगर आप देखेंगे दूर तस्वीरें तो ये आप पाएंगे कि यहाँ पे कार्रवाई देखिए की जा रही है, और ये सामने गाड़ियां जो है नगर निगम की वो सब लाई गई है, साथ ही साथ पुलिस की फोर्स जो है वो भी लगातार मौजूद है, और इस पूरे मामले को ले तरीके से यहाँ के लोगों ने रास्ता बदल दिया, यानी कि वो मौके पे यहाँ पर नहीं है, जो लोग फरार थे चुके अब उनके घरों पर ही देखा जा सकता है कि यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, छतों पर भी पुलिस को लगा दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी दिखता है तो वो पूरी तरीके से पकड़ में आए, और अब ये धरपकड़ जो जारी है ये लगातार जो कार्रवाई पूरी तरीके से हो रही है वो बड़ी कार्रवाई है, जिसमें तकरीबन माना जा रहा है कि 14 से 15 लोग हैं जो फरार हैं अभी भी, और पुलिस एक एक करके इस पूरे एरिया को चौक कर दिया गया, अगर आप देखेंगे रोक दिया गया, यहाँ पर किसी भी तरीके की और शख्स को मौजूदगी नहीं है, यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो आप देखिए पूरी तरीके से खड़ी हुई है, किसी प्रकार का कुछ भी दिक्कत होता है तो उसके लिए मौके पर खड़ी रहेगी, ये पूरा प्रशासन लगा हुआ है इस समय कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो बताया गया है कि वो लगातार पुलिस पर अटैक कर रहे थे, लगातार जो है पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे थे, वो जो पूरा कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला सामने आया था, उसको लेकर ये पूरी जो कार्रवाई है वो अब एक बड़ा हमला कर रहा है, और पुलिस जो पूरी तरीके से इसमें, क्योंकि जो गला दबा के हत्या करने वाली बात है वो वीडियो हमने देखा किस तरीके से मारने की हिमायत की जा रही थी, यही नहीं जो पुलिस की गाड़ियां थी उन पर दूर से जो बताया गया है कि कई जो ईंटें पत्थरें चलाए गए और उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ करके क्षतिग्रस्त करके उनको मारने की कोशिश की गई, तो अब ये पूरी कार्रवाई एक बड़े लेवल पर की जा रही है, जिसमें की माना जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार खुद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: आगे आगे,
18: अरे उधर
17: उधर गया,
18: करेक्ट करेक्ट,
19: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: तो भरोसा है
6: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
7: सोच बदलो और बैंक भी।
11: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन भी कुदरती है जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
12: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर, भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स द माय वे।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर। पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
4: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
3: नहीं सर।
4: 12th किससे की हो?
3: 12th सर मेरा PCM से रहा।
4: कंपाउंड क्या होता है?
3: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर,
4: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
3: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
4: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: ने मुझे बताया कि इनके सुबह हाईकोर्ट की एग्जाम थी और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे हैं तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है, उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों को एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अकल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर्स लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते अगर इनमें इतनी ज्यादा अक्ल है तो। और अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, पूरे महाराष्ट्र भर से स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने आए थे। अभी मैंने बात करी तो कोई अमरावती से आया, कोई बीड से आया, कोई लातूर से आया, अंबेजोगाई से आया है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे?
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

लखनऊ में अवैध डेयरी के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस पर हुए अटैक के बाद प्रशासन का जबरदस्त एक्शन, हमलावरों का सामने आया अतीक कनेक्शन, पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, चल सकता है बुलडोजर। झारखंड में छात्रों की मांगों के आगे झुकी सुरेंद्र सरकार, टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द, महतो और अन्य दो छात्रों ने तोड़ा अंचल, लेकिन सीबीआई जांच पर अड़े, स्टेडियम में धरना दे रहे हैं छात्र। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी सीखने की 100 दिन की मियाद आज खत्म, लाइसेंस परमिट रद्द करने के सरकारी ऐलान से हड़कंप, मुंबई समेत राज्य के 2,00,000 गैर मराठी ड्राइवर्स के लिए फरमान। 51 नए चेहरों के साथ नितिन नवीन की टीम का 2027 से 29 तक के चुनाव पर फोकस, यूपी से 8 पदाधिकारी, केमिस्ट्री प्रोफेसर और छत्तीसगढ़ के डेटा मास्टर को बनाया गया सोशल मीडिया चीफ। वंदे मातरम गायन को लेकर सियासी संग्राम जारी, अब गोवा के कार्यक्रम में खड़गे की मौजूदगी में गाए गए सिर्फ दो पैरा, कांग्रेस अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना कहा, जब मैं एमएलए था तब वो बच्चे थे,

0: हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अब बात करेंगे अगस्त में आसमानी आफत की। पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून का कहर जारी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश और टिहरी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। लोगों की जान पर बनाई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने की घटना के बाद नदी नालों में सैलाब की तरह पानी बह रहा है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में लैंडस्लाइड के चलते सैलानियों की जान पर बनाई। वहीं उड़ीसा में भारी बारिश के चलते सड़क पर पानी आ गया और कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। और सबसे पहले बात यूपी के प्रयागराज की करेंगे, जहां भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों के साथ साथ पुलिस स्टेशन में बारिश का पानी भर गया है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में पानी भर गया है। पुलिसकर्मी जूते उतारकर टहलते दिखाई दिए। रात को हुई बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसके चलते लोग परेशान हैं। पूरे शहर में इसी तरह से पानी भर गया है। ये थाने के आगे पानी भरा हुआ आप देख रहे हैं। पुलिस वाले जूते उतारकर थाने के अंदर टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो टू व्हीलर वाहन है उन्हें चलने में दिक्कतें आ रही हैं। रिहायशी इलाकों में भी कई जगहों पर घरों के अंदर तक पानी घुस गया है।
1: प्रयागराज में कल रात से हुई बारिश के बाद अधिकतर इलाके जलमग्न हो गए हैं। और आप हम जहां पर खड़े हैं, ये प्रयागराज का जॉर्ज टाउन इलाका है। आप देखेंगे जॉर्ज टाउन इलाके में थाना भी है, अब उस थाने में पानी भर गया है। कल रात से हुई बारिश के बाद हालात अधिकतर मोहल्ले बाढ़ के हालात जैसे झेल रहे हैं, वैसे ही प्रयागराज का ये जॉर्ज टाउन थाना भी है, जहां पर आप देखिए पानी भर गया है। और यही है, ये जॉर्ज टाउन थाना ही नहीं, सिविल लाइन्स थाना, महिला थाना, उसमें भी पानी भर गया। लेकिन प्रयागराज का जॉर्ज टाउन थाना हर साल इस बारिश में के पानी की वजह से पानी भर जाता है थाने में, और अधिकतर ये समस्याएं हर साल रहती हैं। कल रात से यानी दो दिन से बारिश हुई, इस बारिश की वजह से भी ये दिक्कतें थाने में भी आई। आप देखिए थाने के कर्मचारी अधिकतर बाहर खड़े हैं और उनका पांव भी डूब गया, जो जिसपे काम करते हैं उस काम करने वाली सीटों भी डूब गई है। और अधिकतर आप देखेंगे थाने में पानी भर गया है। इसी तरह माल खाना कहा जाता है, माल खाने के अंदर पानी, ये थानेदार साहब का रूम है, उनके रूम तक में पानी घुस गया है। और कर्मचारियों की ये हालत है, पुलिस कर्मचारियों को जूता उतार कर वो थाने के अंदर खड़े हैं। और ये हालात कोई एक दिन का नहीं है, ये जब भी बारिश होती है इस तरह के हालात इस जॉर्ज टाउन थाने का देखने को मिलता है।
0: और अब बात पश्चिम बंगाल के आसनसोल की। यहाँ लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खासकर रेल पार और गरवी नदी से सटे इलाकों में जलभराव से मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई निचले इलाकों में पानी घर के अंदर तक घुस गया है, जबकि कुछ जगहों पर लोग कमर तक पानी के बीच घर में फंस गए हैं। रेल पार के रामकृष्ण नगर में हालात बेहद गंभीर हैं। लोगों को अपने बच्चे, जरूरी सामान और मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा है। कई परिवार धर्मशाला और स्कूलों में शरण लेने को मजबूर हैं। जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सिविल डिफेंस टीम को बुलाया गया है। स्थानीय प्रतिनिधि की ओर से प्रभावित परिवारों तक ब्रेड समेत राहत सामग्री पहुंचाने की जानकारी सामने आई। और अब आपको देहरादून से हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। लगातार बारिश के बीच टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी अचानक उफान पर है। तेज बहाव के चलते माता वैष्णो देवी गुफा, योग मंदिर, टपकेश्वर, संतोषी माता मंदिर और आर्मी क्षेत्र को जोड़ने वाला मार्ग करीब एक घंटे तक बाधित रहा। बाद में नदी का जलस्तर कम होने पर स्थिति सामान्य हुई। टपकेश्वर मंदिर स्थित माँ वैष्णो देवी गुफा मंदिर के महंत ने लोगों से बारिश के दौरान नदी के आसपास न जाने और सावधानी बरतने की अपील की है।

0: और अब बात पहाड़ों पर जारी मानसूनी आफत की करेंगे, जहां कुदरत का कहर बरपा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते कई हादसे सामने आ रहे हैं।
1: अगस्त के महीने में आसमानी आफत पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। अगस्त का महीना चल रहा है और देवभूमि उत्तराखंड में मानसूनी आफत का सिलसिला जारी है। ऋषिकेश हो या देहरादून, हर जगह बारिश कहर बनकर बरस रही है। ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं, जहां भारी बारिश के बाद बीन नदी में उफान आ गया और इसकी चपेट में एक गाड़ी भी आ गई। गाड़ी में सवार दो लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए। उफनती बीन नदी से लोगों को बचाने के लिए SDRF के जवानों ने मोर्चा संभाला और उफनती नदी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देर रात तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF जवानों ने दोनों लोगों को उफनती नदी और तेज बहाव के बीच से सही सलामत निकाला। ऋषिकेश ही नहीं, देहरादून में भी कुछ छात्रों की जान जोखिम में आ गई। भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और 7 छात्र नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। नदी के तेज बहाव के बीच SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 7 छात्रों को सुरक्षित बचाया। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते देहरादून के निचले इलाकों में भी बाढ़ से हालात बन गए। सड़क हो या इलाके, सब पानी पानी हो गए। ऋषिकेश से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में एक बड़ा भूस्खलन हुआ। बिंदु इलाके में अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिर गया। भूस्खलन के वक्त सड़क से कई लोग गुजर रहे थे। अचानक मलबा गिरने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि सड़क से गुजर रहे लोग और वाहन इसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गए। घटना का एक डरावना वीडियो सामने आया, जिसमें तेजी से गिरता मलबा साफ दिखाई दे रहा है। और अब बात रांची की, जहां छात्रों के आगे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ा है। सोरेन सरकार ने GDPR के जरिए आयोजित किए जाने वाली सभी परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। इसी एजेंसी ने JSSC CGL परीक्षा कराई थी, जिस पर धांधली के आरोप लगे। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद रांची के जयपाल स्टेडियम में छात्र झूम उठे। उन्होंने जमकर सेलिब्रेट किया, आतिशबाजी करी और अनशन को विराम दे दिया। वहीं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और अन्य छात्रों ने अपना अनशन भी खत्म कर दिया है। JPSC के बाद अब JSSC CGL की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के साथ चली बैठक के बाद ये फैसला लिया। सीएम ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच CID से कराई जाएगी।
1: रांची में छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार। हेमंत सोरेन ने रद्द की JSSC CGL परीक्षा। ऐलान के बाद जयपाल स्टेडियम में छात्रों का जश्न। दिल्ली के जंतर मंत्र के बाद अब रांची में भी छात्रों की जीत हुई है। 24 दिन तक छात्रों के धरना प्रदर्शन और विरोध के बाद सोरेन सरकार ने अपना रुख बदला और छात्रों की एक अहम मांग मानने का ऐलान कर दिया।
2: TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां यहां हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
1: जैसे ही सरकार ने ऐलान किया, वैसे ही छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आंदोलन कर रहे छात्र झूमने लगे और अपनी जीत पर नाच गाने लगे। पिछले 24 दिनों से जिन मांगों को लेकर छात्र धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से एक मांग थी JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की।
3: आज हम लोग बहुत खुश हैं और आज हम लोग का नया त्योहार आज है और असत्य पे सत्य की जीत है। माननीय हेमंत सोरेन और उनके सभी मंत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
4: कहा गया है कि झुकाने वाला होना चाहिए और ये झारखंड के छात्रों ने दिखा दिया कि देखिए एकजुट होके एकता में ही बल है। हमें बहुत बहुत ये हमेशा से आंदोलनकारियों की धरती रही है।
3: आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत हुआ है। ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया।
5: सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
6: जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
1: जहां एक तरफ हेमंत सोरेन ने ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ देर न करते हुए अनशन कर रहे छात्रों के बीच खुद ही झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडेय पहुंचे और देवेंद्र महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति को खुद जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया।
7: देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल ने स्वेच्छा से अनशन तोड़ने का निर्णय लिया। हम लोगों ने उनका अनशन तोड़वाया, जूस पिलाकर हम लोगों ने अनशन को तोड़वाने का काम किया। हमारे साथ दीपिका पांडे जी और हमारे भाई जयराम महतो जी के हम लोग सामूहिक प्रयास से जो आंदोलन चल रहा था विधिवत आज समाप्त हो गया। जो भी इनकी मांगे थी सरकार ने मान लिया।
1: छात्रों की मांग को लेकर 16 दिन से अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो ने अनशन खत्म करने के बाद सोरेन सरकार के फैसले को साहसिक बताया।
8: सरकार ने जो दिल दिखाया इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आज जो डिसीजन लिया, यह डिसीजन आसान नहीं था क्योंकि CGL परीक्षा का नियुक्ति हो चुकी थी, ज्वाइनिंग हो चुका था। बहुत डिफिकल्ट था डिसीजन। कुछ छात्र गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हम लोग जेन्युइन है। उस बीच में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक

0: का इस फैसला को सराहना कर रहे हैं।
1: इससे पहले झारखंड सरकार ने 10 अगस्त को 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और अन्य दो परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला किया था, लेकिन छात्र डटे हुए थे। उन्होंने दो टूक कह दिया था कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। ऐसे में सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग मानकर संकट को टालने की पूरी कोशिश की है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
2: वहीं झारखंड में सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द किए जाने से एसओ एएसओ समेत अलग अलग पदों पर कार्यरत 2,250 उम्मीदवारों की नौकरी एक झटके में चली गई। बीती रात ये फैसला हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक में लिया। उसी वक्त से सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई कर चुके और नौकरी कर रहे उम्मीदवारों ने पहले मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया, उसके बाद मंत्रालय के बाहर भारी बारिश में वो डटे रहे। इनका आरोप है कि एक ही झटके में इनकी जिंदगी खत्म सी हो गई।
3: मैं अपनी माँ और पापा से कहना चाहूँगा कि कृपया माँ और पापा आप लोग धैर्य रखें, हम फिर से जीतेंगे। सरकार से भी हम अपील करेंगे, कृपया अपने ये कठोर जो निर्णय लिए उसको वापस ले।
4: हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम लोग के लिए साधा न्याय मत कीजिए सर, हम लोग के लिए साधा न्याय मत कीजिए।
5: सर हम सभी तीन से चार हम सभी किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, मजदूर पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन इस सरकार ने 3 से 4 साल की हमारी मेहनत को करते हुए और इस भीड़ के आगे उपद्रव के आगे घुटने टेकते हुए हमें हमारी रोटी हमारा सम्मान हमारे जीविका हमारे जीवन से वंचित किया है। आज हमें इस सरकार पर शर्म आ रही है।
2: वहीं सरकार ने ऐलान किया तो छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अपना अनशन खत्म कर दिया, दूसरे छात्रों ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया।
6: 16 दिनों से भूख हड़ताल पर थे देवेंद्रनाथ महतो, अब उनका अनशन खत्म हो चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली के विरोध में देवेंद्रनाथ महतो के साथ साथ कई अन्य छात्र नेता भी अनशन कर रहे थे। लगातार बिगड़ती स्थिति के बाद सभी को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जैसे ही झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला किया, तमाम छात्र नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया।
0: साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।
6: तभी देवेंद्रनाथ महतो ने ऐलान कर दिया कि वो जल्द अपना अनशन तोड़ देंगे। इस बीच समाज सेवी सोनम वांगचू की देवेंद्रनाथ महतो से वीडियो कॉल पर बात हुई। सोनम वांगचू ने देवेंद्रनाथ महतो से कहा कि मुझे आपकी जीत पर खुशी है। वांगचू ने देवेंद्र महतो को बधाई दी। देवेंद्र महतो ने वांगचू से अनशन खत्म के अपने फैसले के बारे में बताया। देवेंद्र महतो ने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए संघर्ष जारी रहेंगे। अब सरकार की ओर से भी पहल तेज हो गई है। परीक्षा रद्द करने के ऐलान के बाद सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह सदर अस्पताल पहुंचे ताकि छात्र नेताओं का अनशन खत्म कराया जा सके। इरफान अंसारी ने छात्र नेता हबीबा और राहुल क्रांति का अनशन तोड़वाया, फिर देवेंद्रनाथ महतो को भी जूस पिलाया और उसके साथ ही उनका भूख हड़ताल भी समाप्त हो गया।
0: जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं।
6: सुना आपने, देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि सारे मांग पूरे हो गए हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन स्थगित हो गया है। देवेंद्र महतो ने कहा कि ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि किसी छात्र के साथ धोखा न हो, कोई ठगे न जाए। उन्होंने सरकार से इसकी गारंटी मांगी।
7: यह अश्योर करती है सरकार हमारी कि जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होगी और एक भी दोषी इसमें बचेगा नहीं।
6: अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे छात्र आगे की रणनीति को लेकर क्या फैसला लेते हैं। आकाश कुमार के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
2: रुके एक ब्रेक के लिए, टिकते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स द माय वे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: लखनऊ सर्वोदय विद्यालय के छात्र यूं ही सड़कों पर नहीं उतरे। अधिकारियों से शिकायत, स्कूल प्रबंधन के सामने अर्जी और तो और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के सामने भी छात्र अपनी बात कह चुके हैं। लेकिन हासिल क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहन रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल के छात्र संभव है कि देश में जंतर मंत्र से शुरू हुए प्रदर्शन करके अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े हैं। लेकिन असली वजह जंतर मंत्र नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी है। 14 अगस्त को लखनऊ में सर्वोदय विद्यालय के छात्र सड़क पर उतरे थे। मुद्दा वही था, स्कूल में शिक्षक नहीं, शुद्ध भोजन नहीं और बीमार पड़ जाओ तो मेडिकल सुविधा नहीं। 14 अगस्त को जब आंदोलन हुआ तो समाज कल्याण मंत्री खुद मौके पर पहुंच गए। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया।
3: यहाँ बच्चों ने बताई है, वो ज्यादातर हमारी जानकारी पहले से है। सभी विद्यालयों में बहुत व्यापक सुधार हुए, लेकिन और सुधार करने की गुंजाइश है, उसको हम लोग पूरा।
2: मंत्री की बात सुनकर छात्रों ने तुरंत रास्ता खोल दिया और असीम अरुण के साथ स्कूल में वापस लौट गए। स्कूल में जाकर समाज कल्याण मंत्री ने सबसे पहले स्कूल के स्टाफ की क्लास लगाई। इसके बाद मंत्री जी ने छात्रों की बात सुनी, आश्वासन दिया और चले गए। लेकिन क्या इससे स्कूल की समस्याओं का समाधान हो गया? 4 दिन में शिक्षक भर्ती तो नहीं हो सकती, लेकिन मेडिकल और मेस की सुविधाएं तो जरूर सुधारी जा सकती हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। आपको हम कन्नौज लेकर चलते हैं। कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जेन अल्फा है जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा। इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह को ढंक लिया, ये इनका अधिकार है। लेकिन अपने अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका अपनाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए फिर समाधान।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

स्वाद और सुविधा के इस दौर में पैकेज्ड फूड हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर ग्राहक को ये साफ साफ क्यों नहीं बताया जाता कि वो जो खा रहा है उसमें चीनी, नमक और फैट कितना ज्यादा है। अदालत ने केंद्र सरकार और फसाई को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो अदालत खुद आदेश जारी करेगी। कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पूछा है कि क्या इस मामले में कॉरपोरेट दबाव काम कर रहा है। वहीं बढ़ते बच्चों और आम नागरिकों की सेहत को प्राथमिकता देने पर जोर देने की बात कही है। इसके लिए सरकार और FSSAI को 2 हफ्तों में कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट की सख्ती के पीछे लंबे समय से चल रही बहस है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि फसाई पैकेट के सामने साफ चेतावनी देने की जगह दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है। वहीं फूड इंडस्ट्री का तर्क है कि पैकेट पर चेतावनी वाले निशान लगाने से बिक्री प्रभावित हो सकती है। फसाई ने विकल्प के तौर पर न्यूट्रिशन टेबल को प्रमुखता देने का सुझाव दिया है। वहीं सरकार ने कहा है कि कई पारंपरिक भारतीय स्नैक्स में नमक और फैट स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है और ऐसे मानक लागू होने पर कई उत्पादों पर चेतावनी चिन्ह लग सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कंपनियों का कारोबार जनता की सेहत से बड़ा नहीं हो सकता। अदालत के मुताबिक ग्राहक को ये जानने का पूरा अधिकार है कि वो क्या खा रहा है, उसमें कितनी चीनी, नमक या फैट मौजूद है। दरअसल दुनिया के कई देशों में फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल पहले से लागू है और वहाँ इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं। इन लेबल्स का मकसद किसी उत्पाद की बिक्री रोकना नहीं, ग्राहक को खरीदारी के समय जरूरी जानकारी देना है। इन लेबल के लागू होने के बाद कई देशों में कंपनियों ने अपने उत्पादों की संरचना में बदलाव किए हैं और ग्राहकों में हेल्दी विकल्प चुनने की जागरूकता भी बढ़ गई है। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि चेतावनी लेबल लगाने का मतलब किसी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, क्योंकि फैसला ग्राहक का ही रहेगा, लेकिन खरीदने से पहले उसे पूरी जानकारी मिलनी ही चाहिए। अगर भारत में फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल का नियम लागू होता है तो पैकेट के सामने ही साफ दिखाई देगा कि किसी प्रोडक्ट में चीनी, नमक या फैट की मात्रा तय सीमा से ज्यादा है या नहीं। जाहिर है ये कदम करोड़ों ग्राहकों को ज्यादा जागरूक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इसमें चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन या कोई पैकेज्ड फूड खरीदने पर उन्हें कीमत और एक्सपायरी डेट के साथ ही उसमें मौजूद चीनी, नमक और फैट की मात्रा की भी जानकारी मिल जाएगी। आज तक ब्यूरो।

0: लखनऊ में अवैध डेयरी के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस पर हुए अटैक के बाद प्रशासन का जबरदस्त एक्शन, हमलावरों का सामना आया। अतीक कनेक्शन पूरे इलाके में भारी फोर्स तैनात, चल सकता है बुलडोजर।
1: झारखंड में छात्रों की मांगों के आगे झुकी सोरेन सरकार, TDPL के जरिए करवाई गई सभी परीक्षाएं रद्द। महतो और अन्य दो छात्रों ने तोड़ा अनशन, लेकिन CBI जांच पर अड़े, स्टेडियम में धरना दे रहे हैं छात्र।
0: महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए मराठी सीखने की 100 दिन की मियाद आज खत्म, लाइसेंस परमिट रद्द करने के सरकारी ऐलान से हड़कंप। मुंबई समेत राज्य के 2,00,000 गैर मराठी ड्राइवर्स के लिए फरमान।
1: 51 नए चेहरों के साथ नितिन नवीन की टीम का 2027 से 29 तक के चुनावों पर फोकस, यूपी से 8 पदाधिकारी और केमिस्ट्री प्रोफेसर और छत्तीसगढ़ के डेटा मास्टर को बनाया गया सोशल मीडिया चीफ, अमित मालवीय की छुट्टी।
0: वंदे मातरम गायन को लेकर सियासी संग्राम जारी, अब गोवा के कार्यक्रम में खड़गे की मौजूदगी में गाए गए सिर्फ 2 पैराग्राफ। कांग्रेस अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना कहा, जब मैं MLA बना तब वो बच्चे थे।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर बीजेपी के हिस्से मिल रही है विनोद तावड़े को लेकर मिल रहे, जिनको फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है यूपी चुनावों को लेकर। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, उससे पहले विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। कल नितिन नवीन की टीम का भी ऐलान हुआ, उसमें विनोद तावड़े को इंपॉर्टेंट जगह मिली है और अब उनको यूपी का प्रभारी भी बनाया गया। साथ ही साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के लिए बनाए गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है। पंजाब प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया को बनाया गया है, तो ये नई सूची है एक भी जारी है। तरुण चुग को गुजरात का प्रदेश प्रभारी बनाया गया।
0: कल ही नई टीम का ऐलान हुआ था, लेकिन अब अलग अलग राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान। यूपी चुनाव खासतौर पर कुछ ही महीने दूर है, इसको लेकर बड़ा ऐलान, विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बना दिया गया।
1: तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 3 राज्यों के लिए ये नए प्रदेश प्रभारी बनाए हैं और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसमें विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है, सह प्रभारी उत्तर प्रदेश जगदीश ईश्वर भाई पटेल बनाए गए हैं, सतीश पूनिया पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं, तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया और इन नियुक्तियों का तुरंत प्रभाव से ये लागू की गई है। बकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है, बाकी राज्यों के प्रभारी भी जल्द ही बताया जा रहा है कि जारी किए जाएंगे। लेकिन ये 4 राज्यों के लिए यूपी, 3 के लिए यूपी, पंजाब और गुजरात के लिए अनाउंसमेंट हुई।
0: पीयूष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, विनोद तावड़े बड़ा नाम, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से उनके नाम का ऐलान क्या मायने रखता है?
2: जी देखिए, आपको याद होगा कल ही बीजेपी की नई टीम आई है, विनोद तावड़े जो पहले भी महासचिव थे उनको फिर से महासचिव बनाया गया था और अब उनको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी बना दिया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है और अभी से पार्टी ने आने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। विनोद तावड़े के साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल जो राष्ट्रीय मंत्री
3: हैं, और कल इनको जगह भी मिली थी, उनको जगह भी मिली थी टीम के अंदर, आज वो उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी बना दिए गए हैं। इसी के साथ साथ पंजाब को लेकर भी बड़ी अपॉइंटमेंट की गई है बीजेपी की तरफ से। सतीश पूनिया जो कल राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए थे और वो राज्यसभा सांसद भी हैं, वो अब पंजाब का जो इंचार्ज है के इंचार्ज वो बना दिए गए हैं। इसी के साथ साथ गुजरात को लेकर भी बड़ा अपॉइंटमेंट किया है बीजेपी ने। तरुण चुग जो एक बड़ा पद उनको पार्टी ने दिया है, वो अब गुजरात के प्रभारी बना दिए गए, चुनाव प्रभारी है। ये तीनों नियुक्तियां जो है चुनाव प्रभारियों की हुई है। आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव इन राज्यों में होने वाला है और उससे पहले ये बड़ी नियुक्तियां बीजेपी की तरफ से की गई है। हालांकि उत्तराखंड और मणिपुर जैसे राज्यों को लेकर अभी पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब ये तीनों महत्वपूर्ण राज्य हैं और इन तीनों राज्यों के लिए को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला ले लिया है और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का, सतीश पूनिया को पंजाब का और साथ साथ तरुण चुग को गुजरात का चुनावी प्रभारी बना दिया गया है।
1: पीयूष, वही सवाल यही है कि बीजेपी में वरिष्ठ नेता है, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, विधानसभाएं सीट्स बहुत ज्यादा है, बीजेपी के लिए जीतना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया जाना, उसके पीछे की वजह क्या, एक्सपीरियंस या कुछ विशेष सोच?
3: जी देखिए, विनोद तावड़े एक एक्सपीरियंस्ड हैंड है और पिछले कुछ समय में उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। संगठन के तौर पर उनकी पकड़ संगठन पर काफी ज्यादा मजबूत है और कई चुनावों में वो प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं और वहां पर जहां पर काम किया है वहां पर पार्टी को जीत भी मिली है। इसीलिए ना सिर्फ उनको संगठन में दोबारा जगह मिली, वो महासचिव बनाए गए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी भी उनको दी है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था और 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत के लाई थी, अब वहां पर कैसे वापस।
0: बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आप रुख करेंगे शतक आज तक का।

0: लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके में नगर निगम और पुलिस टीम पर हमले के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, पशु पकड़ने के लिए गई टीम पर आरोपियों ने पथराव कर दिया। पुलिस और नगर निगम कर्मचारियों पर हमले में आरोपियों का माफिया अतीक अहमद से कनेक्शन सामने आया। पुलिस लगातार दबिश देकर आरोपियों की तलाशी कर रही। नगर निगम कर्मचारियों और पुलिस कर्मी घायल हैं, जबकि 4 सरकारी वाहनों को भी शीशे टूटे हैं। पुलिस ने 2 महिलाओं को इसमें गिरफ्तार किया है। यूपी सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को अब वार्षिक कैलेंडर के तहत किया जाएगा समयबद्ध, योगी सरकार का यह बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के भिंड में हुए सड़क हादसे में लखीमपुर के मजदूरों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक फैसले पर सियासी विवाद खड़ा होने के अब असर है। हिमाचल प्रदेश में आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स की संख्या अब कम की जाएगी। राज्य सरकार ने आईएएस कैडर 153 से घटाकर 130 जबकि आईएफएस का 118 से 83 करने का फैसला किया, और इसी तरह आईपीएस का कैडर भी 96 अधिकारियों से कम किया जाएगा। राज्य सरकार ने कैडर कम करने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा राज्य सरकार प्रदेश में अधिकारियों की संख्या कम करेगी, इससे 1 अधिकारी पर लगभग 200 करोड़ रुपए की बचत होगी। यूपी के मथुरा में बीजेपी विधायक और डीएसपी के बीच में बहस हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विधायक अनिल पाराशर के काफिले को रोके जाने को लेकर दोनों के बीच में विवाद, वीडियो में विधायक पुलिस अधिकारी से तीखे अंदाज में बात करते दिखे।
1: झारखंड में छात्र आंदोलन के 24वें दिन छात्रों के आगे झुकी सुरेंद्र सरकार, देवेंद्रनाथ महतो समेत कई छात्र नेताओं ने खत्म किया अनशन। छात्र नेता देवेंद्र महतो की मांग, सदन में ऐसा कानून बने जिससे छात्रों के साथ साथ धोखा या ठगी ना हो, सरकार दे छात्र के हितों की गारंटी। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द, सीएम सुरेंद्र के ऐलान के बाद छात्रों में खुशी की लहर। महतो ने सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर की बात, सुरेंद्र सरकार के फैसले की सोनम वांगचुक ने की सराहना, छात्रों की मांगे मानने पर जताया आभार। आज तक से बोले देवेंद्र महतो, छात्रों की अकेली लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा, संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद रांची में जयपाल स्टेडियम में छात्र झूम उठे, जमकर किया सेलिब्रेट। ऐलान के साथ छात्रों में खुशी की लहर, नाचे छात्र, सड़क पर छोड़े पटाखे, हाथों में देश का झंडा लिए झूमे छात्र। फैसले के बाद रांची में जीत का जश्न,
0: छात्रों का आंदोलन खत्म कराने के लिए पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी, देवेंद्र महतो समेत तीनों ने ही तोड़ा अनशन, सरकार ने सभी मांगे मानी। झारखंड के मंत्री दीपिका पांडे सिंह बोले कि छात्रों की सभी मांगे मानी गए, 90 दिनों में चार्जशीट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। छात्रों के एक पक्ष रिफॉर्म मंच का ऐलान, धरना रहेगा जारी जब तक सरकार सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे देती। छात्र नेता उम्मी हबीबा ने मुख्यमंत्री सोरेन राहुल गांधी समेत सभी का जताया आभार, सीजीएल भर्ती परीक्षा रद्द करने के फैसले पर मुख्यमंत्री का आभार। रांची में सदर हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट बोले अनशनकारियों की हालत सामान्य है, अपनी जिम्मेदारी पर अस्पताल से गए। वंदे मातरम विवाद पर सियासत जारी है, खड़गे का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी को देशभक्ति पर ज्ञान देने का हक नहीं, देश को बांटने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। वंदे मातरम विवाद में शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच की शुरू, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग। वंदे मातरम विवाद पर केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी का सोनिया गांधी पर निशाना, बोले कि सम्मान को लेकर संसद में कानून बन चुका है। बीजेपी नेता अनुपेंटनी का कांग्रेस पर हमला, बोले कि मुस्लिम लीग और एक वर्ग को खुश करने की राजनीति कर रही कांग्रेस। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर नया प्रोटोकॉल, बड़े सरकारी कार्यक्रमों में लगभग 3 मिनट 10 सेकंड की सभी 6 कड़ियां अब जोड़ी जाएंगी।
1: दिमागी नक्सल विवाद पर सियासी घमासान, हेमंत बिस्सरमा का पी चिदम्बरम पर हमला, बयान की जांच की मांग। दिमागी नक्सल विवाद पर हेमंत बिस्सरमा का कांग्रेस से बड़ा आरोप, बोले देश में शांति फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। दिमागी नक्सल बयान पर आप सांसद संजय सिंह का पीएम मोदी पर हमला, बोले नौकरी और भर्ती परीक्षा पर सवाल उठाने वालों को कहा जा रहा है दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल विवाद में बीजेपी और विपक्ष आमने सामने, बीजेपी सांसद तरुण चुग बोले नक्सलवाद का नया रूप है दिमागी नक्सल। बीजेपी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान, अमित मालवीय तेजस्वी सूर्या की छुट्टी, 22 को होगी पहली मीटिंग। नितिन नवीन ने बीजेपी की नई टीम में किया बड़ा फेरबदल, स्मृति ईरानी सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महासचिव, पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष। बीजेपी की नई टीम में बड़े बदलाव, दीपक महास्के बने सोशल मीडिया प्रभारी, हेमंग जोशी को युवा मोर्चे की कमान। चुनावी तैयारी के बीच बीजेपी का बड़ा संगठनात्मक बदलाव, नई राष्ट्रीय टीम में अनुभवी और नए चेहरों को संतुलन। बीजेपी के नए आईटी सेल चीफ दीपक महास्के का विपक्ष पर निशाना, बोले प्रोपेगेंडा माहौल बना सकता है लेकिन सच लंबे समय तक छिप नहीं सकता।
0: दिल्ली दौरे में फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री बनने की अटकलों पर लगाया विराम, बोले कि महाराष्ट्र में था, हूं और रहूंगा। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों के लिए आज खत्म हुई 100 दिनों की मियाद। अब मराठी नहीं बोलने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, यूनियन ने दी कोर्ट और हड़ताल की चेतावनी। 2 लाख गैर मराठी ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स पर कार्रवाई का रास्ता भी साफ, सरकार बोले कि पहले नोटिस फिर लाइसेंस, बैच रद्द करने की प्रक्रिया। ओबीसी आंदोलन नवनाथ बाग मारे ने मराठा युवतियों पर विवादित बयान देने पर बवाल, जालना में केस हुआ दर्ज, मराठा क्रांति मोर्चा ने प्रदर्शन किया। मुंबई में MMRDA भर्ती परीक्षा में रिजल्ट पर सवाल, कुछ अभ्यर्थियों के 200 में से 200 अंक आने पर पारदर्शिता पर सवाल। सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय दिल्ली का दौरा, दिल्ली में योगी आदित्यनाथ इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। सीएम योगी जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे, जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर में प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइमरी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का समापन, सीएम योगी ने युवाओं को संदेश दिया। सीएम योगी बोले कि माफिया प्रवृत्ति से युवा शक्ति का सबसे ज्यादा नुकसान, युवाओं को बचाने के लिए खेल संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को निगल रहा है ड्रग्स और स्मार्टफोन का ये नशा, दोनों से दूर रहने की अपील।
1: मॉडल तुषार शर्मा मामले में सीबीआई की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, पति समर्थ और सास गिरिबारा पर मानसिक प्रताड़ना और अपशब्द कहने का आरोप। सीबीआई के मुताबिक तुषार गर्भावस्था को लेकर असमंजस में थी, 16 अप्रैल को प्रेगनेंसी का पता चला, 17 अप्रैल को अस्पताल में जांच कराई। चंद्र मंदिर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, फेशियल रिकॉग्निशन के इस्तेमाल पर उठे सवाल। प्रदर्शनकारी की पहचान और डेटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली पुलिस पर फेशियल रिकॉग्निशन इस्तेमाल करने का आरोप। बंगाल के कालिम्पोंग बड़ा भूस्खलन, पहाड़ का हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिरा। मलबे की चपेट में आया एक बाइक सवार, सूझबूझ से बची जान। ऋषिकेश में भारी बारिश के बीच उफनती बीन नदी में पलटी कार, तेज बहाव के बीच 2 लोग फंसे। उफनती नदी में एसडीआरएफ का हैरत अंगेज रेस्क्यू, जान जोखिम में डालकर 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आसनसोल में लगातार बारिश से जल जमाव का खतरा, कई अंडरपास और रेलवे ब्रिज पानी में डूबे, ऑरेंज अलर्ट जारी।
0: आसनसोल में आफत की बारिश, निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। देहरादून में नेशनल हाईवे पर टला बड़ा हादसा, यहां एमएम के सामने वाहनों पर विशालकाय पेड़ गिर गया। टिहरी गढ़वाल में लगातार बारिश के चलते बरसाती नाला उफान पर, तेज बहाव के बीच में कुछ लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ओडिशा में भारी बारिश के बाद बाढ़ के गंभीर हालात हैं, भद्रक में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न। बाढ़ के बीच में ओडिशा में राहत बचाव तेज है, तत्काल जो है उत्कल यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई। प्रयागराज में बारिश का पानी थाने में भर गया, साथ ही अंडरपास में घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। यूपी में बारिश ने रोकी पढ़ाई, भदोही में 12वीं तक के सभी स्कूल आज के लिए बंद। वाराणसी में छत पर गंगा आरती हुई है, गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते लिया गया निर्णय, नाव संचालन पर भी फिलहाल रोक। शाहजहांपुर में भारी बारिश के बाद मकान ढह गया, मलबे में दबकर चाचा और 3 साल के भतीजे की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल।
1: एमपी के भिंड में भीषण सड़क हादसा, मजदूरों से भरे ऑटो और ट्रक की टक्कर, 8 की मौत, 24 से ज्यादा घायल। में ज्वेलरी दुकान को निशाना बना रही शातिर महिला चोर का गिरोह, बुरके की आड़ में महिलाओं ने ग्राहक बनकर लूटे गहने। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हादसा, काजीगुंड में ट्रक ने सीआरपीएफ वाहन को मारी टक्कर, 5 जवान घायल। कोलकाता एयरपोर्ट के डीसी भवन की दूसरी मंजिल में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया काबू। पालघर में मीरा रोड पर हिट एंड रन की घटना, तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर, डैश कैम में कैद हुई घटना। सूरत में पार्किंग विवाद को लेकर पड़ोसी के बीच हिंसक झड़प, स्थानीय पुलिसकर्मी ने वर्दी का रुतबा दिखाते हुए पड़ोसी परिवार बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की। सूरत के होटल में रिसेप्शन पर अचानक गिरा 26 साल का युवक, आईडी देते वक्त हुआ बेहोश, हार्ट अटैक की आशंका।

बिजनौर के एक मंदिर के सत्संग भवन में भीषण आग लगी। बाजार में अफरा तफरी, धड़कती लपटों के बीच में अपनी जान बचाकर भागते दिखे। आसमान को छूती नजर आई आग की लपटें। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचा दमकल विभाग, संभाला मोर्चा। मेरठ के एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया एक युवक, हिंदू संगठन का लव जिहाद का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। संभल में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, रसगुल्ले बनाने की फैक्ट्रियों पर छापेमारी। नकली दूध पनीर का इस्तेमाल कर तैयार किया जा रहा था माल।

0: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कलयुगी बेटे ने माता पिता की हत्या करके बोरियों में रखी लाश, आरोपी फरार। झांसी में चिन स्नैचिंग के दो आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया सामान। हरदोई में पत्नी को अस्पताल से इलाज के बहाने ले गया पति, जंगल में घूंटकर गला घूंट दिया, अवैध संबंधों के शक में हत्या की गई, आरोपी गिरफ्तार। बांदा में आवासीय स्कूल में दो बच्चों की मौत से हड़कंप, मोमोज खाने के बाद बिगड़ी थी तबियत, फूड पॉइजनिंग की आशंका। नैनीताल में आबादी के बीच में बाघ ने घोड़े का शिकार किया, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर।
1: दिल्ली के बुराड़ी में सनसनीखेज हत्या का खुलासा, प्रेम प्रसंग के शक में युवती की हत्या, सूटकेस में शव बरामद। गोंडा में बुरके में डांस कराने वाला स्कूल किया गया सील, जांच बिना मान्यता के संचालित मिला विद्यालय। मुजफ्फरनगर में कर्मचारी हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलसा, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बिहार के नवादा में एक ही कमरे में मां और दो मासूम बेटियों के शव मिलने से सनसनी, आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच। देहरादून में पुलिसकर्मी की कार से युवक को कुचला गया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका जाएंगे शी जिनपिंग, 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही के रास्ते को लेकर ईरान ओमान में समझौता, संयुक्त बयान पर काम जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया ईरान के पास किसी तरह के परमाणु हथियार नहीं हो सकते। यूक्रेन ने रूस के बेलगरोद इलाके में मिसाइल से किया हमला, कार्यवाहक गवर्नर ने कहा रात भर हुए हमले में 6 की मौत। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप का जताया आभार, मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के समर्थन के लिए दिया धन्यवाद।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन।
1: इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा पेश कर दिया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों से इनकार किया है। हलफनामे में कहा गया है कि 30,000 छात्रों पर महज 5,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों में असामाजिक तत्व और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग भी शामिल थे।
0: अब ये बहुत बड़ी खबर है, ये हलफनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली में जो पुलिसिया एक्शन हुआ उस पर खूब राजनीति देखने को मिली और संसद की कार्यवाही पर उसका असर पड़ा। संसद की कार्यवाही बाधित होते रही, पूछा गया कि ये पुलिसिया कार्रवाई किसके आदेश पर हुई, क्या उसके बारे में विस्तृत। और इस बीच में आपको बड़ी खबर दे दें, पुलिस ने कहा है कि इस प्रदर्शन में असामाजिक तत्व शामिल थे, कुछ ऐसे भी थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड था। छात्रों के प्रदर्शन में शामिल छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उनके तुलना में वहां पर उन छात्रों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस वालों की संख्या बहुत कम थी। 30,000 के बनस्पत वहां से 5,000 पुलिसकर्मी थे।
1: वहीं महाराष्ट्र में गैर मराठी टैक्सी ऑटो चालकों के लाइसेंस और परमिट रद्द करने के मामले में कल फैसला होगा। ट्रांसपोर्ट विभाग ने कल एक अहम बैठक बुलाई है। मराठी सीखने के लिए टैक्सी ऑटो चालकों को 100 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, ये मियाद खत्म हो गई।
0: तो जो लोग मराठी सीख नहीं पाए उनके लाइसेंस और परमिट रद्द करने की कार्रवाई आज से शुरू होगी। लेकिन इस बीच में आपको ये भी बता दें कि टैक्सी ऑटो यूनियन ने मराठी सीखने के लिए कुछ और वक्त की मांग की है और कल इस मांग पर ट्रांसपोर्ट विभाग फैसला लेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पर हमले का मामला भी सामने आया है और लॉ फैकल्टी के एक पीएचडी स्कॉलर पर प्रोफेसर को थप्पड़ मारने और हमला करने का आरोप है।
1: घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। डीयू प्रॉक्टर ने छात्र को सस्पेंड करने का आदेश दिया और जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है।
0: ये तस्वीरें भी आई है जहां पर टीचर पर, प्रोफेसर पर किस तरह से हमला किया जा रहा है, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गए।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार के एक फैसले पर सियासी विवाद तेज है। हिमाचल प्रदेश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों की संख्या कम की जाएगी। राज्य सरकार ने आईएएस कैडर के 153 से घटाकर 130 संख्या कर दी है। आईएफएस का कोटा 118 से घटाकर 83 करने का फैसला किया गया है। इसी तरह आईपीएस कैडर भी 96 अधिकारियों से कम किया जाएगा।
0: राज्य सरकार ने अधिकारियों का कैडर कम करने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग को पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा राज्य सरकार प्रदेश में अधिकारियों की संख्या कम करेगी, अब इससे एक अधिकारी पर लगभग 200 करोड़ रुपए की बचत होगी। जितने अधिकारी कम करेंगे राज्य के उतने ज्यादा पैसे बचेंगे, उन पैसों से लोगों की सेवा हम कर सकेंगे।
1: बाकी ब्रेक का हौसला देखते रहिए आज।
2: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।

0: Papa.
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया
1: है।
3: हां ओ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
3: बिल्कुल डिस्चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
0: In association with Hind, बड़े आराम से
1: Sharda University, the world comes together at Sharda University, where are you?
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
4: जब तक वो CBI जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
3: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
5: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
6: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
7: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
8: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
3: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। आज तक
9: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
10: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
9: नहीं सर।
10: 12th किससे की हो?
9: 12th सर मेरा PCM से रहा।
10: कंपाउंड क्या होता
9: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीयर रहती है उसके ऊपर।
10: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
9: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
10: देख भाई अपनी गारंटी पे छेड़ना।
11: सोनिया जी ने जिस प्रकार से व्यवहार किया और जो वीडियो के फुटेज आ रहे हैं वो ये वंदे मातरम के प्रति असम्मान को दर्शाता है। इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है उस मानसिकता में राष्ट्रवाद बहुत एक तरीके से जो राष्ट्रवाद के प्रतीक है उसके प्रति उनको लेकर एक विशेष प्रकार का एक द्वेष भाव है। ये नहीं होना चाहिए। और देश के कानून का, देश के राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रगान का सभी को सम्मान करना। उन्होंने
12: खड़गे जी के मंच को गंगा जल से उत्तराखंड के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धोया है। गंगा जल से दलित बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको देश का आदिवासी बर्दाश्त नहीं होता। मुसलमान तो खैर नफरत ही है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा इनको।
13: तो लगातार क्या लेवल
12: बन राहुल गांधी जी के कई वीडियो आपको दिखा दूंगा जिसमें खड़गे जी के लिए कुर्सी खींच रहे हैं या उठा रहे हैं। और मोदी जी का वीडियो भी दिखा दूंगा, नितिन नवीन का हाथ पीछे करके खींच दिया। आ गई समझ में? हमें ना सम्मान दिखाएं।
14: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: बीजेपी ने घोषित किए चुनावी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी। विनोद तावड़े को मिली यूपी की जिम्मेदारी। पंजाब के सतीश पुनिया और गुजरात के प्रभारी होंगे तरुण चुग। तत्काल प्रभाव से लागू हुई नियुक्तियां।
1: लखनऊ में अवैध डेयरी के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस पर हुए अटैक के बाद प्रशासन का जबरदस्त एक्शन। हमलावरों का सामने आया अति कनेक्शन। पूरे इलाके में जबरदस्त फोर्स तैनात। बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है।
0: झारखंड में छात्रों की मांग के आगे झुकी सुरेंद्र सरकार। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। महतो और अन्य दो छात्रों ने तोड़ा अनशन, लेकिन सीबीआई जांच पर अड़े स्टेडियम में धरना दे रहे हैं छात्र।
1: महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी सीखने की 100 दिनों की डेडलाइन आज होगी खत्म। लाइसेंस परमिट रद्द करने के सरकारी ऐलान से हड़कंप। मियाद एक्शन पर कल परिवहन विभाग की बैठक।
0: जंतर मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया हलफनामा। कहा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं हुआ। 30,000 लोगों पर थी 5,000 की पुलिस फोर्स।

0: 2027 में यूपी, पंजाब और गुजरात में चुनाव है और उससे पहले बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने 3 राज्यों के चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं।
1: विनोद तावड़े को यूपी का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, सतीश पुनिया पंजाब के, जबकि तरुण चुग को गुजरात का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। कल नितिन नवीन की टीम का ऐलान और उसके बाद आज 3 प्रदेशों के लिए प्रभारियों का ऐलान हुआ है, सह प्रभारी का ऐलान हुआ है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, सह प्रभारी साथ में जगदीश ईश्वर भाई पटेल को बनाया गया है।
0: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंजाब के सतीश पुनिया, उत्तर प्रदेश के विनोद तावड़े, क्या वजह है इन दोनों की नियुक्ति की?
2: देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो सतीश पुनिया काफी लंबे समय से जो है वो पंजाब में काम भी कर रहे थे और हरियाणा के वो सह प्रभारी रहे थे जब चुनाव थे। विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी बनाए गए, क्योंकि वहां पे जब संगठनात्मक चुनाव हुए थे तो वो उस संगठनात्मक चुनाव के प्रभारी भी थे और विनोद तावड़े के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है चुनावों को देखने का, संगठन का। वो बिहार के जो है संगठन प्रभारी रहे हैं, हरियाणा के रहे हैं। सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के और हरियाणा के सह प्रभारी रहे हैं। अगर आप देखें तो पंजाब का जो बॉर्डर है वो हरियाणा और पंजाब के साथ काफी लंबा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सतीश पुनिया को वहां का प्रभार दिया गया। और अब आने वाले दिनों में, क्योंकि पंजाब के विधानसभा चुनाव है और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले जो है प्रभारी नियुक्त करना ये भी एक अच्छी पार्टी की तरफ से है। और आप देखना यह है कि तरुण चुग, क्योंकि तरुण चुग जो है पार्टी के महासचिव थे, उनके पास तेलंगाना का प्रभार था, अब उन्हें जो है तेलंगाना के अलावा जो प्रभार है वो गुजरात का दिया गया। और गुजरात क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक तरीके से कहें तो प्रयोगशाला है और तरुण चुग का वहां का जिम्मेदारी दिया गया। और इससे पहले कई बार विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव रहे हो, तरुण चुग को गुजरात की कई लोकसभा और विधानसभा सीटों की जिम्मेदारियां जो है वो मिलती रही है 2002 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2022 के लोकसभा विधानसभा। और
1: जी बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बात करते हैं बीजेपी की नई टीम की भी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 209 दिन के बाद अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम एक तरह से पूरी तरह से नई है, न्यू है। 65 सदस्यों में से सिर्फ 14 सदस्यों को नई टीम में रखा गया, यानी कि 51 चेहरों को इस नई टीम से बाहर कर दिया गया।
0: नई टीम में गौर करने वाली बात यह है कि इन चेहरों में एक चेहरा स्मृति ईरानी का है जो करीब 2 साल से सुर्खियों से बाहर थी, लेकिन अब उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। नई टीम में एक चौंकाने वाला नाम पीयूष गोयल भी है जिन्हें कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जिसे लेकर सियासी हलकों में काफी चर्चा है।
3: ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है।
4: समाज के अलग अलग वर्ग और ऊर्जावान नई चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं,
5: एक बहुत ही अच्छी टीम तैयार हुई है।
6: पार्टी के संगठन के क्षेत्र में काम करने वाले, लगातार बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम करने वाले लोग शामिल किए गए।
7: जिस लिस्ट का इंतजार था वो आखिरकार सामने आ गई। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। नई टीम में कुछ नाम चौंकाने वाले रहे तो कई नाम उम्मीदों के मुताबिक। पहले आपको नई टीम को लेकर मोटी बातें बताते हैं। नई लिस्ट में सिर्फ 14 पुराने चेहरे को रिपीट किया गया है, यानी 65 में 51 नए चेहरे हैं। 8 में से 6 महासचिव बदले गए, 13 उपाध्यक्षों में से 9 बदले गए, 16 सचिवों में से 15 बदले गए। नई टीम में 12 महिलाओं को शामिल किया गया है, यानी महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 18.5% है। टीम में 40 साल से कम उम्र के 6 सदस्य, 40 से 49 साल की उम्र के 15 सदस्य और 50 से 59 साल के 21 सदस्य शामिल हैं। अगले साल चुनाव वाले उत्तर प्रदेश से 8, उत्तराखंड से 4, गुजरात से 4 और पंजाब से 2 सदस्य बनाए गए।
3: ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूँ और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
7: नितिन नवीन की नई टीम को लेकर काफी दिनों से मंथन चल रहा था। टीम के गठन के रास्ते में कई चुनौतियां थी। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है, इसलिए नई टीम में चुनावी राज्यों का प्रतिनिधित्व जरूरी था। नई टीम में जिन बड़े चेहरों की एंट्री और एग्जिट हुआ है वो देख लीजिए। पीयूष गोयल की कोषाध्यक्ष पद पर एंट्री हुई, स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय महासचिव पद पर एंट्री हुई, राम माधव ने भी उपाध्यक्ष पद पर एंट्री की है। तेजस्वी सूर्या को नई लिस्ट में जगह नहीं दी गई, अरुण सिंह की महासचिव पद से छुट्टी हुई, पंकजा मुंडे को राष्ट्रीय सचिव पद से हटाया गया है, सोशल मीडिया टीम से अमित मालवी की छुट्टी हुई है।
4: मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपने टीम बनाते हैं और हर स्टेट हर रीजन समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा
5: है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नितिन नवीन जी ने अपनी टीम का ऐलान किया है। एक बहुत ही अच्छी टीम तैयार हुई है, इसमें अनुभवी लोग भी हैं, युवा रक्त भी हमको इसमें दिखाई पड़ता है और विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र से उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भारती पवार, महामंत्री के रूप में विनोद जी तावड़े और कोषाध्यक्ष के रूप में पीयूष जी गोयल, इनके जैसे हमारे जो दिग्गज नेता है इनको भी इस टीम में जगह मिली है।
7: नितिन नवीन को अपनी टीम बनाने में 209 दिन लग गए, लेकिन नई टीम को देखकर साफ लगता है कि इस बार बड़े बदलाव की कोशिश की गई है। जो बड़े चेहरे नई टीम में दोबारा जगह बनाने में कामयाब रहे उनमें शामिल हैं वसुंधरा राजे, बैजयंत पांडा, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, बीएल संतोष, सौदान सिंह, तरुण चुग, ऋतुराज सिन्हा और अनिल बलूनी। नितिन नवीन खुद युवा हैं, लेकिन उनकी टीम में अनुभव और युवा शक्ति का मिश्रण है। नई टीम के सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है, जहां इनकी कड़ी अग्नि परीक्षा होनी है। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: बीजेपी की नई टीम में जिन लोगों को नई जिम्मेदारी मिली है उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं।
8: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी।
9: पार्टी के विस्तार को लेकर सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी के जो संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, नए लक्ष्यों के साथ में देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंचे और संगठन का विस्तार हो, ये तमाम विषयों को लेकर पार्टी ने संगठन में दायित्व दिया है और निश्चित तौर पर मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से संगठन में काम कर रहा हूँ, इसलिए इस दायित्व को करते करते जो भी संगठन का निर्देश होगा उसको हम 100% सिचुएशन करने का प्रयास करें।
0: नितिन नवीन के लिए इसमें यूपी का चुनावी कनेक्शन साफ दिख रहा है। यूपी के संगठन में आठ नए चेहरों को जगह दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सोशल मीडिया टीम में किया गया है। अमित मालवीय इस टीम से बाहर हो गए।
10: कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही, ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए।
7: सामने यूपी का चुनाव है और एक बार फिर स्मृति ईरानी पर बीजेपी का दाव है। नितिन नवीन ने अपनी नई टीम बनाई तो स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और इस तरह स्मृति ईरानी का 2 साल का वनवास खत्म हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट हारने के बाद स्मृति ईरानी सरकार और संगठन दोनों से दूर थी। उनकी भूमिका इतनी सीमित हो गई कि उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया।
11: स्मृति ईरानी की बड़ी पहचान एक तेज तर्रार महिला नेता और प्रवक्ता के तौर पर रही है, चाहे गाँव हो या शहर। गाँव और शहरी महिलाओं से उनका वेल कनेक्ट उन्हें एक अलग श्रेणी में ले जाता है और जिस तरीके से नितिन नवीन की टीम में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, 2027 के बीजेपी के चुनाव के लिहाज से वो एक एसेट साबित हो सकती हैं।
7: नितिन नवीन ने टीम के गठन में यूपी का खास ख्याल रखा है।
12: नई टीम में उत्तर प्रदेश से 8 चेहरों को जगह दी गई है। रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति रानी राष्ट्रीय महासचिव, हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महासचिव, डॉक्टर भोला सिंह राष्ट्रीय सचिव, संगीता यादव राष्ट्रीय सचिव, अमरपाल मौर्य ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, कुंवर बासित अली ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष। बीजेपी की नई टीम में 2027 में विधानसभा चुनाव वाले 7 राज्यों में से 4 राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला है। उत्तर प्रदेश से 8, उत्तराखंड से 4, गुजरात से 4 और पंजाब से 2, यानी कुल 18 चेहरे नई टीम में शामिल हैं। वहीं गोवा, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश से कोई नाम नहीं है। ये तो चुनावी राज्यों की कहानी है, लेकिन मौजूदा दौर में चुनाव जिताने वाली सोशल मीडिया टीम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अमित मालवीय सोशल मीडिया टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह दीपक महस्के को नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोशल मीडिया टीम में 5 में से 5 नए चेहरों को लाया गया है। आपको बता दें कि दीपक महस्के केमिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके हैं और चुनाव डेटा एनालिसिस, कृषि, सरकारी योजनाओं और पब्लिक सेक्टर में काम करने का अनुभव रखते हैं।
8: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता के सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेंगे।
12: नई टीम को लेकर सबसे बड़ी चर्चा अमित मालवीय को सोशल मीडिया टीम से बाहर करने को लेकर हो रही है। सवाल है कि क्या छात्र आंदोलन के दौरान सरकार का स्टैंड जोरदार तरीके से ना रखने के चलते अमित मालवीय पर ठीकरा फूटा। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: और बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर पुलिस और नगर निगम की टीम पर हुए जानलेवा हमले मामले में जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। केस में पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। केस में लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में अब तक 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है।
0: बाकी आरोपियों की धरपकड़ करने की कोशिश पुलिस कर रही है। सोमवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में बुद्धेश्वर पारा इलाके में नगर निगम की टीम और पुलिस वालों के साथ अवैध डेयरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए दोनों की ज्वाइंट टीम पहुंची और इस दौरान 20 से 25 लोगों ने नगर निगम और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आरोपियों ने टीम पर धारदार हथियारों से हमला किया। इस दौरान एक वीडियो में एक आरोपी दरोगा की गर्दन दबाते नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एक महिला लोहे की जंजीर से दरोगा के सिर पर वार कर रही है, जिसमें उन्हें गंभीर रूप से चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले में 20 साल की खुशबू और 27 साल की आफरीन को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है।
1: हमारे संवाददाता आशीष भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या एक्शन चल रहा है इस समय और क्या क्या एक्शन अब भविष्य में हो सकता है आने वाले दिनों में?
0: आशीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है।
13: गई और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस भी एक्शन मोड में है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जिस अगर मेरे पीछे एरिया देखेंगे तो ऐसी टाइप की पूरी डेरिया ही डेरिया है चारों तरफ।
14: देखेंगे तो ऐसी टाइप की पूरी डेरिया ही डेरिया है चारों तरफ और ये डेरियों की संख्या ऐसी है कि फैकड़ों की तादाद में होंगी और जहां पर ये सभी लोग मौजूद रह रहे थे। जब पुलिस पहुंचती है और अचानक से ही उन पर अटैक शुरू हो जाता है। यहां तक पुलिस की सारी जीपों को पथराव कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ऐसी इस जो गलियां हैं उनमें रहते हैं। इस गली पर यहीं पर आप देखेंगे तो इसी तरीके से गिरा के हत्या करने की कोशिश की गई थी और यही वो जगह स्पॉट है जहां पर उसको मारा गया था, यानी कि पुलिस को पकड़ा गया था। अब इस दौरान जो कि पूरी तरीके से पुलिस फंस गई थी, ट्रैप हुई थी, कई थानों की फोर्स बुलाई गई थी और आज अब एक्शन जारी है। लगातार गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जानी है। इसके साथ साथ जितने भी तकरीबन 100 से ऊपर भैंसों को जब्त किया गया है अवैध डेयरियों के

0: नहीं, अभी थोड़ी देर पहले कार्रवाई हो रही थी, अब दूसरी जगह पुलिस कार्रवाई करने के लिए मूव की है। ऐसे ही ये वाला सारा एरिया अगर आप ऐसे देखेंगे इस तरीके से, जो डेरियों का ही है, चारों तरफ सिर्फ डेरियां ही डेरियां, और पुलिस इन्हीं को लेकर कार्रवाई करने पहुंची थी कि रिहायशी इलाकों में अगर डेरियां मौजूद हैं तो उनमें साफ सफाई होनी चाहिए थी, जिसको चालान कर रही थी। लेकिन जो परिस्थिति बनी उसमें पुलिस को ही पूरी तरीके से ताबड़तोड़ अटैक किया गया पुलिस को ही। और यही वो गली है जहां पर आप देखेंगे कि पुलिस को कैसे दबाया, जंजीरों से, जिस जंजीरों से बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें थी उनसे मार जाने लगा। और अब पुलिस कहीं ना कहीं उन सभी आरोपियों, क्योंकि अभी भी तकरीबन 12 आरोपी इसमें गिरफ्तार नहीं हुए, फरार हैं, जबकि 2 महिलाएँ 2 पुरुष अभी गिरफ्तार हुए हैं, बाकी सभी की पुलिस अलग अलग टीम बनाकर जाँच कर रही है। शासन प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके बड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस वहां पर पहुंची थी और ऐसे गिरा के जो मारा गया है, कहीं ना कहीं जो पुलिस की जीप की तोड़ी गई हैं, गाड़ियां तोड़ी गई हैं, ये अराजकता थी। और इनका जो संबंध है वो भी बताया गया लोकल में कि प्रयागराज से लेकर बनारस, बनारस से लेकर अन्य प्रदेश के जिलों में पाया गया है, जहां पर ये गद्दी पूरी तरीके से रहते हैं। और ये सभी एकजुट होकर पुलिस को घेर लिया गया, और इस तरीके के जो बड़े बड़े प्लॉट थे उनके अंदर आप देखेंगे तो पाएंगे ऐसे जो डेरियां हैं वो बनाई गई हैं, जिसमें कि भैंसों को रखा जाता है पूरी तरह।
1: और इस बीच बड़ी खबर यह है कि लखनऊ के जिस बुद्धेश्वर पाड़ा इलाके में पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला किया गया, वहां पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी आरोपियों पर, क्योंकि काफी भीषण तरीके से पुलिस वालों पर हमला किया गया। तस्वीरें आपने देखी ली हैं, कैसे जंजीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस वालों के गले को दबाया जा रहा है, ये तस्वीरों से सामने आया है। इन दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है और अब इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
2: 2 महिलाएं भी अभी गिरफ्तार की गई है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन ये बड़ी खबर है आपकी, गैंगस्टर एक्ट के तहत इस मामले में कार्रवाई होगी। लखनऊ पुलिस नगर निगम की टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, चेकिंग करने के लिए लगातार पहुंच रही थी, और इसी कड़ी में जब यहां पहुंचे तो इस इलाके में पुलिस की टीम पर और नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और अब एक एक करके कार्रवाई हो गई। 4 गिरफ्तार कर लिए गए और 12 इस समय फरार चल रहा है। और इस मामले से जुड़ी भी एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, पुलिस प्रशासन जल्द ही हमलावरों के घरों पर बुलडोजर भी चला सकती है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड कर रही है, इस बीच में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है।
1: पुलिस टीम पर हमले का ये मामला जिसमें अब फुल स्पीड पर काम हो रहा है, क्योंकि एक बड़ी घटना हुई है जिसमें पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया गया। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां पर नगर निगम और पुलिस टीम का ज्वाइंट एक्शन होना था इन डेयरी वालों के खिलाफ, लेकिन वहां इन डेयरी वालों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया।
2: और 1:11 में अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: और जिन में कार्यक्रम हुआ था, जहां जिन लोगों ने हमला किया था स्वागत की होता थी, चिदंबरम साहब आप देश के अपने ही मंत्री है रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई एडवोकेट है, कानून समझते हैं, आप संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा आते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। सीधा मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है, उसी का चेहरा बने हैं पिकर चिदंबर।
6: पुली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: We are with you, friends.
1: एक शहर जिसकी पहचान कांच की चूड़ियों से है, लेकिन फिरोजाबाद की कहानी अब सिर्फ चूड़ियों तक सीमित नहीं है। यहाँ कांच से बने उत्पाद दुनिया के 100 से ज्यादा देशों तक पहुँच रहे हैं, यूरोप से अमेरिका तक, जर्मनी से जापान तक। और इस बदलती तस्वीर के पीछे है फिरोजाबाद का सदियों पुराना हुनर और ODOP यानी एक जनपद एक उत्पाद का नया सहारा। फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ चूड़ियाँ नहीं बनती, कांच के सजावटी सामान से लेकर अलग अलग तरह के क्लास प्रोडक्ट तैयार होते हैं और इनमें से कई उत्पाद विदेशों तक पहुंचते हैं। ODOP के तहत जब फिरोजाबाद के कांच उद्योग को विशेष पहचान मिली तो सरकार की तरफ से कारोबारियों को लोन, सब्सिडी, प्रशिक्षण और तकनीकी मदद जैसी सुविधाएं मिलने लगी, यानी पुराना हुनर, नई तकनीक और बड़ा बाजार।
2: ODOP से जो हमें सबसे बड़ा फायदा मिला वो ये है कि जो हमें बैंक से सब्सिडी मिली, मतलब जिला उद्योग केंद्र से, और वो उतने पीरियड का इंटरेस्ट फ्री लोन मिला।
1: सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ODOP प्रशिक्षण योजना के तहत 1,778 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 5,550 लाभार्थियों को फायदा मिला। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले 12 वर्षों में अलग अलग सरकारी योजनाओं के जरिए करीब 11,000 से ज्यादा लाभार्थियों तक सहायता पहुंचने का दावा किया गया है। इनमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के 624 लाभार्थी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के 1,996 लाभार्थी और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के 627 लाभार्थी शामिल हैं।
3: पहले से मतलब बेहतर, यहाँ काम भी मिलता है, अच्छा भी लगता है और काम करने में मन भी लगता है, और इससे मतलब इधर उधर जाने की कोई मतलब तकलीफ नहीं हुई मुझे।
1: ODOP ने इस विरासत को सब्सिडी से सहारा, तकनीक से रफ्तार और ग्लोबल मार्केट से नई पहचान देने की कोशिश की है। कभी जिसकी पहचान सिर्फ चूड़ियों के शहर के तौर पर होती थी, आज वही फिरोजाबाद कांच के कारोबार की ग्लोबल पहचान बनने की तरफ बढ़ रहा है।

0: बीजेपी ने घोषित किए चुनावी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी। विनोद तावड़े को मिली यूपी की जिम्मेदारी। पंजाब के सतीश पुनिया और गुजरात के प्रभारी तरुण चुग होंगे। तत्काल प्रभाव से नियुक्तियां हुई लागू। लखनऊ में अवैध डेयरी के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस पर हुए अटैक के बाद प्रशासन का एक्शन। हमलावरों का अति कनेक्शन आया सामने। लगेगा गैंगस्टर एक्ट, चल सकता है बुलडोजर। झारखंड में डीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होने के बाद 2250 लोगों की नौकरी रद्द और फैसले से प्रभावित लोगों का विरोध। आंदोलनकारियों ने अनशन तोड़कर जश्न मनाया। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी सीखने की 100 दिन की डेडलाइन आज खत्म। लाइसेंस परमिट रद्द करने के सरकारी ऐलान से हड़कंप। मियादी एक्शन पर कल परिवहन विभाग की बैठक। जंतर मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया हलफनामा का। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं हुआ। 30,000 लोगों पर थी 5,000 पुलिस। प्रदर्शनकारियों में शामिल थे असामाजिक तत्व।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में जो बवाल मचा उसकी बात करेंगे। लखनऊ में पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला हुआ है। अब इस केस में फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। केस में लगभग एक दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक 2 महिलाओं को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बाकी आरोपियों की धरपकड़ में अब लगी हुई है। कोशिशें तेज हैं। दरअसल सोमवार को यूपी की राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके में नगर निगम की टीम पुलिस वालों के साथ गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, वहां पर पहुंची थी। इसी दौरान 20 से 25 लोगों ने नगर निगम और पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। आरोपियों ने टीम पर धारदार हथियारों से हमला किया। इस दौरान एक तस्वीर में आरोपी दरोगा की गर्दन दबाते नजर आ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि इसी दौरान एक महिला ने लोहे की जंजीर से दरोगा के सिर पर वार भी किया, जिसमें उन्हें चोट आई है।
2: मौके पर आज पुलिस पहुंची है। लगातार डेयरियों पर कार्रवाई हो रही है। आप देखिए तो भैंसों को धर पकड़ करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर गाड़ी है उसमें सभी भैंसों को ले जाया जा रहा है। ये कार्रवाई अवैध डेयरी पर आप पुलिस जो है वो मौजूद है। साथ ही साथ जो डेरिया उन पर कार्रवाई हो रही है। और ऐसे में ये सभी देख सकते हैं, ये जो आप कार्रवाई है जो के खिलाफ की जा रही है। और सभी जो आरोपी हैं वो इस दिशा में ये घर जो है आप पाएंगे। घर ये सारे घर हैं जहाँ पर ये अवैध डेरिया चल रही थी। और इन्हीं डेरियों में वो सभी शख्स जो है वो मौजूद थे, रहते थे। और उसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस के जितने भी जवान हैं वो नगर निगम के जवान वो सभी मौजूद हैं। और ये कार्रवाई कर रहे हैं कि सभी थानों की फोर्स को मौके पर लाया गया है।
0: अब बड़ी खबर आपको देते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी भी बड़ी खबर। एसआईटी के रिपोर्ट में किसको क्लीन चिट मिली है, किसको नहीं, इस बारे में ये बड़ी खबर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये बहुत बड़ी खबर है, जिसमें चंपत राय को क्लीन चिट दी गई है। एसआईटी की रिपोर्ट है। इस एसआईटी की रिपोर्ट में 8 आरोपियों के नाम है, लेकिन अनिल मिश्रा, चंपत राय जो कि ट्रस्ट के मेंबर थे, उन्हें क्लीन चिट दी गई है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई है। और इसमें अनुकल्प मिश्रा, इसमें अविनाश, ये तमाम जो है वो आरोपी हैं। लेकिन क्लीन चिट मिली है अनिल मिश्रा को, चंपत राय को। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस खबर पर हमारे साथ हैं। कुमार अभिषेक, यानी कि जो ट्रस्ट के सदस्य थे उनकी कोई मतलब कोई भी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और ट्रस्ट की रिपोर्ट क्या क्या कह रही है, एसआईटी की रिपोर्ट क्या कह रही है?
3: देखिए, जो शुरुआती जानकारी सोर्सेज से निकल करके आई है वो ये कि होम डिपार्टमेंट ने वो 3 सदस्यीय जो एसआईटी रिपोर्ट थी उसे उन्होंने सौंप दिया है ट्रस्ट को। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट के कहने पर ये जांच चल रही थी, इसलिए ट्रस्ट को ही ये रिपोर्ट सौंपी गई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक इसमें अक्यूज के तौर पर कहीं भी चंपत राय या फिर अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। वही आठ लोग अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर पिन्नू, इन्हें ही आरोपी माना गया है। और माना गया है कि जिन लोगों ने चोरी की है, जो चोरी करते कैमरे में पकड़े गए हैं, वही आरोपी हैं। फिलहाल चंपत राय और अनिल मिश्रा का किसी भी तरीके से आरोपी के तौर पर इसमें कहीं नाम दर्ज नहीं है, इसलिए माना यह जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि इन्हें एक तरीके से क्लीन चिट इस मामले में मिल गई है। अभी आगे देखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक और एसआईटी की बात कही है जिसमें आईपीएस को रख करके ही आगे रख करके जांच करने की बात की है, तो आगे क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन जो शुरुआती पहली एसआईटी रिपोर्ट थी सूत्रों के मुताबिक वो सौंप दी गई है और उसमें दोनों के नाम नहीं।
0: जी कुमार अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब दिल्ली के बुराड़ी की बात करेंगे। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पुलिस ने सूटकेस एक नाबालिग युवती का शव मिलने से वहां सनसनी मच गई है। दरअसल नाइट पेट्रोलिंग के दौरान एक युवक की संदिग्ध गतिविधियों की वजह से पुलिस ने उससे पूछताछ की तो मर्डर केस का ही खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक युवक ने अपनी चचेरी बहन की हत्या की थी। उसका शव सूटकेस में बंद करके ठिकाने लगाने की वो फिराक में था, लेकिन शव फेंक कर जाते वक्त पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को बताया कि ये युवक जो है उसकी चचेरी बहन ही थी और उस पर इस शख्स को प्रेम प्रसंग का शक था और इसीलिए उसने अपनी ही चचेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया।
4: बुराड़ी थाना पुलिस ने कत्ल के एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें कहीं कोई शिकायत ही नहीं थी, लेकिन पुलिस को एक जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर अविनाश नाम के एक लड़के को उठाया, उससे पूछताछ की तो पता चला कि अविनाश ने रविवार रात अपनी चचेरी बहन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बॉडी को एक बैग के अंदर भरा और फिर तकरीबन 400 मीटर दूर जो मुकुंदपुर पार्ट 2 का इलाका है वहां झाड़ी में फेंक दिया था। पुलिस की टीम मौके पे पहुंची, बॉडी को बरामद किया, उसके बाद पुलिस ने अविनाश को गिरफ्तार कर लिया। अब उसने कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम क्यों दिया, इसके लिए उससे लगातार पूछताछ जारी है।
0: रिपोर्टर में आप अगली रिपोर्ट रांची से। झारखंड में सरकार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने से एसओ एएसओ समेत अलग अलग पदों पर कार्यरत 2250 उम्मीदवारों की नौकरी एक झटके में चली गई है। सीजीएल परीक्षा पास कर रहे, नौकरी कर रहे कई उम्मीदवार अब मंत्रालय से बाहर ही भारी बारिश में डटे हुए हैं। इनका आरोप है कि एक झटके में इनकी जिंदगी लूट गई है।
5: सर, कल तक हमारे पास एक जॉब थी, हमारा सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कल एक शाम को एक ऐसा न्यूज वायरल होता है, न्यूज आता है कैबिनेट का कि जेएसएससी सीजीएल की प्रक्रिया को पूरा रद्द कर दिया गया है, मतलब उससे जुड़े सारे कर्मचारी को खत्म कर दिया एक दिन।
6: कहीं ना कहीं सरकार को इस सब मामले में पहले सोचना चाहिए कि वैसे अभ्यर्थी जो पूरा जिंदगी, मतलब जब से वो तैयारी करते हुए उस स्थिति से बढ़ते हुए इस स्टेज पे आए हैं, अगर किसी को
7: निराश है,
6: पूर्ण रूप से निराश है और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए।
8: रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ दो सेंटर्स पे आंदोलन हो रहे थे और जैसे ही सरकार ने जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को रद्द करने की घोषणा की, टीडीपीएल द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की, देवेंद्र नाथ गुट ने इसे आंदोलन को वापस ले लिया, पोस्टपोन कर दिया, कहा कि रिफॉर्म्स के लिए फिर से स्ट्रगल करेंगे। यानी एक गुट मान गया लेकिन दूसरा गुट यानी रिफॉर्म्स मंच जो है वो नहीं माना। साथ ही साथ घोषणा की वजह से जिनकी नौकरियां गई अब उसमें नाराजगी है, तो जाहिर तौर पे सोरेन सरकार की मुश्किलें कम होते नहीं दिख रही है। दूसरा गुट जो है वो सीबीआई जांच को लेकर अड़ा हुआ है और ये आरोप लगा रहा है कि एक मांग तो मानी गई यानी सीजीएल रद्द करने की मांग, लेकिन दूसरी मांग नहीं मानी गई। तो जाहिर तौर पे एक गुट माना एक गुट नहीं माना, दूसरी तरफ जिन्होंने नौकरियां खोई हैं उनके अंदर जबरदस्त नाराजगी है। तो जाहिर तौर पे हर तरह से सरकार अभी भी कहीं ना कहीं सरकार दबाव में दिखती है।
0: इससे पहले कल झारखंड सरकार ने छात्रों की एक अहम मांग मानी थी। TDPL के जरिए आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं को हेमंत सोरेन सरकार ने रद्द करने का ऐलान कर दिया था। अब इसी एजेंसी ने JSSC CAGL की परीक्षा भी करवाई थी, जिस पर धांधली के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और अन्य छात्रों ने अपना अनशन खत्म कर आंदोलन को खत्म कर दिया। हालांकि रांची स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों ने अब तक अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है। इन छात्रों का कहना है कि गड़बड़ियों की CBI जांच कराने की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए 16 दिनों से अनशन पर बैठे थे देवेंद्र महतो। कल सोरेन सरकार के ऐलान के बाद से उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है।
7: इस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आज हम सरकार ने जो दिल दिखाया, इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: 2027 में यूपी, पंजाब और गुजरात में चुनाव हैं और उससे पहले बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए चुनावी प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। विनोद तावड़ो को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, सतीश पुनिया को पंजाब का, तो चरण चुग को गुजरात का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो 3 राज्यों के लिए बीजेपी ने प्रदेश प्रभारियों का ऐलान किया है, सह प्रभारी का ऐलान किया है, जहां पंजाब प्रदेश का प्रभारी सतीश पुनिया को बनाया गया है, तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है, तो विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। तो ये 3 बड़े फेस, 3 बड़े चेहरे हैं जिनको ये प्रभारी बनाया गया। कल ही नितिन नवीन की टीम का ऐलान हुआ और उसके बाद आज 3 बड़े नाम जो कि प्रभारी बनाए गए हैं। विनोद तावड़े सीनियर लीडर है, महाराष्ट्र से आते हैं और उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया, तो तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। इन तीनों ही प्रदेशों में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। तो 3 राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति से पहले कल बीजेपी की नई टीम का भी ऐलान किया गया। बीजेपी की नई टीम में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में स्मृति ईरानी की वापसी हुई है। विनोद तावड़े को महामंत्री फिर से बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में भारी विजय दिलाने वाले सुनील बंसल को दोबारा महामंत्री का पद सौंपा गया है। आदिवासी समाज के गजेंद्र पटेल को भी महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राम माधव उपाध्यक्ष बनाए गए। अब 3 पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत और बिप्लब देव को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया। वहीं नितिन नवीन की नई टीम में बीजेपी के IT सेल हेड रहे अमित मालवीया को हटा दिया गया, उनको जगह नहीं मिली। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक भस्के को नया IT सेल प्रमुख बनाया गया है। नितिन नवीन ने इस बदलाव को भविष्य का बदलाव करार दिया।
9: नितिन नवीन की नई टीम में 2027 में होने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों को बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। उत्तर प्रदेश से 8, गुजरात और उत्तराखंड से 4 और पंजाब से 2, यानी कि इन 4 राज्यों से 18 नए चेहरों को टीम में जगह मिली है। लेकिन वहीं गोवा, मणिपुर और हिमाचल से किसी को इस नई टीम में जगह नहीं मिली। कैमरामैन अजय कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अभी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम को लेकर विवाद थमा नहीं था कि अब गोवा में कांग्रेस कार्यक्रम में वंदे मातरम को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस के कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के केवल 2 पैराग्राफ गाए गए। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर मौजूद थे, इसके बावजूद वंदे मातरम के सिर्फ 2 शुरुआती अंतरों को गाया गया। इसे लेकर एक बार फिर से राजनीतिक बहस का माहौल गर्मा गया है।
10: वंदे मातरम पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दरअसल कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में भी गोवा के अंदर एक कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के मात्र 2 छंद ही गाए गए। इससे पहले 15 अगस्त को पार्टी के मुख्यालय पर भी राष्ट्रगीत को रोकने पर विवाद हो गया था, जिसके बाद से लगातार बीजेपी हमलावर है। गोवा के कार्यक्रम के दौरान ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि जब वो पहली बार विधायक बन गए थे तब अमित शाह बच्चे थे और ऐसे में वो उनको देशभक्ति का पाठ ना सिखाएं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कल गोवा के कार्यक्रम में दो छंद गाए जाने के बाद पार्टी ने ये तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में भी वो राष्ट्रगीत के दो छंद ही गाएंगे, जैसा पार्टी का कहना है वो पिछले तकरीबन 90 साल से कर रही है।
0: तो दिल्ली में जो कुछ हुआ कांग्रेस उसे गलती बता रही, लेकिन अब गोवा में जो हुआ इस पर कांग्रेस स्पष्टीकरण की उम्मीद है। वंदे मातरम विवाद में कांग्रेस पर बीजेपी के हमलों का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोला है, तंज कसा है। गोवा में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब मैं पहली बार एमएलए बना था तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं, और उसी गोवा के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ दो ही स्टैंजा गाए गए। 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो पटना के एक अस्पताल में किसी से मिलने के लिए पहुंचे थे, तो वहां पर मौजूद लोगों की भीड़ ने गर्म जोशी से उनका स्वागत किया और भीड़ में किसी ने आवाज लगाई, बिहार आपको बहुत मिस करा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, तो ये नीतीश कुमार को देखकर लोगों ने ये नारे लगा दिए कि बिहार आपको बहुत मिस कर रहा है नीतीश जी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
11: जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेदांता हॉस्पिटल में नीतीश चाचा आ चुके हैं एंट्री मारने।
12: बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा चले गए हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। नीतीश कुमार को लोग अभी भी मिस कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में नीतीश कुमार से लोग कहते नजर आ रहे हैं कि वो उन्हें मिस कर रहे हैं। नीतीश कुमार अब अक्टूबर महीने से बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा भी कर सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि नीतीश कुमार से लोग मिलना चाहते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि वो उनके बीच जिला स्तर पर जाएं। नीतीश कुमार और संजय झा की आज मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात में आगे के प्लान की तैयारी पर चर्चा भी हुई है।
0: भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा मौत मामले की हम बात करें, जहां संदिग्ध मौत केस में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब क्या है इस चार्जशीट में बड़ी बातें, इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवीश पाल सिंह।
13: भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा की मौत मामले में सीबीआई ने आखिरकार अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सीबीआई ने चार्जशीट पेश करते हुए दोनों प्रमुख आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह पर गंभीर धाराएं लगाई हैं। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि ट्विशा को गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह इस हद तक मानसिक प्रताड़ित कर चुके थे कि उसके पास सिवाय आत्महत्या के कोई और चारा नहीं रह गया था। इसके अलावा सीबीआई ने अपनी जांच में यह भी पाया है कि सिर्फ ट्विशा ही नहीं बल्कि गिरिबाला सिंह के बड़े बेटे की बहू भी इसी तरीके की प्रताड़ना से तंग आकर के घर छोड़कर जा चुकी है। सीबीआई की जांच में इस बात के भी खुलासे हुए हैं कि ट्विशा लगातार उसके साथ हो रहे इस मानसिक प्रताड़ना की जानकारी अपने परिवार को भी दे रही थी। सिर्फ यही नहीं, सीबीआई के हाथ ऐसे कई व्हाट्सएप चैट्स भी लगे हैं जिससे ये साफ हो रहा है कि ना केवल ट्विशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था बल्कि समर्थ सिंह ट्विशा के साथ बेहद ही अशोभनीय व्यवहार भी करता था, और इन तमाम परेशानियों के बाद ही आखिरकार ट्विशा ने मौत को गले लगा लिया।
0: अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पर गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए दी गई 100 दिनों की समय सीमा खत्म हो गई। महाराष्ट्र के परिवहन विभाग के मुताबिक अब जो ड्राइवर मराठी नहीं बोल पाएंगे उनका लाइसेंस उनका परमिट रद्द किया जाएगा। हालांकि रिक्शा और टैक्सी यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर एक भी लाइसेंस आपने रद्द किया तो वो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ऑटो टैक्सी यूनियन सरकार से मराठी सीखने के लिए 100 दिनों का और समय मांग रही है।
14: महाराष्ट्र सरकार द्वारा टैक्सी और रिक्शा चालकों को मराठी सीखने के लिए 100 दिन की अवधि दी गई थी जो समाप्त हो गई है। आज से महाराष्ट्र सरकार जो टैक्सी और रिक्शा चालक मराठी नहीं बोल पा रहे थे उन पर कार्रवाई शुरू करने वाली थी, लेकिन कई संस्थानों ने और उनके यूनियंस ने सरकार से मांग की कि उनको और समय बढ़ाकर दिया जाए ताकि वो मराठी सीख सके, जिसको लेकर कल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक अहम बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं चालक, उन पर कार्रवाई की जाए या और समय सीमा बढ़ाकर दी जाए ताकि वो मराठी सीख सके, और अगर कार्रवाई की जाए तो कार्रवाई का स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर कल एक अहम बैठक होगी, जिसके बाद महाराष्ट्र में टैक्सी और रिक्शा चलाने वालों जो चालक है वो मराठी नहीं बोल पाते तब क्या कदम सरकार उठाएगी, इस पर फैसला लिया जाएगा।
0: और अब खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई, जिन्होंने भारतीय आईडी कार्ड का जिक्र करते हुए बयान दिया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में अमेरिकी प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका में बिना वैध फोटो पहचान पत्र के चुनाव कैसे हो सकता है। अब इसका हवाला देते हुए ट्रंप ने चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के लिए हर अमेरिकी वोटर के लिए फोटो आईडी अनिवार्य करने की बात कही है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा है, कहा भारत में हाल ही में हुए आम चुनावों में 1% से भी कम वोटर्स ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया था, हर वोटर के पास वैध फोटो पहचान पत्र था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बातें सेव अमेरिका एक्ट के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से कही।
15: भारत के अंदर तो एसआईआर को लेके एक युद्ध छिड़ गया था, एक तरफ विपक्षी पार्टियां थी तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, लेकिन जिस तरीके से एसआईआर किया गया उसकी सराहना अब यूएस के अंदर हो रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में एसआईआर हुआ, जिस तरह से दस्तावेज मांगे गए और अब मेक श्योर किया जा रहा है कि सिर्फ हिंदुस्तानी लोग ही वोट कर सके, उसी तरीके से अब यूएस के अंदर भी एसआईआर होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन का एक एग्जाम्पल दिया, जो सीईसी है उनका एग्जाम्पल दिया ज्ञानेश कुमार का, और कहा कि जिस तरीके से सीईसी ने एसआईआर की मुहिम चलाई अब यूएस के अंदर भी एक मुहिम चलनी चाहिए और लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि सिर्फ अमेरिकन नागरिक ही अमेरिका के अंदर वोट दे सके। जो सेव एक्ट डोनाल्ड ट्रंप जिसकी बात करते हैं बार बार, एक बार फिर से उसकी मुहिम उन्होंने चालू करी है और उन्होंने ये कहा है कि एसआईआर को रिपीट करना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में।
0: अब आज श्रीलंका के खिलाफ गोल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की, टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया की पहली पारी लड़खड़ा सी गई है। लंच तक भारत ने 116 रन पर 4 विकेट खो दिए। हालांकि पहली पारी में बढ़त के आधार पर भारत की कुल लीड 294 रनों की हो गई है। इससे पहले कल भारत ने मानव सुथार और रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी देखी और उसी की बदौलत श्रीलंका की पहली पारी में उसे 284 रनों पर समेट दिया था।
16: भारतीय टीम इस वक्त श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए पहुंची और अगर हम पहले टेस्ट मैच की बात करें तो यहां फिरकी के फनकार मानव सुथार का जलवा फिर से देखने के लिए मिला। आप सबको याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ मानव सुथार ने टेस्ट में डेब्यू किया था, 7 विकेट चमकाए थे और यही नतीजा था कि सिलेक्टर्स ने भरोसा दिखाया मानव सुथार के ऊपर में और मौका दिया श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट मैच में खेलने का। पहले इनिंग में मानव सुथार ने 4 विकेट लिए और श्रीलंकाई बल्लेबाजों के पास मानव सुथार की गेंदबाजी का कोई उत्तर नहीं था। जिस तरीके की सटीक लाइन लेंथ, जिस तरीके का सटीक टर्न और जिस तरीके की फ्लाइट मानव सुथार इस वक्त दे रहे हैं श्रीलंका के अंदर में, वो श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए किसी कहर से नहीं है। मानव की गेंदबाजी का कोई भी आंसर या उत्तर श्रीलंका के बल्लेबाजों के सामने नहीं था। नतीजा यह हुआ कि मानव सुथार ने पहली इनिंग में 4 विकेट लिए और अब देखना यह होगा कि जब दूसरी इनिंग में मानव सुथार आते हैं तो कितने विकेट चटकाते हैं। पूरी उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरीके का प्रदर्शन अभी तक मानव सुथार करते आए हैं वो बदस्तूर जारी रहेगा।
0: अब खबर वाराणसी की है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसी वजह से अब गंगा आरती की जगह को घाट से ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है और पूरी खबर बता रहे हैं रोशन जायसवाल।
17: आज तीसरे दिन भी वाराणसी में गंगा के बढ़ते जल स्तर का क्रम जारी है, लेकिन राहत की खबर यह है कि जहां 7 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ोतरी जारी थी तो अब बढ़ोतरी घटकर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रह गई है। वाराणसी में केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड रिपोर्ट की बुलेटिन के मुताबिक अभी भी 4.5 मीटर चेतावनी बिंदु से तो 5.5 मीटर खतरे के निशान के नीचे गंगा बह रही है। माना जा रहा है कि अगर गंगा के जलस्तर में यूं ही बढ़ोतरी जारी रही तो दिक्कत और बढ़ेगी। फिलहाल तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, या यहाँ रोजी रोटी चलाने वाले हों या गंगा आरती करने वाले आस्थावान हों, लगातार अपने साजो सामान को ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं और आज 5वीं बार दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती भी पीछे शिफ्ट होगी। माना जा रहा है कि यह आरती आज छठ पर होगी, तो लगातार गंगा के जो बढ़ते जलस्तर से लोगों की दुश्वारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं और माना जा रहा है कि अगर यूं ही गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ेंगी।
0: बाद प्रयागराज के जहां पर भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों के साथ साथ पुलिस स्टेशन तक में बारिश का पानी घुस गया है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में भी पानी भरा हुआ है। पुलिसकर्मी जूते उतारकर वहां टहलते नजर आए। वहीं रात को हुई बारिश के चलते लोगों के घरों में भी ये बारिश का पानी घुसा है। लोग इससे परेशान हैं। आप देखिए पुलिस थाने की तस्वीरें। ये तस्वीर है प्रयागराज और प्रयागराज में जॉर्ज टाउन थाने की तस्वीर देखिए। आज सर तरफ पानी भरा हुआ है। पुलिस वाले भी जूते उतारकर भीतर गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल क्या ही है।
18: प्रयागराज में कल रात से हुई बारिश के बाद अधिकतर इलाके जलमग्न हो गए हैं और आप हम जहां पर खड़े हैं ये प्रयागराज का जॉर्ज टाउन इलाका है। आप देखेंगे जॉर्ज टाउन इलाके में ना भी है, अब उस थाने में पानी भर गया है। कल रात से हुई बारिश के बाद हालात अधिकतर मोहल्ले बाढ़ के हालात जैसे झेल रहे हैं, वैसे ही प्रयागराज का ये जॉर्ज टाउन थाना भी है जहाँ पर आप देखिए पानी भर गया है। आप देखिए थाने के कर्मचारी अधिकतर बाहर खड़े हैं और उनका पांव भी डूब गया, जो जिसपे काम करते हैं उस काम करने वाली सीटों भी डूब गई है और अधिकतर आप देखेंगे थाने में पानी भर गया है। इसी तरह माल खाना कहा जाता है, माल खाने के अंदर पानी, यही थानेदार साहब का रूम है, उनके रूम तक में पानी घुस गया है और कर्मचारियों की यह हालत है। पुलिस कर्मचारियों को जूता उतार कर वो थाने के अंदर खड़े हैं और ये हालात कोई एक दिन का नहीं है, ये जब भी बारिश होती है इस तरह के हालात इस जॉर्ज टाउन थाने का देखने को मिलता है।
0: और रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

यूपी बीजेपी के प्रभारी बने विनोद तावड़े। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 3 राज्यों के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए। सीएम योगी का 2 दिवसीय दिल्ली का दौरा, कल दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी जापान इंडिया बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। सीएम योगी जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर में प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं को दिया संदेश। सीएम योगी बोले, माफिया प्रवृत्ति से युवा शक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान, युवाओं को बचाने के लिए खेल संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को निगल रहा है ड्रग्स और स्मार्टफोन का नशा, दोनों से दूर रहने की अपील। यूपी सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को अब वार्षिक कैलेंडर के तहत किया जाएगा समयबद्ध, योगी सरकार का यह फैसला। लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके में नगर निगम और पुलिस की टीम पर हमला, मामले में कार्रवाई तेज। पशु पकड़ने के लिए गई टीम पर आरोपियों ने पथराव कर दिया। पुलिस और नगर निगम कर्मचारियों पर हमले में आरोपियों का माफिया अतीक अहमद के साथ कनेक्शन आया सामने। पुलिस लगातार दबिश देकर तलाशी ले रही है। नगर निगम कर्मचारी और पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए, जिसमें 4 सरकारी वाहनों के शीशे भी तोड़े गए हैं। 2 महिलाएं गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भिंड में हुए सड़क हादसे में लखीमपुर के मजदूरों की मौत पर सीएम योगी ने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। प्रयागराज में बारिश का पानी थाने में भर गया, साथ ही अंडरपास में भी घुटनों से ज्यादा पानी भरा दिखा। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते 1 से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश किया गया घोषित। यूपी में बारिश ने रोकी पढ़ाई, भदोही में 12वीं तक के स्कूल बंद। वाराणसी में छत पर ही गंगा की आरती और गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते लिया गया निर्णय, नाव संचालन पर भी रोक। यूपी के झांसी में रोडवेज बस ने राहगीर को कुचल दिया, युवक की हालत गंभीर, घटना सीसीटीवी में कैद। बिजनौर के एक मंदिर में सत्संग भवन में भीषण आग लगी, बाजार में भी अफरा तफरी, धधकती लपटों के बीच में जान बचाकर भागते दिखे लोग। आसमान को छूटी नजर आई आके लपटे, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची, मोर्चा संभाला। मेरठ के एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया मुस्लिम युवक, हिंदू संगठनों का लव जिहाद का आरोप। संभल में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, रसगुल्ले बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी, नकली दूध पनीर का इस्तेमाल करके माल किया जा रहा था तैयार। गोंडा में बुरके में डांस कराने वाले स्कूल किया गया सील, जांच में बिना मान्यता के संचालित हो रहा था यह विद्यालय। मुजफ्फरनगर में कर्मचारी हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलस गया, मौके पर ही मौत भी। झांसी में चेन स्नैचिंग में 2 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया सामान। अयोध्या के अरुण कुमार सोने विशाल कावड़ में बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा लेकर आकर्षण का केंद्र बने हैं, चश्मा मुकुट और पगड़ी से सजे दिखे इसमें भोलेनाथ। जौनपुर में कावड़ियों पर फूलों की बारिश और करशूलनाथ महादेव मंदिर में खास नजारा, हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं।

0: और अब उत्तर प्रदेश से आज की बड़ी खबर आपको देते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने 3 सदस्यीय SIT जांच रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, इस जांच रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम आरोपियों के तौर पर शामिल नहीं है। सिर्फ चोरी करने वाले 8 लोगों को ही पूरे मामले का आरोपी माना गया है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को इसमें आरोपी माना गया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा जांच होने के बाद से उन्होंने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था। अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 सदस्यीय SIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई थी और बड़ी खबर यह है कि इन दोनों को क्लीन चिट मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, अब सूत्र और क्या बता रहे हैं, SIT को इस जांच में और क्या क्या मिला है?
1: देखिए राजीव, ये रिपोर्ट कल देर शाम सौंप दी गई है ट्रस्ट को, के कहने पर ही SIT बनी थी, इसलिए होम डिपार्टमेंट ने जो 3 सदस्यीय ये SIT बनाई थी, इसकी रिपोर्ट सूत्रों से जानकारी आ रही है। उसके बता दी ये है कि अक्यूज के तौर पर न तो कोई जिक्र चंपत अनिल मिश्रा का है, हालांकि जिन को गिरफ्तार किया गया है जिन वो को पाया गया है रिपोर्ट में भी, इस रिपोर्ट की खासियत यही है, खास बात यही है।
0: कुमार अभिषेक, कुछ समस्या, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम आपके पास लौटते हैं। SIT रिपोर्ट में ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को एक तरीके से क्लीन चिट मिली है, हालांकि बहुत तरह के आरोप लग रहे थे उन पर कि उन्होंने जिम्मेदारी का सही से निर्वहन नहीं किया, लापरवाही बढ़ती गई, बहुत सारे ये भी सवाल पूछ रहे थे कि चाबिया टिन्नू यादव के पास कैसे आए, बहरहाल लेकिन उनको एक क्लीन चिट मिली। और हमारे साथ कुमार अभिषेक जुड़े ही हुए हैं। कुमार अभिषेक, अब सवाल यह है कि अब आगे क्या, अभी तो SIT की रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल गई, तो क्या फिर से उनकी वापसी संभव है क्या? संपर्क टूट गया है, तो ये बड़ी खबर है जो मिल रही है। पहले लब आगे बढ़ते हैं, यूपी में चुनाव है अगले साल 2027 में, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने पार्टी के स्तर पर बड़ी तैयारियां उत्तर प्रदेश में की हैं। चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने 3 राज्यों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इनमें बिहार के चुनाव प्रभारी रह चुके विनोद तावड़े को यूपी का भी प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन में गठित हुई नई टीम में यूपी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। तो बड़ी बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में 51 लोगों की टीम में सबसे ज्यादा 8 पदाधिकारी तो उत्तर प्रदेश से हैं। इनमें यूपी के अखिलेश की सियासत के PDF फॉर्मूले के कार्ड भी दिखाई दे रहे, क्योंकि 8 राष्ट्रीय महासचिवों में स्मृति ईरानी है और हरीश द्विवेदी दोनों यूपी की सियासत से हैं। इसके अलावा जिस यूपी की सियासत OBC वोट बैंक तय करता है, उस OBC मोर्चे की कमान अमरपाल मौर्य को सौंपी गई है। OBC के कुर्मी समुदाय से आने वाली रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो रेखा वर्मा को ये जिम्मेदारी है। वहीं इसी तरह राष्ट्रीय सचिव संगीता यादव भी OBC से आती हैं। दलित वोटों के लिए पश्चिमी यूपी के भोला सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, तो प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कुंवर बासित अली राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो यूपी में अखिलेश के PDA में पिछड़ा सबसे वर्ग है, ये बड़ा वर्ग भी है जिसके दारमोदार पर अखिलेश यादव सत्ता की सियासत करते रहे हैं, और उस PDA के पी को साधने की जिम्मेदारी बीजेपी ने इस बार अमरपाल मौर्य को दी है। जिस अमरपाल मौर्य के बारे में कहा जाता है कि संघ संगठन दोनों जगह पर उनकी जमीनी पकड़ है, साल 2000 में दिल्ली हरियाणा में जिला प्रचारक से काम शुरू करने वाले अमरपाल को मौर्य, कुशवाहा, शाक्य सैनी यानी कि गैर यादव OBC का बड़ा चेहरा माना जाता है, उमा भारती के PA रहे। अमरपाल 2019 से 2026 तक यूपी बीजेपी में प्रदेश महामंत्री रहे, काशी अवध क्षेत्र के प्रभारी रहे, बूथ स्तर तक काम किया है। प्रतापगढ़ के साधारण किसान परिवार से आने वाले सब्जी विक्रेता से लेकर सांसद तक का सफर करने वाले अमरपाल फरवरी 2024 में राज्यसभा के सदस्य बने थे। यूपी में चुनावों को लेकर एक तरफ बीजेपी ने अपनी सांगठनिक मोर्चेबंदी दुरुस्त कर ली है। अखिलेश यादव के पीडीए का मुकाबला करने के लिए बराबरी के नेता तैनात किए गए हैं और अब समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पर 5 एक्स्ट्रा परिवार जोड़ने के फॉर्मूले का टारगेट फिक्स किया। दरअसल समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक खबर है कि 2027 के चुनावों के लिए पार्टी ने बूथवार विशेष प्लान तैयार किया है। इसमें बूथ स्तरीय एजेंटों को हर बूथ पर 5 नए मतदाताओं को जोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ एसपी की यह बूथ रणनीति 2024 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर आधारित है, क्योंकि तब कांग्रेस एसपी गठबंधन 403 विधानसभा में से 224 पर आगे था और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 1,77,000 बूथ हैं। हर बूथ पर 5 परिवार ज्यादा जोड़ने का मतलब है औसतन 5 वोट के हिसाब से 44,25,000 वोट हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पार्टी मुख्यालय में हुई बैठकों में बार बार कार्यकर्ताओं से बूथ स्तरीय प्रबंधन, मतदाता सूची सत्यापन और विश्वसनीय बीएलएस नियुक्त करने को प्राथमिकता देने पर जोर दे रहे हैं।
2: चुनाव के 6 महीने से भी कम समय बचा है तो समाजवादी पार्टी बूथ पर, सेक्टरों पर, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर सभी नौजवान काम कर रहे हैं, बूथ कमेटियां ठीक की जा रही हैं, कोई वोट छूट तो नहीं गया है। एक एक घर जाकर के समाजवादी पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता और जो बूथ के अध्यक्ष हैं घरों में जाकर के पूछ रहे हैं, खासतौर से उन परिवारों में जरूर जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सताए हुए हैं, जिनकी किसी ने जमीन कब्जा कर ली, किसी के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख दिया, या उन नौजवानों का जिनका आरक्षण छीना है, जिनको नौकरी नहीं दी है, जो भी सरकार से पीड़ित है, उसके यहां भी हम लोग जाकर के बातचीत कर रहे हैं।
0: दरअसल यूपी में बीजेपी ने बूथ पालकों और पन्ना प्रमुखों की तैनाती करके अपनी रणनीति को मजबूत किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर अब भी विपक्ष को बढ़त है। दरअसल 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने लगभग 41.29% वोट हासिल किए और 255 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी को 32.06% वोट मिले और उसने 111 सीटें जीती, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 41.37% वोट मिले और सीटें 33 मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को 33.59% वोट और 37 सीटें मिली। कांग्रेस को इसमें 6 सीटें भी मिली।
3: आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है। वो एक तरफ उदार हिंदुत्व का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही है, एक तरफ वो केदारेश्वर महादेव मंदिर बना करके अपने आप को धर्म वाला व्यक्ति स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोज गाय के खिलाफ बयान देना, साधु संतों के प्रहसन में शामिल हो जाना, जहां बार बार मंदिर के चंदा चोरी के नाम पर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की चेष्टा करना, ये उनकी उसी पुरानी मजहब की तुष्टीकरण की रणनीति का हिस्सा है। वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि कैसे मुसलमानों को गोलबंद रखा जाए और हिंदुओं के भीतर जाति विभाजन किया जाए।
0: यूपी के चुनाव में पूर्वांचल की सियासत एक बार फिर अतीक अहमद के परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। खबर है कि अतीक अहमद के बेटे उमर को चुनाव लड़ाने की तैयारियां चल रही है और इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के अलावा अपना दल कमीरावादी के नेताओं की ओर से भी अतीक के परिवार से भेंट मुलाकात चल रही है।
4: यूपी की जमीन से अतीक अहमद का वजूद भले खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी सियासी वक्त अब भी नजर आती है। वरना अतीक अहमद के बेटे की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद जब उनके पुराने दलों के नेताओं ने दूरी बनाए रखी तो ओवैसी और पल्लवी पटेल जैसी पार्टियों ने खुलकर अतीक के परिवार से हमदर्दी दिखाई। वैसे समाजवादी पार्टी विधायक आर के वर्मा भी अतीक के घर पहुंचे थे, लेकिन चर्चा ओवैसी की पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं के दौरे को लेकर हो रही है।
5: अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद उनके दोनों बेटे कसारी मसारी जनाजे में शामिल हुए थे, लेकिन इन सारी बातों के बीच में एक बात ज्यादा चर्चे में है कि अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि वो लखनऊ जेल में है और ये कहा जा रहा है कि चुनावी मैदान में 2027 में उतर सकते हैं। अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो आप लोगों की क्या तैयारी है?
6: मान लीजिए अगर लड़ना चाहे या कुछ भी प्रस्ताव।
7: अब इस पे तो जो है हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर वो लड़ने का क्या इसमें प्रोसेस है, कोर्ट का क्या वो मामला है, अब क्योंकि अभी मामला विचाराधीन है, अब कोर्ट से उनको अगर ऐसा कोई वो मिलता आदेश मिलता है तो जो है चुनाव में तो उस पर हम लोग तैयार होंगे।
4: ओवैसी की पार्टी का कहना है कि अतीक अहमद आखिरी वक्त तक उनकी पार्टी के सदस्य थे। अतीक की बीवी शाइस्ता भी पार्टी की सदस्य है और अगर उनका परिवार प्रयागराज पश्चिम सीट से चुनाव लड़ने की हसरत दिखाता है तो पार्टी को खुशी होगी। उधर अतीक के परिवार से एक और राजनीतिक दल की नेता की मुलाकात को लेकर चर्चा है। दरअसल अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने भी अतीक अहमद की बहन के घर जाकर मुलाकात की है। इस दौरान पल्लवी पटेल ने अतीक अहमद के बेटे अहजम अहमद और अन्य परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शहर पश्चिमी प्रीतम पटेल समेत अन्य समर्थक भी मौजूद रहे।
5: तो फिलहाल अभी उमर अहमद की चुनाव लड़ने की कोई अटकलें तो हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर ओवैसी साहब के पार्टी से किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई। हालांकि ये महानगर अध्यक्ष कह रहे हैं कि चुनाव अगर वो लड़ेंगे उसका वेलकम है, हम लोग चाह भी रहे हैं कि वो चुनाव हमारी पार्टी से लड़े। फिलहाल कयासों का बाजार गर्म है, उमर किसकी तरफ जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। आनंदराज आज तक प्रयागराज।
0: अब यूपी में कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में सख्त कानून व्यवस्था का हवाला अक्सर मंचों से देते रहे, लेकिन अयोध्या के बुद्धेश्वर पारा इलाके में पुलिस की टीम पर ही हमला हो गया। नगर निगम के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए गई पुलिस की टीम पर महिला पुरुषों की भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया।
8: हत्या की कोशिश,
9: बना वीडियो,
8: लोहे की जंजीर से हमला, लहू लुहान पुलिस वाले, लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके में नगर निगम के ट्रक में चढ़ाई जा रही ये भैंसें उसी घटना की है जब अतिक्रमण हटाने गई टीम पर दो दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। हमलावर टीम में आगे महिलाएं थीं जो छेड़खानी के आरोप लगाते हुए लोहे की जंजीर से हमले कर रही थीं। पुरुष हमलावर सीधे पुलिस वालों की हत्या की कोशिश करने लगे थे। बुद्धेश्वर इलाके में नगर निगम की टीम गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चला रही थी। इसी इलाके में 148 भैंसों के साथ अवैध डेयरी चलाई जा रही थी। टीम जब वहां पहुंची तो भीड़ ने लाठी डंडे रॉड जंजीरों पत्थरों से उन पर हमला कर दिया, सरकारी वाहन तोड़ डाले, एक सब इंस्पेक्टर की गला दबाकर हत्या की कोशिश हुई। अधिक संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंचती तब तक आरोपी फरार हो गए। दो हमलावर महिलाओं समेत चार आरोपी गिरफ्तार हुए।
10: इन्होंने जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी है पुलिस के जवानों पे और पुलिस के एक इंस्पेक्टर पे कार्रवाई की है, मारा है, गला दबाया है, इनका तो सास

0: हो चुकी है। अवैध डेयरी में रखी गई भैंसों को नगर निगम ने जब्त कर लिया है और पुलिस कर्मियों की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में जिक्र है कि अवैध पशुओं को हटाने के दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला हुआ। हमले की गिरफ्तार आरोपी दो महिलाएं खुशबून और आफरीन हैं, जबकि अबरार इमरान, सालून, सुबिल, शराफत, आसिफ, अतीक, वारिस, नसीम, रानू, जेशान, नफीस के अलावा 10-12 अन्य आरोपी भी नामजद हैं। इनके खिलाफ BNS की धारा 191(3), 191(2), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 121(2), 132, 324(3) समेत लोक संपत्ति निवारण अधिनियम और CLA एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
1: इनके बुलडोजर भी चलाया जाएगा घरों पर, जिस तरीके से आवाज बनी उठा रही है,
2: बिल्कुल गलत कामों पे तुरंत कार्रवाई होगी। और ये भूल गए हैं, ये सपा सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये महाराज जी की सरकार है। आप अगर गलत है तो गलत है।
1: इनका संपर्क क्या के माफियाओं से भी रहा जो इस तरीके से मनोबल बढ़ाए और इस तरीके,
2: कोई भी हो, किसी का भी रिश्तेदार हो, किसी का भी रिश्तेदार हो, कानून के तहत कार्रवाई हो।
0: खबर है कि आरोपियों का अतीक अहमद के परिवार के साथ भी कोई कनेक्शन सामने आया है, लिहाजा हालात को नियंत्रण में रखने के लिए 5 थाने की फोर्स मौके पर मौजूद है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जो इस समय घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। आशीष, इस समय क्या हालात हैं? क्या बाकी आरोपी पकड़े गए हैं अभी तक या नहीं?
4: राजीव, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी आरोपी पकड़े नहीं गए, अभी फरार हैं आरोपी और उनको धरपकड़ की जा रही है। अगर मैं आपको अपने पीछे का एरिया दिखाऊंगा तो ये पूरा गद्दियाना एरिया है जहां पर ये सारी डेरियां हैं। हालांकि इतना ज़्यादा संकरा है कि मैं आगे जा नहीं सकता हूं, और वो क्योंकि एरिया भी इस तरीके से है क्योंकि डेरियां चारों तरफ मौजूद है। अब पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू की है, अब ऐसे में 4 लोगों को गिरफ्तार तो किया जा चुका है, लेकिन जो बाकी बचे हुए 12 लोग हैं जिसमें से मुख्य आरोपी भी है, वो भी अभी तक फरार है। और पुलिस की गर्दन दबाकर हत्या करना, उसके बाद उनकी जीपों को नष्ट करना, तोड़ना, पथराव करना, ये सभी चीजें की, क्योंकि ये पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो ये गद्याना एरिया है और यहाँ पर ही पूरी तरीके से जो ये रहते हैं, यानी कि जितने भी डेरी संचालक हैं उस एरिया में भी रहते हैं,
3: उसी तरह का इलाका देखें। लेकिन अब ये बताया आशीष, और बुलडोजर एक्शन की बात हो रही थी, क्या वो एक्शन उस दिशा में कोई कार्रवाई हो सकती है, हो रही है?
4: बिल्कुल राजीव, बुलडोजर एक्शन चलाया जाएगा क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि प्रशासन अब नपाई की तैयारी कर रहा है और वो उन डेरियों के संचालन पे किस एरिया में मकान बने हुए, कितने एरिया में संचालन किया जा रहा है, अवैध डेरियों को चिन्हित किया जा रहा है और प्रशासन इस पे जल्द ही, यानी कि आज से कल तक बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है, जो हमें सूत्रों से जानकारी लगी है। तो ये तो जरूर है कि जो आरोपी फरार है उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई, इसके साथ प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई, ये सभी कार्रवाइयां की जा रही हैं और लगातार, क्योंकि पुलिस के जैसा मामला है सामने आया है और पुलिस के जिस तरीके से मारा गया है उसको लेकर ये पूरी तरीके से एक बाल कहीं चैलेंज किया गया, इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से उन सभी जो आरोपी है उनको तलाश भी कर रही है। अलग अलग टीमें बनी हैं, तकरीबन अब इस समय भी चारों तरफ जो पुलिस है उनको तलाश कर रही है,
3: लोगों से आशीष आप बता रहे हैं कि पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही है। लेकिन इस बीच में अतीक कनेक्शन का भी नाम सामने आ रहा है कि कनेक्शन निकल रहा है, अतीक के साथ किस तरह का कनेक्शन दिख रहा है इन आरोपियों का, पुलिस क्या बोल रहे हैं?
4: राजीव, देखिए क्योंकि जिस तरीके से लोग रहते हैं, ये प्रतापगढ़ से लेकर इलाहाबाद, प्रयागराज, यानी कि लखनऊ, इन सभी से कनेक्शन, और गद्दी जो कि माफिया अतीक अहमद था ऑलरेडी और कहीं ना कहीं उन्हीं के जो गुर्गे हैं उनके कनेक्शन में ये लोग रहे हैं, उनसे बातचीत करते रहे और इसी वजह से जब भी यहाँ कुछ होता था हमेशा दबदबे की बात करते रहते थे। चूँकि ये सारा जो डेयरी संचालक है वो सब गद्दी है यहाँ पर, और इसी वजह से माफिया अतीक अहमद भी गद्दी था, तो इनका एक दूर का कनेक्शन भी समझ में आ रहा है और लोग दबे पाँव से इसको बता रहे हैं, चूँकि कोई कैमरे पर खुल के नहीं बोल है और पुलिस भी उस दिशा में अब कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है कि कौन कौन इसमें, और ऐसा तो हिस्ट्री सीटर नहीं है, कहीं कोई ऐसा बड़ा क्रिमिनल तो नहीं मौजूद है, क्योंकि अब पुलिस सभी की हिस्ट्री सीट भी खोल रही है, सभी की जानकारी कर रही है और ज्यादातर जो आरोपी है वो अभी बताया जा रहा है कि लखनऊ के बाहर फरार हो गए हैं और पुलिस अब अलग अलग दिशा में उनकी छानबीन कर रही है। तो कहीं ना कहीं बड़े मामला था जिसमें पुलिस को हत्या जैसी मामली थी सुनियोजित
3: एक हत्या। आप ये बताएं कि क्या ये एकमात्र इलाका है जहां पर इस तरह से अवैध डेयरियां चल रही हैं, और भी इलाके हैं और क्या वहां भी कार्रवाई हो सकती है?
4: देखिए ये बुद्धेश

0: पारा का जो इलाका है वहां पर कई दो चार ऐसी कॉलोनियां जहां पर सैकड़ों परिवार रहते हैं, और उन परिवारों में ये गद्दियों का काम होता है, यानी कि डेयरियों का। अब ये डेयरियां मकानों में चल रही हैं, बाहर भी चल रही हैं, जैसा आपने मेरे तस्वीरों में पीछे देखा कि ज्यादातर डेयरियां गोबर सब कुछ आपको पीछे देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये वजह ये है कि ये सब घरों में भी चल रही है। तो वही नगर निगम जानता है कि ये इलीगल चल रही है, तो इलीगल अगर चल रही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, यही नगर निगम का कहना है। इसी वजह से पूरे इस एरिया में तकरीबन मान के चलिए 4 से 5 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें अलग अलग एरिया में ये बड़ी बड़ी डेयरिया और बड़े बड़े संचालन चल रहे हैं, जो भैंसों को अंदर रखा जाता। कई तो ऐसे थे जब छापेमारी की गई तो बेडरूम में भैंसों को छुपा दिया गया, ऐसी भी सिचुएशन सामने आई।
1: आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
1: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
0: नहीं सर।
1: 12th किससे की हो?
0: 12th सर मेरा PCM से रहा।
1: कंपाउंड क्या होता
0: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
1: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
0: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को। इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
1: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: JK Super Cement. Build strong. लखनऊ की दुबग्गा रोड, पालागंज चौराहा और सड़क को घेर कर बैठी छात्राएं, ट्रैफिक रुका, चक्का जाम हुआ और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ यूपी की राजधानी में सड़क पर उतर आया जेएन अल्फा। हमारी पढ़ाई कैसे होगी? 6 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है, लेकिन स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, साइंस के बच्चों की सबसे ज्यादा परेशानी है। फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं है। 6 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है, लेकिन जिन बच्चों को किताबों में सवालों के जवाब तलाशने चाहिए, वो आज सड़क पर अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी साइंस के विद्यार्थियों की है, स्कूल में फिजिक्स और बायोलॉजी के शिक्षक नहीं है। ऐसे हालात में छात्राओं की पढ़ाई कैसे होगी? अब यूपी का समाज कल्याण विभाग ही बताए कि पढ़ाई कैसे होगी। क्या यूपी के स्कूली छात्रों के सिलेबस में ये भी शामिल हो गया है कि मूलभूत सुविधाओं, शिक्षकों और बेहतर शिक्षा के लिए पहले आंदोलन करना होगा, तभी समाधान मिलेगा। हमारी बात कई बार अधिकारियों तक पहुंचाई गई, आश्वासन भी मिला, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये छात्राएं लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की। इस स्कूल को यूपी का समाज कल्याण विभाग चलाता है। सोमवार की सुबह सैकड़ों छात्राएं स्कूल की बदहाली के खिलाफ सड़क पर उतर आईं। तेज बारिश के बीच छात्राएं हॉस्टल से निकली, करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चली और दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर पहुंचकर धरने पर बैठ गईं। वैसे तो स्कूली बच्चों का काम आंदोलन करना नहीं, लेकिन आरोप है कि स्कूल की अव्यवस्था ने इन्हें क्लासरूम छोड़कर सड़क पर आने को मजबूर कर दिया। छात्राएं सड़क पर बैठी तो पालागंज चौराहा जाम हो गया। सड़क पर बड़ा सा घेरा बनाकर बच्चे बैठ गए और दुबग्गा रोड पर गाड़ियों के पहिए थम गए। कुछ ही मिनटों में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। स्कूल
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बीजेपी ने घोषित किए चुनावी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी। विनोद तावड़े को मिली यूपी की जिम्मेदारी। पंजाब के सतीश पुनिया और गुजरात के प्रभारी होंगे तरुण चुग। तत्काल प्रभाव से लागू हुई नियुक्तियां। लखनऊ में अवैध डेयरी के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस पर हुए अटैक के बाद प्रशासन का जबरदस्त एक्शन। हमलावरों का सामने आया अति कनेक्शन। लगेगा गैंगस्टर एक्ट, चल सकता है बुलडोजर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी ने दी क्लीन चिट। सूत्रों के हवाले से खबर। 3 सदस्यों की जांच टीम ने पहले से गिरफ्तार 8 लोगों को ही माना आरोपी। झारखंड में डीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होने के बाद 2,250 लोगों की नौकरी गई। फैसले से प्रभावित लोगों का भारी विरोध। आंदोलनकारियों ने अनशन तोड़कर मनाया जश्न। जंतर मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया हलफनामा। कहा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं हुआ। 30,000 लोगों पर थी 5,000 पुलिस। प्रदर्शनकारियों में शामिल थे असामाजिक तत्व।

यूपी बीजेपी के प्रभारी बने विनोद तावड़े, जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 3 राज्यों के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी किए गए नियुक्त। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो पहले हरियाणा और बिहार के प्रभारी रह चुके हैं। जगदीश पटेल गुजरात के बीजेपी नेता हैं, वो 2019 में अमराईवाड़ी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। अहमदाबाद शहर बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। पंजाब की जिम्मेदारी सतीश पुनिया को दी गई है, उधर गुजरात का जिम्मा तरुण चुग को सौंपा गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। 2024 में उन्हें हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था। झारखंड में छात्र आंदोलन के 24वें दिन छात्रों के आगे झुके सुरेंद्र सरकार, देवेंद्रनाथ महतो समेत कई छात्र नेताओं ने खत्म किया आमरण अनशन। छात्र नेता देवेंद्र महतो की मांग, सदन में ऐसा कानून बने जिससे किसी छात्र के साथ धोखा या ठगी ना हो, सरकार दे छात्रों के हितों की गारंटी। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द, सीएम सुरेंद्र के ऐलान के बाद छात्रों में खुशी की लहर। देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर की बात, सुरेंद्र सरकार के फैसले की सोनम वांगचुक ने सराहना की, छात्रों की मांगे मानने पर जताया आभार। आज तक से बोले देवेंद्र महतो, छात्रों के हक की लड़ाई इससे पीछे नहीं हटूंगा, संघर्ष और आंदोलन रहेगा जारी। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद रांची में जयपाल स्टेडियम में छात्र झूम उठे, छात्रों ने जमकर किया सेलिब्रेट। इस ऐलान के साथ छात्रों में खुशी की लहर, जमकर नाचे छात्र, सड़क पर छोड़े पटाखे, हाथों में देश का झंडा। झारखंड में सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द किए जाने से एसओ एएसओ समेत अलग अलग पदों पर कार्यरत 2,250 उम्मीदवारों की गई नौकरी। जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों का हेमंत सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन, भारी बारिश में मंत्रालय के बाहर डटे हुए। दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग के आरोपों को नकारा, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। वंदे मातरम विवाद पर सियासत तेज, खड़गे का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी को देशभक्ति का ज्ञान देने का हक नहीं है, देश को बांटने और नफरत फैलाने का आरोप। वंदे मातरम विवाद में शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वंदे मातरम विवाद पर केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी का सोनिया गांधी पर निशाना, बोले सम्मान को लेकर संसद में कानून बन चुका है। बीजेपी नेता अनूप एंटनी का कांग्रेस पर हमला, बोले मुस्लिम लीग और एक वर्ग को खुश करने की राजनीति कर रही है कांग्रेस। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नया प्रोटोकॉल, बड़े सरकारी कार्यक्रम में करीब 3 मिनट 10 सेकंड की सभी 6 कड़ियां गाई जाएंगी। महाराष्ट्र में गैर मराठी टैक्सी ऑटो चालकों के लाइसेंस और परमिट रद्द करने के मामले में कल होगा फैसला। मराठी सीखने के लिए टैक्सी ऑटो चालकों को 100 दिन का वक्त दिया गया था, ये म्याद खत्म हो गई है। जो लोग मराठी नहीं सीख पाए उनके लाइसेंस और परमिट रद्द करने की कार्रवाई आज से शुरू होनी थी, लेकिन टैक्सी ऑटो यूनियन ने मराठी सीखने के लिए कुछ और वक्त की मांग की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक को लेकर दी सफाई, का 27 साल पहले बनवाया मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। इंटरनेट पर ट्रोल होने पर नितिन गडकरी का मिसिंग लिंक की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान, का क्वालिटी कंट्रोल के लिए अच्छा है इंटरनेट मीडिया। हिमाचल प्रदेश सरकार के फैसले पर सियासी विवाद खड़ा होने के आसार, हिमाचल प्रदेश में आईएएस आईपीएस आईएफएस अफसरों की संख्या कम की जाएगी। राज्य सरकार ने आईएएस कैडर 153 से घटाकर 130, आईएफएस का 118 से 83 करने का फैसला किया। इसी तरह आईपीएस का कैडर भी 96 अधिकारियों से कम किया जाएगा। राज्य सरकार ने कैडर कम करने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा पत्र, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा राज्य सरकार प्रदेश में अफसरों की संख्या कम करेगी, इससे एक अधिकारी पर करीब 200 करोड़ रुपए की बचत होगी। यूपी के मथुरा में बीजेपी विधायक और डीएसपी के बीच हुई बहस, वीडियो वायरल। विधायक अनिल पाराशर के काफिले को रोके जाने को लेकर दोनों के बीच विवाद, वीडियो में विधायक पुलिस अधिकारी से तीखे अंदाज में बात कर रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपतराय अनिल मिश्रा को क्लीन चिट, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने एसआईटी जांच की रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में चंपतराय अनिल मिश्रा का नाम आरोपी के तौर पर शामिल नहीं है। लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके में नगर निगम और पुलिस टीम पर हमले मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, पशु पकड़ने गई टीम पर आरोपियों ने किया पथराव। पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों पर हमले में आरोपियों का माफिया अतीक अहमद से कनेक्शन सामने आया, पुलिस लगातार दबिश देकर आरोपियों की कर रही है तलाश।
इसमें नगर निगम कर्मचारी और पुलिस कर्मी घायल, जबकि 4 सरकारी वाहनों के शीशे टूटे। पुलिस ने 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। यूपी सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को अब वार्षिक कैलेंडर के तहत किया जाएगा समयबद्ध। मध्यप्रदेश के भिंड में हुए सड़क हादसे में लखीमपुर के मजदूरों की मौत पर सीएम योगी ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। कल दिल्ली में सीएम योगी इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। जापानी प्रतिनिधिमंडल से करेंगे योगी मुलाकात। जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर में प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का समापन। सीएम योगी ने युवाओं को दिया संदेश। सीएम योगी बोले, माफिया प्रवृत्ति से युवा शक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान। युवाओं को बचाने के लिए खेल संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, युवाओं को निकल रहा है ड्रग और स्मार्टफोन का नशा, दोनों से दूर रहने की अपील। बंगाल के कालिम्पोंग में बड़ा भूस्खलन, पहाड़ का हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिरा। टिहरी गढ़वाल में लगातार बारिश से बरसाती नाला उफान पर, तेज बहाव के बीच कुछ लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। आसनसोल में लगातार बारिश से जल जमाव का खतरा, कई अंडरपास और रेलवे ब्रिज पानी में डूबे। आसनसोल में आफत की बारिश, निचले इलाकों में बड़ा बाढ़ का खतरा। बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर, खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर। प्रयागराज में बारिश का पानी थाने में भरा, साथ ही अंडरपास में घुटनों तक भरा पानी। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल में छुट्टी घोषित। यूपी में बारिश ने रोकी पढ़ाई, भदोही में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। वाराणसी में छत पर गंगा आरती शुरू, गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते लिया गया फैसला। शाहजहांपुर में भारी बारिश से मकान ढहा, मलबे में दबकर चाचा और 3 साल के भतीजे की मौत। एमपी के भिंड में भीषण सड़क हादसा, मजदूरों से भरे ऑटो और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में 8 की मौत, 24 से ज्यादा घायल। चेन्नई में ज्वेलरी दुकानों को निशाना बना रही छात्र महिला चोर का गिरोह, बुरके की आड़ महिलाओं ने ग्राहक बनकर लूटे गहने। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हादसा, कांजीगुंड में ट्रक ने सीआरपीएफ वाहन को मारी जोरदार टक्कर, 5 जवान घायल। कोलकाता एयरपोर्ट के एडीसी भवन की दूसरी मंजिल में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया काबू। पालघर मीरा रोड पर एटन रन की घटना, तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर। यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। सूरत में पार्किंग विवाद को लेकर पड़ोसी के बीच हिंसक झड़प, स्थानीय पुलिसकर्मी ने वर्दी का रुतबा दिखाते हुए पड़ोसी परिवार और बुजुर्ग महिला के साथ की मारपीट। सूरत के एक होटल में रिसेप्शन पर अचानक गिरा 26 साल का युवक, आईडी देते वक्त हुआ बेहोश, हार्ट अटैक की आशंका। ओडिशा के गंजम में जेसीबी चोरी का फिल्मी अंदाज, पुलिस ने किया पीछा, 4 थानों की पुलिस को चकमा देकर बैरिकेड तोड़ता रहा आरोपी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, 1 की मौत, 1 घायल। इटावा में डबल मर्डर का खुलासा, गुजारा भत्ता से बचने के लिए पति ने साले संग मिलकर पत्नी और सास को तारा मौत के घाट। जैन ब्रिज की मजबूती के लिए करवाया गया जम्प टेस्ट, विवादों में सोशल मीडिया के एक हैंडल पर छिड़ गई पोस्ट पर विवाद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कलयुगी बेटे ने माता पिता की हत्या कर बोरियों में रखी लाश, आरोपी फरार। झांसी में चेन स्नैचिंग मामले में 2 आरोपी मुठभेड़ में मारे गए, पुलिस ने बरामद किया सामान। नैनीताल में आबादी के बीच बाघ ने घोड़े को बनाया शिकार, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर। यूपी के झांसी में रोडवेज बस ने राहगीर को कुचला, युवक की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिजनौर के मंदिर में सत्संग भवन भीषण आग, बाजार में मची अफरा तफरी, धधकती लपटों के बीच जान बचाकर भागते दिखे लोग। आसमान को छूती नजर आई आग की लपटें, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने संभाला मोर्चा। मेरठ के एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया मुस्लिम युवक, लव जिहाद का आरोप। संभल में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, रसगुल्ले बनाने की फैक्ट्रियों में छापेमारी, नकली दूध पनीर का इस्तेमाल कर तैयार किया जा रहा था माल। दिल्ली के बुराड़ी में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग के शक में युवती की हत्या, सूटकेस से बरामद हुआ शव। गोंडा में बुरके में डांस कराने वाला स्कूल किया गया सील, जांच बिना मान्यता के संचालित मिला विद्यालय। मुजफ्फरनगर में कर्मचारी हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलसा, मौके पर दर्दनाक मौत। बिहार के नवादा में एक ही कमरे से मां और 2 मासूम बेटियों के शव मिले, हत्या आत्महत्या दोनों एंगल से जांच जारी। देहरादून में पुलिसकर्मी की कार से युवक को कुचला गया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत के लिए नाहत सिंह को किया गया सम्मानित, एचसीएल और स्क्वाश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया सम्मान। जूनियर विश्व चैंपियन बनने वाली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी है अनाहत, अपनी इस उपलब्धि से लाखों युवाओं की प्रेरणा बन गई।
फिल्म प्रेम कीटाणु का टीजर लॉन्च, फिल्म में वीर पहाड़िया, अपार शक्ति खुराना। इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म गन मास्टर G9 की रिलीज डेट आई सामने, 27 नवंबर को होगी लॉन्च। रणवीर सिंह की प्रलय की शूटिंग शुरू, इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ लोका फेम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन आएंगी नजर। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका जाएंगी शी जिनपिंग, 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देश ओमान पर बम बरसाने की दी धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध थे उनके। एक दिन पहले ट्रंप ने ईरान से युद्ध में साथ न देने के लिए दक्षिण कोरिया की आलोचना की थी। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका ईरान से मध्यपूर्व में युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की है। ईरान में हमास के प्रतिनिधि खालिद कद्दुम्बी ने कहा गाजा में जब तक कब्जा करने वाली फोर्स मौजूद है तब तक उनका गुट हथियार नहीं छोड़ेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा वो 19 अगस्त से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने की बना रहे हैं योजना। कोलंबिया के राष्ट्रपति एस्प्रियला ने कहा पिछले हफ्ते देश में भूकंप से होने वाले आर्थिक नुकसान $9 बिलियन से ज्यादा। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री रोंगजी के निधन पर आधार झुकाया गया देश का झंडा, 1998 से 2003 तक प्रधानमंत्री रहे जू रोंगजी। लंदन में हजारों लोग अश्वेत प्रोफेसर जेसन अडे के निधन पर शोक मनाने के लिए जुटे जिन पर साहित्यिक चोरी के कई आरोप लगे थे। पोलैंड की स्टार खिलाड़ी ईगा स्वीटेक सिंसिनाटी ओपन के अंतिम 16 में पहुंची, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के स्वीटेक का अगला मुकाबला फ्रांस की डाइने पेरी से होगा। आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में श्री रविशंकर ने किया GMRVF स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन, हर साल युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। भोगापुरम के युवाओं के लिए रोजगार की नई राह, स्किल सेंटर में इंडस्ट्री आधारित ट्रेनिंग और भारत विदेश में प्लेसमेंट की सुविधा। राजस्थान मिलावट पर बड़ा वार, 18 पैक खाद्य उत्पादों की बिक्री पर 2 महीने की रोक।

0: और वंदे मातरम पे एक बार फिर से गिर गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। गोवा में कल हुई कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम अधूरा गाया गया, सिर्फ दो पैराग्राफ गाए गए। बीजेपी के सीनियर नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे।
1: पार्टियां छोटी करती है तो मुझे समझ में आती है, लेकिन आप बड़े गर्व से कहते हैं कि वी हैव बीन फ्रीडम फाइटर्स, बट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड ऑफ योर ओन पार्टी। अपनी सारी पार्टी के सारे उन आदर्शों को भूल रहे हैं जो आजादी के आंदोलन में था। आप न बंकिमचंद चट्टोपाध्याय को याद रखते हैं, न लोकमान्य तिलक को याद रखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद रखते हैं, न आपके जिस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने सीधा दिखा दिया कि उनका प्रस्ताव था, तो ये सब भूल जाएंगे आप? तो मैं इसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। अच्छा है अगर कांग्रेस पार्टी अपनी नादानी और वोट बैंक की उत्कंठ इच्छा के कारण देश के सामने अपने को और एक्सपोज करने में लगी हुई है, तो हम और एक्सपोज करेंगे और देश को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या है, इसके हित क्या हैं, और आजादी के आंदोलन की दावेदारी करने का नाटक करना बंद करें। मित्रों, एक और विषय मुझे हल्के से कहना था, यही मेन विषय था, आपके सवाल होंगे। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल में किसी का नाम लिया था क्या? किसी का नाम लिया क्या? उन्होंने एक छोटी सी बात कही ना कि दिमागी नक्सलियों से भी आपको सावधान होने की जरूरत है। आप याद करिए कि जब अमित शाह जी ने संकल्प किया कि हम माओवाद को समाप्त करेंगे, तो आज समाप्त हो गया कि नहीं, मुझे बताइए आप।
0: और वहीं झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन शांत हुआ, तो बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का धरना शुरू हो गया। यहां छात्र TRE4 का वैकेंसी का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी करने की मांग कर रहे हैं। छात्र TRE4 की वैकेंसी जल्द जारी करने और एकल परीक्षा के साथ शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं। तो बिहार में शिक्षक भर्ती में देरी पर छात्रों का यह धरना है। अब अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन दरअसल हर मुद्दे पर किया जा रहा है। ज्यादातर मुद्दे शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और परीक्षा कराने के मापदंडों को लेकर हो रहे हैं।

0: छात्र कह रहे हैं परीक्षा नहीं हुई तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें।
1: बीपीएससी तैयारी 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ हो, विज्ञापन जल्द आए, एकल परीक्षा के साथ विज्ञापन आए। अगर विज्ञापन नहीं जारी होता है तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे। और दूसरी बात, बीएसएससी से संविदा होते जाते, इसके अलावा एग्जाम डेट उसका घोषित हो, दरोगा सिपाही बीएसएससी सहित सभी परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए, ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद मिले, परीक्षा समाप्ति बाद आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आता है तो कटअप सभी का मार्क जारी हो, बीईटी का आयोजन हो, लाइब्रेरियन बहाली हो, सिविल सेवा में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव न हो, धांधली सेटिंग न हो, और अभी तक जितना पेपर लीक हुआ है उस सभी की जांच निष्पक्ष हो, और जो भी बड़ा बड़ा माफिया है उन सब पे कार्रवाई हो। बीपीएससी में 20 अधिकारी के नाम पे आया था कि उनका हैंडराइटिंग सेम है, आज तक उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
0: शशि भूषण में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, स्पेसिफिक्स क्या है इन मांग के और अब तक इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई कि धरने की नौबत आ गई?
2: देखिए, जो बिहार में शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है उसकी देरी जो हुई है उसकी वजह से ये छात्र आंदोलन पे बैठे हैं। आज से धरना इन्होंने शुरू किया है, आज 12 बजे दोपहर में इस धरने की शुरुआत हुई है। बिहार में 3 चरणों में शिक्षक नियुक्ति हो चुकी है, सरकारी स्कूलों में टीचर्स की बहाली, जिसको TRE 1, 2, 3 नाम दिया गया, अब TRE 4 की बारी है। जो BPSC बिहार लोक सेवा आयोग है वो इस पूरी परीक्षा को कंडक्ट करता है, और BPSC ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें 2024 में ही इस परीक्षा को हो जाना था, लेकिन पहले 2025 में विधानसभा चुनाव की वजह से देरी हुई, और उसके बाद जो सरकार के स्तर पर अधियाचना मतलब जो बहाली के पदों की संख्या के बारे में जानकारी आयोग को दी जाती है उसमें जो देरी हुई उसकी वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ है इसमें, और ये पूरी प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है, मतलब विज्ञापन नहीं हुआ है BPSC की तरफ से। अब छात्र ये कह रहे हैं कि BPSC जो है वो जल्द विज्ञापन जारी करे 24 घंटे के अंदर, अगर ऐसा नहीं होता है, TRE 4 का विज्ञापन नहीं आता है, तो शिक्षा मंत्री जो हैं बिहार के मिथिलेश तिवारी, पहले हम उनका घेराव करेंगे, फिर उनके इस्तीफे की मांग पर वो अड़ जाएंगे। तो एक मैसेज है सरकार के लिए। साथ ही साथ एक और बात जो सामने आई थी नेहा, कि जो PT और मेंस 2 स्तरों पे परीक्षा हो सकती है TRE 4 के अंदर, तो उसका भी विरोध है। ये छात्र कह रहे हैं कि जब TRE 1 से लेकर के TRE 3 तक केवल एकल परीक्षा हुई, केवल एक परीक्षा के जरिए ही नियुक्ति हुई शिक्षकों के बिहार में, तो यहाँ TRE 4 में फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो एकल परीक्षा की भी मांग है। दूसरी मांगे हैं परीक्षा रिफॉर्म्स को लेकर के, जो आंसर की जारी किया जाता है उसको लेकर के, जो कार्बन OMR सीट होता है उसको अपलोड करने को लेकर के, और साथ ही साथ जो मेरिट स्कोर बनता है उसके ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। तो आज धरने की शुरुआत हो गई है, देखना होगा सरकार कब तक इस पर एक्शन लेती है। जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं झारखंड में सरकार JSSC CGL परीक्षा रद्द किए जाने से SO ASO समेत अलग अलग पदों पर कार्यरत 2,250 उम्मीदवारों की नौकरी एक झटके में चली गई है। CGL परीक्षा पास कर रहे, नौकरी कर रहे कई उम्मीदवार इस घटनाक्रम से सदमे में आ गए। रांची से देखिए सत्यजीत की ये रिपोर्ट।
3: JPSC और JSSC के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था, और कल हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगी के साथ इसी मंत्रालय में एक बैठक की और उसके बाद JSSC CGL को रद्द करने की घोषणा कर दी। अब इससे जो नियुक्त किए गए थे 2,250 लोग, वो एक झटके में उनकी नौकरी चली गई है, और मंत्रालय के बाहर लगातार बारिश हो रही है, जोरदार बारिश हो रही है, उसके बीच में ये डटे हुए हैं और सवाल उठा रहे हैं कि जब कोर्ट से नियुक्त होकर ये आए थे तो एक झटके में आखिर इन्हें अगर हटाया गया तो इनके पास अब क्या विकल्प है? पूरा परिवार इनका टूट गया है, इनसे भी बात कर लेते हैं।
4: सर, कल तक हमारे पास एक जॉब थी, हमारा सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कल एक शाम को एक ऐसा न्यूज वायरल होता है, न्यूज आता है कैबिनेट का कि JSSC CGL की प्रक्रिया को पूरा रद्द कर दिया गया है, मतलब उससे जुड़े सारे कर्मचारी को खत्म कर दिया एक दिन में।
5: अगर किसी को
6: निराश है,
5: पूर्ण रूप से निराश है, और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और अभी वो समझिए कि बच्चा
7: हम लोग को किस बिना पे सरकार एकाएक जमीन के मतलब जमीन हटा दी है सर के ऊपर से हम लोग का। हम मेरा भी फैमिली सर, मेरे पिताजी नहीं है और मेरी माँ बहुत बूढ़ी है, और मैं अकेला अभी फैमिली को चलाने वाला हूँ, तो मेरा किस तरह से जीवन निर्वाह होगा वो मुझे सरकार जवाब दे ही सरकार से चाहिए।
3: कहानी एक जैसी है, चाहे वो संजीत हो या फिर बाकी लोग हों। रेलवे में जो कार्यरत थे वहाँ नौकरी छोड़ के यहाँ आए, कोई ग्रुप डी का नौकरी, मेहनत करके, उनका दावा है कि इन्होंने एग्जाम पास किया और कोर्ट ने सिर्फ यही आदेश दिया था कि जिनका कैंडिडेटचर में गड़बड़ी पाया जाएगा या जिन्होंने किसी तरह का रिगिंग करके एग्जाम पास किया होगा उनकी नौकरी जाएगी, लेकिन यहाँ एक झटके में सबकी नौकरी ले ली गई। अब आखिर ये घर परिवार कैसे चलाएंगे, किस बीवी बच्चे हैं, किसी के माँ नहीं है तो किसी का बाप नहीं है और पूरा परिवार का बोझ उसके कंधे पे है, एक झटके में नौकरी चली गई, अब इनको खुला आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं इसीलिए, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो गया इनके साथ और इन्हें करना क्या चाहिए। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: और अब बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की सेहत की। एम्स में भर्ती जेपी नड्डा की हालत में अब सुधार है, उनका ऑपरेशन सफल रहा, डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा उन्होंने किया है और परिवार के लोगों से बातचीत भी की है। इस बीच एम्स ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर ये कहा है कि 17 अगस्त को जेपी नड्डा की एंजियोप्लास्टी हुई, उनकी हालत स्थिर है और वो अभी डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है। रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
10: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
9: छक्का?
10: सब कैशलेस हो गया है।
9: हाँ ओले, ला भाई मेरा बैट।
10: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
9: वो अभी तो चार्ज हुआ यार।
11: ओले, बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: आगे आगे, अरे उधर उधर गया। करेक्ट करेक्ट,
14: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: In association with Hind, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
4: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
3: विमल, बोलो जुबां केसरी।
5: Wait, lifestyle के लिए 10 अलग pages क्यों follow करना? Health, fitness, yoga, mental wellness, सब कुछ एक ही जगह, Fit Tak. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade karo easy way. Watch only on Fit Tak YouTube.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बीजेपी ने घोषित किए चुनावी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी। विनोद तावड़े को मिली यूपी की जिम्मेदारी। पंजाब के सतीश पूनिया और गुजरात के प्रभारी होंगे तरुण चुग। तत्काल प्रभाव से लागू हुई नियुक्तियां। लखनऊ में वेयर डेयरी के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस पर हुए अटैक के बाद प्रशासन का जबरदस्त एक्शन। हमलावरों का सामने आया तीख कनेक्शन। लगेगा गैंगस्टर एक्ट, चल सकता है बुलडोजर। चढ़ावा चोरी मामले में चंपतराय अनिल मिश्रा को एसआईटी ने दी क्लीन चिट। सूत्रों के हवाले से खबर। 3 सदस्यों की जांच टीम ने पहले से गिरफ्तार 8 लोगों को ही माना आरोपी। झारखंड में टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होने के बाद गई 2,250 लोगों की नौकरी। फैसले से प्रभावित लोगों का भारी विरोध। आंदोलनकारियों ने अनशन तोड़कर मनाया जश्न। जंतर मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया हलफनामा। का जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं हुआ। 30,000 लोगों पर थी 5,000 की पुलिस।

0: मौके पर आज पुलिस पहुंची है, लगातार डेयरियों पर कार्रवाई हो रही है। अगर आप देखिए तो भैंसों को धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर उस निगम के द्वारा जो गाड़ी है उसमें सभी भैंसों को ले जाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस के जितने भी जवान हैं वो नगर निगम के जवान वो सभी मौजूद हैं। जो आरोपी फरार है उसके खिलाफ टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है।
1: नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके में पुलिस और नगर निगम की टीम पर हुए हमले के बाद अब प्रशासन का एक्शन तेज है। इलाके में अवैध डेयरियों पर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। दरअसल सोमवार को लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके में नगर निगम की टीम पुलिस वालों के साथ अवैध डेयरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची। इस दौरान 20 से 25 लोगों ने नगर निगम और पुलिस की टीम पर अटैक कर दिया। आरोपियों ने टीम पर धारदार हथियारों से हमला किया। इस दौरान एक वीडियो में एक आरोपी दरोगा गर्दन दबाते नजर आ रहा है। वहीं एक महिला ने लोहे की जंजीर से दरोगा के सिर पर वार किया जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने इस केस में 20 साल की खुशबू और 27 साल की आफरीन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है वो बेहद हैरान करने वाला और दहशत पैदा करने वाला है।
2: एक युवक ने पुलिस वाले को दबोच रखा है। पास में मौजूद एक महिला किसी से बहस कर रही है। महिला के हाथों में जंजीर है और वो पुलिस वाले को बचाने की कोशिश कर रहे शख्स को धमका कर रोक रही है। इस बीच युवक का शिकंजा दारोगा की गर्दन पर कसता जा रहा है। वो पुलिस वालों की जान लेने पर उतारू है। घायल पुलिस वाला तमाम कोशिश करता है लेकिन युवक उसे मार देने पर ही आमादा दिखता है। पुलिस पर हमले की ये खौफनाक तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां नगर निगम की टीम पुलिस वालों के साथ अवैध रूप से चल रही डेयरियों पर कार्रवाई के लिए पहुंची तो भीड़ जान लेने पर उतारू हो गई। धारदार हथियार से पुलिस टीम पर हमला हुआ। पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया गया और जब एक दारोगा वहां मौजूद भीड़ के बीच फंस गया तो उसकी जान लेने की कोशिश हुई। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद महिला ने दारोगा के सिर पर जंजीर से हमला किया जिससे दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गया। लखनऊ की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरह पुलिस वाले की हत्या की साजिश रची गई, किस तरह भीड़ पुलिस वालों की जान की दुश्मन बन गई। FIR के बाद अब पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लगी है। एक एक वीडियो एक एक तस्वीर से आरोपियों की पहचान की जा रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
1: आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, अब तक गैंगस्टर एक्ट लग चुका है, उसके तहत क्या कार्रवाई हुई है और बुलडोजर एक्शन कब तक संभव है?
3: देखिए, सबसे बड़ी बात नेहा बताऊं कि पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है और इसमें सभी आरोपी अभी तक फरार हैं। पुलिस ने 4 से 5 टीमें बनाई हैं जो लखनऊ के बाहर भी भेजी गई। माना जा रहा है कि आरोपी लखनऊ के बाहर भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। अब ऐसे
1: मैं रोक रही हूँ आपको। लखनऊ के SP धनंजय कुशवाहा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय, क्या उन आरोपियों की पहचान हो पाई है जो वीडियो में दिख रहे हैं या फिर दूसरे अन्य किसी प्रत्यक्षदर्शी के माध्यम से चिन्हित किए गए हैं? क्या एक्शन हुआ है अभी तक?
4: अभी तक जो अभियुक्त नामित है या जो जिनके बारे में पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है इन सभी की तलाश की गई है। घटना के दिन ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और चार आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो इसमें घटना में चिन्हित है उनको चिन्हित कर लिया गया है और उनके विरुद्ध इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई।
1: कितने पुलिस वाले कुल गए थे कल धनंजय जी इस कार्रवाई के लिए, नगर निगम की टीम को मिलाकर और पुलिस की टीम को मिलाकर कुल कितने लोग थे वहां पर?
4: इसमें चूंकि त्योहार था तो थोड़ा पुलिस कम जा पाई थी संख्या में और लेकिन फिर भी नगर निगम की टीम के साथ पुलिस पर्याप्त गई।
1: क्या इस बात की आशंका थी किस तरह से ये लोग अटैक कर सकते हैं, जानलेवा साबित हो सकता है ये पूरी कार्रवाई?
4: पूर्व में भी इस तरह के नगर निगम के साथ अभियान किए गए थे और पूर्व में इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन अचानक से वो लोग हमलावर हो गए और इस कारण स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई।
1: धनंजय जी, क्या आज भी ये कार्रवाई जारी है और गैंगस्टर एक्ट के तहत इस कार्रवाई में अब आगे क्या होगा?
4: आज भी नगर निगम के साथ संयुक्त अभियान हुआ है और इसमें काफी पशु जो इस तरह से अवैध डेयरी संचालक थे उनके विरुद्ध नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई है पुलिस के साथ संयुक्त रूप से और ऐसे तत्वों को चिन्हित कर इसके विरुद्ध है कठोर निर्देशात्मक कार्रवाई की।
1: और इन लोगों के तार दरअसल अतीक अहमद के गुर्गों से कैसे जुड़ते हैं, इस बारे में क्या जानकारी देंगे आप?
4: अभी पुलिस चीजों की छानबीन कर रही है, अभी चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन।
1: क्या बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है धनंजय जी?
4: इन सारी चीजों पे पहले क्रिमिनल एंगल पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं चीजों पे अभी गंभीरता।
1: और कल की तरह आज भी अटैक ना हो उसके लिए क्या तैयारी है?
4: नहीं, अब लगातार पुलिस जो है इससे सतर्क है और उधर पेट्रोलिंग वगैरह भी बढ़ेगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष, हमारे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। आशीष, जिस तरीके से धनंजय कुशवाहा जी बता रहे हैं कि अब ये एक्शन और ये कार्रवाई एक बड़े पैमाने बड़े स्तर पर की जाएगी क्योंकि काफी सारे ऐसे आरोपी हैं जो कैमरे में कैद हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया, उनकी पहचान कर ली गई है। लेकिन इतना बड़ा जो ये मामला कल सामने आया है, दरअसल पुलिस और नगर निगम की टीम भी इसका आभास नहीं कर पाई कि इस तरीके से उन पर हमला हो सकता है।
3: बिल्कुल नया, बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि पुलिस कभी भी जाती है तो ऐसे में कार्रवाई ही होती है, लेकिन कभी ये नहीं था कि उल्टा पुलिस के ऊपर ही इतना बड़ा अटेम्प्ट हो जाए, यानी कि हत्या करने की साजिश हो जाए, पूरी तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी जाए, यहाँ तक कि गाड़ियों में पथराव कर दिया जाए, ये सारी चीज़ें हुई। यहाँ तक पुलिस कई थानों की फोर्स बुलानी पड़ी मौके पर, तो ये पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था कि इस तरीके से ये गद्दी जितने भी थे यहाँ पर, जो पुलिस एक कार्रवाई के तहत गई थी वहाँ पर उल्टा अटैक कर लिया। ये सोचिए कि अगर वो वीडियो नहीं बना होता और वो वहाँ पर छुड़ाने के लिए पुलिस नहीं आती तो उस समय एक बड़ी अनहोनी घट सकती थी। जो विनय पटेल इसमें जिनकी गर्दन पकड़ी गई वो घायल हैं, वो अभी इस समय एक तरीके से एडमिट है, उनको इलाज दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनके मारा गया है, उनको हत्या करने का प्रयास किया गया, तो इसमें पुलिस को ये जरूर इकबाल को चैलेंज किया गया है। लेकिन पुलिस अब लगातार कार्रवाई ताबड़तोड़ कर रही है, इसमें कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, यहाँ तक लखनऊ के बाहर भी पुलिस की टीमें भेजी जा रही हैं और लगातार ऐसे अपराधी जो कि जिस तरीके की उनकी मंशा थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो चाहते थे कहीं ना कहीं पुलिस पर अटैक करके उनके अपने मंसूबे पूरे करना चाहते थे और इसी तरीके से उन्होंने साजिश पूरी की थी कि कैसे भी अगर पुलिस की टीम आती है यहाँ पर नगर निगम की तो उसके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा, उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा।
1: आप बने रहे हमारे साथ आशीष, क्योंकि मैं लौटूंगी आपके पास। लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके में हुए बवाल को लेकर एक्शन तेज हो चुका है, पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं, केस में चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, साथ ही नगर निगम की टीम अवैध डेयरियों को बंद करवा रही है।
2: लखनऊ में जिस तरह पुलिस टीम को टारगेट कर अटैक हुआ, जिस तरह से पुलिस वालों पर हमला हुआ, जिस तरह एक दारोगा की जान लेने की कोशिश हुई, ये तस्वीरें बेहद सनसनीखेज है। ये घटना बेहद गंभीर है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे एक आरोपी ने दारोगा का गला दबा रखा है। दारोगा पर जंजीर से भी हमला हुआ। पुलिस टीम पर हमले के लिए लाठी डंडे, लोहे की रॉड और धारदार हथियारों का इस्तेमाल हुआ। इस सबसे साफ जाहिर होता है कि आखिर हमलावरों का इरादा क्या था, किस तरह उनके सिर पर खून सवार था। अब आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज है। धरपकड़ के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। वहीं जिस इलाके में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ, वहां प्रशासन का कानूनी प्रहार भी शुरू हो गया है। बुद्धेश्वर पारा इलाके में बनी एक एक अवैध डेयरी पर कार्रवाई की जा रही है।
0: किस तरीके से पुलिस जो है वो मौजूद है, साथ ही साथ नगर निगम के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ जो डेरिया उन पर कार्रवाई हो रही है। और ऐसे में ये सभी जो देख सकते हैं, ये जो आप कार्रवाई है ये के खिलाफ की जा रही है। और सभी जो आरोपी हैं वो इस दिशा में, ये घर जो है आप पाएंगे, इधर ये सारे घर हैं जहाँ पर ये अवैध डेरियां चल रही थी। इन डेरियों में वो सभी संघ जो है वो मौजूद थे, रहते थे। और इसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन, साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस के जितने भी जवान हैं, वो नगर निगम के जवान वो सभी मौजूद हैं और ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि कई थानों की फोर्स को मौके पर बुलाया गया है।
2: पांच थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, कई आला अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। मेयर की मौजूदगी में लगातार एक्शन जारी है।
5: कल इन्होंने जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस के जवानों पे और पुलिस के एक इंस्पेक्टर पे कार्रवाई की है, मारा है, गला दबाया है, इनका गुस्सा देखिए आप। जो आपकी सुरक्षा में रहते हैं उन्हीं का आप गला दबा रहे हैं। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जितनी मतलब कानूनी कानून के दायरे में रह करके सख्त से सख्त कार्रवाई।
2: पुलिस इस केस में अब तक दो महिलाओं समेत कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस पर हमला करने वालों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है।
0: पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी जो पुलिस है वो पहुंची हुई है। देख सकते आप एसीपी है और जो काकोरी के वो पहुंचे हुए हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है। सर यहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि आप लोग सभी पहुंचे हुए हैं
6: यहाँ पे? नगर निगम और पुलिस के दोनों की संयुक्त टीमों के द्वारा यहाँ अभियान चलाया जा रहा है और जो भी अवैध संचालक है डेयरी उद्योग संबंधी उन सब के खिलाफ कार्रवाई।
0: जी जी, अभी कितने आरोपी सर पकड़े गए, कितने फरार हैं इसमें?
6: 16 की गिरफ्तारी हो गई है, 5 लोग
0: बाकी आगे कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए जो अधिकारी है वो मौके मौजूद, पुलिस की फोर्स मौजूद है, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। जो आरोपी फरार है उनके खिलाफ टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगातार ही जो रेड है अलग अलग इलाकों में मारी जा रही है, कहां पर वो फरार हैं आखिर, क्योंकि जिस तरीके से पूरा पुलिस पर अटैक हुआ उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है।
2: पुलिस टीम मौके पर मुस्तैदी से जमी है, फिर किसी तरह का उपद्रव ना हो इसकी पूरी तैयारी की गई है। जानकारी ये भी है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो सकता है।
5: गलत कामों पे तुरंत कार्रवाई होगी और ये भूल गए हैं, ये सपा सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये महाराज जी की सरकार है। आप अगर गलत है तो गलत है।
2: प्रशासन हमले के आरोपियों से बेहद सख्ती से निपटने की तैयारी में है। आरोपियों की धरपकड़ और अवैध डेयरियों पर एक्शन के साथ इसकी शुरुआत भी हो गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
1: इस बीच लखनऊ में पुलिस टीम पर हमले के मामले में बड़ी खबर आ रही है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी फरार आरोपियों की लगातार तलाश है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आशीष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, कल से पुलिस बल की संख्या आज बढ़ा दी गई है ताकि आज एक बार फिर से हमला ना हो, सब तरीके से पुलिस वाले सुरक्षित रहे, नगर निगम की टीम जो साथ गई है उन पर कोई हमला ना हो?
3: अब बिल्कुल, देखिए आज पूरी तैयारी के साथ पुलिस पहुंची है और अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है। अलग अलग जगह पर अवैध डेयरियों को बंद कर रही है, क्योंकि आज की तादाद में पुलिस की भी तादाद ज्यादा है और सभी हेलमेट के साथ में सारे प्रोटेक्शन साथ ही साथ जो अन्य फोर्सेज है वो भी मौजूद है। कहने का मीन्स है कि पुलिस ने अब उन आरोपी को तलाश भी कर रही है लगातार, क्योंकि अब ये डर है कि ऐसा फिर कहीं ऐसा ना हो, इस वजह से पूरी प्लानिंग के साथ में चल रही है। साथ ही साथ पुलिस ने एक्स्ट्रा फोर्सेज को बुला के रखा हुआ है कि जैसे भी कोई जरूरत पड़ती तो वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी आधा एक दर्जन के आसपास आरोपी फरार हैं, पुलिस उनकी अलग से तलाश कर रही है और जो अन्य जो अवैध डेयरियां चला रहे थे उनके खिलाफ लगातार अलग अलग कार्रवाइयां की जा रही हैं। लगातार उनकी जो भैंस है उनको जब्त किया जा रहा है, लगातार उनके खिलाफ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। और आप मान के चलिए ये भी कि सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इलीगल एरिया डेयरियां चलाई जा रही है उसमें बहुत सारी जमीन है वो कैप्चर कर ली गई है और उसी में ये डेयरियां चल रही थी जिसको नगर निगम ऑब्जेक्शन कर रहा था, वहीं पर पुलिस भी पूरी तरीके से इस पर आपत्ति जता रही थी, जिसको लेकर कल जब ये जाते हैं तो इतना बड़ा अटैक होता है और कहीं ना कहीं पुलिस के जब अटैक होता तब पुलिस आज फोर्स के साथ में हर उस एरिया में बुद्धेश्वर से लेकर पारा तक जो ये गद्दी एरिया है इस पूरे एरिया में अलग अलग जगह छापेमारी करके अवैध जो डेयरियां उनको बंद कर रही है, अवैध जितने भी इसमें अपराधी है उनको तलाश रही है। साथ ही साथ ऐसे अपराधियों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, क्योंकि कई ऐसे इसके भीतर हैं जो कि पुलिस पर भी अटैक कर रहे हैं, वो किसी से डर नहीं रहे हैं, उनके बारे में भी पुलिस एक डाटा खंगाल रही है, उनकी भी कुंडली निकाल रही है। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही, बाकी जो फरार लोग हैं उनके पीछे पुलिस ने टीमें लगा रखी हैं लगातार और उन टीमों की दबिश अलग अलग दी जा रही है, फिर चाहे लखनऊ हो लखनऊ के बाहर भी टीमों की दबिश दी जा रही है जिसमें कि वो जो मुख्य आरोपी हैं जो सरगना है इसके वो गिरफ्तार हो सके, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अटैक हुआ उसमें अभी दो महिलाएं सके दो अन्य पुलिस तकरीबन चार से पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी सभी अभी फरार हैं। तो पुलिस अब अलग अलग हिसाब से कार्रवाई कर रही, क्योंकि प्रशासन को भी इसमें मिलाया गया है, प्रशासन इसमें जो अपनी मैपिंग की कार्रवाई करेगा कि इलीगल कितना इंक्रोचमेंट किया गया है, साथ ही साथ जमीन कितनी लैंड कितनी ली गई है इन सभी की भी जानकारी की जा रही है। पुलिस उस हिसाब से मैप करके एडमिनिस्ट्रेशन अलग से कार्रवाई करेगा, यानी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस तीनों अलग अलग दिशा में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जो फरार आरोपी हैं उनके लिए टीमें भी अलग अलग भेजी गई हैं और जिसको लेकर माना जा रहा है।
1: लौटूंगी मैं आपके पास। बीच लखनऊ में हमला करने वालों पर पुलिस का एक्शन सख्त है और इस बीच हमलावरों का अतीक अहमद कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पता ये चल रहा है कि हमलावर अतीक अहमद के गुर्गों के संपर्क में थे और इसी के चलते अब गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। आरोपी पर कार्रवाई तेज हो चुकी है। आज की जो कार्रवाई है उसमें पुलिस बल को बढ़ा दिया गया है ताकि उन पर अगर हमला भी होता है तो उस पर एक्शन लिया जा सके। कल ये अप्रत्याशित हमला आप देख रहे हैं किस तरीके से दरोगा की गर्दन एक शख्स ने पकड़ ली। अब इन सभी पर

0: लोहे की जंजीर से हमला। लोहलुहान पुलिस वाले लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके की तस्वीरें उस वक्त की है जब अतिक्रमण हटाने की टीम पर दो दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। हमलावर टीम में महिलाएं आ गई थी, छेड़खानी का आरोप लगाते हुए लोहे के जंजीर से हमले कर रही थी। वही पुरुष हमलावर सीधे पुलिस वालों की हत्या की कोशिश करने लगे थे और इसके लिए धारदार हथियारों से पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। एक एक आरोपी की धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर कैसे आरोपियों ने एकाएक पुलिस वालों पर हमला कर दिया। क्या यह अचानक हुआ या पहले ही कोई तैयारी की गई? क्या पहले ही हथियार जुटा लिए गए और इसकी प्लानिंग के तहत पुलिस नगर निगम की टीम को टारगेट किया गया? क्योंकि इस केस की जांच के बीच एक और बड़ी बात सामने आई है। पता चला है कि कुछ हमलावर अतीक अहमद के गुर्गों के सीधे संपर्क में है। हालांकि इस कनेक्शन की पुलिस अभी जांच कर रही है, पूरे मामले की एक एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में लगी है।
1: जो पुलिस के और अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो एरिया है, इस पूरे एरिया में पाएंगे कि अवैध डेरिया थी जहां पर कि पुलिस यहां पर हटाने जब आई थी तब उस दौरान पुलिस पर ही अटैक हुआ था और उसके बाद अब ये कार्रवाई जारी है जिसमें आप देखेंगे क्योंकि मौके पर अभी भी पुलिसकर्मी पहुंचे हैं साथ साथ सेफ्टी में, क्योंकि जिस तरीके से अटैक हुआ है वो माना जा रहा है लगातार जो संबंध है वो कई ऐसी जगह से भी है, यानी कि गुरगू से रहा है, अतीक अहमद तक को बताया गया है। इसमें
0: अवैध पशुओं को हटाने के दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला हुआ। हमले की गिरफ्तार आरोपी दो महिलाएं खुशबून और आफरीन है, जबकि अबरार इमरान सालून सुबिल शराफत आसिफ अतीक वारिस नसीम रानू जिशान नसीफ के अलावा 10 से 12 अन्य आरोपी भी नामजद हैं। इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 191(3), 191(2), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 121(2), 132, 324(3) समेत लोक संपत्ति निवारण अधिनियम और सीएलए एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर कुछ आरोपियों के अतीक के गुर्गों के कनेक्शन की आशंका के बाद पूरे केस की जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: आशीष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, अतीक अहमद के गुर्गों से क्या कनेक्शन सामने आ रहा है?
3: देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के आसपास के लोग हैं उनका दबी जुबान से यही कहना है कि अतीक अहमद के गुर्गों से इनका संपर्क रहा है, उससे पहले भी कई धमकियां देते रहे हैं। चूंकि कोई भी खुलकर कैमरे पर नहीं आ रहा है, लेकिन इस बात को साबित किया गया है कि कई बार इन्होंने अपना प्रबुद्ध जमाने के लिए इस तरीके के सामने आए हैं। तो ये जरूर है, पुलिस भी उस दिशा में जांच कर रही है और ये माना जा रहा है कि ये भाग कर प्रयागराज जा सकते हैं या कहीं अन्य जगह पर भी। तो पुलिस भी अलग अलग टीमें उन दिशाओं में भेज रही है जहां पर अतीक अहमद के संपर्क है, जहां पर उनके गुर्गे रह रहे हैं, और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई भी देखने को सकती है जिसको लेकर पुलिस अलग अलग दिशा में जा रही है। नया
2: शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब लखनऊ में पुलिस टीम पर हुए हमले पर सियासत तेज है। इस घटना के बाद विपक्षी पार्टियां प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही।
4: योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, पुलिस पर हमला किया है, बलवा करने का प्रयास किया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। पुलिस ने जांच में यह भी पाया है कि लोगों के तार अतीक अहमद के गिरोह से भी जुड़े हैं। दो तीन जिलों के संगठित लोग वहां अवैध डेयरी का संचालन कर रहे थे, कुछ नाम समाजवादी पार्टी से भी जुड़े बताए जाते हैं।
5: देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक अजीब सा माहौल है, ना पुलिस सुरक्षित है, ना लोग सुरक्षित है, ना पुलिस से लोग सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठते जा रहे हैं। लखनऊ की घटना जहां अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम और पुलिस के दल पे पथराव किया गया, उनके साथ झगड़ा किया गया, बहुत से फोटो बहुत सी वीडियो वायरल है, और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटना है जहां लॉकअप में आम आदमी की भी मौत हुई है। तो उत्तर प्रदेश में एक अजीब सा माहौल है जहां ना पुलिस सुरक्षित है, ना लोग सुरक्षित है, ना पुलिस से लोग सुरक्षित है।
2: वक्त एक ब्रेक का उछला है, देखते रहिए आज तक।
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
4: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
3: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
5: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
6: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
7: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
8: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
3: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। आज तक
9: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
10: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
9: नहीं सर।
10: ट्वेल्थ किससे की हो?
9: ट्वेल्थ सर मेरा पीसीएम से रहा।
10: कंपाउंड क्या होता है?
9: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
10: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
9: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
10: देख भाई अपनी गारंटी पे छेड़ना।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

0: We are with you, friends.
1: दो हजार 2027 चुनाव को साधने के लिए बीजेपी ने अपने संगठन में किए बदलाव में यूपी को तवज्जो दी है। नितिन नवीन की नई टीम में ओबीसी, जेन जी यानी युवा और महिला पर फोकस है। अहम पदों पर कुल 8 बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से 3 महिलाओं और 3 ओबीसी नेताओं को जगह मिली है। कुर्मी बिरादरी की रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, तो केशव मौर्य के करीबी और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य को बीजेपी ने ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया है। राष्ट्रीय मंत्री के पद पर संगीता यादव को लाया गया है, जो कि यादव बिरादरी से महिला चेहरा है। संगठन के अहम पदों पर 2 मुस्लिम चेहरे तारिक मंसूर और कुंवर वासी ताली को मौका मिला है। बीजेपी के नए संगठन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महामंत्री बनाया गया है। इसे लेकर अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, जमकर आतिशबाजी हुई। बैंड बाजे की धुन पर नेता झूमते दिखे। पार्टी नेता कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को संगठन में जगह मिलने से आगामी विधानसभा चुनाव में अब 4 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। चुनावी राज्य पंजाब से आने वाले तरुण चुग को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया है। उनके अलावा पंजाब से मनप्रीत बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस जिम्मेदारी के मिलने पर बादल ने कहा कि पंजाब में सिर्फ डबल इंजन सरकार ही सफल हो सकती है। इस ऐलान के बाद उनके पैतृक गांव में लोगों ने जश्न मनाया। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बगैर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि जो लोग आज युवा चिल्ला रहे हैं, दरअसल युवा उनके एजेंडे में कभी था ही नहीं, ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं। मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम ने पार्टी सांसद डिंपल यादव को लेकर अजीबोगरीब बयान दे दिया। विधायक ने डिंपल यादव को पूरे देश की मां बताते हुए उन्हें ममता का प्रतीक बता दिया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बीजेपी ने घोषित किए चुनावी राज्य के प्रभारी और सह प्रभारी। विनोद तावड़े को मिली यूपी की जिम्मेदारी। पंजाब के सतीश पुनिया और गुजरात के प्रभारी होंगे तरुण चुग। तत्काल प्रभाव से लागू हुई नियुक्तियां। लखनऊ में अवैध डेयरी के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस पर हुआ चेक के बाद प्रशासन के जबरदस्त एक्शन। हमलावरों का सामने आया तीख कनेक्शन। लगेगा गैंगस्टर एक्ट, चल सकता है बुलडोजर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को SIT ने दी क्लीन चिट। सूत्रों के हवाले से खबर। 3 सदस्यों की जांच टीम ने पहले से गिरफ्तार 8 लोगों को ही माना आरोपित। झारखंड में TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होने के बाद गई 2,250 लोगों की नौकरी। फैसले से प्रभावित लोगों का भारी विरोध। आंदोलनकारियों ने अनशन तोड़कर मनाया जश्न। जंतर मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया हलफनामा का। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं हुआ। 30,000 लोगों पर थी 5,000 पुलिस। प्रदर्शनकारियों में शामिल थे असामाजिक तत्व।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। और न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे एक और अनशन की, छात्रों की डिमांड की। और ये शुरू हो गया है बिहार में TRE4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक बार फिर से छात्र अब आंदोलन पर आ गए हैं। छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए। जल्द से जल्द पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। छात्रों की यही मांग है कि परीक्षा के लिए विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी किया जाए। छात्र एकल परीक्षा की मांग कर रहे हैं, यानी पीटी और मेंस अलग अलग कराने का विरोध छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। तो एक बार फिर से छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द परीक्षा कराई जाए, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया, बहुत लंबा इंतजार किया जाता है छात्रों की तरफ से। और इसीलिए वो कह रहे हैं TRE4 को जल्द से जल्द उसको लेकर विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
1: बीपीएससी TRE4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ हो, विज्ञापन जल्द आए, एकल परीक्षा के साथ विज्ञापन आए। अगर विज्ञापन नहीं जारी होता है तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे। और दूसरी बात, बीएसएससी से संविदा होते जाते, इसके अलावा एग्जाम डेट उसका घोषित हो, दरोगा सिपाही बीएसएससी सहित सभी परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए, OMR sheet का कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद मिले, परीक्षा समाप्ति बाद आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आता है तो कटअप सभी का मार्क जारी हो, BET का आयोजन हो, लाइब्रेरियन बहाली हो, सिविल सेवा में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव न हो, धांधली सेटिंग न हो, और अभी तक जितना पेपर लीक हुआ है उस सभी की जांच निष्पक्ष हो, और जो भी बड़ा बड़ा माफिया है उन सब पे कार्रवाई हो। बीपीएससी में 20 अधिकारी के नाम पे आया था कि उनका हैंडराइटिंग सेम है, आज तक उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
0: भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, बात करते हैं उनसे। शशि, दिल्ली का जंतर मंतर रांची और उसके बाद अब पटना में छात्रों का कूच शुरू हो गया है, अब क्या तैयारी छात्रों की तरफ से और क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से?
2: हिमांशु, देखिए, छात्रों का जो आज से धरना शुरू हुआ है उसमें ऐलान ये हुआ है कि 24 घंटे के अंदर जो BPSC है वो TRE4 की वैकेंसी का विज्ञापन जारी करे। और सबसे दिलचस्प बात ये कि अभी जब हम आपसे जुड़े हैं लाइव में तो एक बड़ी खबर आई है, शिक्षा मंत्री जो हैं बिहार के मिथिलेश तिवारी, उनसे बातचीत हम लोगों ने की है, और उनका कहना है कि किसी भी वक्त BPSC जो है वो नोटिफाई कर सकता है, विज्ञापन आ सकता है। BPSC ने तैयारी पूरी कर ली है जैसा शिक्षा मंत्री बता रहे हैं। और सबसे अहम बात कि जो पद सरकार ने बताए थे कि TRE4 में इतने पद होंगे, 32,000 से ज्यादा पद थे उसमें, उससे ज्यादा उसकी संख्या हो सकती है। तो अधियाचना जो है, मतलब जो रिक्वेस्ट है, वो एक तरह से शिक्षा विभाग ने पहले ही भेज दिया था। कुछ रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर के तकनीकी परेशानी थी, वो दूर कर ली गई है, और संभव है कि या तो आज ही या फिर हो सकता है कल ये विज्ञापन BPSC जारी कर दे। तो छात्रों की जो मांग है धरने की शुरुआत के साथ ही, ये मान सकते हैं कि जो सरकार है उसको लेकर के गंभीर है, और BPSC ने अपने स्तर से तैयारी पूरी की है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है हिमांशु कि क्या TRE1 से लेकर TRE3 तक की जो परीक्षा हुई उसमें एकल परीक्षा हुई, मतलब केवल एक एग्जाम के जरिए ही नियुक्ति हुई, उसकी जगह इस बार क्या वाकई चेंजेस होता है BPSC की तरफ से? अगर वहां चेंजेस होते हैं तो एक आंदोलन का मसला बचा रह जाएगा। जी,
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ शशि जुड़ने के लिए। और देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश, अब बिहार में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, तो उनका क्या कहना है, वो स्टैंड हम आपको बताते हैं।
3: सारी तैयारी हो चुकी है और अभ्यर्थियों से हम यही आग्रह करेंगे कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। वैकेंसी जितनी हम लोगों ने सूचना दी थी उससे ज्यादा आएगी और किसी समय वैकेंसी जारी हो सकती है।
4: गर्दनीबाग जो अभ्यर्थी
5: आज संभावना है सर, आज
3: मैं कह रहा हूँ किसी समय, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ना, किसी समय जारी हो सकती है। BPSC उसकी पूरी तैयारी में जुटा है, हमारे यहाँ स्तर से विभागीय सारी प्रक्रिया पूरी कर ली।
4: छात्र भी,
3: छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? छात्र पढ़ाई में जाकर के जुटे, और कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना लें, अपनी तैयारी करें, और तैयारी करके वो परीक्षा में पास आउट हों, उनका एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है।
4: कल राजभवन मार्च करने जा रहे हैं, RJD के लोग हैं, तमाम लोग, लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट करके लोगों से अपील किया।
3: देखिए, ऐसा है कि माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो बात उन्हें विधानसभा के अंदर करनी चाहिए, उसके लिए वो सड़क चुन रहे हैं, और जब असेंबली चलता है तो वो पर्यटन पर रहते हैं। तो एक्चुअली इधर काफी
0: शिक्षा मंत्री थे बिहार के मिथिलेश जी, कह रहे थे कभी भी जारी किया जा सकता है, नोटिफिकेशन की बात की जा रही है ना, कभी भी जारी किया जा सकता है, ऐसे में छात्रों को ज्यादा परेशान नहीं करने दिया जाएगा, ये छात्र ज्यादा परेशान नहीं रहेंगे, ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये तो बात रही बिहार की, अब झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में क्या हो रहा है, कहीं पर खुशी हो रही है, कहीं पर गम हो रहा है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन CGL परीक्षा रद्द हुई तो इससे जो SO और ESO थे करीबन 2250 जो पद थे, अब वो यहां पर खाली हो गए, लेकिन वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ छात्र खुशियां मना रहे हैं क्योंकि वो लंबे वक्त से जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मांग पूरी कर ली गई है, और इसीलिए कहा जा रहा है झारखंड में कहीं पर खुशी है कहीं पर गम है। हमारे सहयोगी सत्यजीत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
5: जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था, और कल हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगी के साथ इसी मंत्रालय में एक बैठक की और उसके बाद जेएसएससी CGL को रद्द करने की घोषणा कर दी। अब इससे जो नियुक्त किए गए थे 2250 लोग, वो एक झटके में उनकी नौकरी चली गई है, और मंत्रालय के बाहर लगातार बारिश हो रही है, जोरदार बारिश हो रही है, उसके बीच में ये डटे हुए हैं और सवाल उठा रहे हैं कि जब कोर्ट से नियुक्त होकर ये आए थे तो एक झटके में आखिर इन्हें अगर हटाया गया तो इनके पास अब क्या विकल्प है, पूरा परिवार इनका टूट गया है, इनसे भी बात कर लेते हैं।
6: सर, कल तक हमारे पास एक जॉब थी, हमारा सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कल एक शाम को एक ऐसा न्यूज वायरल होता है, न्यूज आता है कैबिनेट का कि CGL की प्रक्रिया को पूरा रद्द कर दिया गया है, मतलब उससे जुड़े सारे कर्मचारी को खत्म कर दिया एक दिन में।
7: अगर किसी को
8: निराश है,
7: पूर्ण रूप से निराश है, और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और अभी वो समझिए कि बच्चा
9: हम लोग को किस बिना पे सरकार एकाएक जमीन के मतलब जमीन हटा दी है सर के ऊपर से हम लोग का। हम मेरा भी फैमिली है सर, मेरे पिताजी नहीं है और मेरी माँ बहुत बूढ़ी है, और मैं अकेला अभी फैमिली को चलाने वाला हूँ, तो मेरा किस तरह से जीवन निर्वाह होगा वो मुझे सरकार जवाब दे ही, सरकार से चाहिए।
5: कहानी एक जैसी है, चाहे वो संजीत हो या फिर बाकी लोग हों, रेलवे में जो कार्यरत थे वहाँ नौकरी छोड़ के यहाँ आए, कोई ग्रुप डी का नौकरी, मेहनत करके उनका दावा है कि इन्होंने एग्जाम पास किया, और कोर्ट ने सिर्फ यही आदेश दिया था कि जिनका कैंडिडेटचर में गड़बड़ी पाया जाएगा या जिन्होंने किसी तरह का रिगिंग करके एग्जाम पास किया होगा उनकी नौकरी जाएगी, लेकिन यहाँ एक झटके में सबकी नौकरी ले ली गई। अब आखिर ये घर परिवार कैसे चलाएंगे, किस बीवी बच्चे हैं, किसी के माँ नहीं है तो किसी का बाप नहीं है, और पूरा परिवार का बोझ उसके कंधे पे है, एक झटके में नौकरी चली गई, अब इनको खुला आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं इसीलिए, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो गया इनके साथ और इन्हें करना क्या चाहिए। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक थे, अब झारखंड के रांची में कौन थे, देवेंद्र महतो। अब देवेंद्र महतो की तरफ से उनके लिए एक जीत है क्योंकि बहुत लंबे वक्त से धरना अनशन पर थे, कुछ खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे, तो उनकी तरफ से क्या कहा गया इस जीत पर, छात्रों की जीत पर, वो आपको सुनाते हैं।
10: हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो रिफॉर्म का जो है उस पर एक निगरानी कमेटी गठित हो और पूरा ऑडिट हो, सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं, हर स्टेप में ऑडिट होना चाहिए। मान के चलिए क्वेश्चन सेट हो रहा है, तीन स्टेज पर क्वेश्चन सेट होता है, तो पहला स्टेज पर जो क्वेश्चन सेट होगा वो सेकंड स्टेज पर जाएगा, तो फर्स्ट स्टेज के पार्टी को सेकंड स्टेज में होने वाला क्वेश्चन सेट के बारे जानकारी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फाइनल स्टेज पर जो होगा उसका फर्स्ट और सेकंड वाला को मालूम नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ प्रिंट हो रहा है, कहाँ से उसका ट्रैकिंग हो रहा है। आज तक तो कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर कोई कार्यक्रम पे हमला नहीं होता है क्योंकि उस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, उस तरीके से ट्रेस किया जाता है, तो उसी प्रकार क्वेश्चन पेपर को भी, परीक्षा भर्ती को भी, चूंकि परीक्षा व्यवस्था को, भर्ती व्यवस्था को उद्योग न बनाया जाए, इसको प्रॉफिट का, लाभ का व्यवस्था न बनाया जाए, ये बहुत दुख का विषय है।
0: और आइए अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया गया है। अब वो ये कह रहे हैं कि पहले की सरकारें क्या करती थी, वो पैसा कहां, दुबई में छुपाते थे। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है, निशाना साधते हुए पूर्व की सरकारों पर कि पहले पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश को जमकर लूटा और पैसा छुपा दिया दुबई में, अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान, इसीलिए विपक्षी नेता बौखला गए।
8: लुटवाते थे, लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचित करके रखा हुआ है, इनको लगता है कोई खतरा आएगा ये भाग जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब, यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी, और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी कि जैसे, क्योंकि उनका सब अवैध कमाई का पैसा जा रहा था, वो मिसाइल उनके अवैध कमाई पे भी गिर रही थी।
0: और देखिए अब एक बड़ी खबर आपको अयोध्या से जुड़ी हुई बता दें, अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सूत्र के हवाले से जो खबर आ रही है कि अनिल मिश्रा चंपत राय को क्लीन चिट दी गई है, यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अयोध्या चढ़ावा चोरी केस में SIT का जो बड़ा खुलासा है वो हमने आपको बताया, और इसमें पता चलता है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है। 3 सदस्यीय SIT जांच रिपोर्ट श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी। चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम आरोपियों के तौर पर शामिल नहीं है, सिर्फ चोरी करने वाले 8 लोगों को ही पूरे मामले का आरोपित बनाया गया। अविनाश शुक्ला है उसमें, अनुकल्प मिश्रा है, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू को आरोपी बताया गया है। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी कर ली है और विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, और इसी के चलते ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विनोद तावड़े को यूपी का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, सतीश पुनिया पंजाब के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी एक्शन मोड में है, 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात में चुनाव है, गुजरात गढ़, उत्तर प्रदेश गढ़ बनाना चाहती है और लगातार ये जीत आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं पंजाब में सत्ता परिवर्तन का ख्वाब बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है, इसीलिए तैयारियां की जा रही हैं, चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। फिर आपको बता देते हैं, विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश का प्रदेश प्रभारी, सतीश पुनिया पंजाब के और तरुण चुग गुजरात के प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, और इन 3 राज्यों में बीजेपी चाहती है कि 2 पे कब्जा बरकरार रहे, पंजाब पर कब्जा किया जाए। अब चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नितिन नवीन की नई टीम का यहां पर ऐलान कर दिया गया है, और यह बताया गया है कि यहां पर जो अभी तक अमित मालवीय जो संभाल रहे थे उनकी छुट्टी कर दी गई है, और उनकी जगह दूसरे जो बीजेपी के नेता हैं, कद्दावर नेता, उनको पदभार संभाल दिया गया है, और उनसे बात की हमारे सहयोगी ने।
11: आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, दीपक महस्के को सोशल मीडिया कन्वीनर बनाया है बीजेपी का, आप इसको किस तरह से देखते हैं?
12: देखिए, बहुत बड़ी जवाबदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया का जो मंच है बहुत प्रभावी ढंग से इलेक्शन कैंपेन्स में काम कर रहा है, रणनीतियां बनाने में काम कर रहा है, नैरेटिव फिक्स करने में काम कर रहा है। केंद्र के संगठन ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। माननीय नितिन जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। चुनौतियां बड़ी हैं और मंच रोज बदलता है, सोशल मीडिया में रोज नई चीजें होती है, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, लगातार हमें अपडेट रहना पड़ेगा हमारी पूरी टीम को। और जो विषय हम कंटेंट बना के नीचे भेज रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक लगती है मुझे कि वो नीचे तक पहुंच रहा है या नहीं। तो मेरा बड़ा फोकस इस बात पे भी रहने वाला है कि बूथ तक में जो हमारे मंच हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन तक प्रॉपरली कंटेंट जा रहा है या नहीं, लोगों तक विषय पहुंच पा रहा है कि नहीं। जहां पर बूथ तक की अप्रोच हमारी कम है, वहां पर उसको बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ऐसे अभी तो शुरुआत है, मैं भी जाऊंगा, मेरे वरिष्ठ अमित मालवीय जी ने बहुत सुंदर काम किया, मैं उनके नीचे बहुत सालों तक भी काम किया है, उनसे भी मार्गदर्शन लेंगे और उनके काम को आगे बढ़ाने का, और संगठन का जो भी निर्देश होगा, निर्णय होगा, उसके अनुरूप हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।
11: पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जेंजी आंदोलन रहा और इंस्टाग्राम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो है वो बीजेपी के लिए भी अब आगे वाले समय में होंगे?
12: देखिए, चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, ये जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है रोज बदलता है, हमें लगातार अपडेट रहना पड़ेगा। कंटेंट्स क्या चल रहे हैं, नैरेटिव्स किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं, इसका अध्ययन लगातार करना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपनी रणनीतियां बनानी पड़ेगी।
11: जी, पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा है कि कैसे एंटी इंडिया कंटेंट जो है वो एक बड़ा चैलेंज रहा है। आप कई बार जो है सरकार ने रेगुलेट करने की कोशिश भी की, कुछ नए रूल्स भी लाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी इन इस तरह के कंटेंट को ज्यादा पुश मिलता है सोशल मीडिया पे। कैसे आपको लगता है कि आप अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाएंगे बनिस्पत इस कॉन्टेंट की अगर हम बात करें तो?
12: देखिए, झूठ के पांव नहीं होते पीयूष जी, ये भी कहा जाता है झूठ को बार बार कहे तो सच प्रतीत होता है, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है। ठीक है, इस तरह की
11: जी
12: सनसनियां लोग फैलाते हैं, कुछ समय तक ऐसा लगता है कि बड़ा उन्होंने कुछ कर दिया है, लेकिन सही समय पर अगर हम सही बातों को पहुंचाने का जो हम लोग ने रणनीति बनाने वाले हैं उसमें और धार लाएंगे, और इस तरह का जो भी एंटी नेशनल कंटेंट चलता है उसके खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने के लिए कंटेंट बना के वहां तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात है आईटी लॉज है हमारे पास, सरकार भी गंभीरता से देख रही है और पार्टी के विंग के प्रमुख होने के नाते जो भी चीजें हमारे सामने भी इस तरह की आएगी उसकी निश्चित रूप से रिपोर्टिंग हो जाएगी।
0: आइए बीजेपी की नई टीम की बात कर लेते हैं। देखिए, जनवरी में बीजेपी के अध्यक्ष बने थे नितिन नवीन, और अब कुल मिलाकर 209-210 दिन हो चुके हैं उसके बाद उनकी टीम अब बन गई है, और बिल्कुल कह सकते हैं कि आप नई नवेली टीम है। और इसके पीछे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 65 सदस्यों में से 14 सदस्यों को जगह दी गई है, बाकी जितने भी थे वो सब बिल्कुल नए चेहरे ला दिए गए हैं। कुछ बड़े बड़े नाम है, स्मृति ईरानी उनका नाम भी यहाँ पर शामिल किया गया है, और पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। बस नई टीम से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
13: ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है।
14: समाज के अलग अलग वर्ग और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं,
15: एक बहुत ही अच्छी टीम तैयार हुई है।
16: पार्टी के संगठन के क्षेत्र में काम करने वाले, लगातार बिना रुके हुए बिना थके हुए काम करने वाले लोग शामिल किए गए।
17: जिस लिस्ट का इंतजार था वो आखिरकार सामने आ गई। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। नई टीम में कुछ नाम चौंकाने वाले रहे तो कई नाम उम्मीदों के मुताबिक। पहले आपको नई टीम को लेकर मोटी बातें बताते हैं। नई लिस्ट में सिर्फ 14 पुराने चेहरे को रिपीट किया गया है, यानी 65 में 51 नए चेहरे हैं। 8 में से 6 महासचिव बदले गए, 13 उपाध्यक्षों में से 9 बदले गए, 16 सचिवों में से 15 बदले गए। नई टीम में 12 महिलाओं को शामिल किया गया है, यानी महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 18.5% है। टीम में 40 साल से कम उम्र के 6 सदस्य, 40 से 49 साल की उम्र के 15 सदस्य और 50 से 59 साल के 21 सदस्य शामिल हैं। अगले साल चुनाव वाले उत्तर प्रदेश से 8, उत्तराखंड से 4, गुजरात से 4 और पंजाब से 2 सदस्य बनाए गए।
15: ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है, और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूँ, और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी, और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद, और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
17: नितिन नवीन की नई टीम को लेकर काफी दिनों से मंथन चल रहा था। टीम के गठन के रास्ते में कई चुनौतियां थी। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है, इसलिए नई टीम में चुनावी राज्यों का प्रतिनिधित्व जरूरी था। नई टीम में जिन बड़े चेहरों की एंट्री और एग्जिट हुआ है वो देख लीजिए। पीयूष गोयल की कोषाध्यक्ष पद पर एंट्री हुई, स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय महासचिव पद पर एंट्री हुई, राम माधव ने भी उपाध्यक्ष पद पर एंट्री की है, तेजस्वी सूर्या को नई लिस्ट में जगह नहीं दी गई, अरुण सिंह की महासचिव पद से छुट्टी हुई, पंकजा मुंडे को राष्ट्रीय सचिव पद से हटाया गया है, सोशल मीडिया टीम से अमित मालवी की छुट्टी हुई है।
14: नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपने टीम बनाते हैं, और हर स्टेट, हर रीजन, समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले, एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिला।
15: बहुत खुशी की बात है कि हमारे
18: राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नितिन नवीन जी ने अपनी टीम का ऐलान किया है। एक बहुत ही अच्छी टीम तैयार हुई है, इसमें अनुभवी लोग भी हैं, युवा रक्त भी हमको इसमें दिखाई पड़ता है। और विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र से उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भारती पवार, महामंत्री के रूप में विनोद जी तावड़े और कोषाध्यक्ष के रूप में पीयूष जी गोयल, इनके जैसे हमारे जो दिग्गज नेता है इनको भी इस टीम में जगह मिली है।
17: नितिन नवीन को अपनी टीम बनाने में 209 दिन लग गए, लेकिन नई टीम को देखकर साफ लगता है कि इस बार बड़े बदलाव की कोशिश की गई है। जो बड़े चेहरे नई टीम में दोबारा जगह बनाने में कामयाब रहे उनमें शामिल हैं वसुंधरा राजे, बैजयंत पांडा, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, बीएल संतोष, सौदान सिंह, तरुण चुघ, ऋतुराज सिन्हा और अनिल बलूनी। नितिन नवीन खुद युवा हैं, लेकिन उनकी टीम में अनुभव और युवा शक्ति का मिश्रण है। नई टीम के सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है, जहां इनकी कड़ी अग्नि परीक्षा होनी है। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दे, एक मरीज क्यों जाता है अस्पताल में, इलाज कराने जाता है, लेकिन वहां पर लापरवाही का शिकार हो गया और जान चली गई उसकी। राजस्थान के नागौर का ये मामला सामने आता है, जहां पर आईसीयू के टॉयलेट में वो जाता है और ऊपर से बताया जा रहा है कि पत्थर गिर गया, और पत्थर गिर गया तो उसकी जान चली गई। अब सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये है कि मामला राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के गृह जिले नागौर का है। राजकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय में सुखाराम मेघवाल को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया। आईसीयू के टॉयलेट में पत्थर गिरने से उनकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद हंगामा मच गया। परिजनों का आरोप है कि आईसीयू में मौजूद मेडिकल स्टाफ ने टॉयलेट जाने में मरीज की मदद नहीं की। अब दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मतलब सोचिए, आईसीयू के टॉयलेट में पत्थर गिर गया, मरीज की जान चली गई, ये हालात हैं। और कहां के चिकित्सा मंत्री के गृह जिले नागौर के, नागौर का। फिर आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय है ये, जहां सुखाराम मेघवाल जान चली गई, गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज नहीं मिला, जान चली गई, आईसीयू में मरीज की मौत हो गई। परिजन हंगामा कर रहे हैं, ये कैसी व्यवस्था है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि लापरवाही की सारी हदें पार की जाती है। जहां पर स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य के सुधार के लिए जाते हैं, वहां पर जान पर बनाती है। यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
3: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: बीजेपी ने घोषित किया चुनावी राज्य के प्रभारी और सह प्रभारी। विनोद तावड़े को मिली यूपी की जिम्मेदारी। पंजाब के सतीश पूनिया और गुजरात के प्रभारी होंगे तरुण चुग। तत्काल प्रभाव से लागू हुई नियुक्तियां। लखनऊ में अवैध डेयरी के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस पर हुए अटैक के बाद प्रशासन का जबरदस्त एक्शन। हमलावरों का सामने आया अतीक कनेक्शन। लगेगा गैंगस्टर एक्ट, चल सकता है बुलडोजर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी ने दी क्लीन चिट। सूत्रों के हवाले से खबर, 3 सदस्यों की जांच टीम ने पहले से गिरफ्तार 8 लोगों को ही माना आरोपी। झारखंड में टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होने के बाद गई 2,250 लोगों की नौकरी। फैसले से प्रभावित लोगों का भारी विरोध। देवेंद्र महतो बोले, लीक रोकने की भी गारंटी दे सरकार। और जंतर मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया हलफनामा का। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं हुआ। 30,000 लोगों पर थी 5,000 पुलिस। प्रदर्शनकारियों में शामिल थे असामाजिक तत्व।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।

0: चलिए अब अगस्त में आफत की बात कर लेते हैं। और आफत कौन? बारिश बनकर आई है। कई जगहों पर कुछ ऐसे ही हालात हो गए हैं। पहाड़ी राज्यों में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, कुछ ऐसे ही हालात हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझेंगे। उत्तराखंड का ऋषिकेश रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सैलाब बादल फटने की तस्वीरें हिमाचल के चंबा में भी आई, हिमाचल के कुल्लू में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला, टिहरी गढ़वाल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला, बाइक सवार बाल बाल बच गए। और ये जो तस्वीरें हैं ना, ये कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल की हैं। पश्चिम बंगाल का आसनसोल हो, चाहे उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हो या फिर ओडिशा हो, हर जगह कुछ एक तरह की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश की वजह से हर जगह जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं और रास्ता समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोग फंस गए हैं। अब पहाड़ी इलाकों में क्या हो रहा है, तेज बहाव ऊपर से नीचे आता है तो ऐसे में कई गाड़ियां बह जाती हैं, लोगों की जान पर बनाती है, बादल फटने से तबाही मची है, घर बार सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। और रेस्क्यू टीम इस वक्त जुटी हुई है। तो देखिए, ये सारी तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन सबसे पहले जो तस्वीर थी वो थी उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा क्योंकि बारिश इतनी तेज थी कि पहाड़ों से मलबा पानी बहुत तेजी के साथ नीचे बहा और नीचे घर गाड़ियां सब कुछ अपने साथ में बहा ले गया। लेकिन रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ एसडीआरएफ इमरजेंसी सर्विसेज लोगों को बचाने में जुटी रही। एक रिपोर्ट आपको दिखाते ताकि आप समझ सके कि हालात कितने खतरनाक थे।
1: पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रहे हैं बादल, फट रहे हैं बादल, दरक रहे पहाड़। मूसलाधार बारिश, सड़कों पर सैलाब ही सैलाब। अगस्त का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में मानसूनी आफत का सिलसिला जारी है। ऋषिकेश हो या देहरादून, हर जगह बारिश कहर बनकर बरस रही है। ऋषिकेश से खौफनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बीन नदी अचानक उफान पर आ गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि उसकी चपेट में एक सफेद रंग की कार आ गई जिसमें दो लोग सवार थे। उफनती बीन नदी से लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और उफनती नदी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। और पानी की तेज धार के बीच जाकर एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी जद्दोजहद के बाद कार में फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
2: और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति इसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया, तो हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है, नदी में, और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटल गया। तब उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत बरसे प्रयास किया गया और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमें हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया।
1: ऋषिकेश ही नहीं, देहरादून में स्वर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ छात्रों की जान जोखिम में आ गई। भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और यूपीएस के 6 छात्र नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। नदी के तेज बहाव के बीच एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और छात्रों को सुरक्षित बचाया। आसमान से बरस रही आफत के चलते टिहरी के मुनिकीरेती में बरसाती नाले में अचानक उफान आ गया और देखते ही देखते कई लोग इसमें फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ ने तुरंत एक्शन लेते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
3: घूमने
4: नहीं,
1: वहीं लगातार हो रही बारिश के बीच टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी भी रौद्र रूप में बह रही है, जिसके चलते श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। तमसा नदी के उफान को देखते हुए लोगों को नदी के आसपास न जाने की अपील की जा रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते देहरादून के निचले इलाकों में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। सड़क हो या रिहायशी इलाके, सब पानी पानी हो गए। ऋषिकेश से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: देखिए, जो उत्तराखंड का हाल है वही हिमाचल का हाल है। हिमाचल प्रदेश के चंबा की बात करते हैं और यहाँ पर भी क्या हुआ, बादल फटता है, बादल फटने के बाद सैलाब आता है। अब सैलाब आता है तो इस गति के साथ आता है कि 40 से 50 जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां पर फंस गए। फिर उनका चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, उनको जी जान से बचाने में जुट गई। एक रिपोर्ट आपके सामने।
1: हिमाचल प्रदेश में बादल फाड़ आफत, चंबा में फिर बादल फटने से तबाही, कुल्लू में सैलाब में फंसी जिंदगी, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कुदरत का कहर टूट रहा है। बादल फटने के साथ साथ पहाड़ भी दरक रहे हैं। भारी बारिश के बीच नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कई जगहों पर भूस्खलन और सैलाब का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें चंबा की है, जहां एक बार फिर बादल फटने के बाद भारी सैलाब देखने को मिला। पहाड़ों से आए मलबे की चपेट में आकर एक लोहे का पुल बह गया, जिससे रास्ता पूरी तरह कट गया। करीब 40 से 50 श्रद्धालु इस रास्ते में फंस गए। ये सभी श्रद्धालु मां भगवती खुंडी वाली के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी भारी बारिश के चलते रास्ते में फंस गए। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय लोग भी एक्शन में आ गए और सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। चंबाई नहीं, कुल्लू में भी भारी बारिश के चलते हालात काफी खराब हो गए हैं। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी के बीच चट्टान पर बैठे दिल्ली के 4 पर्यटक पानी से घिर गए। बाहर निकलने का रास्ता बंद होने के बाद स्थानीय युवाओं और आपदा मित्रों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद 4 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिस तरह से पहाड़ों पर आफत के साथ पानी बरस रहा है और भूस्खलन हो रहा है, उसने लोगों की जिंदगी को संकट में डाल रखा है। चंबा से विशाल आनंद और कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: उत्तराखंड आपने देख लिया, हिमाचल आपने देख लिया, किस तरह से वहां कुदरत का कहर दिखाई आपने देख लिया। पश्चिम बंगाल ये चलते, ये जो आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का कालिम्पोंग है, पूरा पहाड़ ये नीचे आ गया। अब यहां पर अब आप देख एक बात देखिए, जब ये पहाड़ नीचे आ रहा था लोगों की जान कैसे बची है आप सोचिए। इसलिए कहा जाता है पहाड़ पर जब जाएं तो सावधानी से जाएं, क्योंकि ये वीडियो अगर दोबारा से आप देखेंगे, यहां पर एक बाइक सवार शख्स बाल बाल बचता है। वो फुटेज आप देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि कैसे उस बंदे की जान मुश्किल से। ये देखिए, ये बाइक सवार शख्स यहां पर होता है, ये यहां पर खड़ा होता है, अचानक से पूरा मलबा नीचे आता है, बाइक फंस जाती है। लेकिन किस्मत, वो कहते हैं ना, जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई, बिल्कुल ऐसा ही इसके साथ में हुआ। ये बचता हुआ दौड़ता हुआ इधर आ गया। ऐसे वक्त पर बाइक की किसी को सुध नहीं रहती, जान की सुध रहती है। ऐसा यहां पर हुआ। पश्चिम बंगाल की अलग अलग जगहों पर इसी तरह की तबाही की खबर भी आई है।
1: पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर। लेड स्लाइड से बंगाल कालिम्पोंग में हड़कंप। मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे सैलानी। पहाड़ों के साथ साथ मैदानों में भी लगातार हो रही बारिश के चलते हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग से लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। कालिम्पोंग में भारी बारिश के चलते एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई और पहाड़ से पत्थर और मलबा अचानक सड़क पर आ गया। घटना का डरावना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तेजी से गिरता मलबा साफ दिखाई दे रहा है। उसी वक्त वहां से गुजर रहा एक बाइक सवार इसकी चपेट में आने से बाल बाल बचा। अचानक पहाड़ों से आए मलबे में उसकी बाइक तो फंस गई, लेकिन वक्त रहते वो शख्स अपनी जान बचाकर वहां से हट गया। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया है। आसमान से बरस रही आफत ने आसनसोल में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। रेलपार और गरुई नदी से सटे इलाकों में पानी भर गया और लोगों के घरों के अंदर तक घुस चुका है। कुछ जगहों पर तो पानी लोगों के कमर तक पहुंच चुका है। कृष्णानगर के कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। लोगों को अपने बच्चों, जरूरी सामान और मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ रहा है।
3: आदमी लोग को, पब्लिक को, जो जिसका घर डूबा हुआ है, बहुत परेशानी में रात रहा है। उसको भागना पड़ा सामान ले लेके, सामान छोड़ के बच्चा लोग को, गाय गोरु भी था। रात को 11 बजे कोई आदमी सोया नहीं है, रात भर आदमी परेशान है। जो ड्रेन वगैरह है वो कई सालों से साफ भी नहीं होता है, और साफ सफाई का मसला ये है कि इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है। सिर्फ जो है बरसात के टाइम में, बरसात के वक्त में लोग आते हैं और वीडियो बना के चले जाते हैं, इस पर कोई ध्यान उसके बाद नहीं दिया जाता। मैं ये कहता हूँ कि पूरे साल अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये अजाब मोहल्ले वालों के लिए नहीं होगा, बल्कि लोग राहत के सांस लेंगे।
1: आसनसोल नहीं, पुरुलिया में भी लगातार हो रही बारिश के चलते हालात काफी खराब हो चुके हैं। कई इलाकों में पानी भर चुका है, वहीं रास्तों पर पानी सैलाब की तरह बह रहा है। इसी दौरान सड़क पार कर रहा एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गया और देखते देखते पानी के साथ बहता चला गया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उसे बचाया गया।
4: बाढ़ में पूरा रोड, पानी रोड के ऊपर आ गया, दूसरा बात है, एक तो बाइक को बहा के ले गया, यहाँ का लोकल आदमी रेस्क्यू करके ले आया, एक तो टोटो भी बहा के ले गया।
1: पुरुलिया के साथ साथ बांकुरा में भी नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। गंधेश्वरी नदी पर बने मनक नाली पुल को पार करते वक्त एक ट्रक पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया और पलट गया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचा ली। वहीं कोलकाता में भारी बारिश के चलते जोर बगान इलाके में एक घर गिर गया जिसमें कई लोग घायल हो गए। पहाड़ हो या मैदान, इस वक्त हर जगह मानसून आफत का सिलसिला जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: देखिए ये बात सच्चाई है कि पहाड़ों या मैदान हर जगह आफत की बारिश है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से कुछ तस्वीरें आएंगी वो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज, वाराणसी और काशी विश्वनाथ, आप उस जगह पे भी चले जाएं, वाराणसी चले जाएं, हर जगह बारिश ही बारिश है और जोरदार बारिश है। कुछ ऐसा ही यहां पर अब दिखाई दे रहा है। दो तस्वीरें आप देखिए, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, प्रयागराज में, प्रयागराज के पुलिस थाने में पानी भर गया है। मतलब आम इंसान अगर फरियाद लेकर जाए पुलिस थाने तो नाव में चप्पू चलाते हुए चला जाए, क्योंकि बाइक तो जा नहीं सकती, गाड़ी तो जा नहीं सकती, या फिर ऐसे घुटनों से ऊपर आप पेंट कर लीजिए और आप पहुंच जाइए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। ऐसा ही हो रहा है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। ये प्रयागराज है और कुछ ऐसी तस्वीरें प्रयागराज से भी आई, वाराणसी से भी आई हैं।
5: पहाड़ों के साथ साथ मैदानों में मानसूनी आफत, भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश बेहाल यूपी के कई इलाके, अगस्त के महीने में मानसून ने एक बार फिर यूपी के कई जिलों को कवर कर लिया है। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। प्रयागराज में देर रात से हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। रिहायशी इलाकों के साथ साथ पुलिस स्टेशन में भी बारिश का पानी घुस गया है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में भी पानी भर गया और पुलिसकर्मी जूते उतारकर टहलते नजर आए।
6: अब देखिए थाने के कर्मचारी अधिकतर बाहर खड़े हैं और उनका पांव भी डूब गया, जो जिस पे काम करते हैं उस काम करने वाली सीटों भी डूब गई है और अधिकतर आप देखेंगे थाने में पानी भर गया है। इसी तरह माल खाना कहा जाता है, माल खाने के अंदर पानी, यही थानेदार साहब का रूम है, उनके रूम तक में पानी घुस गया है।
5: पुलिस थाना ही नहीं, प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास के अंडरपास में भी पानी भर जाने से उसे बंद कर दिया गया है। वहीं प्रयागराज के कई इलाकों की कॉलोनियों और गलियों में पानी भर गया है। कारें और बाइकें डूब गई हैं, लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है और लोग पहली मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। बारिश और नेपाल के बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद बाराबंकी में सरयू नदी भी उफान पर है और उसके चलते आसपास के इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। लोगों को आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है और अस्सी घाट पर आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है, जिसके बाद कल शाम की आरती छत से कराई गई।

0: वहीं मेरठ में लगातार हो रही बारिश और सड़कों पर पानी जमा होने को लेकर स्कूली बच्चों ने वीडियो जारी कर डीएम और प्रशासन से इस समस्या से छुटकारा दिलाने की अपील की, जिससे उन्हें स्कूल जाने में कोई दिक्कत न हो।
1: डीएम साहब, आपसे प्रार्थना है कि जो अंडरपास में पानी भरा हुआ है उसका जल्द से जल्द समाधान करें, ताकि हमारी पढ़ाई में कोई बाधा न आ सके।
0: उत्तर प्रदेश के अलावा ओडिशा में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बैतरनी और सालंदी नदी में उफान के चलते हालात गंभीर हो गए हैं और सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बह रहा है। अखंडल मणि मंदिर तक जाने के लिए तीर्थ यात्रियों को पानी के अंदर से घुसकर जाना पड़ रहा है। प्रयागराज से आनंद राज और उड़ीसा से अजय कुमार नाथ के साथ आज तक ब्यूरो।
2: देखिए, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जब बाढ़ बारिश आती है तो ज्यादा तुर्रम खान नहीं बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं है। पन्ना से एक तस्वीर सामने आई, मध्य प्रदेश के पन्ना से, वहां पर जान के साथ खिलवाड़ करने लगे। और फिर हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि पानी के तेज बहाव में बाइक ही बहती हुई चली गई। लोग बाग रोकते रहे, लेकिन शख्स ने रुकने का नाम नहीं लिया। अब जरा देखिए इन तस्वीरों को, कौन इन्हें समझाए। बहुत से लोग रुके हुए हैं, समझदारी का परिचय दे रहे हैं, लेकिन नहीं, इनको जल्दबाजी थी। और देखिए, ये तो आर्मी भी कहती है कि जिनको जल्दबाजी थी वो चले गए। तो जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए, बाइक बचाने की कोशिश, खुद को बचाने की कोशिश, सबको बचाने की कोशिश, घरवाली को बचाने की कोशिश, लेकिन सब पानी के तेज बहाव में बहते चले गए। और इसीलिए कहा गया है कि जब भी रपटों पर, पुल पर इतना तेज बहाव दिखे तो वहां पर गाड़ी के ब्रेक तत्काल प्रभाव से लगा लें, ज्यादा चतुर बनने की कोशिश में उसे पार करने में ना निकले, क्योंकि ऐसे में आप और अपने परिवार का नुकसान कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उनको अस्पताल भेजने का आदेश दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इमरान खान को लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश सुनाया गया है और कहा गया है कि उनको अस्पताल में भर्ती कराना होगा। इससे पहले इमरान खान के परिवार की तरफ से ये आरोप लगाते रहे कि जेल में उनकी हत्या कर दी गई है, साजिश रची जा रही है। अब इमरान खान को अस्पताल भेजने का आदेश दिया गया है, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट करने को कहा गया है इमरान खान को। इससे पहले इमरान खान की तबीयत को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं कि वो जिंदा हैं या नहीं, इस तरह की बातें कई सामने आई हैं।
3: अदालतों का काम है, हमें अदालतों जो हकपरस्त जजेस हैं उनसे उम्मीद यही है कि वो इंसाफ करेंगे। और एक जज सिर्फ खड़ा हो गया और उसने इंसाफ किया तो तमाम जजेस को जो है
4: आज के फैसले को और फिर कितना खुश है, कितना खुश है।
3: आज का फैसला मुसलसल 9 अप्रैल 2022 से लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ ज्यादती, जबर, फस्तायत, जुल्म हो रहा था, तो एक फैसला उसका अजाला नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि मजीद इंसाफ।
5: थैंक यू।
6: आज के इस बड़े फैसले
7: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आज अदालत ने जब मायूस हो गए थे कि इंसाफ की जब बिल्कुल उम्मीद खत्म होगी, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद रखी हुई थी कि, और आज शुक्र है कि उन्होंने, हमें एक ही चीज चाहिए थी कि इमरान खान को अस्पताल में उनका मुकम्मल चेकअप हो। और आज जो जज साहब ने, हमने अपने लॉयर से, भंडारी साहब से भी समझा है, उन्होंने कहा है कि उनका अब चेकअप होगा अस्पताल में, उसमें डॉक्टर उज्मा मौजूद होंगी और बोर्ड भी बनेगा।
2: और हमारी सहयोगी गीता मोहन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। गीता मोहन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप पाकिस्तान का सूरत हाल, तस्वीर किस तरह से बदलते हुए देखते हैं, क्योंकि इमरान खान के परिजन कहते थे कि जेल में उनकी हत्या कर दी गई है, मिलने नहीं दिया जा रहा है।
8: देखिए, ये बात तो सही है कि बहुत

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.

0: इन एसोसिएशन विद E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
1: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: महाराष्ट्र में सरकार का एक फैसला और उसके बाद जमकर हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से आदेश दिया गया कि जो भी ऑटो रिक्शा या कैब चालक हैं, उनको मराठी आना बहुत अनिवार्य है और इसके लिए 100 दिन का वक्त दिया गया है और 100 दिन में जो ये नहीं सीख पाता उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी या उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। अब 100 दिन की मियाद पूरी हो चुकी है लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक मराठी नहीं आती है, तो ऐसे में उन लोगों की तरफ से कहा गया है कि 100 दिन का अतिरिक्त वक्त उनको देना चाहिए। अब ऐसे में ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से कल एक अहम बैठक होने जा रही है जिसको आगे की लेकर रणनीति तय होगी।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
1: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
0: नहीं सर।
1: ट्वेल्थ किससे की हो?
0: ट्वेल्थ सर मेरा पीसीएम से रहा।
1: कंपाउंड क्या होता है?
0: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
1: यही है भिख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना,

0: We are with you, friends.
1: लखनऊ सर्वोदय विद्यालय के छात्र यूं ही सड़कों पर नहीं उतरे। अधिकारियों से शिकायत, स्कूल प्रबंधन के सामने अर्जी और तो और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के सामने भी छात्र अपनी बात कह चुके हैं। लेकिन हासिल क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहन रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल के छात्र संभव है कि देश में जंतर मंत्र से शुरू हुए प्रदर्शन करके अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े हैं। लेकिन असली वजह जंतर मंत्र नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी है। 14 अगस्त को लखनऊ में सर्वोदय विद्यालय के छात्र सड़क पर उतरे थे। मुद्दा वही था, स्कूल में शिक्षक नहीं, शुद्ध भोजन नहीं और बीमार पड़ जाओ तो मेडिकल सुविधा नहीं। 14 अगस्त को जब आंदोलन हुआ तो समाज कल्याण मंत्री खुद मौके पर पहुंच गए। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया।
2: यहाँ बच्चों ने बताई है, वो ज्यादातर हमारी जानकारी पहले से है। सभी विद्यालयों में बहुत व्यापक सुधार हुए, लेकिन और सुधार करने की गुंजाइश है, उसको हम लोग पूरा।
1: मंत्री की बात सुनकर छात्रों ने तुरंत रास्ता खोल दिया और असीम अरुण के साथ स्कूल में वापस लौट गए। स्कूल में जाकर समाज कल्याण मंत्री ने सबसे पहले स्कूल के स्टाफ की क्लास लगाई। इसके बाद मंत्री जी ने छात्रों की बात सुनी, आश्वासन दिया और चले गए। लेकिन क्या इससे स्कूल की समस्याओं का समाधान हो गया? 4 दिन में शिक्षक भर्ती तो नहीं हो सकती, लेकिन मेडिकल और मेस की सुविधाएं तो जरूर सुधारी जा सकती है। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। आपको हम कन्नौज लेकर चलते हैं। कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जेन अल्फा है जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा। इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह को ढंक लिया, ये इनका अधिकार है। लेकिन अपने अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका अपनाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए फिर समाधान।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बीजेपी ने घोषित किए चुनावी राज्य के प्रभारी और सह प्रभारी। विनोद तावड़े को मिली यूपी की जिम्मेदारी। पंजाब के सतीश पुनिया और गुजरात के प्रभारी होंगे तरुण चुग। तत्काल प्रभाव से लागू हुई नियुक्तियां। लखनऊ में अवैध डेयरी के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस पर हुए अटैक के बाद प्रशासन का जबरदस्त एक्शन। हमलावरों का सामने आया अतीक कनेक्शन। लगेगा गैंगस्टर एक्ट, चल सकता है बुलडोजर। पटना में टीचर बहाली में देरी से नाराज छात्रों का जुटान। सरकार को दी धरने की चेतावनी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, किसी भी वक्त जारी हो सकता है बहाली का विज्ञापन। परीक्षा की तैयारी करें छात्र। झारखंड में TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होने के बाद गई 2,250 लोगों की नौकरी। फैसले से प्रभावित लोगों का भारी विरोध। देवेंद्र महतो बोले, लीक रोकने की थी गारंटी, सरकार दे। अब पाकिस्तान की शहबाज सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अदियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करने का दिया निर्देश। निजी डॉक्टर करेंगे इलाज। पीटीआई ने कहा, ये पहली जीत।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और अब आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन शांत हुआ तो बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का धरना प्रदर्शन शुरू। पटना में छात्र कर रहे TRE-4 की वैकेंसी जल्द जारी करने और एकल परीक्षा के साथ शिक्षक बहाली की मांग। प्रदर्शन जारी, छात्रों की बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे समेत प्रतियोगिता परीक्षा में सुधार को लेकर कई मांगे, कहा राज्य सरकार उन मांगों पर जल्द फैसला ले। छात्रों ने कहा बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जुलाई महीने में वैकेंसी आ जाएगी लेकिन अब तक BPSC ने विज्ञापन जारी नहीं किया। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा ऐलान, बोले TRE-4 का विज्ञापन कभी भी आ सकता है। झारखंड में छात्र आंदोलन के 24वें दिन छात्रों के आगे झुकी सोरेन सरकार, देवेंद्र नाथ महतो समेत कई छात्र नेताओं ने खत्म किया आमरण अनशन। छात्र नेता देवेंद्र महतो की मांग, सदन में ऐसा कानून बने जिससे किसी छात्र के साथ धोखा या ठगी ना हो, सरकार दे छात्रों के हितों की गारंटी। आज तक से बोले देवेंद्र महतो, छात्रों के हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा, संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड के छात्रों की भूख हड़ताल खत्म होने पर राहुल गांधी बोले बातचीत से निकला समाधान, हर छात्र के साथ हम खड़े हैं। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद रांची के जयपाल स्टेडियम में छात्र झूम उठे, छात्रों ने जमकर सेलिब्रेट किया। झारखंड में TDPL द्वारा आयोजित JSSC CGL समेत सभी परीक्षाएं रद्द, जिससे SO ASO समेत अलग अलग पदों पर कार्यरत 2250 उम्मीदवारों की नौकरी गई। JSSC CGL अभ्यर्थियों का हेमंत सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन, भारी बारिश में भी मंत्रालय के बाहर डटे रहे। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने परीक्षा रद्द करने के फैसले पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया, साथ ही सरकार से भविष्य में पेपर लीक न होने की गारंटी मांगी। दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग के आरोपों को नकारा, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। जंतर मंतर प्रोटेस्ट की पूरी घटना की जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी का गठन करेगा सुप्रीम कोर्ट। यूपी बीजेपी का प्रभारी बने विनोद तावड़े, जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 3 राज्यों के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो पहले हरियाणा और बिहार के प्रभारी रह चुके हैं। जगदीश पटेल गुजरात के बीजेपी नेता हैं, वो 2019 में अमराईवाड़ी विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे, जीते थे। अहमदाबाद शहर बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पंजाब की जिम्मेदारी सतीश पुनिया को दी गई है, उधर गुजरात का जिम्मा तरुण चुग को सौंपा गया। डॉक्टर सतीश पुनिया राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, 2024 में उन्हें हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था। वंदे मातरम विवाद पर सियासत जारी, खड़गे का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी को देशभक्ति पर ज्ञान देने का कोई हक नहीं, देश को बांटने और नफरत फैलाने का आरोप। वंदे मातरम विवाद में शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग। वंदे मातरम विवाद पर केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी का सोनिया गांधी पर निशाना, बोले सम्मान को लेकर संसद में कानून बन चुका है। बीजेपी नेता अनूप एंटनी का कांग्रेस पर हमला, बोले मुस्लिम लीग और एक वर्ग को खुश करने की राजनीति कर रही है कांग्रेस। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर नया प्रोटोकॉल, बड़े सरकारी कार्यक्रमों में करीब 3 मिनट 10 सेकंड की सभी 6 कड़ियां गाई जाएंगी। महाराष्ट्र में गैर मराठी टैक्सी ऑटो चालकों के लाइसेंस और परमिट रद्द करने के मामले में कल होगा फैसला, ट्रांसपोर्ट विभाग ने कल बुलाई अहम बैठक। मराठी सीखने के लिए टैक्सी ऑटो चालकों को 100 दिन का वक्त दिया गया था, यह मियाद खत्म हुई। जो लोग मराठी नहीं सीख पाए उनके लाइसेंस और परमिट रद्द करने की कार्रवाई आज से शुरू होनी थी, लेकिन टैक्सी ऑटो यूनियन ने मराठी सीखने के लिए कुछ और वक्त मांगा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक को लेकर सफाई दी, कहा 27 साल पहले बनवाया मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, आज तक एक भी गड्ढा नहीं। इंटरनेट पर ट्रोल होने पर नितिन गडकरी का मिसिंग लिंक की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान, कहा क्वालिटी कंट्रोल के लिए अच्छा है इंटरनेट मीडिया। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक फैसले पर सियासी विवाद खड़ा होने के आसार, हिमाचल प्रदेश में IAS IPS IFS अफसरों की संख्या कम की जाएगी। राज्य सरकार ने IAS कैडर 153 से घटाकर 130 और IFS का 118 से 83 करने का फैसला किया, इसी तरह IPS का कैडर भी 96 अधिकारियों से कम किया जाएगा। राज्य सरकार ने कैडर कम करने के लेकर केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग को पत्र भेजा, मुख्यमंत्री सुक्कू ने कहा राज्य सरकार प्रदेश में अफसरों की संख्या कम करेगी, इससे एक अधिकारी पर करीब 200 करोड़ रुपए की बचत होगी। यूपी के मथुरा में बीजेपी विधायक और DSP के बीच हुई बहस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विधायक अनिल पाराशर के काफिले को रोके जाने को लेकर दोनों के बीच विवाद, वीडियो में विधायक पुलिस अधिकारी से तीखे अंदाज में बात करते दिखे।
लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके में नगर निगम और पुलिस टीम पर हमले के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, पशु पकड़ने गई टीम पर आरोपियों ने किया पथराव। पुलिस और नगर निगम कर्मचारियों पर हमले में आरोपियों का माफिया अतीक अहमद से कनेक्शन सामने आया, पुलिस लगातार दबिश देकर आरोपियों की कर रही है तलाशी। नगर निगम कर्मचारियों और पुलिसकर्मी घायल हो गए जबकि 4 सरकारी वाहनों के शीशे टूटे, पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। यूपी सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को वार्षिक कैलेंडर के तहत किया जाएगा समयबद्ध, योगी सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश के भिंडी के गोहद में हुए सड़क हादसे में लखीमपुर के मजदूरों की मौत पर सीएम योगी ने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की। सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरा, कल दिल्ली में सीएम योगी इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। सीएम योगी जापानी डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे, जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन, सीएम योगी ने युवाओं को संदेश दिया। सीएम योगी बोले माफिया प्रवृत्ति से युवा शक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान, युवाओं को बचाने के लिए खेल संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी है। सीएम योगी ने कहा युवाओं को निकल रहा ड्रग और स्मार्टफोन का नशा, दोनों से दूर रहने की अपील। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने एसआईटी जांच की रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी। इस जांच रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम आरोपियों के तौर पर शामिल नहीं, एसआईटी रिपोर्ट में पहले से गिरफ्तार 8 लोगों को ही माना गया आरोपी। आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में श्री श्री रविशंकर ने किया GMRVF स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन, हर साल युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। भोगापुरम के युवाओं के लिए रोजगार की नई राह, स्किल सेंटर में इंडस्ट्री आधारित ट्रेनिंग और भारत विदेश में प्लेसमेंट सुविधा। आसनसोल में लगातार बारिश से जलजमाव का खतरा, कई अंडरपास रेलवे ब्रिज पानी में डूबे, ऑरेंज अलर्ट। आसनसोल में आफत की बारिश, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। लगातार बारिश से पुरुलिया में सड़कें जलमग्न, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। पिछले 2 दिनों में बांकुरा जिले में हुई भारी बारिश खतरे के निशान से ऊपर बह रही, गंधेश्वरी नदी उफान में फंसा ट्रक। कोलकाता में बारिश के कारण घर का एक हिस्सा ढह गया, कोई जनहानि का मामला नहीं आया। टिहरी गढ़वाल में लगातार बारिश से बरसाती नाला उफान पर, तेज बहाव के बीच कुछ लोगों को SDRF ने सुरक्षित बाहर निकाला। बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर, खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर, 12 से ज्यादा गांव जलमग्न। प्रयागराज में बारिश का पानी थाली में भरा, साथ ही अंडरपास में घुटनों तक भरा पानी। वाराणसी में छत पर गंगा आरती हुई शुरू, गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते लिया गया निर्णय, नाव संचालन पर रोक। साजापुर में भारी बारिश से मकान ढह गया, मलबे में दबकर चाचा और 3 साल के भतीजे की मौत, महिला गंभीर। मध्य प्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा, मजदूरों से भरे ऑटो और ट्रक की भिड़ंत, 8 मजदूरों की मौत, 24 से ज्यादा घायल। चेन्नई में ज्वेलरी दुकानों को निशाना बना रही छात्र महिला चोरों का गिरोह, बुरके की आड़ में महिलाओं ने ग्राहक बनकर लूटे गहने। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हादसा, काजीगुंड में ट्रक ने CRPF वाहन को मारी जोरदार टक्कर, 5 जवान घायल। कोलकाता एयरपोर्ट के ATC भवन के दूसरे मंजिल में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया काबू, उड़ाने सामान्य रूप से जारी। पालघर में मीरा रोड पर हिट एंड रन की घटना, तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर, डैशकैम में कैद हुई घटना। यूपी ATS का बड़ा एक्शन, जैश मोहम्मद से जुड़ा एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। सूरत में पार्किंग विवाद को लेकर पड़ोसियों के बीच हिंसक झड़प, स्थानीय पुलिसकर्मी ने वर्दी का रुतबा दिखाते हुए पड़ोसी परिवार और बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की। सूरत के होटल में रिसेप्शन पर अचानक गिरा 26 साल का युवक, ID देते वक्त बेहोश, हार्ट अटैक की आशंका। ओडिशा के गंज में JCB चोरी का फिल्मी अंदाज में पुलिस ने किया पीछा, 4 थानों की पुलिस को चकमा देकर बैरिकेड तोड़ता रहा आरोपी, वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, 1 की मौत। इटावा में डबल मर्डर का खुलासा, गुजारा भत्ता से बचने के लिए पति ने साले संग मिलकर पत्नी और सास को उतारा मौत के घाट। उज्जैन में ब्रिज की मजबूती के लिए करवाया गया जब टेस्ट, विवादों में सोशल मीडिया में एक्स हैंडल पर की गई पोस्ट पर छिड़ा विवाद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कलयुगी बेटे ने माता पिता की हत्या कर बोरियों में रखी लाश, आरोपित फरार। झांसी में चैन स्नैचिंग के 2 आरोपित मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया सामान। नैनीताल में आबादी के बीच बाघ ने घोड़े को बनाया शिकार, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर। यूपी के झांसी में रोडवेज बस ने राहगीर को कुचला, युवक की हालत गंभीर, CCTV में कैद।
बिजनौर में एक मंदिर में सत्संग भवन में भीषण आग, बाजार में अफरा तफरी, नजर की लपटों के बीच जान बचाकर भागते देखे लोग। आसमान को छूती नजर आई आग की लपटें, घटना की जानकारी मिलते ही दमकल मौके पर पहुंचा। मेरठ में एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया मुस्लिम युवक, हिंदू संगठन का लव जिहाद का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। संबल में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, रसगुल्ले बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी, नकली दूध पनीर का इस्तेमाल कर तैयार किया जा रहा था माल। दिल्ली के बुराड़ी में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग के शक में युवती की हत्या, सूटकेस से शव बरामद। गोंडा में बुरके में डांस कराने वाले स्कूल किया गया सील, जांच में बिना मान्यता के संचालित मिला विद्यालय। मुजफ्फरनगर में कर्मचारी हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलसा, मौके पर दर्दनाक मौत। बिहार के नवादा में एक ही कमरे से मां और दो मासूम बेटियों के शव बरामद, हत्या आत्महत्या दोनों एंगल से जांच जारी है। देहरादून में पुलिसकर्मी की कार ने युवक को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत के लिए अनाहत सिंह को सम्मानित किया गया, एचसीएल और स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सम्मान किया। जूनियर विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत, पहले इस उपलब्धि से लाखों युवाओं की प्रेरणा बनी। फिल्म प्रेम कीटाणु का टीजर जारी, फिल्म में वीर पहाड़िया, अपार शक्ति खुराना, आफिया और राकेश बेदी का अहम रोल। इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म गन मास्टर G9 की रिलीज डेट आई सामने, फिल्म 27 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रणवीर सिंह की प्रलय की शूटिंग शुरू, इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ लोका फेम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शनी नजर आएंगी। ट्रंप से मिलने अमेरिका जाएंगी शी जिनपिंग, 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में मुलाकात। ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देश ओमान पर बम बरसाने की धमकी दी, कहा अगर ओमान ईरान के साथ उनके प्रशासन की वार्ता में वादा डालता है तो बमबारी की जाएगी। ट्रंप ने कहा उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध, एक दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान से युद्ध में साथ ना देने के लिए दक्षिण कोरिया की आलोचना की थी। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका और ईरान से मध्य पूर्व में युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की, कहा मिडिल ईस्ट में शांति के लिए तुरंत कदम उठाए दोनों देश। ईरान में हमास के प्रतिनिधि खालिद कुद्दुमी ने कहा गाजा में जब तक कब्जा करने वाली फोर्स मौजूद है तब तक उनका गुट हथियार नहीं छोड़ेगा। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा जो 19 अगस्त से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने की बना रहे योजना, ट्रंप ने इसी तारीख को कनाडा में चुनिंदा सामानों पर 50% नए टैरिफ लगाने की धमकी दी। कोलंबिया के राष्ट्रपति एसपीएला ने कहा पिछले हफ्ते देश में आए भूकंप से होने वाला आर्थिक नुकसान $9 बिलियन से ज्यादा है, 280 लोगों की मौत, 143 लापता, कई घायल। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री डेंग ज़ियाओपिंग के निधन पर आधा झुकाया गया देश का झंडा, 1998 से 2003 तक प्रधानमंत्री रहे। लंदन में हजारों लोग अश्वेत प्रोफेसर जैसन के निधन पर शोक मनाने के लिए जुटे, जिन पर साहित्यिक चोरी के कई आरोप लगे थे। पोलैंड की स्टार खिलाड़ी ईगा सुचेक सिनसिनाची ओपन के अंतिम 16 में पहुंची, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए सुचेक का अगला मुकाबला फ्रांस के जायने पेरी से होगा।

0: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE4 को लेकर छात्रों का धरना शुरू हो गया। पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। छात्रों की मांग है कि परीक्षा के लिए जल्द से जल्द विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी किया जाए। छात्र लेकर परीक्षा की मांग कर रहे हैं, यानी PT और मेंस अलग अलग कराने का विरोध किया जा रहा है। जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट समय सीमा के साथ शुरू हो, ऐसा छात्रों का कहना है। हालांकि इस पर जो बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश, उनका भी बयान आया है। उनका कहना है कि कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, तारीख कभी भी जारी की जा सकती है। जो परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा की तैयारी इस वक्त करना चाहिए। अब देखिए, छात्र न्यास सत्याग्रह TRE यानी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी करें, ये छात्रों की तरफ से मांग की गई है।
1: BPSC TRE4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ हो, विज्ञापन जल्द आए, एकल परीक्षा के साथ विज्ञापन आए। अगर विज्ञापन नहीं जारी होता है तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे। और दूसरी बात, BSSC से संविदा होते जाते, इसके अलावा एग्जाम डेट उसका घोषित हो, दरोगा सिपाही BSSC सहित सभी परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए, OMR शीट का कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद मिले, परीक्षा समाप्ति बाद आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आता है तो कटअप सभी का मार्क जारी हो, BET का आयोजन हो, लाइब्रेरियन बहाली हो, सिविल सेवा में हिंदी मीडियम वालों के साथ अब न हो, धांधली सेटिंग न हो, और अभी तक जितना पेपर लीक हुआ है उस सभी की जांच निष्पक्ष हो, और जो भी बड़ा बड़ा माफिया है उन सब पे कार्रवाई हो। BPSC में 20 अधिकारी के नाम पे आया था कि उनका हैंडराइटिंग सेम है, आज तक उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
0: देखिए, छात्रों ने तो एक बैनर पोस्टर भी लगा रखा है जिसमें लिखा है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दें। तो बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी वो कह रहे हैं कि TRE4 की बहाली का विज्ञापन कभी भी आ सकता है, बिहार का छात्र आंदोलन की जगह पढ़ाई की तैयारी करें। उनका बयान आ गया मिथिलेश तिवारी जो बिहार के शिक्षा मंत्री।
2: किसी समय आ सकती है, सारी तैयारी हो चुकी है और अभ्यर्थियों से हम यही आग्रह करेंगे कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। वैकेंसी जितनी हम लोगों ने सूचना दी थी उससे ज्यादा आएगी और किसी समय वैकेंसी जारी हो सकती है।
3: गर्दनीबाग जो अभ्यर्थी
4: आज संभावना है सर, आज
2: मैं कह रहा हूँ किसी समय, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ना किसी समय जारी हो सकती है। BPSC उसकी पूरी तैयारी में जुटा है, हमारे यहाँ स्तर से विभागीय सारी प्रक्रिया पूरी कर ली
3: है। छात्र भी
2: छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं, छात्र पढ़ाई में जाकर के जुटे और कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं उनसे थोड़ा दूरी बना लें, अपनी तैयारी करें और तैयारी करके वो परीक्षा में पास आउट हो, उनका एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है।
0: अब देखिए, अगर झारखंड सरकार ये सोच रही है कि उसकी मुश्किलें खत्म, तो ऐसा नहीं है। रांची में छात्र नेता देवेंद्र महतो ने मांग की है कि सरकार पेपर लीक ना होने की गारंटी दे, परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए, और ये भी कहा कि पहले चरण का आंदोलन सफल रहा लेकिन संघर्ष अभी जारी है। तो रांची के छात्र नेता हैं देवेंद्र महतो, उनका बयान आया है, कह रहे हैं संघर्ष अभी जारी है, पहले चरण का आंदोलन सफल रहा लेकिन परीक्षा पेपर की सुरक्षा सरकार को पुख्ता करनी चाहिए और पुख्ता करे वो। परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए।
5: हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो रिफॉर्म का जो है उस पर एक निगरानी कमेटी गठित हो और पूरा ऑडिट हो, सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं, हर स्टेप में ऑडिट होना चाहिए। मान के चलिए क्वेश्चन सेट हो रहा है, 3 स्टेज पर क्वेश्चन सेट होता है, तो पहला स्टेज पर जो क्वेश्चन सेट होगा वो सेकंड स्टेज पर जाएगा, तो फर्स्ट स्टेज के पार्टी को सेकंड स्टेज में होने वाला क्वेश्चन सेट के बारे जानकारी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फाइनल स्टेज पर जो होगा उसका फर्स्ट और सेकंड वाला को मालूम नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ प्रिंट हो रहा है, कहाँ से उसका ट्रैकिंग हो रहा है। आज तक तो कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर कोई कार्यक्रम पे हमला नहीं होता है, क्योंकि उस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, उस तरीके से ट्रेस किया जाता है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन पेपर को भी, परीक्षा भर्ती को भी, चूंकि परीक्षा व्यवस्था को, भर्ती व्यवस्था को उद्योग न बनाया जाए, इसको प्रॉफिट का, लाभ का व्यवस्था न बनाया जाए, ये बहुत दुख का विषय है।
0: वहीं इसको लेकर झारखंड की तरफ से झारखंड में सरकार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने से एसओ ईएसओ समेत अलग अलग पदों पर कार्यरत 2250 उम्मीदवारों की नौकरी एक झटके में चली गई। अब वो भी नाराज है, सीजीएल परीक्षा पास कर रहे, नौकरी कर रहे कई उम्मीदवार इस घटनाक्रम से सदमे में पहुंच गए। रांची से सत्यजीत की एक रिपोर्ट। खुशी कहीं पर गम, छात्र आंदोलन कर रहे थे, लंबे वक्त से कर रहे थे, 23-25 दिन बाद वहां पर खुशियां मनाई गई। लेकिन ये जो 2250 लोग थे जो एसओ और एएसओ पर जिनकी नियुक्तियां हुई थी वो सब निरस्त, यानी एक पल में नौकरी गई। तो जेपीएससी के बाद अब जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के साथ चली बैठक के बाद यह फैसला लिया। सीएम ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच सीआईडी से कराई जाएगी।
4: रांची में छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार। हेमंत सोरेन ने रद्द की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा। ऐलान के बाद जयपाल स्टेडियम में छात्रों का जश्न। दिल्ली के जंतर मंत्र के बाद अब रांची में भी छात्रों की जीत हुई है। 24 दिन तक छात्रों के धरना प्रदर्शन और विरोध के बाद सोरेन सरकार ने अपना रुख बदला और छात्रों की एक अहम मांग मानने का ऐलान कर दिया।
6: टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
4: जैसे ही सरकार ने ऐलान किया वैसे ही छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आंदोलन कर रहे छात्र झूमने लगे और अपनी जीत पर नाच गाने लगे। पिछले 24 दिनों से जिन मांगों को लेकर छात्र धरना और प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से एक मांग थी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की।
7: आज हम लोग बहुत खुश हैं, का नया त्योहार आज है और असत्य पे सत्य की जीत है। माननीय हेमंत सोरेन और उनके सभी मंत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो हमारे दर्द को समझा।
8: कहा गया है कि झुकाने वाला होना चाहिए और ये झारखंड के छात्रों ने दिखा दिया कि देखिए एकजुट होके एकता में ही बल है। हमें बहुत बहुत ये हमेशा से आंदोलनकारियों की धरती रही है।
7: आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत हुआ है। ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया।
9: सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
10: जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
4: जहां एक तरफ हेमंत सोरेन ने ऐलान किया वहीं दूसरी तरफ देर न करते हुए अनशन कर रहे छात्रों के बीच खुद ही झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडेय पहुंचे और देवेंद्र महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति को खुद जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया।
11: देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल ने स्वेच्छा से अनशन तोड़ने का निर्णय लिया। हम लोगों ने उनका अनशन तोड़वाया, जूस पिलाकर हम लोगों ने अनशन को तोड़वाने का काम किया। हमारे साथ दीपिका पांडे जी और हमारे भाई जयराम महतो जी के हम लोग सामूहिक प्रयास से जो आंदोलन चल रहा था विधिवत आज समाप्त हो गया। जो भी इनकी मांगे थी सरकार ने मान लिया।
0: हिमाचल प्रदेश से अगली खबर, जहां सरकार के एक फैसले पर सियासी विवाद खड़ा होने के आसार। हिमाचल में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों की संख्या कम की जाएगी। राज्य सरकार ने आईएएस कैडर 153 से घटाकर 130 और आईएफएस के 118 से 83 करने का फैसला किया। इसी तरह आईपीएस का कैडर भी 96 अधिकारियों से कम किया जाएगा।
12: फौज कम होगी?
13: नहीं, निश्चित रूप से आईएएस के हम आईएएस के 153 में से 130 पद करने जा रहे हैं, आईएफएस के हम 118 में से 83 पद करने जा रहे हैं, आईपीएस के 96 में से और पद कम करने जा रहे हैं। अधिकारियों की ज्यादा फौज नहीं चाहिए, अधिकारियों की फौज चाहिए हमें जो हमारे अनुसार जो लगता है कि जो योजनाएं हैं, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारी चाहिए होते, योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, उसके स्वरूप को बदलने के लिए अधिकारी चाहिए होते। तो अच्छी बात है कि हमारे अधिकारी अपने आप ही महसूस कर रहे हैं कि एक एक पोस्ट पर एक आईएएस ऑफिसर बैठ गए हैं, तो काफी ऑफिसर्स ऐसे बैठ गए हैं जिनके पास बेचारों के पास काम नहीं होता, उनका टैलेंट भी खराब होता है। तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा जो अप्रूवल है वो दिल्ली जाने के लिए दे रहा हूँ कि जो अधिकारी दिल्ली जाना चाहता है, पहले इनकी फाइलें रोकी जाती थी, मैं इनकी फाइलें तुरंत प्रभाव से अप्रूव करता हूँ और जब रिलीव होना होता तुरंत प्रभाव से कह रहा हूँ, क्योंकि इतने अधिकारियों की जरूरत नहीं है। हमारा 130 भी अभी ज्यादा है, पर लेकिन कुछ आईएएस ऑफिसर्स की रिजाइनमेंट थी तो मैंने 130 किए, पर मैं तो चाहता हूँ कि आईएएस अधिकारी कम से कम 100 और 110 के बीच में होने चाहिए। एक अधिकारी पर हम अगर ये हम सारे कहेंगे तो 200 करोड़ रुपया कम खर्चा आएगा जो कि लोगों को हम सेवा कर सकते।
0: अच्छा, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: पापा।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ
6: टाटा
7: AIG है तो भरोसा है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बीजेपी ने किए घोषित चुनावी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी विनोद तावड़े को मिली यूपी की जिम्मेदारी। पंजाब के सतीश पुनिया और गुजरात के प्रभारी होंगे तरुण चुग। तत्काल प्रभाव से लागू हुई नियुक्तियां। लखनऊ में अवैध डेयरी के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस पर हुए अटैक के बाद प्रशासन का जबरदस्त एक्शन। हमलावरों का सामने आया अतीक कनेक्शन। लगेगा गैंगस्टर एक्ट, चल सकता है बुलडोजर। पटना में टीचर बहाली में देरी से नाराज छात्रों का जुटान। सरकार को धरने की चेतावनी दी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा किसी भी समय जारी हो सकता है बहाली का विज्ञापन। परीक्षा की तैयारी करें छात्र। झारखंड में TDPL के जरिए कराए गए सभी परीक्षाएं रद्द होने के बाद 2,250 लोगों की नौकरी गई। फैसले से प्रभावित लोगों का विरोध। देवेंद्र महतो बोले लीक रोकने की भी गारंटी सरकार दे। पाकिस्तान की शहबाज सरकार और मुनीर को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को अदियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करने का आदेश। निजी डॉक्टर करेंगे इलाज। पीटीआई ने कहा यह पहली जीत।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बुलेटिन बात सबसे पहले हम यूपी की राजधानी लखनऊ की करेंगे, जहां के बुद्धेश्वर पारा इलाके में पुलिस और नगर निगम की टीम पर हुए हमले के बाद से प्रशासन का एक्शन तेज हो गया है। इलाके में अवैध डेयरियों पर कार्रवाई की जा रही, मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दरअसल सोमवार को नगर निगम की टीम पुलिस वालों के साथ अवैध डेयरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, और इस दौरान 20 से 25 लोगों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने टीम पर धारदार हथियार से हमला किया। तो वही इस दौरान एक वीडियो में आरोपी दरोगा की गर्दन दबाते हुए नजर आ रहा है, तो वही एक महिला लोहे की जंजीर से दरोगा के सिर पर वार करते दिख रहे हैं, जिनमें पुलिस वाले को गंभीर चोट आए हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। 20 साल की खुशबू और 27 साल की आफरीन समेत चार आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, बाकी आरोपी इस समय फरार है। इन आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है हैरान कर देने वाला है और दहशत पैदा करने वाला है।
1: एक युवक ने पुलिस वाले को दबोच रखा है। पास में मौजूद एक महिला किसी से बहस कर रही है। महिला के हाथों में जंजीर है और वो पुलिस वाले को बचाने की कोशिश कर रहे शख्स को धमका कर रोक रही है। इस बीच युवक का शिकंजा दारोगा की गर्दन पर कसता जा रहा है। वो पुलिस वालों की जान लेने पर उतारू है। घायल पुलिस वाला तमाम कोशिश करता है, लेकिन युवक उसे मार देने पर ही आमादा दिखता है। पुलिस पर हमले की ये खौफनाक तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां नगर निगम की टीम पुलिस वालों के साथ अवैध रूप से चल रही डेयरियों पर कार्रवाई के लिए पहुंची, तो भीड़ जान लेने पर उतारू हो गई। धारदार हथियार से पुलिस टीम पर हमला हुआ। पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया गया, और जब एक दारोगा वहां मौजूद भीड़ के बीच फंस गया तो उसकी जान लेने की कोशिश हुई। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद महिला ने दारोगा के सिर पर जंजीर से हमला किया, जिससे दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गया। लखनऊ की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरह पुलिस वाले की हत्या की साजिश रची गई, किस तरह भीड़ पुलिस वालों की जान की दुश्मन बन गई। FIR के बाद अब पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लगी है। एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर से आरोपियों की पहचान की जा रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके में हुए बवाल को लेकर अब एक्शन भी तेज है। पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रहे हैं। केस में अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही नगर निगम की टीम अवैध डेयरियों को अब बंद करवा रही है।
1: लखनऊ में जिस तरह पुलिस टीम को टारगेट कर अटैक हुआ, जिस तरह से पुलिस वालों पर हमला हुआ, जिस तरह एक दारोगा की जान लेने की कोशिश हुई, ये तस्वीरें बेहद सनसनीखेज है। ये घटना बेहद गंभीर है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे एक आरोपी ने दारोगा का गला दबा रखा है। दारोगा पर जंजीर से भी हमला हुआ। पुलिस टीम पर हमले के लिए लाठी डंडे, लोहे की रॉड और धारदार हथियारों का इस्तेमाल हुआ। इस सबसे साफ जाहिर होता है कि आखिर हमलावरों का इरादा क्या था, किस तरह उनके सिर पर खून सवार था। अब आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज है। धरपकड़ के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। वहीं जिस इलाके में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ, वहां प्रशासन का कानूनी प्रहार भी शुरू हो गया है। बुद्धेश्वर पारा इलाके में बनी एक एक अवैध डेयरी पर कार्रवाई की जा रही है।
2: यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस जो है वो मौजूद है साथ ही साथ नगर निगम के जो लगातार पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ जो डेरिया है उन पर कार्रवाई हो रही है। और ऐसे में ये सभी जो देख सकते हैं ये जो आप कार्रवाई है ये के खिलाफ इस तरीके से यहाँ पर खाया गया था उसमें की जा रही है। और सभी जो आरोपी हैं वो इस दिशा में ये घर जो है आप पाएंगे, इधर ये सारे घर हैं जहाँ पर ये अवैध डेरिया चल रही थी। इन डेरियों में वो सभी शख्स जो है वो मौजूद थे रहते थे और इसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है जिसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस के जितने भी जवान हैं वो नगर निगम के जवान वो सभी मौजूद हैं और ये कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि कई थानों की फोर्स को मौके पर बुलाया गया है।
1: पांच थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, कई आला अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। मेयर की मौजूदगी में लगातार एक्शन जारी है।
3: कल इन्होंने जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी पुलिस के जवानों पे और पुलिस के एक इंस्पेक्टर पे कार्रवाई की है, मारा है, गला दबाया है, इनका गुस्सा देखिए आप। जो आपकी सुरक्षा में रहते हैं उन्हीं का आप गला दबा रहे हैं। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जितनी मतलब कानूनी कानून के दायरे में रह करके सख्त से सख्त कार्रवाई।
1: पुलिस इस केस में अब तक दो महिलाओं समेत कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस पर हमला करने वालों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है।
2: पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी जो पुलिस है वो पहुंची हुई है। देख सकते आप एसीपी है जो काकोरी के वो पहुंचे हुए हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है। सर यहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई चल रही है क्योंकि आप लोग सभी पहुंचे हुए हैं?
4: यहाँ पे नगर निगम और पुलिस के दोनों की संयुक्त टीमों के द्वारा यहाँ अभियान चलाया जा रहा है और जो भी अवैध संचालक है डेयरी उद्योग संबंधी उन सबके खिलाफ कार्रवाई।
2: जी जी, अभी कितने आरोपी सर पकड़े गए, कितने फरार हैं इसमें?
4: दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, पांच लोग हिरासत में लिया गया, आज गिरफ्तार किया गया,
2: बाकी आगे कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए जो अधिकारी है वो भी मौके मौजूद, पुलिस की फोर्स मौजूद है, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। जो आरोपी फरार है उनके खिलाफ टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि लगातार ही जो रेड है अलग अलग इलाकों में मारी जा रही है, कहां पर वो फरार है आखिर, क्योंकि जिस तरीके से पूरा पूरा पुलिस पर अटैक हुआ उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है।
1: पुलिस टीम मौके पर मुस्तैदी से जमी है, फिर किसी तरह का उपद्रव ना हो इसकी पूरी तैयारी की गई है। जानकारी ये भी है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो सकता है।
3: गलत कामों पे तुरंत कार्रवाई होगी और ये भूल गए हैं, ये सपा सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये महाराज जी की सरकार है। आप अगर गलत है तो गलत है।
1: प्रशासन हमले के आरोपियों से बेहद सख्ती से निपटने की तैयारी में है। आरोपियों की धरपकड़ और अवैध डेयरियों पर एक्शन के साथ इसकी शुरुआत भी हो गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: लखनऊ में हमला करने वालों पर पुलिस का एक्शन जारी है। इस बीच में हमलावरों का अतीक अहमद कनेक्शन सामने आया, पता चला है कि ये हमलावर अतीक अहमद के गुर्गों के संपर्क में थे। तो अतीक अहमद कनेक्शन सामने आया है, पुलिस अब लगातार एक्शन ले रही है और कुछ जो आरोपी समय फरार भी हैं उनका अतीक अहमद के गुर्गों के साथ बताया जा रहा है कि वो कॉन्टैक्ट में थे।

0: हत्या की कोशिश।
1: लोहे की जंजीर से हमला।
0: लोहलुहान पुलिस वाले।
1: लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके की तस्वीरें उस वक्त की है जब अतिक्रमण हटाने गई टीम पर दो दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। हमलावर टीम में महिलाएं आगे थी, छेड़खानी का आरोप लगाते हुए लोहे की जंजीर से हमले कर रही थी। वहीं पुरुष हमलावर सीधे पुलिस वालों की हत्या की कोशिश करने लगे थे और इसके लिए धारदार हथियारों से पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। एक एक आरोपी की धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर कैसे आरोपियों ने एकाएक पुलिस वालों पर हमला कर दिया। क्या यह अचानक हुआ या पहले ही कोई तैयारी की गई थी? क्या पहले ही हथियार जुटा लिए गए और इसकी प्लानिंग के तहत पुलिस नगर निगम की टीम को टारगेट किया गया? क्योंकि इस केस की जांच के बीच एक और बड़ी बात सामने आई है। पता चला है कि कुछ हमलावर अतीक अहमद के गुर्गों के सीधे संपर्क में है। हालांकि इस कनेक्शन की पुलिस अभी जांच कर रही है, पूरे मामले की एक एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में लगी है।
2: जो पुलिस के और अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो एरिया है, इस पूरे एरिए में पाएंगे कि अवैध एरिया थी जहां पर कि पुलिस यहां पर हटाने जब आई थी तब उस दौरान पुलिस पर ही अटैक हुआ था और उसके बाद अब ये कार्रवाई जारी है जिसमें आप देखेंगे क्योंकि मौके पर अभी भी पुलिसकर्मी पहुंचे हैं साथ साथ सेफ्टी में, चूंकि जिस तरीके से अटैक हुआ है वो माना जा रहा है लगातार जो संबंध है वो कई ऐसी जगह से भी है, यानी कि गुरगू से रहा है, अतीक अहमद तक को बताया गया है। इसमें
1: अवैध पशुओं को हटाने के दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला हुआ। हमले की गिरफ्तार आरोपी दो महिलाएं खुशबून और आफरीन है, जबकि अबरार इमरान सालून सुबिल शराफत आसिफ अतीक वारिस नसीम रानू जिशान नसीफ के अलावा 10 से 12 अन्य आरोपी भी नामजद हैं। इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 191(3), 191(2), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 121(2), 132, 324(3) समेत लोक संपत्ति निवारण अधिनियम और CLA एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर कुछ आरोपियों के अतीक के गुर्गों के कनेक्शन की आशंका के बाद पूरे केस की जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: लखनऊ में हुए पुलिस टीम पर हमले पर सियासत भी गर्मा गई है और इस घटना के बाद विपक्षी पार्टियां प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं।
4: योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, पुलिस पर हमला किया है, बलवा करने का प्रयास किया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। पुलिस ने जांच में यह भी पाया है कि लोगों के तार अतीक अहमद के गिरोह से भी जुड़े हैं। 2-3 जिलों के संगठित लोग वहां अवैध डेयरी का संचालन कर रहे थे, कुछ नाम समाजवादी पार्टी से भी जुड़े बताए जाते हैं।
5: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक अजीब सा माहौल है, न पुलिस सुरक्षित है, न लोग सुरक्षित है, न पुलिस से लोग सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठते जा रहे हैं। लखनऊ की घटना जहां अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम और पुलिस के दल पे पथराव किया गया, उनके साथ झगड़ा किया गया, बहुत से फोटो बहुत सी वीडियो वायरल है, और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं जहां लॉकअप में आम आदमी की भी मौत हुई है। तो उत्तर प्रदेश में एक अजीब सा माहौल है जहां न पुलिस सुरक्षित है, न लोग सुरक्षित है, न पुलिस से लोग सुरक्षित है।
3: अब बात करते हैं अगस्त में आसमानी आफत की। पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून का कहर जारी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश और टिहरी में जहां भारी बारिश के बाद नदी में उफान आ गया और उसके चलते लोगों की जान पर बनाई, वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने के बाद नदी नालों में सैलाब की तरह पानी बह रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में लैंडस्लाइड के चलते सैलानियों की जान पर बनाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ओडिशा में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी आ गया, कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करते हैं जहां पर मानसूनी आफत बरस रही है। भारी बारिश के बाद नदी में उफान है, ऋषिकेश में लोगों की जान पर बनाई, जिसके बाद रेस्क्यू टीमों ने पानी के तेज बहाव के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को बचाया। वहीं देहरादून और टिहरी गढ़वाल में बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिखाई दिए।
1: पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रहे हैं बादल, फट रहे हैं बादल, दरक रहे पहाड़। मूसलाधार बारिश, सड़कों पर सैलाब ही सैलाब। अगस्त का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में मानसूनी आफत का सिलसिला जारी है। ऋषिकेश हो या देहरादून, हर जगह बारिश कहर बनकर बरस रही है। ऋषिकेश से खौफनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बीन नदी अचानक उफान पर आ गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि उसकी चपेट में एक सफेद रंग की कार आ गई, जिसमें दो लोग सवार थे। उफनती बीन नदी से लोगों को बचाने के लिए SDRF के जवानों ने मोर्चा संभाला और उफनती नदी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और पानी की तेज धार के बीच जाकर SDRF के जवानों ने कड़ी जद्दोजहद के बाद कार में फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
6: और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति इसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया, तो हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है नदी में, और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटल गया। तब उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत भरसक प्रयास किया गया और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमें हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया।
1: ऋषिकेश ही नहीं, देहरादून में स्वर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ छात्रों की जान जोखिम में आ गई। भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और UPS के 6 छात्र नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। नदी के तेज बहाव के बीच SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और छात्रों को सुरक्षित बचाया। आसमान से बरस रही आफत के चलते टिहरी के मुनिकीरेती में बरसाती नाले में अचानक उफान आ गया और देखते ही देखते कई लोग इसमें फंस गए, जिसके बाद SDRF ने तुरंत एक्शन लेते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
7: घूमने नहीं, दोस्त निकल गए।

0: तक हो या रिहायशी इलाके सब पानी पानी हो गए। ऋषिकेश से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब बात हिमाचल प्रदेश के चंबा के, जहां पर एक बार फिर बादल फटने के बाद सैलाब से बड़ी तबाही मची है। पहाड़ों से आई मलबे की चपेट में आने से एक पुल बह गया, जबकि 40 से 50 तीर्थयात्री वहां पर फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनको बचाया गया। वहीं कुल्लू में भी नदी के उफान ने फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
0: हिमाचल प्रदेश में बादल फाड़ा आफत, चंबा में फिर बादल फटने से तबाही, कुल्लू में सैलाब में फंसी जिंदगी, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कुदरत का कहर टूट रहा है। बादल फटने के साथ साथ पहाड़ भी दरक रहे हैं। भारी बारिश के बीच नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कई जगहों पर भूस्खलन और सैलाब का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें चंबा की है। एक बार फिर बादल फटने के बाद भारी सैलाब देखने को मिला। पहाड़ों से आए मलबे की चपेट में आकर एक लोहे का पुल बह गया, जिससे रास्ता पूरी तरह कट गया। करीब 40 से 50 श्रद्धालु इस रास्ते में फंस गए। ये सभी श्रद्धालु मां भगवती खुंडी वाली के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी भारी बारिश के चलते रास्ते में फंस गए। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय लोग भी एक्शन में आ गए और सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। चंबाई नहीं, कुल्लू में भी भारी बारिश के चलते हालात काफी खराब हो गए हैं। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी के बीच चट्टान पर बैठे दिल्ली के 4 पर्यटक पानी से घिर गए। बाहर निकलने का रास्ता बंद होने के बाद स्थानीय युवाओं और आपदा मित्रों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद 4 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिस तरह से पहाड़ों पर आफत के साथ पानी बरस रहा है और भूस्खलन हो रहा है, उसने लोगों की जिंदगी को संकट में डाल रखा है। चंबा से विशाल आनंद और कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि भारत का युवा आज नौकरी लेने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नितिन नवीन ने युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि यही पीढ़ी भारत का भविष्य है। उन्होंने कश्मीर की मिसाल दी, कहा कि एक समय था जब कश्मीर का युवा पत्थर फेंकता था, लेकिन आज क्रिकेट में झंडे गाड़ रहा है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार नौजवानों को कई अवसर दे रहे हैं, हम सबको इनके साथ संवाद करके उन्हें दिशा देनी चाहिए।
2: भारत का युवा वो युवा है जो आज स्टार्टअप के माध्यम से केवल जॉब लेने के लिए नहीं, जॉब देने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि चाहे वो स्टार्टअप हो, यूनिकॉर्न हो, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने की बात हो, कहीं ना कहीं युवा आज भारत के भविष्य के निर्माण के लिए अपने आप को आगे लेके चल रहा है। और यही युवा भारत का निर्माण करेगा। जो लोग युवाओं को अलग तरह से परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि कश्मीर में जब युवा पत्थर फेंकता था उसको युवा नहीं, जो रणजी विजेता होता है वो युवा कहलाता है। आज खेलो इंडिया के माध्यम से देश का युवा भारत के लिए पदक जीत के ला रहा है। हमें वो भारत के युवाओं की पहचान बनानी है। हमें अपने युवाओं को रिसर्च के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर्स के लिए नए नए आयाम के साथ जोड़ना है। इसलिए हम युवाओं के बीच में चर्चा और संवाद के साथ जाएंगे।
1: और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
3: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
2: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
4: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
5: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
6: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए।

0: है, ड्रॉप करके मारा है इस लड़की सबको।
1: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
0: विमल बोलो जुबा केसरी
2: 19 इयर्स की थी तब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मैंने जिम में क्रश बनाया था
3: उसी से रिलेशनशिप था क्या
2: यही मोटिवेशन था मेरा जिम जाने का कि
3: जब जिम जाओ आशी तो वहाँ वर्कआउट करो वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं कर रहा है
2: 19 साल की थी ना फिर जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने जिम भी छोड़ दिया था मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सिर्फ जॉब ही करूँ मेडिकल स्टूडेंट थी तो डॉक्टर ये तो टीचर ऐसा तो शी वाज लाइक कैमरा के आगे क्या कर रही हो क्या है ये टाइम पास ही रहना चाहिए इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है वो फिर जब मॉम ने देखा कि अच्छा पैसे भी मिलते हैं इसमें तो
3: यू लॉस्ट योर मॉम आल्सो
2: आई लॉस्ट माय डैड व्हेन आई वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड एंड देन आई लॉस्ट हर तो मेरी शादी नहीं देख पाएंगे
4: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है
5: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या
4: नहीं सर
5: 12th किससे की हो
4: 12th सर मेरा PCM से रहा
5: कंपाउंड क्या होता
4: है बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर
5: यही है भिख मंगे वाली क्वालिटी तुम पूछ रहे थे ना यही है यही एक मिनट
4: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को ह्यूमिलिएशन कहते
5: देख भाई अपनी गारंटी पे छेड़ना

बीजेपी ने घोषित किए चुनावी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी। विनोद तावड़े को मिली उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी। पंजाब के सतीश पूनिया और गुजरात के प्रभारी होंगे तरुण चुग। तत्काल प्रभाव से लागू हुई नियुक्तियां। लखनऊ में अवैध डेयरी के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस पर हुए अटैक के बाद प्रशासन का जबरदस्त एक्शन। हमलावरों का सामने आया अति कनेक्शन। लगेगा गैंगस्टर एक्ट, चल सकता है बुलडोजर। पटना में टीचर बहाली में देरी से नाराज छात्रों का जुटान। सरकार को घेरने की दी चेतावनी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा किसी भी वक्त जारी हो सकता है बहाली का विज्ञापन, परीक्षा की तैयारी करें छात्र। झारखंड में TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होने के बाद 2500 लोगों की नौकरी। फैसले से प्रभावित लोगों का भारी विरोध। देवेंद्र महतो बोले लीक रोकने में गारंटी दे सरकार। पाकिस्तान की शाबाज शरीफ सरकार और आसिम मुनीर को बड़ा झटका। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अदियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट करने का दिया आदेश। निजी डॉक्टर करेंगे इलाज। पीटीआई ने कहा ये पहली जीत।

0: आसिम मुनीर साहब क्योंकि डरते हैं इमरान खान साहब।
1: इमरान खान से फिर बुरी तरह डरा मुनीर। कल इमरान की मेडिकल रिपोर्ट आई। आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में परिवार से मुलाकात पर सुनवाई। क्या परिवार से मिले इमरान तो मुनीर का होगा काम तमाम।
0: इमरान खान को जाली तरीके से मुकदमा में फंसा के जेल में रखा हुआ है कि ये बाहर आ गया तो ये खा जाएगा हम सबको, खा तो हो जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की डॉक्यूमेंट्री ने पाकिस्तान की उड़ाई नींद। आधी रात को पाकिस्तानी फौज के मक्कार डीजी आईएसपीआर ने झूठ के पुलिंदा वाला पोस्ट किया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के 5 साल का जश्न।
2: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की जो डॉक्यूमेंट्री है उससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। आधी रात को पाकिस्तान की फौज के प्रवक्ता ने झूठ का पुलिंदा लेकर सोशल मीडिया पर अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। वहीं पाकिस्तान आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क पर भारत में जो जबरदस्त एक्शन हुआ है, 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, 500 से ज्यादा नेटवर्क्स पर, टेलीफोन नेटवर्क्स पर, मोबाइल नेटवर्क्स पर नजर है, इससे पाकिस्तान तिलमिला गया है। इसके अलावा कल नई दिल्ली में अफगानिस्तान का जो दूतावास है उसमें एक जलसा हुआ। इस जलसे में तालिबान सरकार ने 2021 में अमेरिका के दखल को खत्म कर अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार बनी यानी अपनी सरकार बनी तो उसका जश्न मनाया। इस जश्न में भारत शामिल हुआ, ईरान शामिल हुआ, अफगानिस्तान के तो लोग वहां थे ही, लेकिन पाकिस्तान की नो एंट्री थी और इसी से पाकिस्तान तिलमिला गया। यही नहीं, आज आसिम मुनीर को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और संभवतः पाकिस्तान के इतिहास में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक इमरान खान को लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उससे आर्मी चीफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर की नींद उड़ गई है। यह बहुत बड़ा फैसला है। दरअसल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने इमरान खान को इलाज के लिए पाकिस्तान में रावलपिंडी में जो अदियाला जेल है उससे निकालकर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। यह फैसला जस्टिस शाहिद वहीद की अध्यक्षता वाली 3 जजों की खंडपीठ ने दिया है। अदालत से अपील यह की गई थी कि इमरान खान का इलाज उनकी निजी डॉक्टरों की देखरेख में कराया जाना चाहिए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इमरान खान इलाज के लिए 16 सितंबर तक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में ही रहेंगे। इलाज के लिए बाकायदा एक विशेष मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश भी दिया जाएगा जिसमें आंखों के डॉक्टर, हृदय रोग विशेषज्ञ और उसके अलावा उनके जो व्यक्तिगत चिकित्सक हैं, उनके पर्सनल फैमिली फिजिशियन डॉक्टर फैजल सुल्तान और उनकी बहन डॉक्टर उज्मा खान इस मेडिकल बोर्ड का भाग होंगी। गठित मेडिकल बोर्ड इमरान खान की विस्तार से जांच रिपोर्ट्स का मुआयना करेगा, इमरान खान का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जहां जहां उनको जो परेशानी है हर परेशानी का इलाज ढूंढा जाएगा। हालांकि अदालत ने यह भी सख्त निर्देश दिया है कि इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट है उनकी बहनों या उनकी पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ओर से सार्वजनिक नहीं की जाएगी। शाबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान को अस्पताल ट्रांसफर करने पर कड़ा विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्ति को दरकिनार किया, खारिज करते हुए कहा कि इस आपत्ति को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाए। इमरान खान की बहन और उनकी पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री है सोहेल अफरीदी, उन्होंने इसे शाबाज शरीफ के प्रशासन पाकिस्तान में तो दबी जबान में लोग ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर के खिलाफ पहली बड़ी जीत बताया है।
3: अदालतों का काम है, हमें अदालतों जो हकपरस्त जजेस हैं
4: उनसे उम्मीद यही है कि वो इंसाफ करेंगे और एक जज सिर्फ खड़ा हो गया और उसने इंसाफ किया तो तमाम जजेस को जो है
5: आज के फैसले को फिर कितना खुश है, कितना खुश है
4: आज का फैसला मुसलसल 9 अप्रैल 2022 से लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ ज्यादती जबर फस्तायत जुल्म हो रहा था तो एक फैसला उसका अजाला नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि मजीद इंसाफ।
6: थैंक यू।
7: आज के इस बड़े फैसले
8: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आज अदालत ने हमें जब मायूस हो गए थे कि इंसाफ की जब बिल्कुल उम्मीद खत्म होगी लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद रखी हुई थी और आज शुक्र है कि उन्होंने हमें एक ही चीज चाहिए थी कि इमरान खान को अस्पताल में उनका मुकम्मल चेकअप हो। और आज जो जज साहब ने हमने अपने लॉयर से भंडारी साहब से भी समझा है, उन्होंने कहा है कि उनका अब चेकअप होगा अस्पताल में, इसमें डॉक्टर उज्मा मौजूद होंगी और बोर्ड भी बनेगा।
2: और इस समय पाकिस्तान से पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं, इस्लामाबाद से जुड़ रही हैं आरजू काजमी। आरजू, इस कोर्ट के आदेश का क्या मायने निकाला जाए इमरान खान की सेहत को लेकर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लगातार प्रयास कर रहा था, उनकी बहनें जो लगातार प्रयास कर रही थी, अदियाला जेल के बाहर बैठी हुई थी कई दिनों से, अब क्या ये पहली न्याय की जीत जिसे कहा जा रहा है कि जस्टिस हैज वन, पहली जीत है ये?
9: ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन अभी जब तक इमरान खान साहब की हालत बेहतर नहीं हो जाती और उनकी फैमिली की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता जब तक कहना मुश्किल होगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये डील है या ये ढील है, क्या दिया गया है, क्या इमरान खान के साथ कोई डील की गई है या इमरान खान को थोड़ी ढील दी गई है इसलिए कि इस वक्त शहबाज हुकूमत जो है या शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में भी हर तरह की ही बातें चल रही हैं जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है, तो क्या इसलिए इमरान खान को बाहर लाया गया है। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि इमरान खान के लिए एक दो जर्नलिस्ट ऐसी बात भी कर रहे थे कि शायद इमरान खान को कुछ हो गया है या इमरान खान अब नहीं रहे, तो शायद ये वजह भी बन सकती है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इमरान खान को बाहर लाना ही पड़ रहा है। और इस तरीके से जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, पहले कहा जा रहा था आज ही शिफ्ट किया जाएगा, अब कहा जा रहा है कि 2 दिन के अंदर शिफ्ट किया जाएगा और हॉस्पिटल के बाहर किसी किस्म का कोई क्राउड ना हो, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दी जाए, इस किस्म की भी बात जो है वो कोर्ट की तरफ से कही गई है।
2: शहबाज शरीफ सरकार की बात करें या कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बात करें, उनको क्या इस बात का डर है कि अगर इमरान खान को जेल से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के, वो एक बार फिर जोश में भर जाएंगे और विरोध कर सकते हैं इस समय जो पाकिस्तान के सत्ता में लोग हैं उनका?
9: बिल्कुल कर सकते हैं। और इमरान खान जो है वो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जेल में जाकर ज्यादा पॉपुलर हो गए, उससे पहले जब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर थे तब शायद इतने पॉपुलर नहीं थे। और अगर इमरान खान को ये हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे तो हो सकता है कि इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं वो दोबारा से प्रोटेस्ट करें कि इमरान खान को रिहा करने के लिए, इमरान खान को बनीगाला भेजने के लिए, लेकिन इमरान खान की पार्टी शायद फिलहाल इस चीज को अवॉइड करेगी क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी यही कहा गया है कि किसी किस्म का ना तो रोड ब्लॉक हो, ना ही कोई प्रोटेस्ट हो और ना ही कोई क्राउड जो है वो हॉस्पिटल के बाहर जमा हो। तो जाहिर है कि इमरान खान को ट्रीटमेंट की पहले ज्यादा जरूरत है, तो शायद उनकी फैमिली भी इसी तरफ जाएगी।
2: ये डील है या ढील है, इसके क्या मायने निकाले जाएं कि डील क्या हुई है कि उनको जेल से निकालकर अस्पताल में भर्ती किया जाएगा लेकिन वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे? क्या वो आसिम मुनीर के बतौर पाकिस्तान के सदर रियासत या प्रेसिडेंट को भी अप्रूवल दे सकते हैं या फिर वो अपने ही ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे होंगे अगर ये कर दिया उन्होंने?
9: देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए तो उनको डेफिनेटली मना किया गया होगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, वैसे इमरान खान तो बहुत डिफरेंट साबित हुए जिस तरीके से वो जेल में रहे, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब भी पॉलिटिशियंस को जो है वो जेल से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो उसके बाद वो मुल्क से बाहर जाते हैं, वो पाकिस्तान में रहते नहीं पाए जाते, वो या तो कहीं इंग्लैंड में या फिर सऊदीया या किसी भी दूसरी कंट्री में भेज दिए जाते हैं। तो क्या इमरान खान भी उसी तरफ जाएंगे? कई लोग इस वक्त ये सवाल भी कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर डील है और इमरान खान डील करके हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो फिर हो सकता है कि हॉस्पिटल से फिर वो बाहर कहीं भेजे जाएं,
5: जी
9: और अगर ये डील नहीं है सिर्फ इस वक्त की गवर्नमेंट को दिखाने के लिए किया गया है या एक मजबूरी में किया गया, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान का बहुत नाम ले रहा है, तो फिर सिर्फ ट्रीटमेंट के बाद शायद वापस उनको जेल ही जाना होगा।
5: यह बड़ी बात कह रही है, रहिए मेरे साथ आरजू काजमी। दरअसल अगर पाकिस्तान का इतिहास खंगाला जाए तो जुल्फिकार अली भुट्टो को तो जियाउल हक ने जेल में ही मरवा दिया था, फांसी दे दी थी। बेनजीर भुट्टो देश छोड़कर बाहर चली गई, जब वापस आई तो परवेज मुशर्रफ ने आतंकवादियों द्वारा उनको मरवा दिया था। फिर नवाज शरीफ केवल एक ऐसे नेता हैं जिनको पहले जेल में डाला गया, जेल से जब वो निकले तो जेल से विदेश गए, विदेश से वापस तो लौटे हैं, लेकिन अभी सत्ता में उनका भाई है, वो खुद नहीं या उनकी बेटी है। दरअसल इमरान खान की अगर बात करें तो कल ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर अडियाला जेल से चिंता बढ़ा देने वाली खबर आई थी। ये रिपोर्ट 1 अगस्त की है। इसके बाद इमरान खान की जेल में मौत की अफवाह पाकिस्तान में बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैल गई थी। लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 74 साल के इमरान खान का जो ब्लड प्रेशर है वो 140/100 तक पहुंच गया, वहीं जो उनकी पल्स रेट है वो गिरकर 50 दर्ज की गई है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि इमरान खान गहरे मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव, लगातार सिरदर्द और एंजाइटी से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनकी पत्नी बुशरा बेगम उनकी बहनों से, उनके परिवार से, उनके वकीलों से उनकी मुलाकात पर जो रोक लगा दी गई है। दरअसल जेल में अखबार और टीवी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, एक तरह से अकेले में एकांत में रहते हैं इमरान खान, और इसीलिए उनकी सेहत बिगड़ रही है। इस स्थिति को देखते हुए मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान को एंटी एंजाइटी और नींद की दवाई देने के साथ साथ परिवार से ज्यादा मुलाकात कराने और पढ़ने पढ़ाने का सामान मुहैया कराने की सलाह दी। दूसरी ओर रिपोर्ट ने जेल प्रशासन की एक तरह से पोल खोल दी। अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सभी सुविधाएं देने का दावा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई मेडिकल रिपोर्ट ने जेल प्रशासन के इन सभी दावों और उनकी विश्वसनीयता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पाकिस्तानी टीवी चैनल पर पाकिस्तान की सरकार के मंत्री तारिक फजल चौधरी आए और उन्होंने एक बार यह नहीं कहा कि इमरान खान को उनकी बहनों से मिलने दिया जाएगा। वो बार बार यही कहते रहे कि जेल में बंद उनकी पत्नी बुशरा बीवी से मुलाकात उनसे लगातार कराई जाती है। तो क्या कहा उन्होंने, हम आपको एक बार सुनवा देते हैं।
6: अदालत में और वो ये कहती है रिपोर्ट कि उनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला, पैल्पिटेशन का मसला, आप खुद डॉक्टर हैं, उनको एंग्जाइटी का मसला है, सर भारी होने का मसला है, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको रिलैक्स होने के लिए उनकी फैमिली से मुलाकातें कराई जाए। ये कल कर देना का फैमिली से मिलवा दें, 8 महीने से नहीं मिलने दिया गया।
10: देखिए चाचा साहब, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि फैमिली से इमरान खान साहब की रेगुलर मुलाकात होती है, जो उनकी अहलिया है बुशरा बीबी। दूसरी बात यह है कि सियासी मुलाकातें और उनका इलाज, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन जब उन्होंने जेल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की और वहां से वो बयानात आने शुरू हुए कि जो के नाकाबले कबूल थे, तो उसके बाद उनकी मुलाकातों में तातुल पैदा हुआ। उनकी लीगल टीम उसके बावजूद उनसे मिलती रही, डॉक्टर्स बिल्कुल उनसे मिलते रहे, फैमिली अभी भी उनसे मिलती है, ज्यादा फ्रीक्वेंट मिलना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। बाकी जो सियासी मुलाकातें उनके लिए
6: में अहलिया मिलती है, बहनें नहीं मिलती है, फैमिली में अहलिया मिल रही हैं जो कि खुद कैद में है फैमिली, अदरवाइज तो बहनें 38 दफा आई, 38 दफा नहीं मिलने दिया गया अलीमा खान साहब को।
10: मैंने फैमिली से मुराद मेरी उनकी अहलिया मुतरमा है, उनसे उनकी रेगुलर मुलाकातें होती हैं, और अगर आपने कहा कि जैसे अगर उनकी ख्वाहिश होगी कि ज्यादा फ्रीक्वेंट हो तो हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं होगा।
5: अच्छा सवाल यह है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इमरान खान से इतना खौफ क्यों है, इतना डर क्यों है? क्या आसिम मुनीर को यह लगता है कि इमरान खान अपनी बहनों से अगर मिल लेंगे तो उनकी एक वो तस्वीर बाहर आएगी और उससे इमरान खान के प्रति जो लोगों के मन में, जैसा अभी हमारे पाकिस्तान से गेस्ट भी बता रहे थे कि इमरान खान जेल में जाने के बाद ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, तो इसीलिए आसिम मुनीर को डर है कि उनकी सत्ता हिल जाएगी। सुनिए पाकिस्तानी पत्रकार इमरान रियाज खान का क्या इस पर क्या कहना है कि आसिम मुनीर के मन में वो खौफ है इमरान खान को लेकर, वो क्यों है, सुनिए।
11: आसिम मुनीर साहब क्योंकि डरते हैं इमरान खान साहब से,
0: इसीलिए उन्होंने इस्तिस्ना लिया, इसीलिए उन्होंने 5 साल की एक्सटेंशन ली। उन पर खौफ तारी है, बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा इमरान खान से, तो वो मुलाकात नहीं करवाते। इमरान खान को जाली तरीके से मुकदमात में फंसा के जेल में रखा हुआ है कि ये बाहर आ गया तो ये खा जाएगा हम सबको, खा तो वो जाएगा आप सबको, क्योंकि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आप जो मर्जी कर ले आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आज अगर कोई बुजदिल ये ताना देता ना कि इमरान खान ने जेल बहादुरी से नहीं काटी तो वो 10 दिन ऐसे गुजार के दिखाए। आसिम मुनीर साहब जितने इमरान खान साहब ने महीने गुजार दिए ना, इतने दिन वो कहते तन्हाई में रह के दिखाएं, उनको लग पता जाएगा कि ये होता क्या, ये इतनी बड़ी अजियत है। मैंने ये टाइम गुजारा ना, मैं जानता हूं।
5: ये बड़ी बात है कि आसिम मुनीर के मन में खौफ है इमरान खान का कि अगर वो जेल से बाहर आ गया तो वो मुझे खा जाएगा। ये पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है आसिम मुनीर और इमरान खान, इनके बीच जो लड़ाई है ये बेहद व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है। ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब यह अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है कि या पाकिस्तान में इमरान खान जिंदा रहेंगे या आसिम मुनीर। दरअसल यह बात 2019 की है जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, वजीर आजम थे, तब आसिम मुनीर DGISI थे। मुनीर ने कथित तौर पर इमरान खान की बेगम बुशरा बीवी और उनके कारोबार से जुड़े और उनके करीबियों से जुड़े भ्रष्टाचार के कुछ मामलों की फाइलें खोल दी और इमरान खान के सामने बुशरा बेगम की एक तरह से पोल खोल दी, कथित रूप से भ्रष्टाचार की। इमरान खान इस बात से बेहद नाराज हो गए और महज 8 महीने के भीतर आसिम मुनीर को DGISI के पद से हटा दिया। यह किसी भी DGISI का अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल था। आसिम मुनीर इस बेइज्जती को नहीं भुला पाए, जेल में बंद। वहीं इमरान खान मेन स्ट्रीम मीडिया पर अब बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आसिम मुनीर जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने इमरान खान की हर कवरेज पर बैन लगा दिया। इसके बावजूद इमरान खान को लोग कहते थे कि इमरान खान तो ड्रग एडिक्ट हैं, 48 घंटे जेल में नहीं रह पाएंगे। आप सोचिए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं वो जेल में लगातार हैं और जेल जाने के बाद वो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। हाल ही में उनकी सेहत और जान की खतरे की अफवाह न केवल पाकिस्तान में बल्कि देश दुनिया में फैल गई और उनके समर्थक उन्होंने सड़कों पर आने की धमकी दे डाली। फौज की तमाम कोशिशों के बावजूद इमरान खान का जो नैरेटिव है ये पाकिस्तान के अंदर कमजोर नहीं हुआ है। आसिम मुनीर को अब इसी बात का डर सता रहा है कि इमरान खान अगर जेल में मारे गए या उनकी मौत हो गई तो फिर जो जनसैलाब है पाकिस्तान में उससे पिछली बार तो केवल कोर कमांडर लाहौर को वो झेलना पड़ा था या पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मियांवाली को, अब कहीं GHQ रावलपिंडी पर पाकिस्तान की आवाम हमला ना कर दे। और यही समय सबसे बड़ा उनको खतरा है कि जन समर्थन से इमरान खान एक बार सत्ता में अगर लौट आए तो फिर फौज को एक वापस बैरक में जाना होगा और दो आसिम मुनीर को बोरिया बिस्तरा बंद करके बांध कर पाकिस्तान छोड़ देना होगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी नेता ने सीधे तौर पर इस खुले तौर पर सेना और सेना के जनरलों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। दरअसल 9 मई 2023 की हिंसा में इमरान खान की पार्टी के समर्थकों ने पाकिस्तान का जो सैन्य मुख्यालय है GHQ उसके आसपास, अच्छा इस्लामाबाद की रावलपिंडी की अगर छोड़े तो लाहौर में कोर कमांडर के घर पर हमला कर दिया था। इमरान खान पाकिस्तान की सेना के निचले और मध्यम रैंक के अफसरों और उनके परिवारों में भी बेहद लोकप्रिय है। कई कोर कमांडर, कई जनरल्स ऐसे हैं जो इमरान खान को अभी भी ये मानते हैं कि वो पाकिस्तान को बचा सकते हैं और इसी बात का डर आसिम मुनीर को है कि इमरान खान कहीं फौज के अंदर ही विद्रोह ना करा दे और इसी वजह से उनकी पूरी कोशिश है इमरान खान ना तो जेल से बाहर आए, ना ही उनकी कोई तस्वीर, कोई वीडियो, ना परिवार के जरिए कोई खबर बाहर आए। लेकिन अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो सिचुएशन है वो ये है कि आसिम मुनीर इमरान खान को जेल से बाहर आने और अस्पताल में अपनी बहन से मिलने से रोक नहीं पाएंगे। यही सबसे बड़ा उनके लिए खतरा है इस समय।
11: जब से इमरान खान साहब की आंख का इशू आया है तब से लेकर आज तक हम एक ही डिमांड कर रहे हैं, उनकी फैमिली की मुलाकात हो, उनकी डॉक्टर्स की मुलाकात हो और उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में इमरान खान साहब का इलाज बेहतरीन हॉस्पिटल में हो। इसमें क्या गैर आईनी है, इसमें क्या गैर कानूनी है? अभी अगर फर्ज करें इमरान खान साहब की ये हालत है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो मौजूदा हुकूमत में है, जो अदलिया इंसाफ नहीं कर रही। हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे।
5: आरजू इस बात में कितनी सच्चाई है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक पाकिस्तान में आसिम मुनीर और इमरान खान दोनों खुले में नहीं रह सकते।
9: देखें, बात तो यही की जा रही है कि दोनों खुले में नहीं रह सकते, ये एक साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये बात तो हमेशा से ही की गई। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और कहूंगी कि नवाज शरीफ साहब की आपने जो बात की थी, नवाज शरीफ साहब एक बार नहीं दो बार बाहर गए, और एक बार तो जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में गए थे और 10 साल तक सऊदीया में रहे थे। उसके बाद इमरान खान के आने के बाद दोबारा चले गए और उसके इमरान खान के जाने के बाद वापस आए। इसी के साथ साथ जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर नवाज शरीफ का नाम लेने की इजाजत नहीं थी, नवाज शरीफ की फोटो भी नहीं दिखाई जाती थी, सिर्फ बात की जाती थी उनकी पार्टी का नाम लेके। यही चीज इस वक्त इमरान खान के साथ हो रही है कि इमरान खान का नाम भी नहीं लिया जाता टीवी चैनल्स पे, और ना ही इमरान खान की कोई पिक्चर या कोई फुटेजेस वो दिखाने की इजाजत नहीं है। तो आप इससे ये बात तो समझ सकते हैं कि ये पॉलिसीज कौन बना रहा है, ये सब कुछ कर कौन रहा है, ये डेफिनेटली गवर्नमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट
5: तस्वीरों में हमको दिख रहा है, ये पॉलिसीज कौन बनाता है पाकिस्तान में। आज तक पर आप मेरे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने खुद को दिमागी नक्सल बताकर नक्सल हिंसा के अनगिनत पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है? यह सवाल दरअसल राजधानी दिल्ली में उस वक्त गूंज उठा जब बस्तर के नक्सल पीड़ित मीडिया के सामने आए। बस्तर शांति समिति के बैनर तले आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए ग्रामीणों और आदिवासियों ने अपनी आपबीती सुनाई और भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्यों, देखिए यह रिपोर्ट।
12: माथे पर दर्द की लकीरें, नक्सलवाद के हाथों किसी ने अपने अंग गवाए तो किसी के अपने हमेशा के लिए उन्हें बेबस छोड़ गए। ये बस्तर का वो खौफनाक अध्याय है जिसे दशकों तक नक्सलियों की बंदूकों और बारूद ने लिखा।
13: उसको बहुत आयत हुआ कि आज आप हमारे बस्तर में जाकर देखिए, ऐसा ना कोई विरोध कर रहा है ना कोई बयानबाजी कर रहा है, बल्कि उन बस्तर के पीड़ितों के साथ कंधा से कंधा मिला करके हमारे जवानों के जज्बों के साथ खड़ा है।
12: नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बस्तर शांति समिति के बैनर तले आयोजित आहत बस्तर की गुहार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बस्तर संभाग के नक्सल पीड़ित मीडिया के सामने आए तो पूरा हॉल सन्न रह गया।
14: बस्तर में नक्सली मुक्त तो हो गया, लेकिन ऐसे कई मंत्री लोग हैं जो यहाँ दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं कि हम नक्सली समर्थन में अपना वो कर रहे हैं, इसलिए आए हैं।
12: एक तरफ बस्तर के ये बेगुनाह लोग हैं जो दशकों बाद अब दहशत के साए से बाहर निकलकर लोकतंत्र की मुख्य धारा और विकास की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में उस विचारधारा को महिमा मंडित करने का खेल चल रहा है जिसने बस्तर को आंसुओं का समंदर बना दिया। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के उस एक्सपोज ने पूरे देश को हैरान कर दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। जिस पद पर रहते हुए चिदंबरम ने देश की आंतरिक सुरक्षा की कमान संभाली थी, उसी पद पर रहे नेता की ओर से नक्सल शब्द का महिमा मंडन क्या इन पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है?
15: साल से बस्तर जो नक्सल हिंसा में जल रहा था, हजारों लोगों ने बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, शहीद हो गए, और आज जब बस्तर अपने विकास की ओर अग्रसर है तो क्या ये दिमागी नक्सल होने पर हमें गर्व है बोलकर क्या बस्तर को फिर 40 साल उसी नर्क की आग में झोंकेंगे?
12: सुरक्षा बलों के पराक्रम से आज बस्तर नक्सलवाद के चंगुल से मुक्त हो चुका है, लेकिन दिल्ली के बंद कमरों में बैठकर इस खूनी विचारधारा को बौद्धिक आवरण पहनाने वालों से सवाल लाजमी है। बस्तर के जिन मासूमों के हाथों से कलम छीनकर जबरन बंदूक थमा दी गई, क्या उनका कोई कसूर था? और जो ग्रामीण माओवादियों की आईईडी और बारूदी सुरंगों में अपने हाथ पैर गंवा चुके हैं, क्या ये तथाकथित दिमागी नक्सलवाद उन बेगुनाहों के कटे हुए अंग और जान गंवाने वाले परिजनों को वापस लौटा सकता है? जब जंगल में बंदूकें खामोश हो रही हैं, तब विचारों के नाम पर माओवादी हिंसा को सही ठहराने की ये कोशिश कई सवाल छोड़ जाती है। बस्तर अब शांति और विकास चाहता है, लेकिन क्या देश का बौद्धिक वर्ग इस आहत बस्तर की गुहार को सुनेगा? आज तक ब्यूरो।
5: अपने आप को दिमागी नक्सल कई लोग कहते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर जरूर तलाशना चाहिए। रणभूमि में वक्त एक ब्रेक का, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
17: इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: आगे आगे
20: उधर उधर
19: करेक्ट करेक्ट
21: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
22: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुमा केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

बीजेपी ने घोषित किया चुनावी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी विनोद तावड़े को मिली उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी। पंजाब के लिए सतीश पूनिया और गुजरात के प्रभारी होंगे तरुण चुग। तत्काल प्रभाव से लागू हुई नियुक्तियां। लखनऊ में अवैध डेयरी के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस पर हुए अटैक के बाद प्रशासन का जबरदस्त एक्शन। हमलावरों का सामने आया अतीक कनेक्शन। लगेगा गैंगस्टर एक्ट, चल सकता है बुलडोजर। पटना में टीचर बहाली में देरी से नाराज छात्रों का जुटान। सरकार को दी धरने की चेतावनी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा किसी भी वक्त जारी हो सकता है बहाली का विज्ञापन। परीक्षा की तैयारी करें छात्र। टीआरई 4 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड में TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होने के बाद 2500 लोगों की नौकरी गई। फैसले से प्रभावित लोगों का भारी विरोध। देवेंद्र महतो बोले लीक रोकने की भी गारंटी दे सरकार। पाकिस्तान की शाबाज शरीफ सरकार और आसिफ मुनीर को बड़ा झटका। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अदियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट करने का दिया निर्देश। निधि डॉक्टर करेंगे इलाज। पीटीआई ने कहा पहली जीत मिली।

0: में बड़ी खबर बिहार से आ रही है। वहां छात्रों का जुटान बस शुरू ही हुआ था कि एक बड़ा ऐलान बीपीएससी ने जारी कर दी है, TRE4 की अधिसूचना। अभी अभी बीपीएससी के TRE4 टीचर भर्ती के लिए 32,388 वैकेंसीज, देरी की वजह से पटना में छात्र धरने के लिए बस आ ही रहे थे कि छात्र न्याय सत्रागढ़ TRE4 का ये छात्र न्याय के लिए जुट रहे थे, तभी 32,388 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। शशि भूषण मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जैसे ही छात्रों ने ऐलान किया कि वो बैठ रहे हैं, बड़ा आंदोलन, पहले जंतर मंतर दिल्ली, उसके बाद झारखंड पटना में, जैसे ही छात्र बैठने लगे ये अधिसूचना की खबर, पहले क्यों नहीं किया प्रशासन ने ये काम?
1: गौरव देखिए, सरकार के स्तर से जो बिहार लोक सेवा आयोग है BPSC जो TRE की परीक्षा कराती है, बिहार में अब तक 3 शिक्षक नियुक्तियां हुई हैं TRE 1 से लेकर TRE 3 तक, उन सभी नियुक्तियों प्रक्रिया को BPSC ने कराया है और BPSC के पास सरकार की तरफ से अधियाचना जो है वो जुलाई महीने में ही भेज दी गई थी, लेकिन उसमें जो आरक्षण का रोस्टर होता है उसको लेकर के थोड़ा पेंच फंसा हुआ था और सरकार के मंत्री ये कह भी रहे थे कि हमने फिर से उसको रिवाइज करके भेजा है। और आज जब छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की तो उसके बाद हमने बात भी की थी मिथिलेश तिवारी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनसे, वो बयान भी हमने दिखवाया था, अपने दर्शकों को सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी वक्त जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है, नोटिफिकेशन BPSC जारी कर सकता है।
0: शशि आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौटेंगे। लेकिन छात्र टीचर भर्ती के लिए आवेदन देना चाहते हैं या उसकी परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी राहत की खबर। अब बात करते हैं रणभूमि में, अंतर्राष्ट्रीय रणभूमि किस तरह से एक बार फिर और उग्र होती जा रही है।
2: मॉस्को पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला, छह सौ से ज्यादा ड्रोन से बरसाए बम, रूसी सेना ने सैकड़ों ड्रोन किए नाकाम, शहर शहर मचा कोहराम, भयंकर हुआ रूस और यूक्रेन का घमासान। घरों के ऊपर ही गिरा ड्रोन का मलबा, कई ड्रोन ने मचाई मॉस्को में तबाही, सैन्य ठिकानों की लड़ाई रिहायशी इलाकों तक आई।

एक रणभूमि शांत नहीं होती, दूसरी रणभूमि एकाएक भड़क जाती है। एक तरफ अमेरिका और ईरान की युद्ध भूमि, दोनों ही देश आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ करीब 4.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो भी अब और भयंकर होता जा रहा है। उनकी जंग तो जल थल नभ तीनों में चल रही है। यूक्रेन बेशक एंटी मिसाइल सिस्टम की कमी से जूझ रहा हो, लेकिन लंबी दूरी तक मार करने वाली जो उसकी मिसाइलें हैं और जो ताकतवर ड्रोन हैं, वो आज भी रूस को परेशान कर रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को तक को वो टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन ने पिछले 24 घंटों के दौरान 600 से ज्यादा, एक अनुमान के मुताबिक तो 640 ड्रोन मॉस्को की तरफ दागे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्यादातर ड्रोन रूस की सेना और वायुसेना ने रास्ते में ही नाकाम कर दिया, लेकिन कई ड्रोन और कई ड्रोन के मलबे वो रिहायशी इलाकों पर गिरे, बड़े ठिकानों पर गिरे, रूस के ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर भी निशाना लगाने में वो कामयाब रहे। मॉस्को और मॉस्को के आसपास कई शहरों में ड्रोन हमलों की वजह से भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। इधर इसका बदला लेते हुए रूस ने जो पलटवार किया उसमें यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में रूस ने जो एयर स्ट्राइक की, यूक्रेन ने औपचारिक तौर पर 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां साफ साफ कह दिया है कि कल यानी सोमवार को खत्म हुए एमओयू को आगे बढ़ाने का उनका कोई मन तो नहीं है, मूड नहीं है, उन्होंने ईरान को दो टू कह दिया, किसी भी कीमत को पर वो हॉर्मुज को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ईरान ने भी दो टूक कह दिया है कि हम हॉर्मुज नहीं खोलेंगे जब तक अमेरिका एमओयू का वादा पूरी तरह नहीं निभाएगा। यानी पहले अमेरिका नाकेबंदी हटाए, फिर ईरान की जो संपत्ति उसने फ्रीज करके रखी है उस संपत्ति को, उस पैसे को छोड़े, और उसके बाद ये पूरा हॉर्मुज का इलाका खुलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय मॉस्को और खार्किव दोनों जगह जो तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। सबसे पहले खार्किव, ये बड़ा शहर है यूक्रेन में। खार्किव में आज एक बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेन के खार्किव में एक हमला कर दिया है। इस हमले में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार तड़के यूक्रेन के उत्तर पूर्वी खार्किव प्रांत के ग्रामीण इलाके में रूस की सेना के हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, 8 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खार्किव के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक ऑनलाइन पोस्ट में बताया कि करीब 30 मील दक्षिण पूर्व में स्थित एक पेचिनीही शहर में रिहायशी इलाके में एक मिसाइल आके गिरी। इसके बाद एक नहीं, एक के बाद एक कई धमाके हुए और भारी तबाही हर ओर देखने को मिल रही है। कई इमारतें इस मिसाइल अटैक की जद में आ गई हैं। इस हमले के फौरन बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस को चेतावनी दी कि यूक्रेन की सेना इसका बदला जरूर लेगी और बड़े तरीके से लेगी। दरअसल रूस ने यह हमला 24 घंटे पहले मॉस्को और मॉस्को के आसपास के इलाकों में जो ड्रोन हमले हुए हैं उसके जवाब में किया। यूक्रेन ने औपचारिक तौर पर यह कहा कि 800 ड्रोन के जरिए रूस के कई शहरों को उसने दहला दिया। रूस में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो गई है। रूस का कहना है कि करीब 650 ड्रोन दागे गए थे, ज्यादातरों को तो उन्होंने नष्ट कर दिया, इंटरसेप्ट कर दिया। लेकिन यूक्रेन लगातार मॉस्को और मॉस्को के साथ साथ जिन जिन शहरों में बड़ी तेल की रिफाइनरीज हैं, बड़े बड़े गोदाम हैं, हथियारों के गोदाम हैं, ड्रोन के गोदाम हैं, रिहायशी इलाके हैं, सैन्य रिहायशी इलाके, यूक्रेन उन्हें निशाना बना रहा है। यह पिछले 2 सालों में पहला मौका है जब यूक्रेन ने इतनी बड़ी संख्या में यानी 600 से 800 के बीच ड्रोन एक के बाद एक रूस और रूस की राजधानी मॉस्को पर भेजे और भयंकर तबाही मचाई।

0: 800 ड्रोन से हमला, 600 ड्रोन का मॉस्को पर निशाना, 7 लोगों की मौत, 40 लोग घायल। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन के हमलों से मॉस्को और आसपास के कई शहर दहल उठे हैं। इस हाहाकारी हमले को पिछले कई सालों का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेन ने मॉस्को की तरफ इतने ड्रोन भेजे कि रूसी एयरफोर्स पूरी ताकत लगाने के बावजूद सारे हमलों को नाकाम नहीं कर पाए। जिन्हें आसमान में तबाह किया भी, उनका मलबा रूसी शहरों में रिहायशी इलाकों के ऊपर ही गिरने लगा। ज्यादातर ड्रोन अपने ठिकानों पर निशाना लगाने में कामयाब रहे, जिससे कई जगह धमाकों की आवाज सुनी गई और आग की लपटें उठने लगी। रूसी मीडिया के मुताबिक मेयर सर्गेई सोबियानिन ने बताया कि सोमवार शाम से लेकर मंगलवार की सुबह तक मॉस्को की तरफ 620 ड्रोन आते हुए देखे गए। इनमें से 180 ड्रोन को निशाने पर पहुंचने से पहले तबाह कर दिया गया। उन्होंने इसे पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा हमला करार दिया है। इन हमलों को देखते हुए मॉस्को के सभी 4 एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस रोकने पड़े। कई लोगों ने इन हमलों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं। किसी ने अपने घर की बालकनी से हमलों के वीडियो बनाए तो किसी ने चलती गाड़ी के अंदर से तबाही की तस्वीरों को कैद किया। सारी रात रूस का आसमान यूक्रेनी ड्रोन और रूसी सेना की उस पर होने वाली फायरिंग से गुलजार होता दिखा। धू धू तक जलती इस इमारत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने इन हमलों के जरिए किस कदर नुकसान पहुंचाया है। कोतलनिकी की इमारत में ड्रोन जा गिरा और पूरी इमारत में आग लग गई है। इस इमारत के पास ही मॉस्को ऑयल रिफाइनरी है। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन का निशाना रिफाइनरी ही थी, लेकिन अपने ठिकाने पर पहुंचने से कुछ मीटर पहले उसकी दिशा बदल गई और रिफाइनरी बच गई। यूक्रेन ने पिछले 1 हफ्ते में मॉस्को और आसपास के इलाकों में ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। 3 दिन पहले ही उसने मॉस्को के पास कोलिदिनो इलाके के वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक हब पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। हजारों स्क्वायर फीट में फैले इस सेंटर में एक के बाद एक कई धमाके हुए और पूरा परिसर आग की लपटों में घिर गया। काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में काफी ऊंचाई तक फैल गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कई मोर्चों पर रूस की एक साथ घेराबंदी करने पर जोर दिया है, वो भी बिना किसी ढील के।
1: з розвідками, міністерством закордонних справ, спеціальними службами, коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості. Деякі речі, які є критичними для російської агресії, але вони досі постачаються в Росію навіть з тих країн, які входять в групу 7 і точно не зацікавлені, що Путін затягував війну та збільшував масштаб удару.
0: Юкрейн дарасал ун хамлу се бурі тарах чарха гуа хе, джинме балістик місайлу ка істемал кар Київ ор аспас ке каї ілако ме Рус не табахі ка танда бача дія та. Аж так бюро.
2: बड़ी खबर इस समय रूस से आ रही है। इन बड़े हमलों के बाद रूस गुस्से में है। उसका गुस्सा सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन की सरकार पर भी फूट रहा है। रूस ने ब्रिटेन के प्रशासन, ब्रिटेन की सरकार को खरी खरी सुना दी है। लंदन में रूस के दूतावास ने आधिकारिक तौर पर अपनी नाराजगी ब्रिटेन की सरकार से दर्ज करा दी है। रूस का आरोप यह है कि यूक्रेन की सेना ब्रिटेन से सप्लाई होने वाले ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल रूस पर हमले के लिए कर रही है। ब्रिटेन रूस के लिए अपने समर्थन को लगातार दोहराता जा रहा है, रूस का आरोप है बढ़ाता जा रहा है। रूस ने इसके नतीजे भुगतने की अब इंग्लैंड को चेतावनी तक दे दी है। बड़ी बात, रूस की तरफ से इंग्लैंड को अब चेतावनी दे दी है। अच्छा, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं ये जो महा ड्रोन अटैक हुआ है। आप ये सोचिए, हम जब स्वॉर्म ड्रोन अटैक की बात करते हैं तो 100 ड्रोन 150 ड्रोन की बात करते हैं। यहां रूस के मुताबिक 650 ड्रोन और यूक्रेन के मुताबिक 800 से ज्यादा ड्रोन उसने रूस की दिशा में फेंके। और कहां कहां है ये है यूक्रेन के जो बम है, रूस यूक्रेन के पश्चिम में जिस तरह से आता है, जिस तरह से उसने पलटवार एक तरह से किया है, ये वो इलाके हैं रामनस्की, बोडग्रोस्की, कोलमेना, ये जगह हैं जिनको कोपात्या, कुपवाना, ये वो सारे इलाके हैं जिनको न केवल मॉस्को बल्कि मॉस्को के आसपास के इलाकों को टारगेट किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन एक एक निशाने को जब टारगेट करता है वो साफ तौर पर कहता है कि वो रिहायशी इलाकों को नहीं, सैन्य ठिकानों को, ऑयल रिफाइनरीज को, और ऑयल रिफाइनरीज के साथ साथ जहां पर रूस के युद्ध के हथियार बनते हैं, ड्रोन की फैक्ट्रियां हैं, उसका सामान है, उन इलाकों को मॉस्को और मॉस्को के आसपास खासतौर पर उन निशानों को टारगेट करता है जहां से यूक्रेन के खिलाफ जबरदस्त वार हो रहे हैं या हथियार बन रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि उत्तर कोरिया से कुछ मात्रा में हथियार भी भेजे गए हैं और सामग्री भी, रसद सामग्री भी। अब रूस का यूक्रेन का कहना यह है वो उन इलाकों को निशाना बना रहा है जहां उत्तर कोरिया से आए युद्ध के साजो सामान रखे गए हैं। अब हम रुख करते हैं ईरान और अमेरिका के युद्ध की ओर। 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है एमओयू को खत्म हुए, लेकिन आगे का जो पीस प्लान है उस पर अभी कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के इतर अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है वो आगे युद्ध और भड़केगा या फिर शांति होगी। एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि एमओयू को आगे बढ़ाने की उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, वहीं ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबाफ ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि ईरान मौजूदा हालात में हॉर्मूज को नहीं खोलेगा, अगर अमेरिका जबरदस्ती करता है तो इसके लिए अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि हॉर्मूज तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका एमओयू की शर्तों को लागू नहीं करता, पूरी तरह से मान नहीं लेता, और इसके लिए अमेरिका को अपनी नौसेना की नाकेबंदी हॉर्मूज के दूसरी तरफ यानी अरब सागर में हटा देनी पड़ेगी। ईरान की फ्रीज की गई सभी संपत्ति को लगभग $7 बिलियन पहले और बाकी की संपत्ति बाद में रिलीज करना होगा, और साथ ही जो पाबंदियां ईरान के निर्यात पर लगी है, तेल के निर्यात पर और सामान के निर्यात और आयात पर, सभी पाबंदियां हटा लेनी होगी। दरअसल ईरान इस समय कई मोर्चों पर फंसा तो हुआ है, अमेरिका की जो नाकेबंदी है, अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से जिस तरह से वो तेल बेचना चाहता है वो बेच नहीं पा रहा है, तेल का उत्पादन तो हो रहा है लेकिन कमाई नहीं हो पा रही है, और इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। युद्ध से ईरान भी बेहाल है, महंगाई से वहां के लोगों का जीना मुहाल है। 5.5 महीनों की जंग में ईरान में जो लोगों की स्थिति है, देश की तो हुई है बेहद खराब, लोगों की आर्थिक स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। महंगाई की वजह से देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए थे, लेकिन जब बमबारी हुई तो देश एकजुट हुआ। प्रदर्शनकारियों पर जुल्म के आरोप लगातार अमेरिका ने लगाए भी ईरान के प्रशासन पर, लेकिन जैसे ही बमबारी शुरू हुई पूरा ईरान एकजुट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और क्षेत्रीय संघर्षों की वजह से ईरान पर संकट अब बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले प्रतिबंध हटाए और उसके बाद ही हॉर्मूज खुलेगा। अच्छा, जो सालाना महंगाई दर है 66% से लगभग 88% हो चुकी है। जुलाई में कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों को खरीदना मुश्किल हो पा रहा है खाने पीने का सामान। खाने पीने की जो चीजें हैं उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की अगर बात करें तो 128% सामान महंगा हो गया है। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ टोकन और कूपन दिए जाते हैं, लेकिन उससे क्या खरीद पाते हैं लोग। न्यूनतम खर्च अगर $1,385 अगर माना जाए, न्यूनतम वेतन जो है केवल $385 वहां पर है, और यही सबसे बड़ी समस्या ईरान के लोगों के लिए है। 10 दिन में ही महीने भर की जो तनख्वाह है वो खर्च हो जाती है, कर्ज तले दब रहे हैं कई परिवार ईरान में। सरकार कूपन देने की तो बात कर रही है, लेकिन कूपन से

0: निर्यात कर पाएगा। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
3: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
2: नहीं सर।
3: 12th किससे की हो?
2: 12th सर मेरा PCM से रहा।
3: कंपाउंड क्या होता है?
2: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
3: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
2: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को। इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
3: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: का फैसला विनोद तावड़े को बनाया यूपी का प्रभारी, सतीश पुनिया को पंजाब और तरुण चुग को मिली गुजरात की जिम्मेदारी। लखनऊ में अवैध डेयरी हटाने गई पुलिस टीम पर हमला, आरोपियों का निकला आतिक अहमद से कनेक्शन, लगेगा गैंगस्टर एक्ट, चल सकता है बुलडोजर। पटना में टीचर बहाली के लिए सरकार ने जारी की अधिसूचना, 32,000 से ज्यादा खाली पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी, परीक्षा में देरी से छात्र थे नाराज। झारखंड में TDPL की सभी परीक्षाएं रद्द होने से 2,250 युवाओं की छीनी नौकरी, फैसले से प्रभावित लोगों का विरोध, देवेंद्र महातो बोले लीक रोकने की भी गारंटी दे सरकार। शहबाज मुनीर सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जेल से शिफा अस्पताल शिफ्ट करने का दिया आदेश, PTI बोली पहली जीत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल पटना में आंदोलन पर उतरे नौजवानों पर है। पटना के गर्दनी बाग में युवा धरने पर बैठे थे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकाला जाए, क्योंकि बीपीएससी ने परीक्षा की तारीख निकाल दी है। धरना शुरू होने के 4.5 घंटे भी नहीं गुजरे कि बीपीएससी ने विज्ञापन निकाल दिया। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। बीपीएससी ने कुल 32,388 पदों पर भर्तियां निकाली है। यह पहला मामला है कि आंदोलन शुरू होने की धमकी देते ही 4 घंटे के अंदर बिहार सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग तुरंत मान ली और शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पिछली परीक्षाओं की तरह इस बार शिक्षक भर्ती की परीक्षा एक दिन नहीं बल्कि प्री और मेंस यानी 2 चरणों में ली जाएगी। इस बात को लेकर भी आंदोलनकारी नाराज थे। यह बड़ा झटका है आंदोलनकारियों के लिए, क्योंकि उनकी एक मांग यह भी थी कि TRI 1-2-3 यानी शिक्षक भर्ती की 1-2-3 जो परीक्षाएं पहले हो चुकी है उसी की तरह एकल परीक्षा कराई जाए। लेकिन फिलहाल ये मांग सरकार की तरफ से मांगी नहीं गई है। सरकार ने हालांकि इस बारे में बीपीएससी को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को पहले ही यह कह दिया था जुलाई महीने में कि 32,000 पद उन्हें भरने हैं, 32,388 पद। लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई भी इश्तहार परीक्षा का निकाला नहीं गया था और आखिरकार अब विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। हमारे साथ शशि भूषण हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। शशि, एक मांग तो मान ली है, मेरे ख्याल से यह रिकॉर्ड होगा कि आंदोलन शुरू करने के 4 घंटे के भीतर ही सरकार ने पहली मांग मान ली और बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन निकाला गया। लेकिन जो एकल परीक्षा की मांग है उस बात को लेकर अब छात्र क्या कह रहे हैं वहां पर?
1: देखिए, छात्रों का तो ये कहना है साहिल कि जो एकल परीक्षा के तहत TRE 1 से लेकर 3 तक में नियुक्तियां हुई वही पैटर्न हमको चाहिए TRE 4 में, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। और बीपीएससी ने जो डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया आपसे थोड़ी देर पहले, इसमें बजाबता 2 बातों की चर्चा है। एक ये कि पीटी की परीक्षा होगी पहले, 150 नंबर की पीटी के एग्जाम होंगे और पीटी के एग्जाम में भी निगेटिव मार्किंग होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सवाल का अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 अंक आपके कटेंगे, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा अभ्यर्थियों के लिहाज से। और उसके बाद मेंस की परीक्षा होगी और मेंस जो क्वालिफाई कर जाएगा, मतलब उसके बाद मेरिट लिस्ट आपका बनेगा और उसके मुताबिक से आपको नियुक्ति मिलेगी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि आज जो 12 बजे धरना की शुरुआत हुई, मैं खुद था वहाँ पे और उसके कुछ घंटों के बाद ही जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी हुआ, इस दरमियान हमने बिहार के शिक्षा मंत्री से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि किसी भी वक्त नोटिफाई हो सकता है, विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि सरकार ने पहले ही अधियाचना भेज दी थी शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को। मसला ये रहा था कि जो आरक्षण रोस्टर होता है उस आरक्षण रोस्टर में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से एक लेटर जारी किया था बीपीएससी ने सरकार को कि आप उस रोस्टर क्लियरेंस करके दें, मुझे संस्थान को दें बीपीएससी को, और तभी वो नोटिफाई कर पाएंगे, विज्ञापन जारी कर पाएंगे। और वो देखिए, वो प्रक्रिया आज टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त है कि आज ही धरना शुरू हुआ और आज ही बीपीएससी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
0: नहीं तो अभी क्या है, धरना जारी रहेगा या आंदोलन खत्म होगा?
1: 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे।
0: बाकी बीपीएससी और बीएसएससी के छात्रों का आंदोलन भी जारी रहेगा ये कहा जा रहा है। मांगे अलग भी है ना, बीपीएससी की भी मांग चल रही है और बीएसएससी जो सर्विस कमीशन है उसकी भी मांग चल रही है, स्टाफ सर्विस कमीशन वाले छात्रों की।
1: आज जिस फोरम के तहत छात्र बैठे हैं धरने पे, उसमें TRE 4 एक प्रमुख मांग रही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रिफॉर्म्स की वो मांग कर रहे हैं। एक पैटर्न जो हमने देखा, जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, फिर रांची में JPSC JSSC का आंदोलन हुआ, उससे ही कहीं ना कहीं प्रभावित हैं यहाँ के भी छात्र। और यही वजह है कि जो BSCC है उसके अंदर जो सुधार की मांग वो कर रहे हैं, उनकी डिमांड में सबसे महत्वपूर्ण है कि आंसर की जो जारी होता है वो समय पे जारी हो, और साथ ही
0: आंदोलन जारी रहेगा या खत्म हो गया है?
1: कार्बन कॉपी जो है,
0: क्योंकि पहली उनकी ओरिजिनल मांग तो मान ली है, तुरंत आवेदन निकाल दिया है, तो अभी आंदोलन जारी रहेगा या खत्म करेंगे, क्या कह रहे हैं छात्र?
1: देखिए, छात्र नेता है,
2: लेकिन एक बार भी ये कहते थे सरकार में चुनाव से पहले कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे, आज 1 लाख भी लोग नहीं दे पा रहे। लोगों का भविष्य खराब हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो रही है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रहा है और सरकार को कोई चिंता नहीं। जस्टिस और न्याय करना तो दूर की बात, ये सरकार के लोग तो इनको सुनना भी नहीं चाहते, संवाद भी नहीं करना चाहते। इसलिए जितने छात्र अभ्यर्थी हैं उन सब लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं मजबूती के साथ, और कल जो हम लोग 19 तारीख को जो राजभवन मार्च कर रहे हैं, सरकार को जो है झुकना ही पड़ेगा।
3: आपको रोकने की भी कोशिश की जाएगी?
2: कर रहे हैं लोग, अभी से गिरफ्तारियां शुरू कर रहे हैं, सरकार का क्या काम
3: भी चलेगा कल में?
2: जो आंदोलनकारी है उन पे तो गोलियां चल गई है, AK-47 तो कुछ भी चला सकते हैं।
4: आते नोटिफिकेशन जारी हो गया,
3: फोर का नोटिफिकेशन जारी हो गया
2: भाई। हम तो
1: आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
2: आप देखिए, अभी हम तो लगातार छात्रों से मिल रहे हैं, अभी क्या हुआ है नहीं हुआ इसको हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक कितने दिन से लोग धरना में हैं, अब तक कोई इनका सूद लेने भी आया क्या? कई लोग कई दिन से भूख हड़ताल पे हैं।
0: तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि 19 तारीख को एक राजभवन पर जो मार्च आरजेडी की तरफ से निकाला जाना था, जो कांग्रेस जनता पार्टी के छात्रों का जो आंदोलन हुआ था उस पर जो फायरिंग हुई थी उसके खिलाफ, तो वो आंदोलन अभी भी जारी रहेगा यानी वो मार्च निकाला जाएगा? शशि भूषण अगर हमारे साथ है तो एक लाइन में मैं उनसे जवाब चाहूंगा, क्या छात्र अभी भी आंदोलन पर रहेंगे या खत्म करेंगे? शशि, अगर आपकी आंदोलनकारियों से बात हुई है तो।
1: नहीं देखिए, देखिए दिलीप जो है छात्र नेता, मैं वही बता रहा था साहिल, वो उनका कहना है कि हम पूरे रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं, तो TRE-4 में भी जो एकल परीक्षा की मांग वो कर रहे हैं वो एकल परीक्षा होने रही, यहाँ PT और मेंस हो रहा है, तो इसके विरोध में वो धरने पर रहेंगे। अब डिटेल नोटिफिकेशन का वो वेट कर रहे हैं, चूंकि 25 पेज
0: यानी एक मांग मान ली गई है,
1: एक एक पढ़ के आया,
0: दूसरी मांगे जब तक नहीं मानेंगे तब तक धरने पर रहेंगे, यानी बिहार सरकार को लग रहा था कि आवेदन उसका जो जारी किया जाएगा उसके बाद शायद यह आंदोलन वापस लिया जाएगा, लेकिन विज्ञापन निकालने के बाद भी यह आंदोलन जारी रहेगा। शशि भूषण बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी आंदोलनकारी मांग रहे थे, नौजवानों ने अल्टीमेटम दिया था इस पूरे मांग को लेकर कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो शिक्षा मंत्री का भी घेराव करेंगे। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी डरे हुए थे कि अब तक वनडे परीक्षा से होने वाली टीचर भर्ती में कहीं इस बार प्री और मेंस दो परीक्षाएं ना देनी पड़ जाए, और अभी इस बार वो देनी पड़ेगी क्योंकि इससे पहले 2024 में शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा का पर्चा ही लीक हो गया था और 3 महीने बाद दोबारा परीक्षा करानी पड़ी थी, और इसके बाद अब यह परीक्षा होने वाली है 2 साल के बाद। लेकिन मामला सिर्फ टीचर भर्ती परीक्षा का नहीं है, बिहार में आंदोलन कर रहे नौजवानों के बीच बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार भी है जो BPSC सिविल सर्विस की प्री और मेंस के अलावा BSSC यानी स्टाफ सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में भी जो देरी हो रही है उससे नाराज है। हालांकि सरकार ने विज्ञापन तो BPSC के लिए जारी कर दिया है, लेकिन जब एक तरफ नौजवान पटना में धरने पर बैठे हैं तो सियासत भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और जो दिल्ली और सिवान में CJP आंदोलन के पर जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ राजभवन पर वो 19 तारीख को जो मार्च करेंगे वो ऐलान अभी भी बरकरार है। धरने की कामयाबी का श्रेय लेने के लिए तेजस्वी यादव थोड़ी देर पहले अब प्रदर्शनकारियों के मंच पर दिखे थे और उससे पहले CPIML के दीपांकर भट्टाचार्य भी मंच साझा कर चुके हैं। तो नौजवानों के मुद्दे पर ये सियासत हो रही है, लेकिन उसके अलावा दंगल में हम सबसे बड़ी चर्चा ये भी करेंगे कि दिल्ली से रांची और रांची से पटना में नौजवानों ने शिक्षा और रोजगार का जो सपना देखा है, क्या वो हुकूमत और सियासत के रवैये और रवायत को गौर करने के लिए काफी नहीं है क्या? सवाल और भी होंगे लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं।
5: न सत्ता की लाचारी न सियासत की होशियारी, युवाओं की आवाज उठी तो दिल्ली को तवज्जो देनी पड़ी, रांची भी मजबूर हुई तो पटना के नौजवानों का हौसला बढ़ा। बिहार के बेरोजगार नौजवान गर्दनीबाग की सड़क के किनारे बैठ गए, मांगे कुछ और नहीं, वक्त पर इम्तिहान लेने और साफ सुथरी भर्तियां करने की हैं।
6: जंतर मंतर झांकी थी, बिहार तो अभी बाकी है।
5: TRI-4 मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा,
7: जिसकी परीक्षा की संभावित तारीख तो आ गई थी, विज्ञापन नहीं आया था।
8: यूं तो धरने का ताजा कारण शिक्षा भर्ती परीक्षा में हो रही देरी और वादा खिलाफी थी,
5: लेकिन शिकायतें और मांगे कई और भी। युवाओं का कहना है टीचर भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में आना था जिसे टाल दिया गया। शिक्षा मंत्री ने जुलाई में विज्ञापन का वादा किया, अगस्त गुजरने वाला है।
7: बीपीएससी ने 22-27 सितंबर को परीक्षा की तारीख तय कर रखी है लेकिन अब तक विज्ञापन का पता नहीं था।
5: 72वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्री 26 जुलाई को होनी थी, टालकर 25 अक्टूबर कर दी गई। 71वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा अब तक नहीं हो पाई। बीपीएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तारीख का पता नहीं। आंदोलन पर बैठे अभ्यर्थी शिकायत करते हैं कि जब सरकार तय वक्त पर परीक्षाएं नहीं करा पा रही तो मंत्री अपने पद पर क्यों है।
6: तैयारी 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ 24 घंटा के अंदर जारी हो, नहीं तो हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे। और झूठ नहीं चलेगा, अगर आपको 2 परीक्षा करानी है तैयारी 5 से कराइए, हम लोग स्वागत करते हैं। तैयारी 4 में सिर्फ 1 परीक्षा हो चुकी, 2 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं।
7: पटना में अभी जिस शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर आंदोलन हो रहा था, ऐसी 3 शिक्षक भर्ती परीक्षाएं बीपीएससी ने कराई है, जिनमें TRI 1 में 170,461 पदों पर बहाली निकली, 120,336 पदों पर भर्ती हो पाई। TRI 2 में 122,286 पदों पर बहाली निकली, 92,000 पदों पर भर्ती हो पाई। TRI 3 में 87,774 पदों पर बहाली निकली, 75,000 पदों पर भर्तियां हो पाई। बाकी आरक्षित श्रेणियों पर उम्मीदवार नहीं मिले। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी बताते हैं कि सरकार पात्रता परीक्षाएं लेती जा रही है, नौकरियां नहीं दे रही, जबकि बिहार में पिछले 7 साल में 2019 से 2026 तक 8.5 लाख अभ्यर्थी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट पास कर चुके हैं, जिनमें नौकरी सिर्फ 1.5 लाख को मिली। बाकी 1.5 लाख टीचर सीटेट बीटेट वाले प्राइमरी मिडिल स्कूल टीचर हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि जब शिक्षा विभाग में 45,000 से अधिक पद खाली हैं, तो 32,888 पदों पर भर्ती की तैयारी क्यों है। दरअसल देरी की वजह एक तो प्रशासनिक तैयारी से जुड़ी है, जिसमें जिलेवार आरक्षण रोस्टर के हिसाब से डेटा जमा करना और जाति गणना के हिसाब से कैटेगरी वाइज विज्ञापन निकालना है। दूसरा डर ये भी है कि पिछली TRI का मार्च 2024 वाला पर्चा लीक हो गया था, 300 गिरफ्तारियां हुई, फिर जुलाई 2024 में परीक्षा करानी पड़ी। इस बार सरकार फुल प्रूफ तैयारी करना चाहती है, लेकिन युवाओं का यह आक्रोश सिर्फ एक परीक्षा को लेकर नहीं। जिस बिहार में बेरोजगारी दर भले 3% हो, लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार 15% से अधिक है। वहाँ हालात ये है कि शिक्षा विभाग में 46,546, ग्रामीण विकास विभाग में 35,468, गृह विभाग में 35,000, स्वास्थ्य विभाग में 20,000, पंचायती राज विभाग में 9,540, ऊर्जा विभाग में 6,600, कृषि विभाग में 5,366, नगर विकास आवास विभाग में 5,100, समाज कल्याण विभाग में 4,549 और जल संसाधन विभाग में 4,014 पद खाली हैं। कुल मिलाकर 172,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, और इतने पद तो तब के खाली हैं जब बिहार की आबादी 10,41,00,000 थी। आज बिहार की आबादी 13,07,00,000 हो चुकी है, तो पदों का सृजन उनके हिसाब से हुआ ही नहीं। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: तो जंतर मंतर रांची और उसके बाद अब शायद पटना की बारी थी, लेकिन एक मांग तो इन विद्यार्थियों की मांग ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी शशिभूषण जिस तरीके से कह रहे थे कि इसके बावजूद भी आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि उनकी मांगे कुछ और भी है, लेकिन उसके साथ साथ 8 महीने पहले जो एनडीए की सरकार आई है, अब बीजेपी के मुख्यमंत्री है, 1 करोड़ जॉब्स का रोजगार का वादा किया गया था 5 साल के भीतर, 8 महीने हो चुके हैं और अभी भी सरकारी नौकरियों को लेकर आंदोलन शुरू हो रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, रागिनी नायक कांग्रेस की तरफ से चर्चा में शामिल हो रही है, इस्पा यादव आरजेडी की तरफ से इस पर अपनी भूमिका रखेंगी, अजय यादव आरजेडी की तरफ से इस पर आ रही है और अनुप्रिया यादव जनता दल यूनाइटेड से इस चर्चा में शामिल हो रही है। 3 सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या दिल्ली और रांची में छात्रों के आंदोलन के बाद बिहार की सरकार ने समय रहते मांग मान ली है, क्योंकि इस आंदोलन का असर क्या हो सकता है ये दोनों सरकारों ने देख लिया है, केंद्र सरकार और उसके साथ साथ हेमंत सोरेन की सरकार ने। दूसरा सवाल, क्या आप सरकारी शिक्षा और रोजगार जैसे नौजवानों के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, क्योंकि छात्र बार बार धमकी दे रहे हैं कि अब सड़क पर उतर आएंगे, शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे, विधानसभा पर मार्च करेंगे, तो आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगी। तीसरा सवाल, क्या नौजवानों के आंदोलन के कंधे पर विपक्षी दल सियासी मुनाफे की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ यादव, ये बड़ी दिलचस्प बात है, 4 घंटे के भीतर बिहार सरकार ने पहली मांग मान ली, आज तक ये कभी नहीं हुआ है। ये असर हम जंतर बंतर और झारखंड में जो आंदोलन हुआ उसका मान के चले, क्योंकि जुलाई महीने से छात्र बार बार ये कह रहे थे कि आप बीपीएससी को कहे कि परीक्षा तो ले लीजिएगा TRA-4 की, लेकिन जुलाई महीने से बार बार कोशिशें टालने पर ही जोर नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही आंदोलन की धमकी मिली तुरंत उसी दिन विज्ञापन भी निकल कर आ जाता है।
4: साहिल जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। साहिल जी, ये किसी एक आंदोलन का प्रभाव नहीं है, ये एक सरकार की काबिलियत है। अगर ये प्रभावी होना था तो दिल्ली के बाद झारखंड में आंदोलन हुआ, जो काम वो 17 दिन में नहीं कर पाए वो हमारी सरकार ने 4 घंटे में कर दिया। तो ये तो सरकारों का फर्क हो गया, कौन सी सरकार युवाओं के लिए सोचती है, कौन सी सरकार युवाओं के लिए प्रोएक्टिवली काम करती है, और कौन सी सरकार ऐसी दमनकारी है जो छात्र शांतिपूर्ण बैठे रहे उन पर भी लाठी डंडे बरसाए, 15 अगस्त के दिन उनके नेता को हॉस्पिटल में घसीटे, उन पर टीयर गैस डाले, वाटर कैनन डाले, इतनी तो मांग थी। आपने बहुत अच्छा आज ओपनिंग करी है और 2 उदाहरण सामने रखे, जो काम 17-18 दिन के अंदर झारखंड की कांग्रेस और विपक्ष की सरकार नहीं कर पाई वो बिहार की सजग संवेदनशील सरकार ने तुरंत करके दिखाया, ये पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे विषय को लेकर के सरकार पहले दिन से एक स्टैंस को लेकर के थी कि जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आना था सरकार अपनी तरफ से फॉरवर्ड कर चुकी थी और नोटिफिकेशन जल्द निकल करके आना ही था। वो एक बात यह है कि आंदोलन पहले ऐसा शुरू हुआ कि एक दिन पहले ही वो शुरू हुआ जब वो नोटिफिकेशन सबको जानकारी में है कि वो आना ही है। ये सरकार लगातार रूप से कैसे नोटिफिकेशंस में या भर्तियों की बड़ी संख्या करवाए, पर साहिल जी कमाल तो ये बात है कि छात्रों के न्याय की बात तो वो लोग कर रहे हैं आज बिहार के अंदर, जो जब सत्ता खुद छोड़ करके गए थे तो 5 लाख टीचर वैकेंसी की भर्तियों को खाली छोड़ गए थे, जब 25 लाख विद्यार्थी स्कूली शिक्षा से जिस साल बाहर निकला था, जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में छात्रों की न्याय तो छोड़िए सुध भी ना ली हो, जिन्होंने कोई बड़ी भाली प्रक्रिया ना करी हो, कोई नौकरियां ना दी हो, आज वो राजनीतिकरण करके ऐसे प्रेरणा इधर उधर के प्रांतों से लेकर के अगर अपनी राजनीतिक साख को समेटेंगे तो ये दुर्भाग्य।
0: आप 2005 के पहले के बिहार की बात कर रहे हैं या कौन से जमाने की आप बात कर रहे हैं? 2005 के पहले के बिहार की बात कर रहे हैं?
4: मैं 2005 का ही आंकड़ा आपको दिया, 5 लाख वेकेंट टीचर पोजीशंस वो सरकार छोड़ करके गई, 25 लाख स्कूली शिक्षा के विद्यार्थी उस साल स्कूल से बाहर हुए थे और उनके लिए कोई बहाली नहीं, वो 5 लाख खाली पदों को भरने की कोई योजना नहीं। जिस सरकार ने कभी कोई ऐसी बड़ी बहाली ना निकाली हो जिन नेताओं ने, वो आज छात्रों के न्याय की बात कर रहे हैं साहिल जी, ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है।
0: नहीं, ये बड़ा कोइंसिडेंस है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि सरकार ने इस बार झारखंड के मुकाबले 4 घंटे के भीतर तुरंत विज्ञापन निकाल दिया बीपीएससी की तरफ से, लेकिन अप्रैल महीने से, आपको ये मालूम होगा सिद्धार्थ यादव, अप्रैल महीने से ये मांग चल रही थी कि आखिरकार देरी क्यों हो रही है और इस देरी का कारण भी क्या था वो भी आपको पता है, आरक्षण का नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा था, जिस तरीके से उन्हें वो रोस्टर चाहिए था वो रोस्टर बीपीएससी को नहीं दिया जा रहा था, ये तो सरकार का काम था। दूसरे कुछ आंकड़े भी आपने यहां पर 2005 के रखने की कोशिश की, मैं आपको 2019 से 2026 तक का एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। अजय यादव दरअसल आपके सारे मुद्दों का जवाब देंगी क्योंकि वो प्रमुख विपक्षी दल है बिहार के भीतर, लेकिन 2019 से 2026 तक 8.5 लाख अभ्यर्थी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो TRA की परीक्षा होती है वो पास कर चुके हैं और नौकरियां निकाली गई है सिर्फ 1.5 लाख, यह आंकड़ा है बिहार का आज की स्थिति में भी। स्थिति ज्यादा बदली नहीं है 2005 के मुकाबले, राज्य वही का वही है, सिर्फ चुनाव होते रहते।
4: साहिल जी 25 लाख बनाम 5 लाख खाली पद और आप कह रहे हैं कि स्थिति बदली नहीं, बिहार में क्या बदला है वो बिहार की जनता अपना मत दे करके बताती है। बिहार की जनता जिस कुशासन के काल से, जिस जंगल राज के काल से बाहर निकल करके बिहार को खुशहाली के काल में लाई और लगातार वहां पर जिस प्रकार से हमको चुन करके भेजा वो प्रमाण है लोकतंत्र में, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। मैं एक बात से सहमत हूं साहिल जी आपके, मैं हमेशा कहता हूं कि युवाओं के लिए, छात्रों के लिए भारत एक बहुत बड़ा युवा देश है, लंबी यात्रा तय करनी है, हमको ज्यादा से ज्यादा बहालियां हो, ज्यादा से ज्यादा अवसर आए, केवल सरकारी पदों पर के भरोसे युवा ना रहे, हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी ला सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ला सकें, स्किलिंग कर सकें, ट्रेनिंग कर सकें, उनको और हर प्रकार से एम्प्लॉयबल बना सकें, एजुकेटेड के साथ साथ एम्प्लॉयबल बना सकें, ये हमारी सरकारों की प्राथमिकता है। अगर प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ युवाओं की AI ट्रेनिंग की बात करते हैं या फिर बिहार सरकार ITI ट्रेनिंग की बात करती है तो वो युवाओं को एम्प्लॉयबल बना करके उनको अवसर प्रदान करने के लिए है। पर आप अगर तुलना करेंगे उस जंगल राज के काल से और ये बताएंगे कि स्थिति नहीं बदली है तो मैं ईमानदारी से उसके साथ
8: मैं तुलना सिर्फ आंकड़ों के आधार पर करता हूं। मैं तुलना सिर्फ आंकड़ों के आधार पर करता हूं, वादों के आधार पर नहीं करता हूं। वादे तो सभी पार्टियां करती है, जो आंकड़े यहां पर नजर आते हैं उन आंकड़ों के आधार पर हम तुलना करते हैं। और बाकी जो खाली पद है वो नंबर तो मैं आपके सामने रखूंगा ही, क्योंकि अभी आप सरकार में वहां पर है। लेकिन अजय यादव, अभी तक पूरी मांगे पूरी नहीं हुई है, मतलब 2-3 मांगे थी उसमें, और सिर्फ BPSC के जो अभ्यर्थी है वो वहां पर आंदोलन पर नहीं बैठे थे, जो स्टाफ सर्विस कमीशन के अभ्यर्थी है वो भी वहां पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और मांग सिर्फ विज्ञापन निकालने की नहीं थी, मांग इस बात को लेकर भी थी कि अब तक एक ही परीक्षा होती थी, एकल परीक्षा होती थी, अब इस बार 2 परीक्षाएं होंगी और बिना किसी चर्चा के ये 2 परीक्षाएं की जा रही है, उस बात को लेकर भी छात्र नाराज है। तो क्या यह आंदोलन एक तो जारी रहेगा, नंबर एक। नंबर दो, आपके नेता अचानक आ गए और कह रहे हैं कि आप कल वो राजभवन का घेराव भी कर लेंगे। तो ये जो BJP कहती है कि देखिए हम तो छात्रों से बात करने के लिए तैयार है, आपको मौका मिल रहा है, छात्र सड़क पर उतर रहे हैं तो आप भी राजनीति पर उतर आए, तो जरा दोनों चीज पर अपनी बात रख दीजिएगा, फिर उसको चर्चा आगे बढ़ाएंगे इस पूरी चर्चा।
9: देखिए, 7 छात्र नाखुश हैं, बहुत सारे उनके मुद्दे हैं, उनको नौकरी चाहिए। एग्जाम 20 साल से 21 साल से तो NDA की सरकार है, लेकिन इनको भरोसा नहीं है कि ये 20-21 सालों में इन्होंने क्या किया, तो इनको कंपैरिजन करने के लिए जाना पड़ता है 21 साल पहले के समय, जो कि अभी के समय से बहुत अच्छा था। इस तरह की हत्याएं, बलात्कार, लूट, इतने सारे पेपर लीक्स और तरह पेपर लीक माफिया नहीं थे, क्वेश्चन पेपर सेटर माफिया नहीं थे, ये सब तो इनके राज में पनपे हैं। तो इन बातों पे ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं, जो असल मुद्दे हैं छात्रों की बेरोजगारी, नौकरी। जब तेजस्वी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे तो 4.5 लाख युवाओं को उन्होंने नौकरी दी, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। और ये फैक्ट है, ये फाइल्स में भी आपको आंकड़े मिलेंगे। अभी ये सरकार में है, आप देखें 2005 के बाद से ये लगातार सरकार में है, 21वां साल है इनका, और स्थिति क्या है अभी अभी आपने अपने आंकड़े के साथ स्पष्ट किया, वादे ये जरूर किए हर साल 2 करोड़ नौकरी, लेकिन क्या 2 करोड़ नौकरी हुई? अभी जिस तरह से हर विभाग का दिखाया जा रहा था, हर एक विभाग में 5,000 से लेकर के 45,000 तक वैकेंसीज हैं, उसको ये फिल करके 21 सालों में ये सक्षम नहीं हुए कि वहां पे जो वैकेंसीज हैं उनको भरा जाए न टाइमली। आप ये लोग चाहते हैं कि विज्ञापन टाइमली निकले, 5 महीने से ये लोग चाह रहे हैं, आपने नहीं निकाला। आज धरने पे बैठे तो 4 घंटे में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, विद्यार्थी तो अभी भी बैठे हैं, वो कहाँ BPSC हो, SSC हो, अभी भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। अगर वो मांग
8: तो आज तो ये धरने पर बैठे हैं, कल आप भी मार्च कर रहे हैं,
9: निकाले थे वैसे निकाले।
8: और देखिए एक बात अजय जी, एक बात तो मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ, देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, वो जंतर मंतर पे मार्च नहीं होता ना तो आप भी मार्च पर नजर नहीं आते कहीं भी, वो तो अप्रैल में, ये मांग कोई आज की थोड़ी है, अप्रैल महीने से मांग कर रही है, जुलाई महीने के भीतर भी छात्रों ने इसी बात को लेकर सरकार को कहा था कि भाई आप विज्ञापन निकालिए, तब तो RJD का कोई आंदोलन हमें दिखाई नहीं दिया। अब जैसे ही जंतर बंतर को पूरी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उसको देखा जा रहा है, उसकी वाहवाही हो रही है, उसका असर हो रहा है, छात्र सड़क पर उतरते हैं तो सरकार को उस पर ध्यान देना पड़ रहा है, तो RJD भी यहां पर लगी हुई है कि कल हम भी मार्च निकालेंगे, राजभवन पे मार्च निकालेंगे, यही तो आरोप लग रहा है ना कि विपक्षी दल भी इस पर सियासी मुनाफे की कोशिश कर रहे हैं।
9: साहिल जी, जब जब क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं विपक्ष पे तौर पे, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और पूरा विपक्ष हमेशा आवाज उठाई है, स्टूडेंट्स का पेशेंस खत्म हो गया है, नीट का लीक हो रहा है, दरोगा का हो, हर चीज का क्वेश्चन पेपर लीक होगा, टाइमली एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएंगे, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर आज जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे हैं, हमारे नेता तेजस्वी जी उनके सपोर्ट में खड़े, ये तो आपको शाबाशी देनी चाहिए, जब सत्ताधारी नहीं आ रहे हैं, सत्ताधारी को फर्क नहीं पड़ रहा है, AK-47 निकाल देंगे, ये महात्मा गांधी की धरती है भारत, कोई नाथूराम गोडसे की तो नहीं है। क्या गोली बंदूक से स्टूडेंट से बात करेंगे? किसान आंदोलन हुआ उसमें भी वो लोग टेररिस्ट थे, दिल्ली में भी आपने कहा जब वो आंदोलन करने बैठे कि रेपिस्ट लोग आके आंदोलन करें, आपसे जब संभलता नहीं है तो आंदोलनकारी को ही आप AK-47
8: सिद्धार्थ यादव इसका जवाब देंगे, लेकिन रागिनी नायक कुछ ऐड करना चाह रही है,
9: कभी आपने सोचा है?
8: और उसके बाद अनुप्रिया जी के पास भी चलेंगे, क्योंकि लंबे समय तक मुख्यमंत्री वहां पर नीतीश कुमार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो 8 महीने के बाद 3 महीने के बाद 6 महीने हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री सरकार वहां पर चला रहे हैं। रागिनी नायक कुछ ऐड करना चाह रही है?
10: नहीं, ऐड नहीं करना चाह रही हूँ, मेरा शुरुआती वक्तव्य है, आशा करती हूँ जितनी आपने भाजपा के प्रवक्ता को समय दिया उतना मुझे भी देंगे, पर अपनी बात मैं ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ साहिल की अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और अगर इसे दूसरी तरह से कह दूं तो इब्तदाई शिक्षा रेवोल्यूशन है, रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी आप देखेंगे एनडीए के घटक दल के जितने प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं सब रोना ही रोएंगे, 20 साल पहले 25 साल पहले क्या होता था, जो 20 साल से सरकार चला रहे हैं बिहार में, जब उनके पास उपलब्धियां गिनाने को नहीं होती हैं तो इतिहास के पन्ने पलटते हैं, पर दिक्कत यह है कि इतिहास के पन्ने पलटने से जो गर्त उड़ती है ना, जो धूल कालिख, वो इन्हीं के मुंह पर जाकर चिपक जाती है। 17 महीने का कार्यकाल जो तेजस्वी यादव जिसमें शिक्षा मंत्री थे, 5 लाख नौकरियां मिली, आपके खुद के आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 7 साल के कार्यकाल में 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं पास की, उनमें से 7 साल में 7 लाख नौकरियां तक भी नहीं दे पाए और उल्टा 7 लाख पद खाली हैं। अब मैं आपकी बात पर आ जाती हूँ। देखिए, आपने कहा कि छात्र धमकी दे रहे हैं, छात्र धमकी नहीं देते, धमकी गुंडे देते हैं, छात्र चेतावनी देते हैं, जैसे कृष्ण ने कौरवों को चेतावनी दी थी और रामधारी सिंह दिनकर ने पूरी एक लंबी उस पर कविता लिख दी थी। आपकी दूसरी बात वो भी गलत है, आपने कहा कि पहली बात मांग ली, बिल्कुल नहीं मानी है, पहली मांग ही ये थी कि TRE-4 की परीक्षा एकल हो, यानी कि सिंगल फेज में हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, उसको नहीं माना गया है। इन्होंने परीक्षा निकाली है जिसमें प्रिलिम भी होगा और मेंस भी देने पड़ेंगे, यानी कि एक भी परीक्षा, एक भी मांग नहीं, एक भी मांग पूरी नहीं हुई है, और भी कई मांगे हैं। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है उनका नोटिफिकेशन भी निकाला जाए, जो AEDO दरेवा सिपाही की पोस्ट खाली पड़ी है उनके नोटिफिकेशन भी निकाले जाएं, और जो BSSC CGL-4 की जो परीक्षाएं हैं उनमें कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस वेटेज खत्म किया जाए। तो ये अपने गाल बजाना शुरू कर दिया आते ही, अरे देखिए देखिए 4 घंटे में कमाल हो गया, 4 घंटे में कोई कमाल नहीं हुआ। जैसे दिल्ली के जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कोई मांग नहीं मानी गई, एनटीए को भंग करने की मांग थी, एनटीए ने फिर यूजीसी नेट की परीक्षा करवाई, उसमें फिर त्रुटियां निकली, अब केमिस्ट्री सोशियोलॉजी का पेपर दोबारा करवाया जाएगा यूजीसी नेट का, एनटीए भंग नहीं हुआ। जिन बच्चों ने आत्महत्या की, जो बच्चे घायल हुए उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला, एक ब्लैंकेट क्वाशिंग ऑफ FIR का वादा किया था वो कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट की आड़ बनाकर बैठ गए, नहीं भेजा तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल को ये कहने के लिए कि सरकार की मांग है हम उसे पूरा करेंगे। तो ये इनकी प्रवृत्ति है, ये इनकी फितरत है, मोदी रीति सदा चली आई।
8: नहीं तो अभी क्या ये आंदोलन जारी रहेगा कि खत्म हो जाएगा? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि देखिए मुख्य मांग तो मान ली, मुख्य मांग तो विज्ञापन की थी, हमने तुरंत मान ली है, हमने इतने दिन नहीं लगाए कि CGC की परीक्षा रद्द करने के लिए 17 दिन नहीं लगाया, हमने देखिए 4 घंटे में मान लिया, तुरंत विज्ञापन में निकल गया।
10: नहीं नहीं देखिए, फिर आप डिरेल कर रहे हैं, मुख्य मांग सिर्फ परीक्षा की नहीं थी, मुख्य मांग सिंगल फेज परीक्षा की थी, वो नहीं मांगी गई है आंदोलन। अब आपने कहा कि तेजस्वी यादव सियासत कर रहे हैं, मतलब अगर नेता जाए, अगर विपक्षी नेता न जाए तो आप कहेंगे गया क्यों नहीं, अगर कहे कि जाऊंगा मिलूंगा तो आप कहेंगे कि भैया जा क्यों रहे हो, सियासत क्यों करो। आपको पूछना चाहिए साहिल कि मोदी और अमित शाह क्यों नहीं जाते हैं किसी प्रदर्शन में, जंतर मंतर से संसद कितनी दूर थी, संसद के अंदर चर्चा करने से मुंह छिपाए मोदी और अमित शाह क्यों भागते रहे, और लाल किले के प्राचीर से क्यों नहीं बताया कि जेनजी और जैन अल्फा के लिए क्या करेंगे मोदी जी, कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, वहां तो वो दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं, मतलब अगर
8: जुबानी का कोई जवाब दीजिए
10: तो वो जरूर नरेंद्र मोदी जी को मिलना
8: चाहिए। मौका देंगे तो विपक्षी नेता तो छात्रों के साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तो हम साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही छात्र सड़क पर उतरेंगे तुरंत सरकार को बात मान लेनी पड़ रही है, वो दबाव बन रहा है, उसका असर दिखाई दे रहा है, झारखंड में दिखाई दिया तो हर राज्य में दिखाई देगा, जंतर बंतर पर दिखाई दिया तो हर राज्य में दिखाई देगा।
4: साहिल जी अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी आगे आगे देखिए होता है क्या, कितना आगे देखें, झारखंड तक देख लें या नहीं देखें, या कर्नाटक तक देख लें या नहीं देखें, या केवल दिल्ली में देखें, पंजाब का देख पाए या नहीं देख पाए। किसी ने ठीक कहा है, राहुल गांधी बहुत आगे जाएंगे क्योंकि जिस भी कांग्रेस शासित प्रदेश में जाएंगे हर कोई बोलेगा आगे चलो, यहां मत देखो, यहां रुक जाओ, यहां तो मापदंड लगे। तीन शहर तीन मॉडल साहिल जी, पहला शहर दिल्ली, चार इस्तीफा भी हो गया, चार दिन में बड़ा कानून भी बन गया। दूसरा शहर बिहार, छात्र बैठे उससे पहले नोटिफिकेशन भी आ गई, मुख्य मांग भी मान ली गई। और झारखंड तीसरा मॉडल कैसा बदल गया, तीसरा मॉडल ऐसा बदल गया कि 17 दिन तक छात्र बैठे रहे। विचलित मत हुई, आप विचलित मत हुई, परेशान मत हुई, आपके बीच में कोई नहीं बोला, परेशान मत हुई, ऐसे ऐसे परेशान नहीं होते नेता, अपने नेता जैसे एक्ट नहीं करते, रुक जाइए, परेशान नहीं हुई है, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ उसके बाद आप कह दीजिए। तीसरा मॉडल है झारखंड का मॉडल, जहाँ छात्र 17 दिन तक बैठे।
8: लेकिन जरा एक मिनट, ये और एक खबर आ रही है, उसके बाद अनुप्रिया जी के पास भी जाना है। एक मिनट रागिनी जी, देखिए कैसे फटाफट फैसले हो जा रहे हैं। जैसे ही छात्रों ने धमकी दी है और विपक्ष धमकी दे रहा है, बिहार चेतावनी कह सकते हैं, लेकिन बिहार में कई आईपीएस अफसरों के तबादले हो गए हैं। सिवान के भीतर भी जिस जहां पर फायरिंग हुई उस बात को लेकर आंदोलन की घोषणा कल की गई थी तेजस्वी यादव की तरफ से। छात्रों आंदोलन में जो AK-47 कांड हुआ था, वहां के SP जो है उनका भी तबादला कर दिया गया है। गोलीकांड के बाद SP पूरण कुमार झा का तबादला कर दिया गया है सिवान से। शशि भूषण इस वक्त हमारे साथ में, शशि भूषण पहले विज्ञापन और अब तबादला।
1: बिल्कुल तबादला, और देखिए कल तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च का ऐलान किया है। थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, फिर छात्रों के बीच पहुंचे। निशाने पर सबसे बड़ी जो घटना रही छात्रों आंदोलन के बीच में, सिवान के अंदर 1:47 से फायरिंग की घटना, उसको ही पोस्टर में सबसे केंद्र में रखा गया है। और यही वजह रही शायद कि अब सरकार घिर रही है इस मसले पर। और एक नोटिफिकेशन जो थोड़ी देर पहले गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया बिहार सरकार के, उसमें 1.5 दर्जन IPS अधिकारियों के तबादले हुए हैं, और दो नाम उसमें बेहद महत्वपूर्ण हैं साहिल। एक तो ये पूरन कुमार झा जो सिवान के SP रहे, उनको वेटिंग फॉर पोस्टिंग में हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है, और दूसरा भरत तिवारी एनकाउंटर में जो आरा के SP रहे मिस्टर राज, उनका भी तबादला हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है उनके लिए कि वो रोहतास उनका ट्रांसफर किया गया SP के तौर पर, लेकिन तबादले तो हुए हैं जी।
8: ठीक है अनुप्रिया जी, दबाव बना है सरकार पर तभी तो ये बातें हो रही है ना। देखिए ये खबर तुरंत एक ही वक्त, ऐसे पहली बार हुआ होगा कि शो शुरू करने के पहले एक खबर और शो के बीच में एक खबर आ जाती है जो मांगे वहां पर थी। ये आमतौर पर होता नहीं है इतने जल्दी, ये दबाव है ना कहीं।
11: साहिल जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की एक बात से मुझे लगा कि बिहार की और देश की जनता को जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों को मत पलटिए, इतिहास के पन्नों में तो इनको जरूर दिखता है, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटना इसलिए जरूरी होता है कि जो बीती हुई सरकार की घटनाएं हैं और जो कार्यकाल है उसको देश को बिहार की जनता जानना चाहती है। रागिनी नायक जी बोलते बोलते हड़बड़ी में इतना बोल गई कि उनको पता ही नहीं चला कि तेजस्वी यादव जी ने किस मंत्रालय को संभाला था। इन्होंने कहा, ये लौट के देखेंगे, इन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का जब उन्होंने पदभार लिया था तब बिहार में बहाली निकली थी। अरे मैडम, वो शिक्षा मंत्री कभी रहे ही नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, एजिया यादव जी बड़ा अच्छा से कहती है, पूछिएगा यहाँ पे बैठे हुए NDA की सरकार के लोग अपने शासनकाल के बारे में बताएंगे। और मैं बताना भी चाहती हूँ क्यों हमारी बिहार की जनता ने हमें लगातार सरकार के रूप में चुना है। 2018 से आज बिहार में आज तक BPSC सिविल सर्विसेज की परीक्षा की जो उसकी एक शेड्यूल तैयार है कि आपकी PT की परीक्षा आपकी होती है सितंबर में, मेंस आपका होता है जनवरी में, उसके बाद आपकी बहाली होती है। यह हर साल का बात है, यहाँ कोई भी किसी भी तरह से खिलवाड़ नहीं होता है। दूसरी बात, शिक्षकों की बहाली के बारे में हमारे BJP के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी ने बताया कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी, और 2023 में बिहार एक ऐसा राज्य बना था जहां 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई थी, और TRE 1 TRE 2 के माध्यम से, TRE 3 जो हम लगातार अपने शिक्षकों की बहाली कर रहे थे। लेकिन उसके पहले भी एक तरीका था, 2005 के बाद में जब नीतीश कुमार जी ने बिहार को संभाला था, नियोजित शिक्षकों की। आज जो हमारे विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनसे भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। उस समय में हमारे यहाँ इतनी एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं थी, 2005 के पहले की सरकार में एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बदहाल थी कि वैसे मैं कह सकती हूँ कि हमारे टीचर नहीं थे जिनके ऊपर हमको हम ट्रेनिंग नहीं किए थे, डायरेक्ट हमें बहाली करनी पड़ी थी क्योंकि बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे थे, शिक्षक नहीं थे, नियुक्ति की प्रक्रिया। पर उसको सुधारा हमने TRE 1, TRE 2, TRE 3 के माध्यम से। अगर इस वर्ष TRE 4 में पीटी और मेंस की परीक्षा की बात हो रही है तो हमारे विद्यार्थी के किसी भी तरह के उनके तैयारी पे हमें सवाल नहीं है। हमें पता है कि बिहार के
8: अनुप्रिया जी
11: अच्छा
8: ये क्या है ना, ये आपको याद होगा। सुनिए अनुप्रिया जी, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, आप एक बात सुनिए। नहीं नहीं एक मिनट, थोड़े महीने पहले, एक दो महीने पहले की बात है। आपको याद होगा CBSE का जो री एग्जामिनेशन का या उसका रीचेकिंग का जो पूरा मामला हुआ था जिसमें विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तब भी तो यही मुद्दा निकला था। बिना किसी बातचीत के, बिना किसी किसी तरीके से छात्रों को पहले बताए अचानक ये घोषणा की जाती है कि दो परीक्षाएं हम लेंगे। CBSE के भीतर भी वही हुआ था, कहा गया था कि हम सारा चीज ऑनलाइन कर देंगे उसमें, और उसमें दिक्कतें हुई क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ठीक तरीके से नहीं हुई थी।
11: नहीं साहिल जी, BPSC आप जिस बात
8: कर रहे हो, अभी छात्र ये बोल रहे हैं कि अगले सेशन से करिए, TRE 5 में कर दीजिएगा।
11: नहीं नहीं देखिए, हमारे नहीं, आपने जिन जिन शख्स के स्टेटमेंट को आपसे सुनाया, और मैं दावे से कर सकती हूँ कि वो किसी तरह से वो एप्लीकेंट नहीं है, वो एक आंदोलनकारी बने हैं, वो एक नेता के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे इतने एलिजिबल हैं कि वो पीटी और मिस दोनों दे सकते हैं, उनके हमको एलिजिबिलिटी पे हमें शक नहीं है।
8: नहीं तो झारखंड में भी तो महातो बैठे थे, वो भी जो महातो वहां पर आंदोलन कर रहे थे झारखंड के भीतर, वो कहां से छात्र थे? आंदोलनकारी होते हैं कई बार अलग अलग।
11: देखिए
8: वहां पर बाकी जो नेता जुड़े हुए थे झारखंड के भीतर, वो कहां सारे सारे के सारे छात्र थे?
11: चाहे जंतर मंतर पे आंदोलन हो, चाहे वो झारखंड में आंदोलन हो, चाहे बिहार में हो, हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके भविष्य की चिंता हमें है। और लेकिन उसके आंदोलन में अगर कोई ऐसे लोग घुस जाए कि जो बच्चों को पिटाई खिलवा दे, जो बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दे, उससे हमारी चिंता है। और मैं सवालों पे नहीं जा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे बच्चे इतने एलिजिबल हैं, बिहार सरकार ने उनको इतना मौका दिया, पढ़ाया है, लिखाया है, और लगातार उन्होंने एलिजिबल बनाया कि यहाँ बच्चे एग्जामिनेशन देके यहाँ पे क्वालिफाई करें।
8: चलिए रागिनी नायक इस बात का जवाब देंगे क्योंकि आपने उन पर सवाल उठाया है, लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आती है कि एक महीने पहले तक अगर कोई बच्चा, सिद्धार्थ यादव भी छात्र आंदोलन में रहे हुए हैं, अगर कोई बच्चा एक महीने पहले तक एकल परीक्षा की तैयारी करता है और एक महीने के पहले उनको अचानक बताया जाता है कि अब आपको दो परीक्षाएं देनी होंगी, कौन सा बच्चा उसके लिए तैयार होगा? और ये बात तो सभी को समझनी पड़ेगी।
11: मैंने अपने शब्दों में साफ साफ कहा, 2005 के बाद में जब बिहार सरकार ने शिक्षकों की बहाली की, वो नियोजित था, उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ। क्या उससे बेहतर हमने नहीं किया? उससे बेहतर प्रक्रिया हमने की TRE 1, TRE 2, TRE 3 के माध्यम से। अगर हम लगातार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की हम जरूरत कर रहे हैं और उसमें हम अच्छे शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? मैं फिर कह रही हूँ, हमारे बच्चे मोस्ट एलिजिबल है, वो अपने चीजों को पढ़ाई लिखाई करते हैं।
8: जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अभी भी ये लगता है, और ये बात आप सभी लोग अपने आप से भी पूछ लीजिएगा कि एक महीने पहले तक अगर एक विशिष्ट तरीके से परीक्षा की तैयारी अगर बच्चे करते हैं और उनको अचानक बता दिया जाता है कि आपको इस तरीके से अब परीक्षा देनी पड़ेगी, कितना मुश्किल होता होगा। क्योंकि इस बार भी 33,000 छात्र जो जगह है उसके लिए परीक्षा होनी है, लेकिन कितने लाख छात्र उसके लिए उतरेंगे ये सब आपको पता ही है। रागी नायक जवाब दीजिएगा।
10: मैं देखिए, ये जो जदयू की प्रवक्ता बैठी है उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि नियत का फिसलना जुबान के फिसलने से ज्यादा खतरनाक होता है। आप इस बात पर चिंता व्यक्त कर रही हैं कि मेरे मुंह से शिक्षा मंत्री क्यों निकल गया, उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं निकला, पर गौरतलब ये है कि आप इस बात को नहीं नकार पाई कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव की सरकार ने, जिसके साथ कांग्रेस पार्टी थी, वो पूरा किया था, पहली बात। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ, जो सिवान के आपने साहिल जो आपने उठाया मुद्दा, सिवान पर बोलना बहुत जरूरी है, सिवान याद दिलाना जरूरी है। एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली।
11: साहिल जी,
10: सिवान में AK-47 चली थी, 3 लड़कों को वो गोली लगी AK-47 की, एक की जांघ की हड्डी फीमर बोन टूट गई, एक का कंधा टूट गया, उसका दाहिना हाथ काम नहीं करता है, और तीसरा लड़का जो केवल 15 साल का था, उसकी गर्दन से गोली छूकर निकली, 1 सेंटीमीटर इधर होती तो उसकी जान चली जाती। तो अगर एक पुलिस के आला अफसर को बर्खास्त भी नहीं किया, उसका तबादला कर दिया गया है, तो कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये बताना चाहिए था कि वो AK-47 चलाने का निर्देश किसने दिया, खैनी खाते हुए सम्राट चौधरी ने दिया या इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया? किसने कहा था कि छात्रों पर AK-47 चले? और जंगल राज कहाँ चल रहा है? ये पुलिसिया तानाशाही का राज कहाँ चल रहा है? ये इस बात का तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरी बात, आखिरी बात, 10 सेकंड और लूंगी। आपने बिल्कुल ठीक बात कही साहिल। अभी आपने दिखाया कि जो छात्र नेता आंदोलन पे बैठे हैं उन्होंने कहा कि TRE-5 में आपको अगर 2 परीक्षाएं लेनी है तो हम जरूर लीजिए। पहले से बता दीजिए अभ्यर्थियों को कि हमें तैयारी करनी है प्रीलिम।
8: ठीक है, चलिए। दिलीप कुमार छात्र नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप कुमार जी, आप सबसे पहले तो आपकी एक मांग तो मान ली है सरकार ने एक तरीके से, और सरकार ने विज्ञापन तो निकाल दिया है, लेकिन आपकी बाकी मांगों का क्या? और जो आंदोलन आप कर रहे हैं वो आंदोलन क्या आपका अभी भी जारी रहेगा?
12: ये बिल्कुल, हम लोग का आंदोलन अभी जारी रहेगा और जब तक सारी मांगों को नहीं माना जाता है हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। 3 दिन तक हम लोग समय दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर सरकार सारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो मैं दिलीप कुमार बिहार के लाखों करोड़ों अभ्यर्थियों के लिए आमरण अनशन पर 21 अगस्त से बैठूंगा आमरण अनशन पर। और अभी TRE-4 का विज्ञापन जारी जरूर हुआ है, ये बहुप्रतीक्षित विज्ञापन जारी हुआ जिसके लिए दिलीप कुमार को कई बार जेल जाना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, थाना में घसीटा गया, जेल में पीटा गया, मारा पीटा गया हमें। 8 मई को जब जेल भेजा गया तो जेल में मारपीट की गई, सेल में बंद करके हमको रखा गया इसी TRE-4 के लिए, और आज TRE-4 का विज्ञापन जारी हुआ। लेकिन अभ्यर्थियों की ये मांग है कि एक परीक्षा हो, TRE-1, 2, 3 में जो प्रक्रिया।
8: जी दिलीप कुमार जी, और भी सवाल है आपको, अगर मेरी आवाज आ रही है मेरे ख्याल से।
12: जी
8: बोलिए जी, आपकी बाकी मांगे भी बता दीजिएगा, क्योंकि आपने कहा कि एकल परीक्षा की मांगे, उसके साथ साथ बाकी मांगे भी बता दीजिए, और उसके साथ साथ आपके साथ में जो BSSC के जो छात्र है वो भी आपके साथ बैठे हुए हैं। सिर्फ शिक्षक भर्ती को लेकर आपकी मांग है या बाकी परीक्षाएं भी हो, ये भी मांग आप रख रहे हैं यहाँ पर?
12: जी बिल्कुल, यहाँ पे सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी है, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हम लोगों की मांग है कि पुराने पैटर्न पे TRE-4 की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती हो, क्योंकि 2 साल की देरी हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को ही TRE-4 की परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया था जो कि आज आया है, तो 2 साल की देरी ऐसे ही हो चुकी है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है, TRE-5 से कीजिए, आप पीटी में करना है TRE-5 से कीजिए, लेकिन TRE-4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। TRE-1, 2, 3 में जब निगेटिव मार्किंग नहीं था तो TRE-4 में अचानक निगेटिव मार्किंग क्यों? तो निगेटिव मार्किंग हटाया जाए और एक परीक्षा हो, और जब तक ऐसा नहीं होगा तो हम लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। और इसके अलावा हम लोगों की मांगे है,
8: ठीक है,
12: कि या तो TRE-4 में निगेटिव मार्किंग हटाया जाए, एकल परीक्षा हो, नहीं तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे। इसके अलावा हम लोगों की मांग है कि BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग से संविदा वोटेज हटाया जाए, क्योंकि 25% संविदा वोटेज दिया जा रहा है, यानी 600 की परीक्षा है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट पे अनुबंध पे संविदा पे बहाल है, जिन्होंने कोई परीक्षा नहीं दी, उनको 150 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। तो ऐसे में जो नए अभ्यर्थी, उनको तो उनका सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, 600 में 150 नंबर घर बैठे मिल रहा, तो संविदा वोटेज हटाया जाए। जब IAS की परीक्षा में संविदा वोटेज नहीं है, IAS की परीक्षा में संविदा वोटेज नहीं है, नीट की परीक्षा में संविदा वोटेज नहीं है, BPSC की परीक्षा में संविदा वोटेज नहीं है, तो फिर BSSC में संविदा वोटेज क्यों? संविदा वोटेज हटाया जाए, एग्जाम डेट घोषित हो, 3 साल हो गया BSSC के द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली आई, 3 साल हो गया, 36 लाख का स्टूडेंट है, लेकिन अभी तक एग्जाम का डेट घोषित नहीं हुआ। तो BSSC CGL-4 सेकेंड इंटर स्तरीय एवं अन्य सभी भर्तियों का परीक्षा डेट घोषित करे और ऑफलाइन परीक्षा हो, क्योंकि बिहार सरकार के पास ऑनलाइन परीक्षा कराने की सुविधा नहीं है। तो जब तक अपना तंत्र विकसित न कर ले बिहार सरकार, तब तक ऑफलाइन परीक्षा हो, संविदा वोटेज हटे और एग्जाम डेट घोषित हो, लाइब्रेरियन की बहाली हो, BPSC 70वीं BPSC सिविल सेवा में धांधली सेटिंग की जांच हो, 1799 दरोगा बहाली में धांधली सेटिंग की जांच हो, और पेपर लीक में जो भी लोग शामिल है, बिहार में 5 बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक तो हमने खुद उजागर किया, सारी परीक्षाएं रद्द हुई, तो उनमें जो भी संलिप्त नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, कोई शिक्षा माफिया हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और वो बिहार का 20 पदाधिकारी कौन है जिसकी मेंस की कॉपियां, BPSC सिविल सेवा मेंस की कॉपियां हूबहू सेम थी? बिहार में 20 अधिकारी हैं जो जॉब कर रहे हैं और उनकी मेंस की कॉपियां फुल स्टॉप कॉमा सभी एक समान था, मतलब एक ही व्यक्ति ने उनचालीस
8: आपके साथ सभी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आरोप जो सरकारी सरकारी दल के मेरे साथ में जो बैठे हुए हैं उनका कहना है कि आप विद्यार्थी हैं नहीं, तो जो विद्यार्थी है वो तो ठीक है लेकिन जो विद्यार्थी नहीं है वो नेता बन के वहां पर बैठे हुए हैं, ये भी आरोप लगाया गया था अभी थोड़ी देर पहले।
12: बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं उनसे हमारा ये सिर्फ सवाल है कि निर्भया कांड 2012 में हुई थी दिल्ली में, तो क्या जिसकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ वही लोग छात्र वही लोग आंदोलन कर रहे थे क्या? बीजेपी वाले उस समय आंदोलन नहीं कर रहे थे? बीजेपी वाले नहीं कर रहे थे आंदोलन? शीला दीक्षित का इस्तीफा नहीं मांग रहे थे? तो क्या जो लोग आंदोलन दिल्ली में कर रहे थे उनकी बेटी का बलात्कार हुआ था? ये क्या मतलब कुतर्क है कि दिलीप कुमार छात्र नहीं है तो आंदोलन नहीं करेगा? अरे ये सिस्टम का दोष है, व्यवस्था का दोष है, भ्रष्टाचार है कि दिलीप कुमार को पीटीएससी अभ्यर्थी से नेता बनना पड़ गया। अगर ये लोग सिस्टम को
8: दिलीप कुमार जी आपका शुक्रिया। दिलीप कुमार यहाँ पर छात्र नेता साफ शब्दों में कह रहे हैं और जिस तरीके से लग रहा है सिद्धार्थ यादव जी, 10 में से 2 ही मांगे करीब करीब पूरी हुई है ऐसा लग रहा है, बाकी एक बड़ी फहरिस्त है दिलीप कुमार यहां पर गिनवा रहे थे कि वो अभी तक पूरी नहीं हुई है मांग उनकी, और उस बात को लेकर वो आंदोलन पे रहेंगे।
4: देखिए साहिल जी, पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि मैं भी जब बोलूं इस बार तो मुझे पूरा करने देना आप, और रागिनी जी अगर बीच में विचलित हो तो आप उनको भी टोकना। मैं साफ कहता हूं झारखंड और पटना के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। झारखंड पेपर लीक की व्यवस्था का आंदोलन नहीं है, पटना पेपर लीक की व्यवस्था का आंदोलन नहीं है। झारखंड भ्रष्टाचार, बीपीएससी की सीटें बेचना, बीपीएससी में गलत अपॉइंटमेंट्स करना, सरकार की शह पर लोगों को रखना, 20-20 लाख 50-50 लाख में सीटें बेचना, पेपर लीक करना, अपार भ्रष्टाचार का आरोप है। आप पेपर एक सेट में हो कि दो में हो, टीआरई 4 को लेकर के आपका क्या सुझाव हो, आपका क्या मत हो, हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं साहिल जी। छात्र अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूं आपको ऐसी संवेदनशील सरकार कहां मिलेगी। 3 मॉडल सामने हैं, दिल्ली के अंदर जहां कानून इतनी तेज बना दिया गया, पटना के अंदर जहां पर आंदोलन शुरू होते ही 2 मांग मान ली गई, और झारखंड के अंदर 3रा मॉडल जहां 17 दिन तक छात्र बैठे रहे, उनको इनकी सरकारें फिटती रहे, उनको सरकारों के ऊपर डंडे चलते रहे, लाठियां चलती रहे, टीयर गैस चलता रहे, वाटर कैनन चलता रहे, और कोई सरकार बातचीत ना करे। ये संवेदनशील सरकार है साहिल जी, जो छात्रों की हर जायज मांग के साथ खड़ी है और हर जायज मांग का निवारण करेंगी। रही बात कौन छात्र आंदोलन कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि सही मांग को लेकर के जो आंदोलन करे उसका स्वागत है, सबको अपनी बात को आगे रखना चाहिए, सरकार संवेदनशीलता के साथ करेगी। पर एक सलाह जरूर देता हूं साहिल जी, राजनीतिकरण मत होने दीजिए।
8: सही और गलत का फैसला कौन करेगा?
4: आपको आकर के मैं वही बात पूरी कर रहा हूं, मैं कोई किसी राजनीतिक दल को आकर के राजनीतिक रोटी मत सेकने दीजिएगा। जिनको जनता रिजेक्ट कर चुकी है, बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, उनकी गिरती हुई साख को उठाने का ये माध्यम नहीं हो सकता। छात्रों का
8: चुनाव की बात नहीं है यहाँ पर सिद्धार्थ यादव, लेकिन मामला डिफ्यूज होता तो नहीं नजर आ रहा है। दिलीप कुमार जिस तरीके से यहाँ पर अपनी मांगे रख रहे हैं उससे मामला डिफ्यूज होता तो नहीं नजर आ रहा है। दिलीप कुमार जी, आप जल्दी से कुछ ऐड करना चाहेंगे बता दीजिएगा, क्योंकि अभी आपने सुना कि सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता यहां पर कह रहे हैं कि वो संवेदनशील सरकार है और वो बातें सुन रहे हैं, आपकी बातें सुनी जा रही है, ये भी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं।
12: सरकार हमारी बात सुनती है, डिमांड पूरा करती है, तो यही दिलीप कुमार पूरा बिहार घूमकर बिहार सरकार मुख्यमंत्री की तारीफ करेगा। पिछले साल किए भी थे, हमको किसी गठबंधन या किसी पार्टी से मतलब नहीं है, जो भी सरकार हो हमारी मांगों को पूरा करती है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। अभी हम लोग का डिमांड है टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है टीआरई 5 से कीजिए, निगेटिव मार्किंग हटाइए, यानी कि पुराने पैटर्न पे परीक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई नेट लतीफी नहीं हो, 2 साल की देरी हो चुकी है। इसके अलावा बीएसएससी से संविदा वोटेज हटाया जाए, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो, 3 साल से परीक्षा का डेट घोषित नहीं हो रहा है, तो एग्जाम डेट घोषित हो, धांधली से की जांच हो, लाइब्रेरियन की बहाली आए, बीटी का आयोजन हो।
8: ये टीआरई 4 अभी इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2024 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक हुआ था और इसीलिए 2 साल के बाद ये परीक्षा लेनी पड़ रही है, इस बात का भी जिक्र होना चाहिए। रागिनी नायक जी, रागिनी नायक,
10: साहिल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये बात हजम नहीं हो रही है, मुझे लगता है सारे भाजपाई और संघियों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि झारखंड में न सिर्फ राहुल गांधी जी ने फोन पर बात की छात्रों से, राहुल गांधी जी ने अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री को, घटक दल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर
13: फोन पर बात करी, कितना बड़ा काम किया।
8: ये देखिए यही बात है रागिनी जी,
10: खुशी मनाते हैं
8: हर चर्चा में ये बात होती है रागिनी जी, आपकी भी, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ।
10: ओडिशा पुलिस सब इंस्पेक्टर की 25 लाख रुपए, RITG 15 लाख रुपए, उत्तराखंड पटवारी परीक्षा 15 लाख रुपए, बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 10 लाख रुपए।
13: ये बताएंगे क्या मधुर वार्ता हुई थी,
8: दिक्कत क्या है पता है रागिनी जी, प्लीज
13: सरकार समर्थित
8: एक मिनट
13: देख रहे हैं और जरा एक मिनट करी
8: रागिनी जी प्लीज, ये पॉलिटिकल डिबेट हम लोग कई दिन तक करते रहेंगे, जब झारखंड का मुद्दा निकलेगा तब कोई जंतर मंतर निकालेगा, जंतर मंतर का मुद्दा निकालेगा तो कोई झारखंड निकालेगा। आज हमारे साथ बिहार के मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं रागिनी जी, हम बिहार के मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं, सिद्धार्थ यादव आपको छेड़ रहे हैं झारखंड का मुद्दा निकालकर, आप उसका जवाब दे रही है।
10: हमने विपक्ष की भूमिका भी पूरी तरीके से निभाई साहिल, सत्ता पक्ष की भूमिका भी पूरी तरीके से निभाई, झारखंड में विपक्ष की भूमिका
13: निभाई, बिहार में कौन सी कौन सा विपक्ष सत्ता में है,
10: चौधरी के रहते हैं आप, क्यों नहीं पूछ रहे, क्यों नहीं झारखंड मिल रहा।
8: मैंने ये मुद्दा इसलिए निकाला रागिनी जी प्लीज, मैंने ये मुद्दा इसलिए निकाला कि आंदोलनकारी छात्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और वो लाइव जुड़ने के बाद अपने अपनी मांगे हमारे सामने रख रहे हैं, यहाँ पर लाइव टेलीविजन पर रख रहे हैं, कम से कम उस पर तो बातचीत करिए जब वो बातचीत रख रहे हैं। उसके बाद तो अनुप्रिया जी आपने सुना कि आप जैसा कह रही है वैसा वैसी बात नहीं है, 2 साल पहले जब पेपर लीक हुआ था तब जाकर TRE-4 लेना पड़ रहा है, तब आप मुख्यमंत्री थे, आपकी पार्टी वहां पर मुख्यमंत्री पद पर थी, ऐसा नहीं है, कई सारे रिक्त पदों की बातचीत भी वहां पर दिलीप कुमार यहां पर कर रहे हैं। अनुप्रिया जी
11: साहिल जी, जब मैंने कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे वो छात्र नहीं है, मैं आपको पिछले जो घटना है उसको मैं आपको याद दिलाना चाह रही थी कि जो बीपीएससी वाली घटना पे आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, प्रशांत किशोर जी आए थे, उस पे हमारे बिहार के हाईकोर्ट ने फटकारा था कि एग्जामिनेशन सही तरीके से हुआ था।
8: ठीक है, चलिए कुल मिलाकर अभी पटना के भीतर आंदोलन का एक नया दांव यहाँ पर खेला जा रहा है, एक तरीके से हम देख सकते हैं कि एक जिस तरीके से आंदोलन शुरू होते ही सरकार के तरफ से पहली मांग तो मान ली गई है, लेकिन छात्र नेता अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि कई सारी मांगें ऐसी कि अभी तक मांगी नहीं है, और इसी के लिए यह आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा और उस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: Papa.
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया
1: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
3: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: बिना चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल, बोलो जुबां केसरी।

0: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
1: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
2: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
1: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
3: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
4: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
5: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
6: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
1: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। आज तक
7: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
8: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
7: नहीं सर।
8: 12th किससे की हो?
7: 12th सर मेरा PCM से रहा।
8: कंपाउंड क्या होता है?
7: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
8: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
7: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
8: देख भाई अपनी गारंटी पे छेड़ना।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
2: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
0: प्रेजेंटेड बाय
3: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बीजेपी की नवीन टीम की अगले चुनावों पर नजर। विनोद तावड़े को बनाया गया उत्तर प्रदेश का प्रभारी, सतीश पुनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। वंदे मातरम विवाद की दूसरी किश्त, कांग्रेस के गोवा कार्यक्रम को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी बोली उनकी सोच ही ऐसी है, खड़गे ने किया पलटवार। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच अपने दिल्ली आने की चर्चा पर फडणवीस ने लगाया विराम, कहा मैं मुंबई और महाराष्ट्र में ही रहूंगा, जनता ने हमें सौंपी है जिम्मेदारी। पटना में छात्रों के धरने पर बैठते ही जग गई सम्राट सरकार, 4 घंटे के भीतर ही जारी हो गई अधिसूचना, 32,000 से ज्यादा शिक्षकों की होगी भर्ती, प्रक्रिया को लेकर आंदोलन अभी भी जारी। झारखंड आंदोलन की सफलता का साइड इफेक्ट, टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद्द होने से 2,250 की गई नौकरी, प्रभावित लोगों का विरोध प्रदर्शन, कोर्ट जाने की तैयारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं, अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो।
1: नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमको पासी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे, हम दो ही लाइन गाते हैं।
2: कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
3: जिन लोगों को देश के राष्ट्रगीत में, राष्ट्रगान में, इन सब में भी राजनीति दिखाई देने लग जाए तो इसको दुर्भाग्यपूर्ण से अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता।

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वंदे मातरम गीत नहीं, वंदे मातरम का मसला गूंज उठा है सियासत के गलियारों में। वंदे मातरम के दो स्टैंजास को लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण का बीजेपी का आरोप बनाम बीजेपी पर नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप गंभीर होता जा रहा है। पहले 15 अगस्त पर संपूर्ण वंदे मातरम गायन के दौरान सोनिया गांधी के इशारों पर विवाद हुआ। यही वो वीडियो है जो वायरल भी हुआ और चर्चा हुई कि क्या वो गाने को रोकने के लिए कह रही थी। कांग्रेस का कहना है कुर्सी मंगाई जा रही थी, लेकिन ये पूरा विवाद तो हुआ ही। केरल में 15 अगस्त पर कांग्रेस सरकार ने वंदे मातरम नहीं गाया, इसको पूरी तरह से स्किप कर दिया गया। इसके बाद गोवा में मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के दो स्टैंजास जो इस कानून में बदलाव के पहले थे उतने ही गाए गए। कांग्रेस ने खुलकर कह दिया है कि वंदे मातरम के सभी स्टैंजास नहीं गाएगी, जबकि संसद से कानून और केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियमों के मुताबिक संपूर्ण वंदे मातरम का सम्मान देना जरूरी है। 2025 में वंदे मातरम के 150वें वर्ष से सरकार ने इसे राष्ट्रगान के बराबर सम्मान और दर्जा देने के कदम उठाए हैं। 15 अगस्त पर पहली बार लाल किले से वंदे मातरम का गायन हुआ, पूरा गायन पूरे गीत का। लेकिन क्या इस क्रांति गीत पर आर पार की लड़ाई, वोट बैंक की लड़ाई भी है? थोड़ी सी गहराई में सोचिएगा तो समझ जाइएगा। क्या 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजास का गायन भी मुद्दा होगा? वंदे मातरम मधुरा, हंगामा पूरा। आइए आपको दिखाते हैं वंदे मातरम पर सियासत का नया बंटवारा। चर्चा करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति गीत बने वंदे मातरम पर सियासत का शोर उठ गया है। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टैंजा गाए गए। कांग्रेस के कार्यक्रम का यह घटनाक्रम 15 अगस्त पर हुए विवाद के बाद सामने आया है। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजा गाए गए थे, लेकिन उसी दौरान सोनिया गांधी कुछ निर्देश देती नजर आई थी। इस वीडियो पर बीजेपी ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा था, सोनिया गांधी जी का भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति अनादर सबके सामने है। यही वह गीत है जिसे कांग्रेस ने दशकों तक तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर सीमित कर दिया। और राहुल गांधी जी, वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा रखता है। क्या आपको लगता है कि आप इसकी गरिमा से ऊपर हैं? क्या आप राष्ट्रीय भावना से ऊपर हैं, या फिर उन संवैधानिक मूल्यों से भी ऊपर हैं जिनका आप अक्सर दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं? 15 अगस्त पर हुए विवाद के बाद कांग्रेस के गोवा कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टैंजा गाकर पार्टी ने अब इस पर खुलकर लड़ाई छेड़ दी।
1: अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो।
0: कांग्रेस नेतृत्व ने वंदे मातरम पर यह लकीर साफ की। उसके पहले से ही पार्टी के नेता खुलकर संग्राम छेड़ चुके हैं। 15 अगस्त को ही केरलम में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम का गायन नहीं हुआ था।
2: हम सिर्फ 2 ही पंक्ति गाते हैं, चाहे बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह हमको पासी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे, हम 2 ही लाइन गाते हैं।
3: मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैंने पहले भी गाया, अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें कौन नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।
0: संसद में कानून के जरिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान का दर्जा दिया जा चुका है।
4: मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्षवा।
0: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजा गाने का निर्देश दिया था। इस बार 15 अगस्त को लाल किले पर भी पहली बार वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजा का गायन हुआ था, लेकिन वंदे मातरम पर हो रहे हंगामे पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह ने नाराजगी जताई है।
5: इस तरह का कोई भी कृत्य वो गैर कानूनी भी है, कानून के तहत कार्रवाई करने के योग्य भी है। इस तरह की गतिविधियां, हरकतें अगर कोई करता है और पार्टी किसी नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, ऐसे पार्टी के मुखिया की उपस्थिति में अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति और देश के मान बिंदुओं के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, उनकी कितनी आस्था है, उनकी कितना उनके मन में पवित्रता का भाव है, देश के सामने प्रकट हो जाता है।
0: वंदे मातरम पर पहली बार राजनीतिक हंगामा नहीं हो रहा, लेकिन वंदे मातरम पर नए कानून के बाद मामला और गंभीर है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के बंटवारे को देश के बंटवारे से जोड़ा था, तो सोनिया गांधी के विवाद पर अमित शाह हमला कर चुके हैं।
4: 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे।
1: निया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है, आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए।
0: वंदे मातरम पर तलवारें दोनों ओर से खींच गई हैं। तुष्टिकरण बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई आगे उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के चुनावों तक चल सकती है। आज तक ब्यूरो। आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रदीप भंडारी, सह संयोजक मीडिया के, जो बीजेपी की तरफ से नई टीम में बनाए गए हैं, वो स्टूडियो में पहुंचे हैं। बहुत स्वागत है आपका बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जुड़ गए अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ फैज खान साहब जुड़ गए हैं और एमएच खान साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त सीधा सौमित्र चैटर्जी जुड़ रहे हैं, जो कि बंकिम चंद्र चैटर्जी के रिश्तेदार हैं। वो अभिनेता भी हैं, फिल्म निर्देशक हैं, नाटककार हैं, कवि हैं, नेता भी हैं और एमएलए भी हैं। बहुत स्वागत है आपका सौमित्र जी। नमस्कार। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस पूरे विवाद पर आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि यहां तक कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कि अमित शाह उस वक्त दुनिया में भी नहीं आए थे जब मैं एमएलए बन चुका था, तो हमें राष्ट्रभक्ति ना जताएं। 18 साल से क्या हम लोग अपराध कर रहे थे जो अब दो स्टैंजा गाकर अपराध हो रहा है?
6: देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कैसे बता रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलना शुरू किया उसके पहले विजय हजारे भी खेलते थे। सचिन तेंदुलकर का गेम एंड विजय हजारे का गेम थोड़ा अलग है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अपना उम्र से अपना परसेप्शन ज्यादा दिखाएंगे, बोलना ये चाहेंगे कि उनका परसेप्शन ज्यादा है बिकॉज ऑफ हिज एज, आई थिंक ही इज रॉन्ग। दूसरा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, अभी तो ये लॉ बन गया है, दिस इज अ क्लियर कट लॉ ऑफ द कंट्रीज दैट यू हैव टू पे रेस्पेक्ट टू वंदे मातरम। तो ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से, इतना पहले से एमएलए है जब हमारे होम मिनिस्टर पैदा भी नहीं हुआ था, तो उनको तो ये जानना चाहिए था इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ। तो वो क्या इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ नहीं जानते?
0: पर उनके इस आरोप पर आपका क्या जवाब है सौमित्र जी? वो ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम्स को एलियनेट करने के लिए, जो बड़ी फिलॉसफी है जिसके आधार पर कई लोग विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सोची समझी पॉलिटिक्स है। वो मुस्लिम जो समुदाय है जिसको शायद माँ दुर्गा के बारे में गाने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो नहीं मानते, वो कहते हैं हम सिर्फ, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उनका अपना एक सोच है, उनको एलिनेट करने के लिए, उनको अलग थलग करने के लिए ये स्टैंजास बीजेपी ने जोड़े हैं। आप बंकिम जी के फैमिली से आते हैं, क्या उनकी क्या सोच थी, आपको क्या समझ में आया है, क्या इसके बारे में आप बताएंगे?
6: देखिए, वंदे मातरम लिखा गया था देशभक्ति के लिए, वंदे मातरम लिखा गया था देश प्रेम के लिए। ऋषि अरविंदो ने कहा है कि वंदे मातरम एक धर्म है देशभक्ति का। तो जब बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था तब तो ये मुस्लिम को एलिनिएट करना ये उनका टेंडेंसी के उद्देश्य पर नहीं था। उसने देवी दुर्गा के साथ भारत माता का कंपैरिजन किया। तो मुस्लिम लोग अपना देश को पसंद नहीं करते, अपना देश को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ये क्या लॉजिक है हमको समझ में नहीं आता कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये एलिनिएट करने के लिए द क्वेश्चन ऑफ एलिनिएशन ऑफ एनी रिलीजियन विद दिस सॉन्ग डज नॉट अराइज बिकॉज दिस इज फॉर द कंट्री। ये भारत का गीत है, ये भारतीय गीत है।
0: पर इस देश में सुनिए ना सौमित्र जी, इस देश में एक तो वो चिट्ठी जो आपने सोनिया गांधी जी को लिखी है वो चिट्ठी हम दिखा रहे हैं, क्या भाव है उसका दो तीन लाइन में बताइएगा। पर इस देश में कई लोग हैं जो माँ दुर्गा को नहीं मानते, जिनका अलग धर्म है, और जो भारत को माँ के स्वरूप में नहीं देखते हैं, फिर वो इसको कैसे गाने के लिए बाध्य हो सकते हैं? इस पर आपका क्या जवाब होगा?
6: देखिए, अपना दुनिया में सबसे बड़ा अपना माँ होता है। अगर कोई अपना माँ को नहीं मानते हैं, जो अपना देश को माँ नहीं समझते हैं, तो वो देश में नहीं रहे, वो दूसरा कहीं जाके रहे। क्योंकि जब देश भाग हुआ था तब यहाँ पे वो रह गए थे जो बोला था कि हम भारत को मानेंगे। अगर आप भारत को नहीं मानते हैं आप दूसरा जगह जाके रहिए, यू मे गो टू इटली एंड स्टे।
0: ये आप किसके लिए कह रहे हैं?
6: सबके लिए कह रहे हैं।
0: सोनिया जी को चिट्ठी के जरिए आप क्या बताना चाह रहे थे, आपका भाव क्या है?
6: सोनिया जी को मैंने जो चिट्ठी लिखा है उसमें मैंने क्लियरली लिखा है हिस्ट्री ऑफ वंदे मातरम, व्हाई वंदे मातरम इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और मैं उसको उनको यही सिखा बोलना चाहता था कि आप वंदे मातरम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपका जो जेस्चर है दैट वाज अ डिसरिस्पेक्ट टू वंदे मातरम, हेंस यू शुड अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया, दैट्स ऑल।
0: पर वो तो अपोलोजाइज करने को तैयार नहीं है, माफी मांगना तो दूर, मतलब अब तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, आपने देखा होगा केरलम में तो जब स्वतंत्रता दिवस का समारोह हुआ उसमें इसको गाया भी नहीं गाया गया, और गोवा में खड़गे जी की मौजूदगी में सिर्फ दो स्टैंजा गाए गए। तो अब
6: ये तो हमारे जो कांग्रेस पार्टी है ये लोग सोचते है कि वंदे मातरम उन लोग का प्रॉपर्टी है। वंदे मातरम एक अलग तरह से गाया जा सकता है व्हेन इट इज अ नेशनल सॉन्ग। वो लोग तो ये मानने के लिए तैयार भी नहीं है जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है, वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके अगेंस्ट तो एक्शन लेना चाहिए जो लॉ नहीं मानते।
0: हाँ नहीं, मतलब अगर वाकई कानून बना दिया गया है तो फिर कानूनन कार्रवाई करनी होगी, और ये क्या गले की फांस नहीं बन जाएगी बीजेपी के लिए? क्योंकि ऐसे नेताओं पर अगर कानूनी कार्रवाई करेगी तो एक तरफ का हिस्सा है जो ये कहेगा कि भाई उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको एक मौका मिलेगा ये बताने का कि देखिए ये सरकार हमारे खिलाफ कैसे कानूनी कार्रवाई करती है, और अगर नहीं लिया तो आपने कानून बनाया है उसका पालन नहीं करने वालों को आप फ्री रास्ता दे रहे हैं, तो फिर कई लोग इससे इनकार करेंगे। क्या ये बीजेपी के लिए ही, सरकार के लिए ही फांस की स्थिति नहीं बन गई है?
6: नो मैडम, बीजेपी के लिए फांस की स्थिति नहीं बन गई है, क्योंकि हमने जो चिट्ठी लिखा है, मैं वंदे मातरम का इतिहास लिखा हूं। अभी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली।
0: ठीक,
6: अब देखिए क्या होता है।
0: ठीक है, आप क्या चाहते हैं, लास्ट सवाल, आप क्या चाहते हैं? गृह मंत्री आपको सुन रहे हैं, क्या चाहते हैं आप सौमित्र जी?
6: हम चाहते हैं ये बंद हो, ये वंदे मातरम के साथ वो जो हो रहा है छेड़छाड़, ये बंद। हम चाहते हैं वंदे मातरम को जो रिस्पेक्ट दिया जा रहा है बीजेपी सरकार से, वो रिस्पेक्ट ऑब्वियसली दिया जाए।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
6: थैंक यू।
0: हमारे साथ सौमित्र चैटर्जी थे जो कि बंकिम चंद्र चैटर्जी के परिवार से जुड़े हुए थे, और वो अब इसका जवाब मुझे लगता है एक बार अभय जी से ले लूं, उसके बाद से आपने जो ये पूरा रिसर्च पेपर यहाँ फैला दिया हमारे टेबल पर उस पर लौटेंगे। अभय दुबे जी, क्या गलत कह रहे हैं वो, और ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है? कोई भी कानून अगर देश में नया बनता है या उसमें संशोधन किया जाता है तो क्या इस देश का हर नागरिक उस कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है? दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को जरा, ये जो ग्राफिक्स नंबर टू है, वंदे मातरम का अपमान किया तो ये द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 है जो इस देश की संसद से पास हुआ है। वंदे मातरम रोकने कार्यक्रम में बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई, अधिकतम 3 साल की जेल या जुर्माना, राष्ट्रगीत गायन में जानबूझकर व्यवधान पर 1 साल जेल। कोई भी अगर देश की संसद से कोई कानून में संशोधन होता है, उस नागरिक उसको मानने को बाध्य है या नहीं है, या कांग्रेस पार्टी के नेता इससे ऊपर है?
7: अंजना जी, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों को इस देश पर न्योछावर कर दिया। 1942 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर, अंग्रेजी हुकूमत के गवर्नर को भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के 10 बिंदु का प्रारूप दे रहे थे, तब हमारी बूढ़ी गांधी मातांगी हाजरा तामलुक के जिले में एक के बाद एक 5 गोलियां सीने पर खाती और वंदे मातरम के उद्घोष करते हुए अपने प्राणों को देश पर न्योछावर कर देती है। मैं ये जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभी बैठे थे, मैं बंकिम चंद जी के चरणों में नमन करता हूँ, माँ दुर्गा के प्रति आस्था प्रकट करता हूँ और इनको सलाह देता हूँ कि जाओ पहले दिलीप घोष को भारत के बाहर विदेश भेजो, जिसने माँ दुर्गा के इतना बड़ा अपमान किया है कि मैं टेलीविजन पर बोल भी नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के की विचारधारा के, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा के एक व्यक्ति ने अगर जब भारत मां अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी तब वंदे मातरम का उद्घोष कर दिया होता तो ये अंग्रेजों के मुखबिर नहीं कहलाते, इनका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट में होता। तो भारत मां की जब बेड़ियों में जकड़ी थी तब ना वंदे मातरम बोला और आज ना वंदे मातरम का भाव है उसको ये लोग चरितार्थ करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहले वंदे मातरम का विरोध किया मुस्लिम लीग ने 1937 में, तब क्या किया? तब इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध प्रांत और बंगाल में उनके साथ इस प्रस्ताव के बाद सरकार बनाई। उन्होंने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया मुस्लिम लीग ने असेंबली में, उसके बावजूद सावरकर बरकरार रहे। और मुझे गर्व है कि मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अपेक्षा इस भारत वर्ष के कर्णधार रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का अनुयायी हूं। जब टैगोर के पास 1937 में यह प्रस्ताव गया तो आदरणीय टैगोर साहब ने कहा कि मैं इसके सिर्फ 2 स्टेंजे, सुनिए ना, आखिरी बात कहने दीजिए, 2 स्टेंजे को स्वीकृति देता हूं जो कांग्रेस की कार्य समिति ने अडॉप्ट किया। और उन्होंने कहा दुर्गा आदि देवी के स्वरूपों की धार्मिक कल्पना आती है, तो टैगोर का मानना था कि सभी सभाओं में, क्योंकि सभी धर्मों के लोग रहते हैं इसलिए ये जरूरी नहीं कि सब इसका गायन करें। आखिरी बात, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने जब इसको पारित किया तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सभा में मौजूद थे, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। और बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 25 से 29 तक ये तय किया कि अबाध रूप से धर्म को मानने की आजादी है, तो सभी धर्म के लोग अपना अपना आचरण करें। तो भगवान श्री कृष्ण 3rd अध्याय में कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मो स्वनुष्ठितात्, कम श्रेयस्कर भी होगा तो मैं अपने धर्म में मरना पसंद करूंगा। धर्म के अस्तित्व को मान्यता देते हैं और दूसरों के धर्म के प्रति हम अनादर नहीं रखते, हम सद्भाव रखते हैं लेकिन संभाव नहीं रख सकते। मुझे मेरा धर्म प्यारा है, मैं अपने धर्म का आचरण करूंगा, इस्लाम धर्म का आचरण नहीं कर सकता। इसलिए इस्लाम धर्म के मानने वालों से भी मैं यही अपेक्षा करता हूं कि वह हिंदू धर्म का आचरण न करें, उसके प्रति सद्भाव करें रखें, ये भारत का संविधान कहता है।
0: रोज तो अभय जी आप तरह तरह के श्लोक, हिंदू जितने भी वेद हैं, किताब हैं, सबसे आप ग्रंथ हैं, सबसे आप सुनाते हैं, तो इससे थोड़ी ना कोई एलिनेट हो जाता है, इसको आप अलग हटाइए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द डिबेट इंपॉर्टेंट है लेकिन वो बीत चुका, कानून बन चुका है। एक लाइन में जवाब दीजिएगा, कानून मानने के लिए हर कोई बाध्य है या नहीं, या फिर मैं कह दूं कि भाई मुझे फला कानून मुझे पसंद नहीं है, मैं तो नहीं मानूंगी कि ये चलान कटता है यहाँ पे, मैं तो नहीं मानूंगी इसको। कानून सब पर बाध्य है या नहीं है, बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा प्रभु।
7: इस भारत सरकार के ये संविधान में नहीं लिया, प्रशासनिक आदेश है, इसपे कहां लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में अगर हम वंदे मातरम का आदर करते हुए 2 पंक्तियां पढ़ते हैं तो हमें सजाए मौत दी जाएगी, कहां लिखा है बता दीजिए।
0: चलिए यहीं से जवाब दीजिए, आपने कानून कानून में बदलाव है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल है, अमेंडमेंट है, ये संशोधन है, वो कह रहे हैं प्रशासनिक है, आपका ऑर्डर है और कहां पर लिखा है कि कांग्रेस के दफ्तर में कर दिया तो गुनाह है?
8: मैं शुरू करने के पहले तीन फैक्ट चेक करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने मुद्दे के अलावा सब कुछ की बात करी। पहला फैक्ट चेक, अगर इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से इतनी दिक्कत थी तो नेहरू जी के कैबिनेट के अंदर उनको क्यों रखा? और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिनकी वजह से जो है नेहरू जी जो पाकिस्तान का झंडा जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के तहत फहराने की बात कर रहे थे उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई अपने प्राणों का बलिदान दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरा, ये मेरे पास इनने झूठ बोला कि सावरकर, वीर सावरकर ने बात करी थी वंदे मातरम का विरोध करने की। ये रहा मेरे पास जवाहरलाल नेहरू का कथन 20 अक्टूबर 1937, 20th अक्टूबर 1937, नेहरू को कोट करना चाहता हूं। I have managed to get an English translation of Anand Mutt and I am reading it at the present to get the background of the song. It seems to me that it will irritate the Muslim League and Muslims. तो सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के तुष्टीकरण के वजह से जो पूरा वंदे मातरम गाया जाता था वो वंदे मातरम पे रोक लगी थी। पॉइंट नंबर टू, संघ के ऊपर बात करी, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1948 गुरुजी गोवलकर को प्रेस करते हैं और उसके पहले डॉक्टर हेगड़ेवर ने पहली बार पूर्ण स्वराज की बात करी थी जिसको कांग्रेस ने 1929 के सेशन में रखा था। चलिए अब मैं आता हूं मुद्दे पे। आज तो अभय जी ने मान लिया कि सोनिया गांधी कोई चेयर लेने की बात नहीं कर रही थी, मतलब झूठ बोल रहे थे जयराम रमेश दो दिन से कांग्रेस पार्टी, जानबूझकर सोनिया गांधी ने इसका इंसल्ट किया है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, बड़ी बात है, कोई भी देशभक्त व्यक्ति क्या देश के कानून को नहीं मानेगा क्या? देश का कानून जब पारित हो जाता है उसको मानने का अधिकार ही नहीं, दायित्व 51A के तहत सबका है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, 1950 में अंजना जी नेशनल एंथम की बात हुई थी, 1950 से 71 के बीच में देश में कोई स्पेशल कानून नहीं था जो नेशनल एंथम का विरोध करने के ऊपर दंड करता था। तो 1950 से 71 के बाद में, 71 में पहली बार आया, तो जब 71 में कानून सेक्शन 3 का आया कि भाई नेशनल एंथम का अगर कोई विरोध करेगा तो उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा, सबने उसका पालन किया। तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि जब देश का कानून इंप्लीमेंट होता है तो उसको सब पारित करते हैं। तो जब 1971 के क्लॉक के अंदर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जिसकी बात राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी वो सेम पेडेस्टल पे, तो ये क्यों नहीं मान रहे? ये इसीलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि इनके लिए तुष्टीकरण पहले और देश हित है। अब इनका आर्ग्यूमेंट अगर एक्सटेंड करें भाई मुसलमानों को दिक्कत है, मुस्लिम नेताओं को दिक्कत है, फिर तो इस लॉजिक के हिसाब से तो आर्टिकल 370 में भी कुछ कोट अनकोट मुस्लिम नेताओं को दिक्कत थी, तो क्या आर्टिकल 370 को एब्रोगेट नहीं करेंगे क्या? सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर भी कोई तुष्टीकरण करने वालों को दिक्कत थी तो नहीं करेंगे क्या? हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को भी लोग जो हाफिज सईद जी कह रहे थे तो क्या उसके एलिमिनेट करने की बात नहीं करेंगे? ये कहां तक जाएगा ये तुष्टीकरण? और एक और इनको एक्सपोज करूंगा, इन्होंने कहा कि पहले चल रहा था, सुनिए बड़ी बात बोलूंगा, सरदार पटेल भी नेहरू से इतना ज्यादा प्रताड़ित थे कि ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को कहा था कि सुबह 6 बजे पूरा वंदे मातरम को गाओ क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे और उनकी व्यवस्था के कारण नहीं गा सकते। तो आकाशवाणी पे 15 अगस्त 1947 को सुबह 6 बजे पूरे 6 स्टैंडा सरदार पटेल के पर्सनल रिक्वेस्ट पे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने गाए। तो देश का मूल वही है और देश का कानून हमने पारित किया, और अगर इनको दिक्कत है तो कोर्ट चले जाओ और कोर्ट से बोल दे कि गलत है।
0: 2026 में ये करके क्या फायदा है?
8: तो इस लॉजिक के हिसाब से तो आप कहिए कि हमको 2014 के बाद आर्टिकल 370 भी नहीं एब्रोगेट करना चाहिए था। भाई इनके 70 सालों तक तो जम्मू कश्मीर के अंदर 2 झंडे चला रहे थे, इनके 70 सालों तक तो सीए कानून नहीं आया था, इनके 70 सालों तक तो इनने कुछ सही नहीं किया था, यूसीसी नहीं लाने की बात कर रहे थे, हम स्टेट्स में लेके आ रहे। जो हिस्टोरिकल रॉन्ग है, जो संविधान की मूल भावना है उसको इंप्लीमेंट करने का दायित्व हमारा ही नहीं, ये फ्रीडम फाइटर्स का है। तभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कोट किया, तो मैं कोट करूंगा 24 जनवरी 1950 को कि जन गण मन नेशनल एंथम है और वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है जो फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री को बताता है। सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के मुस्लिम लीग के दबाव के कारण ऐसा नहीं हुआ था, और वही लॉजिक के कारण इनने आर्टिकल 370 भी एब्रोगेट नहीं किया था क्योंकि इनको लगता था कोट अनकोट इससे मुस्लिम वोट।
0: ठीक है, फैज खान साहब और एम एच खान साहब को मैं डिबेट में लाना चाहती हूँ। फैज खान साहब, कई लोग हैं इस देश में जो एक सेना भेजी अभी जी, फिर नहीं तो कांग्रेस बीजेपी होता रहेगा, ये दोनों चेहरा देखने थोड़ी आए, थोड़ा थोड़ा रिएक्शन फिर आप दोनों के पास आऊंगे। आप ही से शुरू किया था आज मैंने। फैज खान साहब, बहुत लोग हैं देश में जो ये कहते हैं कि उनका धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता है कि वो किसी और को मां बोले, और वो भारत को मां मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में वंदे मातरम और उसके बाद से अब दुर्गा जी का जहां पर आता है कॉन्टेक्स्ट इस पूरे गीत में, वो स्टैंजास हटा दिए गए थे, अब उनकी नाराजगी है इस गाने को लेकर। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम तो जो पुराना आजादी के इतने साल तक चलता रहा वही करेंगे, तो क्या गलत है उनके स्टैंड में?
9: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यसिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन निसानी यफ़क़हु क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्रेयांस स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठुतात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। यहाँ पर इसका अर्थ हिंदू मुसलमान धर्म से नहीं एक कर्तव्य पालन से है। वंदे मातरम पूरा गाना हर एक भारतीय का कर्तव्य है, फर्ज है, और जब 1937 में हम इससे विमुख हुए तो इसके भयानक परिणाम आए। 1947 में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। आदरणीय अंजना जी, इस्लाम में कहीं पर भी अपने वतन को मां बोलना मना नहीं है। कुरान शरीफ में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया है, यानी सभी शहरों की मां कहा गया है। सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा गया है, यानी कि कुरान शरीफ की मां कहा गया है, और मां के कदमों में जन्नत कहा गया है, यानी जमीन को भी मां इस्लाम कहता है, साहित्य को भी मां इस्लाम कहता है, और जन्म देने वाली को भी मां इस्लाम कहता है। कुछ कट्टरपंथी नेता जैसे कि अभी प्रदीप भंडारी जी ने बताया, ये तो ये भी कहते हैं कि आपने हैप्पी दीपावली कह दिया तो भी मान चला जाएगा, तो क्या इनकी बात मानकर हम भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की तिलांजलि दे देंगे? कोई भी ऐसी सांप्रदायिक परंपरा जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत जाती है उसे हम नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए मैं भी मुसलमान हूं लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारतीय हूं, तो दुर्गोत्सव पे मैं छोटी बच्चियों के पैर छूता हूँ, इससे मेरा ईमान नहीं जाता है। मैं होली में रंग भी खेल लेता हूँ, मैं दीपावली के दिए भी जला लेता हूँ, तो इससे क्या दिक्कत है? और 1896 में रहमतुल्ला सयानी जी के नेतृत्व में ही पूरा वंदे मातरम गाया गया, और ये वंदे मातरम ओम वंदे मातरम पहली बार कहा गया सन्यासी विद्रोह में, और उसमें बहुत सारे फकीर भी शामिल थे जो कि मुस्लिम थे, जो ओम वंदे मातरम कहकर अंग्रेजों की फैक्ट्री पर धावा बोलते थे। केवल और केवल जिन्ना की तुष्टिकरण के लिए एक भाव ये था अंजना जी कि चलो शायद हम वंदे मातरम के चार पद काट दें तो मुस्लिम खुश हो जाएंगे, लेकिन नहीं खुश हुए ना। 1947 में फिर भी विभाजन हुआ ना। अफसोस की बात, कर्नाटक के अध्यक्ष देखिए क्या कह रहे हैं, हमें गोली मार दो, हमें फांसी चढ़ा दो, फिर भी वंदे मातरम नहीं कहेंगे, जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्या कहते थे, हमें गोली मारो चाहे फांसी चढ़ाओ फिर भी हम वंदे मातरम कहेंगे। और एक्सट्रीम होता है अंजना जी, देखिए मैं आपका अगर बहुत सम्मान करता हूं ना तो मैं आपको क्या कहता हूं अंजना जी, आप मेरी माता समान है, यानी मेरे लिए माता का सम्मान श्रेष्ठ है, तो मैं आपकी तुलना माँ से करूंगा। एक भारतीय के लिए दुर्गा माता श्रेष्ठ स्थान रखती है, लक्ष्मी माता श्रेष्ठ स्थान रखती है, सरस्वती माता श्रेष्ठ स्थान रखती है, तो कहा भारत माता ही लक्ष्मी माँ का स्वरूप है, हमारी जीडीपी है, भारत माँ सरस्वती माँ का स्वरूप है यानी हमारा ज्ञान है, हमारी यूनिवर्सिटी है, भारत माता ही दुर्गा माँ का स्वरूप है यानी हमारा डिफेंस सिस्टम है, कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, तो अब कहा ना तुम ही दुर्गा दश प्रण धारणी कमला कमल दल विहारणी वाणी विद्या दायनी नमामि त्वाम नमामि कमला ममला मतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। तो मुझे नहीं लगता किसी भी राष्ट्रभक्त मुसलमान को इससे आपत्ति होगी। हाँ, जो सांप्रदायिक कट्टरपंथी मौलाना है जिनके बारे में प्रदीप भंडारी जी कह रहे हैं, और मैं भी कहता हूँ इनका तुष्टिकरण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके तुष्टिकरण की कोई सीमा नहीं है, हम सर भी काट के रख देंगे ना। गांधी जी ने भी कहा था कि हिंदू माँ बहनों को क्या करना चाहिए, वो लिखा हुआ मैं कहना नहीं चाहता, हम सर भी काट के रख देते, कहेंगे यार फिनिशिंग से सर नहीं काटा, थोड़ा अच्छे से काट के देना था, तो ये तुष्टिकरण कभी भी समाप्त नहीं हो सकता।
10: एमएच खान साहब, अब मैं लौट रही हूँ, एमएच खान साहब आपका इस पर एक दूसरा पक्ष भी आना चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं इस देश में, लेकिन ये एक तरफा तो नहीं हो सकता है? अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और इस देश की विचार में भगवान राम को लेकर या मां दुर्गा को लेकर एक समावेश की स्थिति पैदा हो तो इसमें क्या दिक्कत है? ये वही गीत है जिसने देशभक्तों को लड़ने की शक्ति दी, क्या इस तौर पर नहीं देखा जा सकता इसको?
11: नहीं अंजना जी, देखिये देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो माननीय हमारे स्वर्गीय अशफाकुल्ला खां, तमाम हमारे उलमाओं ने वंदे मातरम के गीत गा करके ही देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। आरएसएस के लोग कहां थे तब? तब वो लोग माफी मांग के अपना काम चला रहे थे, कुर्बानियां तो दी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने दी कुर्बानियां, लेकिन आरएसएस के मानने वाले लोग ये काम नहीं कर रहे थे, ये माफी मांग के अपना तनख्वाह बढ़वा रहे थे, अपना तनख्वाह ले रहे थे। अब सवाल इस बात का है कि हमारा धर्म, ये जो बता रहे हैं ना फैज खान साहब, ये धर्म जो है ये गलत व्याख्यान कर रहे हैं। हमारा धर्म, हमारा कुरान कहता है कि दूसरे के धर्म के किसी भी
12: पैगंबर की, किसी भी अवतार की, किसी भी साधना करने वाले की बुराई मत करो, ये कहा गया है, साफ साफ कहा गया है। हम कब बुराई कर रहे हैं? कहां यही चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि बुराई मुसलमान कर रहा है? मुसलमान कोई बुराई नहीं कर रहा है। अगर मुसलमान कोई ऐसी बात करता है तो मुसलमान नहीं है। और उसकी बात आप उनकी बातें करते हो। आप 6 साल का, आप 12 साल का समय बीत गया, आपने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज आप डाइवर्जन करने के लिए कि ये लखनऊ में जो लड़कियां बैठी हैं, जो स्कूल में टीचर नहीं है और उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है, महंगाई पे कोई बात नहीं हो, इसको डाइवर्जन करने के लिए आपने ये इसका सगुफा छोड़ दिया। आपने कानून बना दिया है, 302 का कानून बना हुआ है, उस पर चर्चा कब कर रहे हैं? 307 का कानून बना हुआ है, उस पर चर्चा कब करेंगे? किस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? रेप का कानून बना हुआ है, रेप पे इतनी चर्चा कब हुई? ये सब जो डाइवर्जन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के
10: इसी से शुरू कर लेते
12: हैं। और आरएसएस के लोग ये सिर्फ महंगाई को छुपाने के लिए नौकरियों में आपने कहा था कि
10: बच्चों की स्थिति, खान साहब, बच्चों की स्थिति जैन अल्फा सड़क पर निकला हुआ है। और तो और राजस्थान सरकार ने भंडारी जी नियम करा दिया कि हम कोई वीडियो ना बना पाए, राजस्थान में नियम निकाल दिया।
8: अंजना जी
10: क्या है?
8: मैं आपके सवाल का जवाब दूं, पर इन्होंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फ्रीडम आंदोलन के अंदर अपने प्राणों की आहुति दे रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लेकर लाहौर सेशन के कंप्लीट इंडिपेंडेंस से लेकर, इसीलिए नेहरू जी को बाद में
10: बोलने उसका जवाब लूंगी।
12: मोदी जी को,
11: अरे मोदी जी को आगे भी मोदी जी 2026 में आएंगे, निश्चिंत रहिए। मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण करिए आजम खान के अतीत के मामले
12: में। अरे तो आप हम भी नहीं बोलने देंगे आपको, आपकी बात को हमने बड़े
10: गौर से थोड़ी होता है बोलने नहीं देंगे। क्या चल रहा है मतलब? हाँ, बारी बारी
11: खान साहब, मैंने आपको सुना,
10: सुनिए, हो गया।
11: इनने बोला संघ के लोग कहाँ थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लेके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से लेके देश की सेवा कर रहा था, देश के प्राणों की आहुति दे रहा था, आप जैसी बात नहीं कर रहा था। जाके थोड़ा इतिहास पढ़ो, इसीलिए जाकर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को तक संघ को बुलाना पड़ा था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में संघ की तारीफ करी थी। पढ़ो, अब छोड़ो। ये क्या कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को हमने कॉल करके बोला कि सोनिया गांधी जी जाके वंदे मातरम की इंसल्ट करो? क्या बात कर रहे हैं भाई, हमने थोड़ी बोला था सोनिया गांधी को इंसल्ट करने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे पे इतना गुस्सा होने के लिए, राहुल गांधी को कहने के लिए वंदे मातरम नहीं गाएंगे। केरला कांग्रेस ने ऑफिशियली कहा कि हम वंदे मातरम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये क्योंकि उसके मुस्लिम लीग वाली मानसिकता है। तो कांग्रेस पार्टी भटकाने का प्रयास कर रही है। देशभक्ति डायवर्जन नहीं होता, देशभक्ति इस देश की आत्मा है। पर मैं इनके आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड करता हूं। अगर अंजना जी हिंदू मुसलमान के लेंस से वंदे मातरम को देखा जाए तो फिर आर्मी गोरखा आर्मी की रेजिमेंट का वॉर क्राय है, जय महाकाली आयो गोरखाली, तो इनके हिसाब से क्या उसके अंदर भी महाकाली की बात हो रही तो वो भी हिंदू मुसलमान हो गया? सिख रेजिमेंट की बात है, जो बोले सोनिया सस्ती अकाल, क्या उसके अंदर भी हम जो है सिर्फ और सिर्फ धार्मिक एंगल दे देंगे? या राजपूत रेजिमेंट की बात हो गई, बोलो बजरंग बली की जय, तो क्या उसके अंदर भी सिर्फ हिंदू मुसलमान देखेंगे? तो आर्मी तक को कम्युनलाइज कर देंगे इस लॉजिक के हिसाब से। अगर ये कह रहे हैं कि वहां देवी की रूप से देखा गया वंदे मातरम, फ्रीडम स्ट्रगल से नहीं देखा गया, तो इनके हिसाब से तो फिर आर्मी के वॉर क्राय भी ये कम्युनल लेंस से कांग्रेस पार्टी कहेगी। क्या कांग्रेस पार्टी इस लॉजिक से कह रही है कि आर्मी के अंदर जो वॉर क्राय वो भी कम्युनल? और दूसरी बात, क्या जितने भी फ्रीडम फाइटर्स अंजना जी जिनने इसके आधार पर बंगाल के पार्टीशन की लड़ाई लड़ी, क्या वो हिंदू मुसलमान कर रहे थे? क्या रमतुल्ला सहानी हिंदू मुसलमान कर रहे थे? क्या बाल गंगाधर तिलक हिंदू मुसलमान कर रहे थे? क्या रविंद्रनाथ टैगोर हिंदू मुसलमान कर रहे थे? सिर्फ नेहरू जिन्ना के आगे झुक गए जिससे देश का पार्टीशन हो गया और वंदे मातरम को इन्हें ट्रंकेट किया, यही सच्चाई है। और इसीलिए इनको कहना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, और यही इनकी मानसिकता है, दिमागी नक्सल मानसिकता, जिसमें देश की संप्रभुता अखंडता का वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम बीजेपी का तो नहीं है, कांग्रेस का तो नहीं, देश का है। उसमें भाजपा के नारे लग रहे हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं?
10: ठीक है अभय जी, दो सवाल है। एक तो अगर नया कानून बन गया है उसका पालन कर लेते तो इनको ये इशू भी नहीं हाथ में लगता। भाई वहां पर जो कॉयर था, आप ही के ऑफिस में था ना, कांग्रेस पार्टी के ही दफ्तर में था ना, उनको भी इतना समझ में आ गया कि रोकने के बावजूद उन्होंने पूरा गीत गाया, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि आधा अधूरा गाना वो भी कानून में संशोधन के बाद गैर कानूनी है, गलत है, इसलिए उन्होंने पूरा गाया। पूरा सवाल सुन लीजिए, इसलिए उन्होंने पूरा गाया तो, और पूरा गाने से मतलब ये खत्म हो जाता है, इसमें कोई विवाद ही नहीं इनके इनको हाथ लगता। और क्या इतना, मतलब अगर चर्चा है माँ दुर्गा की तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? आपने कहा कांग्रेस दफ्तर की बात में कहाँ लागू होता है, लेकिन केरलम में तो 15 अगस्त के कार्यक्रम से हटा दिया गया ना, वो तो कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है ना, वो तो राज्य का कार्यक्रम है, सरकारी है। दोनों का जवाब।
7: अंजना जी, उस राजनीतिक दल से आप सवाल पूछ रही हैं जिसने ऑफिशियली कार्य समिति में प्रस्ताव पारित करके वंदे मातरम को अपने गान के रूप में शामिल किया। हमारा ध्वज गान होता है वंदे मातरम के बाद, उसके बाद राष्ट्रगान होता है। जिस राष्ट्रगान पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के लिए यह गाना लिखा था, यह मेरे राष्ट्र का गान नहीं हो सकता। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऑर्गेनाइजर लिखता है कि इस भारत के बाबा साहब के संविधान में मनुस्मृति का विधान नहीं है, हम इसको मानने को तैयार नहीं है। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा लिखते थे भारत के हमारे झंडे को, जिस ध्वज को पकड़कर हमने अपने प्राणों की आहुति दी। ये किसके साथ खड़े थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
11: देशहित के साथ खड़ा,
7: श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर, ये तो मुस्लिम लीग के साथ खड़े थे। चिट्ठी लिखते सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फजलुल हक को, फजलुल हक और श्यामा प्रसाद जी को चिट्ठी लिखते हैं।
10: क्या कहते हैं अभय जी,
7: बहुत अच्छे संगठन की सरकार चला रहे, और कब चिट्ठी?
10: आपने मेरा सवाल एकदम ही चेंज कर दिया सर, आपने मेरा सवाल ही पलट दिया, आपने मेरा सवाल ही पलट दिया। मैं थोड़ी ना कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल कर रही हूँ, मेरा सवाल उस पर है ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि इनको मुद्दा क्यों दिया, अधूरा ही गाएंगे वंदे मातरम, भाई सारे स्टैंजा नहीं गाएंगे, इस पर बवाल है ना। आपकी राष्ट्रभक्ति पर थोड़ी मैंने सवाल किया कि आप लोग राष्ट्रभक्त नहीं, मैं ये कह रही
7: हूँ,
10: मैं ये कह रही हूँ कि सारे स्टैंजा तो बंकिम जी ने ही लिखे थे ना, या बाद में किसी भाजपाई ने जोड़ दिया,
7: क्यों
10: उन्हीं का? सवाल तो पूरा होने दीजिए ना गुरु जी। पूरा स्टैंजा गाने में जब कानून बन गया है तो क्या दिक्कत है, या कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है कि हम दो स्टैंजा ही गाएंगे, तुमको जो कानून बनाना है बना लो?
7: नहीं, अधूरा कैसे हो गया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जिसकी स्वीकृति दी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने जिसकी स्वीकृति दी, वो अधूरा हो गया? जिस पर हमने प्राणों को आहूत कर दिए वो अधूरा हो गया? मुझे इन्होंने कहा कि वंदे मातरम की इंसल्ट, वंदे मातरम की इंसल्ट होती है जब बच्चों को पैलेट गन मार
11: सर, आप झूठ बोल रहे हो। आपकी सच्चाई यही है कि नेहरू ने जिन्ना के सामने घुटने टेक दिए, देश का विभाजन कर दिया और वंदे मातरम को ट्रंकेट कर
10: दिया।
11: आपका शो है, आप जो बोलेंगे वो हम कर लेंगे,
7: हम जाते हैं तो बोलने लगते हैं।
10: अभय जी
11: बोलिए, अभय जी बोलिए।
10: मैं फिर भी ये मानती हूँ कि अगर नए कानून में बंकिम जी के ही लिखे सारे स्टैंजा को गा दिया जाए तो ये नॉन इशू है। इसको आप लोग क्यों इतना इशू बना रहे हैं, इतनी नाक की बात क्या बना रहे हैं? मतलब ये बात तो समझानी पड़ेगी ना आपको कि अगर इसमें दो स्टैंजास में माँ दुर्गा का जिक्र आ रहा है तो वही नहीं गाएंगे, इस पर आप क्यों अड़े हैं?
7: नहीं नहीं नहीं, माँ दुर्गा के प्रति असीम आस्था है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रति भी मेरी और मेरे राजनीतिक दल की, मेरे देश की आस्था है। मैं फिर से कहता हूँ कि वंदे मातरम की इंसल्ट जब होती है आजादी के बाद, जब हमारे छात्रों को पैलेट गन मारकर मोदी सरकार अंधा कर देती, जब किसानों को हक मांगने पर इनके मंत्री का बच्चा जीप से रोंद कर मौत के घाट उतारने का आरोप लगता है, तब वंदे मातरम की इंसल्ट होती है। जब मेरी पहलवान ओलंपियन बेटियों को तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, जब वंदे मातरम की इंसल्ट होती है। जब किसानों के खिलाफ काले क्रूर कानून मोदी जी लाते हैं तब वंदे मातरम की इंसल्ट होती है। जब किसानों की भूमि छीनने के अध्यादेश लाते हैं तब वंदे मातरम की इंसल्ट होती है। जब चीन भारत की भूमि में घुसता है और मोदी जी क्लीन चिट देते हैं, जब वंदे मातरम की इंसल्ट होती है। हम वंदे मातरम का आदर पहले भी करते थे आजादी के वक्त जब मां को जरूरत थी भारत माँ की, और इन गद्दारों ने देश के साथ गद्दारी की है जब बरतानिया हुकूमत की गुलामी की जंजीरों में भारत माँ जकड़ी थी। इनके नेता प्रस्ताव दे रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने का प्रस्ताव, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कंठ में भारत वंदे मातरम का उद्घोष था तब ये कह रहे थे अंग्रेजों को कि लाठी चलाओ और इनको कुचल दो। ये कैसे वंदे मातरम के समर्थक हो सकते हैं? ना आजादी के पहले थे ना आजादी के बाद थे। हम बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक
10: उनका अच्छी बात है, लेकिन आपको भी देखिए, नहीं नहीं नहीं अभय जी, ऐसी नौबत आई ना कि आप लोगों को ये बोलना पड़ा कि कुर्सी बुलाई जा रही थी, कुर्सी मंगाई जा रही थी, ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको भी पता है कानून अपनी जगह पर है।
7: देखिए अंजना जी, वो बात सच है, उसमें मैं लेश मात्र भी झूठ नहीं है। सोनिया जी दो बार पहले आग्रह कर चुकी थी कि खड़गे साहब के लिए चेयर की व्यवस्था करो, राहुल गांधी जी खुद पानी लेकर आए, उनको पिलाया, क्योंकि बहुत देर तक बहुत कड़क धूप थी। मैं आदर
10: आपकी पार्टी, आपकी पार्टी इस बात पर क्यों अड़ी हुई है, वो तो इनकार कर रहे हैं।
8: अंजना जी, अब मैंने सुना, मेरी आज्ञा, मेरा निवेदन है आपसे कि मुझे उसका बस आधा समय आप दे दे। अभय भाई को सुन रहा था भाई, इन्हीं सोच, इनसे मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि यही सोच के हिसाब से ये कह रहे थे हाफिज सईद जैसा आतंकवादी जी। और यही सोच से अब देखिए ये जाके बोल रहे हैं,
7: जब भारत
8: अब ये देखिए जाके बोल रहे हैं, अब इनको भी तो कुछ कहिए।
10: दुबे जी,
7: अरे अजहर मस,
8: अब बोलिए ना इनको, अब बोलिए, अब आप
7: अजहर मसूद को छोड़ने वालों,
8: अब इनको बोलिए संयम रखें थोड़ा,
7: बिरयानी खिलाकर वो हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, सैफुल्लाह फारूकी आतंकवादी को टिकट देने
10: वाले। दुबे जी, दुबे जी, ठीक है,
7: तारिक अहमद मीर और तानी हुसैन, अंजना
8: जी यही सोच थी जिसके वजह से संविधान में इनने आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं किया, क्योंकि आर्टिकल 370 के तहत ये दो झंडे की बात करते थे और जम्मू कश्मीर ये लोग पाकिस्तान के झंडे का समर्थन करते थे, ये बात नहीं हो सकती, ये इनकी सच्चाई है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी का ऑडियो बाहर आया है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हम जो है नहीं गाएंगे पूरा वंदे मातरम, झूठ ना बोले कि कुर्सी उर्सी की बात थी। मुख्य बात यह है कि जब भी देशभक्ति की बात आती है, कांग्रेस पार्टी वोट बैंक को देशभक्ति के ऊपर चुकी है, इसीलिए आतंकवादी हाफिज सईद को जी कहेगी, इसीलिए 26/11 आतंकवादी हमले के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर घर के अंदर मारेगी, और इसीलिए जाके वंदे मातरम का विरोध करेगी। और 1971 में तो एक्ट आया था, तो 50 से 71 के बीच में क्या अभय जी बोल रहे हैं, जितने कांग्रेस के लोग नेशनल एंथम और वंदे मातरम गाए वो देशद्रोही है क्या? क्या बोल रहे हैं ये? क्या जितने फ्रीडम फाइटर्स जिनने पूरा वंदे मातरम गाया था वो जाके हिंदू मुसलमान कर रहे थे क्या? सिर्फ ऑन रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के सामने घुटने टेके थे, इस कारण जो है देश का विभाजन हुआ और वंदे मातरम ट्रिंकेट हुआ। मैं पूछ रहा हूँ क्या वंदे मातरम में दिक्कत है? वंदे मातरम देशभक्ति की बात है और जो उसमें हिंदू मुसलमान देखता है वो जिन्ना वाली सोच रखता है, यही सच्चाई है। इसी के कारण पाकिस्तान बना था कि धर्म पहले देश बाद में।
10: दुबे जी, अब आपके अपनी बारी में क्या बोलेगा, क्योंकि आप तो इनके बीच में ही पूरा बोल लिए, यही प्रॉब्लम है। आप लोगों को मैं कहती हूँ, मैं किसी को सबको बराबर टाइम देती हूँ, इनफैक्ट आपको आज ज्यादा टाइम मिल रहा है, लेकिन आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है सर, ये चिल्ला चिल्ली वाला फिर से तरीका अगर शुरू हो गया ना, फिर सड़कों पर निकलिएगा, लोग बोलेंगे कि देखो ये सब टीवी पर चिल्लाने वाले लोग।
7: एक सेकंड, आप शो देखिए, मैंने कभी पहले इनक्रोच नहीं किया।
10: फैज खान साहब क्या गलत कह रहे हो?
13: जी जी जी,
7: आर्टिकल 370 पर मुझे एक सेकंड बोल लेने दीजिए, सिर्फ आर्टिकल 370 पर। अंजना जी
10: बोल,
7: एक क्षण सिर्फ
10: बोल लीजिए।
7: अंजना जी
10: बोलिए ना।
7: हाँ देखिए, आर्टिकल 370 जब आया, जब 5 मार्च 1948 को राजा हरि सिंह ने कहा कि दो निशान दो विधान रहेंगे,
8: गलत बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, देखिए गलत जा रहे हैं, इसी के अंदर मुझे बीच में आना पड़ेगा, शेख अब्दुल्ला को डिफेंड कर रहे हैं, ये शेख अब्दुल्ला को डिफेंड कर रहे हैं, महाराज हरि सिंह ने कुछ नहीं बोला, ये डिफेंड
7: ऐसा नहीं करिए,
8: हाथ उठाइए, हाथ उठाइए,
7: अंजना जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हस्ताक्षर से संविधान आया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सहमति से आर्टिकल 370 आया, 15-16 मई 1949 को सरदार पटेल के घर आर्टिकल 370 निगोशिएट हुआ, जब ये 36A था उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के मंत्री थे, एक दिन भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध नहीं किया, और पंडित नेहरू डेस्परेटली चाहते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता वीर सावरकर कई रियासतों के पृथकीकरण में लगे हुए थे, रियासत को सावरकर चिट्ठी लिख रहे थे कि तुम भारत से अलग हो जाओ।
8: 10 सेकंड,
10: आपने थोड़ा सा बोला था,
8: 5 सेकंड,
10: जल्दी से जाइए।
8: श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था जिससे कि आर्टिकल 370 हटे और जवाहरलाल नेहरू की कॉन्स्पिरेसी वाली सरकार ने दो विधान रखे थे इस देश के अंदर, जिससे कि मुस्लिम तुष्टिकरण जिन्ना के पक्ष में करने वाले थे, यही सच्चाई है और कोई नहीं। तभी जाके हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, अगर इनकी नियत होती तो कांग्रेस आर्टिकल 370 एब्रोगेट करती, जिसके कारण जम्मू कश्मीर नहीं हो रही है, वहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है, वहाँ बच्चों को रोजगार मिल रहा है, क्या बात करेंगे? ये मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे ना, क्योंकि इनको पता है कि देशभक्ति के मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते, ये वंदे मातरम में बीजेपी क्या बताएगी?
7: अरे रामराज्य का चंदा चोरी करने वालों,
9: मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय अंजना जी, आपने बहुत सही बात कही कि भाई यदि वंदे मातरम पूरा कांग्रेस गा ले, इसे स्वीकार कर ले तो ये विषय ही ना बने। बिल्कुल अभी कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक सूझबूझ की कमी है, जो विषय नहीं है वो विषय बनाकर बीजेपी को वो दे दे रहे हैं। और मैं प्रदीप भैया एक बात कहने
10: जा रहा हूं, भोले मत बनिए फैज खान साहब, ऐसे होते हैं फैज खान साहब जी, इतने भी भोले मत बनिए।
7: आरएसएस
10: आपको पता है कि वो हिस्सा जो छोड़ रहे हैं उसके पीछे उनकी क्या वजह है, और ये हिस्सा जो ये जोड़ रहे हैं उसके पीछे इनकी क्या वजह है, सबको समझ में आता है कि नहीं?
8: उनका फ्रेम फ्रीज कर गए।
10: आप भी तो कुछ सोच के ही जोड़ रहे हैं।
8: मैं कोई सोच के नहीं जोड़ रहा, मैं आपसे सीधी बात पूछ रहा
7: हूं अंजना जी,
8: क्या जो देश के कानून को पालन करने का दायित्व हर देशवासी का नहीं है? ये पार्लियामेंट ने पास किया है कानून, अगर कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के कानून को नहीं मान रही तो कल को कांग्रेस बोलेगी कि पार्लियामेंट से दूसरा कानून वो नहीं पास कर देगा। कौन देश का व्यक्ति को वंदे मातरम?
10: पटना में बच्चे बैठ गए हैं, छात्र प्रदीप भंडारी जी, पटना में छात्र बैठ गए हैं, जेन जी जेन अल्फा सड़कों पर है,
8: उनका अधिकार,
10: ये मुद्दे हैं, उन्होंने लड़के बताया है।
8: और बिहार की सरकार उनकी बात भी सुन रही है, झारखंड जैसे नहीं कि 35 दिन के बाद में बात करें और अभी भी।
10: चलिए ठीक है, देखते हैं कितना जल्दी आप पटना में हल निकालते हैं। वैसे ही छात्र जेन अल्फा जो है लखनऊ से लेकर राजस्थान हर जगह निकल रहा है, लेकिन आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में जरूर रहिएगा हमारे साथ, आपको बताएंगे यूपीए के बौद्धिक नक्सल जो उस वक्त कहा जाता था, कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, और मोदी के दिमागी नक्सल में क्या अंतर है। इसके बाद आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत की चुनाव प्रक्रिया के मुरीद क्यों हो गए हैं, और आखिर में आपको योगी के बुलडोजर पर अतीक के गुंडों का हमला दिखाएंगे।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो
15: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स, और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
16: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
17: बिजली का बिल पेड
18: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
19: कैसे?
18: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
19: इतना माही वे।
20: आगे आगे।
19: अरे उधर
20: उधर।
19: करेक्ट करेक्ट।
21: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: नीमाया लेट्स गो।

0: The new BE6 Sportec.
1: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
2: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: 爸，
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ, ओले ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with
3: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरीवेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
4: पैसे ज्यादा कभी थे नहीं, लेकिन फिर भी पैसे की भूख उतनी थी नहीं। न्यूज़पेपर डिलीवरी करता था, फिर कुछ दुकानों में सफाई करता था, फिर दुकान में सेल्समैन बना। कॉलेज के सालों में एक बेटिंग शॉप में कैशियर था।
5: पर क्या इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट टेस्ट मैच, बहुत लंबी सोच चाहिए, बहुत ही लंबी अवधि में ही पैसा बनता है।
4: मुझे दुनिया में हर चीज चैलेंज करने में बहुत मजा आता है, राइट?
5: कॉफी कैन इन्वेस्टिंग,
4: हाँ जी।
5: इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे आपकी क्या मंशा थी?
4: इंडिया छोटा सा मार्केट है, दुनिया का 3%, सो मुझे लगा यार विदेश में निवेश तो सोचना चाहिए। AI का प्रहार शुरू हो चुका है।
5: तो क्या मिडिल क्लास गरीबी की ओर जा रहा है, भारतीय मिडिल क्लास?
4: इस प्रकार का टेक्नोलॉजी घातक है दुनिया भर के मिडिल क्लास के लिए।
6: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
7: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
8: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
7: नहीं सर।
8: 12th किससे की हो?
7: 12th सर मेरा PCM से रहा।
8: कंपाउंड क्या होता
7: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
8: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है, यही। एक मिनट,
7: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को। इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
8: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: लखनऊ सर्वोदय विद्यालय के छात्र यूं ही सड़कों पर नहीं उतरे। अधिकारियों से शिकायत, स्कूल प्रबंधन के सामने अर्जी और तो और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के सामने भी छात्र अपनी बात कह चुके हैं। लेकिन हासिल क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहन रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल के छात्र संभव है कि देश में जंतर मंत्र से शुरू हुए प्रदर्शन करके अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े हैं। लेकिन असली वजह जंतर मंत्र नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी है। 14 अगस्त को लखनऊ में सर्वोदय विद्यालय के छात्र सड़क पर उतरे थे। मुद्दा वही था, स्कूल में शिक्षक नहीं, शुद्ध भोजन नहीं और बीमार पड़ जाओ तो मेडिकल सुविधा नहीं। 14 अगस्त को जब आंदोलन हुआ तो समाज कल्याण मंत्री खुद मौके पर पहुंच गए। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया।
1: यहाँ बच्चों ने बताई है, वो ज्यादातर हमारी जानकारी पहले से है। सभी विद्यालयों में बहुत व्यापक सुधार हुए, लेकिन और सुधार करने की गुंजाइश है, उसको हम लोग पूरा।
0: मंत्री की बात सुनकर छात्रों ने तुरंत रास्ता खोल दिया और असीम अरुण के साथ स्कूल में वापस लौट गए। स्कूल में जाकर समाज कल्याण मंत्री ने सबसे पहले स्कूल के स्टाफ की क्लास लगाई। इसके बाद मंत्री जी ने छात्रों की बात सुनी, आश्वासन दिया और चले गए। लेकिन क्या इससे स्कूल की समस्याओं का समाधान हो गया? 4 दिन में शिक्षक भर्ती तो नहीं हो सकती, लेकिन मेडिकल और मेस की सुविधाएं तो जरूर सुधारी जा सकती हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। आपको हम कन्नौज लेकर चलते हैं। कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जेन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा। इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह को ढंक लिया। ये इनका अधिकार है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका अपनाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए, फिर समाधान।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: हल्ला बोल में आप वंदे मातरम को लेकर जो विवाद है उसी पर बहस देख रहे थे, हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं। अब देखिए 7 तक नेहा के साथ।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स टंकी मतलब प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: साथ बजने वाले हैं आज तक इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिनभर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। बीजेपी की नवीन टीम की अगली चुनाव पर नजर। विनोद तावड़े को बनाया गया उत्तर प्रदेश का प्रभारी, सतीश पुनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। वंदे मातरम विवाद की दूसरी किश्त, कांग्रेस के गोवा कार्यक्रम को लेकर आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी बोली उनकी सोच ही ऐसी है, खड़गे ने किया पलटवार। छात्रों की पिटाई को लेकर राहुल का फिर केंद्र परिवार, कहा सत्य और हिंसा मोदी सरकार का मूल मंत्र, पैलेट गन को लेकर फिर उठाए सवाल। पटना में छात्रों के धरने पर बैठते ही जाग गई सम्राट सरकार, चार घंटे के भीतर जारी हुई अधिसूचना, 32,000 से ज्यादा शिक्षकों की होगी भर्ती प्रक्रिया को लेकर आंदोलन अब भी जारी। झारखंड आंदोलन की सफलता का साइड इफेक्ट, टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद्द होने से 2,250 की गई नौकरी, प्रभावित लोगों का विरोध प्रदर्शन, कोर्ट जाने की तैयारी। सीएम योगी यूपी में सख्त कानून व्यवस्था का हवाला अक्सर मंचों से देते हैं, लेकिन लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके में पुलिस टीम पर हमले का शिकार हो गई, नगर निगम के साथ अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर महिला और पुरुषों की भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया।
1: किसी ने गला दबाकर हत्या की कोशिश की, किसी ने लोहे की जंजीर से हमला बोला, खून खून हो गए पुलिस वाले। ये तस्वीरें लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके की हैं। इस इलाके में 148 भैंसों के साथ अवैध डेयरी चलाई जा रही थी। टीम जब यहां पहुंची तो भीड़ ने लाठी डंडे रॉड जंजीरों पत्थरों से पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, सरकारी गाड़ियां तोड़ डाली, एक सब इंस्पेक्टर की गला दबाकर हत्या की कोशिश हुई। अधिक संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंचती तब तक आरोपी फरार हो गए। दो हमलावर महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
2: कल इन्होंने जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस के जवानों पे और पुलिस के एक इंस्पेक्टर पे कार्रवाई की है, मारा है, गला दबाया है, इनका देखिए आप।
3: मौके पर आज पुलिस पहुंची है, लगातार डेयरियों पर कार्रवाई हो रही है। अगर आप देखिए तो भैंसों को धर पकड़ करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर इस नगर निगम के द्वारा जो गाड़ी है उसके पे सभी भैंसों को ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई अवैध डेयरियों के खिलाफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में
1: कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। अवैध डेयरी में रखी गई भैंसों को नगर निगम ने जब्त कर लिया है। पुलिस कर्मियों की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ है। FIR में जिक्र है कि अवैध पशुओं को हटाने के दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला हुआ। हमले की गिरफ्तार आरोपी दो महिलाएं खुशबून और आफरीन हैं। 10 से 12 आरोपी नामजद किए गए हैं। आरोपियों का अतीक अहमद के साथ कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अब पुलिस आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी कर रही है। अब इस पूरे मामले में जबरदस्त राजनीति हो रही है।
4: योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, पुलिस पर हमला किया है, बलवा करने का प्रयास किया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं।
5: भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक अजीब सा माहौल है, न पुलिस सुरक्षित है, न लोग सुरक्षित है, न पुलिस से लोग सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठते जा रहे हैं।
1: फिलहाल हालात को नियंत्रण में रखने के लिए 5 थाने की फोर्स मौके पर मौजूद है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: वहीं अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए यूपी सरकार की गठित SIT ने सोमवार रात फाइनल रिपोर्ट सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक इसमें ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, बाकी 8 आरोपी पहले ही जेल में।
6: राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को भी क्लीन चिट। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच करने वाली एसआईटी की रिपोर्ट तो यही कहती है। रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, सिर्फ चोरी करने वाले 8 लोगों को ही पूरे मामले का आरोपी बनाया गया है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू को आरोपी माना गया है। यूपी के गृह विभाग ने रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंपी है। इसे राम मंदिर ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। यूपी सरकार ने 13 जून को लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एसआईटी बनाई थी। आईजी रेंज किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार इसके सदस्य थे। एसआईटी ने 23 जून को प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की कमान आईपीएस को सौंपने और फाइनेंस एक्सपर्ट को शामिल करने के निर्देश दिए थे। 20 जुलाई को नई एसआईटी बनी, जिसमें लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस, डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा और अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर को शामिल किया गया। ये एसआईटी अब भी चढ़ावा चोरी की जांच कर रही है।
0: अलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 2027 के समर के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी की रस्साकशी की, दोनों दलों अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बीजेपी की ओर से जहां जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बूथ मैनेजमेंट का काम तेज कर दिया गया है।
1: सत्ताईस के समर के लिए यूपी में राजनीतिक दलों में रस्साकसी तेज हो गई है। बीजेपी ने 3 राज्यों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें बिहार के चुनाव प्रभारी रह चुके विनोद तावड़े को यूपी का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। साथ ही जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ओबीसी मोर्चे की कमान अमरपाल मौर्य को सौंपी गई है। ओबीसी के कुर्मी समुदाय से आने वाली रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। दलित वोटों के लिए पश्चिम यूपी के भोला सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, तो प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कुंवर बासित अली राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है।
7: और मोदी जी ने जो योजनाओं का लाभ लगभग 30% के आसपास अल्पसंख्यक समाज को दिया है, उसको लोगों तक पहुँचाना और उनको विश्वास दिलाना कि देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी है और मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है।
1: समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पर 5 एक्स्ट्रा परिवार जोड़ने के फॉर्मूले का टारगेट फिक्स किया है।
8: चुनाव के 6 महीने से भी कम समय बचा है, तो समाजवादी पार्टी बूथ पर, सेक्टरों पर, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर सभी नौजवान काम कर रहे हैं, बूथ कमेटियां ठीक की जा रही हैं।
1: दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर बीतते दिन के साथ ये तैयारी और तेज हो रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और वहीं बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के बयान पर बवाल मच गया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने दशरथ मांझी की श्रद्धांजलि समारोह में उनकी तरह जीतन राम मांझी बोल दिया, उसके बाद बवाल मचा हुआ है।
9: श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित
1: मौका था पर्वत पुत्र दशरथ मांझी की पुण्यतिथि का। श्रद्धांजलि देने बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पहुंचे थे, मगर चमड़े की जुबान थी, लपट गई। दशरथ की जगह जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि दे दी।
9: जीतन राम मांझी जी के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित
1: लोगों ने कहा जीतन नहीं दशरथ, तो तेजस्वी ट्रैक पर आए, 1.25 मिनट तक दशरथ मांझी को याद करते रहे और एक बार फिर चमड़े की जुबान थी, फिर लपट गई।
9: काम किसी ने नहीं कर पाया आज तक, वो काम जो है जीतन राम।
1: लेकिन इस बार तेजस्वी ने बात संभाल ली, पूरा नाम बोलने से पहले रुक गए। लेकिन जीतन राम मांझी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने एक्स पर लिखा, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, लगता है बाबू साहब का रात वाला उतरा नहीं था, इसीलिए मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले वक्त में ये जनाब जीते जी अपने पिता लालू जी एवं राबड़ी जी को भी श्रद्धांजलि दे देंगे। नशा कुछ भी करा सकता है,
10: गलती हुई भी तो उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। जब रिपीट किए तब हमारे दिमाग में बात आई कि नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है।
1: बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी भी तेजस्वी को घेरने लगे।
11: तेजस्वी यादव खोए खोए से रह रहे हैं। तेजस्वी यादव किसी और दूसरी दुनिया में लगता है कि विचरण कर रहे हैं, वो होशो हवास में नहीं है। और हैंगओवर का नतीजा है क्या है, लेकिन जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का रवैया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
12: बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव न जाने किस नशे में रहते हैं, किस तरह से उन्होंने दशरथ मांझी की जगह दो दो बार जीतन राम मांझी, जो कि हमारे बीच में सक्रिय राजनीतिक भूमिका में है, एनडीए के वरिष्ठ नेता है, उनको श्रद्धांजलि दे दी। जो आदमी राजनीति को लेकर इतना भी गंभीर नहीं हो और वह बात करता है कि पूरे बिहार के 14 करोड़ लोग की जिम्मेदारी लगे।
1: तेजस्वी नशे में थे या नहीं ये तो वही जाने, मगर जीतन राम मांझी को उनकी बात जरूर दिल पर लग गई। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात युवाओं के आंदोलन की। पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता यह आंदोलन कि आखिर जिन युवाओं के हाथ में काम होना चाहिए उनके सड़क पर उतरने की वजह क्या है। झारखंड से लेकर पटना तक प्रदर्शन की नई तस्वीरें सामने आ रही।
1: न सत्ता की लाचारी न सियासत की होशियारी, युवाओं की आवाज उठी तो दिल्ली को तवज्जो देनी पड़ी। रांची भी मजबूर हुई तो पटना के नौजवानों का हौसला बढ़ा, उम्मीदें बढ़ी। चौथे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE4 को लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्रों की मांग है कि परीक्षा के लिए जल्द से जल्द विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी किया जाए। छात्र एकल परीक्षा की मांग कर रहे हैं, यानी PT और मेंस अलग अलग कराने का विरोध कर रहे हैं।
13: TRE4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ 24 घंटा के अंदर जारी हो, नहीं तो हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे। और झूठ नहीं चलेगा, अगर आपको दो परीक्षा करानी है TRE5 से कराइए, हम लोग स्वागत करते हैं। TRE4 में सिर्फ एक परीक्षा हो चुकी, 2 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं।
1: उधर झारखंड में छात्र और सोरेन सरकार के बीच सहमति बनी तो जश्न की जबरदस्त तस्वीरें सामने आई।
14: का नया त्योहार आज है और असत्य पे सत्य की जीत है।
15: छात्रों ने दिखा दिया कि देखिए एकजुट होके एकता में ही बल है।
14: आज सच्चाई का जीत हुआ है। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
16: जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
1: झारखंड प्रदर्शन पर घेरे जा रहे राहुल का भी बयान सामने आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा और अपनी बात मनवाई, यही सही तरीका है। छात्र सवाल पूछे तो जवाब मिलना चाहिए। हालांकि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। छात्रों का कहना है कि CBI समेत कुछ मुद्दों पर अभी सरकार ने कुछ चीजें स्पष्ट नहीं की हैं। वहीं परीक्षा रद्द के ऐलान के बाद नियुक्त किए गए कर्मियों की नौकरी चली गई, जो कि अब प्रदर्शन कर रहे हैं।
17: जो नियुक्त किए गए थे 2250 लोग, वो एक झटके में उनकी नौकरी चली गई है। और मंत्रालय के बाहर लगातार बारिश हो रही है, जोरदार बारिश हो रही है, उसके बीच में ये डटे हुए हैं।
18: हम लोग रेलवे में TT के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ और यहाँ एक क्षण में हम लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया गया।
19: तो उधर भी नौकरी गया।
18: अब उधर क्या प्रोसेस होगा सर, टेक्निकल लेके आया है तो बहुत, इसमें 500 से 700 कैंडिडेट्स हैं जो पहले जॉब में थे सर।
20: पूर्ण रूप से निराश है और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए। और अभी वो समझिए कि बच्चा और अभी आगे का और स्थिति कितना होगा कि किस स्टेज पे।
1: अब इन लोगों के सामने परिवार चलाने का संकट है, जिसे लेकर अब ये प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और सवाल उस एक्शन पर भी है जो छात्रों के प्रदर्शन के दौरान लिया गया। बिहार में 47 के इस्तेमाल पर सरकार की ओर से कोर्ट में सफाई दी गई, तो वहीं जंतर मंतर में हुए एक्शन पर दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल कर दिया है।
1: जंजी आंदोलन के दौरान सिवान में प्रदर्शनकारियों पर AK-47 के इस्तेमाल की इन तस्वीरों पर अब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सफाई दी है। सरकार ने कहा है कि उग्र हुई भीड़ में फंस जाने के बाद एक कांस्टेबल ने हवा में 4 गोलियां चलाई थी। AK-47 से चली गोलियों में से किसी प्रदर्शनकारी को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी। AK-47 को प्लाटून स्तर का हथियार बताते हुए कहा गया है कि इसका इस्तेमाल विशेष अभियानों के लिए होता है। राज्य के DGP ने AK-47 के इस्तेमाल को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। हालांकि जिस कांस्टेबल ने फायरिंग की थी उसे निलंबित कर दिया गया है। उधर तेजस्वी यादव छात्रों के ऊपर की गई कार्रवाई और सिवान में AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर कल राजभवन मार्च करने वाले हैं, जो लगातार सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं।
19: स्पष्ट है कि बिना उनके अनुमति के, बिना उनके अनुमति के ये गोलियां नहीं चलाई गई होंगी।
1: उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक्शन पर दिल्ली पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। पुलिस ने कहा है कि 20 जुलाई को संसद मार्च गैरकानूनी था, इसकी परमिशन नहीं थी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कई हिस्ट्री शीटर भी आ गए थे। पुलिस ने बताया कि संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस से मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने CJP के छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, पूर्व DGP, पूर्व CBI प्रमुख समेत अन्य सदस्य होंगे। आज तक ब्यूरो।
21: उधर BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवाओं के लिए सरकार के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत का युवा नौकरी लेने के लिए नहीं, नौकरी देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही पीढ़ी भारत का भविष्य है।
22: भारत का युवा वो युवा है जो आज स्टार्टअप के माध्यम से केवल जॉब लेने के लिए नहीं, जॉब देने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि चाहे वो स्टार्टअप हो, यूनिकॉर्न हो, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने की बात हो, कहीं ना कहीं युवा आज भारत के भविष्य के निर्माण के लिए अपने आप को आगे लेके चल रहा है। और यही युवा भारत का निर्माण करेगा। जो लोग युवाओं को अलग तरह से परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि कश्मीर में जब युवा पत्थर फेंकता था उसको युवा नहीं, जो रणजी विजेता होता है वो युवा कहलाता है। आज खेलो इंडिया के माध्यम से देश का युवा भारत के लिए पदक जीत के ला रहा है। हमें वो भारत के युवाओं की पहचान बनानी है। हमें अपने युवाओं को रिसर्च के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर्स के लिए नए नए आयाम के साथ जोड़ना है। इसलिए हम युवाओं के बीच में चर्चा और संवाद के साथ जाएंगे।
21: और अब बात शेयर बाजार की। कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज लगातार छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स 492 अंक टूटकर 77,235 पर और निफ्टी 132 अंक की गिरावट के साथ 24,155 के स्तर पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिका ईरान के बीच बातचीत से जुड़ी अनिश्चितता के चलते निवेशकों में सतर्कता बनी रही। वहीं साप्ताहिक F&O एक्सपायरी के चलते बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड करीब $91 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंचने से बाजार पर दबाव और बढ़ गया। शेयर बाजार में गिरावट के बीच रुपए में भी कमजोरी देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे कमजोर होकर 95.68 के स्तर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से रुपए पर दबाव रहा। हालांकि रुपए में बड़ी गिरावट को रोकने के लिए RBI के दखल से इसकी कमजोरी सीमित रही। वहीं सराफा बाजार में आज मामूली गिरावट का दौर रहा। सोना 5 रुपए सस्ता होकर 154,162 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर गया, जबकि चांदी 1,920 रुपए टूटकर 233,722 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से ग्लोबल कमोडिटी बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। और अब बात दुनिया की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ की तो वहीं अमेरिका को इसे सीखने की नसीहत भी दे दी।
1: दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के जिस मौजूदा चुनावी व्यवस्था पर विपक्ष सवाल खड़े करता है, उस चुनाव के अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मुरीद हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वोटिंग के नियम कड़े करने और सेव अमेरिका एक्ट लागू करने की मांग करते हुए भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ की है। इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं? भारत के पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ वोटर थे, 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट दिया और हर वोटर के पास एक वैलिड फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था। हमें अभी द सेव अमेरिका एक्ट पास करने की जरूरत है।
23: Look, the president was very clear. And what India does, having a voter ID law, is something that we should pass in the United States. You had over 660 million people vote, by the way, less than 1% by mail. So I think it's vitally important. Voter ID is important. This is not a partisan issue. And so the president is absolutely right that the United States should have a voter ID requirement when people show up to vote.
1: चुनाव के दौरान चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विपक्ष लगातार घेरता है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति उनका नाम लेकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत, दुनिया की सबसे अमीर डेमोक्रेसी अमेरिका को प्रेरित कर रही है कि डेमोक्रेसी में सिर्फ कानूनी नागरिक ही वोट दे। डेमोक्रेसी तभी काम करती है जब उसे सिर्फ उसके नागरिक ही चलाते हैं।
2: हम तो कह रहे हैं ले जाओ, कल ले जाते हो आज ले जाओ, पिछली अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे, वहां एसआईआर भी कराओ, टू सर विथ लव, एसआईआर कराओ, फिर डोनाल्ड ट्रंप लाइन में लगे रहेंगे अपने कागज लेके, मेरे पिताजी यहां के थे, मेरे माताजी वहां की थी, पिछला वोट वहां दिया था, ले जाएं, हम तो चाहते हैं ले जाएं।
1: बहरहाल ट्रंप के बयान ने देश की सियासत में एक बार फिर चुनाव आयोग को लेकर घमासान तेज कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
21: बात क्रिकेट की, गोल्ड टेस्ट में टीम इंडिया श्रीलंका पर जीत से 6 विकेट दूर है। कल मैच का आखिरी दिन है, हालांकि बारिश टीम इंडिया की जीत में खलल डाल सकती है।
3: गोल में जीत से 6 विकेट दूर भारत, श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया भारत ने।
21: वक्त एक ब्रेक का हौसला, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
24: आगे आगे, उधर उधर, करेक्ट करेक्ट,
25: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
26: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: में स्वस्थ्य रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।

0: बिजली का बिल, पेंट।
1: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
2: इतना माही वे।
3: पापा।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया
4: है।
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
12: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
11: Vimal, bolo zubaan kesri.
13: Jitni gaadiyan hain, ye pura Rela Vidhan Sabha ja raha chhatron ka.
14: Jab tak wo CBI jaanch nahi karayenge, tab tak hum log is pe date rahenge.
13: Chhatron ko piche hatane ki koshish ki ja rahi hai. Water cannon khatam ho gaye, fire tender khatam ho gaye.
15: Protester hain. देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
16: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
17: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
18: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
13: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
19: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
3: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
19: नहीं सर।
3: 12th किससे की हो?
19: 12th सर मेरा PCM से रहा।
3: कंपाउंड क्या होता है?
19: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
3: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
19: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
3: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: सोनिया जी ने जिस प्रकार से व्यवहार किया और जो वीडियो के फुटेज आ रहे हैं वो ये वंदे मातरम के प्रति असम्मान को दर्शाता है, इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है उस मानसिकता में राष्ट्रवाद बहुत एक तरीके से जो राष्ट्रवाद के प्रतीक है उसके प्रति उनको लेकर एक विशेष प्रकार का एक द्वेष भाव है, ये नहीं होना चाहिए। और देश के कानून का, देश के राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रगान का सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने
1: खड़गे जी के मंच को गंगा जल से उत्तराखंड के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धोया है, गंगा जल से। दलित बर्दाश्त नहीं हो रहा इनको, देश का आदिवासी बर्दाश्त नहीं होता, मुसलमान तो खैर नफरत ही है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा इनको।
2: तो लगातार क्या लेवल
1: बना राहुल गांधी जी के कई वीडियो आपको दिखा दूंगा जिसमें खड़गे जी के लिए कुर्सी खींच रहे हैं या उठा रहे हैं, और मोदी जी का वीडियो भी दिखा दूंगा, नितिन नवीन का हाथ पीछे करके खींच दिया। आ गई समझ में? हमें ना सम्मान दिखाएं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अगले चुनावों पर नजर। विनोद तावड़े को बनाया गया उत्तर प्रदेश का प्रभारी। सतीश पुनिया को पंजाब। तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। वंदे मातरम विवाद की दूसरी किश्त। कांग्रेस के गोवा कार्यक्रम को लेकर आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी बोली उनकी सोच ही ऐसी है। खड़गे ने किया पलटवार। छात्रों की पिटाई को लेकर राहुल का फिर केंद्र पर वार। का सत्य और हिंसा मोदी सरकार का मूल मंत्र है। पेलेट गन को लेकर फिर उठाए सवाल। पटना में छात्रों के धरने पर बैठते जाग गई सम्राट सरकार। 32,000 से ज्यादा शिक्षकों की होगी भर्ती प्रक्रिया को लेकर आंदोलन अब भी जारी। कल तेजस्वी का राजभवन कूच। झारखंड आंदोलन की सफलता का साइड इफेक्ट। ईडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद्द होने से 2,250 की गई नौकरी। प्रभावित लोगों का विरोध प्रदर्शन। कोर्ट जाने की तैयारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का। हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून का कहर जारी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश और टेहरी में जहां भारी बारिश के बाद नदी में उफान आ जाने के चलते लोगों की जान पर बनाई, वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने के बाद नदी नालों में सैलाब की तरह पानी बह रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में लैंडस्लाइड के चलते सैलानियों की जान पर बनाई है। इसके अलावा यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उड़ीसा में भारी बारिश के चलते सड़क पर पानी आ गया है, कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। लेकिन शुरुआत करेंगे यूपी से, जहां पानी प्रलय बनकर बरस रहा है।
1: पहाड़ों के साथ साथ मैदानों में मानसूनी आफत, भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश में बेहाल यूपी के कई इलाके। सबसे पहले मध्य प्रदेश के पन्ना की तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। ऐसी जलधारा में ये तीन लोग फंस गए। ये महिला तो एक पल के लिए लगा कि बह जाएगी, लेकिन शुक्र है कि इन तीनों लोगों को इस जलधारा से बचा लिया।

0: अगस्त के महीने में मानसून ने एक बार फिर यूपी के कई जिलों को कवर कर लिया है। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। प्रयागराज में देर रात से हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। रिहायशी इलाकों के साथ साथ पुलिस स्टेशन में भी बारिश का पानी घुस गया है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में भी पानी भर गया और पुलिस कर्मी जूते उतार कर टहलते नजर आए।
1: अब देखिए, थाने के कर्मचारी अधिकतर बाहर खड़े हैं और उनका पांव भी डूब गया। जो जिसपे काम करते हैं, उस काम करने वाली सीटों भी डूब गई है और अधिकतर आप देखेंगे थाने में पानी भर गया है। इसी तरह माल खाना कहा जाता है, माल खाने के अंदर पानी, ये थानेदार साहब का रूम है, उनके रूम तक में पानी घुस गया है।
0: पुलिस थाना ही नहीं, प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास के अंडरपास में भी पानी भर जाने से उसे बंद कर दिया गया। वहीं प्रयागराज के कई इलाकों की कॉलोनियों और गलियों में पानी भर गया है। कारें और बाइकें डूब गई हैं, लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है और लोग पहली मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। प्रयागराज की ही ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये गंगा पथ है जो पूरी तरह से डूब चुका है। इसी पानी में लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं।
2: ये हर साल की समस्या है, जब भी बाढ़ आता है तो ऐसा होता है, इसलिए इसको सरकार को थोड़ा ऊंचा बनाना चाहिए था जिससे कि पानी ना आ पाए। इस तरफ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है
3: सर, बहुत समस्या हो रहा है, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही है। कमर तक का पानी है और ये रास्ता फाफा मऊ पुल तक जोड़ता है तो ज्यादा दिक्कत हो रही है जाने आने।
0: बारिश और नेपाल के बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद बाराबंकी में सरयू नदी में उफान है और उसके चलते आसपास के इलाके पूरी तरह जलमग्न है। लोगों को आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब बिजनौर की तस्वीरें देखिए, यहाँ गंगा उफान पर है। देखिए निचले इलाकों में किस कदर पानी भरा हुआ है, ऐसा लगता है रिहायशी इलाके में सैलाब आ गया है।

वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान के पास से गंगा बह रही है और 80 घाट पर आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है, जिसके बाद कल शाम की आरती छत से कराई गई।

0: धीरे धीरे ही सही वाराणसी में गंगा ने अपना रौद्र रूप अख्तियार करना शुरू कर दिया है। नमो घाट जो लोगों के बीच में बहुत ही पसंद किया जाने वाला नया घाट है, वहां पर अभी हमारी मौजूदगी है और देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे 75 फीट का नमस्ते का स्क्रप्चर है, वो भी जलमग्न होना शुरू हो गया है। यहाँ तक बाढ़ का पानी पहुंचना शुरू हो गया है। केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड बुलेटिन की मानते हैं तो गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से महज 3.5 मीटर तो खतरे के निशान से 4.5 मीटर ही शेष रह गया है। नमो घाट बनारस का चौपाटी कहा जाता है। यहाँ लगातार जो लोग आते हैं, आस्थावान पर्यटक सैलानी आते हैं, वे काफी संख्या में होते हैं, जिनको हटाने के लिए, जिनको आगाह करने के लिए लगातार गार्ड यहाँ अलर्ट है और लोगों को इस बाढ़ के पानी के नजदीक जाने से, घाट की सीढ़ियों के नजदीक जाने से मना कर रहे हैं। तो वहीं एहतियात के तौर पर बनारस में सभी तरह के नौका का संचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। तो वहीं NDRF, जल पुलिस और गोताखोर की भी ड्यूटी लगाई गई है।
1: यहाँ पे फिलहाल बोटिंग के लिए आए थे और बोटिंग बंद हो गई है तो काफी डिसअपॉइंटेड हो गए हम लोग। अब ये सब भी नहीं चल रहा और बाकी अगर वैसे होता ये नाव में भी घूम लेते, वो भी बंद हो गया है।
2: भी नहीं देख पा रहे, बोट चल नहीं रही है, तो इससे जो हमारा यहाँ आने का इच्छा था वो सब खत्म सा हो गया।
3: वहीं मेरठ में लगातार हो रही बारिश और सड़कों पर जमा होने को लेकर और सड़कों पर जल जमाव होने को लेकर स्कूली बच्चों ने वीडियो जारी कर DM और प्रशासन से इस समस्या से छुटकारा दिलाने की अपील की, जिससे उन्हें स्कूल जाने में कोई दिक्कत ना हो।
4: DM साहब, आपसे प्रार्थना है कि जो अंडरपास में पानी भरा हुआ है उसका जल्द से जल्द समाधान करें ताकि हमारी पढ़ाई में कोई बाधा ना आ सके।
3: उत्तर प्रदेश के अलावा ओडिशा में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बैतरनी और सालंदी नदी में तूफान के चलते हालात गंभीर हो गए हैं और सड़कों पर पानी सैलाब की तरीके से बह रहा है। अखंडल मणि मंदिर तक जाने के लिए तीर्थयात्रियों को पानी के अंदर से घुस कर जाना पड़ रहा है। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ अजय कुमार नाथ, भुवनेश्वर, आज तक।
5: और अब बात उत्तराखंड की। मॉनसून आफत की तरह बरस रहा है। भारी बारिश के बाद नदी में उफान के बाद ऋषिकेश में लोगों की जान पर बनाई है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने पानी के तेज बहाव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाया। देहरादून और टिहरी गढ़वाल में बाढ़ जैसे हालात बन गए।

0: पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रहे हैं बादल, फट रहे हैं बादल, दरक रहे हैं पहाड़। मूसलाधार बारिश, सड़कों पर सैलाब ही सैलाब। देवभूमि उत्तराखंड में मानसूनी आफत का सिलसिला जारी है। ऋषिकेश हो या देहरादून, हर जगह बारिश कहर बनकर बरस रही है। ऋषिकेश से खौफनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बीन नदी अचानक उफान पर आ गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि उसकी चपेट में एक सफेद रंग की कार आ गई, जिसमें दो लोग सवार थे। उफनती बीन नदी से लोगों को बचाने के लिए SDRF के जवानों ने मोर्चा संभाला और उफनती नदी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और पानी की तेज धार के बीच जाकर SDRF के जवानों ने कड़ी जद्दोजहद के बाद कार में फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
1: और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति इसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया, तो हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है, नदी में, और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटल गया। तब उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत भरसक प्रयास किया गया और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमें हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया।
0: ऋषिकेश ही नहीं, देहरादून में स्वर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ छात्रों की जान जोखिम में आ गई। भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और UPES के 6 छात्र नदी के बीच बने टापू में फंस गए। नदी के तेज बहाव के बीच SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी छात्रों को सुरक्षित बचाया। आसमान से बरस रही आफत के चलते टिहरी के मुनिकी रेती में बरसाती नाले में उफान आ गया और देखते ही देखते कई लोग इसमें फंस गए, जिसके बाद SDRF ने तुरंत एक्शन लेते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
2: घूमने
3: नहीं,
0: वहीं लगातार हो रही बारिश के बीच टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी भी रौद्र रूप में बह रही है, जिसके चलते श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। तमसा नदी के उफान को देखते हुए लोगों को नदी के आसपास ना जाने की अपील भी की जा रही है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते देहरादून के निचले इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क हो या इलाके, सब पानी पानी हो गए। ऋषिकेश से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां एक बार फिर बादल फटने के बाद सैलाब से भारी तबाही मची। पहाड़ों से आए मलबे की चपेट में आने से एक पुल बह गया, 40 से 50 तीर्थयात्री फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनको बचाया गया। वहीं कुल्लू में भी नदी के उफान में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा।
0: हिमाचल प्रदेश में बादल फाड़ आफत, चंबा में फिर बादल फटने से तबाही, कुल्लू में सैलाब में फंसी जिंदगी। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कुदरत का कहर टूट रहा है। बादल फटने के साथ साथ पहाड़ भी दरक रहे हैं। भारी बारिश के बीच नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कई जगहों पर भूस्खलन और सैलाब का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें मनाली की है, जहां फ्लैश फ्लड हुआ है। जलधारा सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। ये तस्वीरें चंबा की हैं, जहां एक बार फिर बादल फटने के बाद भारी सैलाब देखने को मिला। पहाड़ों से आए मलबे की चपेट में आकर एक लोहे का पुल बह गया, जिससे रास्ता पूरी तरह कट गया। करीब 40 से 50 श्रद्धालु इस रास्ते में फंस गए। ये सभी श्रद्धालु माँ भगवती खुंडी वाली के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी भारी बारिश के चलते रास्ते में फंस गए। जिसकी खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय लोग एक्शन में आए और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। चंबा ही नहीं, कुल्लू में भी भारी बारिश के चलते हालात काफी खराब हो गए हैं। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी के बीच चट्टान पर बैठे दिल्ली के 4 पर्यटक पानी से घिर गए। बाहर निकलने का रास्ता बंद होने के बाद स्थानीय युवाओं और आपदा मित्रों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद 4 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिस तरह पहाड़ों पर पानी आफत की तरह बरस रहा है और भूस्खलन हो रहा है, उसने लोगों की जिंदगी को संकट में डाल रखा है। चंबा से विशाल आनंद और कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला। बंगाल के कालिम्पोंग पहाड़ से एक बड़ा हिस्सा और मलबा अचानक सड़क पर आ गया, जिसकी चपेट में आने से बाल बाल सैलानी बच तो गए और वक्त रहते सैलानी ने गाड़ी भी पीछे कर ली। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल, पुरुलिया और बांकुरा में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। देखिए रिपोर्ट।
0: पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर। लैंडस्लाइड से बंगाल कलिम्पोंग में हड़कंप। मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे सैलानी। पहाड़ों के साथ साथ मैदानों में भी लगातार हो रही बारिश के चलते हालात काफी बिगड़ते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग से लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आई है। कलिम्पोंग में भारी बारिश के चलते एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई और पहाड़ से पत्थर और मलबा अचानक सड़क पर आ गए। घटना का डरावना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तेजी से गिरता मलबा साफ दिखाई दे रहा है। उसी वक्त वहां से गुजर रहा एक बाइक सवार इसकी चपेट में आने से बाल बाल बचा। अचानक पहाड़ों से आए मलबे में उसकी बाइक तो फंस गई, लेकिन वक्त रहते शख्स ने अपनी जान बचाकर वहां से हट गया। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया है। आसमान से बरस रही आफत ने आसनसोल में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। रेल पार और गरुई नदी से सटे इलाकों में पानी भर गया है और लोगों के घरों के अंदर तक घुस चुका है। कुछ जगहों पर तो पानी लोगों की कमर तक पहुंच चुका है। रामकृष्ण नगर के कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर बन गए हैं। लोगों को अपने बच्चों, जरूरी सामान और मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ रहा है।
2: आदमी लोगों पर, पब्लिक को जो जिसका घर डूबा हुआ है, बहुत परेशानी में रात बढ़ रहा है। उसको भागना पड़ा सामान ले लेके, सामान छोड़ के बच्चा लोग को, गाय गोरू भी था। रात को 11 बजे कोई आदमी सोया नहीं है, रात भर आदमी परेशान है।
3: जो ड्रेन वगैरह है वो कई सालों से साफ भी नहीं होता है और साफ सफाई का मसला ये है कि इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है। सिर्फ जो है बरसात के टाइम में, बरसात के वक्त में लोग आते हैं और वीडियो बना के चले जाते हैं, इस पर कोई ध्यान उसके बाद नहीं दिया जाता। मैं ये कहता हूँ कि पूरे साल अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये आजाब मोहल्ले वालों के लिए नहीं होगा, बल्कि लोग राहत के सांस लेंगे।
0: आसनसोल ही नहीं, पुरुलिया में भी लगातार हो रही बारिश के चलते हालात काफी खराब हो चुके हैं। कई इलाकों में पानी भर चुका है, वहीं रास्तों पर पानी सैलाब की तरह बह रहा है। इसी दौरान सड़क पार कर रहा एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गया और देखते ही देखते पानी के साथ बहता चला गया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उसे बचाया गया।
5: बाढ़ में पूरा रोड पानी रोड के ऊपर आ गया। दूसरा बात, एक तो बाइक को बहा के ले गया, यहाँ का लोकल आदमी रेस्क्यू करके ले आया। एक तो टोटो भी बहा के ले गया।
0: पुरुलिया के साथ साथ बांकुरा में भी नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। गंधेश्वरी नदी पर बने मनक नाली पुल को पार करते वक्त एक ट्रक पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया और पलट गया। गनीमत यह रही कि ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचा ली। वहीं कोलकाता में भारी बारिश के चलते जोर बागन इलाके का एक घर गिर गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पहाड़ हो या मैदान, इस वक्त हर जगह मानसूनी आफत का सिलसिला जारी है। आज तक ब्यूरो।
4: विशेष वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बिजली का बिल पेड
1: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
2: इत्ता माही वे।
3: और जिन में कार्यक्रम हुआ था, जहां जिन लोगों ने हमला किया था, स्वागत की होता थी। चिदंबरम साहब, आप देश के अग्रणी मंत्री है रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई एडवोकेट है, कानून समझते हैं, आप संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा के हैं, आपको समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? सीधा मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है, उसी का चेहरा बने हैं पीटर चिदंबरम।
4: पुली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है। ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग, और ये उसके हेडमास्टर हैं।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
2: Money, money, money, money every month.
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा.
5: मौका था 15 अगस्त पर देश के नाम संबोधन का, जगह थी लाल किले की प्राचीर. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की उपलब्धियां गिनाई, भविष्य के लक्ष्य बताए तो नए खतरे से आगाह भी की.

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
2: Money, money, money, money every month.
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा.
5: मौका था 15 अगस्त पर देश के नाम संबोधन का, जगह थी लाल किले की प्राचीर. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की उपलब्धियां गिनाई, भविष्य के लक्ष्य बताए तो नए खतरे से आगाह भी किया. पहली बार पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल के बढ़ते खतरे की तरफ देश का ध्यान खींचा. एक बार फिर सुनिए पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा.
4: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है. हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं. इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा.
5: जाहिर है पीएम मोदी ने अपने दिमाग से नक्सलवादी विचारधारा को खाद पानी देने वालों पर हमला बोला और इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई. पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम खुलकर सामने आए. चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है. चिदम्बरम यही नहीं रुके, कुछ घंटे बाद एक्स पर उन्होंने लिखा, दिमागी नक्सल शब्द बीजेपी के पुराने आरोपों जैसे अर्बन नक्सल, आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग का ही एक नया रूप है. अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलन जीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था, ये पुराने अपशब्द विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे. दिमागी नक्सल उन्हीं अपशब्दों का एक नया रूप है. चिदम्बरम के इस बयान पर बीजेपी नेता बुरी तरह भड़क गए. दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, देश के तमाम शहरों से चिदम्बरम पर चौतरफा हमला शुरू हो गया. वार पलटवार के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पी चिदम्बरम के बयान पर आपत्ति जताई. एक्स पर उन्होंने लिखा, भारत के सम्मानित पूर्व गृह मंत्री का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद नुकसानदायक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि विपक्ष के नेता दिमागी नक्सल हैं. सिर्फ वो लोग ही दिमागी नक्सल हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों का साथ देते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, चिकन नेक को काट कर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहते हैं. रिजिजू ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया तो पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 370 के समर्थन में आगे आ गईं. महबूबा ने एक्स पर लिखा, मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूं. मैं एक दिमागी नक्सल हूं.
6: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा. तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं.
5: पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल पर हमला कर एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जहां आने वाले दिनों में वार पलटवार का लंबा सिलसिला दिख सकता है. चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो.

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स,
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।

0: बीजेपी की नवीन टीम की अगले चुनावों पर नजर। तावड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पुनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की भी चर्चा। वंदे मातरम विवाद की दूसरी किश्त, कांग्रेस के गोवा कार्यक्रम को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी बोली उनकी सोच ही ऐसी, खड़गे ने किया पलटवार। छात्रों की पिटाई को लेकर राहुल का फिर केंद्र पर वार, का असत्य और हिंसा मोदी सरकार का मूल मंत्र। पैलेट गन को लेकर फिर उठाए सवाल। पटना में छात्रों के धरने पर बैठते ही जाग गई सम्राट सरकार, 32,000 से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती। प्रक्रिया को लेकर आंदोलन अभी भी जारी, कल तेजस्वी का राजभवन कूच। और ट्रंप ने हॉर्मुज को बताया अमेरिका का नया इलाका, मैप दिखाकर किया दावा, बोले ईरान के साथ नहीं हो रही है कोई भी बातचीत।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach, in association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। चाहे लटकी हुई भर्तियों का मामला हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे स्कूलों की हालत खराब हो, एक बात क्या तय हम मान सकते हैं कि कोई भी सरकार छात्रों की मांग अनसुनी नहीं कर पा रही है। इसी सवाल के जवाब से आज हम आपको खबरदार करेंगे, क्योंकि अब प्रदर्शन के बाद मांगों को मानने का वक्त घटता जा रहा है। जहां जुलाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले आंदोलन के बाद पहले देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इससे पहले लखनऊ में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती जो 2023 में निकली और अब तक लटकी थी, उसकी खबर आज तक ने 21 जुलाई को दिखाई, जब उप मुख्यमंत्री ने 21 दिन के भीतर यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारी से बात करके फाइनल रिजल्ट का वादा किया। कल यानी सोमवार को आज तक ने जैसे ही दोबारा सरकार को याद कराया, कुछ ही घंटों में यूपी ट्रिपल सी ने ग्राम पंचायत अधिकारी का रिजल्ट जारी कर दिया। इसी तरह रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 24 दिन तक चले धरना और सरकार को भी झुकना पड़ा, दो मांग छोड़ बाकी मांगों को मानना पड़ा। लखनऊ में अब पटना का गतियारी 4 का विज्ञापन जारी कराने के लिए प्रदर्शन शुरू हुआ। 5 घंटे के भीतर बीपीएससी आवेदन का विज्ञापन जारी कर देता है। ये 4 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि छात्रों की मांगों पर सरकारों की सुनने की शक्ति जो अब तक कमजोर थी वो बढ़ने लगी है। बेरोजगार नौजवानों की मांग को अनसुना करना सरकारों के लिए संभव नहीं है। सरकारें जब छात्रों की बात सुनने में देरी करती हैं, तो इसका खामियाजा लाखों छात्रों को उठाना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। अब इसका सबूत झारखंड में मिलता है, जहां जेपीएससी से 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा में हुई धांधली तक पहुंचा। दोनों मामलों में बड़ी खबर यह है कि सीआईडी ने मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में कथित तौर पर गलत तरीके से सफलता पाने का आरोप है। अभय तिवारी को इस मामले में पहले ही जेल भेजा जा चुका है।
1: हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं।
2: हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच के लिए जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम लोग के लिए साधा न्याय मत कीजिए सर।
3: धन्यवाद, हमारी बात हमारे छात्र आप ही के बच्चे थे, बहुत देरी की, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी बात मानिए।
4: रेलवे में टीटी के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ और यहाँ एक क्षण में हम लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया गया।
5: बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार ने हमारी बात मानी। छात्रों का जो ये स्ट्रगल था तो काफी विपन्न स्थिति में थे बच्चे। यहाँ
6: सरकार ने 3 से 4 दल की हमारी मेहनत करते हुए और इस भीड़ के आगे उपद्रव के आगे घुटने टेकते हुए हमें हमारी रोटी, हमारा सम्मान, हमारी जीविका, हमारे जीवन से वंचित किया है।
7: सरकार और सरकारी व्यवस्था किस तरह युवाओं का भविष्य सरकारी नौकरी के नाम पर रौंद देते हैं, उसकी 3 तस्वीरें रांची में आज आपको देखनी है। एक तरफ छात्रों का जश्न है, जो कहते हैं कि सोरेंद्र सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री आखिरकार ऐलान करते हैं कि दागी कंपनी TDPL के तहत कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की भी घोषणा होती है। दूसरी तरफ अब भी JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, जो कहते हैं कि सरकार ने CBI जांच की मांग अब तक क्यों नहीं मानी। और तीसरी तरफ है रोते बिलखते गुस्सा करते सवाल करते वो युवा, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद JSSC CGL की परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की, जिन्हें लगता है कि उन्होंने तो ईमानदारी से परीक्षा देकर नौकरी पाई है, तो उनकी नौकरी क्यों छीनी जा रही है। इन 3 तस्वीरों के साथ ये सबसे बड़ा सच कि सरकारी व्यवस्था की चित और पट दोनों में पिसता केवल नौजवान, और एक एक करके इसी सच को आज आप देखिए। जहां पहले जश्न, जहां भर्तियों में धांधली होने पर 24 दिन तक चले धरना प्रदर्शन के बाद सोरेन सरकार को मांगों पर झुकाकर जीत हासिल करने के बाद मनाया जाता है।
8: हेमंत सोरेन को बधाई हो,
9: उनका बच्चे को
8: ये जीत 1-2 साल का नहीं है, ये 10-15 साल का जीत है। ये झारखंड की भविष्य की जीत है आज, और आज से जहाँ झारखंड की सूरत से बता दिया कि वो गुलाम भी कर सकता है, गांधी जी को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं।
10: तोहफा तो इतना बड़ा दिया है, लेकिन दिया नहीं है, लड़के लिया गया है। ये तोहफा कभी नहीं दिया जाता,
8: हमेशा सत्य जीता है। 24 दिन बड़ा लग गया, 24 दिन में 2 साल लग गया।
7: जहां देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल टूटती है, जब मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के बाद आकर यह ऐलान कर देते हैं कि ब्लैक लिस्टेड TDPL ने जो भी परीक्षाएं कराई वो सब रद्द होंगी। JSSC CGL की परीक्षा जो 9 साल बाद जाकर झारखंड में हो पाई थी वो भी रद्द की जाएगी।
9: TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
7: निश्चित तौर पर झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों की ये बड़ी जीत, जिसने बताया कि अब सरकारें कान में तेल डालकर नहीं बैठी रह सकती, इनको सुनना पड़ेगा। लेकिन जब जश्न पूरी रात रांची में मन चुका है, तब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, क्योंकि CBI जाँच की मांग मुख्यमंत्री अब तक माने नहीं।
11: सरकार से ऑफिशियली नोटिफाई होने का वेट कर रहे हैं चीजों का। JSSC CGL की अध्याचना वापस हुई है या नहीं यह हमें अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। 11-13 को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है हम यह भी जानना चाहते हैं।
12: अगर वो TDPL ने ऑर्गेनाइज किया तो वो भी कैंसिल हो गया
11: जी, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, एज कट ऑफ को लेकर के सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है, हम एज कट ऑफ 2018 मांग रहे हैं। और चौथा, CBI जांच पे हमारा सरकार के साथ मतभेद है।
7: और तीसरा हिस्सा है उन युवाओं का जो अब झारखंड में JSSC CGL की भर्ती रद्द होने के बाद गुस्से में, क्योंकि इन्हें 8 महीने पहले ही लंबे संघर्ष के बाद नौकरी मिली थी, लेकिन जिस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचारियों ने बहुत से लोगों से 10 लाख से 40 लाख का रेट लगाकर भर्ती कराई, वहां ईमानदार युवा पूछता है कि भ्रष्टाचार की चक्की में इनकी ईमानदार कोशिश को क्यों पीस दिया गया। कुछ लोग के पास 2000 तक फैमिली कहां जाएगा, आप ये बताइए। मंगलवार सुबह आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार को रोशन कुमार मिलते हैं, JSSC CGL पास करके जिन्हें नौकरी अपने राज्य में मिली, तो इन्होंने घर भर में ही नहीं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटा था, जिसके लिए रेलवे की नौकरी छोड़कर ये झारखंड में काम करने आ गए, ये सोच कर कि ये इनका गृह राज्य है। वो रोशन कुमार अब रोने लगते, पूछते हैं कि इनकी गलती क्या है।
4: कल तक हमारे पास एक जॉब थी, हमारा सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कल एक शाम को एक ऐसा न्यूज वायरल होता है, न्यूज आता है कैबिनेट का कि JSSC CGL की प्रक्रिया को पूरा रद्द कर दिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए थे, तब सब कुछ बताया गया, सब कुछ सही है। हम लोग पहले भी जॉब में थे सर, हम लोग रेलवे में TT के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ, और यहाँ एक क्षण में हम लोग का सब कुछ खत्म कर दिया गया। ना वो वहाँ के रहे ना वो यहाँ के रहेंगे, ऐसी परिस्थिति में वो कहीं के नहीं रहेंगे।
0: अब आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि यही तो छात्रों की मांग थी कि JSSC CGL परीक्षा जो है उसको रद्द किया जाए। दरअसल यहां पर नीति और नियत सरकार की कटघरे में खड़ी हो जाती है, और केवल एक पार्टी की सरकार की बात नहीं है। देखिए किस तरीके से इस परीक्षा के मामले में लंबे समय से गड़बड़ी हुई, लंबे समय तक पूरा मामला अटका रहा, और अब जाकर ये परीक्षा जो रद्द की गई है तो आगे ये सही तरीके से होगी उसकी गारंटी कौन लेता है।
4: 2000 कैंडिडेट का कम से कम आप जांच करा लीजिए एक बार, जो भी गलत निकलता है आप उसको निकालिए, आप सबको किस आधार पे निकाल सकते हैं।
7: हेमंत सोरेन सरकार ने यही फैसला अगर पहले ले लिया होता तो एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ आंसू और गुस्सा ना हो, ना ही 2000 परिवारों में से ईमानदारी से नौकरी हासिल करने वालों पर एक झटके में आसमान टूटता। असल में ये उस भर्ती परीक्षा की खबर है जो भविष्य में इस आधार पर याद रखी जाएगी कि सत्ता किसी की भी रहे वो युवाओं को केवल रुलाती। JSSC CGL की नौकरी चाहने वाले युवा 11 साल बाद भी इंतजार करते रह गए। आपको यकीन नहीं होगा, 5 राज्यपाल झारखंड में बदल गए, 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 6 JSSC के चेयरमैन बदल गए, पर अब तक झारखंड के छात्रों के सपनों की नौकरी JSSC CGL ईमानदारी से एक बार नहीं हो पाई। पहले इसका इतिहास याद कर लीजिए। JSSC CGL पहली बार नवंबर 2015 में निकलती है, जिसमें 2,36,000 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन 2015 में निकली इस भर्ती की मुख्य परीक्षा होने से 8 दिन पहले इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 2017 में फिर से वैकेंसी के लिए फॉर्म भरवाया गया, परीक्षा फरवरी मार्च 2018 में कराने की संभावित तारीख रखी गई, लेकिन एग्जाम ही नहीं हुआ। फिर कहा गया कि नवंबर दिसंबर 2019 में एग्जाम होगा, लेकिन चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, मामला फंस गया। फिर 2021 आया, नए नियमों के साथ जेएसएससी सीजीएल कराने की चर्चा हुई, लेकिन नए नियम को दिसंबर 2021 में कोर्ट ने खारिज कर दिया, परीक्षा फिर लटक गई। फिर आया 21 अगस्त 2022, जब एक बार फिर निर्धारित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताकर स्थगित कर दिया जाता है। नाराजगी बढ़ी, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा फिर जनवरी 2024 में कराए जाने की बात, जिसमें 660,000 बेरोजगार बच्चे 3 शिफ्ट में पेपर देने के लिए बैठे, लेकिन तीसरा पेपर लीक हो गया और फिर प्रदर्शन करके बाकी परीक्षा पूरी रद्द हो जाती। इसके बाद ये भर्ती परीक्षा सितंबर 2024 में कराई जाती, जहां आरोप लगा कि अभय तिवारी वाले रैकेट ने धांधली कराई, लेकिन तब सोरेन सरकार ने ये बात नहीं मानी, कोर्ट तक में मामला चला। लेकिन सोरेन सरकार ने 2025 पदों के लिए साल 2025 के आखिर में नियुक्ति दे दी। जब 24 दिन तक चले आंदोलन में भर्ती में धांधली को लेकर प्रदर्शनकारी इसी परीक्षा को रद्द करने की मांग करते रहे, तब सोरेन सरकार ने सोमवार को जाकर इस परीक्षा को रद्द कर दिया। झारखंड की राजधानी रांची में अब मंत्रालय के बाहर हेलमेट पहने इन शख्स को देखिए, ये वो भाई जिन्हें डर है कि इनका छोटा भाई कहीं टूट ना जाए, जिसने सीजीएल की परीक्षा ईमानदारी से पास करके नौकरी हासिल की थी।
13: सरकार को इस सब मामले में पहले सोचना चाहिए कि वैसे अभ्यर्थी जो पूरा जिंदगी, मतलब जब से वो तैयारी करते हुए उस स्थिति से बढ़ते हुए इस स्टेज पे आए कि कम से कम उस परीक्षा कंडक्ट करके एग्जाम पास करके सारी समस्याओं को झेलते हुए इतना सिचुएशन, इतना क्वेश्चन पेपर लीक हो, ये हो, वो हो, उसके बाद वो क्वालिटी अचीव करके तब जाके सिलेक्शन हुआ है, पूर्ण रूप से निराश है। और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और अभी वो समझिए कि बच्चा, और अभी आगे का और स्थिति कितना होगा।
7: इसी जगह संजीत कुमार मिलते हैं, जिन्होंने घर के राज्य में नौकरी के सपने के लिए रेलवे की नौकरी छोड़ दी। अब उनके इस सपने पर चोट लगी, इनके बयान को आज ध्यान से सुनिए।
14: झारखंड में जॉब नहीं हो रहा था, तो मैंने लॉकडाउन से रेलवे का तैयारी स्टार्ट किया और 2020 में फॉर्म भरा, 2020 में एग्जाम लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, वो एग्जाम जाके 2022 में हुआ और हम लोग का सिलेक्शन 2023 में रेलवे में हुआ। मैंने वहाँ या इस फॉर्म को भरा और इसके लिए बहुत जोर से तैयारी किया। 30 जनवरी को मेरा पहला एग्जाम सीजीएल का हुआ और उसमें भी धांधली, जब हम एग्जाम हॉल से निकले पता चला पेपर लीक हो गया और 30 जनवरी वाला हम लोग सब आए प्रोटेस्ट किए और ये पेपर रद्द कर दिया गया। सरकार के द्वारा बोला गया अपरिहार्य कारण से एग्जाम को रद्द किया जाता है। उसके बाद 21 और 22 सितंबर को एग्जाम, हम लोग के आंदोलन के बल पे सरकार दोबारा से एग्जाम करवाई और उसके बाद एग्जाम करवाई तो मेरा 22 तारीख को एग्जाम पड़ा और उसके बाद हम लोग ने एग्जाम दिया। मैंने बहुत संघर्ष करके, मैं रेलवे में, आप लोग को पता नहीं होगा, रेलवे में 3 शिफ्ट होता है 8-8 घंटा का, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। नाइट ड्यूटी करने के बाद बिना खाना खाए तैयारी किया, फिर 2 बजे ड्यूटी जाना है, उस हालत में मैंने तैयारी किया। और उसके बाद मैं इस एग्जाम के लिए, मुझे ये दिमाग में था कि मुझे घर जाना है।
13: अभी हाँ।
14: मैं यहाँ पे एएसओ के पद पे हूँ, मैं पहले से रेलवे ग्रुप डी में पद पे था, पॉइंट्समैन के पद पे था मैं, और वहाँ से मैं रिजाइन करके आया हूँ। और मैं रिजाइन करके तब आया हूँ जब सरकार ने मुझे ये, मतलब हाईकोर्ट ने ये बोला है कि आप इस, मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जो भी कैंडिडेट फर्दर इस इन्वेस्टिगेशन में, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व पाए जाएंगे, उसको उसका कैंडिडेचर सरकार रद्द कर सकती है या सरकार उस पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बट हम लोग को किस बिना पे सरकार एकाएक जमीन के, मतलब जमीन हटा दी है सर के ऊपर से हम लोग का, मेरा भी फैमिली है सर।
7: इस पूरी भर्ती में जो पैसा देकर नौकरी पाए उनका तो केवल पैसा डूबा, लेकिन जो मेहनत करके पसीना बहाकर नौकरी पाए और जो मेहनत के बावजूद भ्रष्टाचारियों की वजह से नौकरी नहीं पाए, वो दोनों युवा फिसेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में चला जाएगा, सुनवाई की तारीखें लगती रहेंगी और फिर 2015 से लटकी जेएसएससी सीजीएल की भर्ती एक बार फिर मृग मरीचिका बन जाएगी। वो मिराज जो दिख तो 11 साल से रहा है, बस मिल नहीं पा रहा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: पहले दिल्ली फिर झारखंड में जैसे ही छात्रों का आंदोलन खत्म हुआ है, नया आंदोलन बिहार में पटना में शुरू हो गया है। शिक्षक भर्ती को लेकर जब छात्रों की तरफ से प्रदर्शन शुरू हुए तो बीपीएससी ने फौरन विज्ञापन इसका निकाल दिया। हालांकि छात्रों को इसके आगे भी एतराज है।
7: छात्रों के आंदोलन का तीसरा बड़ा गवाह क्या पटना बन रहा है, जहां छात्रों के प्रदर्शन के 5 घंटे के भीतर मंगलवार को बिहार सरकार ने एक मांग तुरंत मान ली। जैसे ही पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक भर्ती की परीक्षा का विज्ञापन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी करने की मांग रखते हुए आंदोलन शुरू होता है, बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया जाता है।
15: जीते, बहुत बड़ी जीत है कि आज हम लोग शुरुआत किया और आज ही नोटिफिकेशन आ गया। आज डेट के साथ है कि कब से फॉर्म भराएगा, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है।
7: TRI 4 मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसकी परीक्षा की संभावित तारीख तो आ गई थी, विज्ञापन नहीं आया था। यूं तो धरने का ताजा कारण शिक्षा भर्ती परीक्षा में हो रही देरी और वादा खिलाफी थी, लेकिन शिकायतें और मांगे कई और भी। युवाओं का कहना है टीचर भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में आना था, जिसे टाल दिया गया। शिक्षा मंत्री ने जुलाई में विज्ञापन का वादा किया, अगस्त गुजरने वाला है। बीपीएससी ने 22-27 सितंबर को परीक्षा की तारीख तय कर रखी है, लेकिन अब तक विज्ञापन का पता नहीं था। 72वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्री 26 जुलाई को होनी थी, टाल कर 25 अक्टूबर कर दी गई। 71वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा अब तक नहीं हो पाई। बीपीएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तारीख का पता नहीं।
16: पटना के गर्दनी बाग में आज से छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये छात्र न्याय सत्याग्रह, इसी बैनर तले आज से TRE 4 समेत तमाम अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जो रिफॉर्म है उसकी मांग को लेकर के छात्र अभ्यर्थी आज से धरना पर बैठे हैं।
7: असल में अभी आंदोलन शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी इसलिए जारी है क्योंकि अब तक जहां केवल एक परीक्षा देकर युवा टीचर बन सकते थे, वहां अब की बार पहले पीटी परीक्षा होगी यानी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। पीटी परीक्षा पास करने वाले ही मेंस की परीक्षा में शामिल होंगे, नियुक्ति के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा।
15: अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, अभी हम अभ्यर्थियों से विचार करेंगे कि आगे क्या करना, लेकिन अभी आंदोलन जारी है। एक परीक्षा होनी चाहिए, दो परीक्षा मंजूर नहीं, सिर्फ एक परीक्षा होनी चाहिए।
17: अपनी परीक्षा होगा तब मंजूर,
15: अभी हम लोग बीपीएससी पे कोई भरोसा नहीं कर रहे।
18: छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? छात्र पढ़ाई में जाकर के जुटे और कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना लें, अपनी तैयारी करें और तैयारी करके वो परीक्षा में पास आउट हो, उनका एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है।
15: झूठ नहीं चलेगा, अगर आपको दो परीक्षा करानी है TRE 5 से कराइए, हम लोग स्वागत करते हैं। TRE 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो चुकी, 2 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, 24 अगस्त 2024 को ही इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया और बार बार झूठ बोला गया, इसलिए इसमें आप देरी नहीं हो। 3 दिन तक हम लोग महाधरना दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर डिमांड पूरा नहीं होता है तो उसके बाद हम अमरनाथ अनशन पे बैठे कुछ नहीं खाएंगे।
7: 32,388 टीचर की पोस्ट पर बिहार में भर्ती परीक्षा भी कराई जानी है। छात्र कहते हैं कि ये सब 2-2 साल की देरी से परीक्षा करा रहे हैं, वो भी नियम बदलकर, ये परीक्षाएं भी लटक गईं, तो फिर आगे क्या होगा?
16: एकल परीक्षा की आप लोग मांग कर रहे हैं, वो क्या वजह है, वहाँ पर कहाँ?
19: हम लोग एकल परीक्षा का मांग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग 2 साल से जो TR 1, 2, 3 जो हुआ उसी पैटर्न पर एग्जाम हुआ और हम लोग अचानक से पीटी और मेंस ले लेना ये कहीं से वाकई अच्छा नहीं है। हम लोग वही पैटर्न पर अचानक से परीक्षा होगा 1 महीना में, तो 1 महीना में तैयारी कहां से हो पाएगा डबल एग्जाम का, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं एकल परीक्षा हो।
7: जिस बिहार में बेरोजगारी दर भले 3% हो, लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार 15% से अधिक है, वहाँ हालात ये है कि शिक्षा विभाग में 46,546, ग्रामीण विकास विभाग में 35,468, गृह विभाग में 35,000, स्वास्थ्य विभाग में 20,000, पंचायती राज विभाग में 9,540, ऊर्जा विभाग में 6,600, कृषि विभाग में 5,366, नगर विकास आवास विभाग में 5,100, समाज कल्याण विभाग में 4,549 और जल संसाधन विभाग में 4,014 पद खाली हैं। कुल मिलाकर 1,72,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं और इतने पद तो तब के खाली हैं जब बिहार की आबादी 10,41,00,000 थी। आज बिहार की आबादी 13,07,00,000 हो चुकी है, तो पदों का सृजन उनके हिसाब से हुआ ही नहीं। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: खबरदार करिए तो सरकारें सुनती हैं, ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। इसका उदाहरण है जो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिकारी थे, आज तक ने न केवल खबरदार किया बल्कि तब तक खबरदार किया जब तक सरकार एक्शन में नहीं आई। अब यूपी ट्रिपल एससी का रिजल्ट भी 4 साल से जो लटका रहा वो आखिरकार आज तक की तरफ से लगातार खबर दिखाने के बाद रिलीज किया गया।
20: आज तक की खबर का असर हुआ है और विलेज पंचायत ऑफिसर की भर्ती जो लगभग 4 सालों से अटकी थी, 2022 का पीईटी का ऐड, फिर 2023 का ऐड, फिर एग्जाम डीवी, तमाम प्रक्रियाओं से लटकती भटकती है भर्ती, आखिरकार आज तक की खबर दिखाने के बाद कल पूरी हुई है और फाइनल रिजल्ट जिसे कहते हैं अंतिम परिणाम कल यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां लग गई हैं, छात्र तो नहीं कहूंगा मैं आपको, विलेज पंचायत ऑफिसर कह रहा हूं। कैसा लग रहा है
21: सर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपने ही हमारा मुद्दा उठाया था डिप्टी सीएम जी के यहाँ जब गए थे, 21 जुलाई को, उसके बाद ही चीजें प्रभावी हुई और उसके बाद माननीय सचिव जी का भी बहुत बहुत आभार, उन्होंने समय रहते संज्ञान लिया। कुछ कष्ट जरूर हुए लेकिन एक अब अच्छा अनुभूत हो रही है कि अब घर परिवार भी खुश है।
20: ये बताइए ना कि आप जब घर गए तो कैसा, जब जैसे रिजल्ट आया एकदम से रात में, कल आई थिंक 8:30 बजा था या 9:15 बजा था जब रिजल्ट आया है, क्या कैसा घर वालों ने कैसे रिएक्ट?
21: सर घर पे तो अभी हम कमरा लेकर रहते हैं तो फोन पे बात हुई, वीडियो कॉल पे बात हुई, बाकी माता जी और पिताजी दोनों लोग आज मिलने आ रहे हैं। सुबह सब रात में ही सब लोग एक एक करके मंदिर गए, एक दूसरे से बधाई, कल से फोन।
20: आपको लगता है खबर जो हमने आज तक ने दिखाई उसका असर हुआ और आयोग हरकत में आया?
21: बिल्कुल भैया, अब मुझे लगता है बहुत प्रभावी तरह से वैकेंसी भी क्लियर हुई है और बहुत उस खबर के बाद में बहुत जल्दी काम हुआ है।
20: पहली दफा तब जब आप डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचे, दूसरी दफा कल जब आप लोग भारी संख्या में पहुंचे, बार बार ये मुद्दा उठाते रहे हम लोग।
22: आप मतलब सभी जितने भी बच्चे, मतलब जितने भी एस्पिरेंट गए थे और आप सभी ने, मतलब सभी ने काफी अच्छा खासा प्रभाव डाला आयोग पे, तब वो इतनी रिजल्ट दे पाए हम लोगों का। तो बाकी मुझे कल से एकदम धक-धक हो रही है।
20: आपके चेहरे पर मैं मुस्कान देख रहा हूँ। कितना बड़ा टास्क होता है कि इतना एग्जाम की तैयारी करना, फिर एक सरकारी पद पर आ गई हैं आप, सरकारी कर्मचारी हैं आप।
22: जी जी, वो पूरा फेज एग्जाम से लेकर फिर एग्जाम के बाद तक आंसर की आने तक, फिर उसके बाद उसको डीवी, फिर रिजल्ट, मतलब पूरा जो प्रोसेस होता है एक, मतलब एक काफी संघर्ष, काफी तनावपूर्ण रहता है कि हाँ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा।
20: आप भी मिठाई खाइए भाई, आप लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। मैं और लोगों से देखी मिठाइयां बट रही हैं यहाँ पर, आपकी तो मुझे शक्ल भी याद है, आप भी पहुंचे थे, हम भी आपसे सवाल कर रहे थे, आप कई सारी बातें कह रहे थे, सरकार ने सुन ली आपकी आखिरकार।
23: आपका बहुत बहुत आभार, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार कि हमारी जो भर्ती है जो 4 साल से लटकी हुई थी उसको सर क्लियर कराने में आप लोगों का बहुत योगदान है। अगर आप मीडिया के थ्रू सरकार पे प्रेशर न बनाते, आयोग पे प्रेशर न बनाते, तो हम लोग शायद अभी रिजल्ट नहीं पाते।
0: बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी वजह स्कूलों की स्थिति है और स्कूलों की स्थिति को लेकर हम लगातार आज तक पर खबरदार भी करते रहते हैं, चाहे वहां पर शिक्षकों की कमी की बात हो या फिर वहां पर जो बुनियादी ढांचा है शिक्षा के लिए उसको लेकर हो। अब आज तक बिहार के स्कूलों में बच्चे किस तरीके से पुरानी और खतरनाक इमारतों में पढ़ने को मजबूर हैं इसको लेकर खबरदार करता रहा है। आज बिहार के 5 शहरों से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बिहार में शिक्षा की बदहाली की सबसे बड़ी वजह देश जानने वाला है, इसका नाम है सरकारी लापरवाही। हाजीपुर में 11 साल से नया स्कूल वीरान पड़ा है, बेगूसराय में सरकारी बदहाली ने स्कूल को ही छिपा लिया, मुंगेर में नई इमारत बनने के बावजूद स्कूल नहीं शुरू हो पाया क्योंकि अफसर रास्ता बनाना भूल गए, सुपौल में शौचालय नहीं होने से 8 साल पहले बना स्कूल खंडहर बन गया, सीतामढ़ी में गजब हो गया, स्कूल की नई इमारत उद्घाटन से पहले ही तोड़ दी गई क्योंकि ये इमारत अतिक्रमण कर के बनाई गई थी। सीधा मतलब ये कि बिहार में करीब 3,000 स्कूल बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं, वहीं जहां इमारत है उसे प्रशासनिक लापरवाही ने खंडहर बना दिया।
7: आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह बिहार में सुपौल के जिस लखीचंद साहू उच्च माध्यमिक विद्यालय में दाखिल हो रहे हैं वो साल 1958 में बना
1: और पिछले 70 वर्षों से यहाँ पर 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है। लेकिन इसी स्कूल परिसर में एक 2 मंजिला नई इमारत भी है, जहाँ ना छात्र है और ना ही टीचर। स्कूल की इमारत वीरान पड़ी है। सवाल है कि स्कूल की बिल्डिंग बन जाने पर भी यहाँ पढ़ाई इतने वर्ष बीत जाने पर भी शुरू क्यों नहीं हुई।
2: सुपौल के राघुपुर प्रखंड अंतर्गत सिमराही बाजार में स्थित इस मॉडल स्कूल के सामने हम खड़े हैं, जो आज जर्जर स्थिति में है। बिना एक दिन के इस्तेमाल के ही ये ब्रांड न्यू भवन जो बना था 7-8 साल पहले, वो खंडहर बन चुका है। और चारों तरफ आप इसके देखिए किस तरीके से जंगल झाड़ सब जो हैं वो उगाए हैं, और मवेशियों के लिए जो है ये एक बहुत ही मुफीद जगह भी साबित हो रहा है।
1: यहीं पर हमें इस स्कूल में पढ़ चुके मयंक मिलते हैं, जिन्होंने स्कूल की पुरानी इमारत में पढ़ाई की है। नई बिल्डिंग का काम इनके सामने शुरू हुआ, लेकिन सरकारी लापरवाही पर इन्हें रोना आता है।
2: इस स्कूल के एक अन्य हिस्से में हम यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ भी देखिए दरवाजे तक चोरी हो गए हैं। यहाँ दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन चोर इन्हें भी इन दरवाजों को उखाड़ कर जो है वो ले गए हैं।
3: हम लोग जो पुराने वाले भवन में पढ़ रहे थे, तो पुराने वाले भवन का छत टूट टूट के गिरता था, तो हम लोग हमेशा डर के साये में पढ़ते थे। और जब हम लोगों ने देखा कि नए बगल में एक मॉडल स्कूल का जो सरकार का कॉन्सेप्ट है, उसमें नए बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, तो हम लोग काफ़ी खुश हुए कि जो कष्ट हम लोग झेल रहे हैं वो आने वाले जो भी बच्चे होंगे वो नहीं झेलेंगे। अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको शिक्षा मिलेगा, लेकिन आज की स्थिति तो देख कर मुझे भी रोना आ रहा है। कि
1: तो सवाल सीधा सा, जिस मॉडल स्कूल की इमारत 8 साल पहले बनकर तैयार हो गई, वहाँ योजना के मुताबिक 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई क्यों शुरू नहीं हो पाई? आखिर स्कूल की इस नई इमारत के इस तरह जर्जर हालत में पहुँचने का जिम्मेदार कौन है?
2: हम अब इस भवन के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं, और ग्राउंड फ्लोर पर आप देखिए तस्वीरें सिर्फ देखते जाइए और समझ लीजिए कि क्या हालत है बिहार में सरकारी स्कूलों की और भवनों की। आप देख सकते हैं ये जो सीढ़ियाँ बनी थी सब जो है वो टूट चुका है, टाइल्स को जो है वो चोरी करके ले जाया गया है।
1: आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा कैसे स्कूल के चारों तरफ जंगल और झाड़ियाँ उगाई, इमारत की खिड़की और दरवाजे चोरी हो गए, खिड़कियों के ग्रिल तक निकाल लिए गए, बिजली के तार और दूसरे सामान भी गायब। सबसे बड़ी विडम्बना ये कि यहां से शिक्षा की रोशनी फैलनी थी, वहां नशे का बोलबाला है। हमें इस स्कूल के अंदर कई जगह इस्तेमाल की गई सुइयां, नशीले सिरप के बोतल और नशीली दवाओं से जुड़ा सामान इधर उधर बिखरा मिला। इलाके की वार्ड पार्षद स्मृति कुमारी आज तक को बताती हैं कि स्कूल की इमारत बनने के बाद भी से सरकार को हैंडओवर नहीं किया गया और स्कूल की इमारत खंडहर हो गई।
5: ये लापरवाही यहाँ का कुछ सरकार तो एक मनसा की हुई थी, लेकिन यहाँ के ठेकेदार और यहाँ पे और कुछ होंगे नेता सब, जिसकी वजह से ये
2: बिल्डिंग लेकिन पूरा तैयार हो गया था ना 7-8 साल पहले,
5: मतलब सारा चीज हुआ था। आप देख सकते हैं कि रंग पूरा इसका उतर गया है।
1: तो ये है बिहार में शिक्षा की बदहाली से खबरदार करती हमारी रिपोर्ट का निचोड़। तस्वीर बिहार के सुपौल से है, जहां एक तरफ बच्चे 70 साल पुराने स्कूल की इमारत में पढ़ने को मजबूर हैं, तो वहीं लाखों रुपए खर्च करके स्कूल की नई बिल्डिंग पढ़ाई शुरू हुए बिना ही खंडहर में तब्दील हो गई। मतलब बच्चे जोखिम में पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं उसी स्कूल में बनी नई इमारत खंडहर कर दी गई है। सवाल है क्यों, किसने इसका पैसा बर्बाद किया, बच्चों के हक के साथ खिलवाड़ किया? इस सवाल का जवाब हमें यहाँ 20 साल से पढ़ाने वाले टीचर अजय कुमार ने दिया। बताया कैसे सरकारी लापरवाही ने आम आदमी के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं।
24: ये एक हर प्रखंड में एक मॉडल शिक्षक का कंसेप्ट आया था सरकार के द्वारा, और उसी के तहत इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। और ये बिल्डिंग निर्माण तो हुआ लेकिन अधूरा निर्माण हुआ, अभी तक इस बिल्डिंग का पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। जैसे हम लोग को जानकारी है कि 10 या 12 लैट्रिन बाथरूम जो बच्चे के लिए बनना था उसमें एक भी नहीं बना। जब अधूरा बिल्डिंग है तो उसको हैंडओवर कैसे ले सकते हैं?
2: मतलब इस पूरा बिल्डिंग में लगता करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बना है, इसमें शौचालय की व्यवस्था नहीं है?
24: एक भी शौचालय का बच्चे के लिए जो है उसमें व्यवस्था नहीं हुआ था।
1: यानी जिस नई इमारत में बच्चों को पढ़ना था वो इसलिए हैंडओवर नहीं हो सकी क्योंकि बनाने वाले शौचालय बनाना भूल गए। लेकिन सवाल है कि इस गलती के लिए क्या किसी को सजा मिली? शौचालय ही बनाना था तो बाद में उसे बनाकर पूरा क्यों नहीं किया गया?
2: बिहार में एक तरफ जहां ऐसे हजारों स्कूल हैं जिनका अपना भवन नहीं है और बच्चे वहां पर पेड़ के नीचे या आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी स्कूल मौजूद हैं जिनका निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से कराया तो गया लेकिन एक दिन भी इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। जिस स्कूल में बच्चों का भविष्य बनना था और उनके सपने साकार होने थे वो स्कूल आज चोर उचक्कों और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है।
0: तो बिहार में स्कूलों की इमारतें होने के बावजूद छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो मजबूर हैं पुरानी इमारतों में पढ़ने के लिए। अब बिहार विधानसभा में कुछ आंकड़े जारी किए गए, वो आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। 35 जिलों में 2,276 प्राइमरी मिडिल और सेकेंडरी स्कूल बिना अपनी इमारत के चल रहे हैं। इसके अलावा 720 हायर सेकेंडरी स्कूल बिना इमारत के चल रहे हैं। मतलब बिहार के 2,996 स्कूलों में बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। जबकि इसी बिहार में लाखों करोड़ों में बनाए गए स्कूल खंडहर बना दिए गए। सवाल यह है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कभी क्या कार्रवाई होगी?
7: बिहार के बेगूसराय में इन पेड़ों के पीछे क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि झाड़ियों के बीच जिस दरवाजे पर ताला लगा है उसे क्यों बनाया गया? आखिर ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों के बीच में ये इमारत किसने और क्यों बनवाई? इन सारे सवालों का जवाब है उत्क्रमित मध्य विद्यालय। उत्क्रमित मतलब स्कूल को अपग्रेड करने से। इस स्कूल को 15 लाख की लागत से 6 कट्टा जमीन पर बनाया गया। स्कूल में बरामदा, 4 दीवारी, कैंपस क्लास सब कुछ। भवन का उद्घाटन भी हुआ लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ाई शुरू नहीं हुई। इसका कारण है स्कूल पहुँचने का रास्ता। ये स्कूल मुख्य सड़क से करीब 100 मीटर अंदर खेतों के बीच बना है। चारों तरफ खेती होती है। स्कूल तक पहुँचने के लिए पक्की सड़क तो दूर, पगडंडी तक नहीं। आज तक की टीम जब यहाँ पहुँची तो मुख्य गेट पर ताला लगा था। पूरे कैंपस में मानो जंगल उगाया और स्कूल के चारों तरफ फसलें खड़ी थी। मतलब सरकार ने स्कूल बनाया लेकिन रास्ता बनाना भूल गए और लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी स्कूल बनाने का मकसद अधूरा रह गया। नतीजा ये है कि यहाँ के बच्चों को करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता है जहाँ कमरों की कमी है।
6: सरकार खेत में स्कूल बना के छोड़
8: क्यों बनाया? हम लोग को जब इससे लाभ नहीं मिलता है तो बनाया क्यों? चरवाहा स्कूल खोल दे, बकरी का रहने के लिए खोल दे, कोई अगर गरीब को दे देगा तो दिन दुगुनी 4-4 भी काट सकते हैं कि नहीं, समस्या तो उसका हल हो सकता है। लेकिन बनाकर धर दिया न उससे कोई लाभ मिलता है।
9: रास्ता जो है मान लिए यहाँ तक अभी तक नहीं मिला है और ये लोग कोशिश भी नहीं किया है। जितने हमारे गांव के प्रतिनिधि हैं वार्ड से लेकर जो है समिति हो या मुखिया हो या सरपंच हो, किन्होंने इस बारे में सोचा आज तक नहीं है। हमारे पुराने स्कूल है उत्क्रमित विद्यालय किरतौल, जिसमें 850 बच्चा पढ़ता है, वहाँ पर जगह नहीं है बैठने के लिए। कुछ बच्चा आते हैं और कुछ रिटर्न हो जाते हैं बैठने की दिक्कत में।
7: गांव वालों ने बच्चों की इसी समस्या को तो देखते हुए स्कूल के लिए जमीन तक दान में दी। साल 2023-24 में तत्कालीन विधायक रामरतन सिंह के ऐच्छिक कोष से करीब 15 लाख रुपए की लागत से ये भवन बनाया गया लेकिन रास्ता नहीं बनने से स्कूल नहीं शुरू हो सका। खबरदार करता सवाल है कि जब स्कूल की जमीन चुनी गई तब रास्ते की जरूरत पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? बेगूसराय जैसी समस्या मुंगेर में भी नजर आती है जहां 30 लाख का स्कूल भवन एक साल से बंद है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड के नया टोला प्रसंडो गांव में 30 लाख की लागत से 2 मंजिला स्कूल इमारत बनाई गई जिसमें 3 हॉल, 1 ऑफिस, शौचालय, पानी की व्यवस्था की गई। लेकिन इस नई बिल्डिंग में पढ़ाई शुरू नहीं हुई। करीब एक साल से स्कूल पर ताला लटका है। बंद रहने की वजह से स्कूल की नई इमारत की हालत भी खराब होने लगी। बोरिंग का हिस्सा उखड़ गया, कई जगह दीवार में दरारें दिखती हैं, परिसर में गोबर और कचरा जमा है। स्कूल के प्रिंसिपल नीरज कुमार निराला आज तक को बताते हैं कि ये स्कूल की इमारत ऐसी है जो पूरी तरह तैयार ही नहीं हुई थी, फिर भी अधिकारियों के दबाव में इसे हैंडओवर कराया गया। अब न स्कूल में बिजली है और न ही आने जाने का रास्ता, तो ऐसे में बच्चों को यहाँ कैसे पढ़ाया जा सकता है?
10: बंद इसलिए है कि विद्यालय में रास्ता नहीं है और विद्यालय का जो कार्य हुआ गुणवत्ता अच्छा नहीं है। वर्षा जब होता है, अभी तो मास्टर साहब आ रहा खोल के आपको दिखाएगा, जमीन तो बेचारा बहुत महंगा दान दिया। उनके मन में था कि हम ठेकेदारी करेंगे, हो गया टेंडर तो काम भी बढ़िया से हुआ नहीं, रास्ता तो है ये नहीं, जिसके कारण जो है हैंडओवर तो जबरदस्ती दिला दिया गया तो चालू अभी नहीं हुआ है।
1: इस स्कूल में करीब 100 बच्चों के नामांकन की बात सामने आई जो फिलहाल सामुदायिक भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। रास्ते की वजह से ही वैशाली में पिछले 11 साल से नया नवेला स्कूल बंद है। वैशाली के भगवानपुर प्रखंड के वारिसपुर में राजकीय आदर्श विद्यालय का भवन 11 साल से खाली पड़ा है, लेकिन सिर्फ एक दिन पढ़ाई के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। इसकी वजह से स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को नेशनल हाईवे पार करना पड़ता। अभिभावकों का डर था कि छोटे बच्चों को रोज नेशनल हाईवे पार करवाना खतरनाक हो सकता है, जहां तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हादसे का खतरा रहता है। इसके बाद बच्चे पुराने सरकारी विद्यालय में ही पढ़ते रहे और नया आदर्श विद्यालय बंद हो गया। लंबे समय तक इस्तेमाल न होने के कारण बिल्डिंग की हालत खराब हो रही है। खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं, लोहे के हिस्सों में जंग लग गई है।
4: ये बिल्डिंग को बनाया गया लगभग 4-5 करोड़ के लागत से, 10-11 साल हो गया है। हैंडओवर भी स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा, मतलब विभाग के द्वारा किया गया है, लेकिन ग्रामीणों और यहाँ के लोगों को जो बच्चा इधर उधर आते हैं एनएच के वजह से,
11: मतलब बगल में एनएच है,
4: बगल में एनएच है, उधर के ही बच्चे ज्यादा है, लगभग सारा बच्चे एनएच के है, उस पार के ही है, इसलिए इधर बच्चा शिफ्ट नहीं हो सका।
1: अब सवाल है कि स्कूल भवन बनाने से पहले बच्चों की सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? पिछले 11 साल में सिर्फ रास्ता न होने से एक स्कूल को वीराने में तब्दील क्यों कर दिया गया? सीतामढ़ी के इस स्कूल की कहानी तो सरकारी लापरवाही की मिसाल कही जा सकती है। करीब 6 दशक पुराने इस विद्यालय में छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 2 मंजिला नई इमारत बनी। करीब 40 लाख रुपए खर्च हुए। पिछले साल निर्माण का काम पूरा हुआ, लेकिन पढ़ाई शुरू होती उससे पहले स्कूल सड़क चौड़ीकरण की जद में आ गया। नाप तौल हुई तो ये नई बनी इमारत भी सड़क की जद में पाई गई और इसके बाद इसके एक हिस्से को तोड़ दिया गया।
12: हमारे पीछे जो भवन दिख रहा है, जो कि जमींदोज हो चुका है, ये सरकारी लापरवाही और विभागीय उदासीनता का जीता जागता उदाहरण है। आपको बता दें कि यह भवन बिना उद्घाटन के जमींदोज कर दिया गया। पिछले वर्ष यह बनकर तैयार हुआ था, 40 लाख की लागत से। ये मथुरा उच्च विद्यालय का भवन था जो छात्रों की बढ़ती तादाद को लेकर इसका निर्माण कराया गया था।
1: तो बिहार के 5 जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट भले ही अलग अलग हो, लेकिन सवाल एक ही है और वो ये कि सरकारी स्कूल की इमारत बनाने से पहले क्या ये सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए था कि जहां स्कूल बनाया जा रहा है वहां बच्चे पढ़ भी पाएंगे या नहीं? स्कूल बनाते वक्त उस तक पहुंचने की सड़क का इंतजाम क्यों नहीं किया गया?
13: ये सवाल हम सीधे सरकार के पास लेकर गए कि स्कूलों की जो ये स्थिति है, क्या उसे सुधारा नहीं जा सकता है? बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने क्या जवाब दिया है, सुनिए।
14: विभागीय अधिकारियों को हमने 3 महीने का एक टास्क दिया है। उस 3 महीने में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। जो विद्यालय बने हुए हैं किसी कारण से ट्रांसफर नहीं हुए हैं, वो तुरंत अगले 1 महीने के अंदर उसमें क्लास चलने लगेगा। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे संपर्क पथ नहीं है, उसके लिए हमने एक सूची बना करके भूमि सुधार राजस्व विभाग को सौंप दी है कि आप जमीन का अधिग्रहण करिए और हमारे विद्यालय के लिए संपर्क पथ के लिए आप जमीन दीजिए। हमारे लगभग हजारों स्कूल ऐसे हैं जो स्कूल तो स्वीकृत हैं लेकिन उसके पास भूमि नहीं है। वो भूमि विहीन विद्यालयों की भी सूची हमने उपलब्ध कराई है भूमि सुधार राजस्व विभाग को और उन्होंने कहा है अगले 3 महीने में वो हमें भूमि देंगे।
13: और अब आपको 36,000 करोड़ की लागत से बने उस एक्सप्रेसवे की खबर से खबरदार करते हैं जिसका उद्घाटन 29 अप्रैल को ही किया गया था और मात्र 110 दिनों में बारिश ने उसका क्वालिटी चेक कर दिया।
1: 110 दिन पहले की बात है, 29 अप्रैल की तारीख थी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देते हैं। 3 महीने 18 दिन पहले मेरठ से प्रयागराज को जाने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए जनता से किए गए तमाम दावे 110 दिन के भीतर बारिश में डूबे दिखने लगे। जहां 36,000 करोड़ की लागत से बना गंगा एक्सप्रेसवे उन्नाव से प्रयागराज की तरफ बढ़ने पर 421 किलोमीटर के करीब किनारे से धस जाता है।
25: 594 किलोमीटर का बना गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे था। और आपको बता दें यहां पर बारिश होते ही ये एक्सप्रेसवे भी धस गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको आगे जाके दिखाने पाए कि एक्सप्रेसवे जो साइड में स्लीपोज है वो पूरी तरीके से स्लीपोज हो गया था और देखिए ये एक्सप्रेसवे यहाँ पर बैठ गया था। ये देखिए सड़कें पूरी धस गई थी और ये नीचे अगर आपको दिखाएं तो ये पूरी तरीके से बैठ गया है। बरसात का समय चल रहा है, बारिश तेज हुई जिस वजह से ये स्लिपोज हो गया है और ये 594 किलोमीटर का ये गंगा एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को उद्घाटन किया था। उद्घाटन के 3 महीने बाद ये एक्सप्रेस वे धस गया है।
7: उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़कर बने एक्सप्रेसवे का इस तरह बारिश में एक तरफ धस जाना कई सवाल खड़े करता है। जहां 3.5 महीने में अगर बारिश से किनारे का हिस्सा ढहने लगे, धसने लगे तो खबरदार करना जरूरी है।
25: देखिए कोई भी यहां पे जिनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो बोलने को तैयार है। आप लोग बताइए भाई साहब, ये कैसे जानकारी हुई, क्या हुआ था?
11: हमारे को नहीं मालूम।
25: नहीं नहीं, क्या जानकारी हुई थी?
15: हमको पता नहीं।
25: नहीं नहीं, क्या हुआ था कुछ आप लोग यहां पर?
11: बारिश की वजह से रेनकट हो गया, रेनकट भर रहा
25: है। यहीं पर है कि और भी कहीं हुआ है?
11: कहीं नहीं है।
25: ये कितना धस गया है यहां पर?
11: ये 2 मीटर का।
25: तो कार आप लोग कर रहे हैं?
11: हाँ, अभी रिपेयर कर रहे हैं।
25: आप लोग किसकी तरफ से?
11: हम वो मजदूर है, एम्प्लॉयज है।
25: ठेकेदार है आप लोग?
11: ठेकेदार, काम करने वाला।
25: काम करने कितने बजे, कितने घंटे से काम चल रहा है आपका?
11: 2 घंटे।
25: 2 घंटे
11: और 2 घंटे में रेडी हो जाएगा।
25: और आगे भी कहीं गंगा एक्सप्रेस में धंसा हुआ?
11: कहीं नहीं।
25: कोई अधिकारी आया यहाँ पे?
11: अधिकारी तो आके देख के गए।
7: यूपीडा से जुड़े अधिकारी मुआयना करके जा चुके हैं। आज तक जब यहाँ रिपोर्ट करता है तभी यहाँ धसे हुए हिस्से को भरने का काम जारी दिखता है। निश्चित तौर पर इस बात की जांच होनी चाहिए कि चूक कहां और किससे हुई, क्योंकि बारिश अगर 3-3.5 महीने में ऐसे हजारों करोड़ के एक्सप्रेसवे को एक जगह गला देती है तो आंखें बंद नहीं की जा सकती हैं।
13: ग्वालियर की सड़कों को लेकर वहां की हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और 8 सड़कों को 4-4 सील पैक में उनका सैंपल लेने के लिए कहा गया, लेकिन उससे पहले ही वहां पर निगम की तरफ से JCB की कार्रवाई शुरू कर दी गई।
16: कम से कम 2 साल से, अगले बरसात से
17: जी।
16: ये बरसात आ गई, यही हाल पड़ा है, गड्ढे है, कोई साइकिल वाला कोई पैदल वाला गिर पत्ता आएगा, कोई इसको सुधार करने को कोई आ ही नहीं गया।
7: खस्ता हाल सड़कों को लेकर आम जनता के इस दर्द को हाईकोर्ट ने सुना और ग्वालियर शहर सुर्खियों में आ गया। पहली बार देश ने देखा कि हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम को पिछले 5 साल में बनाई गई सभी सड़कों के निर्माण और मरम्मत के काम से जुड़े रिकॉर्ड टेम्पो में लेकर आने पड़े, क्योंकि ग्वालियर की सड़कों की हालत ने जनता का चलना दुभर कर रखा है।
18: परेशानी तो होती है, डर लगता है पलटने का भी।
17: चलो चलो,
18: पलटने का भी डर लगता है। चला तो रहे, अब चलाना तो ही है।
19: कई वर्षों हो गई सर?
18: 15 वर्ष से।
19: कई वर्षों हो गई, हमने देखते देखते हमारी गाड़ी हमें मेंटेनेंस निकलने लगा।
7: अदालत की सारी कवायद का मकसद ये जानना है कि जो सड़क रिकॉर्ड में दिखाई गई क्या वो वास्तव में बनी भी है, क्या जितना पैसा सड़क बनाने पर खर्च किया जा रहा है क्या उतना माल लगा भी है। इसी के तहत ग्वालियर हाई कोर्ट ने 8 सड़कों का क्वालिटी टेस्ट कराने के लिए 4-4 सील पैक सैंपल लेने का आदेश दिया, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आ गया जब रोड नंबर 7 की सैंपलिंग से पहले ही प्रशासन का JCB और रोड रोलर पहुंच गया। वीडियो में सड़क की ऊपरी परत हटती दिखाई दी।
26: ग्वालियर हाई कोर्ट की 8 सड़कें जहां की ग्वालियर हाई कोर्ट रियलिटी चेक करने जा रहा है, उनमें से एक सड़क ये है बेटी बचाओ चौराहे से जो कंपू की तरफ जाती है, हॉस्पिटल की तरफ जाती है, क्या स्थिति ये कब से खराब है?
27: सर तकरीबन ये पिछले 1.5 से 2 साल से स्थिति खराब है और बहुत टाइम हो गया इसको। बहुत लोगों ने शिकायत भी की, हम लोगों ने भी शिकायत करी, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। इधर सर गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल है, आगे इधर भी दोनों साइड स्कूल है, तो सर सबको दिक्कत होती है, रॉन्ग साइड से गाड़ियां निकलती हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है यहाँ पर हमेशा।
7: जैसे ही मामला कोर्ट की नजर में आया इस पर आपत्ति जताते हुए नगर निगम के आयुक्त को तुरंत कोर्ट में तलब करते हुए कहा कि नगर निगम का यह आचरण अत्यंत आपत्तिजनक है। इसके बाद नगर निगम आयुक्त संघ प्रियो को तुरंत कोर्ट बुलाया गया। आयुक्त ने बताया कि इंस्टाग्राम पर सड़क का वीडियो देखने के बाद उन्होंने गड्ढे भरने के निर्देश दिए, लेकिन कोर्ट ने उनके मोबाइल में मौजूद वीडियो भी देखे जिनमें JCB और रोड रोलर सड़क पर काम करते नजर आए। अब रोड नंबर 7 से सैंपल 20 अगस्त को लिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया 3 सदस्यीय आयोग की निगरानी में होगी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सैंपल कहां से लिया जाएगा, ये फैसला सिर्फ आयोग करेगा, कोई अधिकारी या तकनीकी टीम नहीं।
28: क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय को लगा कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कहीं ना कहीं से प्रश्न चिन्ह लगाया गया है और जो क्वांटिटी और क्वालिटी है रोडों का वो विशेष ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसमें कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के आधार पर सैंपलिंग की कार्रवाई की जाएगी। जो
29: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ग्वालियर की सड़कों के संबंध में जो है PIL में जानकारी चाही गई थी, तो मैं उसकी जानकारी जो है वो माननीय उच्च न्यायालय को दे दी गई है और अभी उसमें कुछ जो है लगभग 6 सड़कें जो हैं उनकी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो एक कमीशन गठित की गई है उसमें उसके स्पेसिफिकेशन अनुसार निर्माण की जो है समिति जो है कमीशन वो जांच करेगी।
7: तो देश भर के बाकी शहरों की तरह बदहाल सड़कों वाले ग्वालियर का मामला हाईकोर्ट के इन्हीं तेवर से अपने आप में अनोखा हो गया, क्योंकि ग्वालियर की सड़कों का मामला अब सिर्फ गड्ढों तक सीमित नहीं रहा। हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड से लेकर सड़क के सील पैक सैंपल तक की व्यवस्था कर दी। ग्वालियर की सड़कों की सच्चाई अब सिर्फ गड्ढों से नहीं बल्कि लैब टेस्ट के सामने आएगी। सैंपल लेने से पहले सड़क की जियो टैगिंग होगी, DPR और मेजरमेंट बुक का मिलान होगा और अगर गलत रिकॉर्ड दिया गया तो नगर निगम आयुक्त, PWD के इंजीनियर इन चीफ और NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर व्यक्तिगत अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। सवाल ये कि इसी से बचने के लिए क्या हाईकोर्ट के सैंपल से पहले सड़क पर JCB प्रशासन चलाना चाहता था ताकि वो अपना सच अपनी लापरवाही छिपा सके।
13: स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय पर जो वंदे मातरम गाया गया उसको लेकर एक तरफ विवाद खड़ा हुआ, वो थमा भी नहीं था तब तक गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में वंदे मातरम गाने को लेकर एक नया बवाल खड़ा हो गया है।
0: वंदे मातरम पर सियासत का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोवा विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए गए, यही नहीं सारे नेता इसके बाद चलते बने। इससे पहले 15 अगस्त को एक वीडियो सामने आया जिसमें कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में वंदे मातरम के सभी 6 पद गाए गए थे, लेकिन उसी दौरान सोनिया गांधी कुछ निर्देश देती नजर आई थी। BJP ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी ने बीच में ही रुकने के लिए इशारा किया था। हालांकि कांग्रेस ने ये कहते हुए बचाव किया कि खड़गे काफी समय से खड़े थे जिनके लिए कुर्सी मंगाने के लिए सोनिया गांधी इशारा कर रही थी, लेकिन इसके बाद गोवा में कांग्रेस के ही कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए जाने को BJP राष्ट्रगीत का अपमान बता रही है। सोनिया गांधी जी का भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति अनादर सबके सामने है। यही वो गीत है जिसे कांग्रेस ने दशकों तक तुष्टिकरण की राजनीति के नाम पर सीमित कर दिया और राहुल गांधी जी वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा रखता है। क्या आपको लगता है कि आप इसकी गरिमा से ऊपर हैं? क्या आप राष्ट्रीय भावना से ऊपर हैं? या फिर उन संवैधानिक मूल्यों से भी ऊपर हैं जिनका आप अक्सर दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं? BJP के इस आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे दलील दे रहे हैं कि उन्होंने वही वंदे मातरम गाया जो गांधी नेहरू गाते रहे हैं।
2: अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो।
0: 15 अगस्त को ही केरला में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम का गायन नहीं हुआ। इसके बाद अब पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि वो पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, सरकार चाहे जो कर ले।
3: हम सिर्फ 2 ही पंक्ति गाते हैं, चाहे BJP, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमको पासी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे, हम 2 ही लाइन गाते हैं।
5: मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैंने पहले भी गाया, अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें कौन नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।
6: 3 तलाक का विरोध, शाबानों का विरोध, अभी जनगणमन में वॉकआउट, आर्टिकल 370 में वॉकआउट, तो राष्ट्र हित के जितने सवाल होते हैं अगर उसकी टकराहट वोट बैंक से हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी चली जाती है पीछे, और इसमें वो अपनी सारी परंपराओं का भी ध्यान नहीं रखती।
13: बगदाद में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
4: हाँ ला, ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: नहीं माया, लेट्स गो।

0: The new BE6 Sportex.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में
2: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
3: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
2: क्रॉसबॉन सुपर स्ट्रॉन्ग,
3: सुपर स्ट्रॉन्ग
2: और मॉइस्चर प्रूफ।
3: वारंटी
2: 15 साल की।
3: कदम
2: सर प्लीज
3: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन से ही बनेंगे।
4: क्रॉसबॉन HGMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

2027 चुनाव को साधने के लिए बीजेपी ने अपने संगठन में किए बदलाव में यूपी को तवज्जो दी है। नितिन नवीन की नई टीम में ओबीसी, जेन जी यानी युवा और महिला पर फोकस है। अहम पदों पर कुल 8 बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से 3 महिलाओं और 3 ओबीसी नेताओं को जगह मिली है। कुर्मी बिरादरी की रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, तो केशव मौर्य के करीबी और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य को बीजेपी ने ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया है। राष्ट्रीय मंत्री के पद पर संगीता यादव को लाया गया है, जो कि यादव बिरादरी से महिला चेहरा है। संगठन के अहम पदों पर 2 मुस्लिम चेहरे तारिक मंसूर और कुंवर वासी ताली को मौका मिला है। बीजेपी के नए संगठन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महामंत्री बनाया गया है। इसे लेकर अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जमकर आतिशबाजी हुई, बैंड बाजे की धुन पर नेता झूमते दिखे। पार्टी नेता कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को संगठन में जगह मिलने से आगामी विधानसभा चुनाव में अब 4 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। चुनावी राज्य पंजाब से आने वाले तरुण चुग को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया है। उनके अलावा पंजाब से मनप्रीत बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस जिम्मेदारी के मिलने पर बादल ने कहा कि पंजाब में सिर्फ डबल इंजन सरकार ही सफल हो सकती है। इस ऐलान के बाद उनके पैतृक गांव में लोगों ने जश्न मनाया। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बगैर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि जो लोग आज युवा चिल्ला रहे हैं, दरअसल युवा उनके एजेंडे में कभी था ही नहीं, ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं। मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम ने पार्टी सांसद डिंपल यादव को लेकर अजीबोगरीब बयान दे दिया। विधायक ने डिंपल यादव को पूरे देश की मां बताते हुए उन्हें ममता का प्रतीक बता दिया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

0: लेकिन राजधानी लखनऊ में पुलिस टीम पर हुआ हमला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अतीक कांड तो हो गया लेकिन उसका खौफ, उसका आपराधिक नेटवर्क आज भी जिंदा है। बुधेश्वर इलाका और अवैध डेयरी पर कार्रवाई करने पुलिस की टीम पहुंचती है। पुलिस और नगर निगम की टीम को जिस तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, ये योगी की पुलिस है और खुद को अतीक गैंग का गुर्गा बताकर धमकाया गया, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये है कि क्या प्रशासन का इकबाल कमजोर पड़ रहा है या फिर अतीक की मौत के बाद अब उसके नाम, उसकी विरासत के सहारे यूपी में उसी पुराने खौफ के साम्राज्य को दोबारा खड़ा करने की साजिश रची जा रही है। इसके बाद आपको झारखंड में सरकारी नौकरियों का उलझा हुआ गणित दिखाएंगे, जहां खुशी और मायूसी दो अलग अलग तस्वीरें एक साथ सामने आ रही हैं। एक तरफ 14 परीक्षाएं रद्द होने के बाद भी आंदोलन थम नहीं रहा है, देवेंद्रनाथ महतो के गुट ने मंत्रियों के आश्वासन पर अनशन खत्म कर दिया है, तो वहीं दूसरा गुट अब भी सीबीआई जांच और लिखित आदेश की मांग पर अड़ा है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे पेचीदा पहलू यह है कि रातों रात जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने से 1975 चयनित युवाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई है, जिन्हें कुछ महीने पहले ही नियुक्ति पत्र मिला था और वो सचिवालय में काम कर रहे थे, अब सचिवालय के बाहर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या देखा कि वो भारत की चुनावी प्रणाली के कायल हो गए। ट्रंप ने तारीफ करते हुए कहा कि भारत के पिछले आम चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख मतदाताओं ने हिस्सा लिया था, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में हर एक वोटर के पास वोट डालने के लिए एक वैलिड फोटो आईडी डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य होता है। लेकिन आज जब पूरे देश में दिमागी नक्सल को लेकर बहस छिड़ी हुई है, तब आपको बताएंगे कि यूपीए सरकार में बुद्धिजीवियों, मानवाधिकारों और कुछ एनजीओ और सिविल सोसाइटी ग्रुप के लोगों पर नक्सलियों को वैचारिक समर्थन देने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है और बीजेपी के नेता अब उल्टा यूपीए की सरकार को क्यों घेर रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि देश को हथियार उठाने वाले नक्सलवाद से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन अब वक्त है दिमागी नक्सल को पहचानने का और उन्हें आइसोलेट यानी अलग थलग करने का। यह एक ऐसा बयान था जिसका लगभग सभी विपक्षी दलों ने एक एक करके विरोध किया। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने यह कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है, जबकि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो अनुच्छेद 370 का समर्थन करती हैं, इसलिए वो भी दिमागी नक्सल है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दलील यही है कि अगर सरकार के खिलाफ सवाल उठाना है और सवाल उठाने की हिम्मत करना किसी को दिमागी नक्सल बनाता है, तो वो खुद को दिमागी नक्सल घोषित करने के लिए तैयार है। जबकि सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक जो लोग माओवादियों का समर्थन करते हैं, भारतीय संविधान को मानने से इनकार करते हैं, अलगाववाद और अनुच्छेद 370 के समर्थक हैं, भारत को तोड़ने की मानसिकता रखते हैं या सुरक्षा बलों की शहादत पर जश्न मनाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल बताया है। यानी इस पर सरकार की दलील अलग है और विपक्ष की दलील अलग है। लेकिन आज हम आपसे इसके बारे में बात नहीं करने आए हैं। आज हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि जब देश में यूपीए की सरकार थी, एक खास वर्ग के बुद्धिजीवी लोग और सामाजिक कार्यकर्ता नक्सलवाद का समर्थन के लिए आरोपी माने गए थे, तो यूपीए की उस सरकार में भी उनके खिलाफ गिरफ्तारियां हुई थी। इनमें मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर विनायक सेन मई 2007 में छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार हुए। वो माओवादी लीडर नारायण सान्याल के संपर्क में थे, ऐसा आरोप लगा। फिर 2007 में ही महाराष्ट्र में सामाजिक कार्यकर्ता वर्नॉन गोंजाल्वेस को गिरफ्तार किया गया। उन पर यूपीए सरकार में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगा। 8 मई 2007 को अरुण फेरेरा गिरफ्तार हुए, जो मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन उन पर नक्सलियों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का आरोप लगा था। साल 2009 में कोबाट गांधी गिरफ्तार हुए, जो दिल्ली में सीपीआई माओवादी का दफ्तर स्थापित करने में मदद कर रहे थे आरोपों के मुताबिक, जबकि ये पार्टी कई नक्सली हमलों में अलग से इसको आरोपी बनाया गया था। और ये सिलसिला आगे भी जारी रहा, जब 2013 में सुशील कुमार शिंदे भारत के गृह मंत्री थे और उस वक्त गढ़चिरौली पुलिस ने जेएनयू के छात्र हेम मिश्रा और पत्रकार प्रशांत राही को गिरफ्तार किया था। उस वक्त पुलिस का आरोप यह था कि ये दोनों अबू झमाड़ जा रहे थे, जहां वो सीपीआई माओवादी के शीर्ष काडर से मिलने वाले थे। जबकि 2014 में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा को भी गिरफ्तार किया गया था और उन पर भी यही आरोप था कि वो नक्सलियों को मदद दे रहे। इनमें कई मामलों में गिरफ्तार हुए आरोपियों को बाद में अदालतों ने बरी भी किया, लेकिन यूपीए सरकार ने इन बुद्धिजीवियों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर नक्सलियों को समर्थन देने के लिए ही उनको गिरफ्तार किया था और उनके समर्थन पर चिंता भी जताई थी। इनमें पी चिदम्बरम 30 नवंबर की बात है, 30 नवंबर 2008 से 31 जुलाई तक 2012, सो 8 से 12 तक उनका कार्यकाल था भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर। उनके ही गृह मंत्री रहते हुए यूपीए सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन ग्रीन हंट। ये कॉल आउट ऑपरेशन था, सैन्य ऑपरेशन जिसमें सीआरपीएफ की विशेष टुकड़ी, कोबरा, बीएसएफ और राज्यों की स्थानीय पुलिस इकाइयों को बड़े पैमाने पर जंगलों में उतारा गया था और उन्हें नक्सलवाद का खात्मा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। जब पी चिदम्बरम के नेतृत्व में यह सैन्य ऑपरेशन शुरू हुआ, तब बौखलाए नक्सलियों ने सुरक्षा बलों, आम लोगों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। निशाना बनाने के लिए बहुत सारे खूनी हमलों को अंजाम दिया। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा के हमले में हमारे सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। उस वक्त इस हमले से भारत उबरा भी नहीं था कि अगले महीने 28 मई 2010 को पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में नक्सलियों ने पटरियों को बॉम्ब से उड़ा दिया, जिससे मुंबई जाने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 148 यात्रियों की जान इसमें चली गई थी। इन हमलों ने उस वक्त पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चारों तरफ यूपीए सरकार पर सवाल उठने लगे। इन्हीं उठते सवालों के बीच तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने नक्सलवाद को वैचारिक समर्थन जो मिलता है उसको एक बड़ी समस्या बताया था, नक्सलवाद को वैचारिक समर्थन। और यह भी तब हुआ जब वो पहले से ये कह रहे थे कि भारत में कुछ बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स नक्सलियों को आदर्शवादी नजरिए से देखते हैं और उन्हें ये अभी के अभी तुरंत बंद कर देना चाहिए। पी चिदम्बरम ने यह बयान पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में दिया गया था, जिसकी कॉपी अब हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। पीटीआई को दिए इस इंटरव्यू में देखिए, सोर्स जो है इसका पीटीआई है, माओवादी बांग्लादेश म्यांमार, पूरा उनका जो ट्वीट था इंटरव्यू था, शायद नेपाल के रास्ते हथियार हासिल कर रहे हैं। 24 अक्टूबर 2009 को उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में शब्दशः कहा कि जब नक्सली, ये वाला जो पूरा हिस्सा है जिसमें उन्होंने सेकंड पैराग्राफ जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो नक्सली हिंसा कर रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, तब उन्हें किसी तरह के क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में पेश करना भारत के कुछ बुद्धिजीवियों की बड़ी गलती है, रोमांटिसाइजिंग नक्सलिज्म। ये पीटीआई को दिया हुआ उनका इंटरव्यू है, जिसके हवाले से कई सारे मीडिया हाउसेस ने भी एक पूरा आर्टिकल पी चिदम्बरम पर छापा था, जिसमें यह कहा गया था कि वो ऐसे लोगों के बारे में चिंता जाहिर कर रहे हैं जो नक्सलवाद को रोमांटिसाइज करते हैं। यह आरोप लगा जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद इस पर चिंता जता चुके थे। 6 जनवरी 2009 को नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नक्सलवादी हिंसा पर बात की थी और उन्होंने जो कहा था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अब भी नागरिक स्वतंत्रता संगठनों के सदस्यों का समर्थन हासिल करने में कामयाब है, नक्सलियों के मद्देनजर उन्होंने कहा था, हमने भारत सरकार की वेबसाइट पर पीएम आर्काइव में दर्ज भाषणों से ये निकाला है, कोई भी इसे इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आर्काइव्ड भाषणों में से एक में लिखा है, इस भाषण में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शब्दशः कहा कि नक्सलवाद को आज भी समाज के कुछ वर्गों में सिविल सोसाइटी, सिविल लिबर्टी से जुड़े संगठनों से और युवाओं के एक हिस्से से समर्थन मिल रहा है, और ये देखते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार को बहुत सोच समझकर रणनीति बनानी चाहिए। इस बयान में प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ये चिंता जता रहे थे कि आखिर कुछ लोग नक्सलवाद की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं, बुद्धिजीवी विद्वान लोगों का नक्सलियों को समर्थन क्यों मिल रहा है। ये समस्या बाद में इतनी बढ़ी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके खिलाफ एक ऑर्डर भी जारी किया। अब ये एमएचए का ऑर्डर भी हमने ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकाला है। 6 मई 2010 को गृह मंत्रालय का बयान है और उस बयान में उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी संगठन एनजीओस बुद्धिजीवी आम लोग नक्सलियों और माओवादियों की विचारधारा का समर्थन करने से बचे। गृह मंत्रालय का कहना था कि उनके पास ऐसी जानकारी है कि कुछ माओवादी नेता जो है वो एनजीओस और बुद्धिजीवियों से सीधे संपर्क कर रहे हैं, उनसे मदद हासिल कर रहे हैं। आरोप था कि वो इन लोगों के जरिए अपनी विचारधारा फैलाने और अपने आंदोलन को समर्थन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण सरकार ने ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। और ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रतिबंधित संगठन को इस इरादे से समर्थन देता है कि उसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके तो उस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी गृह मंत्रालय का बयान है जो आपको कोई भी जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर और इस तारीख को वहां पर डालेगा 6 मई 2010 तो आपको ये पूरा ऑर्डर जो है वो सामने दिख जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि उस वक्त सरकार सिर्फ नक्सलियों को बुद्धिजीवियों एनजीओ से समर्थन मिलने पर चिंता जता रही थी। 2013 में आईबी की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह दावा हुआ कि यूपीए सरकार ने देशभर में 128 ऐसे संगठनों की बाकायदा पहचान की जिन्हें खुफिया एजेंसियां सीपीआई माओवादी से जुड़े फ्रंट संगठन मानती थी। सरल भाषा में फ्रंट संगठन का मतलब ऐसे संगठन है जिसके बारे में सरकार का दाव है कि वो किसी प्रतिबंधित संगठन के लिए खुले तौर पर या परोक्ष रूप से समर्थन जुटाने का काम करता है। आईबीए की रिपोर्ट के मुताबिक ये संगठन 16 राज्यों में सक्रिय बताए गए थे। छात्र संगठन, मजदूर संगठन, महिला संगठन, किसान संगठन, आदिवासी संगठन, वकीलों के समूह इसमें अलग अलग जो है वो बताए गए। खुद यूपीए की सरकार ने इस रिपोर्ट की बात की और बाद में जब देश में एनडीए की सरकार आई तो नक्सलियों को मिलने वाले इस वैचारिक समर्थन को प्रधानमंत्री मोदी ने अर्बन नक्सल से भी जोड़ा। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सल का मुद्दा उठा रहे हैं तो उन पर देश में जब वो दिमागी नक्सल की चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री तो ये मुद्दा उठाते हुए उन पर देश में अराजकता और हिंसा का माहौल बनाने का आरोप लगा रहे हैं तो विपक्ष इस पर हमलावर है। विपक्ष का कहना यह है कि सरकार सीधे सीधे उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को दिमागी नक्सल कह रही है, यानी जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है या सरकार का विरोध करता है उसको दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। यह बात सिर्फ नक्सल को समर्थन देने वाले बुद्धिजीवियों से नहीं है, हालांकि यहां आपको इन आदिवासी परिवारों और नक्सल हिंसा के पीड़ित परिवारों को भी सुनना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल का समर्थन करने वाले नेताओं को बस्तर आकर देखना चाहिए कि कितने परिवारों ने वहां नक्सली हिंसा को झेला है। सुनिए
1: जी, मेरे पति फोर्स में थे, एस्केप के जवान थे, उसी समय नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर हत्या कर दी पीड़मेर में, सुकमा जिले के पीड़मेर में। हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जो पी चिदम्बरम बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया में मैं नक्सलियों के दिमागी नक्सली दिमागी में समर्थन दे रहे हैं, इसी के विरुद्ध में आए हैं हम लोग। हम लोग अपने पति खोए हैं बस्तर में, तो ऐसे कई बहने हैं जो अपने पति खोए हैं। अभी तो बस्तर में नक्सली मुक्त तो हो गया, लेकिन ऐसे कई मंत्री लोग हैं जो यहाँ दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं कि हम नक्सली समर्थन में अपनाओ कर रहे हैं, इसलिए आए हैं।
2: मेरे को गोली किस लिए मारा गया मेरे को समझ में ही नहीं आया, ना मैं कोई बड़ा बहुत बड़ा नेता, ना बहुत बड़े नौकरी पेशा वाला, ना कुछ नहीं, मैं एक मामूली सा किसान आदमी। तो मुझे उस चीज का आज तक भी है, क्योंकि मैं उतना गोली और पत्थर पटने के बाद आज आधा अधूरा जिंदगी जी रहा हूं, दूसरे के भरोसे चलना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग और कुछ जिम्मेदारी पद में रहे वाले ये कहते हैं कि वो दिमागी नक्सली का ये ऐसा है वैसा है, तो ले दे के कोशिश करके शासन प्रशासन हमारे बस्तर के जनता भी करके उनको नक्सलियों को जंगल से निकाले। अभी किसी किसी के दिमाग में बाकी है, शायद उनके दिमाग से भी इसको निकालना ये जरूरी है।
3: आईडी लगाने के बाद आईडी में पैदल जा रहा था, आईडी में चपेट में आया और ब्लास्ट कर दिए, मेरा एक पैर तो पूरा ही नहीं है, दूसरा पैर भी पूरा गंभीर रूप से मतलब घायल है। इस स्थिति में जैसा तैसा जी रहा हूँ, लेकिन मेरे को आईडी ब्लास्ट करने का कारण क्या है, मैं उनका तो कुछ कर ही नहीं रहा था, फिर भी मेरा नुकसान कर दिया।
0: यहाँ हम आपको एक नई तरह की राजनीति के बारे में भी बताना चाहते हैं जिसे मीमिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी मीम का राजनीति में बदल जाना। कैसे, उसके पीछे इस ग्राफिक्स को देखिए, बहुत दिलचस्प है। जब देश में कॉकरोच वाली टिप्पणी सीजीआई की तरफ से हुई, चाहे उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट वो बताते हो, लेकिन इसी टिप्पणी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो गया। रातों रात लाखों लोग सोशल मीडिया पर इसके साथ जुड़ भी गए। जब E20 पेट्रोल को लेकर विवाद हुआ तो इस मुद्दे पर भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था E20 जनता पार्टी। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान को लेकर इतनी बहस हो रही है तो सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी बनी है, नाम है दिमागी नक्सल जनता पार्टी। रिजर्वेशन के खिलाफ भी बोलने के लिए कई लोग सामने आए थे इस दौरान और उन्होंने रिजर्वेशन जनता पार्टी बनाई थी। आज रात 9 बजे तक इस पार्टी के 5 लाख ये जो दिमागी नक्सल पार्टी हम बता रहे हैं 5 लाख इसके फॉलोअर्स हो गए हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले किसी टिप्पणी पर राजनीतिक बहस होती थी, उसके लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होते थे, राजनीतिक बयानबाजी होती थी, न्यूज चैनल्स पर बहस होती थी, लेकिन अब ऐसे मुद्दे इंटरनेट की बहस का हिस्सा बन जाते हैं और उस बहस में ऐसी पार्टियों का जन्म हो जाता है जो इसी टिप्पणी पर अपने समर्थक बनाती हैं और इंटरनेट पर लोग ऐसे मुद्दों और बयानों पर फिर बढ़ते हैं और चर्चा होती है। सरल भाषा में कहें तो अब मुद्दे समाज से निकलकर सोशल मीडिया की कम्युनिटी का हिस्सा बनने लगे हैं, जहां मीम ऐसे मुद्दों को शक्ल लेकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है और उसके बाद ऐसे मुद्दों पर बहस होती है, ज्यादा व्यापक होने लगती है। कॉकरोच जनता पार्टी, E20 जनता पार्टी बनाने के बाद दिमागी नक्सल जनता पार्टी बनाकर भी ये किया जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि माफिया अतीक अहमद की मौत के 3 साल बाद भी उसके नाम का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती कैसे बन रहा है। ये तस्वीर लखनऊ के सब इंस्पेक्टर विनय पटेल की है, जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से करीब 15 किलोमीटर दूर जानलेवा हमला हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावरों में शामिल कुछ लोगों ने खुद को अतीक अहमद के गैंग से जुड़ा हुआ बताया। अब राजधानी लखनऊ में पुलिस और नगर निगम की टीम पर इस तरह के हमले की शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन हमारे पास मौजूद वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक आरोपी पीछे से सब इंस्पेक्टर विनय पटेल को पकड़ता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है। अब सवाल यही है कि ये योगी की पुलिस है, उनका प्रशासन है और वो भी ऐसे फंस गया। इसी दौरान एक महिला वहां मौजूद दूसरे पुलिस कर्मी पर लोहे की जंजीर से हमला करती दिखाई देती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पुलिस और नगर निगम की पूरी टीम को मौके से पीछे हटना पड़ता है और वहां अचानक से पत्थर चलने लगते हैं। पहले आप पूरा वीडियो देखिए। तो बताया जा रहा है कथित तौर से जो महिला इस वीडियो में लोहे की जंजीर से लेकर दिखाई दे रही है उसका नाम खुशबुन बताया जा रहा है। वीडियो में ये महिला पुलिसकर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाती दिखाई देती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई से बचने के लिए इस महिला ने पुलिसकर्मियों पर झूठे आरोप लगाए। पुलिस के मुताबिक इस तरह के आरोप लगाकर टीम को कार्रवाई से रोकने, मौके से पीछे हटने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई, लेकिन इस पूरे मामले की सबसे बड़ी, सबसे गंभीर कड़ी अतीक अहमद के नाम से जुड़ती है, क्योंकि सवाल सिर्फ पुलिस पर हमले का नहीं है। सवाल यह है कि जिस अतीक अहमद को 2023 में हत्या जिसकी हो चुकी है, उसके नाम का इस्तेमाल आज भी कुछ अपराधी पुलिस और प्रशासन को डराने के लिए कर रहे हैं तो कैसे। ये कहानी लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके से शुरू होती है। इस इलाके में सड़कों के किनारे अवैध तरीके से चल रही दूध की डेयरियों पर और वहां फैली गंदगी को लेकर नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के बाद नगर निगम और पुलिस दोनों की टीम्स कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची। आरोप है कि टीम ने अवैध कब्जे हटाने और नियमों का उल्लंघन कर रखे गए पशुओं को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन भीड़ जुट गई। अब पुलिस के मुताबिक करीब 20 से 25 लोगों ने टीम का विरोध किया और देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई। आरोप है कि भीड़ ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर लाठी डंडों, पत्थरों और दूसरे हथियारों से हमला शुरू किया और सरकारी गाड़ियों पर पथराव किए जाने की बात सामने आई। ये भी आरोप है कि इस हमले के दौरान कुछ लोगों ने अतीक अहमद के गैंग का नाम लेकर पुलिस को धमकाने की कोशिश की। इन आरोपों की खुद पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि भीड़ ने यह कहा कि पुलिस इनके इलाके से वापस चली जाए। यहीं से ये पूरा मामला गंभीर हुआ। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि अतीक अहमद सिर्फ एक अपराधी का नाम नहीं है, दशकों तक उसका नाम प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अपराध, रंगदारी, जमीन पर कब्जे, हिंसा के मामले में जुड़ा रहा। बड़ी बात यह है कि साल 2023 में अतीक अहमद की हत्या के बाद उसकी आपराधिक दुनिया को बड़ा झटका जरूर लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उससे जुड़े हर अपराधी और हर नेटवर्क का उसी दिन अंत हो गया। किसी बड़े अपराधी का खत्म होना, उसके बनाए हुए आपराधिक नेटवर्क का पूरी तरह खत्म हो जाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने अक्सर यही चुनौती होती है, माफिया चला जाता है लेकिन उसके साथ काम कर चुके लोग, उसके संपर्क, उसके नाम का डर कुछ इलाकों में लंबे समय तक बना रहता है। लखनऊ के बुधेश्वर मामले में भी पुलिस इसी एंगल से जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार इस इलाके में कुछ ऐसे लोगों की मौजूदगी की जानकारी मिली है जिनका अतीक अहमद के आपराधिक नेटवर्क से पहले संबंध रहा है। ये भी आरोप सामने आए हैं कि अतीक के नाम का इस्तेमाल कर इस इलाके में सरकारी जमीनों पर कब्जे और लोगों को धमकाने की कोशिश की गई। और इस घटना में भी जब पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो इन लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। इस पूरी घटना की सबसे परेशान करने वाली तस्वीर वही है जो इस वीडियो में दिखाई देती है। एक तरफ नगर निगम की टीम अवैध कब्जे और नियमों के खिलाफ बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने पहुंचती है और दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों को घेरा जाता है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हमला किसने किया, और आपको यह भी बता दें कि इस मामले में अब 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सवाल यह है कि राजधानी लखनऊ में कानून लागू कराने पहुंची सरकारी टीम को इस तरह पीछे हटने के लिए मजबूर अगर किया गया तो फिर पुलिस और प्रशासन की तैयारी क्या थी, और आखिर सरकार, पुलिस, प्रशासन, उनका इकबाल कहां है? और अगर वाकई इस हमले में अतीक अहमद के नाम का इस्तेमाल किया गया है तो सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, और क्या पूरी तैयारी के साथ पुलिस वहां नहीं पहुंची थी? अतीक अहमद मर चुका है लेकिन अगर उसके नाम से आज भी पुलिस को धमकाने की कोशिश हो रही है तो असली चैलेंज यही है। क्या अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म हुआ है या सिर्फ उसका चेहरा बदला है? देखिए ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब हाल ही में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए थे और वो समर्थन भी कई बातें कह रहा है, बहुत संकेत दे रहा है। इस जनाजे की तस्वीरों ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया था कि अतीक अहमद की मौत के बाद भी प्रयागराज में उसके परिवार के लिए समर्थन कितना है, कितनी हमदर्दी है, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा उस वक्त एक तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी जिसमें अतीक अहमद के सबसे बड़े बेटे उमर अहमद के सामने भीड़ हंगामा कर रही थी और उमर ने सिर्फ अपने होठों पर उंगली रखी, भीड़ को शांत कर दिया। तब इस तस्वीर के कई राजनीतिक मायने निकाले गए क्योंकि अतीक अहमद की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं रही, उसने अपराध से राजनीति तक का सफर तय किया था और इसीलिए आज भी एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अतीक अहमद के बाद उसका परिवार उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक के मुताबिक अपना दल कमेरावादी की तरफ से उमर अहमद को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। हालांकि अभी पार्टी ने अपनी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की है लेकिन कुमार अभिषेक को ऐसी खबर मिली है। अपना दल कबेरावादी की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने हाल ही में अतीक अहमद की बहन और अतीक अहमद के बेटे एहजम अहमद से मुलाकात की है और इस बैठक के बाद ऐसी अटकलें हैं कि पार्टी उमर अहमद को चुनाव लड़ने का ऑफर दे सकती है। यह इसलिए भी स्वाभाविक होगा क्योंकि अतीक अहमद के परिवार और अपना दल का रिश्ता नया नहीं है। एक दौर में अतीक अहमद और अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के बीच मजबूत राजनीतिक संबंध रहे हैं। कहा जाता है कि प्रयागराज में एक आंदोलन के दौरान जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल घायल हुए थे तब अतीक अहमद ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने मदद करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद अतीक अहमद का अपना दल से जुड़ना हुआ और बाद में उसे पार्टी में अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी मिली, यानी जिस राजनीतिक रिश्ते की शुरुआत दशकों पहले हुई थी उसके तार आज फिर अतीक के परिवार तक पहुंचते दिखाई दे रहे। यही नहीं, AIMIM यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कहा गया है कि अगर उमर उनकी पार्टी में आता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। यानी एक तरफ उमर अहमद जेल में है, दूसरी तरफ उसके लिए चुनावी संभावनाओं की चर्चा शुरू हो चुकी है, और यही वो चीज है जहां लोकतंत्र, राजनीति, कानून के राज के बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। उमर अहमद के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामला चल रहा है, उसकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसे चुनाव में उतारने की चर्चा जोरों पर है, और इसे देखकर ऐसा भी लगता है कि वक्त शायद खुद को दोहरा रहा है। याद कीजिए साल 1989, अतीक अहमद पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति में आया था। उस समय उसके खिलाफ हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन इसके बावजूद उसे राजनीतिक संरक्षण मिला, अलग अलग दलों के साथ उसके संबंध बने, धीरे धीरे उसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ता गया। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर अपराध के आरोप थे वो राजनीति में आया, राजनीति ने उसे फिर ताकत दी, उस ताकत ने उसके बाहुबल को और मजबूत किया, और अब करीब 4 दशक बाद कहानी का चेहरा बदल गया है। अब अतीक अहमद नहीं है, लेकिन उसका नाम है, उसका परिवार है, उसके समर्थक हैं, उसका बेटा है, उसकी ताकत दिख रही है, राजनीतिक विरासत को लेकर दावे हैं। सबसे अगर आप देखिए तो उसके बेटे के चुनाव लड़ने की चर्चा है, जिससे ये सवाल भी उठ खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उसी पुराने मॉडल की तरफ लौट रही है, जहां बाहुबली पहले राजनीतिक ताकत हासिल करता है, फिर राजनीतिक ताकत उसके प्रभाव को और बढ़ाती है। हालांकि यहां आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी याद रखिए, जो कई बार माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कह चुके हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के चुनावी मॉडल के मुरीद क्यों हुए, और आज दिन भर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। तो ये पूरा मामला ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति ट्रंप के एक पोस्ट से शुरू हुआ। इसमें उन्होंने लिखा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिका के प्रशासन से पूछा कि वो अमेरिका में फोटो आईडी यानी बिना वोटर आई कार्ड आईडी कार्ड आइडेंटिफिकेशन कार्ड के चुनाव कैसे करा सकते हैं।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे आज माफिया अतीक अहमद की मौत को 3 साल बीत चुके हैं।

0: अब इस बयान का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के चुनावी मॉडल की तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि भारत के पिछले लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख मतदाता थे, जिनमें 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट किया और हर मतदाता के पास अपना फोटो वाला पहचान दस्तावेज था। ये लिखते हुए उन्होंने पूछा कि जब भारत में ऐसा हो सकता है तो अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं कर सकता हो सकता। और इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि अब उन्हें भी सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। इस बयान के बाद हमारे देश में राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है, जो विपक्षी दल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं और भारत के मौजूदा चुनावी मॉडल की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर यह लिखना शुरू कर दिया कि अमेरिका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने देश ले जा सकता है और इसके बाद हमारे देश में इस पर खूब राजनीति हुई। लेकिन इस राजनीति में भी अमेरिका ने भारत के चुनावी मॉडल को दुनिया के लिए मिसाल बताना जारी रखा और भारत में अमेरिका के राजदूत हैं सर्गियो गॉर्ड, जो कि ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि अमेरिका को भी भारत की तर्ज पर सख्त वोटर आईडी कानून अपनाना चाहिए। सुनिए।
1: Look, the president was very clear, and what India does, having a voter ID law, is something that we should pass in the United States. You had over 660 million people vote, by the way, less than 1% by mail, so I think it's vitally important. Voter ID is important. It's not a partisan issue, and so the president is absolutely right that the United States should have a voter ID requirement when people show up to vote. Thank you.
0: और अब ये देखिए कि भारत के चुनावी मॉडल में ऐसा क्या है जो अमेरिका के चुनावी मॉडल में नहीं है। भारत में चुनाव को व्यापक रूप में देखा जाता है, यानी जब पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर राज्य अपने हिसाब से चुनाव कराता है। भारत में सभी राज्यों में समान रूप और कानून के मुताबिक चुनाव कराए जाते हैं और इनकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में चुनाव फेडरल स्टेटस के हिसाब से होते हैं, यानी पूरे अमेरिका के चुनाव में कैसे वोट डाले जाएंगे, क्या नियम होंगे, कौन कौन वोट डाल सकेगा, यह फैसला अकेले कोई एक संवैधानिक एजेंसी नहीं करती है। इसकी वजह से हर फेडरल स्टेट के पास यह अधिकार होता है कि वो कैसे चुनाव का संचालन कराए। इसके कारण अमेरिका में वोटर आईडी कार्ड को लेकर हर राज्य में अलग अलग नियम होते हैं। जैसे कुछ राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो या दूसरे पहचान पत्र दिखाकर वोट डाला जा सकता है, तो कुछ राज्यों में दूसरे नियम होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जैसे हर वोटर का अपना वोटर आईडी कार्ड होता है और उस पर उसकी तस्वीर लगी होती है, वैसा अमेरिका में कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं है जो पूरे देश में लागू होता। और यही कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत की तर्ज पर अमेरिका में चुनावी मॉडल तैयार करना चाहते हैं और इसके लिए वो सेव अमेरिका एक्ट लाने की बात कर रहे हैं। अब ये सेव अमेरिका एक्ट क्या है वो समझिए। इसके तहत दो बड़े बदलाव किए जाएंगे। पहला, चुनाव के वक्त खुद को वोटर के रूप में रजिस्टर करते समय अमेरिकी नागरिकता का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा। दूसरा, जब कोई नागरिक वोट देने पोलिंग बूथ पर जाएगा तो उसे अपना फोटो वाला वोटर आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। हालांकि इस कानून को लेकर अमेरिका में बहुत विवाद है। इनमें भी पहला और सबसे बड़ा विवाद तो यही है कि बहुत से अमेरिकी नागरिकों के पास ऐसे दस्तावेज आसानी से उपलब्ध ही नहीं है जिनसे वो अपनी नागरिकता, अपना सिटीजनशिप साबित कर सके। ऐसे में कई लोगों की चिंता यह है कि वोटर आईडी कार्ड बनाते समय उनसे उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है और अमेरिका का मीडिया भी यही बात कहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के सेंटर फॉर डेमोक्रेसी एंड सिविक एंगेजमेंट से जुड़े एक सर्वे के मुताबिक लगभग 9.1% लोग, यानी 2 करोड़ 13 लोग अमेरिका में ऐसे हैं जो खुद को वहां का नागरिक कहते हैं लेकिन उनके पास नागरिकता साबित करने के जरूरी कागज नहीं है। उदाहरण के लिए अमेरिका के कैंसस राज्य ने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का सबूत मांगा था, जिसके बाद वहां कई नागरिक पर्याप्त दस्तावेज पेश ही नहीं कर पाए। दूसरा बड़ा विवाद यह है कि इस नए कानून के तहत वोटर्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। ये देखा जाएगा कि वो अमेरिका का नागरिक है या नहीं, ठीक उसी तरह जैसे भारत में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR की प्रक्रिया होती है और संदिग्ध होने पर वोटर लिस्ट से व्यक्ति का नाम हटा दिया जाता है। अब भारत का ही उदाहरण देकर राष्ट्रपति ट्रंप ये व्यवस्था अपने देश में लाने की वकालत कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि अमेरिका पहला देश है जिसे भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ की है। हाल ही में 32 देशों के 77 प्रतिनिधि भारत से उसकी चुनावी व्यवस्था सीखने आए थे, जिनमें इंडोनेशिया, जॉर्जिया, इजिप्ट, बेल्जियम, मेक्सिको, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका शामिल थे। भारत की चुनावी व्यवस्था की आलोचना हो सकती है और कई बार देश के अंदर भी कई प्रक्रियाओं को लेकर आलोचना होती है, लेकिन आज इस चुनावी मॉडल को लेकर कई सारी बातें पूरे विश्व में कही जा रही हैं, जिसमें अमेरिका से लेकर कई देश यहां से कुछ बिंदुओं पर इसकी खूब प्रशंसा कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में सरकारी नौकरियों का गणित एक बार फिर ऐसा उलझा है कि खुशी और मायूसी एक साथ दो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल है कि 14 परीक्षाएं रद्द होने के बाद भी आखिर आंदोलन क्यों थम नहीं रहा है। एक तरफ पिछले 24 दिनों से ज्यादा वक्त से इंसाफ की उम्मीद में बैठे युवाओं का आंदोलन है, दूसरी तरफ वो युवा हैं जिन्हें कुछ महीने पहले ही सपनों का नियुक्ति पत्र मिला था, लेकिन सरकार के एक झटके वाले फैसले ने उन्हें रातों रात बेरोजगार कर दिया। जिस फैसले को एक पक्ष ऐतिहासिक जीत बता रहा है और ये छात्र आखिरकार जश्न मना रहे हैं, तिरंगा उड़ा रहे हैं और उसकी वजह से आखिरकार उन्होंने अपना ये पूरा आंदोलन खत्म किया, तो इधर दूसरी तरफ ये छात्र सामने आ गए हैं। छात्र नहीं, अब तो नौकरीशुदा लोग हैं ये, जो उसी सचिवालय में नौकरी कर रहे थे और अब गुस्से में बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला हुआ, इससे बच्चे तो खुश हो गए क्योंकि वो टीडीपीएल द्वारा कराए गए सभी एग्जाम्स के सीजीएल के एग्जाम्स बंद करा रहे थे, लेकिन जिन लोगों को इस एग्जाम से नौकरी मिली है और इन एग्जाम्स के निरस्त होने के बाद उनकी नौकरी पर खतरा आ गया है, वो लोग नाराजगी में बाहर निकल गए। तो एक तस्वीर में आप देख रहे हैं, फुल फ्रेम दिखा दीजिए, एक तरफ जश्न है, पटाखे हैं और तिरंगा लहरा रहा है, खुशी है, तो दूसरी तरफ इन लोगों में नाराजगी है जिनकी नौकरियों के रद्द होने का खतरा अब मंडरा रहा है। ये सचिवालय में नौकरी कर रहे थे, अब ये बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं स्टेडियम में चल रहा आंदोलन 25वें दिन भी पूरी तरह से थमा नहीं है। आंदोलन फिलहाल दो स्पष्ट गुटों में बढ़ चुका है। एक तरफ है देवेंद्र नाथ महतो का गुट, जिसने सरकार के 2014 परीक्षाओं के रद्द करने के फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया। मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह पहुंचने पर जू स्पीकर उन्होंने अनशन भी समाप्त कर दिया। छात्रों का ये गुट अब केवल पुरानी जांच पर नहीं बल्कि भविष्य के लिए पेपर लीक मुक्त परीक्षा व्यवस्था की फुल प्रूफ गारंटी की बात कर रहा है। वही माफ कीजिएगा, शायद हमने पहले कह दिया 2014 की परीक्षा, कुल 14 परीक्षाओं को रद्द करने की बात पर जो सहमति सरकार की तरफ से मिली उसके बाद देवेंद्रनाथ महतो ने अपना यह अनशन तोड़ा। कल उन्होंने आज तक पर भी कहा था कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा लेकिन अब मैं अनशन तोड़ रहा हूं। वहीं दूसरे गुट का अनशन अभी भी जारी है। रुपेश पाल, सविता कुमारी अभी भूख हड़ताल पर है। ये गुट जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित आदेश नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। यहीं से इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील और पेचीदा पहलू शुरू होता है। एक तरफ जहां परीक्षा रद्द होने से परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ सीजीएल परीक्षा पास कर चुके 1975 चयनित अभ्यर्थी, उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। कई जो युवा हैं इनमें, उनका कहना है कि वो रेलवे जैसी सुरक्षित और स्थायी नौकरियां छोड़कर झारखंड में सेवा देने आए थे। एक अभ्यर्थी रोशन कुमार ने रोते हुए कहा कि कल तक नौकरी थी, आज वो बेरोजगार है। अचानक नौकरी जाने से कई परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है और वो आज अपना गुस्सा दिखाने के लिए सड़क पर निकले। मंगलवार को जब इन चयनित अभ्यर्थियों को सचिवालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया तो वो बारिश के बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। देखिए,
2: टीटी के पद पर मैं कार्यरत था, वहां से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ और यहाँ एक क्षण में हम लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया गया।
3: तो उधर भी नौकरी गया।
2: अब उधर क्या प्रोसेस होगा सर, टेक्निकल लेके आया है तो बहुत, इसमें 500 से 700 कैंडिडेट्स हैं जो पहले जॉब में थे सर।
4: पूर्ण रूप से निराश है और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए और अभी समझिए कि बच्चा और अभी आगे का और स्थिति कितना होगा।
0: आए दिन अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आए दिन स्कूलों के बच्चे अव्यवस्था, शिक्षकों की कमी, खराब मिड डे मील के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सिस्टम सुधरता नहीं है। ताजा तस्वीर बिहार के नालंदा से देखिए, जहां बच्चों को मिड डे मील में नमक की जगह सर्फ यानी वॉशिंग पाउडर परोस दिया गया। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या सीधे सीधे मासूमों की जिंदगी के साथ खुला खिलवाड़ है? जरा सोचिए, शाम 6 बजे, रात 9 बजे, हर रोज हर जगह मिड डे मील की खबर हम दिखा रहे हैं, लेकिन इन सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, मंत्रियों किसी के कान पर जू नहीं रही। जिस मिड डे मील योजना का मकसद था देश के नौनिहालों को पोषण देना, वहां उनकी थाली में नमक की जगह सर्फ यानी वॉशिंग पाउडर परोसकर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत और क्या हो सकती है? यह घटना नूरसराय के परासी मिडिल स्कूल की है। अब आप अस्पताल की अफरा तफरी और उन मासूमों के दर्द को देखिए जिन्होंने सब्जी में नमक कम होने की शिकायत की थी। फिर क्या हुआ? रसोई और स्कूल प्रबंधन की बेवकूफी, लापरवाही, बदमाशी, जो इसे कह लीजिए, बच्चों की थाली में डिटर्जेंट पाउडर परोस दिया। 10 से 15 मासूम बच्चे पेट दर्द, उल्टी से तड़प उठे, उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। क्या गजब की लापरवाही है! आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? उनको दिखा ही नहीं कि नमक क्या है, सर्फ क्या है, और बच्चों की सेहत का ठेका लिया जा रहा है, नौनिहालों को पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। गनीमत यह रही कि समय रहते बच्चों को अस्पताल तो पहुंचाया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल प्रशासन ने बच्चों के सुरक्षित होने का दावा किया है। घटना की सूचना मिलने पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार अस्पताल पहुंचे, हालात का जायजा लिया, साफ शब्दों में चेतावनी दी कि इस आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अब इनकी चेतावनी मंत्री जी की अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी लापरवाही कब सुधरेगी? यह व्यवस्था क्या स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाने से पहले उसकी गुणवत्ता जांचने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या बच्चों को नमक की जगह कुछ और डाल दिया जाए, खिला दिया जाए, कोई केमिकल थाली में परोस दिया जाए, सर्फ डाल दिया जाए? किसी की जवाबदेही नहीं है। यह समझना जरूरी है कि मिड डे मील में खाने की गुणवत्ता, साफ सफाई को लेकर सख्त निर्देश है और इसका ध्यान रखना जरूरी है। अब समय आ चुका है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है इस पर नजर जाए। प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के नियमों के तहत बच्चों की थाली में खाना परोसने से पहले उसकी गुणवत्ता जांचना अनिवार्य है। नियम साफ कहता है कि भोजन बच्चों को देने से पहले स्कूल के कम एक शिक्षक और 2 से 3 जिम्मेदार लोग द्वारा खाना टेस्ट किया जाना चाहिए। यहां तक कि शाम तक खाने का सैंपल भी रखा जाता है ताकि किसी तरह की समस्या होने पर उसकी जांच की जा सके। सवाल यह है कि अगर नियम के मुताबिक खाना चखा गया होता तो यह वॉशिंग पाउडर जो डल गया था उनसे जरा इनका भी तो मिजाज संभल जाता। देखिए क्या हुआ है।
3: लेकिन कुछ बच्चे को लगा कि नीमक कम है ना, तो उसने बोला नीमक दीजिए और 2 डिब्बा रखा हुआ, तो गलती से नमक के बदले वो सरफ वाला डिब्बा परस दिया और एक आध दर्जन बच्चा आ लिया और वही उल्टी होने लगा, तो इमिडिएटली हम यहाँ लेकर आए हैं।
5: क्या हुआ था खाने में?
6: खाना में सरफ मिला हुआ था।
5: कौन स्कूल का मामला है?
6: मिडिल स्कूल पड़ासी।
5: अच्छा, कौन थाना पड़ता है?
6: नूरसराय।
5: तो कितने बच्चे बीमार हुए हैं?
6: कम से कम तो 10-15 बच्चा।
0: और बात पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध की, जो कम होने के बजाय बढ़ रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच ड्रोन वॉर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रशिया पर करीब 800 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है। हम आपको रशिया यूक्रेन युद्ध की सबसे भयावह तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूक्रेन ने मॉस्को समेत, और सोचिए मॉस्को पर यह हमला है, मॉस्को समेत रशिया के कई ठिकानों पर 800 ड्रोन से हमले किए हैं। और उसके रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 4.5 साल से चल रहे इस युद्ध में यह दूसरी बार है जब यूक्रेन ने इतने बड़े पैमाने पर आत्मघाती ड्रोन से बॉम्ब बरसाए हैं। रशिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में ही करीब 791 यूक्रेनी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, जिसमें करीब 600 ड्रोन्स का टारगेट मॉस्को था। एयर डिफेंस सिस्टम 180 ड्रोन्स को मार गिराया है। इस हमले में जो ड्रोन कामयाब रहे उन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। इस तबाही ने जनवरी 2025 में हुए यूक्रेन के हमलों की याद ताजा कर दी है। 13 और 14 जनवरी 2025 की रात को भी कुछ ऐसा ही हमला हुआ था। उस हमले में यूक्रेन ने ड्रोन के साथ साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया था, रशिया के काफी अंदर जाकर हमला किया था। अब इस बार जो हमला हुआ है उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन ड्रोन्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए तबाही ज्यादा भयानक रही। देखिए,

0: यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने मॉस्को के आसपास भारी तबाही मचाई है। हम आपको मैप पे वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर हमले हुए। इन हमलों को रशिया की उस स्ट्रैटेजी का जवाब माना गया है जिसमें वो यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए उनकी राजधानी कीव पर हमले कर रहा था। ठीक वैसे ही अब यूक्रेन के टारगेट पर रशिया की राजधानी मॉस्को, उसके आसपास का क्षेत्र है। मॉस्को और उसके आसपास यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हमलों का मकसद रशिया के लोगों में दहशत फैलाने का है, ताकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति वार्ता की टेबल आने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन अभी तक पुतिन की ओर से इस तरह का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। अब यूक्रेन के टारगेट पर रशिया के सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज है। ताजा हमलों में इसके कुछ जो वेयर हाउस है जहां पर सामान रखा जाता है उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उनकी तस्वीरें इस नुकसान का सबूत है। यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज के वेयर हाउसेस को रशिया की सेना की सप्लाई चेन का हिस्सा माना है। उनका कहना है कि इन वेयर हाउसेस का इस्तेमाल रशिया की सेना हथियार छिपाने, आत्मघाती ड्रोन्स बनाने में कर रही है। इसी दौरान रशिया ने यूक्रेन के खार्कीव पर मिसाइल अटैक किए हैं जिसमें 10 लोग मारे गए, घरों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस हमले से जुड़ी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिससे हमले के बाद राहत और बचाव का काम चल रहा है। वो अपनी सेक्स पोस्ट में खार्कीव पर हुए हमले का बदला लेने की बात कह रहे हैं। यूक्रेन द्वारा रशिया पर किए गए ड्रोन अटैक ने ब्रिटेन को फंसा दिया। रशिया ने दावा किया है कि यूक्रेन के हमलों में जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ब्रिटिश कंपनीज ने बनाया है। रशिया ने धमकी दी है कि ब्रिटेन को इस गलती के गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। हाल ही में ब्रिटिश अखबार द संडे टाइम्स ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि यूक्रेन ने रशिया पर हमले करने के लिए जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है वो दो ब्रिटिश कंपनियों ने बनाया था। यूके के रशिया के दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि लंदन जानबूझकर यूक्रेन संकट को और भड़का रहा है और यूक्रेन के जरिए वो रशिया को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस पोस्ट के जवाब में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को हर कीमत पर मदद पहुंचाने की बात की, यानी यूक्रेन को वो आत्मघाती ड्रोन्स मिलते रहेंगे जिन्होंने रशिया में भारी तबाही मचाई। और अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें रशिया यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। संकेत तो ये भी मिल रहे हैं कि अब अमेरिका और ईरान एक बार फिर से युद्ध के मैदान में उतर सकते हैं। इन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की ऑफिशियल डेडलाइन खत्म हो चुकी है। आपको याद होगा 8 अप्रैल को जब युद्ध विराम की घोषणा की गई थी तब दोनों देशों के बीच एक एमओयू साइन किया गया था। इसमें 60 दिनों तक युद्ध रोकने की बात की गई थी। तय हुआ था कि दोनों देश आपसी मसले को बातचीत से सुलझाएंगे, लेकिन 60 दिनों की ये जो डेडलाइन है वो अब खत्म हो चुकी है। अब अमेरिका और ईरान कभी भी एक दूसरे के ठिकानों पर बड़े हमले कर सकते हैं। 60 दिन के ऑफिशियल युद्ध विराम के बीच दोनों देशों को युद्ध रोककर स्थायी शांति और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करनी थी, हॉर्मूज का मामला सुलझाने की पहल करनी थी, लेकिन इन सब के बावजूद एक भी मुद्दा हल नहीं हुआ। गनीमत है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अभी तक दोनों देशों ने हमले नहीं किए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल ईरान को बातचीत का मौका देना चाहते हैं और पहला हमला करने के बजाय हमले का जवाब देना पसंद करते हैं। न्यूज वेब पोर्टल एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि फिलहाल ईरान को लेकर अमेरिका पहले के मुकाबले हल्का रुख अपनाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलहाल अमेरिका ईरान को तीन तरीकों से घेरने की कोशिश में है, जिसमें पहला है आर्थिक दबाव बनाना जिसमें वो ईरान की कमाई रोकेगा, अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है। दूसरा है घेराबंदी जिसे अमेरिकी नौसेना बखूबी अंजाम दे रही है। तीसरा है बातचीत के रास्ते खुले रखना ताकि ईरान खुद या दूसरे देशों के जरिए समझौते की टेबल पर आ जाए। और अब अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी। ये खबर आधुनिक होते समाज की उस काली सच्चाई को भी दिखाती है जहां अब संतान के पास अपने ही माता पिता की देखरेख करना तो दूर, उनके अंतिम संस्कार के लिए वक्त नहीं है। बताइए अंजना। बिल्कुल अंजना, जिस घर से कभी संगीत की गूंज सुनाई देती थी वहां 5 दिनों तक एक लाश सड़ती रही और कलयुगी बेटों का जवाब था कि अभी उन्हें फुर्सत नहीं है। ये घटना राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके की है जहां एक बुजुर्ग संगीतकार रवि डे गोविंदपुरी में अकेले किराए के मकान में रहते थे। उनका शव इस घर में 5 दिनों तक सड़ता रहा। हालत ये हो चुकी थी कि शरीर में कीड़े पड़ गए। घर से उठती भयानक बदबू से पड़ोसियों को जानकारी हुई, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो बाथरूम के पास रवि डे का शव पड़ा था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जब पुलिस ने उनके दोनों बेटों को पिता की मौत की खबर दी तो उन्होंने कहा कि अभी आने की फुर्सत नहीं है। हालांकि पुलिस की कड़ी समझाइश के बाद वो दो दिन बाद एम्स पहुंचे और शव को लेकर चले गए।
1: दिखा देंगे, आप देख सकते हैं।
2: फिर बदबू आने लगी, तो लोग यहाँ से जो ऊपर ही रहते हैं इसमें, उसने बोला बदबू सी आ रही है। फिर उन्होंने पुलिस को फोन करा, फिर देखा अंकल जी बाथरूम में गिरे पड़े हुए थे, हार्ट अटैक पड़ा, क्या हुआ क्या नहीं भगवान।
0: अब जब अपनों से उम्मीदें टूट जाती हैं, तब कानून को डंडा चलाना पड़ता है। देश के कुछ राज्यों ने ऐसी संतानों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। देश में सबसे पहले असम सरकार ने 2017 में प्रणाम अधिनियम लागू किया था। इसके तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी करता है तो उसके मूल वेतन से 10% कटौती कर सीधे माता पिता के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
3: पहले हमने असम में निर्णय लिया था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना पिता माता का देखभाल नहीं करेगा तब हम तनख्वाह से 10-15% डिडक्ट करके पिता माता के अकाउंट में भेजूंगा। ये स्कीम काफी सक्सेस रहा। आज पिता माता का व्यवस्था, पिता माता का ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसा कंप्लेन घट गया।
0: इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने मार्च 2026 में ऐतिहासिक विधेयक पारित किया। इसके दायरे में सिर्फ सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी ही नहीं बल्कि विधायक और पार्षद जैसे जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। इसके तहत माता पिता की उपेक्षा करने पर उनके वेतन का 15% या अधिकतम 10,000 रुपए काटकर सीधे माता पिता के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। सवाल यह है कि कानून वेतन से पैसे काट सकता है, सजा दे सकता है, लेकिन समाज की इस बिगड़ती मानसिकता का इलाज कौन करेगा? क्या तरक्की की इस अंधी दौड़ में समाज ने इंसानियत को बिल्कुल भुला दिया है?
4: बिल्कुल अंजना 2.0, ये खबर वाकई सोचने पर मजबूर करती है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: मैं करता हूं ना,
8: मैं करूंगा।
9: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
7: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
9: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे डाइनिंग एंड मच मोर।
7: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB, दोनों ही चैंपियन है।
9: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
2: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
3: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
2: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
3: सुपर स्ट्रॉन्ग
2: और मॉइस्चर प्रूफ।
4: वारंटी
2: 15 साल की।
3: कदम
2: सर प्लीज
3: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
5: क्रॉसबॉन्ड HGMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।

0: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
1: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
2: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इन एसोसिएशन विद हिंट बड़े आराम से
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: इन एसोसिएशन विद हिंट बड़े आराम से
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबां केसरी।
5: और जेएनयू में कार्यक्रम हुआ था जहां जिन लोगों ने हमला किया था स्वागत की होता थी। चिदंबरम साहब आप पेश के अप्रीम मक्की है रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई एडवोकेट है, कानून समझते हैं, आप संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा आते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? तो सीधा मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है उसी का चेहरा बने हैं पीटर चिदंबरम।
6: पुली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर जो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इंसान की जुबान सुधर जाए तो उसका वक्त सुधरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। नमस्कार।
3: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बीजेपी की नवीन टीम के अगले चुनावों पर नजर। तावड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पुनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की भी चर्चा। छात्रों की पिटाई को लेकर राहुल का फिर केंद्र पर वार, कहा असत्य और हिंसा मोदी सरकार का मूल मंत्र। पैलेट गन को लेकर भी फिर उठाए सवाल। आप नेता सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी का एक्शन। भड़के केजरीवाल, पूछा आखिर कब तक चलती रहेगी बीजेपी की तानाशाही। बिहार के नालंदा में मिड डे मील खाने से करीब 40 छात्राएं बीमार। नमक की जगह सब्जी में डाल दिया गया वॉशिंग पाउडर। नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी मिडिल स्कूल की घटना। और ट्रंप ने हॉर्मुज को बताया अमेरिका का नया इलाका। मैप दिखाकर किया दावा, कहा ईरान के साथ नहीं हो रही है कोई भी बातचीत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में बात उत्तर प्रदेश की। राजधानी लखनऊ में कैसे योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर ब्रिगेड पर लोगों ने हमला बोल दिया। जी हां, लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के खेड़ा बुद्धेश्वर इलाके में अतिक्रमण, गंदगी, अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान चलाया तो लोगों ने नगर निगम की टीम के साथ साथ पुलिस को भी न सिर्फ पीटा बल्कि लहू लुहान कर दिया। अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम को घेर कर उन पर लाठी, डंडों, लोहे की रॉड, लोहे की जंजीर से हमला किया गया। पहले तो पुलिस घर कर पिट गई, लेकिन अब मामला और हमला करने वालों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। हमलावरों का अतीक अहमद कनेक्शन भी सामने आया है, तो आइए हम आपको दिखाएं लखनऊ में योगी की अतिक्रमण हटाने वाली फोर्स पर सबसे बड़ा हमला।
1: योगी की अतिक्रमण फोर्स पर हमला, पुलिस की गर्दन दबोची, लाठी, डंडों, लोहे की रॉड, लोहे की जंजीर से पुलिस वालों को पीटा। देरी वाले गुंडों का आतंक, योगी की अतिक्रमण फोर्स पर टूटा कहर। लखनऊ में अवैध डेयरियों पर एक्शन, हमला करने वालों की धरपकड़। पुलिस और नगर निगम पर हमले का अतीक अहमद कनेक्शन। ये तस्वीर गवाही है इस बात की कि लखनऊ से लेकर समूची यूपी पुलिस तक और उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेने वाली सीएम योगी की फोर्स पर ऐसा हमला शायद ही हुआ हो। माफियाओं का एनकाउंटर करते हुए, गुंडों के खिलाफ ऑपरेशन लगड़ा चलाते हुए आपने यूपी पुलिस की तस्वीरें जरूर देखी होंगी, लेकिन कैसे एक गुंडा पुलिस वाले की गर्दन दबोचकर उसे खदेड़ रहा है, उसे पीट रहा है, ये पहली बार देखा होगा। और अब आगे देखिए, आपको एक महिला भी नजर आएगी, इसके हाथ में लोहे की जंजीर है। जब नगर निगम की टीम और पुलिस वालों को बचाने की कोशिश की जाती है तो ये महिला जंजीर घुमाकर सबको परे कर देती है। पुलिस वाले पर हमले की ये खौफनाक तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां से पूरी सरकार चलती है, अफसरों की पूरी फौज रहती है। लेकिन उसी लखनऊ में जब नगर निगम की टीम पुलिस वालों के साथ अतिक्रमण, गंदगी और अवैध रूप से चल रही डेयरियों के खिलाफ एक्शन लेने पहुंचती है तो डेयरी वाले गुंडे पुलिस की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। धारदार हथियार से पुलिस टीम पर हमला होता है, पुलिस की गाड़ियों पर अटैक किया जाता है और जब एक दरोगा वहां मौजूद भीड़ के बीच फंस जाता है तो उसकी जान लेने की कोशिश की जाती है। वहां मौजूद महिला दरोगा के सिर पर जंजीर से हमला करती है, चीख चिल्लाकर सबको धमकाती है। पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमले के बाद पुलिस का एक्शन शुरू, अवैध डेयरियों पर कार्रवाई। लखनऊ में डेयरी वाले माफियाओं से कम नहीं। क्या डेयरी माफियाओं पर चलेगा योगी का बुलडोजर? लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर इलाके में पहले पुलिस और नगर निगम की टीम पिट गई, लेकिन उसके बाद अब पूरी फोर्स एक्शन में आ चुकी है।
2: ये कार्रवाई अवैध डेयरी के खिलाफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से पुलिस जो है वो मौजूद है, साथ ही साथ नगर निगम के जो अधिकारी मौजूद है और जो लगातार पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ जो डेयरिया उन पर कार्रवाई हो रही है। और ऐसे में ये सभी जो देख सकते हैं, ये जो आप कार्रवाई है ये के खिलाफ जिस तरीके से यहाँ पर उठाया गया था उसमें की जा रही है और सभी जो आरोपी हैं वो इस दिशा में, ये घर जो है आप पाएंगे, इधर ये सारे घर हैं जहाँ पर ये अवैध डेयरिया चल रही थी और इन्हीं डेयरियों में वो सभी संघ जो है वो मौजूद थे, रहते थे। और इसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है जिसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस के जितने भी जवान हैं वो नगर निगम के जवान वो सभी मौजूद हैं और ये कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि कई थानों की पोस्ट को मौके पर बुलाया गया है।
3: कल इन्होंने जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी पुलिस के जवानों पे और पुलिस के एक इंस्पेक्टर पे कार्रवाई की है, मारा है, गला दबाया है, इनका गुस्सा देखिए आप, जो आपकी सुरक्षा में रहते हैं उन्हीं का आप गला दबा रहे हैं। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जितनी मतलब कानूनी कानून के दायरे में रह करके सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
1: लखनऊ के पारा बुद्धेश्वर इलाके में जिस जगह पुलिस और नगर निगम की टीम पर जानलेवा हमला हुआ उसे गदग्याना भी कहा जाता है। यहां अवैध डेयरी चलाने वाले सार्वजनिक नालियों और सड़कों पर गोबर डालकर गंदगी फैलाते हैं और गुंडागर्दी भी करते हैं। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस पर हमला करने वालों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है।
2: पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी जो पुलिस है वो पहुंची हुई है। देख सकते आप एसीपी है जो काकोरी के वो पहुंचे हुए हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है। सर यहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई चल रही है क्योंकि आप लोग सभी पहुंचे हुए हैं?
4: यहाँ पे नगर निगम और पुलिस के दोनों की संयुक्त टीमों के द्वारा यहाँ अभियान चलाया जा रहा है और जो भी अवैध संचालक है डेयरी उद्योग संबंधी उन सब की खिलाफ कार्रवाई।
2: जी जी, अभी कितने आरोपी सर पकड़े गए, कितने फरार हैं इसमें?
4: 16 की गिरफ्तारी हो गई है, 5 लोग हिरासत में जा गया, आज गिरफ्तार किया गया,
2: बाकी आगे कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए जो अधिकारी है वो भी मौके मौजूद, पुलिस की फोर्स मौजूद है, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। जो आरोपी फरार है उनके खिलाफ टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि लगातार ही जो रेड है अलग अलग इलाकों में मारी जा रही है, कहाँ पर वो फरार है आखिर, क्योंकि जिस तरीके से पूरा पूरा पुलिस पर अटैक हुआ उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है।
1: पुलिस टीम मौके पर मुस्तैदी से जमी है, फिर किसी तरह का उपद्रव ना हो इसकी पूरी तैयारी की गई है। जानकारी ये भी है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो सकता है।
3: गलत कामों पे तुरंत कार्रवाई होगी और ये भूल गए हैं, ये सपा सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये महाराज जी की सरकार है। आप अगर गलत है तो गलत है।
1: अब सवाल ये भी है कि क्या ये सब अचानक हुआ या फिर इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी? क्या पहले ही हथियार जुटाए गए थे और इसी प्लानिंग के तहत पुलिस और नगर निगम की टीम को टारगेट किया गया? क्योंकि इस केस की जांच के बीच एक और बड़ी बात सामने आई है। पता चला है कि कुछ हमलावर अतीक अहमद के गुर्गों से सीधे संपर्क में थे। हालांकि इस कनेक्शन की पुलिस अभी जाँच कर रही है, पूरे मामले की एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश में लगी है।
5: पुलिस ने जांच में ये भी पाया है कि इन लोगों के तार अतीक अहमद के गिरोह से भी जुड़े हैं। 2-3 जिलों के संगठित लोग वहां अवैध डेयरी का संचालन कर रहे थे, कुछ नाम समाजवादी पार्टी से भी जुड़े बताए जाते हैं।
6: लखनऊ की घटना जहां अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम और पुलिस के दल पे पथराव किया गया, उनके साथ झगड़ा किया गया, बहुत से फोटो बहुत सी वीडियो वायरल है, और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं जहां लॉकअप में आम आदमी की भी मौत हुई है। तो उत्तर प्रदेश में एक अजीब सा माहौल है जहां ना पुलिस सुरक्षित है, ना लोग सुरक्षित है, ना पुलिस से लोग सुरक्षित है।
1: भले ही इस मामले में सियासत शुरू हो गई हो लेकिन पुलिस और प्रशासन हमले के आरोपियों से बेहद सख्ती से निपटने की तैयारी में है। आरोपियों की धरपकड़ और अवैध डेयरियों पर एक्शन के साथ इसकी शुरुआत भी हो गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस जेंजी पर है। योगी जहां जाते हैं युवा पीढ़ी जेंजी और उनके लिए योजनाओं की बात करते हैं। हम आपको ये बता दें कि जेंजी आंदोलन के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। योगी आदित्यनाथ की चुनावी डगर आसान बिल्कुल नहीं है क्योंकि उनकी राह में फूल से अधिक पत्थर हैं। 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर है और इस लहर से निपटना योगी आदित्यनाथ को है, तो रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर युवाओं को और युवाओं की नाराजगी को दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए के पास बहुत कम समय बचा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में अपना ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड जेन जी और युवाओं के सामने रख रहे हैं। देखिए,
1: दिल्ली के जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। 36 दिन के आंदोलन से न सिर्फ शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी की सारी मांगे भी माननी पड़ी। इसी तरह रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 24 दिन तक चले छात्र आंदोलन ने हेमंत सोरेन सरकार को झुका दिया। छात्रों की एक दो मांगों को छोड़कर सरकार को बाकी की मांगे माननी पड़ी। पटना के गर्दनी बाग में तो गजब हो गया। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी TRE-4 का विज्ञापन जारी करने के लिए प्रदर्शन शुरू होता है। 5 घंटे के भीतर BPSC आवेदन का विज्ञापन जारी कर देता है। जेन जी के यही तेवर अब सरकारों के लिए चैलेंज बन रहे हैं। जंतर मंतर के आंदोलन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माइलेज लेने की कोशिश की और अखिलेश यादव ने यूपी के मुद्दों को जंतर मंतर से लेकर संसद तक सामने रखा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा और अब सीएम योगी जहां भी बोलते हैं उनके भाषणों में जेन जी का जिक्र जरूर आता है।
7: जब युवा,
1: आपको बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर में आयोजित पहलवानों का दंगल देखने पहुंचे तो वहां भी जेन जी यानी युवाओं को लेकर विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला।
7: उस समय की सरकारों के एजेंडे में खेल नहीं था, युवा नहीं था। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था। ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं आपके हितों के लिए। जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति। सबसे बड़ा दुश्मन है युवा शक्ति की माफिया प्रवृत्ति। वह शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो या फिर पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो या किसी भी फील्ड का माफिया, अगर वह माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी।
1: क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ा मुद्दा युवा वोटर बनकर उभरा है। ऐसा क्यों, इसे आप उत्तर प्रदेश में युवा वोटरों के आंकड़ों से समझिए। यूपी में कुल वोटर्स करीब 13 करोड़ हैं। इनमें जेन जी यानी 18 से 27 साल के वोटर्स 2.07 करोड़ हैं, यानी लगभग 15%। यूपी में जिन सीटों पर जेन जी वोटर्स का असर है वो यूपी विधानसभा की 403 में से लगभग 80 से 120 सीटें हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जेन जी को समझा रहे हैं कि यूपी सरकार जल्द नई युवा नीति लेकर आ रही है। इसके तहत युवाओं के लिए कई आयोजन और कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
7: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है हर जिले में एक एम्प्लॉयमेंट जोन हम बना रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जोन का मतलब स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन। एक छत के नीचे नौजवान की स्किलिंग भी होगी, उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी माफिया, वह नकल माफिया हो या किसी भी फील्ड का शिक्षा माफिया हो, अगर उसने किसी युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करते हुए हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अभ्युदय कोचिंग को हर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचाया जाएगा। इसकी सुविधा फिजिकल और वर्चुअल दोनों माध्यमों से मिलेगी। प्रदेश के हर जिले में स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन बनाया जा रहा है। यहां एक ही छत के नीचे युवाओं की स्किलिंग के साथ रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। खेल के किसी भी क्षेत्र में निजी क्षेत्र सहयोग करेगा तो राज्य सरकार की खेल नीति के तहत उसे पूरा सहयोग दिया जाएगा।
8: पुलिस भी खराब कर दी उन्होंने, पुलिस इतनी खराब कर दी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और पुलिस इतनी खराब है अगर आप थाने गए तो आपकी तरफ देख करके सबसे पहले जेब देखेंगे जेब में क्या है। और यही हाल तहसील का हो गया है, पुलिस केवल पैसे देख रही है। और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम, एक ही कानून चल रहा है यहां पर कि हथेली गरम पुलिस नरम हो जा रही है।
1: सीएम योगी माफियाओं की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और यूपी पुलिस को लेकर तगड़ा प्रहार किया है।
7: शीघ्रम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं, हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है।
9: समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे।
1: चुनाव में वक्त कम है लिहाजा योगी का मिशन जेन जी फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। कई मोर्चों पर युवाओं को साधने की कोशिशें जारी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक नई युवा नीति का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। योगी के मंत्री को अपने अपने क्षेत्र में जेन जी के साथ चौपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन की तरफ से स्कूल कॉलेजों में छात्रों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। हर विधानसभा सीट पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं से संवाद करेगी स्पेशल टीम। आला अफसरों को छात्रों से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान निकालने का आदेश। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब करीब 5 महीने का वक्त रह गया है, इसलिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इस पीढ़ी को क्या चीज प्रेरित करती है और उन तक कैसे पहुंच बनाई जाए। आज तक ब्यूरो।
0: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी कुछ समय पहले बीजेपी सत्येंद्र जैन जेल में थे लेकिन इस समय फिर से एक बार गिरफ्तार किया गया है और जेल में काफी समय तक सत्येंद्र जैन रहे थे। केस फर्जी सिद्ध हुआ था बाद में और ये कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये बीजेपी की तानाशाही है जिससे मन करता है झूठे आरोप में जेल में डाल दिया जाता है और इनका झूठ एक बार फिर से देश के सामने आएगा। तो बीजेपी पर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है, पूरी आम आदमी पार्टी और देश की जनता सत्येंद्र जैन के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल का भी ये बयान आया है, केजरीवाल ने भी इस तरह की बात कही है। तो आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया है। पहले भी वो दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में इस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया है, पहले भी काफी समय जेल में रहे थे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आप नेता सत्येंद्र जैन को फिर से गिरफ्तार किया गया है। ये दूसरी बार सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए हैं, आपको याद होगा जेल में उनके रहने पर भी काफी विवाद हुआ था, कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी और उनके कमरे के वीडियोज भी जारी हुए थे जिस पर काफी हंगामा हुआ था, ऐशो आराम करते हुए वीडियोस दिखाए गए थे। और अब हम आपको दिखाते हैं बिहार के नालंदा जिले के नूर सराय थाना के पारसी मिडिल स्कूल की खबर। मिड डे मील का खाना खाने से यहां करीब 40 छात्राएं बीमार हो गई हैं। हम आपको ये बता दें कि खाने में नमक कम था, जब बच्चों ने नमक मांगा तो नमक की जगह सर्फ यानी कि उन्हें डिटर्जेंट पाउडर दे दिया गया, जिसके बाद छात्राओं के पेट में दर्द होना शुरू हुआ, उन्हें उल्टी होनी शुरू हो गई। आनन फानन में इलाज के लिए बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। अब स्कूल प्रशासन का कहना है कि गलती से नमक की जगह हमने सर्फ दे दिया। अस्पताल में बच्चों को देखने पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन संतोष की बात यहाँ पर यह है कि सभी बच्चियों की तबीयत ठीक है, कोई गंभीर बीमार नहीं है, लेकिन 40 छात्राओं को भर्ती कराया गया है। ये रोती हुई बच्ची, बेड पर लेटी हुई बच्चियां आपको दिख रही हैं।
10: क्या हुआ था खाने में?
11: खाना में सिर्फ मिला हुआ था।
10: कौन स्कूल का मामला है?
11: मिडिल स्कूल पड़ासी।
10: अच्छा, कौन थाना पड़ता है?
11: नूरसराय।
10: तो कितने बच्चे बीमार हुए हैं?
11: कम से कम तो 10-15 बच्चा।
12: अच्छा। कुछ नहीं था, क्या था सर कि बच्चा खा लिया, लेकिन कुछ बच्चे को लगा कि नमक कम है ना, तो उसने बोला नमक दीजिए, और 2 डिब्बा रखा हुआ, तो गलती से नमक के बदले वो सरफ वाला डिब्बा परस दिया, और एक आध दर्जन बच्चा खा लिया, और वही उल्टी होने लगा, तो इमिडिएटली हम यहाँ लेकर आए हैं।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं वंदे मातरम गीत पर राजनीतिक बंटवारा। जी हां, राजनीतिक गलियारों में वंदे मातरम गीत नहीं, वंदे मातरम का मामला गूंज रहा है। वंदे मातरम के 2 स्टेंजा को लेकर कांग्रेस पर तुष्टिकरण का बीजेपी का आरोप बनाम बीजेपी पर नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि वो वंदे मातरम के सभी स्टेंजा नहीं गाएगी, जबकि संसद से कानून और केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार संपूर्ण वंदे मातरम को सम्मान देना गाना जरूरी है। तो आइए दिखाएं आपको कैसे वंदे मातरम पर राजनीतिक भिड़ंत अब शुरू हो गई है।
1: वंदे मातरम पर सियासत का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोवा विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए गए। यही नहीं, सारे नेता इसके बाद चलते बने। इससे पहले 15 अगस्त को एक वीडियो सामने आया, जिसमें कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में वंदे मातरम के सभी 6 पद गाए गए थे। लेकिन उसी दौरान सोनिया गांधी कुछ निर्देश देती नजर आई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी ने बीच में ही रुकने के लिए इशारा किया था। हालांकि कांग्रेस ने ये कहते हुए बचाव किया कि खड़गे काफी समय से खड़े थे, जिनके लिए कुर्सी मंगाने के लिए सोनिया गांधी इशारा कर रही थी। लेकिन इसके बाद गोवा में कांग्रेस के ही कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए जाने को बीजेपी राष्ट्रगीत का अपमान बता रही है। सोनिया गांधी जी का भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति अनादर सबके सामने है। यही वो गीत है जिसे कांग्रेस ने दशकों तक तुष्टिकरण की राजनीति के नाम पर सीमित कर दिया, और राहुल गांधी जी वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा रखता है। क्या आपको लगता है कि आप इसकी गरिमा से ऊपर हैं? क्या आप राष्ट्रीय भावना से ऊपर हैं? या फिर उन संवैधानिक मूल्यों से भी ऊपर हैं, जिनका आप अक्सर दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं?
13: 3 तलाक का विरोध, शाबानों का विरोध, अभी जनगणमन में वॉकआउट, आर्टिकल 370 में वॉकआउट, तो राष्ट्र हित के जितने सवाल होते हैं, अगर उसकी टकराहट वोट बैंक से हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी चली जाती है पीछे, और इसमें वो अपनी सारी परंपराओं का भी ध्यान नहीं रखती।
1: बीजेपी के इस आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे दलील दे रहे हैं कि उन्होंने वही वंदे मातरम गाया जो गांधी नेहरू गाते रहे हैं।
14: अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं।
0: दस्तक में एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे इमरान खान को राहत, अब आएगी आसिम मुनीर की शामत। आप देखते रहिए दस्तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: बिजली का बिल पेड
18: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
19: कैसे?
18: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
19: इतना माही वे। सॉरी यार, गलती हो गई है,
20: ये चोट खर्चा वर्चा।
21: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
19: छक्का?
21: सब कैशलेस हो गया
19: है। ला भाई मेरा बैट,
21: वो अभी तो ठीक हुआ तो
19: चार्ज हुआ यार।
22: बैट किसका है?
23: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: आगे आगे
1: अरे उधर
0: उधर किधर
1: करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: In association with
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
5: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: अगस्त के महीने में आसमानी आफत, पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। अगस्त का महीना चल रहा है और देवभूमि उत्तराखंड में मानसूनी आफत का सिलसिला जारी है। ऋषिकेश हो या देहरादून, हर जगह बारिश कहर बनकर बरस रही है। ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं, जहां भारी बारिश के बाद बीन नदी में उफान आ गया और इसकी चपेट में एक गाड़ी भी आ गई। गाड़ी में सवार दो लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए। उफनती बीन नदी से लोगों को बचाने के लिए SDRF के जवानों ने मोर्चा संभाला और उफनती नदी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देर रात तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF जवानों ने दोनों लोगों को उफनती नदी और तेज बहाव के बीच से सही सलामत निकाला। ऋषिकेश ही नहीं, देहरादून में भी कुछ छात्रों की जान जोखिम में आ गई। भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और 7 छात्र नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। नदी के तेज बहाव के बीच SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 7 छात्रों को सुरक्षित बचाया। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते देहरादून के निचले इलाकों में भी बाढ़ से हालात बन गए। सड़क हो या इलाके, सब पानी पानी हो गए। ऋषिकेश से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इनकी सुबह हाईकोर्ट की एग्जाम थी और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है। उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों, उनको एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अक्ल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते, अगर इनमें इतनी ज्यादा अक्ल है तो। और अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, पूरे महाराष्ट्र भर से स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने आए थे। अभी मैंने बात करी तो कोई अमरावती से आया है, कोई बीड से आया है, कोई लातूर से आया है, अंबेजोगाई से आया है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे?
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब खबर पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान के पार कॉरिडोर में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आया। रावलपिंडी के सैन्य हेडक्वार्टर से लेकर इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री कार्यालय तक हड़कंप की स्थिति है। कारण, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक निर्णय। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दे दिया कि इमरान खान को तुरंत रावलपिंडी की बेहद चुस्त दुरुस्त सख्त माने जाने वाली अडियाला जेल से निकालकर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में ट्रांसफर किया जाए। इमरान के लिए ये केवल एक डॉक्टरी राहत नहीं, बल्कि देश के राजनीतिक शतरंज पर उनकी पहली और सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है। दूसरी तरफ इस एक निर्णय ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर और प्रधानमंत्री शरीफ की रातों की नींद उड़ा दी। अस्पताल का ये चंद दिनों का सफर कैसे पाकिस्तान की राजनीति में मुनीर के सुपर कंट्रोल को सीधे चुनौती दे रहा है, आप देखिए।

0: जस्टिस शाहिद वहीद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के इस ऐतिहासिक आदेश ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक हड़कंप मचा दिया है। जेल की सलाखों में इमरान खान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तमाम चालें धरी की धरी रह गईं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पाकिस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट बन गया है, जहाँ से इमरान खान को तीन साल के लंबे इंतजार के बाद पहली सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है। अदालत ने सेना और सरकार की तमाम आपत्तियों को हवा में उड़ाते हुए साफ फरमान सुनाया है कि इमरान खान आगामी 16 सितंबर तक अस्पताल में ही रहेंगे, जहां उनके अपने भरोसेमंद डॉक्टरों की देखरेख में उनका गहन इलाज चलेगा। ये सिर्फ इलाज का आदेश नहीं है, बल्कि शहबाज मुनीर की जोड़ी के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का वो तमाचा है जिसने उनकी पूरी रणनीति की धज्जियां उड़ा दी है।
1: आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि दो दिनों में इमरान खान साहब को अडयाला जेल से यहाँ इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। साथ ही हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हम सजदा बसजूद हैं कि यह हुक्म हुआ जो हम एक साल से मांग रहे थे, बिलाखिर अदालत से हमें वो हुक्म मिला है।
0: अदालत के आदेश के तहत इमरान खान के इलाज के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा। इस बोर्ड में आंख और हृदय रोग के शीर्ष विशेषज्ञों के अलावा उनके निजी चिकित्सक डॉक्टर फैसल सुल्तान और उनकी बहन डॉक्टर उज्मा खान भी व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेंगी। ये मेडिकल बोर्ड इमरान खान का संपूर्ण और विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हिदायत दी है कि मेडिकल रिपोर्ट को उनकी बहनें या उनकी पार्टी पीटीआई की ओर से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। शहबाज सरकार ने इमरान को अस्पताल ट्रांसफर करने का पुरजोर विरोध किया था, लेकिन अदालत ने इस आपत्ति को सिरे से खारिज करते हुए इसे केवल अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने को कहा।
2: अदालतों का काम है, हमें अदालतों जो हकपरस्त जजेस हैं उनसे उम्मीद यही है कि वो इंसाफ करेंगे। और एक जज सिर्फ खड़ा हो गया और उसने इंसाफ किया तो तमाम जजेस को जो है
3: आज के फैसले को और फिर
2: आज का फैसला मुसलसल 9 अप्रैल 2022 से लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ ज्यादती जबर फस्तायत जुल्म हो रहा था, तो एक फैसला उसका अजाला नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि मजीद इंसाफ।
4: थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है कि आज अदालत ने हमें जब मायूस हो गए थे कि इंसाफ कि जब बिल्कुल उम्मीद खत्म होगी, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद रखी हुई थी कि और आज शुक्र है कि उन्होंने हमें एक ही चीज चाहिए थी कि इमरान खान को अस्पताल में उनका मुकम्मल चेकअप हो। और आज जो जज साहब ने हमने अपने लॉयर से भंडारी साहब से भी समझा है, उन्होंने कहा है कि उनका अब चेकअप होगा अस्पताल में, इसमें डॉक्टर उज्मा मौजूद होंगी।
0: इस फैसले के बाद ये उम्मीद फिर से जगी है कि पाकिस्तान की अदालतें अभी जिंदा हैं, वो फौजी बूट तले दबी रही हैं। और तभी उन्होंने उस रिपोर्ट के बाद कड़ा रुख दिखाया जो रावलपिंडी की अडयाला जेल से आई थी। इमरान खान की सेहत को लेकर 1 अगस्त की इस मेडिकल रिपोर्ट से पहले जेल में उनकी मौत तक की खौफनाक अफवाहें उड़ने लगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 74 साल के इमरान खान का ब्लड प्रेशर 140/100 तक पहुंच गया था और उनकी पल्स रेट गिरकर महज 50 रह गई थी। इमरान खान गहरे मानसिक तनाव, बीपी में उतार चढ़ाव, तेज सिर दर्द और एंग्जाइटी से पीड़ित हैं। इसका मुख्य कारण उनकी पत्नी, परिजनों और वकीलों से मुलाकात पर पूरी तरह रोक लगाना और टीवी, अखबार जैसी बुनियादी सुविधाएं छीनना था। इस मेडिकल रिपोर्ट ने अडयाला जेल प्रशासन के दावों की पूरी तरह पोल खोल दी है। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सभी सुविधाएं देने का हलफनामा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट ने उनकी साख पर सवाल खड़े कर दिए। स्थिति ये थी कि सरकारी मंत्री टीवी चैनलों पर आकर मुलाकात की खबरों पर गुमराह करते रहे।
5: डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको रिलैक्स होने के लिए उनकी फैमिली से मुलाकातें कराई जाए, ये कल कर देना काम, फैमिली से मिलवा दें, 8 महीने से नहीं मिलने दिया गया।
6: देखिए शाजर साहब, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि फैमिली से इमरान खान साहब की रेगुलर मुलाकात होती है, जो उनकी अहलिया हैं बुशरा बीबी, دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی ملاقاتیں اور ان کا علاج یہ دو مختلف چیزیں ہیں. لیکن جب انہوں نے جیل کو پاکستان تحریک انصاف کے ایک ہیڈ کوارٹر کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی اور وہاں سے وہ بیانات آنے شروع ہوئے کہ جو کہ ناقابل قبول تھے, تو اس کے بعد ان کی ملاقاتوں میں تعطل پیدا ہوا. ان کی لیگل ٹیم اس کے باوجود ان سے ملتی رہی, ڈاکٹرز بالکل ان سے ملتے رہے, فیملی ابھی بھی ان سے ملتی ہے.
0: لیکن اب سپریم کورٹ کے اس چابک کے بعد عمران خان نہ کیول شفا اسپتال میں نجی ڈاکٹروں سے علاج کرا سکیں گے بلکہ ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ بھی میڈیکل بورڈ کا حصہ ہوں گی. یہی بات پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصف منیر کے گلے نہیں اتر رہی ہے. منیر کو ڈر ہے کہ عمران کا جیل سے باہر آنا یا ان کی ایک بھی تصویر باہر آنا ان کے پورے تنتر کو دھوست کر سکتا ہے. آصف منیر اور عمران خان کا یہ جھگڑا صرف سیاسی نہیں بلکہ بے حد ویکتیگت اور استتو کی لڑائی بن چکا ہے. سال 2019 میں جب عمران خان پردھان منتری تھے تب آصف منیر آئی ایس آئی کے ڈی جی ہوا کرتے تھے. منیر نے کتھت طور پر عمران خان کی پتنی بشرا بی بی اور ان کے قریبیوں کے بھرشٹاچار کی فائدیں پی ایم کے سامنے رکھی تھی. اس سے ناراض ہو کر عمران خان نے محض 8 مہینے کے بھیتر منیر کو برخاست کر دیا تھا, جو آئی ایس آئی کے اتہاس میں سب سے چھوٹا کارکال ہے. منیر اس بے عزتی کو کبھی بھول نہیں پائے. لیکن مین سٹریم میڈیا میں پوری طرح بین اور جیل میں ہونے کے باوجود عمران خان آج بھی پاکستان کے سب سے لوک پریہ نیتا ہیں. حال ہی میں ان کی طبیعت بگڑنے کی خبر ماتر سے ہی پورے پاکستان میں ان کے سمرتھک سڑکوں پر اتر آئے تھے.
3: یہ ڈیل ہے یا یہ ڈھیل ہے, کیا دیا گیا ہے؟ کیا عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل کی گئی ہے یا عمران خان کو تھوڑی ڈھیل دی گئی ہے اس لیے کہ اس وقت شہباز حکومت جو ہے یا شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی ہر طرح کی ہی باتیں چل رہی ہیں, جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر گیا ہے, تو کیا اس لیے عمران خان کو باہر لایا گیا ہے؟ اور کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے لیے ایک دو جرنلسٹ ایسی بات بھی کر رہے تھے کہ شاید عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے یا عمران خان اب نہیں رہے, تو شاید یہ وجہ بھی بن سکتی ہے.
0: پاکستان کے اتہاس میں یہ پہلی بار ہوا جب کسی راجنیتا نے سیدھے شکتیشالی سینا اور جنرلوں کے خلاف پوری عوام کو کھڑا کر دیا. 9 مئی 2023 کو بھڑکی ہنسا میں عمران سمرتھکوں نے راولپنڈی استھت سینیہ مکھیالے تک کو نشانہ بنا لیا تھا. منیر کو سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ عمران خان پاکستانی سینا کے نچلے اور مدھیم رینک کے افسروں کے بیچ بے حد لوک پریہ ہیں اور وہ سینا کے بھیتر ہی بغاوت کروا سکتے ہیں. اسی ڈر سے منیر پرشاسن انہیں پریوار اور دنیا سے دور رکھ رہا تھا, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے نے ان کی اس رڑنیتی پر پانی پھیر دیا ہے. دوسری طرف ستارور دل کے نیتا اسے ایک نئی سازش بتا رہے ہیں.
7: گاؤں سے جانا تھا, پاؤں چلا گیا. مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پھر سازش ہونے
8: لگی. سازش ہو جائے گی؟
7: نہیں, میں نے بولا کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے نا, شہباز میاں صاحب کے خلاف حکومت کے خلاف پھر سازش ہونے لگی ہے. تو میاں صاحب ہر دفعہ واپس آتے ہیں, آ جاتے ہیں, سازشی مشہور رہ جاتے ہیں.
0: عمران خان کو جیل میں 1,110 دن ہو چکے ہیں لیکن وہ فوج کے آگے نہیں جھکے, نہ ہی اس سے ڈیل کر سمجھوتا کیا. دوسری طرف نواز شریف کی پارٹی کے نیتا کورٹ سے ملی راحت کو چال کے طور پر دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس لیے کیونکہ ان کے نیتا نے خود فوج سے گپ چپ ڈیل کی اور لندن چلے گئے تھے اور پھر ستا میں لوٹے. زرداری کو تو جیل کے پاس کوٹھی میں رکھا گیا تھا جہاں نوکر چاکر بھی تھے. لیکن سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تب آیا ہے جب پاکستان اپنے سب سے گمبھیر سیاسی سنکٹ سے گزر رہا ہے. شہباز سرکار کے ہی منتری محسن نقوی پورے سسٹم کو سڑا ہوا بتا کر دیش کو 2 درجن صوبوں میں بانٹنے کی پیروی کر رہے ہیں. وہیں بلوچستان سے لے کر پی او کے تک بغاوت کی آگ سلگ رہی ہے. ایسے میں 3 سال کی لمبی قید کے بعد سپریم کورٹ سے ملی یہ راحت کیا عمران خان کی دھماکے دار واپسی کا سنکیت ہے؟ اور اگر عمران واپس لوٹتے ہیں تو کیا وہ پاکستان کو سنبھال پائیں گے یا ملک ایک اور نئے گرہ یدھ کی طرف بڑھے گا؟ آج تک بیورو.
9: اور اب خبر روس اور یوکرین کے. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ماسکو پر یوکرین نے اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا. جی ہاں, ڈرون کے سونامی سے کریملن تھررا اٹھا. پوتن کے سیف زون میں زیلنسکی نے نہ صرف سیند لگا دی بلکہ ماسکو پر تابڑ توڑ 600 سے ادھک ڈرونز داغ دیے. 180 ڈرونز کو روسی ایئر ڈیفنس نے ہوا میں ہی مار گرایا. بیتے 2 ورشوں میں یہ سب سے بھیشن روس پر یوکرین کا حملہ ہے. मॉस्को और आसपास के कई शहरों में ड्रोन हमलों के कारण भारी नुकसान हुआ है, तो इसका बदला लेते हुए खार्किव में रूस ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, 10 लोगों की मौत हो गई है। रूस का आरोप है कि जिन ड्रोन से मॉस्को में हमला किया गया वो मेड इन ब्रिटेन है। ऐसे में रूस ने ब्रिटेन को भी चेतावनी दे दी है। आइए दिखाएं आपको क्या मॉस्को पर हमला अब महायुद्ध की दस्तक दे रहा है।
0: मॉस्को पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला, 600 ड्रोन से बरसाए बम। रूसी सेना ने सैकड़ों ड्रोन किए नाकाम, मॉस्को में मचा कोहराम। रूस पर यूक्रेन के हमले भयंकर, महायुद्ध की बज गई घंटी। रूस का गंभीर आरोप, हमले में इस्तेमाल हुए ब्रिटेन के ड्रोन। पुतिन की सबसे बड़ी चेतावनी, ब्रिटेन को भुगतने पड़ेंगे गंभीर नतीजे। 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग एक बार फिर से भीषण होती हुई नजर आ रही है। इस युद्ध को शुरू हुए 1636 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस युद्ध का अंत होने के आसार कम बल्कि महायुद्ध में बदलने की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। और अब यूक्रेन ने जिस तरह से ताबड़तोड़ 600 ड्रोन से हमला बोला है, मॉस्को दहल उठा है। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है तो 40 लोग घायल हैं। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर जैसे ड्रोन की सुनामी ला दी। यूक्रेन के हमलों से मॉस्को और आसपास के कई शहर दहल उठे। इस हाहाकारी हमले को पिछले कई सालों का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेन ने मॉस्को की तरफ इतने ड्रोन भेजे कि रूसी एयरफोर्स पूरी ताकत लगाने के बावजूद सारे हमलों को नाकाम नहीं कर पाए, जिन्हें आसमान में तबाह किया भी उनका मलबा रूसी शहरों में रिहायशी इलाकों के ऊपर गिरने लगा। ज्यादातर ड्रोन अपने ठिकानों पर निशाना लगाने में कामयाब रहे, जिससे कई जगह धमाकों की आवाज सुनी गई और आग की लपटें उठने लगी। रूसी मीडिया के मुताबिक मेयर सर्गेई सोबियानिन ने बताया कि सोमवार शाम से लेकर मंगलवार की सुबह तक मॉस्को की तरफ 620 ड्रोन आते हुए देखे गए। इनमें से 180 ड्रोन को निशाने पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। उन्होंने इसे पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा हमला करार दिया है। इन हमलों को देखते हुए मॉस्को के सभी 4 एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस रोकने पड़े। कई लोगों ने इन हमलों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं। किसी ने अपने घर की बालकनी से हमलों के वीडियो बनाए तो किसी ने चलती गाड़ी के अंदर से तबाही की तस्वीरों को कैद किया। सारी रात रूस का आसमान यूक्रेनी ड्रोन और रूसी सेना की उस पर होने वाली फायरिंग से धधकता नजर आता है। धू धू कर जलती इस इमारत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने इन हमलों के जरिए किस कदर नुकसान पहुंचाया है। कोतलनिकी की इमारत में ड्रोन जा गिरा और पूरी इमारत में आग लग गई है। इस इमारत के पास ही मॉस्को ऑयल रिफाइनरी है। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन का निशाना रिफाइनरी ही थी, लेकिन अपने ठिकाने पर पहुंचने से कुछ मीटर पहले उसकी दिशा बदल गई और रिफाइनरी बच गई। यूक्रेन ने पिछले एक हफ्ते में मॉस्को और आसपास के इलाकों में ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। 3 दिन पहले ही उसने मॉस्को के पास कोलेदिनो इलाके के वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक हब पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। हजारों स्क्वायर फीट में फैले इस सेंटर में एक के बाद एक कई धमाके हुए और पूरा परिसर आग की लपटों में घिर गया। काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में काफी ऊंचाई तक फैल गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कई मोर्चों पर रूस की एक साथ घेराबंदी करने पर जोर दिया है, वो भी बिना किसी ढील के।
10: Сьогодні скоординувались з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами, коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості. Деякі речі, які є критичними для російської агресії, але вони досі постачаються в Росію навіть з тих країн, які входять в групу 7 і точно не зацікавлені, що Путін затягував війну та збільшував масштаб удару.
0: यूक्रेन दरअसल उन हमलों से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर कीव और आसपास के कई इलाकों में रूस ने तबाही का तांडव मचा दिया था। यूक्रेन ने मॉस्को में ड्रोन की सुनामी भेजी तो रूस ने भी पलटवार करते हुए यूक्रेन के खार्किव में एक बड़ा हमला किया है। इस मिसाइल अटैक में 10 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार सुबह यूक्रेन के उत्तर पूर्वी खार्किव प्रांत के एक ग्रामीण इलाके में रूसी सेना के हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। खार्किव के गवर्नर ओलेस सिन्येहूबोव ने ऑनलाइन पोस्ट में बताया कि करीब 30 मील दक्षिण पूर्व में स्थित पेचेनिही शहर के रिहायशी इलाके में एक मिसाइल गिरी। इसके बाद कई धमाके हुए और भारी तबाही देखने को मिली है। कई इमारतों में इस हमले के बाद आग लग गई। इस हमले के फौरन बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को चेतावनी दी है कि यूक्रेनी सेना इसका बदला जरूर लेगी। आपको बता दें कि रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने जिन ड्रोन से मॉस्को पर हमला बोला है वो मेड इन ब्रिटेन है। रूस ने सीधे सीधे ब्रिटेन पर यूक्रेन जंग में दखल देने का आरोप लगाया है और रूस ने कहा है कि इसके लिए ब्रिटेन को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ये मामला ब्रिटिश अखबार द संडे टाइम्स की रिपोर्ट के बाद सामने आया। दरअसल इसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि यूक्रेन ने रूस में हमला करने के लिए 2 ब्रिटिश कंपनियों के बनाए ड्रोन का इस्तेमाल किया। संडे टाइम्स की ये रिपोर्ट अगर सही है तो ये पहली बार होगा जब ब्रिटिश तकनीक से बने ड्रोन रूस पर हुए हमलों में इस्तेमाल हुए हैं। ब्रिटेन स्थित रूसी दूतावास ने कहा कि लंदन जानबूझकर यूक्रेन संकट को और भड़का रहा है। वो यूक्रेन के जरिए रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। रूसी दूतावास ने कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे और ब्रिटेन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस के हमलों से अपनी रक्षा करने के लिए यूक्रेन को जिन हथियारों की जरूरत होगी ब्रिटेन उन्हें देता रहेगा। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये भी कहा है कि रूस को ब्रिटेन की नीति को लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन यूक्रेन और अपने सहयोगी देशों के खिलाफ रूस की आक्रामकता का विरोध करता रहेगा। आपको बता दें कि यूक्रेन ने इस साल रूस के अंदर ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले काफी बढ़ा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने जुलाई में जनवरी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हमले किए। यूक्रेन को इस युद्ध में अमेरिका से जुड़े ड्रोन प्रोजेक्ट से भी मदद मिल रही है। एक उदाहरण हॉर्नेट ड्रोन का है। इसकी कीमत करीब $6,000 है और ये करीब 150 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। ये दिन और रात में लाइव वीडियो देख सकता है और AI की मदद से रूसी लक्ष्यों की पहचान कर सकता है। इसकी खास बात ये है कि इसे हर समय सैटेलाइट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आज तक ब्यूरो।
9: दर्शक में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुमा केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। संगठन में हुए इस फेरबदल में डिजिटल और सोशल मीडिया विभाग में भी अहम बदलाव किया गया है। लेकिन नितिन नवीन की टीम में बीजेपी के आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महेस्के को नया आईटी सेल हेड बनाया गया है। अमित मालवीय साल 2015 से बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे, जबकि छत्तीसगढ़ के दीपक महेस्के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। दीपक 2014 से छत्तीसगढ़ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं।
1: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्राण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। संगठन में हुए इस फेरबदल में डिजिटल और सोशल मीडिया विभाग में भी अहम बदलाव किया गया है। लेकिन नितिन नवीन की टीम में बीजेपी के आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महेस्के को नया आईटी सेल हेड बनाया गया है। अमित मालवीय साल 2015 से बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे, जबकि छत्तीसगढ़ के दीपक महेस्के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। दीपक 2014 से छत्तीसगढ़ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं।
1: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी।
2: यूथ को कैटर करने के लिए क्या प्लान्स करेंगे?
1: देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।
0: महस्के की सहायता सोशल मीडिया सह संयोजक के रूप में प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को नियुक्त किया गया। लेकिन नई जिम्मेदारी मिलने के कुछ ही घंटों बाद दोनों नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिए। इसके चलते आम यूजर्स को उनके पुराने ट्वीट्स और पोस्ट दिखने बंद हो गए। हालांकि नए कन्वीनर दीपक महस्के और को कन्वीनर अरुण यादव के एक्स अकाउंट्स सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्रीति गांधी लंबे समय से सोशल मीडिया पर सक्रिय रही हैं और @Mrs. Gandhi हैंडल से पोस्ट करती आई हैं। उनकी पहचान बेबाक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए रही है। वो बीजेपी महिला मोर्चा के सोशल मीडिया से जुड़े काम में भी सक्रिय रही हैं। फिलहाल प्रीति गांधी या आलोक भट्ट की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उनके एक्स अकाउंट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे, इसलिए इसकी वजह को लेकर कोई पक्की बात कहना सही नहीं होगा। हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पुराने पोस्ट की समीक्षा एक संभावित वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पर पहले किए गए किसी निजी बयान को पार्टी की आधिकारिक राय समझे जाने का खतरा रहता है। ऐसे में पुराने कंटेंट की जांच के दौरान अकाउंट की पहुंच सीमित करना एक तरीका हो सकता है। नई भूमिका के साथ सोशल मीडिया पर पार्टी का संदेश भी अधिक व्यवस्थित तरीके से रखने की जरूरत होती है। निजी पोस्ट और पार्टी के आधिकारिक रूप के बीच अंतर साफ रहे, इसके लिए भी अकाउंट की सार्वजनिक पहुंच बदली जा सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम के ऐलान के तुरंत बाद इन अकाउंट्स में बदलाव हुआ। इसके पीछे असल वजह क्या है, इस पर दोनों नेताओं की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: 2027 चुनाव को साधने के लिए बीजेपी ने अपने संगठन में किए बदलाव में यूपी को तवज्जो दी है। नितिन नवीन की नई टीम में ओबीसी, जेन जी यानी युवा और महिला पर फोकस है। अहम पदों पर कुल 8 बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से 3 महिलाओं और 3 ओबीसी नेताओं को जगह मिली है। कुर्मी बिरादरी की रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, तो केशव मौर्य के करीबी और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य को बीजेपी ने ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया है। राष्ट्रीय मंत्री के पद पर संगीता यादव को लाया गया है, जो कि यादव बिरादरी से महिला चेहरा है। संगठन के अहम पदों पर 2 मुस्लिम चेहरे तारिक मंसूर और कुंवर वासी ताली को मौका मिला है। बीजेपी के नए संगठन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महामंत्री बनाया गया है। इसे लेकर अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, जमकर आतिशबाजी हुई। बैंड बाजे की धुन पर नेता झूमते दिखे। पार्टी नेता कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को संगठन में जगह मिलने से आगामी विधानसभा चुनाव में अब 4 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। चुनावी राज्य पंजाब से आने वाले तरुण चुग को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया है। उनके अलावा पंजाब से मनप्रीत बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस जिम्मेदारी के मिलने पर बादल ने कहा कि पंजाब में सिर्फ डबल इंजन सरकार ही सफल हो सकती है। इस ऐलान के बाद उनके पैतृक गांव में लोगों ने जश्न मनाया। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बगैर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि जो लोग आज युवा चिल्ला रहे हैं, दरअसल युवा उनके एजेंडे में कभी था ही नहीं, ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं। मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम ने पार्टी सांसद डिंपल यादव को लेकर अजीबोगरीब बयान दे दिया। विधायक ने डिंपल यादव को पूरे देश की मां बताते हुए उन्हें ममता का प्रतीक बता दिया।
1: लखनऊ सर्वोदय विद्यालय के छात्र यूं ही सड़कों पर नहीं उतरे। अधिकारियों से शिकायत, स्कूल प्रबंधन के सामने अर्जी और तो और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के सामने भी छात्र अपनी बात कह चुके हैं। लेकिन हासिल क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल के छात्र संभव है कि देश में जंतर मंत्र से शुरू हुए प्रदर्शन करके अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े हैं। लेकिन असली वजह जंतर मंत्र नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी है। 14 अगस्त को लखनऊ में सर्वोदय विद्यालय के छात्र सड़क पर उतरे थे। मुद्दा वही था, स्कूल में शिक्षक नहीं, शुद्ध भोजन नहीं और बीमार पड़ जाओ तो मेडिकल सुविधा नहीं। 14 अगस्त को जब आंदोलन हुआ तो समाज कल्याण मंत्री खुद मौके पर पहुंच गए थे। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया।
2: यहाँ बच्चों ने बताई है, वो ज्यादातर हमारी जानकारी पहले से है। सभी विद्यालयों में बहुत व्यापक सुधार हुए, लेकिन और सुधार करने की गुंजाइश है, उसको हम लोग पूरा।
1: मंत्री की बात सुनकर छात्रों ने तुरंत रास्ता खोल दिया और असीम अरुण के साथ स्कूल में वापस लौट गए। स्कूल में जाकर समाज कल्याण मंत्री ने सबसे पहले स्कूल के स्टाफ की क्लास लगाई। इसके बाद मंत्री जी ने छात्रों की बात सुनी, आश्वासन दिया और चले गए। लेकिन क्या इससे स्कूल की समस्याओं का समाधान हो गया? 4 दिन में शिक्षक भर्ती तो नहीं हो सकती, लेकिन मेडिकल और मेस की सुविधाएं तो जरूर सुधारी जा सकती हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। आपको हम कन्नौज लेकर चलते हैं। कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जेन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे, बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा। इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह को ढंक लिया। ये इनका अधिकार है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका अपनाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए, फिर समाधान।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
5: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बीजेपी की नवीन टीम की अगले चुनावों पर नजर। तांबड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन पर भी चर्चा। छात्रों की पिटाई को लेकर राहुल गांधी फिर केंद्र पर वार, कहा असत्य और हिंसा मोदी सरकार का मूल मंत्र है। पैलेट गन को लेकर फिर से उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी का एक्शन, भड़के केजरीवाल, पूछा आखिर कब तक चलती रहेगी बीजेपी की तानाशाही। यूजीसी नेट विवाद के बाद एनटीए में बड़े बदलाव के आदेश, 600 विशेषज्ञों को हटाया गया। परीक्षा और प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियों के बाद 4 स्तरीय पेपर जांच व्यवस्था लागू। और बिहार के नालंदा में मिड डे मील खाने से करीब 40 छात्र बीमार हुए, नमक की जगह सब्जी में डाल दिया गया था वॉशिंग पाउडर। नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी मिडिल स्कूल की घटना।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पुलिस की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, इससे पहले शायद ही कभी आपने ऐसी कहानी सुनी होगी। यूपी पुलिस में एक सिपाही है, अखिलेश त्रिपाठी। एक रोज पुलिस अखिलेश त्रिपाठी के घर पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पहले थाने, फिर अदालत और उसके बाद उन्हें जेल भेज देती है। 166 दिन बाद फिर वही पुलिस अखिलेश त्रिपाठी के पास आती है, उन्हें सॉरी बोलती है और फिर आजाद कर देती है। दरअसल पुलिस गलत अखिलेश त्रिपाठी को पकड़ लाई थी।
1: अच्छा हुआ कानून के देवी की आंखों से ये पट्टी हटा ली गई। कम से कम अब वो देख तो पा रही है कि उसकी आंखों के सामने कैसे कानून और इंसाफ का तमाशा बनाया जा रहा है। अगर वो न देख पाती तो शर्तिया अखिलेश त्रिपाठी को कभी आप भी न देख पाते। कानून की देवी ने अपनी आंखें खोलकर जब सामने अखिलेश को देखा, तब पता चला कि असली अखिलेश तो ये है ही नहीं। फिर क्यों ये 166 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहा? फिर क्यों इसे उस जुर्म की सजा दी गई जो इसने कभी किया ही नहीं? कानून की देवी की इन खुली आंखों ने ही हमें ये दिखाया और बताया कि कभी कभार सिर्फ आपका नाम ही बिना किसी कसूर के आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है।

0: ये वो कहानी है जिसे कायदे से कानून के विद्वानों के साथ साथ कानून के मुहाफिजों को भी सुननी और सुनाई जानी चाहिए, ताकि फिर कभी किसी अखिलेश त्रिपाठी को दूसरों के नाम की सजा न काटनी पड़े। अखिलेश लखनऊ के गोमती नगर इलाके में रहते हैं। अखिलेश यूपी पुलिस की खास फोर्स यानी विशेष सुरक्षा बल के सिपाही हैं। मगर पुलिस में होते हुए भी अखिलेश अभी 6 महीने जेल की सलाखों के पीछे गुजार कर वापस लौटे। नहीं, गलत मत समझिएगा, इन्होंने न तो अपने पुलिसिया रसूख का इस्तेमाल कर किसी की हकमारी की है और न ही कोई कानून तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद खुद इन्हीं के महकमे ने इन्हें 6 महीने के लिए जेल यात्रा करा दी, वो भी बगैर किसी सुनवाई के हथकड़ियों में जकड़ कर। 6 महीने तक एक से बढ़कर एक छंटे हुए बदमाशों के साथ सेंट्रल जेल में बंदियों की जिंदगी गुजार कर अखिलेश को अब जाकर खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। अखिलेश की ये कहानी सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि जब उन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं है और जब उन पर कोई इल्जाम है ही नहीं, तो फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा ही क्यों? तो पहली बार अखिलेश की कहानी सुनकर हम भी इसी सोच में पड़ गए। लेकिन जब अखिलेश और उनकी धर्मपत्नी आराधना ने हमें अपनी पूरी आपबीती सुनाई, तो उसने हमें भी हैरान कर दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि अखिलेश को पुलिस ने तो खैर गलत तरीके से गिरफ्तार किया ही, लेकिन जिस अदालत पर दूध का दूध और पानी का पानी करने की जिम्मेदारी थी, खुद उसी अदालत ने बगैर किसी सुनवाई के अखिलेश को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जबकि वो पूरी तरह बेकसूर थे। उधर पूरे 6 महीने तक जहां अखिलेश इंसाफ की उम्मीद लिए सलाखों के पीछे एक एक लम्हा काटते रहे, इधर जेल के बाहर उनकी पत्नी और घर वाले अखिलेश को आजाद करवाने के लिए थाने से लेकर अदालत की दहलीज तक नापते रहे, फरियाद करते रहे। असल में अखिलेश की गिरफ्तारी क्राइम की जुबान में मिस्टेकन आइडेंटिटी का एक ऐसा क्लासिक केस है जैसा इससे पहले शायद ही कभी किसी ने सुना हो। इस कहानी की शुरुआत होती है 15 फरवरी से, जब एक बगैर नंबर की ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोगों ने उन्हें घर के बाहर से अगवा कर लिया। अखिलेश और उनके घर वालों ने पहले कुछ ऐसा ही समझा था, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें उठाकर ले जाने वाले कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की पुलिस थी। अखिलेश को किसी गैंगस्टर की तरह राजस्थान पुलिस ने तब घर दबोचा जब शिवरात्रि के दिन वो अपने बच्चों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद घर लौट रहे थे। इसके बाद लखनऊ के सवाई माधोपुर तक पूरे रास्ते वो अपनी बेगुनाही की दलील देते रहे, अपनी असली पहचान बताते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी।
1: उस दिन शिवरात्रि का दिन था, मैं मंदिर गया हुआ था, जल चढ़ा के लौट रहा था बच्चों के साथ। इसके बाद 4 लोग खड़े थे रोड पे, बिना पूछे ताछे मुझे गाड़ी में बैठा लिया और बच्चे ने प्रयास किया छुड़ाने का तो उनको धक्का दे दिया और इसके बाद यहाँ से लेके चले गए। एकदम इस काली स्कॉर्पियो बिना नंबर की थी और कोई ना तो वर्दी पहना था ना कुछ, एकदम सिविल में थे।
2: क्या कह रहे थे आपसे रास्ते में जब आपको ले जा रहे थे? आपने बताया उनको कि मेरा क्या दोष है, क्यों ले जा रहे हैं?
1: मैंने कहा कि मेरा क्या दोष है पूछा तो उन्होंने कहा आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है 420 का, मैं राजस्थान लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं खुद कांस्टेबल हूँ, तो एक ना सुनी मेरी।
0: खैर, अखिलेश को उम्मीद थी कि शायद सवाई माधोपुर पहुंचने पर उनकी कोई सुनवाई हो, लेकिन वहां भी हुआ इसका उल्टा। उन्हें सीधे थाने ले जाकर हवालात में ठूस दिया गया। यहां तक कि जिस केस में उन्हें पकड़ा गया था उसके आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर तक ने उनसे पूछताछ करने या उन्हें सुनने की जरूरत ही नहीं समझी।
1: थाने में ले गए तो थाने में इंस्पेक्टर महोदय वहां मिले, आईओ, उनसे मैंने बातचीत करने का प्रयास किया और बोला कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, मैं अखिलेश त्रिपाठी। इंस्पेक्टर ने मेरी एक न सुनी। तो मुझे कुछ भी नहीं पता, उस समय तो मैं 60 था कि मैं यहां से ले गए और ना मेरे पास कोई अपना आईडी मौजूद था और रास्ते से उठा ले गए थे तो मुझे अपना भी आईडी हमारे पास नहीं जेब में था, ना मोबाइल था, मोबाइल भी घर पे पड़ा हुआ था न कहीं से। फिर 9 बजे रात को जब वहां से थाने के मोबाइल द्वारा बात कराया गया, तब हमारी वाइफ से बात हुई, तब मैंने बताया कि यहाँ के पो हमको खुद नहीं पता है किस में उठा के लाए हैं ये लोग, न कुछ बता रहे हैं, अंदर मुझे उसमें कटघरे में कर दिया है।
0: असल में सवाई माधोपुर पुलिस ने अखिलेश त्रिपाठी को एक ऐसे मुलजिम की गलतफहमी में पकड़ा था जिसका नाम भी अखिलेश त्रिपाठी ही था और जिसके खिलाफ राजस्थान में ठगी का केस दर्ज था। धीरे धीरे यूपी पुलिस के सिपाही अखिलेश को इस सच का पता चल गया और जब अगले दिन यानी 16 फरवरी को उन्हें सवाई माधोपुर में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम फर्स्ट की अदालत में पेश किया गया तो रिहाई की उम्मीद से उन्होंने अदालत में अपनी पहचान बताते हुए एक एफिडेविट यानी हलफनामा भी पेश किया ताकि वो ये बता सके कि वो अखिलेश नहीं है जो पुलिस उन्हें समझ रही है। तब तक उनके घर वालों को भी उन्हें सवाई माधोपुर ले जाने की खबर मिल चुकी थी और वो भी वहां पहुंच चुके थे। मगर कमाल देखिए कि पुलिस तो पुलिस, खुद अदालत ने भी अखिलेश त्रिपाठी के हलफनामे को झूठा बताते हुए उन्हें सीधे जेल भेजने का हुक्म सुना दिया।
1: इसके बाद 16 तारीख को न्यायालय सीजीएम फर्स्ट के यहाँ ये लोगों ने पेश किया, वहां मैंने एफिडेविट लगाया कि मैं वो अखिलेश त्रिपाठी, जब बताया गया उस अखिलेश त्रिपाठी के बारे में तो मैंने कहा वो मैं अखिलेश त्रिपाठी नहीं हूँ, मेरा भाई वहां पहुंच चुके थे, मेरे भाई सब हमारे रिकॉर्ड्स पेपर ले करके सीजीएम महोदय को दिखाए, लेकिन सीजीएम महोदय ने हमारी एक न सुनी और पुलिस का साक्ष्य सत्य मानते हुए हमारा एफिडेविट झूठा बता के मुझे जेल भेज दिया गया।
0: मगर ये तो अंधे हो चुके कानून से त्रिपाठी परिवार के जंग की महज शुरुआत भर थी। पति के अगवा हो जाने की खबर मिलने से डरी सहमी आराधना सबसे पहले लखनऊ के ही गोमती नगर थाने पहुंची, जहां से काफी मुश्किलों के बाद उन्हें पता चला कि राजस्थान की गंगापुर सिटी की पुलिस उनके पति को अपने साथ लेकर गई है। इसके बाद जब वो बाकी के घर वालों के साथ राजस्थान गई तो वहां पहुंचकर उन्हें इस गिरफ्तारी की असली कहानी का पता चला। असल में अखिलेश को राजस्थान पुलिस ने एक ऐसे अखिलेश त्रिपाठी होने के शक में पकड़ा था जो लखनऊ के ही अलीगंज का रहने वाला था और जिसने लायंस म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी लिमिटेड नाम से एक फर्जी कंपनी बनाकर कथित तौर पर धोखे से लोगों से लाखों रुपए वसूले थे।
3: जब 16 तारीख को ले जाके कोर्ट में पेश कर दिया गया तो कोर्ट में वकील वहां पे एक हायर किया हम लोगों ने, तो उन्होंने जमानत भी लगाई और हमारी तरफ से एक वहां पे एफिडेविट भी लगाया गया कि मैं वो शख्स नहीं हूं और साथ में पति के सारे डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट और जो आधार कार्ड वगैरह थे। तो उन्होंने, मैडम ने तो साफ ही बोल दिया कि नहीं, आप वही व्यक्ति हैं।
2: जज जो थी
3: जी, जो जज महोदया थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका एफिडेविट झूठा है, आपके सारे जो रिकॉर्ड्स आप लगा रहे हैं सारे फर्जी है आपके और आप ही मुजरिम है, क्योंकि पुलिस ने वहां पे बयान दिया हुआ था लिखित में कि मैं सारी जांच पड़ताल करने के बाद असली मुजरिम को ही उठा के लाया।
0: मगर कमाल देखिए कि ऐसा तब था जब असली मुलजिम यानी ठगी के आरोपी अखिलेश त्रिपाठी की मौत 26 साल पहले यानी साल 1999 में ही हो चुकी थी। और तो और, आरोपी के पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था और सिवाय मुलजिम के नाम के गिरफ्तार अखिलेश के साथ उनकी कोई समानता नहीं थी।
3: सर, हमें तो ये 31 जुलाई को ही पता चला कि उसकी डेथ 99 में हो गई थी, इससे पहले हमें नहीं पता था, क्योंकि वो कौन है, कहाँ है, क्या करता है, इस वर्तमान में हमें कुछ नहीं पता। हमें तो सिर्फ पेपरों से इतना पता चल पाया था कि कोई अखिलेश त्रिपाठी नाम का शख्स है जिसकी डेट ऑफ ईयर 1957 है और वो सेक्टर जे अलीगंज में कहीं उसने अपना ऑफिस बनाया था जिसमें उसने अपनी बैंक टाइप की जो भी था फर्म बनाई थी वहां पे वो अपना चला रहा था और राजस्थान में उसने लोगों से पैसे जमा करवा रखे थे, उनके पैसे लेके ये भाग गए थे, इसलिए उन लोगों ने केस कर रखा था। बाकी वो वर्तमान में कहाँ है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी और वो मर चुका है ये भी हमें 31 जुलाई को जब पुलिस ने लिखित में दिया कोर्ट में तब हमें पता चला कि वो 99 में मर चुका था।
0: अब सीजेएम के कोर्ट से निराशा हाथ लगी तो फिर अखिलेश के घर वाले हाई कोर्ट पहुंचे, वहां उन्होंने हेबियस कॉर्पस की याचिका लगाई, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें अर्जी वापस लेने का हुक्म देते हुए वापस एडीजे यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में जाने को कहा। अब पीड़ित परिवार एडीजे की अदालत में पहुंचा, लेकिन एडीजे की कोर्ट ने क्या कहा आप वो भी सुनिए।
3: क्योंकि वहाँ के जो वकील थे उन्होंने सलाह दी कि आप हैबियस कॉर्पस लगा दो हाई कोर्ट में तो उससे राहत मिल जाएगी। तो हम लोग हैबियस कॉर्पस के लिए वहाँ चले गए। वहाँ जब हैबियस कॉर्पस लगाई तो वहाँ के जो जज थे हमारे, उन्होंने कहा कि आपकी हैबियस कॉर्पस मेंटेनेबल नहीं है, आप इसे वापस एडीजे में जाओ, वहां से जमानत कराओ जाके। तो फिर हम लोग वहां से हैबियस कॉर्पस विड्रॉल करके वापस एडीजे गए। एडीजे में जमानत लगाई तो उन्होंने भी जमानत को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि सीजीएम का कहना है कि आप जो है वो सही मुजरिम है, सीजीएम ने पूरी जांच कर ली है और सीजीएम ने सारी जांच करने के बाद ही आपको मुजरिम घोषित किया है। और उनका कहना है कि अगर इसको जमानत मिल गई तो ये फिर से भाग जाएगा क्योंकि बहुत दिनों बाद ये पकड़ में आया है।
0: यानी पहले पुलिस ने, फिर सीजीएम ने और फिर एडीजे की कोर्ट ने तमाम तथ्यों की अनदेखी कर दी और पुलिसकर्मी अखिलेश को जमानत देने से मना कर दिया, जबकि गिरफ्तार अखिलेश त्रिपाठी की बेगुनाही के कई सबूत थे। ऐसे में एडीजे की अदालत से मिली निराशा के बाद त्रिपाठी परिवार ने एक बार फिर हाईकोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी। हाईकोर्ट को बताया कि जब लोगों के पैसे ठगने वाली लायंस म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी का 1994 में रजिस्ट्रेशन हुआ था तब गिरफ्तार अखिलेश की उम्र महज 17 साल की थी और वो स्कूल में पढ़ रहे थे। और जब 4 साल बाद यानी साल 1998 में इस कंपनी पर ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ तो गिरफ्तार अखिलेश त्रिपाठी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में भला उनका ठगी के उस केस से क्या वास्ता हो सकता है?
3: हमारे जो वकील साहब थे वहाँ पे उन्होंने जमानत लगाई थी इस मतलब आधार के साथ में कि मैं वो शख्स नहीं हूँ, मुझे गलत तरीके से उठाया गया है, मैं मुजरिम नहीं हूँ क्योंकि ये 98 का केस है। 98 में मेरे पति इंटर कक्षा में पढ़ रहे थे और उसकी हमारे पास मार्कशीट्स थी तो हमने सबूत के तौर पे लगाई थी। और हम लोगों ने जो कंपनी थी लायंस म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड करके उसके पेपर कानपुर रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलवाए और उन पेपरों के बेस पे हम वहाँ पे साबित कर रहे थे कि हमारे पति जो है वो मुजरिम नहीं है क्योंकि वो कंपनी 1994 में रजिस्टर्ड हुई थी और 1994 में मेरे पति जो थे वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे और 17 ईयर एज थी उनकी। तो ये सारे आधार लेते हुए हमने वहाँ पे जमानत लगा रखी थी।
0: हाईकोर्ट में सिर्फ अखिलेश की जमानत पर ही तकरीबन 3-3.5 महीने तक सुनवाई चलती रही और आखिर में कोर्ट ने सवाई माधोपुर की एसपी को अदालत में तलब किया और ये पूछा कि मुलजिम तो खुद को बेगुनाह बता रहा है और इसका सबूत भी दे रहा है, अब आप ये बताएं कि आखिर आपके पास मुलजिम के कसूरवार होने के क्या सबूत हैं? खासकर इस बात के क्या प्रमाण हैं कि ये वही अखिलेश त्रिपाठी है जिनकी आपको तलाश है? यही वो घड़ी थी जब पहली बार सवाई माधोपुर की पुलिस को मानना पड़ा कि उन्होंने गलत अखिलेश त्रिपाठी को पकड़ा है क्योंकि उनके पास गिरफ्तार अखिलेश के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था।
3: तो उसी पे हाई कोर्ट ने लगभग 3-3.5 महीने उनकी सुनवाई चलती रही, आईओ से रिपोर्ट्स मंगाई, कोर्ट से रिपोर्ट्स मंगाई, ये सब करते हुए जब उन्होंने एसपी साहब को कोर्ट में तलब किया और उनसे मतलब कहा कि आप ये कह रहे हैं कि मैं वो शख्स नहीं हूँ और ये प्रूफ भी दे रहे हैं, अब आप प्रूफ दो कि आप कैसे कह रहे हो कि ये वही शख्स है। तो जब ये बात उन लोगों के सामने आई तो शायद उनके पास प्रूफ नहीं थे, क्या कारण था, तब उन्होंने जाके सीजीएम में ये कबूल किया कि हम गलत आदमी उठा लाए हैं और जो सही मुजरिम है वो मर चुका है।
4: अखिलेश त्रिपाठी शनोप श्री सिगनाथ त्रिपाठी को गंगापुर पुलिस के द्वारा लखनऊ से लाकर 166 दिन बेवजह उसको जेल में रहना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे द्वारा यहाँ पर न्यायालय के समक्ष उसको जब प्रस्तुत किया गया तो विभिन्न कार्रवाइयां की गई ताकि उसको न्याय मिल पाए, लेकिन न्यायालय श्रीमान एसीजेएम के द्वारा, गंगापुर के द्वारा भी उनको 3 महीने का अतिरिक्त कारावास एफिडेविट लेने के बाद भी कर दिया गया। बाद में उनकी डिटेंशन को इलीगल प्रूव करने के लिए हमारे द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष डीबी रिट पिटीशन हैबियस कॉर्पस फाइल की गई, लेकिन उसमें भी हमें सफलता नहीं मिली। बाद में जब प्रकरण आगे चलता गया तो यह ज्ञात हुआ कि वह आदमी ही नहीं है जिसकी पुलिस को चाहत थी और पुलिस की इस कार्यशैली की वजह से उसे 166 दिन जेल में रहना पड़ा। और यह सारी चीजें सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि जिस व्यक्ति की चाहत थी पुलिस को, जो वारंटी था उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था।
0: यानी तकरीबन 6 महीने के बाद अखिलेश की रिहाई का रास्ता हाईकोर्ट से खुला। लेकिन इन 6 महीनों में खुद अखिलेश और उनके परिवार ने जो कुछ झेला, जितना गंवाया और जो कुछ बर्दाश्त किया, उसकी शायद ही कोई भरपाई हो।
3: सर, मानसिक प्रेशर तो था ही। सर, मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे पति ही कमाते हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, और जब से इनको उठा के ले गए थे तब से इनकी सैलरी भी बंद थी। 6 महीने से अभी तक कोई सैलरी नहीं आ रही है। फिर घर के खर्चे भी थे, और फिर कोर्ट में लड़ना, वकीलों की फीसें भरना, यहाँ से राजस्थान तक आना जाना, बहुत 10 लाख तो मेरा ऐसे ही आने जाने में और ये सब करने में ही खर्च हो गया। कितना तो हमने अपने रिलेटिव से मतलब लेके और लगा के हमने किसी तरह से यहाँ तक लड़के हम छुड़ा के लेके आ पाए हैं। बहुत बहुत ज्यादा इस पे मेरा पैसा भी खर्च हुआ, और इसमें सबसे ज्यादा मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, क्योंकि मैं यहाँ पे रह नहीं पाती थी, आना जाना लगा रहता था हमारा।
0: और तो और 166 दिनों की जेल ने अखिलेश को कभी ना भूलने वाला एक सदमा भी दिया। भतीजे के जेल जाने के गम में उनके चाचा को हार्ट अटैक आ गया, और करीब महीने भर तक अपने भतीजे का इंतजार करते हुए आखिरकार चाचा ने 20 जून को दुनिया छोड़ दी। फिलहाल अखिलेश ने अपनी नौकरी दोबारा तो ज्वाइन कर ली है। खुद उनका महकमा इस बात से संतुष्ट है कि वो गुनहगार नहीं है, उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इसके बावजूद जेल में बिताए गए इन 166 दिनों ने उन्हें बेगुनाही के बदले सलाखों की जो सजा दी है, वो शायद ही उसे पूरी उम्र कभी भुला पाए।
2: लखनऊ के अखिलेश त्रिपाठी का ये घर पिछले 166 दिनों से उनकी रिहाई को लेकर उनकी पत्नी जयपुर से यूपी दर दर भटक रही थी, और दोष कुछ भी नहीं था, क्योंकि राजस्थान पुलिस ने अखिलेश त्रिपाठी को किसी दूसरे शख्स जिसकी मौत तकरीबन 26 साल पहले हो गई थी, उसकी जगह पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब ऐसे में ये अपने आप को साबित करते रहे, इंतज़ार करते रहे, अपनी लड़ाई लड़ते रहे। उसके बाद 166 दिनों बाद इनको अदालत से राहत मिल पाई। लेकिन इस बीच ना ही मजिस्ट्रेट ने इनकी बात सुनी, ना ही पुलिस ने इनकी बात सुनी, ना ही लोकल पुलिस ने इनकी बात सुनी, ना ही किसी प्रशासन ने। अब ऐसे में पूरा परिवार लाखों रुपए इस पूरे केस में लगा के जो पहले से ही निर्दोष थे वापस घर आ सके हैं। सिस्टम के इस फेलियर को लेकर पूरा परिवार काफ़ी परेशान रहा, और कहीं ना कहीं ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है।
0: सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: बेंगलुरु में एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल कर दिया, पर इस पत्नी ने सिर्फ अपने पति को नहीं मारा बल्कि पति के बराबर में सो रहे 5 साल के बेटे को भी मार डाला। हुआ यूं कि जब पत्नी अपने पति का कत्ल कर रही थी तब बेटा जाग गया। माँ को लगा कि उसने सब कुछ देख लिया है और वो एक चश्मदीद है। बस सिर्फ इसी वजह से उसी माँ ने अपने हाथों से अपने बेटे का गला घोंट डाला।
0: इस मास्क के पीछे एक पिता है, एक ऐसा पिता जो 5 साल के अपने बच्चे के साथ इस वक्त खेल रहा है और उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है। कैमरे के आगे से उस बच्चे के हंसने की आवाज भी आ रही है। और ये है वो बच्चा, मास्क वाले उसी पिता का बेटा। और ये रहा वो फैमिली एल्बम जिसमें पिता, बेटा और माँ तीनों एक ही फ्रेम में मौजूद हैं। फ्रेम में कैद इस तस्वीर को देखकर हर कोई यही कहेगा कि क्या परफेक्ट और कंप्लीट फैमिली है। लेकिन जरा रुकिए, इससे पहले कि आप अपनी कोई राय बना लें, इस घर के अंदर चलते हैं। ये घर 38 साल के अभिनंदन का है। इस घर में अभिनंदन, उसकी पत्नी हरिणी और 5 साल का बेटा रहते हैं। बेंगलुरु में मौजूद अभिनंदन के इस घर में इस वक्त पुलिस आई हुई है। मेन गेट से पुलिस वाले इस कॉरिडोर में आते हैं और फिर अंदर बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। इस कॉरिडोर को अगर आप गौर से देखेंगे तो साफ पता चलता है कि अभिनंदन ने मास्क पहनकर जिस जगह वीडियो शूट किया था, ये वही कॉरिडोर है। दरअसल इस घर में पुलिस अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि अभिनंदन की पत्नी हरिणी ने खुद पुलिस को फोन कर अपने घर बुलाया। 17 अगस्त की सुबह जब हरिणी की आंख खुली और वो अपने पति और बेटे के कमरे में गई तो देखा दोनों सो रहे हैं। जब उसने उन्हें उठाने की कोशिश की तो काफी आवाज देने पर भी दोनों नहीं उठे। इसी के बाद बदहवास उसने पुलिस को फोन किया। अभिनंदन और उसके बेटे को पुलिस फौरन अस्पताल ले जाती है, लेकिन अस्पताल जाने के बाद पता चलता है कि दोनों की मौत हो चुकी है। अब पुलिस इस उलझन में थी कि ऐसा क्या हो सकता है कि बाप बेटे की मौत एक साथ हो गई। अब तक यही लग रहा था कि मामला संदिग्ध तो है पर शायद मर्डर नहीं। लेकिन हाल के वक्त में देश भर में ऐसे इतने केस हो चुके हैं कि बेंगलुरु पुलिस ने इस केस को भी शक की निगाह से देखना शुरू किया। इसी दौरान डॉक्टरों से पुलिस को पता चला कि अभिनंदन के जिस्म पर जख्मों के कुछ निशान हैं। पुलिस का शक थोड़ा और गहराया, पर पुलिस अभी ये समझ नहीं पा रही थी कि अगर मामला कत्ल का है और हरिणी ने ही ये कत्ल किया है तो वो अपने बेटे को क्यों मारेगी। अब पुलिस ने हरिणी और अभिनंदन की कुंडली खंगालनी शुरू की। पता चला 2021 में दोनों की शादी हुई थी, दोनों को एक बेटा हुआ, पर पिछले 2 सालों से पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होने लगा। यहाँ तक कि करीब साल भर पहले से पति और पत्नी दोनों एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग कमरे में सोते थे। हरिणी अलग कमरे में सोती जबकि अभिनंदन अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में। अब पुलिस ने जब हरिणी के मोबाइल फोन को खंगाला तो अजीब चीज पाई। हरिणी ने 16 अगस्त की रात से पहले के सारे चैट, कॉल डिटेल, वीडियो गैलरी, फोन गैलरी, फोटो गैलरी सब खाली कर रखी थी। एक और अजीब चीज पाई, वो ये कि 16 अगस्त की रात घर का सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया था। अब शक की बिना पर पुलिस हरिणी से पूछताछ करती है। हरिणी पुलिस के सवालों का ठीक ठीक जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ वक्त बाद ही पुलिस की सख्ती के आगे हरिणी ने सच बोलना शुरू कर दिया। 2 साल पहले हुए झगड़े के बाद हरिणी की जिंदगी में विनय नाम का एक शख्स आता है। हरिणी और विनय के रिश्ते की भनक अभिनंदन को लग जाती है। दोनों में फिर झगड़ा होता है। इसी के बाद हरिणी विनय के साथ मिलकर अभिनंदन को रास्ते से हटाने का फैसला करती है। 16 अगस्त की रात अभिनंदन अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। इधर हरिणी तभी विनय को घर बुला लेती है। घर के अंदर कॉरिडोर में वो इसी कार के पीछे छुपा रहता है। फिर रात करीब 12:30 बजे हरिणी और विनय चुपके से अभिनंदन के कमरे में जाते हैं। हरिणी अभिनंदन के पैर पकड़ती है और विनय गला। इस बीच अभिनंदन के छटपटाने से बराबर में सो रहा 5 साल का बेटा जाग जाता है। माँ के हाथों पिता को मरते वो देख लेता है। बस इसीलिए हरिणी पति के बाद अपने बेटे का भी गला घोंट डालती है। विजय और हरिणी इस वक्त बेंगलुरु पुलिस की कस्टडी में हैं और इस तरह एक और पत्नी के हाथों एक पति मारा गया। पर अफसोस, वो पत्नी जो एक माँ भी थी, उसने अपने बेटे को भी मारने से गुरेज नहीं किया। सगाई राज, बेंगलुरु, आज तक।
5: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

बीजेपी की नवीन टीम की अगली चुनावों पर नजर। तावड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की भी चर्चा। मोदी सरकार को राहुल गांधी की चेतावनी, जेनजी की तरह ओबीसी भी सड़क पर उतरा तो केंद्र को झुकना पड़ेगा। पूछा, जाति जनगणना में एससी एसटी की तरह ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन फिर से गिरफ्तार, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी का एक्शन। भड़के केजरीवाल, पूछा आखिर कब तक चलती रहेगी बीजेपी की तानाशाही। यूजीसी नेट विवाद के बाद एनटीए में बड़े बदलावों के आदेश, 600 विशेषज्ञों को हटाया गया। परीक्षा और प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियों के बाद 4 स्तरीय पेपर जांच व्यवस्था लागू। और बिहार के नालंदा में मिड डे मील खाने से करीब 40 छात्र बीमार, नमक की जगह सब्जी में डाल दिया गया था वॉशिंग पाउडर। नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी मिडिल स्कूल की घटना।

0: मुंबई में एफडीए का बड़ा एक्शन, 3 रेस्टोरेंट पर कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा नियमों में मिली गंभीर खामियां, एफडीए की कार्रवाई पर सीएम का समर्थन, बोले खाद्य सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, एक्शन जारी रहेगा। हार से चेंबूर तक एफडीए की कार्रवाई, प्रिंस ऑफ वॉल्स कैफे सिफारिश और जेप्टो पर लाइसेंस निलंबन। चेंबूर के जेप्टो लिमिटेड में भी साफ सफाई, स्टोरेज और खाद्य पदार्थों के तापमान में गंभीर खामियां पाई गई। खार के प्रिंस ऑफ वॉल्स और रेस्टोरों में खाद्य पदार्थों के तापमान नियंत्रण, भंडारण उपकरणों की सफाई और कीट नियंत्रण से जुड़ी हुई कई खामियां मिली। वहीं कैफे सिफारिश में भी खाद्य पदार्थों के तापमान और भंडारण की व्यवस्था के साथ कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं पर्याप्त नहीं पाई गई। गुरु नानक डेयरी एंड स्वीट केस में कोर्ट के आदेश पर एफडीए कमिश्नर का बयान, बोले हमारी कार्रवाई सही थी, कानूनी विकल्प अपनाएंगे। ठाणे के सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम की जगह बजा लता मंगेशकर का गीत, डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी। चंद्रपुर में आदिवासी छात्रों का आंदोलन उग्र हुआ, छात्रों ने राज्य सरकार के छात्रावास संबंधी नए सरकारी निर्णय को रद्द करने की मांग की। इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, संदिग्ध विदेशी रेमिटेंस की देश भर में जांच शुरू हुई, 394 संस्थाएं और 36 प्रोफेशनल्स जांच के दायरे में। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, बॉम्बे हाईकोर्ट के मालिकों और बिजनेस पार्टनर की जमानत को रद्द किया गया, 2 में सरेंडर के आदेश दिए गए। महाराष्ट्र में दही हांडी को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने की तैयारियां, गोविंदाओं को स्पेन भेजेगी महाराष्ट्र सरकार। मुंबई में ड्रग्स पर बड़ी कार्रवाई, बांद्रा में ऑटो ड्राइवर से 10 करोड़ से ज्यादा की चरस को जब्त किया गया। पुणे में टेम्पो के पहिए के नीचे आया 10 का बच्चा, मौके पर मौत हुई, बहन गंभीर रूप से घायल हुई, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। संभाजीनगर में बीवी का मकबरा में हुज के अंदर युवकों का खतरनाक खेल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। शाहरुख खान के घर मन्नत में घुस गया था 8 लंबा सांप, टीम ने रेस्क्यू किया। आवारापन 2 की सफलता पर इमरान हाशमी के पत्नी का इमोशनल पोस्ट, परवीन हाशमी ने फिल्म इंडस्ट्री में इमरान की मेहनत, अनुशासन और सब्र की तारीफ की। राम गोपाल की अगली फिल्म पुलिस कंपनी में नजर आएंगे अभिनेता हर्षवर्धन राणे, 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर बन रही फिल्म में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म प्रेम कीटाणु का टीजर जारी किया गया, फिल्म में वीर पहाड़िया, अपार शक्ति खुराना, आफिया और राकेश वेदी का अहम रोल। इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म गनमास्टर G9 की रिलीज डेट सामने आई है, फिल्म 27 को दुनिया भर में रिलीज होगी। रणवीर सिंह की प्रलय की शूटिंग शुरू हुई, इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ लोका फेम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन भी नजर आएंगे। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक 100 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले टैक्स पेयर की संख्या एक साल में 39% बढ़ी है, 1 करोड़ से ज्यादा इनकम वालों की संख्या भी 5.5 लाख के पार पहुंची। कीमतों में इजाफे से देश में स्मार्टफोन्स की बिक्री में 10% तक की गिरावट, 25,000 से सस्ते बजट फोन्स की बिक्री 88% घटी, 50,000 से महंगे फोन्स की सेल्स में 72% का उछाल। अमेरिका ईरान के बीच समझौते की उम्मीदें टूटने से क्रूड ऑयल की प्राइसेस में तेजी, मंगलवार को क्रूड ऑयल $91 के पार पहुंचा, भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीदों को लगा झटका। काला सागर में तनाव बढ़ने से गेहूं की सप्लाई पर मंडराया संकट, पिछले 1 से देश की प्रमुख मंडियों में गेहूं के दाम 4% तक बढ़ गए हैं, आवक में देरी के बीच थोक मंडी में प्याज के दाम भी बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस को नियम न मानने पर ग्राउंड करने की सख्त चेतावनी दी है, त्योहारों के दौरान बढ़ते किराए और बैगेज लिमिट घटाने पर सरकार से मांगा गया जवाब, 3 में आएंगे नियम। नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली भेजे जाने की अटकलों को हवा दे दी है। चौहान ने दावा यह किया कि फडणवीस को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और वो मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद फडणवीस ने ऐसी अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि वो महाराष्ट्र में ही जनता की सेवा करेंगे, उनका दिल्ली जाने का कोई इरादा नहीं है। अब सवाल यह है कि फडणवीस को दिल्ली नहीं जाने पर सफाई क्यों देनी पड़ रही है।
1: फडणवीस के दिल्ली जाने की अफवाह किसने उड़ाई? फडणवीस की सफाई, दिल्ली नहीं जाऊंगा, महाराष्ट्र में ही रहूंगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली जाने की अटकलों को हवा दी। चौहान ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर फडणवीस का प्रमोशन होता है तो उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं।
2: पिछली बार आपने भी एक दावा किया था कि उन्हें अब दिल्ली में जाना चाहिए या दिल्ली में जाने के वो काबिल है।
3: मैंने बिल्कुल नहीं कहा ऐसे, कुछ भी कहा, जाते तो प्रमोशन होगा तो मेरी शुभकामनाएं उनको। मैंने ये कहा था कि केंद्र में एक पूर्ण समय का एक अच्छा सक्षम शिक्षा मंत्री हो। आज जो प्रधानमंत्री ने व्यवस्था की है बिल्कुल गलत व्यवस्था है। एक एक व्यक्ति को चार चार महकमे आप दे रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। आप लोगों ने देवेंद्र जी का भी नाम चलाया है। देखिये, देवेंद्र जी अगर दिल्ली जाना चाहते हैं, उनकी प्रमोशन हो रही, तो मेरी तो शुभकामनाएं है, लेकिन हम उनको शिक्षा मंत्री के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे। जिनके चलते महाराष्ट्र में कोचिंग क्लासेस, पेपर सेटर सब घपलाबाजी कर रहे थे, आपके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आप गृहमंत्री है, आप मुख्यमंत्री है, आप कानून मंत्री है, और आप वहां जाके व्यवस्था सुधारेंगे। आप पहले जो भी भाजपा के लोग इस गोरख धंधे में शामिल, उसको पकड़िए, उनको सजा दीजिए। वो तो कर नहीं सकते आप। जहां तक उनके दिल्ली जाने का बात है, वो भाजपा का अंदरूनी मामला है। शायद कोई व्यक्ति किसी के पर काटना चाहता है, कोई बढ़ा दे, तो अपने आप देखे क्या करना है, लेकिन शिक्षा मंत्री अच्छा मिलना चाहिए, हमारी मांग है।
1: दरअसल सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है कि मोदी कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार में फडणवीस को शिक्षा मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने फडणवीस के दिल्ली जाने पर तंज कसा है।
4: राजकारणामध्ये पतंग उडवणं, चर्चा होणं, या गोष्टी स्वाभाविक आहेत, कारण दिल्लीमधलं जे कॅबिनेट आहे अत्यंत कमकुवत आहे, भिसाळ आहे, गचाळ आहे, अकार्यक्षम आहे, हे तुम्ही पाहिलं। आणि प्रधानमंत्री वारंवार आता ज्या काही गोष्टी करू इच्छित आहेत जंतर मंतरच्या प्रकरणानंतर, त्यांना एक उत्तम कॅबिनेट बनवायचं आहे आणि त्यासाठी त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांची आवश्यकता आहे असं ते सांगतात, त्यांच्या सहकाऱ्यांना सांगतात। आणि काल सुद्धा 100% त्यांनी देवेंद्रजींना सांगितलेलं असणार, मग ते रिकामट्याकडे आहेत का? देवेंद्रजी हळूहळू इकडलं काम आवरतील आणि दिल्लीत जातील।
1: एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि अच्छी बात है, विपक्ष के नेता भी फडणवीस को शुभकामनाएं दे रहे हैं।
5: देखिए, जो खुद वो बोल रहे हैं और मैंने भी उनसे बातचीत की, तो जो आप बोल रहे हैं मीडिया वो जाएंगे जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, ऐसा जो है ये मैं समझ रहा हूँ। मैं खुद उनसे भी बातचीत की और खुद उन्होंने भी जो है कई बार कहा कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में रहने वाला हूं। अभी जल्दबाजी में कहा कि केंद्र में जाने का कोई भी प्लान नहीं है।
6: संजय राउत कह रहे हैं कि राष्ट्रहित के लिए अब वक्त आ गया है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली जाना चाहिए, राष्ट्र की पुकार है उनका
5: कहना। तो अच्छी बात है, एक विरोधी पक्ष नेता क्या वो उनके बारे में इतना अच्छा कहता है, तो हमारी सबके लिए बड़ी गर्व की बात है।
1: वही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता और पीएम मोदी ने उन्हें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी है और वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करते रहेंगे।
7: मी दिल्लीत असलो तरी चर्चा होतात, मुंबईत असलो तरी चर्चा होतात। मला असं वाटतं की अनेक रिकामटेकडे लोक आहेत, त्यांना माझ्याबद्दल चर्चा करायला आवडतात, त्यामुळे त्यांना आनंद घेऊ द्या। मला असं वाटतं की ज्याला जे तारे तोडायचे आहेत, ज्याला जे फुगे उडवायचे आहेत, ज्याला जी पतंग उडवायची आहे, ती पतंग त्यांना उडवू द्या। मी महाराष्ट्रात आहे, महाराष्ट्राच्या जनतेने आणि माझे नेते नरेंद्र मोदीजी यांनी महाराष्ट्राची जबाबदारी माझ्याकडे दिलेली आहे। मी प्रामाणिकपणे महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा करतो आणि ती करत राहणार आहे।
8: तुम्हाला दिल्लीत पाठवण्यासाठी मागे कोण लागले?
7: अनेक लोकांना असं वाटतं की मी दिल्लीत गेलं पाहिजे, पण त्या सगळ्यांना मी सांगतो की मी मुंबईतच आहे।
1: 17 अगस्त को दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पीएम से उनकी चर्चा सिर्फ महाराष्ट्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई है। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी आलाकमान वाकई फडणवीस को मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र में क्या बीजेपी उनका विकल्प भी तलाश रही है?
9: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी दिल्ली जाने की अटकलों पर खुद ही पूर्ण विराम लगा दिया है। हालांकि विपक्ष लगातार दावों और तंज के जरिए इसे हवा देने का काम कर रहा है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बदलती राजनीतिक परिस्थितियां और सहयोगी दलों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को लेकर विपक्ष देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार कर इन सभी अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: कल महाराष्ट्र में इस बात का फैसला होना है कि गैर मराठी ऑटो टैक्सी चलाने वालों को सरकार और मोहलत देगी या फिर नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने इन ऑटो टैक्सी वालों को मराठी भाषा सीखने के लिए 100 दिन का समय दिया था, जिसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ऑटो टैक्सी यूनियंस की मांग अब यह है कि सरकार उन्हें मराठी सीखने के लिए कम से कम 3 महीने और दे दे। लेकिन सरकार साफ कर चुकी है कि जो लोग नोटिस मिलने के बावजूद मराठी नहीं सीखेंगे, उनका लाइसेंस और परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

0: महाराष्ट्र में मराठी भाषा जरूरी है या सियासत चमकाने के लिए मजबूरी, क्योंकि परिवहन विभाग ने गैर मराठी ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सीखने की 100 दिन की जो डेडलाइन दी थी वो पूरी हो चुकी है। अब 19 अगस्त को परिवहन विभाग की अहम बैठक होनी है, जिसमें सरकार ये तय करेगी कि जो ड्राइवर अभी भी मराठी नहीं बोल पा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए या ड्राइवरों को कुछ दिन की मोहलत और दी जाए।
1: इसके लिए हमने कल मंत्रालय में एक बैठक भी बुलाई है और उस बैठक के माध्यम से करीबन और भी 6 लाख के आसपास अमराठी रिक्शा टैक्सी चालक है, उन्होंने मराठी भाषा सीखना चाहिए, इसके लिए प्रयास हम करेंगे। और साथ ही में वो नहीं सीखेंगे तो उनके ऊपर 12 अगस्त 2026 को जो आरटीओ का नया कानून बनाया कि अगर उनको अगर मराठी नहीं आता रहेगा तो हम 1 हफ्ते का मोहलत देंगे, 1 महीने का मोहलत देंगे। 1 महीने में वो अगर मराठी सीख नहीं पाए तो उनको जो लाइसेंस है 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा, और 3 महीने में भी वो मराठी सीख नहीं पाए तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो ये हमारा कानून है और कानून के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। भविष्य में भी हमारे राज्य में बहुत बड़ा राज्य है, हमारे राज्य में आजू बाजू के राज्य से आने वाले सभी जो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर है उनको यही आह्वान करते हैं कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र की परंपरा है, मराठी में अभिजात भाषा का दर्जा आदरणीय पंतप्रधान जी ने दिया, उसका आदर करना आपका भी कर्तव्य है जैसे हमारा कर्तव्य है।
0: परिवहन मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में हर टैक्सी और ऑटो चलाने वाले लोगों को सामान्य बातचीत के स्तर की मराठी आना जरूरी होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा, फिर भी भाषा न सीखने पर लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित होगा और दोबारा उल्लंघन पर लाइसेंस और परमिट स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से पहले साफ किया गया था कि गैर मराठी ड्राइवरों को मराठी सीखनी होगी और इसके लिए उन्हें 100 दिनों की समय सीमा दी गई थी। इसके लिए बाकायदा कोचिंग क्लास और वर्कशॉप भी आयोजित की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से कोचिंग क्लास पूरे समय नहीं चल सकी। इसलिए विपक्ष भी मांग कर रहा है कि सरकार को जोर जबरदस्ती करने की जगह 100 दिन की मोहलत और देनी चाहिए।
2: मराठी का आदर है, मराठी आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको नहीं आती उसका आप रिजेक्ट कर दोगे। अगर आनी चाहिए तो जब तक वो एलिजिबल है, अगर लाइसेंस लेने को एलिजिबल है तो उसको मराठी सिखाने की जवाबदारी भी सरकार की है। उसका लाइसेंस इश्यू करो और उसको मराठी सिखाते रहो, क्योंकि उसका पेट और उसका घर इम्पोर्टेंट है, उसके बच्चे इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरीके के आपने हर राज्य ने अपने आप जिस चीज को लागू किया तो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ रह जाएगा। हर राज्य में जाके, किसी भी राज्य में जाके, कोई भी राज्य का आदमी अपना घर बसा सकता है, खा सकता है, पी सकता है, रह सकता है। कंपल्शन कर रहे हो आप, तो कंपल्शन कर रहे हो तो सरकार की जवाबदारी उसको पूरी तरीके से ट्रेन करना। उसको ये भाषा नहीं आती करके लाइसेंस नहीं मिलेगा, रिक्शा नहीं मिलेगी, ये बात ठीक नहीं है।
0: हालांकि ऑटो टैक्सी वाले कह रहे हैं कि उन्हें मराठी सीखने से परहेज नहीं है, बस सरकार लाइसेंस और परमिट कैंसिल करने की धमकी बार बार ना दे और उन्हें कुछ समय की मोहलत मिलेगी तो वो मराठी अच्छे से सीख सकेंगे।
3: इस फैसले को आप कैसे देखते हैं?
4: फैसला सुनील कुमार तिवारी सर जी, जो फैसला है वो फैसला तो अच्छा है, मराठी सब जितने भी यहाँ है उनको सीखना तो चाहिए, लेकिन जो समय है समय बढ़ाना चाहिए, सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम भी गरीब हैं, रोज का 500 रुपया 600 रुपया कमाते हैं, उसमें परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर सरकार है वो दया दृष्टि दिखाना बहुत जरूरी है। और सरकार जी से हम प्रताप सरनाई सर जी से बोलना चाहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा तकलीफ हमें आप समझिए हमारे बारे में।
3: क्या मांग सरकार से मांग करेंगे?
4: सरकार से यही मांग करते हैं कि पब्लिक सीख रही है, जो टैक्सी वाले रिक्शा वाले हैं वो लोग सब सीख रहे हैं, जरूरत है सीखने की, लेकिन आप एक्शन मत लीजिए सर जी। आप सीख रहे हो, सीखेंगे, उनको आप प्रेशर डालो सीखेंगे, लेकिन एक्शन ना करिए जिससे हम लोग प्रताड़ित हो यहाँ से रहने के लिए।
3: बिल्कुल, तो साफ है कि सरकार का जो फैसला है कि मराठी आनी चाहिए वो सीखेंगे भी, ये भी तैयारी है, लेकिन यही सरकार से विनती है इनकी कि इसको लेकर सरकार कोई एक्शन ना ले, क्योंकि यही इनकी रोजी रोटी है और अगर यही सरकार छीन लेगी तो ये कहां जाएंगे और क्या करेंगे।
0: लेकिन बीजेपी ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेता हाजी अराफात शेख कह रहे हैं कि सरकार किसी भी ड्राइवर का लाइसेंस रद्द नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जोर जबरदस्ती की तो यूनियन कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
3: 100 दिन का समय पूरा हो चुका है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के उन टैक्सी और रिक्शा ड्राइवरों को 100 दिन की मोहलत दी थी मराठी सीखने के लिए, जिनको मराठी नहीं आती थी, अब वो समय पूरा हो चुका है। कल इसी विषय को लेकर महाराष्ट्र सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक अहम बैठक होनी है जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कुछ संस्थाओं ने मांग की है कि और समय सीमा बढ़ा कर दी जाए जिसकी वजह से जो मराठी नहीं सीख पाए हैं वो मराठी सीख सकें। अब देखना होगा महाराष्ट्र सरकार कल की बैठक में क्या फैसला लेती है, क्या वो सख्ती चुनती है या वो इंसानियत की मिसाल देते हुए इन ड्राइवरों को एक और मौका देगी ताकि वो मराठी सीख सकें, क्योंकि ये लाइसेंस इन ड्राइवरों के लिए सिर्फ एक लाइसेंस नहीं है बल्कि इनकी रोजी रोटी है। कैमरामैन मंगेश के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
5: महाराष्ट्र में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पर सियासत तेज हो चुकी है और विपक्ष का आरोप यह है कि SIR की आड़ में बीजेपी ने करोड़ों लोगों के वोट्स काट डाले हैं, जबकि सरकार कह रही है कि विपक्ष झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहा है। लेकिन कांग्रेस, शिवसेना, UBT और NCP SP कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाना सरकार की साजिश का हिस्सा है।

0: केस करना रहा कि दूसरी।
1: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहा है।
2: इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो आज सरकारी मुलाजिम की तरफ से काम कर रही है। मोदी जी ने अपने चुने हुए लोगों को इलेक्शन कमीशन में लगाया है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करें, और वोटर लिस्ट जो है, जो बिल्कुल जान है इलेक्शन प्रोसेस की, वो बिल्कुल प्योर हो, क्रेडिबल हो, उसमें कोई डुप्लीकेट फर्जी बोगस वोट ना हो। लेकिन देखिए, 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में जब लोकसभा में बहुत बुरी तरह से बीजेपी की पिटाई हुई, तब बीजेपी ने क्या किया? देखिए, 24 सितंबर 2024 को अमित शाह जी नागपुर गए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने भाषण करते समय कहा कि आप 10% हर एक बूथ में वोट बढ़ाइए।
1: एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने भी मतदाता सूची में नामों को लेकर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया।
3: उनके जो फॉर्म्स है वो कलेक्ट ही नहीं हुए। तो महाराष्ट्र में 9,70,00,000 मतदार थे, अभी उनमें से 2 करोड़ के नाम ये वहां पे रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उनके तरफ से जब ये एसआईआर किया गया था कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। उसमें कुछ जेन्युइन लोगों के, मतलब जेन्युइन इन द सेंस जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका मृत्यु हो गया, उन लोगों का नाम कट होता है तो ठीक है। जो लोग वहां पे स्थानांतरित हुए, दूसरे सिटी में जाके रहे, तो उनका नाम कम हो रहा है तो ठीक है। लेकिन हमारा कहना है कि वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद भाजपा के विचार के नहीं है, उनके नाम भी वहां पे कम किए गए। अभी जो 2 करोड़ लोग कम होने के बाद महाराष्ट्र में अभी जो मतदार का जो आंकड़ा है वो आता है 7,60,00,000। उसमें भी अभी वो आगे जाके मैप्ड, अनमैप्ड एंड एक थर्ड कैटेगरी उन्होंने जो किया है वेस्ट बंगाल में भी उन्होंने किया था कि विथ एनोमलीज। तो ये जो विथ एनोमलीज कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भाजपा के विचार के नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में उन लोगों को वहां पे मतदान के लिए नहीं दिया था। तो 2 करोड़ का आंकड़ा आगे जाके शायद वो 2,20,00,000 या शायद 2,50,00,000 तक भी जा सकता है। तो महाराष्ट्र में 9,70,00,000 जो मतदार थे वो शायद आगे जाके सिर्फ 7 करोड़ के मतदान रहेगी।
1: वहीं कांग्रेस ने भी इसे गंभीर मामला बताते हुए एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक असलम शेख ने दावा किया कि महाराष्ट्र में करोड़ों की तादाद में लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं, तो क्या इतनी बड़ी आबादी गायब हो गई या लोगों की मौत हो गई?
4: पूरे मुंबई शहर में जो है 50 और 62% के बीच में हुआ है। अनट्रेन टीचर रहे, अधिकारी थे नहीं, बारिश भी थी और सही तरीके से कर भी नहीं रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर का ये आदेश था कि जाके डोर टू डोर करेंगे, 20% भी इस तरीके से कुछ तरीके से काम हुआ नहीं है। तो ये सारी बात जो है चिंताजनक है। आज ये सरकार की जवाबदारी थी कि एक एक घर में जाके उनका एसआईआर का फॉर्म भर के उनको सही तरीके से न्याय देना, लेकिन ये आदत है भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों को कतार में लगाना और अपने उद्योग चालू रखना। पूरा देश कतार में आज ऐसा है कि पूरा महाराष्ट्र मुंबई कतार में, लेकिन मुंबई की जगह जो है प्राइवेट डेवलपर्स को दी जा रही है, मुंबई के टेंडर्स सब प्राइवेट लोगों को दिए जा रहे हैं। ये काम करते हैं और बाकी लोगों को इस तरीके से काम पे लगाते हैं। तो बाकी के जो हमारे जो मुंबई शहर में रहने वाले लोग हैं वो अपने हक से दूर ना रहे, उसके संदर्भ में आज हमारी मीटिंग।

0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: नागपुर में आज उस समय हड़कंप मच गया था जब 12 निजी स्कूलों, एक सरकारी स्कूल और एक नागपुर कलेक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और ये ईमेल भेजा गया। पुलिस ने आनन फानन में जांच शुरू की, उसके बाद अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु मिल तो नहीं पाई, लेकिन इस दौरान बच्चों के माता पिता स्कूल जरूर पहुंच गए थे। पुलिस के मुताबिक धमकी वाले ईमेल में खालिस्तानी शब्द का भी जिक्र है और 31 अगस्त तक हमले की धमकी दी गई है।
2: नागपुर शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर की 12 निजी एक सरकारी स्कूल को बम से उड़ाने के धमकी के ईमेल प्राप्त हुए। दरअसल मंगलवार सुबह ये मेल जो है ईमेल के जरिए 12 निजी एक सरकारी स्कूल को प्राप्त हुआ था, साथ ही नागपुर के कलेक्टर ऑफिस को भी बम से उड़ाने के धमकी का एक मेल मिलने से एक ही हड़कंप मच गया। नागपुर के इस समय हम दावा स्थित सेंटर पॉइंट स्कूल के पास है, यही वो स्कूल है। इस स्कूल में भी एक ईमेल मिला था जिस ईमेल में बताया जा रहा है कि एक खालिस्तान का जिक्र था, साथ ही बम स्कूल में रखने की और बम से उड़ाने की धमकी का ये ईमेल जो है वो स्कूल प्रबंधन को ईमेल के जरिए मिला था, जिसके बाद शहर में पुलिस, BDDS का स्क्वाड, ATS की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि इस पूरी जाँच के बाद जिन स्कूलों को बम से उड़ाने के धमकी का ईमेल मिला था वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया, लेकिन एक बात जरूर है कि ईमेल के द्वारा स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी का जो धमकी मिली उसके बाद अभिभावक परेशान थे, स्कूल पहुंचे अपने छात्रों को लेने के लिए, साथ ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध फिलहाल जो है वो इस स्कूल में नहीं पाया गया है। हालांकि इस पूरा जो ईमेल है वो कहां से आया था इसकी जांच अब नागपुर पुलिस कर रही है। योगेश पांडे, नागपुर आज तक।
1: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: और जेएनयू में कार्यक्रम हुआ था जहां जिन लोगों ने हमला किया था स्वागत की उत्ता थी। चिदम्बरम साहब आप देश के प्रेमक भी है रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई एडवोकेट है, कानून समझते हैं, आप संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा के, आपको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। तो सीधा मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है उसी का चेहरा बने हैं पिता चिदम्बरम।
1: पुली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया।

मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर जो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदम्बरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक, ये नक्सलिज्म का दिमाग, और ये उसके हेडमास्टर हैं।

बीजेपी की नवीन टीम के अगले चुनावों पर नजर। तावड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की भी चर्चा। मोदी सरकार को राहुल गांधी की चेतावनी, जेनजी की तरह ओबीसी भी सड़क पर उतरा तो केंद्र को झुकना पड़ेगा। पूछा जाति जनगणना में एससी एसटी की तरह ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी का एक्शन भड़के। केजरीवाल पूछा आखिर कब तक चलती रहेगी बीजेपी की तानाशाही। यूजीसी नेट विवाद के बाद एनटीए में बड़े बदलाव के आदेश, 600 विशेषज्ञों को हटाया गया। परीक्षा और प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियों के बाद 4 स्तरीय पेपर जांच व्यवस्था लागू। और बिहार के नालंदा में मिड डे मील खाने से करीब 40 छात्र बीमार, नमक की जगह सब्जी में डाल दिया वॉशिंग पाउडर। नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी मिडिल स्कूल की घटना। Presented.

बीजेपी की नवीन टीम के अगले चुनावों पर नजर। तांबड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पुनिया को पंजाब का। बीजेपी की नवीन टीम में तरुण चुग की गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की भी चर्चाएं। मोदी सरकार को राहुल गांधी की चेतावनी, जेएनसी की तरह ओबीसी भी सड़क पर उतरा तो केंद्र को झुकना पड़ेगा। पूछा, जाति जनगणना में एससी एसटी की तरह ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को फिर गिरफ्तार किया गया, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी का एक्शन। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर भड़के हैं केजरीवाल। पूछा, आखिर कब तक चलती रहेगी बीजेपी की तानाशाही। यूजीसी नेट के विवाद में एनटीए में बड़े बदलावों के आदेश, से विशेषज्ञों को हटाया गया परीक्षा और प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियों के बाद चार स्तरीय पेपर जांच व्यवस्था लागू। नालंदा के पारसी मिडिल स्कूलों में मिड डे मील का ब्लंडर, नमक की जगह वॉशिंग पाउडर परोसने से करीब 40 छात्राएं बीमार। पेट दर्द उल्टी की शिकायत के बाद बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, परिजनों में मचा हड़कंप। सोयाबीन की सब्जी में नमक कम होने पर छात्राओं ने मांगा था नमक, शिक्षक ने गलती से परोस दिया था वॉशिंग पाउडर। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। झारखंड में जेएसएससी साथ ही सीजीएल रद्द होने पर अभ्यर्थियों की का मशाल जुलूस, न्याय की मांग की गई। ट्रंप की चुनाव आयोग पर टिप्पणी पर एमईए का जवाब, रणधीर जायसवाल बोले, भारत की चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता दुनिया भर में स्थापित। के सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम की जगह बजा लता मंगेशकर का गीत, डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी। चंद्रपुर में आदिवासी छात्रों का आंदोलन उग्र हुआ, छात्रों ने राज्य सरकार के छात्रावास संबंधी नए सरकारी निर्णय को रद्द करने की मांग की है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालिकों और बिजनेस पार्टनर की जमानत को रद्द किया, दो हफ्ते में सरेंडर के आदेश। त्रिशा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई चार्जशीट, पति और सास पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप, मौत से पहले भेजे गए थे परेशान करने वाले मैसेज। मौत से पहले त्रिशा शर्मा के मैसेज, पति ने सारी हदों को पार कर दिया, घुटन हो रही है, गायब होने का रास्ता ढूंढ लूंगी। मुंबई में एफडीए का बड़ा एक्शन, 3 रेस्टोरेंट पर कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा नियमों में मिली गंभीर खामियां। एफडीए की कार्रवाई पर सीएम का समर्थन, बोले खाद्य सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, एक्शन जारी रहेगा। हार से चेंबूर तक एफडीए की कार्रवाई, प्रिंस ऑफ वेल्स कैफे और साथी जैप्टो पर लाइसेंस के निलंबन की खबर। चेंबूर के जैप्टो लिमिटेड में भी साफ सफाई, स्टोरेज और खाद्य पदार्थों के तापमान में गंभीर खामियां पाई गई। खार के प्रिंस ऑफ वेल्स में खाद्य पदार्थों के तापमान नियंत्रण, भंडारण उपकरणों की सफाई और कीट नियंत्रण से जुड़ी कमियां मिली। वहीं कैफे में भी खाद्य पदार्थों के तापमान और भंडारण की व्यवस्था के साथ ही कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ी हुई सुविधाएं पर्याप्त नहीं पाई गई। गुरु नानक डेयरी एंड स्वीट्स केस में कोर्ट के आदेश पर एफडीए कमिश्नर का बयान, बोले हमारी कार्रवाई सही थी, कानूनी विकल्प अपनाए जाएंगे। इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, संदिग्ध विदेशी रेमिटेंस की देश भर में जांच शुरू हुई, 349 संस्थाएं और 36 प्रोफेशनल्स जांच के दायरे में। तेजस्वी यादव का ऐलान, आज गांधी मैदान से राजभवन तक युवाओं का मार्च, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग। ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च से हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग तक, यूपी जापान साझेदारी को रफ्तार, 2 ग्रीन हाइड्रोजन सीओईज को 50-50 करोड़ रुपए की मदद। जापानीज निवेश में यूपी में बढ़ेंगे रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग के अवसर, एस्कॉट्स और बाकी कुछ और कंपनियां, 2029 करोड़ का प्रोजेक्ट है, पैदा होंगे 3829 रोजगार। आजमगढ़ के शिक्षक की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, फीस वसूली के आरोप, अधिकारियों के आश्वासन पर धरना खत्म हुआ। सूरत में गांव में कमरे में चल रही कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई बच्चों को बरामदे में और जमीन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भोपाल में सीलिंग के खिलाफ व्यापारियों का जनसैलाब उमड़ा, रोशनपुरा चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन। राजकोट में नंबर प्लेट नहीं तो नहीं मिलेगा ईंधन, ये नियम लागू करने के बाद गुजरात पहला शहर बना है राजकोट। शाहरुख खान के घर मन्नत में घुसा 8 फुट लंबा सांप, टीम ने रेस्क्यू किया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटने बढ़ने से नमो घाट तक पहुंच गया बाढ़ का पानी, 75 फीट ऊंचे स्कल्पचर पर पहुंच गया है पानी। गंगा में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है जलस्तर, नमो घाट पर पर्यटकों की आवाजाही घट गई है, नाव संचालन पर भी रोक। नवसारी में समुद्र में डूब गई है नाव, 9 मछुआरों की जान बची, कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से किया एयरलिफ्ट रेस्क्यू। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, जमकर बरसे बादल, तस्वीरें सामने आई। सोलन में भारी बारिश और भूस्खलन से रेल रोड यातायात प्रभावित हुआ, कालका शिमला ट्रैक पर ट्रेनें ठप हुई, मलबा हटाने का काम जारी।
देहरादून में लगातार बारिश के बीच टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी उफान पर है। तेज बहाव के चलते एक घंटे तक बाधित रहा मार्ग। आसनसोल के रेल पार्क बाढ़ जैसे हालात हैं, 100 से ज्यादा घर प्रभावित हुए, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सिविल डिफेंस और क्यूआर टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, करीब 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया। लगातार बारिश से पुरुलिया में सड़कें जलमग्न हैं, लोगों ने एहतियात बरतने की शुरू की हैं कोशिशें। पिछले दो दिनों में बांकुरा जिले में हुई भारी बारिश, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंधेश्वरी नदी, उफान पर फंसा ट्रक। जबलपुर के रेस्टोरेंट में युवती के मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया, 2 सेकंड में पेट में 4 बार चाकू मारे, तड़पते हुए देखने और लहूलुहान हथियार लेकर खड़ा रहा आरोपी। पुणे में टेम्पो के पहिए के नीचे आया 10 साल का बच्चा, मौके पर मौत हुई, गंभीर रूप से बहन घायल हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। इंदौर दोहरे हत्याकांड में 8 साल के बेटे का बयान सामने आया, बोला पिता ने पहले मां को मारा और फिर बहन की हत्या कर डाली, मैंने मरने का नाटक किया तब बची जान। मध्य प्रदेश के भिंड में सड़क हादसा, लखीमपुर खीरी के 8 मजदूरों की मौत हुई, 22 घायल हुए, सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया। संभाजी नगर में बीवी का मकबरा में हुज के अंदर युवकों का खतरनाक खेल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुरी जगन्नाथ मंदिर में बड़ी सुरक्षा चूक, युवक मंदिर की ऊपरी संरचना तक चढ़ा, घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित उतारा गया। मेरठ में एक क्लिनिक में मिला था महिला डॉक्टर का फंदे से लटका हुआ शव, 7 महीने पहले हुई थी शादी, भाई ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। ओडिशा में बाढ़ के बीच 5 दिन से लापता युवक पेट से जिंदा मिला, मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। भिंड में प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही मासूम बच्ची की हत्या कर डाली गई, मां और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भावनगर में जुए के दौरान मची भगदड़, कुएं में गिर गए 4 युवक, 3 की मौत हुई, पुलिस रेड को लेकर परिवार पुलिस के दावे अलग अलग हैं। कानपुर में बिजली विभाग के स्क्रैप खेल पर पुलिस की कार्रवाई, जेई गिरफ्तार, अन्य अधिकारियों की जांच शुरू। हैदराबाद में नकली घी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 36 टन मिलावटी घी और कच्चा माल जब्त किया गया, तेल केमिकल मिलाकर बनाते थे नकली घी। मुंबई में ड्रग्स पर बड़ी कार्रवाई, बांद्रा के ऑटो ड्राइवर से 10 करोड़ से ज्यादा की चरस जब्त की गई। इटावा में डबल मर्डर का खुलासा, गुजारा भत्ता से बचने के लिए पति ने साले संग मिलकर पत्नी और सास को मौत के घाट उतार दिया। उज्जैन में ब्रिज की मजबूती के लिए करवाया गया जंप टेस्ट, विवादों में सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर की गई पोस्ट पर छिड़ा है विवाद। कोलकाता में भारी बारिश के बीच पुरानी बहुमंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, 1 महिला की मौत हुई, 15 लोग घायल हुए। हापुड़ में पुलिस चौकी से 150 मीटर दूर युवक की पीट पीट कर हत्या, हमले का वीडियो सामने आया, 4 आरोपी फरार। राजकोट में गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई, 204 किलो गांजा जब्त किया गया, 1 करोड़ से ज्यादा का माल, 2 की गिरफ्तारी। दिल्ली के कालकाजी में मशहूर संगीतकार का शव 5 दिनों तक घर में पड़ा रहा, बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। बेतिया में स्ट्रेचर नहीं मिलने के बाद बीमार बेटी को गोद में लेकर भटकती रही मां, वीडियो वायरल हुआ, अधीक्षक बोले मामले की जांच जारी। केरलम हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, टाइगर रिजर्व और पवित्र स्थल पर मोहनलाल की फिल्म को शूटिंग पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। कश्मीर की सालों पुरानी परंपरा संग तराश को जीवित रखे हुए बांदीपुरा के एक कारीगर बेजान पत्थरों को सुंदर और कलात्मक चीजों में बदलने में माहिर है। मथुरा जिला कारागार में महिला कैदी बना रही हैं इको फ्रेंडली राखियां, 20 महिला बंदियों को सामाजिक संस्था के द्वारा दिया गया है काम। मध्य प्रदेश के युवक ने साइकिल में 45 दिन में तय किया 3000 किलोमीटर की दूरी को, अगले एक साल में 22000 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य है। भारत को विश्व गुरु बनाने का संदेश लेकर 25000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला है युवक, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा का लक्ष्य है। पाली में पर्यावरण से रक्षा का नया प्रयास, नए तरह के स्टार्टअप, बेस्ट थर्मोकॉल से करोड़ों का टर्नओवर, लोगों को रोजगार। इंदौर में एक डॉक्टर ने किया बड़ा कारनामा, एक दिन में 51 रोबोटिक बेरियट्रिक सर्जरी करके बनाया है रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में दही हांडी को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने की तैयारियां की हैं, गोविंदाओं को स्पेन भेजेगी महाराष्ट्र सरकार। इंदौर में स्मार्ट सिटी के तहत जिस सड़क पर खर्च हुए थे 40 करोड़ वही पानी की टेस्टिंग में धस गई, नीचे से फूटा सैलाब, कैमरे में कैद हुई घटना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा, अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए 17 खिलाड़ी, फुटबॉल के दिग्गज आई अरुमायनागम को अर्जुन अवार्ड की लाइफ टाइम कैटेगरी में सम्मान दिया गया। बैडमिंटन में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली को दिया जाएगा अर्जुन अवार्ड, महिला डबल्स में भारत के प्रमुख प्लेयर रही हैं दोनों ही खिलाड़ी। चेस के क्षेत्र में दिव्या देशमुख और विदित गुजराती होंगे अर्जुन अवार्ड के सम्मानित। दिव्या ने 2025 में FIDE विमेन्स वर्ल्ड कप में खिताब जीतकर हासिल की थी बड़ी उपलब्धि। एथलेटिक्स में तेजस्विनी शंकर को अर्जुन अवार्ड, हाई जंप और
डेकैथलॉन में कर चुकी हैं भारत का प्रतिनिधित्व। कॉमनवेल्थ गेम्स में डेकैथलॉन में मेडल जीतकर रचाता इतिहास। द्रोणाचार्य अवार्ड में नामों का ऐलान किया गया। नियमित कैटेगरी में एथलेटिक्स के परवीर सिंह, बॉक्सिंग के छोटे लाल यादव और शूटिंग की नेहा नंद कुमार चौहान का नाम। लाइफ टाइम कैटेगरी में बॉक्सिंग के धर्मेंद्र सिंह यादव और कुश्ती के वीरेंद्र कुमार को सम्मान। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने रचाया इतिहास, टेस्ट में सबसे तेज 100 सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। पंत ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन किया कारनामा, सिर्फ 4,918 बॉल का सामना करके लगाए 100 छक्के। पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग का जिम एंड डब्ल्यूएस ने रच दिया इतिहास, पहली बार किया माउंट डेल्टा 41 के शिखर से सीधे पैराग्लाइडिंग द्वारा नीचे उतरने का सफल कारनामा। 13 सदस्यीय टीम ने भारतीय एडवेंचर के इतिहास में हासिल की है बड़ी उपलब्धि, इस दल का 11 अगस्त को किया गया था टरवाना। लद्दाख के करगिल क्षेत्र में स्थित है माउंट डेल्टा 41 जो माउंट बर्मल के नाम से भी जाना जाता है, कर्नल हेमचंद्र सिंह के नेतृत्व में पूरा हुआ यह कारनामा। आवारा पंटू की सफलता पर इमरान हाशमी की पत्नी का इमोशनल पोस्ट, परवीन हाशमी ने फिल्म इंडस्ट्री में इमरान की मेहनत, अनुशासन और सब्र की तारीफ की। रामगोपाल की अगली फिल्म पुलिस कंपनी में नजर आएंगे अभिनेता हर्षवर्धन राणे, 90 के दशक में मशहूर अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर बन रही है एनकाउंटर, स्पेशलिस्ट दया नायक की भूमिका में नजर आएंगे वो। फिल्म प्रेम कीटाणु का टीजर जारी किया गया, फिल्म में वीर पहाड़िया, अपार शक्ति खुराना, आफिया और राकेश बेदी नजर आएंगे। इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म गन मास्टर G9 की रिलीज डेट आई है सामने, फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रणवीर सिंह के प्रलय की शूटिंग शुरू हुई, इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ लोका फेम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन भी नजर आएंगे। SBI रिसर्च के मुताबिक 100 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले टैक्स पेयर्स की संख्या एक साल में 39% बढ़ गई है, 1 करोड़ से ज्यादा इनकम वालों की संख्या भी 5.5 लाख के पार पहुंची। कीमतों के इजाफे में देश में स्मार्टफोन्स की बिक्री में 10% तक की गिरावट आई है, 25,000 से सस्ते बजट फोन्स की बिक्री 88% घटी। अमेरिका ईरान के बीच समझौते की उम्मीदें टूटने से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेजी, मंगलवार को क्रूड ऑयल $91 के पार पहुंचा। काला सागर में तनाव बढ़ने पर गेहूं की सप्लाई पर मंडराया संकट, पिछले एक महीने में देश की प्रमुख मंडियों में गेहूं के दाम 4% तक बढ़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस को नियम न मानने पर ग्राउंड करने की सख्त चेतावनी दी है, त्योहारों के दौरान बढ़ते हुए किराए और बैगेज लिमिट घटाने पर सरकार ने मांगा है जवाब। ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देश ओमान पर बम बरसाने की धमकी दी, कहा अगर ओमान ईरान के साथ उनके प्रशासन की वार्ता में बाधा डालता है तो बम बरसाएगी अमेरिकी सेना। ट्रंप ने कहा उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने हमेशा मेरे साथ बहुत सम्मान के साथ व्यवहार किया, मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है, किम जोंग उन मेरी बात भी मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका और ईरान से मध्य पूर्व में युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की है, कहा मिडिल ईस्ट में शांति के लिए तुरंत कदम उठाएं दोनों देश। ईरान में हमास के प्रतिनिधि खालिद कमुद्दी ने कहा है कि गजा में जब तक कब्जा करने वाली फोर्स मौजूद हैं तब तक उनका गुट हथियार नहीं छोड़ेगा। रूस में अगले महीने होने वाले संसदीय चुनाव से पहले विपक्ष के एक बड़े नेता को 11 साल 1 महीने की जेल की सजा, याब्लोको पार्टी के सीनियर सदस्य लेव शुलवर को यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दोषी ठहराया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि वो 19 अगस्त से पहले अमेरिका ट्रंप से बात करने की योजना बना रहे हैं, ट्रंप ने इसी तारीख को कनाडा के चुनिंदा सामानों पर 50% नए टैरिफ लगाने की धमकी दी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एस्पेला ने कहा है कि पिछले हफ्ते देश में आए जबरदस्त भूकंप से होने वाले आर्थिक नुकसान $9 बिलियन से ज्यादा है, 7.4 तीव्रता वाले भूकंप से कई इमारतें इंफ्रा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी के निधन पर आधा झुकाया गया देश का झंडा, 1998 से 2003 तक प्रधानमंत्री रहे झू रोंगजी ने 93 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। लंदन में हजारों लोग जेसन अर्डे के निधन पर शोक मनाने के लिए जुटे, जेसन अर्डे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक अश्वेत प्रोफेसर थे जिन पर साहित्यिक चोरी के कई आरोप भी लगे। पोलैंड की स्टार खिलाड़ी इगा स्वीटेक सिंसिनाटी ओपन के अंतिम 16 में पहुंच गए, रोमांचक मुकाबले में एक सेट हारने के बाद वापसी करते हुए ग्रीस की 29वीं वरीयता प्राप्त मारिया को हराया।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे आज माफिया अतीक अहमद की मौत को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में पुलिस टीम पर हुआ हमला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अतीक का अंत तो हो गया, लेकिन उसका खौफ, उसका आपराधिक नेटवर्क आज भी जिंदा है। बुधेश्वर इलाका और अवैध डेयरी पर कार्रवाई करने पुलिस की टीम पहुंचती है। पुलिस और नगर निगम की टीम को जिस तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, ये योगी की पुलिस है। और खुद को अतीक गैंग का गुर्गा बताकर धमकाया गया, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये है कि क्या प्रशासन का इकबाल कमजोर पड़ रहा है, या फिर अतीक की मौत के बाद अब उसके नाम, उसकी विरासत के सहारे यूपी में उसी पुराने खौफ के साम्राज्य को दोबारा खड़ा करने की साजिश रची जा रही है। इसके बाद आपको झारखंड में सरकारी नौकरियों का उलझा हुआ गणित दिखाएंगे, जहां खुशी और मायूसी दो अलग अलग तस्वीरें एक साथ सामने आ रही हैं। एक तरफ 14 परीक्षाएं रद्द होने के बाद भी आंदोलन थम नहीं रहा है, देवेंद्रनाथ महतो के गुट ने मंत्रियों के आश्वासन पर अनशन खत्म कर दिया है, तो वहीं दूसरा गुट अब भी सीबीआई जांच और लिखित आदेश की मांग पर अड़ा है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे पेचीदा पहलू यह है कि रातों रात जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने से 1975 चयनित युवाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई है, जिन्हें कुछ महीने पहले ही नियुक्ति पत्र मिला था और वो सचिवालय में काम कर रहे थे, अब सचिवालय के बाहर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या देखा कि वो भारत की चुनावी प्रणाली के कायल हो गए। ट्रंप ने तारीफ करते हुए कहा कि भारत के पिछले आम चुनाव में 64,60,000 मतदाताओं ने हिस्सा लिया था, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में हर एक वोटर के पास वोट डालने के लिए एक वैलिड फोटो आईडी डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य होता है। लेकिन आज जब पूरे देश में दिमागी नक्सल को लेकर बहस छिड़ी हुई है, तब आपको बताएंगे कि यूपीए सरकार में बुद्धिजीवियों, मानवाधिकारों और कुछ एनजीओ और सिविल सोसाइटी ग्रुप के लोगों पर नक्सलियों को वैचारिक समर्थन देने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है, और बीजेपी के नेता अब उल्टा यूपीए की सरकार को क्यों घेर रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि देश को हथियार उठाने वाले नक्सलवाद से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन अब वक्त है दिमागी नक्सल को पहचानने का और उन्हें आइसोलेट यानी अलग थलग करने का। यह एक ऐसा बयान था जिसका लगभग सभी विपक्षी दलों ने एक एक करके विरोध किया। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने यह कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है, जबकि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो अनुच्छेद 370 का समर्थन करती हैं, इसलिए वो भी दिमागी नक्सल है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दलील यही है कि अगर सरकार के खिलाफ सवाल उठाना है और सवाल उठाने की हिम्मत करना किसी को दिमागी नक्सल बनाता है, तो वो खुद को दिमागी नक्सल घोषित करने के लिए तैयार है। जबकि सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा है। केंद्र संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक जो लोग माओवादियों का समर्थन करते हैं, भारतीय संविधान को मानने से इनकार करते हैं, अलगाववाद और अनुच्छेद 370 के समर्थक हैं, भारत को तोड़ने की मानसिकता रखते हैं या सुरक्षा बलों की शहादत पर जश्न मनाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल बताया है। यानी इस पर सरकार की दलील अलग है और विपक्ष की दलील अलग है। लेकिन आज हम आपसे इसके बारे में बात नहीं करने आए हैं। आज हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि जब देश में यूपीए की सरकार थी, एक खास वर्ग के बुद्धिजीवी लोग और सामाजिक कार्यकर्ता नक्सलवाद का समर्थन के लिए आरोपी माने गए थे, तो यूपीए की उस सरकार में भी उनके खिलाफ गिरफ्तारियां हुई थी। इनमें मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर विनायक सेन मई 2007 में छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार हुए। वो माओवादी लीडर नारायण सान्याल के संपर्क में थे, ऐसा आरोप लगा। फिर 2007 में ही महाराष्ट्र में सामाजिक कार्यकर्ता वर्नॉन गोंजाल्वेस को गिरफ्तार किया गया। उन पर यूपीए सरकार में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगा। 8 मई 2007 को अरुण फेरेरा गिरफ्तार हुए, जो मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन उन पर नक्सलियों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का आरोप लगा था। साल 2009 में कोबाट गांधी गिरफ्तार हुए, जो दिल्ली में सीपीआई माओवादी का दफ्तर स्थापित करने में मदद कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक जबकि ये पार्टी कई नक्सली हमलों में अलग से इसको आरोपी बनाया गया था। और ये सिलसिला आगे भी जारी रहा, जब 2013 में सुशील कुमार शिंदे भारत के गृह मंत्री थे और उस वक्त गढ़चिरौली पुलिस ने जेएनयू के छात्र हेम मिश्रा और पत्रकार प्रशांत राही को गिरफ्तार किया था। उस वक्त पुलिस का आरोप यह था कि ये दोनों अबू झमाड़ जा रहे थे, जहां वो सीपीआई माओवादी के शीर्ष काडर से मिलने वाले थे। जबकि 2014 में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा को भी गिरफ्तार किया गया था और उन पर भी यही आरोप था कि वो नक्सलियों को मदद दे रहे। इनमें कई मामलों में गिरफ्तार हुए आरोपियों को बाद में अदालतों ने बरी भी किया, लेकिन यूपीए सरकार ने इन बुद्धिजीवियों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर नक्सलियों को समर्थन देने के लिए ही उनको गिरफ्तार किया था और उनके समर्थन पर चिंता भी जताई थी। इनमें पी चिदंबरम 30 नवंबर की बात है, 30 नवंबर 2008 से 31 जुलाई तक 2012, 8 से 12 तक उनका कार्यकाल था भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर। उनके ही गृह मंत्री रहते हुए यूपीए सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन ग्रीन हंट। ये कॉल आउट ऑपरेशन था, सैन्य ऑपरेशन जिसमें सीआरपीएफ की विशेष टुकड़ी, कोबरा, बीएसएफ और राज्यों की स्थानीय पुलिस इकाइयों को बड़े पैमाने पर जंगलों में उतारा गया था और उन्हें नक्सलवाद का खात्मा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। जब पी चिदंबरम के नेतृत्व में यह सैन्य ऑपरेशन शुरू हुआ, तब बौखलाए नक्सलियों ने सुरक्षा बलों, आम लोगों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। निशाना बनाने के लिए बहुत सारे खूनी हमलों को अंजाम दिया। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा के हमले में हमारे सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। उस वक्त इस हमले से भारत उबरा भी नहीं था कि अगले महीने 28 मई 2010 को पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में नक्सलियों ने पटरियों को बॉम्ब से उड़ा दिया, जिससे मुंबई जाने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 148 यात्रियों की जान इसमें चली गई थी। इन हमलों ने उस वक्त पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चारों तरफ यूपीए सरकार पर सवाल उठने लगे। इन्हीं उठते सवालों के बीच तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम ने नक्सलवाद को वैचारिक समर्थन जो मिलता है उसको एक बड़ी समस्या बताया था, नक्सलवाद को वैचारिक समर्थन। और यह भी तब हुआ जब वो पहले से ये कह रहे थे कि भारत में कुछ बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स नक्सलियों को आदर्शवादी नजरिए से देखते हैं और उन्हें ये अभी के अभी तुरंत बंद कर देना चाहिए। पी चिदंबरम ने यह बयान पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में दिया गया था, जिसकी कॉपी अब हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। पीटीआई को दिए इस इंटरव्यू में देखिए, सोर्स जो है इसका पीटीआई है, माओवादी बांग्लादेश म्यांमार, पूरा उनका जो ट्वीट था, इंटरव्यू था, शायद नेपाल के रास्ते हथियार हासिल कर रहे हैं। 24 अक्टूबर 2009 को उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में शब्दशः कहा कि जब नक्सली, ये वाला जो पूरा हिस्सा है जिसमें उन्होंने सेकेंड पैराग्राफ जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो नक्सली हिंसा कर रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, तब उन्हें किसी तरह के क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में पेश करना भारत के कुछ बुद्धिजीवियों की बड़ी गलती है, रोमांटिसाइजिंग नक्सलिज्म। ये पीटीआई को दिया हुआ उनका इंटरव्यू है, जिसके हवाले से कई सारे मीडिया हाउसेस ने भी एक पूरा आर्टिकल पी चिदंबरम पर छापा था, जिसमें ये कहा गया था कि वो ऐसे लोगों के बारे में चिंता जाहिर कर रहे हैं जो नक्सलवाद को रोमांटिसाइज करते हैं। यह आरोप भी लगा जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद इस पर चिंता जता चुके थे। 6 जनवरी 2009 को नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नक्सलवादी हिंसा पर बात की थी और उन्होंने जो कहा था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अब भी नागरिक स्वतंत्रता संगठनों के सदस्यों का समर्थन हासिल करने में कामयाब है, नक्सलियों के मद्देनजर उन्होंने कहा था, हमने भारत सरकार की वेबसाइट पर पीएम आर्काइव में दर्ज भाषणों से ये निकाला है, कोई भी इसे इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आर्काइव्ड भाषणों में से एक में लिखा है, इस भाषण में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शब्दशः कहा कि नक्सलवाद को आज भी समाज के कुछ वर्गों में सिविल सोसाइटी, सिविल लिबर्टी से जुड़े संगठनों से और युवाओं के एक हिस्से से समर्थन मिल रहा है, और ये देखते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार को बहुत सोच समझ कर रणनीति बनानी चाहिए। इस बयान में प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ये चिंता जता रहे थे कि आखिर कुछ लोग नक्सलवाद की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं, बुद्धिजीवी विद्वान लोगों का नक्सलियों को समर्थन क्यों मिल रहा है। ये समस्या बाद में इतनी बढ़ी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके खिलाफ एक ऑर्डर भी जारी किया। अब ये एमएचए का ऑर्डर भी हमने ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकाला है। 6 मई 2010 को गृह मंत्रालय का बयान है और उस बयान में उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी संगठन, एनजीओस, बुद्धिजीवी, आम लोग नक्सलियों और माओवादियों की विचारधारा का समर्थन करे से बचे। गृह मंत्रालय का कहना था कि उनके पास ऐसी जानकारी है कि कुछ माओवादी नेता जो है वो एनजीओस और बुद्धिजीवियों से सीधे संपर्क कर रहे हैं, उनसे मदद हासिल कर रहे हैं। आरोप था कि वो इन लोगों के जरिए अपनी विचारधारा फैलाने और अपने आंदोलन को समर्थन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण सरकार ने ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। और ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रतिबंधित संगठन को इस इरादे से समर्थन देता है कि उसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके तो उस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी गृह मंत्रालय का बयान है जो आपको कोई भी जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर और इस तारीख को वहां पर डालेगा 6 मई 2010 तो आपको ये पूरा ऑर्डर जो है वो सामने दिख जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि उस वक्त सरकार सिर्फ नक्सलियों को बुद्धिजीवियों एनजीओ से समर्थन मिलने पर चिंता जता रही थी। 2013 में आईबी की रिपोर्ट आई जिसमें यह दावा हुआ कि यूपीए सरकार ने देशभर में 128 ऐसे संगठनों की बाकायदा पहचान की जिन्हें खुफिया एजेंसियां सीपीआई माओवादी से जुड़े फ्रंट संगठन मानती थी। सरल भाषा में फ्रंट संगठन का मतलब ऐसे संगठन है जिसके बारे में सरकार का दाव है कि वो किसी प्रतिबंधित संगठन के लिए खुले तौर पर या परोक्ष रूप से समर्थन जुटाने का काम करता है। आईबीए की रिपोर्ट के मुताबिक ये संगठन 16 राज्यों में सक्रिय बताए गए थे। छात्र संगठन, मजदूर संगठन, महिला संगठन, किसान संगठन, आदिवासी संगठन, वकीलों के समूह इसमें अलग अलग जो है वो बताए गए। खुद यूपीए की सरकार ने इस रिपोर्ट की बात की और बाद में जब देश में एनडीए की सरकार आई तो नक्सलियों को मिलने वाले इस वैचारिक समर्थन को प्रधानमंत्री मोदी ने अर्बन नक्सल से भी जोड़ा। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सल का मुद्दा उठा रहे हैं तो उन पर देश में जब वो दिमागी नक्सल की चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री तो ये मुद्दा उठाते हुए उन पर देश में अराजकता और हिंसा का माहौल बनाने का आरोप लगा रहे हैं तो विपक्ष इस पर हमलावर है। विपक्ष का कहना यह है कि सरकार सीधे सीधे उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को दिमागी नक्सल कह रही है, यानी जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है या सरकार का विरोध करता है उसको दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। यह बात सिर्फ नक्सल को समर्थन देने वाले बुद्धिजीवियों से नहीं है। हालांकि यहां आपको इन आदिवासी परिवारों और नक्सल हिंसा के पीड़ित परिवारों को भी सुनना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल का समर्थन करने वाले नेताओं को बस्तर आकर देखना चाहिए कि कितने परिवारों ने वहां नक्सली हिंसा को झेला है। सुनिए
1: जी, मेरे पति फोर्स में थे, एसटीएफ के जवान थे, उसी समय नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर हत्या कर दी पीड़मेर में, सुकमा जिले के पीड़मेर में। हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जो पी चिदम्बरम बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया में मैं नक्सलियों के दिमागी नक्सली दिमागी में समर्थन दे रही हूँ, इसी के विरुद्ध में आए हैं हम लोग। हम लोग अपने पति खोए हैं बस्तर में, तो ऐसे कई बहने हैं जो अपने पति खोए हैं। अभी तो बस्तर में नक्सली मुक्त तो हो गया, लेकिन ऐसे कई मंत्री लोग हैं जो यहाँ दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं कि हम नक्सली समर्थन में अपना वो कर रहे हैं, इसलिए आए हैं।
2: मेरे को गोली किस लिए मारा गया मेरे को समझ में ही नहीं आया। ना मैं कोई बड़ा बहुत बड़ा नेता, ना बहुत बड़े नौकरी पेशा वाला, ना कुछ नहीं, मैं एक मामूली सा किसान आदमी। तो मुझे उस चीज का आज तक भी है, क्योंकि मैं उतना गोली और पत्थर पटने के बाद आज आधा अधूरा जिंदगी जी रहा हूं, दूसरे के भरोसे चलना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग और कुछ जिम्मेदारी पद में रहे वाले ये कहते हैं कि वो दिमागी नक्सली का ये ऐसा है वैसा है, तो ले दे के कोशिश करके शासन प्रशासन हमारे बस्तर के जनता भी करके उनको नक्सलियों को जंगल से निकाले। अभी किसी किसी के दिमाग में बाकी है, शायद उनके दिमाग से भी इसको निकालना ये जरूरी है।
3: आईडी लगाने के बाद आईडी में पैदल जा रहा था, आईडी में चपेट में आया और ब्लास्ट कर दिए, मेरा एक पैर तो पूरा ही नहीं है, दूसरा पैर भी पूरा गंभीर रूप से मतलब घायल है। इस स्थिति में जैसा तैसा जी रहा हूँ, लेकिन मेरे को आईडी ब्लास्ट करने का कारण क्या है, मैं उनका तो कुछ कर ही नहीं रहा था, फिर भी मेरा नुकसान कर दिया।
0: यहाँ हम आपको एक नई तरह की राजनीति के बारे में भी बताना चाहते हैं जिसे मीमिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी मीम का राजनीति में बदल जाना। कैसे, उसके पीछे इस ग्राफिक्स को देखिए, बहुत दिलचस्प है। जब देश में कॉकरोच वाली टिप्पणी सीजीआई की तरफ से हुई, चाहे उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट वो बताते हो, लेकिन इसी टिप्पणी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो गया। रातों रात लाखों लोग सोशल मीडिया पर इसके साथ जुड़ भी गए। जब E20 पेट्रोल को लेकर विवाद हुआ तो इस मुद्दे पर भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था E20 जनता पार्टी। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान को लेकर इतनी बहस हो रही है तो सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी बनी है, नाम है दिमागी नक्सल जनता पार्टी। रिजर्वेशन के खिलाफ भी बोलने के लिए कई लोग सामने आए थे इस दौरान और उन्होंने रिजर्वेशन जनता पार्टी बनाई थी। आज रात 9 बजे तक इस पार्टी के 5 लाख, ये जो दिमागी नक्सल पार्टी हम बता रहे हैं, 5 लाख इसके फॉलोअर्स हो गए। कहने का मतलब यह है कि पहले किसी टिप्पणी पर राजनीतिक बहस होती थी, उसके लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होते थे, राजनीतिक बयानबाजी होती थी, न्यूज चैनल्स पर बहस होती थी, लेकिन अब ऐसे मुद्दे इंटरनेट की बहस का हिस्सा बन जाते हैं और उस बहस में ऐसी पार्टियों का जन्म हो जाता है जो इसी टिप्पणी पर अपने समर्थक बनाती हैं और इंटरनेट पर लोग ऐसे मुद्दों और बयानों पर फिर बढ़ते हैं और चर्चा होती है। सरल भाषा में कहें तो अब मुद्दे समाज से निकलकर सोशल मीडिया की कम्युनिटी का हिस्सा बनने लगे हैं, जहां मीम ऐसे मुद्दों को शक्ल लेकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है और उसके बाद ऐसे मुद्दों पर बहस होती है, ज्यादा व्यापक होने लगती है। कॉकरोच जनता पार्टी, E20 जनता पार्टी बनाने के बाद दिमागी नक्सल जनता पार्टी बनाकर भी ये किया जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि माफिया अतीक अहमद की मौत के 3 साल बाद भी उसके नाम का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती कैसे बन रहा है। ये तस्वीर लखनऊ के सब इंस्पेक्टर विनय पटेल की है, जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से करीब 15 किलोमीटर दूर जानलेवा हमला हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावरों में शामिल कुछ लोगों ने खुद को अतीक अहमद के गैंग से जुड़ा हुआ बताया। अब राजधानी लखनऊ में पुलिस और नगर निगम की टीम पर इस तरह के हमले की शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन हमारे पास मौजूद वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक आरोपी पीछे से सब इंस्पेक्टर विनय पटेल को पकड़ता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है। अब सवाल यही है कि ये योगी की पुलिस है, उनका प्रशासन है और वो भी ऐसे फंस गया। इसी दौरान एक महिला वहां मौजूद दूसरे पुलिस कर्मी पर लोहे की जंजीर से हमला करती दिखाई देती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पुलिस और नगर निगम की पूरी टीम को मौके से पीछे हटना पड़ता है और वहां अचानक से पत्थर चलने लगते हैं। पहले आप पूरा वीडियो देखिए। तो बताया जा रहा है कथित तौर से जो महिला इस वीडियो में लोहे की जंजीर से लेकर दिखाई दे रही है उसका नाम खुशबुन बताया जा रहा है। वीडियो में ये महिला पुलिसकर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाती दिखाई देती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई से बचने के लिए इस महिला ने पुलिसकर्मियों पर झूठे आरोप लगाए। पुलिस के मुताबिक इस तरह के आरोप लगाकर टीम को कार्रवाई से रोकने, मौके से पीछे हटने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई, लेकिन इस पूरे मामले की सबसे बड़ी, सबसे गंभीर कड़ी अतीक अहमद के नाम से जुड़ती है, क्योंकि सवाल सिर्फ पुलिस पर हमले का नहीं है। सवाल यह है कि जिस अतीक अहमद को 2023 में हत्या जिसकी हो चुकी है उसके नाम का इस्तेमाल आज भी कुछ अपराधी पुलिस और प्रशासन को डराने के लिए कर रहे हैं तो कैसे। ये कहानी लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके से शुरू होती है। इस इलाके में सड़कों के किनारे अवैध तरीके से चल रही दूध की डेयरियों पर और वहां फैली गंदगी को लेकर नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के बाद नगर निगम और पुलिस दोनों की टीम्स कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची। आरोप है कि टीम ने अवैध कब्जे हटाने और नियमों का उल्लंघन कर रखे गए पशुओं को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन भीड़ जुट गई। अब पुलिस के मुताबिक करीब 20 से 25 लोगों ने टीम का विरोध किया और देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई। आरोप है कि भीड़ ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर लाठी डंडों, पत्थरों और दूसरे हथियारों से हमला शुरू किया और सरकारी गाड़ियों पर पथराव किए जाने की बात सामने आई। यह भी आरोप है कि इस हमले के दौरान कुछ लोगों ने अतीक अहमद के गैंग का नाम लेकर पुलिस को धमकाने की कोशिश की। इन आरोपों की खुद पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि भीड़ ने यह कहा कि पुलिस इनके इलाके से वापस चली जाए यहीं से ये पूरा मामला गंभीर हुआ। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि अतीक अहमद सिर्फ एक अपराधी का नाम नहीं है, दशकों तक उसका नाम प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अपराध, रंगदारी, जमीन पर कब्जे, हिंसा के मामले में जुड़ा रहा। बड़ी बात यह है कि साल 2023 में अतीक अहमद की हत्या के बाद उसकी आपराधिक दुनिया को बड़ा झटका जरूर लगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उससे जुड़े हर अपराधी और हर नेटवर्क का उसी दिन अंत हो गया। किसी बड़े अपराधी का खत्म होना, उसके बनाए हुए आपराधिक नेटवर्क का पूरी तरह खत्म हो जाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने अक्सर यही चुनौती होती है, माफिया चला जाता है लेकिन उसके साथ काम कर चुके लोग, उसके संपर्क, उसके नाम का डर कुछ इलाकों में लंबे समय तक बना रहता है। लखनऊ के बुद्धेश्वर मामले में भी पुलिस इसी एंगल से जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार इस इलाके में कुछ ऐसे लोगों की मौजूदगी की जानकारी मिली है जिनका अतीक अहमद के आपराधिक नेटवर्क से पहले संबंध रहा है। ये भी आरोप सामने आए हैं कि अतीक के नाम का इस्तेमाल कर इस इलाके में सरकारी जमीनों पर कब्जे और लोगों को धमकाने की कोशिश की गई। और इस घटना में भी जब पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो इन लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। इस पूरी घटना की सबसे परेशान करने वाली तस्वीर वही है जो इस वीडियो में दिखाई देती है। एक तरफ नगर निगम की टीम अवैध कब्जे और नियमों के खिलाफ बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने पहुंचती है और दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों को घेरा जाता है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हमला किसने किया, और आपको यह भी बता दें कि इस मामले में अब 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सवाल यह है कि राजधानी लखनऊ में कानून लागू कराने पहुंची सरकारी टीम को इस तरह पीछे हटने के लिए मजबूर अगर किया गया तो फिर पुलिस और प्रशासन की तैयारी क्या थी, और आखिर सरकार, पुलिस, प्रशासन, उनका इकबाल कहां है? और अगर वाकई इस हमले में अतीक अहमद के नाम का इस्तेमाल किया गया है तो सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, और क्या पूरी तैयारी के साथ पुलिस वहां नहीं पहुंची थी? अतीक अहमद मर चुका है लेकिन अगर उसके नाम से आज भी पुलिस को धमकाने की कोशिश हो रही है तो असली चैलेंज यही है, क्या अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म हुआ है या सिर्फ उसका चेहरा बदला है? देखिए ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब हाल ही में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए थे और वो समर्थन भी कई बातें कह रहा है, बहुत संकेत दे रहा है। इस जनाजे की तस्वीरों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया था कि अतीक अहमद की मौत के बाद भी प्रयागराज में उसके परिवार के लिए समर्थन कितना है, कितनी हमदर्दी है, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा उस वक्त एक तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी जिसमें अतीक अहमद के सबसे बड़े बेटे उमर अहमद के सामने भीड़ हंगामा कर रही थी और उमर ने सिर्फ अपने होठों पर उंगली रखी, भीड़ को शांत कर दिया। तब इस तस्वीर के कई राजनीतिक मायने निकाले गए क्योंकि अतीक अहमद की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं रही, उसने अपराध से राजनीति तक का सफर तय किया था, और इसीलिए आज भी एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अतीक अहमद के बाद उसका परिवार उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक के मुताबिक अपना दल कमेरावादी की तरफ से उमर अहमद को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। हालांकि अभी पार्टी ने अपनी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की है लेकिन कुमार अभिषेक को ऐसी खबर मिली है। अपना दल कबेरावादी की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने हाल ही में अतीक अहमद की बहन और अतीक अहमद के बेटे एहजम अहमद से मुलाकात की है, और इस बैठक के बाद ऐसी अटकलें हैं कि पार्टी उमर अहमद को चुनाव लड़ने का ऑफर दे सकती है। यह इसलिए भी स्वाभाविक होगा क्योंकि अतीक अहमद के परिवार और अपना दल का रिश्ता नया नहीं है। एक दौर में अतीक अहमद और अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के बीच मजबूत राजनीतिक संबंध रहे हैं। कहा जाता है कि प्रयागराज में एक आंदोलन के दौरान जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल घायल हुए थे तब अतीक अहमद ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने मदद करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद अतीक अहमद का अपना दल से जुड़ना हुआ और बाद में उसे पार्टी में अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी मिली। यानी जिस राजनीतिक रिश्ते की शुरुआत दशकों पहले हुई थी उसके तार आज फिर अतीक के परिवार तक पहुंचते दिखाई दे रहे। यही नहीं, AIMIM यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कहा गया है कि अगर उमर उनकी पार्टी में आता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। यानी एक तरफ उमर अहमद जेल में है, दूसरी तरफ उसके लिए चुनावी संभावनाओं की चर्चा शुरू हो चुकी है। और यही वो चीज है जहां लोकतंत्र, राजनीति, कानून के राज के बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। उमर अहमद के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामला चल रहा है, उसकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसे चुनाव में उतारने की चर्चा जोरों पर है। और इसे देखकर ऐसा भी लगता है कि वक्त शायद खुद को दोहरा रहा है। याद कीजिए, साल 1989, अतीक अहमद पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति में आया था। उस समय उसके खिलाफ हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन इसके बावजूद उसे राजनीतिक संरक्षण मिला। अलग अलग दलों के साथ उसके संबंध बने, धीरे धीरे उसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ता गया। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर अपराध के आरोप थे वो राजनीति में आया। राजनीति ने उसे फिर ताकत दी, उस ताकत ने उसके बाहुबल को और मजबूत किया, और अब करीब 4 दशक बाद कहानी का चेहरा बदल गया है। अब अतीक अहमद नहीं है, लेकिन उसका नाम है, उसका परिवार है, उसके समर्थक है, उसका बेटा है, उसकी ताकत दिख रही है, राजनीतिक विरासत को लेकर दावे हैं। सबसे अगर आप देखिए तो उसके बेटे के चुनाव लड़ने की चर्चा है, जिससे ये सवाल भी उठ खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उसी पुराने मॉडल की तरफ लौट रही है, जहां बाहुबली पहले राजनीतिक ताकत हासिल करता है, फिर राजनीतिक ताकत उसके प्रभाव को और बढ़ाती है। हालांकि यहां आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी याद रखिए, जो कई बार माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कह चुके हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के चुनावी मॉडल के मुरीद क्यों हुए, और आज दिन भर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। तो ये पूरा मामला ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति ट्रंप के एक पोस्ट से शुरू हुआ। इसमें उन्होंने लिखा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिका के प्रशासन से पूछा कि वो अमेरिका में फोटो आईडी यानी बिना वोटर आईडी कार्ड आइडेंटिफिकेशन कार्ड के चुनाव कैसे करा सकते हैं।

0: अब इस बयान का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के चुनावी मॉडल की तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि भारत के पिछले लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख मतदाता थे, जिनमें 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट किया और हर मतदाता के पास अपना फोटो वाला पहचान दस्तावेज था। ये लिखते हुए उन्होंने पूछा कि जब भारत में ऐसा हो सकता है तो अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं कर सकता, हो सकता। और इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि अब उन्हें भी सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। इस बयान के बाद हमारे देश में राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है, जो विपक्षी दल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं और भारत के मौजूदा चुनावी मॉडल की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर यह लिखना शुरू कर दिया कि अमेरिका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने देश ले जा सकता है, और इसके बाद हमारे देश में इस पर खूब राजनीति हुई। लेकिन इस राजनीति में भी अमेरिका ने भारत के चुनावी मॉडल को दुनिया के लिए मिसाल बताना जारी रखा। और भारत में अमेरिका के राजदूत हैं सर्गियो गॉर्ड, जो कि ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं। उन्होंने भी कहा कि अमेरिका को भी भारत की तर्ज पर सख्त वोटर आईडी कानून अपनाना चाहिए। सुनिए।
1: Look, the president was very clear, and what India does, having a voter ID law, is something that we should pass in the United States. You had over 660 million people vote, by the way, less than 1% by mail, so I think it's vitally important. Voter ID is important. This is not a partisan issue, and so the president is absolutely right that the United States should have a voter ID requirement when people show up to vote. Thank you.
0: और अब ये देखिए कि भारत के चुनावी मॉडल में ऐसा क्या है जो अमेरिका के चुनावी मॉडल में नहीं है। भारत में चुनाव को व्यापक रूप में देखा जाता है, यानी जब पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर राज्य अपने हिसाब से चुनाव कराता है। भारत में सभी राज्यों में समान रूप और कानून के मुताबिक चुनाव कराए जाते हैं और इनकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में चुनाव फेडरल स्टेटस के हिसाब से होते हैं, यानी पूरे अमेरिका के चुनाव में कैसे वोट डाले जाएंगे, क्या नियम होंगे, कौन कौन वोट डाल सकेगा, यह फैसला अकेले कोई एक संवैधानिक एजेंसी नहीं करती है। इसकी वजह से हर फेडरल स्टेट के पास यह अधिकार होता है कि वो कैसे चुनाव का संचालन कराए। इसके कारण अमेरिका में वोटर आईडी कार्ड को लेकर हर राज्य में अलग अलग नियम होते हैं। जैसे कुछ राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो या दूसरे पहचान पत्र दिखाकर वोट डाला जा सकता है, तो कुछ राज्यों में दूसरे नियम होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जैसे हर वोटर का अपना वोटर आईडी कार्ड होता है और उस पर उसकी तस्वीर लगी होती है, वैसा अमेरिका में कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं है जो पूरे देश में लागू होता। और यही कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत की तर्ज पर अमेरिका में चुनावी मॉडल तैयार करना चाहते हैं और इसके लिए वो सेव अमेरिका एक्ट लाने की बात कर रहे हैं। अब ये सेव अमेरिका एक्ट क्या है वो समझिए। इसके तहत दो बड़े बदलाव किए जाएंगे। पहला, चुनाव के वक्त खुद को वोटर के रूप में रजिस्टर करते समय अमेरिकी नागरिकता का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा। दूसरा, जब कोई नागरिक वोट देने पोलिंग बूथ पर जाएगा तो उसे अपना फोटो वाला वोटर आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। हालांकि इस कानून को लेकर अमेरिका में बहुत विवाद है। इनमें भी पहला और सबसे बड़ा विवाद तो यही है कि बहुत से अमेरिकी नागरिकों के पास ऐसे दस्तावेज आसानी से उपलब्ध ही नहीं है जिनसे वो अपनी नागरिकता, अपना सिटीजनशिप साबित कर सके। ऐसे में कई लोगों की चिंता यह है कि वोटर आईडी कार्ड बनाते समय उनसे उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है, और अमेरिका का मीडिया भी यही बात कहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के सेंटर फॉर डेमोक्रेसी एंड सिविक एंगेजमेंट से जुड़े एक सर्वे के मुताबिक लगभग 9.1% लोग, यानी 2 करोड़ 13 लोग अमेरिका में ऐसे हैं जो खुद को वहां का नागरिक कहते हैं लेकिन उनके पास नागरिकता साबित करने के जरूरी कागज नहीं है। उदाहरण के लिए अमेरिका के कैंसस राज्य ने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का सबूत मांगा था, जिसके बाद वहां कई नागरिक पर्याप्त दस्तावेज पेश ही नहीं कर पाए। दूसरा बड़ा विवाद यह है कि इस नए कानून के तहत वोटर्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। ये देखा जाएगा कि वो अमेरिका का नागरिक है या नहीं, ठीक उसी तरह जैसे भारत में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR की प्रक्रिया होती है और संदिग्ध होने पर वोटर लिस्ट से व्यक्ति का नाम हटा दिया जाता है। अब भारत का ही उदाहरण देकर राष्ट्रपति ट्रंप ये व्यवस्था अपने देश में लाने की वकालत कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका पहला देश है जिसे भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ की है। हाल ही में 32 देशों के 77 प्रतिनिधि भारत से उसकी चुनावी व्यवस्था सीखने आए थे, जिनमें इंडोनेशिया, जॉर्जिया, इजिप्ट, बेल्जियम, मेक्सिको, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका शामिल थे। भारत की चुनावी व्यवस्था की आलोचना हो सकती है और कई बार देश के अंदर भी कई प्रक्रियाओं को लेकर आलोचना होती है, लेकिन आज इस चुनावी मॉडल को लेकर कई सारी बातें पूरे विश्व में कही जा रही हैं, जिसमें अमेरिका से लेकर कई देश यहां से कुछ बिंदुओं पर इसकी खूब प्रशंसा कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में सरकारी नौकरियों का गणित एक बार फिर ऐसा उलझा है कि खुशी और मायूसी एक साथ दो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल है कि 14 परीक्षाएं रद्द होने के बाद भी आखिर आंदोलन क्यों थम नहीं रहा है। एक तरफ पिछले 24 दिनों से ज्यादा वक्त से इंसाफ की उम्मीद में बैठे युवाओं का आंदोलन है, दूसरी तरफ वो युवा हैं जिन्हें कुछ महीने पहले ही सपनों का नियुक्ति पत्र मिला था, लेकिन सरकार के एक झटके वाले फैसले ने उन्हें रातों रात बेरोजगार कर दिया। जिस फैसले को एक पक्ष ऐतिहासिक जीत बता रहा है और ये छात्र आखिरकार जश्न मना रहे हैं, तिरंगा उड़ा रहे हैं और उसकी वजह से आखिरकार उन्होंने अपना ये पूरा आंदोलन खत्म किया, तो इधर दूसरी तरफ ये छात्र सामने आ गए हैं। छात्र नहीं, अब तो नौकरीशुदा लोग हैं ये, जो उसी सचिवालय में नौकरी कर रहे थे और अब गुस्से में बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला हुआ, इससे बच्चे तो खुश हो गए क्योंकि वो टीडीपीएल द्वारा कराए गए सभी एग्जाम्स के सीजीएल के एग्जाम्स बंद करा रहे थे, लेकिन जिन लोगों को इस एग्जाम से नौकरी मिली है और इन एग्जाम्स के निरस्त होने के बाद उनकी नौकरी पर खतरा आ गया है, वो लोग नाराजगी में बाहर निकल गए। तो एक तस्वीर में आप देख रहे हैं, फुल फ्रेम दिखा दीजिए, एक तरफ जश्न है, पटाखे हैं और तिरंगा लहरा रहा है, खुशी है, तो दूसरी तरफ इन लोगों में नाराजगी है जिनकी नौकरियों के रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। ये सचिवालय में नौकरी कर रहे थे, अब ये बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं स्टेडियम में चल रहा आंदोलन 25वें दिन भी पूरी तरह से थमा नहीं है। आंदोलन फिलहाल दो स्पष्ट गुटों में बढ़ चुका है। एक तरफ है देवेंद्र नाथ महतो का गुट, जिसने सरकार के 2014 परीक्षाओं के रद्द करने के फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया। मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह पहुंचने पर जूस पीकर उन्होंने अनशन भी समाप्त कर दिया। छात्रों का ये गुट अब केवल पुरानी जांच पर नहीं बल्कि भविष्य के लिए पेपर लीक मुक्त परीक्षा व्यवस्था की फुल प्रूफ गारंटी की बात कर रहा है। वही माफ कीजिएगा, शायद हमने पहले कह दिया 2014 की परीक्षा, कुल 14 परीक्षाओं को रद्द करने की बात पर जो सहमति सरकार की तरफ से मिली उसके बाद देवेंद्रनाथ महतो ने अपना यह अनशन तोड़ा। कल उन्होंने आज तक पर भी कहा था कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा लेकिन अब मैं अनशन तोड़ रहा हूं। वहीं दूसरे गुट का अनशन अभी भी जारी है। रुपेश पाल, सविता कुमारी अभी भूख हड़ताल पर है। ये गुट जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित आदेश नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। यहीं से इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील और पेचीदा पहलू शुरू होता है। एक तरफ जहां परीक्षा रद्द होने से परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ सीजीएल परीक्षा पास कर चुके 1975 चयनित अभ्यर्थी, उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। कई जो युवा हैं इनमें, उनका कहना है कि वो रेलवे जैसी सुरक्षित और स्थायी नौकरियां छोड़कर झारखंड में सेवा देने आए थे। एक अभ्यर्थी रोशन कुमार ने रोते हुए कहा कि कल तक नौकरी थी, आज वो बेरोजगार है। अचानक नौकरी जाने से कई परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है और वो आज अपना गुस्सा दिखाने के लिए सड़क पर निकले। मंगलवार को जब इन चयनित अभ्यर्थियों को सचिवालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया तो वो बारिश के बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। देखिए,
2: टीटी के पद पर मैं कार्यरत था, वहां से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूं और यहां एक क्षण में हम लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया गया।
3: तो उधर भी नौकरी गया,
2: अब उधर क्या प्रोसेस होगा सर? टेक्निकल लेके आया है तो बहुत, इसमें 500 से 700 कैंडिडेट्स हैं जो पहले जॉब में थे सर।
4: पूर्ण रूप से निराश है और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए और अभी वो समझिए कि बच्चा और अभी आगे का और स्थिति कितना होगा।
0: आए दिन अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आए दिन स्कूलों के बच्चे अव्यवस्था, शिक्षकों की कमी, खराब मिड डे मील के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम

0: क्या ये सिर्फ लापरवाही है या सीधे सीधे मासूमों की जिंदगी के साथ खुला खिलवाड़ है? जरा सोचिए, शाम 6 बजे, रात 9 बजे, हर रोज हर जगह मिड डे मील की खबर हम दिखा रहे हैं, लेकिन इन सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, मंत्रियों किसी के कान पर जू नहीं रही। जिस मिड डे मील योजना का मकसद था देश के नौनिहालों को पोषण देना, वहां उनकी थाली में नमक की जगह सर्फ यानी वॉशिंग पाउडर परोसकर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत और क्या हो सकती है? यह घटना नूरसराय के परासी मिडिल स्कूल की है। अब आप अस्पताल की अफरा तफरी और उन मासूमों के दर्द को देखिए जिन्होंने सब्जी में नमक कम होने की शिकायत की थी। फिर क्या हुआ? रसोई और स्कूल प्रबंधन की बेवकूफी, लापरवाही, बदमाशी, जो इसे कह लीजिए, बच्चों की थाली में डिटर्जेंट पाउडर परोस दिया। 10 से 15 मासूम बच्चे पेट दर्द, उल्टी से तड़प उठे, उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। क्या गजब की लापरवाही है! आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? उनको दिखा ही नहीं कि नमक क्या है, सर्फ क्या है, और बच्चों की सेहत का ठेका लिया जा रहा है, नौनिहालों को पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। गनीमत यह रही कि समय रहते बच्चों को अस्पताल तो पहुंचाया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल प्रशासन ने बच्चों के सुरक्षित होने का दावा किया है। घटना की सूचना मिलने पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार अस्पताल पहुंचे, हालात का जायजा लिया, साफ शब्दों में चेतावनी दी कि इस आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अब इनकी चेतावनी मंत्री जी की अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी लापरवाही कब सुधरेगी? यह व्यवस्था क्या स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाने से पहले उसकी गुणवत्ता जांचने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या बच्चों को नमक की जगह कुछ और डाल दिया जाए, खिला दिया जाए, कोई केमिकल थाली में परोस दिया जाए, सर्फ डाल दिया जाए? किसी की जवाबदेही नहीं है। यह समझना जरूरी है कि मिड डे मील में खाने की गुणवत्ता, साफ सफाई को लेकर सख्त निर्देश है और इसका ध्यान रखना जरूरी है। अब समय आ चुका है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इस पर नजर जाए। प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के नियमों के तहत बच्चों की थाली में खाना परोसने से पहले उसकी गुणवत्ता जांचना अनिवार्य है। नियम साफ कहता है कि भोजन बच्चों को देने से पहले स्कूल के कम से कम एक शिक्षक और 2 से 3 जिम्मेदार लोग द्वारा खाना टेस्ट किया जाना चाहिए। यहां तक कि शाम तक खाने का सैंपल भी रखा जाता है ताकि किसी तरह की समस्या होने पर उसकी जांच की जा सके। सवाल यह है कि अगर नियम के मुताबिक खाना चखा गया होता तो ये वॉशिंग पाउडर जो डल गया था उनसे जरा इनका भी तो मिजाज संभल जाता। देखिए क्या हुआ है।
1: इन कुछ बच्चे को लगा कि नीमक कम है ना, तो उसने बोला नीमक दीजिए और 2 डिब्बा रखा हुआ, तो गलती से नमक के बदले वो सरफ वाला डिब्बा परस दिया और एक आध दर्जन बच्चा आ लिया और वही उल्टी होने लगा, तो इमीडिएटली हम यहाँ लेकर आए हैं।
2: क्या हुआ था खाने में?
3: खाना में सरफ मिला हुआ था।
2: कौन स्कूल का मामला है?
3: मिडिल स्कूल पड़ा।
2: अच्छा, कौन थाना पड़ता है?
3: नूरसराय।
2: तो कितने बच्चे बीमार हुए हैं?
3: कम से कम तो 10-15 बच्चा।
0: और बात पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध की, जो कम होने के बजाय बढ़ रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच ड्रोन वॉर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रशिया पर करीब 800 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है। हम आपको रशिया यूक्रेन युद्ध की सबसे भयावह तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूक्रेन ने मॉस्को समेत, और सोचिए मॉस्को पर यह हमला है, मॉस्को समेत रशिया के कई ठिकानों पर 800 ड्रोन से हमले किए हैं। और उसके रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 4.5 साल से चल रहे इस युद्ध में यह दूसरी बार है जब यूक्रेन ने इतने बड़े पैमाने पर आत्मघाती ड्रोन से बॉम्ब बरसाए हैं। रशिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में ही करीब 791 यूक्रेनी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, जिसमें करीब 600 ड्रोन्स का टारगेट मॉस्को था। एयर डिफेंस सिस्टम 180 ड्रोन्स को मार गिराया है। इस हमले में जो ड्रोन कामयाब रहे उन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। इस तबाही ने जनवरी 2025 में हुए यूक्रेन के हमलों की याद ताजा कर दी है। 13 और 14 जनवरी 2025 की रात को भी कुछ ऐसा ही हमला हुआ था।

0: उस हमले में यूक्रेन ने ड्रोन के साथ साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया था। रशिया के काफी अंदर जाकर हमला किया था। अब इस बार जो हमला हुआ है उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन ड्रोन्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए तबाही ज्यादा भयानक रही। देखिए,
1: опа, о, ёбана в рот у нас.

0: यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने मॉस्को के आसपास भारी तबाही मचाई है। हम आपको मैप पे वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर हमले हुए। इन हमलों को रशिया की उस स्ट्रैटेजी का जवाब माना गया है जिसमें वो यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए उनकी राजधानी कीव पर हमले कर रहा था। ठीक वैसे ही अब यूक्रेन के टारगेट पर रशिया की राजधानी मॉस्को, उसके आसपास का क्षेत्र है। मॉस्को और उसके आसपास यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हमलों का मकसद रशिया के लोगों में दहशत फैलाने का है, ताकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति वार्ता की टेबल आने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन अभी तक पुतिन की ओर से इस तरह का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। अब यूक्रेन के टारगेट पर रशिया के सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज है। ताजा हमलों में इसके कुछ जो वेयर हाउस है जहां पर सामान रखा जाता है उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उनकी तस्वीरें इस नुकसान का सबूत है। यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज के वेयर हाउसेस को रशिया की सेना की सप्लाई चेन का हिस्सा माना है। उनका कहना है कि इन वेयर हाउसेस का इस्तेमाल रशिया की सेना हथियार छिपाने, आत्मघाती ड्रोन्स बनाने में कर रही है। इसी दौरान रशिया ने यूक्रेन के खार्कीव पर मिसाइल अटैक किए हैं जिसमें 10 लोग मारे गए, घरों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस हमले से जुड़ी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिससे हमले के बाद राहत और बचाव का काम चल रहा है। वो अपनी सेक्स पोस्ट में खार्कीव पर हुए हमले का बदला लेने की बात कह रहे हैं। यूक्रेन द्वारा रशिया पर किए गए ड्रोन अटैक ने ब्रिटेन को फंसा दिया। रशिया ने दावा किया है कि यूक्रेन के हमलों में जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ब्रिटिश कंपनीज ने बनाया है। रशिया ने धमकी दी है कि ब्रिटेन को इस गलती के गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। हाल ही में ब्रिटिश अखबार द संडे टाइम्स ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि यूक्रेन ने रशिया पर हमले करने के लिए जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है वो दो ब्रिटिश कंपनियों ने बनाया था। यूके के रशिया के दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि लंदन जानबूझकर यूक्रेन संकट को और भड़का रहा है और यूक्रेन के जरिए वो रशिया को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस पोस्ट के जवाब में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को हर कीमत पर मदद पहुंचाने की बात की, यानी यूक्रेन को वो आत्मघाती ड्रोन्स मिलते रहेंगे जिन्होंने रशिया में भारी तबाही मचाई। और अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें रशिया यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। संकेत तो ये भी मिल रहे हैं कि अब अमेरिका और ईरान एक बार फिर से युद्ध के मैदान में उतर सकते हैं। इन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की ऑफिशियल डेडलाइन खत्म हो चुकी है। आपको याद होगा 8 अप्रैल को जब युद्ध विराम की घोषणा की गई थी तब दोनों देशों के बीच एक एमओयू साइन किया गया था। इसमें 60 दिनों तक युद्ध रोकने की बात की गई थी। तय हुआ था कि दोनों देश आपसी मसले को बातचीत से सुलझाएंगे, लेकिन 60 दिनों की ये जो डेडलाइन है वो अब खत्म हो चुकी है। अब अमेरिका और ईरान कभी भी एक दूसरे के ठिकानों पर बड़े हमले कर सकते हैं। 60 दिन के ऑफिशियल युद्ध विराम के बीच दोनों देशों को युद्ध रोककर स्थायी शांति और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करनी थी, हॉर्मूज का मामला सुलझाने की पहल करनी थी, लेकिन इन सब के बावजूद एक भी मुद्दा हल नहीं हुआ। गनीमत है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अभी तक दोनों देशों ने हमले नहीं किए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल ईरान को बातचीत का मौका देना चाहते हैं और पहला हमला करने के बजाय हमले का जवाब देना पसंद करते हैं। न्यूज वेब पोर्टल एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि फिलहाल ईरान को लेकर अमेरिका पहले के मुकाबले हल्का रुख अपनाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलहाल अमेरिका ईरान को तीन तरीकों से घेरने की कोशिश में है, जिसमें पहला है आर्थिक दबाव बनाना जिसमें वो ईरान की कमाई रोकेगा, अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है। दूसरा है घेराबंदी जिसे अमेरिकी नौसेना बखूबी अंजाम दे रही है। तीसरा है बातचीत के रास्ते खुले रखना ताकि ईरान खुद या दूसरे देशों के जरिए समझौते की टेबल पर आ जाए। और अब अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी। यह खबर आधुनिक होते समाज की उस काली सच्चाई को भी दिखाती है जहां अब संतान के पास अपने ही माता पिता की देखरेख करना तो दूर, उनके अंतिम संस्कार के लिए वक्त नहीं है। बताइए अंजना। बिल्कुल अंजना, जिस घर से कभी संगीत की गूंज सुनाई देती थी वहां 5 दिनों तक एक लाश सड़ती रही और कलयुगी बेटों का जवाब था कि अभी उन्हें फुर्सत नहीं है। ये घटना राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके की है जहां एक बुजुर्ग संगीतकार रवि डे गोविंदपुरी में अकेले किराए के मकान में रहते थे। उनका शव इस घर में 5 दिनों तक सड़ता रहा। हालत ये हो चुकी थी कि शरीर में कीड़े पड़ गए। घर से उठती भयानक बदबू से पड़ोसियों को जानकारी हुई, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो बाथरूम के पास रवि डे का शव पड़ा था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जब पुलिस ने उनके दोनों बेटों को पिता की मौत की खबर दी तो उन्होंने कहा कि अभी आने की फुर्सत नहीं है। हालांकि पुलिस की कड़ी समझाइश के बाद वो दो दिन बाद एम्स पहुंचे और शव को लेकर चले गए।
1: दिखा देंगे, आप देख सकते हैं।
2: फिर बदबू आने लगी, जो लोग यहाँ से जो ऊपर ही रहते हैं इसमें, उसने बोला बदबू सी आ रही है। फिर उन्होंने पुलिस को फोन करा, फिर देखा अंकल जी बाथरूम में गिरे पड़े हुए थे, हार्ट अटैक पड़ा, क्या हुआ क्या नहीं भगवान।
0: अब जब अपनों से उम्मीदें टूट जाती हैं तब कानून को डंडा चलाना पड़ता है। देश के कुछ राज्यों ने ऐसी संतानों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। देश में सबसे पहले असम सरकार ने 2017 में प्रणाम अधिनियम लागू किया था। इसके तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी करता है तो उसके मूल वेतन से 10% कटौती कर सीधे माता पिता के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
3: पहले हमने असम में निर्णय लिया था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना पिता माता का देखभाल नहीं करेगा तब हम तनख्वाह से 10-15% डिडक्ट करके पिता माता के अकाउंट में भेजूंगा। ये स्कीम काफी सक्सेस रहा। आज पिता माता का व्यवस्था, पिता माता का ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसा कंप्लेन खत्म किया।
0: इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने मार्च 2026 में ऐतिहासिक विधेयक पारित किया। इसके दायरे में सिर्फ सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी ही नहीं बल्कि विधायक और पार्षद जैसे जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। इसके तहत माता पिता की उपेक्षा करने पर उनके वेतन का 15% या अधिकतम 10,000 रुपए काटकर सीधे माता पिता के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। सवाल यह है कि कानून वेतन से पैसे काट सकता है, सजा दे सकता है, लेकिन समाज की इस बिगड़ती मानसिकता का इलाज कौन करेगा? क्या तरक्की की इस अंधी दौड़ में समाज ने इंसानियत को बिल्कुल भुला दिया है? तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इंसान की जुबान सुधर जाए तो उसका वक्त सुधरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। नमस्कार।

0: सरकारें जब छात्रों की बात सुनने में देरी करती हैं, मामला लटकाती हैं, तो इसका खामियाजा केवल और केवल लाखों छात्रों को ही उठाना पड़ता है। इसका सबूत झारखंड में मिलता है, जहां जेपीएससी से 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन फिर जेएसएससी और साथ ही सीजीएल भर्ती परीक्षा में हुई धांधली तक पहुंच गया। इसी बीच सीआईडी ने मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
1: हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं।
2: हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच के लिए जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात हमारे छाते आप ही के बच्चे थे, बहुत देरी की कोई बात थी, अच्छी बात है, लेकिन हमारी बात मांग पूरी।
4: रेलवे में टीटी के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ और यहाँ एक क्षण में हम लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया गया।
5: बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार ने हमारी बात मानी। ये स्ट्रगल था तो काफी विपन्न हो रही थी स्थिति में थे बच्चे। यहाँ
6: सरकार ने 3 से 4 दल की हमारी मेहनत करते हुए और इस भीड़ के आगे उपद्रव के आगे घुटने टेकते हुए हमें हमारी रोटी, हमारा सम्मान, हमारे जीविका, हमारे जीवन से वंचित किया है।
7: सरकार और सरकारी व्यवस्था किस तरह युवाओं का भविष्य सरकारी नौकरी के नाम पर रौंद देते हैं, उसकी 3 तस्वीरें रांची में आज आपको देखनी है। एक तरफ छात्रों का जश्न है जो कहते हैं कि सोरेन सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री आखिरकार ऐलान करते हैं कि दागी कंपनी TDPL के तहत कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की भी घोषणा होती है। दूसरी तरफ अब भी JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी है, जो कहते हैं कि सरकार ने CBI जांच की मांग अब तक क्यों नहीं मानी। और तीसरी तरफ है रोते बिलखते गुस्सा करते सवाल करते वो युवा जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद JSSC CGL की परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की, जिन्हें लगता है कि उन्होंने तो ईमानदारी से परीक्षा देकर नौकरी पाई है तो उनकी नौकरी क्यों छीनी जा रही है। इन 3 तस्वीरों के साथ ये सबसे बड़ा सच कि सरकारी व्यवस्था की चित और पट दोनों में पिसता केवल नौजवान है। और एक एक करके इसी सच को आज आप देखिए, जहां पहले जश्न, जहां भर्तियों में धांधली होने पर 24 दिन तक चले धरना प्रदर्शन के बाद सोरेन सरकार को मांगों पर झुकाकर जीत हासिल करने के बाद मनाया जाता है।
3: हेमंत सोरेन को बधाई हो,
8: उनका बच्चा तो
3: ये जीत 1-2 साल का नहीं है, ये 10-15 साल का जीत है। ये झारखंड की भविष्य की जीत है आज। और आज से जहाँ झारखंड की सूट ने बता दिया कि वो गुलाम भी कर सकता है, गांधी जी को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं।
9: तोहफा तो इतना बड़ा दिया है, लेकिन दिया नहीं है, लड़ के लिया गया है। ये तोहफा कभी नहीं दिया जाता,
3: हमेशा सत्य जीता है। 24 दिन भले लग गया, 24 दिन में 2 साल लगा, लेकिन सत्य नहीं जीतेगा, हमेशा जीतता है।
7: जहाँ देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल टूटती है, जब मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के बाद आकर यह ऐलान कर देते हैं कि ब्लैक लिस्टेड TDPL ने जो भी परीक्षाएं कराई वो सब रद्द होंगी, JSSC CGL की परीक्षा जो 9 साल बाद जाकर झारखंड में हो पाई थी वो भी रद्द की जाएगी।
10: TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
7: निश्चित तौर पर झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों की ये बड़ी जीत, जिसने बताया कि अब सरकारें कान में तेल डालकर नहीं बैठी रह सकती, इनको सुनना पड़ेगा। लेकिन जब जश्न पूरी रात रांची में मन चुका है, तब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, क्योंकि CBI जांच की मांग मुख्यमंत्री अब तक माने नहीं।
11: सरकार से ऑफिशियली नोटिफाई होने का वेट कर रहे हैं चीजों का। JSSC CGL की अध्याचना वापस हुई है या नहीं, यह हमें अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। 11 to 13 को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है, हम यह भी जानना चाहते हैं।
8: अगर वो TDPL ने ऑर्गेनाइज किया तो वो भी कैंसिल हो गया
11: जी, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, एज कटअप को लेकर के सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है, हम एज कटअप 2018 मांग रहे हैं। और चौथा, CBI जांच पे हमारा सरकार के साथ मतभेद है।
7: और तीसरा हिस्सा है उन युवाओं का जो अब झारखंड में JSSC CGL की भर्ती रद्द होने के बाद गुस्से में, क्योंकि इन्हें 8 महीने पहले ही लंबे संघर्ष के बाद नौकरी मिली थी, लेकिन जिस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचारियों ने बहुत से लोगों से 10 लाख से 40 लाख का रेट लगाकर भर्ती कराई, वहाँ ईमानदार युवा पूछता है कि भ्रष्टाचार की चक्की में इनकी ईमानदार कोशिश को क्यों पीस दिया गया।
12: कुछ लोग कहते हैं 2000 तक फैमिली कहाँ जाएगा, आप ये बताइए।
7: मंगलवार सुबह आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार को रोशन कुमार मिलते हैं, JSSC CGL पास करके जिन्हें नौकरी अपने राज्य में मिली तो इन्होंने घर भर में ही नहीं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटा था, जिसके लिए रेलवे की नौकरी छोड़कर ये झारखंड में काम करने आ गए, ये सोच कर कि ये इनका गृह राज्य है। वो रोशन कुमार अब रोने लगते, पूछते हैं कि इनकी गलती क्या है।
4: कल तक हमारे पास एक जॉब थी, हमारा सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कल एक शाम को एक ऐसा न्यूज वायरल होता है, न्यूज आता है कैबिनेट का कि JSSC CGL की प्रक्रिया को पूरा रद्द कर दिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए थे, तब सब कुछ बताया गया, सब कुछ सही है। हम लोग पहले भी जॉब में थे सर, हम लोग रेलवे में TT के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ, और यहाँ एक क्षण में हम लोग का सब कुछ खत्म कर दिया गया, ना वो वहाँ के रहे ना वो यहाँ के रहेंगे, ऐसी परिस्थिति में अब वो कहीं के नहीं रहेंगे।
0: कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे यही तो छात्रों की मांग थी कि JSSC CGL परीक्षा रद्द कर दी जाए, और जब रद्द हो गई तो सवाल क्यों? सवाल इस परीक्षा रद्द करने पर नहीं है, सवाल है झारखंड में सरकार की नीति पर और साथ ही नियत पर भी। और केवल सोरेन ही नहीं, उससे पहले बीजेपी की भी सरकार झारखंड में रही है। बीजेपी से JMM तक के राज में यही JSSC साथ ही CGL की परीक्षा पहले भी टलती रही है, और फिर जब हुई तो पहले पेपर लीक और उसके बाद में भर्ती में धांधली की वजह से चर्चाओं में रही। अब जाकर छात्रों के आंदोलन के बाद इसे रद्द किया गया है।
4: 2000 कैंडिडेट का कम से कम आप जांच करा लीजिए एक बार, जो भी गलत निकलता है आप उसको निकालिए, आप सबको किस आधार पे निकाल सकते हैं।
7: हेमंत सोरेन सरकार ने यही फैसला अगर पहले ले लिया होता तो एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ आंसू और गुस्सा न हो, न ही 2000 परिवारों में से ईमानदारी से नौकरी हासिल करने वालों पर एक झटके में आसमान टूटता। असल में ये उस भर्ती परीक्षा की खबर है जो भविष्य में इस आधार पर याद रखी जाएगी कि सत्ता किसी की भी रहे वो युवाओं को केवल रुलाती। JSSC CGL की नौकरी चाहने वाले युवा 11 साल बाद भी इंतजार करते रह गए। आपको यकीन नहीं होगा, 5 राज्यपाल झारखंड में बदल गए, 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 6 JSSC के चेयरमैन बदल गए, पर अब तक झारखंड के छात्रों के सपनों की नौकरी JSSC CGL ईमानदारी से एक बार नहीं हो पाई। पहले इसका इतिहास याद कर लीजिए। JSSC CGL पहली बार नवंबर 2015 में निकलती है, जिसमें 2,36,000 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन 2015 में निकली इस भर्ती की मुख्य परीक्षा होने से 8 दिन पहले इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 2017 में फिर से वैकेंसी के लिए फॉर्म भरवाया गया, परीक्षा फरवरी मार्च 2018 में कराने की संभावित तारीख रखी गई, लेकिन एग्जाम ही नहीं हुआ। फिर कहा गया कि नवंबर दिसंबर 2019 में एग्जाम होगा, लेकिन चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, मामला फंस गया। फिर 2021 आया, नए नियमों के साथ JSSC CGL कराने की चर्चा हुई, लेकिन नए नियम को दिसंबर 2021 में कोर्ट ने खारिज कर दिया, परीक्षा फिर लटक गई। फिर आया 21 अगस्त 2022, जब एक बार फिर निर्धारित JSSC CGL की परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताकर स्थगित कर दिया जाता है। नाराजगी बढ़ी, JSSC CGL की परीक्षा फिर जनवरी 2024 में कराए जाने की बात, जिसमें 6,60,000 बेरोजगार बच्चे 3 शिफ्ट में पेपर देने के लिए बैठे, लेकिन तीसरा पेपर लीक हो गया और फिर प्रदर्शन करके बाकी परीक्षा पूरी रद्द हो जाती। इसके बाद ये भर्ती परीक्षा सितंबर 2024 में कराई जाती, जहां आरोप लगा कि अभय तिवारी वाले रैकेट ने धांधली कराई, लेकिन तब सोरेन सरकार ने ये बात नहीं मानी, कोर्ट तक में मामला चला, लेकिन सोरेन सरकार ने 2025 पदों के लिए साल 2025 के आखिर में नियुक्ति दे दी। जब 24 दिन तक चले आंदोलन में भर्ती में धांधली को लेकर प्रदर्शनकारी इसी परीक्षा को रद्द करने की मांग करते रहे, तब सोरेन सरकार ने सोमवार को जाकर इस परीक्षा को रद्द कर दिया। झारखंड की राजधानी रांची में अब मंत्रालय के बाहर हेलमेट पहने इन शख्स को देखिए, ये वो भाई जिन्हें डर है कि इनका छोटा भाई कहीं टूट ना जाए, जिसने सीजीएल की परीक्षा ईमानदारी से पास करके नौकरी हासिल की थी।
13: सरकार को इस सब मामले में पहले सोचना चाहिए कि वैसे अभ्यर्थी जो पूरा जिंदगी, मतलब जब से वो तैयारी कर रहा है तैयारी करते हुए उस स्थिति से बढ़ते हुए इस स्टेज पे आए कि कम से कम उस परीक्षा कंडक्ट करके, एग्जाम पास करके, सारी समस्याओं को झेलते हुए इतना सिचुएशन, इतना क्वेश्चन पेपर लीक हो, ये हो, वो हो, उसके बाद वो क्वालिटी अचीव करके तब जाके सिलेक्शन हुआ है। पूर्ण रूप से निराश है और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और अभी वो समझिए कि बच्चा, और अभी आगे का और स्थिति कितना होगा।
7: इसी जगह संजीत कुमार मिलते हैं, जिन्होंने घर के राज्य में नौकरी के सपने के लिए रेलवे की नौकरी छोड़ दी। अब उनके इस सपने पर चोट लगी, इनके बयान को आज ध्यान से सुनिए।
14: झारखंड में जॉब नहीं हो रहा था तो मैंने लॉकडाउन से रेलवे का तैयारी स्टार्ट किया और 2020 में फॉर्म भरा। 2020 में एग्जाम लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, वो एग्जाम जाके 2022 में हुआ और हम लोग का सिलेक्शन 2023 में रेलवे में हुआ। मैंने वहाँ या इस फॉर्म को भरा और इसके लिए बहुत जोर से तैयारी किया। 30 जनवरी को मेरा पहला एग्जाम सीजीएल का हुआ और उसमें भी धांधली, जब हम एग्जाम हॉल से निकले पता चला पेपर लीक हो गया और 30 जनवरी वाला हम लोग सब आए प्रोटेस्ट किए और ये पेपर रद्द कर दिया गया। सरकार के द्वारा बोला गया अपरिहार्य कारण से एग्जाम को रद्द किया जाता है। उसके बाद 21 और 22 सितंबर को एग्जाम, हम लोग के आंदोलन के बल पे सरकार दोबारा से एग्जाम करवाई और उसके बाद एग्जाम करवाई तो मेरा 22 तारीख को एग्जाम पड़ा और उसके बाद हम लोग ने एग्जाम दिया। मैंने बहुत संघर्ष करके, मैं रेलवे में, आप लोग को पता नहीं होगा, रेलवे में 3 शिफ्ट होता है 8-8 घंटा का, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह, नाइट ड्यूटी करने के बाद बिना खाना खाए तैयारी किया, फिर 2 बजे ड्यूटी जाना है। उस हालत में मैंने तैयारी किया और उसके बाद मैं इस एग्जाम के लिए, मुझे ये दिमाग में था कि मुझे घर जाना है।
15: एसओ अभी है,
14: मैं यहाँ पे एएसओ के पद पे हूँ। मैं पहले से रेलवे ग्रुप डी में पद पे था, पॉइंट्समैन के पद पे था मैं, और वहाँ से मैं रिजाइन करके आया हूँ। और मैं रिजाइन करके तब आया हूँ जब सरकार ने मुझे ये, मतलब हाईकोर्ट ने ये बोला है कि आप इस, मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जो भी कैंडिडेट फर्दर इस इन्वेस्टिगेशन में, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व पाए जाएंगे उसको, उसका कैंडिडेचर सरकार रद्द कर सकती है या सरकार उस पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बट हम लोग को किस बिना पे सरकार एकाएक जमीन के, मतलब जमीन हटा दी है सर के ऊपर से हम लोग का, हम, मेरा भी फैमिली है सर।
7: इस पूरी भर्ती में जो पैसा देकर नौकरी पाए उनका तो केवल पैसा डूबा, लेकिन जो मेहनत करके पसीना बहाकर नौकरी पाए और जो मेहनत के बावजूद भ्रष्टाचारियों की वजह से नौकरी नहीं पाए, वो दोनों युवा फिसेंगे क्योंकि मामला कोर्ट में चला जाएगा, सुनवाई की तारीखें लगती रहेंगी और फिर 2015 से लटकी जेएसएससी सीजीएल की भर्ती एक बार फिर मृग मरीचिका बन जाएगी। वो मिराज जो दिख तो 11 साल से रहा है, बस मिल नहीं पा रहा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने को लेकर जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, बीपीएससी की तरफ से तुरंत भर्ती परीक्षा का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया। लेकिन इस बार प्री और मेंस परीक्षा होनी है तो छात्र विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल एक ही परीक्षा होनी चाहिए।
7: छात्रों के आंदोलन का तीसरा बड़ा गवाह क्या पटना बन रहा, जहां छात्रों के प्रदर्शन के 5 घंटे के भीतर मंगलवार को बिहार सरकार ने एक मांग तुरंत मान ली। जैसे ही पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक भर्ती की परीक्षा का विज्ञापन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी करने की मांग रखते हुए आंदोलन शुरू होता है, बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया जाता है।
16: जीते, बहुत बड़ी जीत है कि आज हम लोग शुरुआत किया और आज ही नोटिफिकेशन आ गया, आज डेट के साथ ही कब से फॉर्म भराएगा, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है।
7: TRI 4, मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसकी परीक्षा की संभावित तारीख तो आ गई थी, विज्ञापन नहीं आया था। यूं तो धरने का ताजा कारण शिक्षा भर्ती परीक्षा में हो रही देरी और वादा खिलाफी थी, लेकिन शिकायतें और मांगे कई और भी। युवाओं का कहना है, टीचर भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में आना था जिसे टाल दिया गया। शिक्षा मंत्री ने जुलाई में विज्ञापन का वादा किया, अगस्त गुजरने वाला है, बीपीएससी ने 22-27 सितंबर को परीक्षा की तारीख तय कर रखी है, लेकिन अब तक विज्ञापन का पता नहीं था। 72वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्री 26 जुलाई को होनी थी, टालकर 25 अक्टूबर कर दी गई। 71वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा अब तक नहीं हो पाई। बीपीएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तारीख का पता नहीं।
15: पटना के गर्दनी बाग में आज से छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये छात्र न्याय सत्याग्रह, इसी बैनर तले आज से TRE4 समेत तमाम अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जो रिफॉर्म है उसकी मांग को लेकर के छात्र अभ्यर्थी आज से धरना पर बैठे हैं।
7: असल में अभी आंदोलन शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी इसलिए जारी है क्योंकि अब तक जहां केवल एक परीक्षा देकर युवा टीचर बन सकते थे, वहां अब की बार पहले पीटी परीक्षा होगी, यानी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। पीटी परीक्षा पास करने वाले ही मेंस की परीक्षा में शामिल होंगे, नियुक्ति के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा।
16: अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, अभी हम अभ्यर्थियों से विचार करेंगे कि आगे क्या करना, लेकिन अभी आंदोलन जारी है। एक परीक्षा होनी चाहिए, दो परीक्षा मंजूर नहीं, सिर्फ एक परीक्षा होनी चाहिए।
17: अपनी परीक्षा होगा तब मन,
16: अभी हम लोग बीपीएससी पे कोई भरोसा नहीं कर रहे।
18: छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? छात्र पढ़ाई में जाकर के जुटे और कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना लें, अपनी तैयारी करें और तैयारी करके वो परीक्षा में पास आउट हों, उनका एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है।
16: झूठ नहीं चलेगा, अगर आपको दो परीक्षा करानी है TRE5 से कराइए, हम लोग स्वागत करते हैं। TRE4 में सिर्फ एक परीक्षा हो चुकी, दो वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 24 अगस्त 2024 को ही इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक TRE4 का विज्ञापन नहीं आया और बार बार झूठ बोला गया, इसलिए इसमें आप देरी नहीं हो। 3 दिन तक हम लोग महाधरना दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर डिमांड पूरा नहीं होता है तो उसके बाद हम अमर अनशन पे बैठे, कुछ नहीं खाएंगे।
7: 32,388 टीचर की पोस्ट पर बिहार में भर्ती परीक्षा भी कराई जानी है। छात्र कहते हैं कि ये सब दो दो साल की देरी से परीक्षा करा रहे हैं, वो भी नियम बदलकर, ये परीक्षाएं भी लटक गईं, तो फिर आगे क्या होगा?
15: एकल परीक्षा की आप लोग मांग कर रहे हैं, वो क्या वजह है, वहाँ पर कहाँ है?
19: हम लोग एकल परीक्षा का मांग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग 2 साल से जो TR 1, 2, 3 जो हुआ उसी पैटर्न पर एग्जाम हुआ और हम लोग अचानक से पीटी और मेंस ले लेना ये कहीं से वाकई अच्छा नहीं है। हम लोग वही पैटर्न पर तो अचानक से परीक्षा होगा एक महीना में तैयारी कहां से हो पाएगा डबल एग्जाम का, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं एकल परीक्षा हो।
7: जिस बिहार में बेरोजगारी दर भले 3% हो लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार 15% से अधिक है, वहाँ हालात ये है कि शिक्षा विभाग में 46,546, ग्रामीण विकास विभाग में 35,468, गृह विभाग में 35,000, स्वास्थ्य विभाग में 20,000, पंचायती राज विभाग में 9,540, ऊर्जा विभाग में 6,600, कृषि विभाग में 5,366, नगर विकास आवास विभाग में 5,100, समाज कल्याण विभाग में 4,549 और जल संसाधन विभाग में 4,014 पद खाली हैं। कुल मिलाकर 172,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं और इतने पद तो तब के खाली हैं जब बिहार की आबादी 10,41,00,000 थी। आज बिहार की आबादी 13,07,00,000 हो चुकी है, तो पदों का सृजन उनके हिसाब से हुआ ही नहीं। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में 27 के समर के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी की ओर से जहां जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बूथ मैनेजमेंट का काम तेज कर दिया गया है।
20: सत्ताईस के समर के लिए यूपी में राजनीतिक दलों में रस्साकसी तेज हो गई है। बीजेपी ने 3 राज्यों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें बिहार के चुनाव प्रभारी रह चुके विनोद तावड़े को यूपी का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। साथ ही जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ओबीसी मोर्चे की कमान अमरपाल मौर्य को सौंपी गई है। ओबीसी के कुर्मी समुदाय से आने वाली रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। दलित वोटों के लिए पश्चिम यूपी के भोला सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, तो प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कुंवर बासित अली राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है।
21: और मोदी जी ने जो योजनाओं का लाभ लगभग 30% के आसपास अल्पसंख्यक समाज को दिया है, उसको लोगों तक पहुंचाना और उनको विश्वास दिलाना कि देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी है और मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है।
20: समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पर 5 एक्स्ट्रा परिवार जोड़ने के फॉर्मूले का टारगेट फिक्स किया है।
1: चुनाव के 6 महीने से भी कम समय बचा है तो समाजवादी पार्टी बूथ पर, सेक्टरों पर, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर सभी नौजवान काम कर रहे हैं, बूथ कमेटियां ठीक की जा रही हैं।
20: दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर बीतते दिन के साथ ये तैयारी और तेज हो रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: बीजेपी की नवीन टीम के अगले चुनावों पर नजर। तावड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की भी चर्चा। मोदी सरकार को राहुल गांधी की चेतावनी, जेनजी की तरह ओबीसी भी सड़क पर उतरा तो केंद्र को झुकना पड़ेगा। पूछा जाति जनगणना में एससी एसटी की तरह ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी का एक्शन भड़के। केजरीवाल पूछा आखिर कब तक चलती रहेगी बीजेपी की तानाशाही। यूजीसी नेट विवाद के बाद एनटीए में बड़े बदलाव के आदेश, 600 विशेषज्ञों को हटाया गया। परीक्षा और प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियों के बाद 4 स्तरीय पेपर जांच व्यवस्था लागू। और बिहार के नालंदा में मिड डे मील खाने से करीब 40 छात्र बीमार, नमक की जगह सब्जी में डाल दिया वॉशिंग पाउडर। नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी मिडिल स्कूल की घटना। सरकारें जब छात्रों की बात सुनने में देरी करती हैं, मामला लटकाती हैं, तो इसका खामियाजा केवल और केवल लाखों छात्रों को ही उठाना पड़ता है। इसका सबूत झारखंड में मिलता है, जहां जेपीएससी से 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन फिर जेएसएससी और साथ ही सीजीएल भर्ती परीक्षा में हुई धांधली तक पहुंच गया। इसी बीच सीआईडी ने मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
1: हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं।
2: हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच के लिए जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात हमारे छाते आप ही के बच्चे थे, बहुत देरी की कोई बात थी, अच्छी बात है, लेकिन हमारी बात मांग पूरी।
4: रेलवे में टीटी के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ और यहाँ एक क्षण में हम लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया गया।
5: बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार ने हमारी बात मानी। ये स्ट्रगल था तो काफी विपन्न स्थिति में थे बच्चे। यहाँ
6: सरकार ने 3 से 4 दल की हमारी मेहनत करते हुए और इस भीड़ के आगे उपद्रव के आगे घुटने टेकते हुए हमें हमारी रोटी, हमारा सम्मान, हमारे जीविका, हमारे जीवन से वंचित किया है।
7: सरकार और सरकारी व्यवस्था किस तरह युवाओं का भविष्य सरकारी नौकरी के नाम पर रौंद देते हैं, उसकी 3 तस्वीरें रांची में आज आपको देखनी है। एक तरफ छात्रों का जश्न है, जो कहते हैं कि सोरेन सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री आखिरकार ऐलान करते हैं कि दागी कंपनी TDPL के तहत कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की भी घोषणा होती है। दूसरी तरफ अब भी JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी है, जो कहते हैं कि सरकार ने CBI जांच की मांग अब तक क्यों नहीं मानी। और तीसरी तरफ है रोते बिलखते गुस्सा करते सवाल करते वो युवा, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद JSSC CGL की परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की, जिन्हें लगता है कि उन्होंने तो ईमानदारी से परीक्षा देकर नौकरी पाई है, तो उनकी नौकरी क्यों छीनी जा रही है। इन 3 तस्वीरों के साथ ये सबसे बड़ा सच कि सरकारी व्यवस्था की चित और पट दोनों में पिसता केवल नौजवान है। और एक एक करके इसी सच को आज आप देखिए, जहां पहले जश्न, जहां भर्तियों में धांधली होने पर 24 दिन तक चले धरना प्रदर्शन के बाद सोरेन सरकार को मांगों पर झुकाकर जीत हासिल करने के बाद मनाया जाता है।
3: हेमंत सोरेन को बधाई हो,
8: उनका बच्चा तो
3: हेमंत का हिम्मत है। ये जीत 1-2 साल का नहीं है, ये 10-15 साल का जीत है। ये झारखंड की भविष्य की जीत है आज। और आज से जहाँ झारखंड की सूट ने बता दिया कि वो गुलाम भी कर सकता है, गांधी जी को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं।
9: तोहफा तो इतना बड़ा दिया है, लेकिन दिया नहीं है, लड़ के लिया गया है। ये तोहफा कभी नहीं दिया जाता।
3: हमेशा सत्य जीता है। 24 दिन बड़े लग गया, 24 दिन में 2 साल लगा, लेकिन सत्य नहीं जीतेगा, हमेशा जीतता है।
7: जहां देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल टूटती है, जब मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के बाद आकर यह ऐलान कर देते हैं कि ब्लैक लिस्टेड TDPL ने जो भी परीक्षाएं कराई वो सब रद्द होंगी। JSSC CGL की परीक्षा जो 9 साल बाद जाकर झारखंड में हो पाई थी, वो भी रद्द की जाएगी।
10: TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट
8: और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
7: निश्चित तौर पर झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों की ये बड़ी जीत, जिसने बताया कि अब सरकारें कान में तेल डालकर नहीं बैठी रह सकती, इनको सुनना पड़ेगा। लेकिन जब जश्न पूरी रात रांची में मन चुका है, तब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, क्योंकि CBI जांच की मांग मुख्यमंत्री अब तक माने नहीं।
10: सरकार से ऑफिशियली नोटिफाई होने का वेट कर रहे हैं चीजों का। JSSC सीजल की अध्याचना वापस हुई है या नहीं, यह हमें अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। 11-13 को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है, हम यह भी जानना चाहते हैं।
11: अगर वो TDPL ने ऑर्गेनाइज किया तो वो भी कैंसिल हो गया,
10: जी उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, एज कटअप को लेकर के सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है, हम एज कटअप 2018 मांग रहे हैं। और चौथा, CBI जांच पे हमारा सरकार के साथ मतभेद है।
7: और तीसरा हिस्सा है उन युवाओं का जो अब झारखंड में JSSC CGL की भर्ती रद्द होने के बाद गुस्से में, क्योंकि इन्हें 8 महीने पहले ही लंबे संघर्ष के बाद नौकरी मिली थी, लेकिन जिस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचारियों ने बहुत से लोगों से 10 लाख से 40 लाख का रेट लगाकर भर्ती कराई, वहाँ ईमानदार युवा पूछता है कि भ्रष्टाचार की चक्की में इनकी ईमानदार कोशिश को क्यों पीस दिया गया। कुछ लोग कहते हैं 2000 तक फैमिली कहाँ जाएगा, आप ये बताइए। मंगलवार सुबह आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार को रोशन कुमार मिलते हैं, JSSC CGL पास करके जिन्हें नौकरी अपने राज्य में मिली, तो इन्होंने घर भर में ही नहीं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटा था, जिसके लिए रेलवे की नौकरी छोड़कर ये झारखंड में काम करने आ गए, ये सोच कर कि ये इनका गृह राज्य है। वो रोशन कुमार अब रोने लगते, पूछते हैं कि इनकी गलती क्या है।
4: कल तक हमारे पास एक जॉब थी, हमारा सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कल एक शाम को एक ऐसा न्यूज वायरल होता है, न्यूज आता है कैबिनेट का कि JSSC CGL की प्रक्रिया को पूरा रद्द कर दिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए थे, तब सब कुछ बताया गया, सब कुछ सही है। हम लोग पहले भी जॉब में थे सर, हम लोग रेलवे में TT के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ, और यहाँ एक क्षण में हम लोग का सब कुछ खत्म कर दिया गया। ना वो वहाँ के रहे ना वो यहाँ के रहेंगे, ऐसी परिस्थिति में अब वो कहीं के नहीं रहेंगे।
0: कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे यही तो छात्रों की मांग थी कि JSSC CGL परीक्षा रद्द कर दी जाए, और जब रद्द हो गई तो सवाल क्यों? सवाल इस परीक्षा रद्द करने पर नहीं है, सवाल है झारखंड में सरकार की नीति पर और साथ ही नियत पर भी। और केवल सोरेन ही नहीं, उससे पहले BJP की भी सरकार झारखंड में रही है। BJP से JMM तक के राज में यही JSSC साथ ही CGL की परीक्षा पहले भी टलती रही है, और फिर जब हुई तो पहले पेपर लीक और उसके बाद में भर्ती में धांधली की वजह से चर्चाओं में रही। अब जाकर छात्रों के आंदोलन के बाद इसे रद्द किया गया है।
4: 2000 कैंडिडेट का कम से कम आप जांच करा लीजिए एक बार, जो भी गलत निकलता है आप उसको निकालिए, आप सबको किस आधार पे निकाल सकते हैं।
7: हेमंत सोरेन सरकार ने यही फैसला अगर पहले ले लिया होता तो एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ आंसू और गुस्सा न हो, न ही 2000 परिवारों में से ईमानदारी से नौकरी हासिल करने वालों पर एक झटके में आसमान टूटता। असल में ये उस भर्ती परीक्षा की खबर है जो भविष्य में इस आधार पर याद रखी जाएगी कि सत्ता किसी की भी रहे वो युवाओं को केवल रुलाती। JSSC CGL की नौकरी चाहने वाले युवा 11 साल बाद भी इंतजार करते रह गए। आपको यकीन नहीं होगा, 5 राज्यपाल झारखंड में बदल गए, 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 6 JSSC के चेयरमैन बदल गए, पर अब तक झारखंड के छात्रों के सपनों की नौकरी JSSC CGL ईमानदारी से एक बार नहीं हो पाई। पहले इसका इतिहास याद कर लीजिए। JSSC CGL पहली बार नवंबर 2015 में निकलती है, जिसमें 2,36,000 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन 2015 में निकली इस भर्ती की मुख्य परीक्षा होने से 8 दिन पहले इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 2017 में फिर से वैकेंसी के लिए फॉर्म भरवाया गया, परीक्षा फरवरी मार्च 2018 में कराने की संभावित तारीख रखी गई, लेकिन एग्जाम ही नहीं हुआ। फिर कहा गया कि नवंबर दिसंबर 2019 में एग्जाम होगा, लेकिन चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, मामला फंस गया। फिर 2021 आया, नए नियमों के साथ JSSC CGL कराने की चर्चा हुई, लेकिन नए नियम को दिसंबर 2021 में कोर्ट ने खारिज कर दिया, परीक्षा फिर लटक गई। फिर आया 21 अगस्त 2022, जब एक बार फिर निर्धारित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताकर स्थगित कर दिया जाता है। नाराजगी बढ़ी, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा फिर जनवरी 2024 में कराए जाने की बात, जिसमें 660,000 बेरोजगार बच्चे 3 शिफ्ट में पेपर देने के लिए बैठे, लेकिन तीसरा पेपर लीक हो गया और फिर प्रदर्शन करके बाकी परीक्षा पूरी रद्द हो जाती। इसके बाद ये भर्ती परीक्षा सितंबर 2024 में कराई जाती, जहां आरोप लगा कि अभय तिवारी वाले रैकेट ने धांधली कराई, लेकिन तब सोरेन सरकार ने ये बात नहीं मानी। कोर्ट तक में मामला चला, लेकिन सोरेन सरकार ने 2025 पदों के लिए साल 2025 के आखिर में नियुक्ति दे दी। जब 24 दिन तक चले आंदोलन में भर्ती में धांधली को लेकर प्रदर्शनकारी इसी परीक्षा को रद्द करने की मांग करते रहे, तब सोरेन सरकार ने सोमवार को जाकर इस परीक्षा को रद्द कर दिया। झारखंड की राजधानी रांची में अब मंत्रालय के बाहर हेलमेट पहने इन शख्स को देखिए। ये वो भाई जिन्हें डर है कि इनका छोटा भाई कहीं टूट ना जाए, जिसने सीजीएल की परीक्षा ईमानदारी से पास करके नौकरी हासिल की थी।
12: सरकार को इस सब मामले में पहले सोचना चाहिए कि वैसे अभ्यर्थी जो पूरा जिंदगी, मतलब जब से वो तैयारी कर रहा तैयारी करते हुए उस स्थिति से बढ़ते हुए इस स्टेज पे आए कि कम से कम उस परीक्षा कंडक्ट करके एग्जाम पास करके सारी समस्याओं को झेलते हुए इतना सिचुएशन, इतना क्वेश्चन पेपर लीक हो, ये हो वो हो, उसके बाद वो क्वालिटी अचीव करके तब जाके सिलेक्शन हुआ है। पूर्ण रूप से निराश है और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और अभी वो समझिए कि बच्चा, और अभी आगे का और स्थिति कितना होगा।
7: इसी जगह संजीत कुमार मिलते हैं, जिन्होंने घर के राज्य में नौकरी के सपने के लिए रेलवे की नौकरी छोड़ दी। अब उनके इस सपने पर चोट लगी, इनके बयान को आज ध्यान से सुनिए।
13: झारखंड में जॉब नहीं हो रहा था तो मैंने लॉकडाउन से रेलवे का तैयारी स्टार्ट किया और 2020 में फॉर्म भरा, 2020 में एग्जाम लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, वो एग्जाम जाके 2022 में हुआ और हम लोग का सिलेक्शन 2023 में रेलवे में हुआ। मैंने वहाँ या इस फॉर्म को भरा और इसके लिए बहुत जोर से तैयारी किया। 30 जनवरी को मेरा पहला एग्जाम सीजीएल का हुआ और उसमें भी धांधली, जब हम एग्जाम हॉल से निकले पता चला पेपर लीक हो गया और 30 जनवरी वाला हम लोग सब आए प्रोटेस्ट किए और ये पेपर रद्द कर दिया गया। सरकार के द्वारा बोला गया अपरिहार्य कारण से एग्जाम को रद्द किया जाता है। उसके बाद 21 और 22 सितंबर को एग्जाम हम लोग के आंदोलन के बल पे सरकार दोबारा से एग्जाम करवाई और उसके बाद एग्जाम करवाई तो मेरा 22 तारीख को एग्जाम पड़ा और उसके बाद हम लोग ने एग्जाम दिया। मैंने बहुत संघर्ष करके, मैं रेलवे में, आप लोग को पता नहीं होगा, रेलवे में 3 शिफ्ट होता है 8-8 घंटा का, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह बिना खाना खाए तैयारी किया, फिर 2 बजे ड्यूटी जाना है। उस हालत में मैंने तैयारी किया और उसके बाद मैं इस एग्जाम के लिए, मुझे ये दिमाग में था कि मुझे घर जाना है।
14: अभी हाँ।
13: मैं यहाँ पे एएसओ के पद पे हूँ, मैं पहले से रेलवे ग्रुप डी में पद पे था, पॉइंट्समैन के पद पे था मैं, और वहाँ से मैं रिजाइन करके आया हूँ। और मैं रिजाइन करके तब आया हूँ जब सरकार ने मुझे ये, मतलब हाईकोर्ट ने ये बोला है कि आप इस, मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जो भी कैंडिडेट फर्दर इस इन्वेस्टिगेशन में, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व पाए जाएंगे उसको, उसका कैंडिडेचर सरकार रद्द कर सकती है या सरकार उस पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बट हम लोग को किस बिना पे सरकार एकाएक जमीन के, मतलब जमीन हटा दी है सर के ऊपर से हम लोग का, हम, मेरा भी फैमिली है सर।
7: इस पूरी भर्ती में जो पैसा देकर नौकरी पाए उनका तो केवल पैसा डूबा, लेकिन जो मेहनत करके पसीना बहाकर नौकरी पाए और जो मेहनत के बावजूद भ्रष्टाचारियों की वजह से नौकरी नहीं पाए, वो दोनों युवा फिसेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में चला जाएगा, सुनवाई की तारीखें लगती रहेंगी और फिर 2015 से लटकी जेएसएससी सीजीएल की भर्ती एक बार फिर मृग मरीचिका बन जाएगी। वो मिराज जो दिख तो 11 साल से रहा है, बस मिल नहीं पा रहा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने को लेकर जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, बीपीएससी की तरफ से तुरंत भर्ती परीक्षा का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया, लेकिन इस बार प्री और मेंस परीक्षा होनी है तो छात्र विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल एक ही परीक्षा होनी चाहिए।
7: छात्रों के आंदोलन का तीसरा बड़ा गवाह क्या पटना बन रहा है? जहां छात्रों के प्रदर्शन के 5 घंटे के भीतर मंगलवार को बिहार सरकार ने एक मांग तुरंत मान ली। जैसे ही पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक भर्ती की परीक्षा का विज्ञापन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी करने की मांग रखते हुए आंदोलन शुरू होता है, बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया जाता है।
14: जीते, बहुत बड़ी जीत है कि आज हम लोग शुरुआत किया और आज ही नोटिफिकेशन आ गया। आज डेट के साथ ही कब से फॉर्म भराएगा, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है।
7: TRI 4 मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसकी परीक्षा की संभावित तारीख तो आ गई थी, विज्ञापन नहीं आया था। यूं तो धरने का ताजा कारण शिक्षा भर्ती परीक्षा में हो रही देरी और वादा खिलाफी थी, लेकिन शिकायतें और मांगे कई और भी। युवाओं का कहना है, टीचर भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में आना था जिसे टाल दिया गया। शिक्षा मंत्री ने जुलाई में विज्ञापन का वादा किया, अगस्त गुजरने वाला है। बीपीएससी ने 22-27 सितंबर को परीक्षा की तारीख तय कर रखी है, लेकिन अब तक विज्ञापन का पता नहीं था। 72वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्री 26 जुलाई को होनी थी, टालकर 25 अक्टूबर कर दी गई। 71वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा अब तक नहीं हो पाई। बीपीएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तारीख का पता नहीं।
15: पटना के गर्दनी बाग में आज से छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये छात्र न्याय सत्याग्रह, इसी बैनर तले आज से TRE 4 समेत तमाम अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जो रिफॉर्म है उसकी मांग को लेकर के छात्र अभ्यर्थी आज से धरना पर बैठे हैं।
7: असल में अब यह आंदोलन शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी इसलिए जारी है, क्योंकि अब तक जहां केवल एक परीक्षा देकर युवा टीचर बन सकते थे, वहां अब की बार पहले पीटी परीक्षा होगी यानी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। पीटी परीक्षा पास करने वाले ही मेंस की परीक्षा में शामिल होंगे, नियुक्ति के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा।
14: अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, अभी हम अभ्यर्थियों से विचार करेंगे कि आगे क्या करना, लेकिन अभी आंदोलन जारी है। एक परीक्षा होनी चाहिए, दो परीक्षा मंजूर नहीं, सिर्फ एक परीक्षा होनी चाहिए।
16: अभी परीक्षा होगा तब मंजूर,
14: अभी हम लोग बीपीएससी पे कोई भरोसा नहीं कर रहे।
17: छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? छात्र पढ़ाई में जाकर के जुटे और कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना लें, अपनी तैयारी करें और तैयारी करके वो परीक्षा में पास आउट हो, उनका एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है।
14: झूठ नहीं चलेगा, अगर आपको दो परीक्षा करानी है TRE 5 से कराइए, हम लोग स्वागत करते हैं। TRE 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो चुकी, 2 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, 24 अगस्त 2024 को ही इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया और बार बार झूठ बोला गया, इसलिए इसमें आप देरी नहीं हो। 3 दिन तक हम लोग महाधरना दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर डिमांड पूरा नहीं होता है तो उसके बाद हम अमर अनशन पे बैठे, कुछ नहीं खाएंगे।
7: 32,388 टीचर की पोस्ट पर बिहार में भर्ती परीक्षा भी कराई जानी है। छात्र कहते हैं कि ये सब 2-2 साल की देरी से परीक्षा करा रहे हैं, वो भी नियम बदलकर, ये परीक्षाएं भी लटक गईं, तो फिर आगे क्या होगा?
15: एकल परीक्षा की आप लोग मांग कर रहे हैं, वो क्या वजह है, वहाँ पर कहाँ है?
18: हम लोग एकल परीक्षा का मांग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग 2 साल से जो TR 1, 2, 3 जो हुआ उसी पैटर्न पर एग्जाम हुआ, और हम लोग अचानक से पीटी और मेंस ले लेना ये कहीं से वाकई अच्छा नहीं है। हम लोग वही पैटर्न पर तो अचानक से हम परीक्षा होगा एक महीना में तैयारी कहां से हो पाएगा डबल एग्जाम का, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं एकल परीक्षा हो।
7: जिस बिहार में बेरोजगारी दर भले 3% हो, लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार 15% से अधिक है, वहाँ हालात ये है कि शिक्षा विभाग में 46,546, ग्रामीण विकास विभाग में 35,468, गृह विभाग में 35,000, स्वास्थ्य विभाग में 20,000, पंचायती राज विभाग में 9,540, ऊर्जा विभाग में 6,600, कृषि विभाग में 5,366, नगर विकास आवास विभाग में 5,100, समाज कल्याण विभाग में 4,549 और जल संसाधन विभाग में 4,014 पद खाली हैं। कुल मिलाकर 172,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, और इतने पद तो तब के खाली हैं जब बिहार की आबादी 10,41,00,000 थी, आज बिहार की आबादी 13,07,00,000 हो चुकी है, तो पदों का सृजन उनके हिसाब से हुआ ही नहीं। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है जेनजी पर। योगी जहां जाते हैं युवा पीढ़ी और उनके लिए योजनाओं की बात करते हैं। आपको ये भी बता दें कि जेनजी आंदोलन के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में पूरी तरह से जुटी हुई है। सामने सबसे बड़ी चुनौती है 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव।
19: दिल्ली के जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। 36 दिन के आंदोलन से न सिर्फ शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी की सारी मांगे भी माननी पड़ी। इसी तरह रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 24 दिन तक चले छात्र आंदोलन ने हेमंत सोरेन सरकार को झुका दिया। छात्रों की एक दो मांगों को छोड़कर सरकार को बाकी की मांगे माननी पड़ी। पटना के गर्दनी बाग में तो गजब हो गया। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी TRE-4 का विज्ञापन जारी करने के लिए प्रदर्शन शुरू होता है। 5 घंटे के भीतर BPSC आवेदन का विज्ञापन जारी कर देता है। जेंजी के यही तेवर अब सरकारों के लिए चैलेंज बन रहे हैं। जंतर मंतर के आंदोलन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माइलेज लेने की कोशिश की और अखिलेश यादव ने यूपी के मुद्दों को जंतर मंतर से लेकर संसद तक सामने रखा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा और अब CM योगी जहां भी बोलते हैं उनके भाषणों में जेन जी का जिक्र जरूर आता है।
20: जब युवा
19: आपको बता दें कि CM योगी गोरखपुर में आयोजित पहलवानों का दंगल देखने पहुंचे तो वहां भी जेन जी यानी युवाओं को लेकर विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला।
21: उस समय की सरकारों के एजेंडे में खेल नहीं था, युवा नहीं था। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था। ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं आपके हितों के लिए। जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति। सबसे बड़ा दुश्मन है युवा शक्ति की माफिया प्रवृत्ति। वह शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो या फिर पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो या किसी भी फील्ड का माफिया, अगर वह माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी।
19: क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ा मुद्दा युवा वोटर बनकर उभरा है। ऐसा क्यों, इसे आप उत्तर प्रदेश में युवा वोटरों के आंकड़ों से समझिए। यूपी में कुल वोटर्स करीब 13 करोड़ हैं। इनमें जेन जी यानी 18 से 27 साल के वोटर्स 2.07 करोड़ हैं, यानी लगभग 15%। यूपी में जिन सीटों पर जेन जी वोटर्स का असर है वो यूपी विधानसभा की 403 में से लगभग 80 से 120 सीटें हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जेन जी को समझा रहे हैं कि यूपी सरकार जल्द नई युवा नीति लेकर आ रही है। इसके तहत युवाओं के लिए कई आयोजन और कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
21: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है हर जिले में एक एम्प्लॉयमेंट जोन हम बना रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जोन का मतलब स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन। एक छत के नीचे नौजवान की स्किलिंग भी होगी, उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी माफिया, वह नकल माफिया हो या किसी भी फील्ड का शिक्षा माफिया हो, अगर उसने किसी युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करते हुए हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।
19: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अभ्युदय कोचिंग को हर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचाया जाएगा। इसकी सुविधा फिजिकल और वर्चुअल दोनों माध्यमों से मिलेगी। प्रदेश के हर जिले में स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन बनाया जा रहा है। यहां एक ही छत के नीचे युवाओं की स्किलिंग के साथ रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। खेल के किसी भी क्षेत्र में निजी क्षेत्र सहयोग करेगा तो राज्य सरकार की खेल नीति के तहत उसे पूरा सहयोग दिया जाएगा।
22: पुलिस भी खराब कर दी उन्होंने, पुलिस इतनी खराब कर दी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और पुलिस इतनी खराब है अगर आप थाने गए तो आपकी तरफ देख करके सबसे पहले जेब देखेंगे, जेब में क्या है। और यही हाल तहसील का हो गया है, पुलिस केवल पैसे देख रही है। और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम, एक ही कानून चल रहा है यहां पर कि हथेली गरम पुलिस नरम हो जा रही है।
19: सीएम योगी माफियाओं की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और यूपी पुलिस को लेकर तगड़ा प्रहार किया है।
21: बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं, हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री

0: पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है।
1: समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे।
2: चुनाव में वक्त कम है, लिहाजा योगी का मिशन जेन जी फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। कई मोर्चों पर युवाओं को साधने की कोशिशें जारी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक नई युवा नीति का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। योगी के मंत्री को अपने अपने क्षेत्र में जेन जी के साथ चौपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन की तरफ से स्कूल कॉलेजों में छात्रों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। हर विधानसभा सीट पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं से संवाद करेगी स्पेशल टीम। आला अफसरों को छात्रों से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान निकालने का आदेश। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब करीब 5 महीने का वक्त रह गया है, इसलिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इस पीढ़ी को क्या चीज प्रेरित करती है और उन तक कैसे पहुंच बनाई जाए। आज तक ब्यूरो।
3: सीएम योगी यूपी में सख्त कानून व्यवस्था का हवाला अक्सर मंचों से देते रहे हैं, लेकिन लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके में पुलिस टीम ही हमले का शिकार हो गई। नगर निगम के साथ अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर महिला पुरुषों की भीड़ ने जबरदस्त जानलेवा हमला बोला।
4: किसी ने गला दबाकर हत्या की कोशिश की, किसी ने लोहे की जंजीर से हमला बोला, खून खून हो गए पुलिस वाले। ये तस्वीरें लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके की हैं। इस इलाके में 148 भैंसों के साथ अवैध डेयरी चलाई जा रही थी। टीम जब यहां पहुंची तो भीड़ ने लाठी डंडे रॉड जंजीरों पत्थरों से पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। सरकारी गाड़ियां तोड़ डाली, एक सब इंस्पेक्टर की गला दबाकर हत्या की कोशिश हुई। अधिक संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंचती तब तक आरोपी फरार हो गए। 2 हमलावर महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
5: कल इन्होंने जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस के जवानों पे और पुलिस के एक इंस्पेक्टर पे कार्रवाई की है, मारा है, गला दबाया है, इनका गुस्सा देखिए आप।
6: मौके पर आज पुलिस पहुंची है, लगातार डेयरियों पर कार्रवाई हो रही है। अगर आप देखिए तो भैंसों को धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर इस नगर निगम के द्वारा जो गाड़ी है उसके सभी भैंसों को ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई अवैध डेयरियों के खिलाफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में
4: कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। अवैध डेयरी में रखी गई भैंसों को नगर निगम ने जब्त कर लिया है। पुलिस कर्मियों की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर में जिक्र है कि अवैध पशुओं को हटाने के दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला हुआ। हमले की गिरफ्तार आरोपी 2 महिलाएं खुशबून और आफरीन है। 10 से 12 आरोपी नामजद किए गए हैं। आरोपियों का अतीक अहमद के साथ कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अब पुलिस आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी कर रही है। अब इस पूरे मामले में जबरदस्त राजनीति हो रही है।
7: योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, पुलिस पर हमला किया है, बलवा करने का प्रयास किया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं।
8: भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक अजीब सा माहौल है। ना पुलिस सुरक्षित है, ना लोग सुरक्षित है, ना पुलिस से लोग सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठते जा रहे हैं।
4: फिलहाल हालात को नियंत्रण में रखने के लिए 5 थाने की फोर्स मौके पर मौजूद है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज तक।

0: बीजेपी की नवीन टीम के अगले चुनावों पर नजर। तांबड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की भी चर्चा। मोदी सरकार को राहुल गांधी की चेतावनी, जेनजी की तरह। बीजेपी की नवीन टीम के अगले चुनावों पर नजर। तांबड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की भी चर्चा। मोदी सरकार को राहुल गांधी की चेतावनी, जेनजी की तरह। जीएल भर्ती परीक्षा में हुई धांधली तक पहुंच गया। इसी बीच सीआईडी ने मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
1: हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं।
2: हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच के लिए जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात हमारे छाते आप ही के बच्चे थे, बहुत देरी की, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी बात मान लीजिए।
4: रेलवे में टीटी के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ और यहाँ एक क्षण में हम लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया गया।
5: बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार ने हमारी बात मानी। छात्रों का ये स्ट्रगल था तो काफी विपन्न स्थिति में थे बच्चे। यहाँ
6: सरकार ने 3 से 4 तक की हमारी मेहनत करते हुए और इस भीड़ के आगे, उपद्रव के आगे घुटने टेकते हुए हमें हमारी रोटी, हमारा सम्मान, हमारे जीविका, हमारे जीवन से वंचित किया है।
7: सरकार और सरकारी व्यवस्था किस तरह युवाओं का भविष्य सरकारी नौकरी के नाम पर रौंद देते हैं, उसकी 3 तस्वीरें रांची में आज आपको देखनी है। एक तरफ छात्रों का जश्न है जो कहते हैं कि सोरेंद्र सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री आखिरकार ऐलान करते हैं कि दागी कंपनी TDPL के तहत कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की भी घोषणा होती। दूसरी तरफ अब भी JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, जो कहते हैं कि सरकार ने CBI जांच की मांग अब तक क्यों नहीं मानी। और तीसरी तरफ है रोते बिलखते, गुस्सा करते, सवाल करते वो युवा जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद JSSC CGL की परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की, जिन्हें लगता है कि उन्होंने तो ईमानदारी से परीक्षा देकर नौकरी पाई है तो उनकी नौकरी क्यों छीनी जा रही है। इन 3 तस्वीरों के साथ ये सबसे बड़ा सच कि सरकारी व्यवस्था की चित और पट दोनों में पिसता केवल नौजवान है। और एक एक करके इसी सच को आज आप देखिए, जहां पहले जश्न, जहां भर्तियों में धांधली होने पर 24 दिन तक चले धरना प्रदर्शन के बाद सोरेंद्र सरकार को मांगों पर झुकाकर जीत हासिल करने के बाद मनाया जाता है।
3: हेमंत सोरेन को बधाई हो,
8: उनका हिम्मत है, उनका बच्चों को
3: हिम्मत है, ये जीत 1-2 साल का नहीं है, ये 10-15 साल का जीत है। ये झारखंड की भविष्य की जीत है आज। और आज से जहाँ झारखंड की सूट से बता दिया कि वो गुलाम भी कर सकता, गांधी जी को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं।
9: तोहफा तो इतना बड़ा दिया है लेकिन दिया नहीं है, लड़ के लिया गया है। ये तोहफा कभी नहीं दिया जाता।
3: हमेशा सत्य जीता है, 24 दिन बड़े लग गया, 24 दिन में 2 साल लगा, लेकिन सत्य नहीं जीतेगा, हमेशा जीतता है।
7: जहाँ देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल टूटती है जब मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के बाद आकर यह ऐलान कर देते हैं कि ब्लैक लिस्टेड TDPL ने जो भी परीक्षाएं कराई वो सब रद्द होंगी। JSSC CGL की परीक्षा जो 9 साल बाद जाकर झारखंड में हो पाई थी वो भी रद्द की जाएगी।
10: TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL

0: दल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं वो उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
1: निश्चित तौर पर झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों की ये बड़ी जीत, जिसने बताया कि अब सरकारें कान में तेल डालकर नहीं बैठी रह सकती, इनको सुनना पड़ेगा। लेकिन जब जश्न पूरी रात रांची में मन चुका है, तब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग मुख्यमंत्री अब तक माने नहीं।
2: सरकार से ऑफिशियली नोटिफाई होने का वेट कर रहे हैं चीजों का। जैसे अच्छा, सीजल की अध्याचना वापस हुई है या नहीं, यह हमें अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। 11-13 को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है, हम यह भी जानना चाहते हैं।
3: अगर वो टीडीपीएल ने ऑर्गेनाइज किया तो वो भी कैंसिल हो गया,
2: उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, एज कटअप को लेकर के सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है, हम एज कटअप 2018 मांग रहे हैं। और चौथा, सीबीआई जांच पे हमारा सरकार के साथ मतभेद है।
1: और तीसरा हिस्सा है उन युवाओं का जो अब झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की भर्ती रद्द होने के बाद गुस्से में, क्योंकि इन्हें 8 महीने पहले ही लंबे संघर्ष के बाद नौकरी मिली थी, लेकिन जिस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचारियों ने बहुत से लोगों से 10 लाख से 40 लाख का रेट लगाकर भर्ती कराई, वहाँ ईमानदार युवा पूछता है कि भ्रष्टाचार की चक्की में इनकी ईमानदार कोशिश को क्यों पीस दिया गया।
4: कुछ लोग के कहते हैं 2000 तक नहीं कहा जाएगा, आप ये बताइए।
1: मंगलवार सुबह आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार को रोशन कुमार मिलते हैं, जेएसएससी सीजीएल पास करके जिन्हें नौकरी अपने राज्य में मिली तो इन्होंने घर भर में ही नहीं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटा था, जिसके लिए रेलवे की नौकरी छोड़कर ये झारखंड में काम करने आ गए, ये सोच कर कि ये इनका गृह राज्य है। वो रोशन कुमार अब रोने लगते, पूछते हैं कि इनकी गलती क्या है।
5: कल तक हमारे पास एक जॉब थी, हमारा सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कल एक शाम को एक ऐसा न्यूज वायरल होता है, न्यूज आता है कैबिनेट का कि सीसीएल की प्रक्रिया को पूरा रद्द कर दिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए थे, तब सब कुछ बताया गया, सब कुछ सही है। हम लोग पहले भी जॉब में थे सर, हम लोग रेलवे में टीटी के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ, और यहाँ एक क्षण में हम लोग का सब कुछ खत्म कर दिया गया। ना वो वहाँ के रहे ना वो यहाँ के रहेंगे, ऐसी परिस्थिति में अब वो कहीं के नहीं रहेंगे।
6: कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे यही तो छात्रों की मांग थी कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी जाए, और जब रद्द हो गई तो सवाल क्यों? सवाल इस परीक्षा रद्द करने पर नहीं है, सवाल है झारखंड में सरकार की नीति पर और साथ ही नियत पर भी। और केवल सोरेन ही नहीं, उससे पहले बीजेपी की भी सरकार झारखंड में रही है। बीजेपी से जेएमएम तक के राज में यही जेएसएससी साथ ही सीजीएल की परीक्षा पहले भी टलती रही है, और फिर जब हुई तो पहले पेपर लीक और उसके बाद में भर्ती में धांधली की वजह से चर्चाओं में रही। अब जाकर छात्रों के आंदोलन के बाद इसे रद्द किया गया है।
5: 2000 कैंडिडेट का कम से कम आप जांच करा लीजिए एक बार, जो भी गलत निकलता है आप उसको निकालिए, आप सबको किस आधार पे निकाल सकते हैं।
1: हेमंत सोरेन सरकार ने यही फैसला अगर पहले ले लिया होता तो एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ आंसू और गुस्सा न हो, न ही 2000 परिवारों में से ईमानदारी से नौकरी हासिल करने वालों पर एक झटके में आसमान टूटता। असल में ये उस भर्ती परीक्षा की खबर है जो भविष्य में इस आधार पर याद रखी जाएगी कि सत्ता किसी की भी रहे वो युवाओं को केवल रुलाती। जेएसएससी सीजीएल की नौकरी चाहने वाले युवा 11 साल बाद भी इंतजार करते रह गए। आपको यकीन नहीं होगा, 5 राज्यपाल झारखंड में बदल गए, 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 6 जेएसएससी के चेयरमैन बदल गए, पर अब तक झारखंड के छात्रों के सपनों की नौकरी जेएसएससी सीजीएल ईमानदारी से एक बार नहीं हो पाई। पहले इसका इतिहास याद कर लीजिए। जेएसएससी सीजीएल पहली बार नवंबर 2015 में निकलती है, जिसमें 2,36,000 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन 2015 में निकली इस भर्ती की मुख्य परीक्षा होने से 8 दिन पहले इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 2017 में फिर से वैकेंसी के लिए फॉर्म भरवाया गया, परीक्षा फरवरी मार्च 2018 में कराने की संभावित तारीख रखी गई, लेकिन एग्जाम ही नहीं हुआ। फिर कहा गया कि नवंबर दिसंबर 2019 में एग्जाम होगा, लेकिन चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, मामला फंस गया। फिर 2021 आया, नए नियमों के साथ जेएसएससी सीजीएल कराने की चर्चा हुई, लेकिन नए नियम को दिसंबर 2021 में कोर्ट ने खारिज कर दिया, परीक्षा फिर लटक गई। फिर आया 21 अगस्त 2022, जब एक बार फिर निर्धारित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा

0: अपरिहार्य कारण बताकर स्थगित कर दिया जाता है। नाराजगी बढ़ी, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा फिर जनवरी 2024 में कराए जाने की बात, जिसमें 660,000 बेरोजगार बच्चे 3 शिफ्ट में पेपर देने के लिए बैठे, लेकिन तीसरा पेपर लीक हो गया और फिर प्रदर्शन करके बाकी परीक्षा पूरी रद्द हो जाती। इसके बाद ये भर्ती परीक्षा सितंबर 2024 में कराई जाती, जहां आरोप लगा कि अभय तिवारी वाले रैकेट ने धांधली कराई, लेकिन तब सोरेन सरकार ने ये बात नहीं मानी। कोर्ट तक में मामला चला, लेकिन सोरेन सरकार ने 2025 पदों के लिए साल 2025 के आखिर में नियुक्ति दे दी। जब 24 दिन तक चले आंदोलन में भर्ती में धांधली को लेकर प्रदर्शनकारी इसी परीक्षा को रद्द करने की मांग करते रहे, तब सोरेन सरकार ने सोमवार को जाकर इस परीक्षा को रद्द कर दिया। झारखंड की राजधानी रांची में अब मंत्रालय के बाहर हेलमेट पहने इन शख्स को देखिए। ये वो भाई जिन्हें डर है कि इनका छोटा भाई कहीं टूट ना जाए, जिसने सीजीएल की परीक्षा ईमानदारी से पास करके नौकरी हासिल की थी।
1: सरकार को इस सब मामले में पहले सोचना चाहिए कि वैसे अभ्यर्थी जो पूरा जिंदगी, मतलब जब से वो तैयारी कर रहा है तैयारी करते हुए उस स्थिति से बढ़ते हुए इस स्टेज पे आए कि कम से कम उस परीक्षा कंडक्ट करके एग्जाम पास करके सारी समस्याओं को झेलते हुए इतना सिचुएशन, इतना क्वेश्चन पेपर लीक हो, ये हो वो हो, उसके बाद वो क्वालिटी अचीव करके तब जाके सिलेक्शन हुआ है। पूर्ण रूप से निराश है और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और अभी वो समझिए कि बच्चा, और अभी आगे का और स्थिति कितना होगा।
0: इसी जगह संजीत कुमार मिलते हैं, जिन्होंने घर के राज्य में नौकरी के सपने के लिए रेलवे की नौकरी छोड़ दी। अब उनके इस सपने पर चोट लगी, इनके बयान को आज ध्यान से सुनिए।
2: झारखंड में जॉब नहीं हो रहा था तो मैंने लॉकडाउन से रेलवे का तैयारी स्टार्ट किया और 2020 में फॉर्म भरा। 2020 में एग्जाम लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, वो एग्जाम जाके 2022 में हुआ और हम लोग का सिलेक्शन 2023 में रेलवे में हुआ। मैंने वहाँ या इस फॉर्म को भरा और इसके लिए बहुत जोर से तैयारी किया। 30 जनवरी को मेरा पहला एग्जाम सीजीएल का हुआ और उसमें भी धांधली। जब हम एग्जाम हॉल से निकले पता चला पेपर लीक हो गया और 30 जनवरी वाला हम लोग सब आए प्रोटेस्ट किए और ये पेपर रद्द कर दिया गया। सरकार के द्वारा बोला गया अपरिहार्य कारण से एग्जाम को रद्द किया जाता है। उसके बाद 21 और 22 सितंबर को एग्जाम हम लोग के आंदोलन के बल पे सरकार दोबारा से एग्जाम करवाई और उसके बाद एग्जाम करवाई तो मेरा 22 तारीख को एग्जाम पड़ा और उसके बाद हम लोग ने एग्जाम दिया। मैंने बहुत संघर्ष करके, मैं रेलवे में, आप लोग को पता नहीं होगा, रेलवे में 3 शिफ्ट होता है 8-8 घंटा का, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह बिना खाना खाए तैयारी किया, फिर 2 बजे ड्यूटी जाना है। उस हालत में मैंने तैयारी किया और उसके बाद मैं इस एग्जाम के लिए, मुझे ये दिमाग में था कि मुझे घर जाना है।
3: अभी हाँ।
2: मैं यहाँ पे एएसओ के पद पे हूँ। मैं पहले से रेलवे ग्रुप डी में पद पे था, पॉइंट्समैन के पद पे था मैं, और वहाँ से मैं रिजाइन करके आया हूँ। और मैं रिजाइन करके तब आया हूँ जब सरकार ने मुझे ये, मतलब हाईकोर्ट ने ये बोला है कि आप इस, मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जो भी कैंडिडेट फर्दर इस इन्वेस्टिगेशन में, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व पाए जाएंगे उसको, उसका कैंडिडेचर सरकार रद्द कर सकती है या सरकार उस पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बट हम लोग को किस बिना पे सरकार एकाएक जमीन के, मतलब जमीन हटा दी है सर के ऊपर से हम लोग का, हम, मेरा भी फैमिली है सर।
0: इस पूरी भर्ती में जो पैसा देकर नौकरी पाए उनका तो केवल पैसा डूबा, लेकिन जो मेहनत करके पसीना बहाकर नौकरी पाए और जो मेहनत के बावजूद भ्रष्टाचारियों की वजह से नौकरी नहीं पाए, वो दोनों युवा फिसेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में चला जाएगा, सुनवाई की तारीखें लगती रहेंगी और फिर 2015 से लटकी जेएसएससी सीजीएल की भर्ती एक बार फिर मृग मरीचिका बन जाएगी। वो मिराज जो दिख तो 11 साल से रहा है, बस मिल नहीं पा रहा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने को लेकर जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, बीपीएससी की तरफ से तुरंत भर्ती परीक्षा का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया, लेकिन इस बार प्री और मेंस परीक्षा होनी है तो छात्र विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल एक ही परीक्षा होनी चाहिए।
0: छात्रों के आंदोलन का तीसरा बड़ा गवाह क्या पटना बन रहा है? जहां छात्रों की प्रदर्शन के 5 घंटे के भीतर मंगलवार को बिहार सरकार ने एक मांग तुरंत मान ली। जैसे ही पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक भर्ती की परीक्षा का विज्ञापन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी करने की मांग रखते हुए आंदोलन शुरू होता है, बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया जाता है।
3: जीते, बहुत बड़ी जीत है। आज हम लोग शुरुआत किया और आज ही नोटिफिकेशन आ गया। आज डेट के साथ है कि कब से फॉर्म भराएगा, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है।
0: TRI 4 मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसकी परीक्षा की संभावित तारीख तो आ गई थी, विज्ञापन नहीं आया था। यूं तो धरने का ताजा कारण शिक्षा भर्ती परीक्षा में हो रही देरी और वादा खिलाफी थी, लेकिन शिकायतें और मांगे कई और भी। युवाओं का कहना है टीचर भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में आना था, जिसे टाल दिया गया। शिक्षा मंत्री ने जुलाई में विज्ञापन का वादा किया, अगस्त गुजरने वाला है। बीपीएससी ने 22-27 सितंबर को परीक्षा की तारीख तय कर रखी है, लेकिन अब तक विज्ञापन का पता नहीं था। 72वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्री 26 जुलाई को होनी थी, टालकर 25 अक्टूबर कर दी गई। 71वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा अब तक नहीं हो पाई। बीपीएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तारीख का पता नहीं।
5: पटना के गर्दनी बाग में आज से छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये छात्र न्याय सत्याग्रह, इसी बैनर तले आज से TRE 4 समेत तमाम अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जो रिफॉर्म है उसकी मांग को लेकर के छात्र अभ्यर्थी आज से धरना पर बैठे हैं।
0: असल में अभी आंदोलन शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी इसलिए जारी है क्योंकि अब तक जहां केवल एक परीक्षा देकर युवा टीचर बन सकते थे, वहां अब की बार पहले पीटी परीक्षा होगी यानी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। पीटी परीक्षा पास करने वाले ही मेंस की परीक्षा में शामिल होंगे, नियुक्ति के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा।
3: अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, अभी हम अभ्यर्थियों से विचार करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन अभी आंदोलन जारी है। एक परीक्षा होनी चाहिए, दो परीक्षा मंजूर नहीं, सिर्फ एक परीक्षा होनी चाहिए।
6: अभी परीक्षा होगा तब मंजूर,
3: अभी हम लोग बीपीएससी पे कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं।
7: छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? छात्र पढ़ाई में जाकर के जुटे और कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना लें, अपनी तैयारी करें और तैयारी करके वो परीक्षा में पास आउट हो, उनका एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है।
8: झूठ नहीं चलेगा, अगर आपको दो परीक्षा करानी है TRE 5 से कराइए, हम लोग स्वागत करते हैं। TRE 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो चुकी, 2 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, 24 अगस्त 2024 को ही इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया और बार बार झूठ बोला गया, इसलिए इसमें आप देरी नहीं हो। 3 दिन तक हम लोग महाधरना दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर डिमांड पूरा नहीं होता है तो उसके बाद हम अमरण अनशन पे बैठे, कुछ नहीं खाएंगे।
0: 32,388 टीचर की पोस्ट पर बिहार में भर्ती परीक्षा भी कराई जानी है। छात्र कहते हैं कि ये सब 2-2 साल की देरी से परीक्षा करा रहे हैं, वो भी नियम बदलकर, ये परीक्षाएं भी लटक गईं तो फिर आगे क्या होगा?
9: एकल परीक्षा की आप लोग मांग कर रहे हैं, वो क्या वजह है, वहाँ पर कहाँ?
10: हम लोग एकल परीक्षा का मांग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग 2 साल से जो TR 1, 2, 3 जो हुआ उसी पैटर्न पर एग्जाम हुआ और हम लोग अचानक से पीटी और मेंस ले लेना, ये कहीं से वाकई अच्छा नहीं है। हम लोग वही पैटर्न पर तो अचानक से हम परीक्षा होगा 1 महीना में, तो 1 महीना में तैयारी कहां से हो पाएगा डबल एग्जाम का, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं एकल परीक्षा हो।
0: जिस बिहार में बेरोजगारी दर भले 3% हो, लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार 15% से अधिक है, वहाँ हालात ये है कि शिक्षा विभाग में 46,546, ग्रामीण विकास विभाग में 35,468, गृह विभाग में 35,000, स्वास्थ्य विभाग में 20,000, पंचायती राज विभाग में 9,540, ऊर्जा विभाग में 6,600, कृषि विभाग में 5,366, नगर विकास आवास विभाग में 5,100, समाज कल्याण विभाग में 4,549 और जल संसाधन विभाग में 4,014 पद खाली हैं। कुल मिलाकर 1,72,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं और इतने पद तो तब के खाली हैं जब बिहार की आबादी 10,41,00,000 थी। आज बिहार की आबादी 13,07,00,000 हो चुकी है, तो पदों का सृजन उनके हिसाब से हुआ ही नहीं। शशिभूषण, पटना आज तक।
4: सीएम योगी यूपी में सख्त कानून व्यवस्था का हवाला अक्सर मंचों से देते रहे हैं, लेकिन लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके में पुलिस टीम ही हमले का शिकार हो गई। नगर निगम के साथ अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर महिला पुरुषों की भीड़ ने जबरदस्त जानलेवा हमला बोला।
11: छोड़ो।

0: किसी ने गला दबाकर हत्या की कोशिश की, किसी ने लोहे की जंजीर से हमला बोला, खून खून हो गए पुलिस वाले। ये तस्वीरें लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके की हैं। इस इलाके में 148 भैंसों के साथ अवैध डेयरी चलाई जा रही थी। टीम जब यहां पहुंची तो भीड़ ने लाठी डंडे रॉड जंजीरों पत्थरों से पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। सरकारी गाड़ियां तोड़ डाली, एक सब इंस्पेक्टर की गला दबाकर हत्या की कोशिश हुई। अधिक संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंचती तब तक आरोपी फरार हो गए। दो हमलावर महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
1: कल इन्होंने जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी पुलिस के जवानों पे और पुलिस के एक इंस्पेक्टर पे कार्रवाई की है, मारा है, गला दबाया है, इनका गुस्सा देखिए आप।
2: मौके पर आज पुलिस पहुंची है, लगातार डेयरियों पर कार्रवाई हो रही है। अगर आप देखिए तो भैंसों को धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर उस नगर निगम के द्वारा जो गाड़ी है उसके सभी भैंसों को ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई अवैध डेयरियों के खिलाफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में
0: कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। अवैध डेयरी में रखी गई भैंसों को नगर निगम ने जब्त कर लिया है। पुलिस कर्मियों की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ है। FIR में जिक्र है कि अवैध पशुओं को हटाने के दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला हुआ। हमले की गिरफ्तार आरोपी दो महिलाएं खुशबून और आफरीन है। 10 से 12 आरोपी नामजद किए गए हैं। आरोपियों का अतीक अहमद के साथ कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अब पुलिस आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी कर रही है। अब इस पूरे मामले में जबरदस्त राजनीति हो रही है।
3: योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, पुलिस पर हमला किया है, बलवा करने का प्रयास किया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं।
4: भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक अजीब सा माहौल है। न पुलिस सुरक्षित है, न लोग सुरक्षित है, न पुलिस से लोग सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठते जा रहे हैं।
0: फिलहाल हालात को नियंत्रण में रखने के लिए 5 थाने की फोर्स मौके पर मौजूद है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: सियासी गलियारों में वंदे मातरम गीत नहीं, वंदे मातरम का मसला गूंज उठाए। वंदे मातरम के 2 स्टैंजा को लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण का बीजेपी का आरोप बनाम बीजेपी पर नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप गंभीर होता जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि वो वंदे मातरम के सभी स्टैंजा नहीं गाएगी, जबकि संसद से कानून और केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियमों के मुताबिक संपूर्ण वंदे मातरम को सम्मान देना जरूरी है।
6: वंदे मातरम पर सियासत का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोवा विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए गए। यही नहीं, सारे नेता इसके बाद चलते बने। इससे पहले 15 अगस्त को एक वीडियो सामने आया जिसमें कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में वंदे मातरम के सभी 6 पद गाए गए थे। लेकिन उसी दौरान सोनिया गांधी कुछ निर्देश देती नजर आई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी ने बीच में ही रुकने के लिए इशारा किया था। हालांकि कांग्रेस ने ये कहते हुए बचाव किया कि खड़गे काफी समय से खड़े थे, जिनके लिए कुर्सी मंगाने के लिए सोनिया गांधी इशारा कर रही थी। लेकिन इसके बाद गोवा में कांग्रेस के ही कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए जाने को बीजेपी राष्ट्रगीत का अपमान बता रही है। सोनिया गांधी जी का भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति अनादर सबके सामने है। यही वो गीत है जिसे कांग्रेस ने दशकों तक तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर सीमित कर दिया। और राहुल गांधी जी, वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा रखता है। क्या आपको लगता है कि आप इसकी गरिमा से ऊपर हैं? क्या आप राष्ट्रीय भावना से ऊपर हैं? या फिर उन संवैधानिक मूल्यों से भी ऊपर हैं जिनका आप अक्सर दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं?
7: 3 तलाक का विरोध, शाहबानों का विरोध, अभी जनगणमन में वॉकआउट, आर्टिकल 370 में वॉकआउट,

0: तो राष्ट्र हित के जितने सवाल होते हैं, अगर उसकी टकराहट वोट बैंक से हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी चली जाती है पीछे, और इसमें वो अपनी सारी परंपराओं का भी ध्यान नहीं रखती।
1: बीजेपी के इस आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे दलील दे रहे हैं कि उन्होंने वही वंदे मातरम गाया जो गांधी नेहरू गाते रहे हैं।
2: अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो।
1: 15 अगस्त को ही केरला में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम का गायन नहीं हुआ। इसके बाद अब पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि वो पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, सरकार चाहे जो कर ले।
3: हम सिर्फ दो ही पंक्ति गाते हैं, चाहे बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह हमको पासी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे, हम दो ही लाइन गाते हैं।
4: मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैंने पहले भी गाई, अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें कौन नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।
1: संसद में कानून के जरिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान का दर्जा दिया जा चुका है। गृह मंत्रालय सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 पद गाने के निर्देश भी दे चुका है। इस बार 15 अगस्त पर लाल किले से पहली बार वंदे मातरम के सभी 6 पद गाए भी गए, लेकिन वंदे मातरम पर कांग्रेस का रुख नए और बड़े सियासी विवाद की वजह बनता जा रहा है।
5: इस तरह का कोई भी कृत्य वो गैर कानूनी भी है, कानून के तहत कार्रवाई करने के योग्य भी है। इस तरह की गतिविधियां हरकतें अगर कोई करता है, और पार्टी किसी नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, ऐसे पार्टी के मुखिया की उपस्थिति में अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति और देश के मानबिंदुओं के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, उनकी कितनी आस्था है, उनकी कितना उनके मन में पवित्रता का भाव है, देश के सामने प्रकट हो जाता है।
1: पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के बंटवारे को देश के बंटवारे से जोड़ा था, तो सोनिया गांधी के विवाद पर अमित शाह हमला कर चुके हैं।
6: 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे।
2: दुनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है, आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए।
1: संसद ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 को भी पारित किया है। इसके तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के गायन में बाधा डालना या उसे रोकने की कोशिश करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसे में गोवा में खड़गे के कार्यक्रम के दौरान सिर्फ 2 पद गाए जाने की घटना ने वंदे मातरम को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को और हवा दे दी है। आज तक ब्यूरो।
7: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज तक।

0: बीजेपी की नवीन टीम के अगले चुनावों पर नजर। तावड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की भी चर्चा। मोदी सरकार को राहुल गांधी की चेतावनी, जेनजी की तरह ओबीसी भी सड़क पर उतरा तो केंद्र को झुकना पड़ेगा। पूछा जाति जनगणना में एससी एसटी की तरह ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी का एक्शन, भड़के केजरीवाल, पूछा आखिर कब तक चलती रहेगी बीजेपी की तानाशाही। यूजीसी नेट विवाद के बाद एनटीए में बड़े बदलाव के आदेश, 600 विशेषज्ञों को हटाया गया। परीक्षा और प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियों के बाद चार स्तरीय पेपर जांच व्यवस्था लागू। और बिहार के नालंदा में मिड डे मील खाने से करीब 40 छात्र बीमार, नमक की जगह सब्जी में डाल दिया वॉशिंग पाउडर। नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी मिडिल स्कूल की घटना। सरकारें जब छात्रों की बात सुनने में देरी करती हैं, मामला लटकाती हैं, तो इसका खामियाजा केवल और केवल लाखों छात्रों को ही उठाना पड़ता है। इसका सबूत झारखंड में मिलता है, जहां जेपीएससी से 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन फिर जेएसएससी और साथ ही सीजीएल भर्ती परीक्षा में हुई धांधली तक पहुंच गया। इसी बीच सीआईडी ने मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
1: हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं।
2: हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच के लिए जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर।
3: बहुत धन्यवाद, हमारी बात छाते आप ही के बच्चे थे, बहुत देरी थी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी बात।
4: रेलवे में टीटी के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ और यहाँ एक क्षण में हम लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया गया।
5: बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार ने हमारी बात मानी, ये स्ट्रगल था तो काफी विपन्न स्थिति में थे बच्चे। यहाँ
6: सरकार ने 3 से 4 दल की हमारी मेहनत करते हुए और इस भीड़ के आगे उपद्रव के आगे घुटने टेकते हुए हमें हमारी रोटी, हमारा सम्मान, हमारे जीविका, हमारे जीवन से वंचित किया है।
7: सरकार और सरकारी व्यवस्था किस तरह युवाओं का भविष्य सरकारी नौकरी के नाम पर रौंद देते हैं, उसकी 3 तस्वीरें रांची में आज आपको देखनी है। एक तरफ छात्रों का जश्न है, जो कहते हैं कि सोरेन सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री आखिरकार ऐलान करते हैं कि दागी कंपनी TDPL के तहत कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की भी घोषणा होती है। दूसरी तरफ अब भी JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, जो कहते हैं कि सरकार ने CBI जांच की मांग अब तक क्यों नहीं मानी। और तीसरी तरफ है रोते बिलखते गुस्सा करते सवाल करते वो युवा, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद JSSC CGL की परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की, जिन्हें लगता है कि उन्होंने तो ईमानदारी से परीक्षा देकर नौकरी पाई है, तो उनकी नौकरी क्यों छीनी जा रही है। इन 3 तस्वीरों के साथ ये सबसे बड़ा सच कि सरकारी व्यवस्था की चित और पट दोनों में पिसता केवल नौजवान, और एक एक करके इसी सच को आज आप देखिए। जहां पहले जश्न, जहां भर्तियों में धांधली होने पर 24 दिन तक चले धरना प्रदर्शन के बाद सोरेन सरकार को मांगों पर झुकाकर जीत हासिल करने के बाद मनाया जाता है।
3: हेमंत सोरेन को बधाई हो,
8: उनका बच्चा तो
3: ये जीत 1-2 साल का नहीं है, ये 10-15 साल का जीत है। ये झारखंड की भविष्य की जीत है आज, और आज से जहाँ झारखंड की सुन से बता दिया कि वो गुलाम भी कर सकता है, गांधी जी को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं।
9: तोहफा तो इतना बड़ा दिया है, लेकिन दिया नहीं है, लड़के लिया गया है। ये तोहफा कभी नहीं दिया जाता,
3: हमेशा सत्य जीतता है। 24 दिन बड़ा लग गया, 24 दिन में 2 साल लगा, लेकिन सत्य नहीं जीतेगा, हमेशा जीतता है।
7: जहां देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल टूटती है, जब मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के बाद आकर यह ऐलान कर देते हैं कि ब्लैक लिस्टेड TDPL ने जो भी परीक्षाएं कराई वो सब रद्द होंगी। JSSC CGL की परीक्षा जो 9 साल बाद जाकर झारखंड में हो पाई थी, वो भी रद्द की जाएगी।
10: TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट
8: और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
7: निश्चित तौर पर झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों की ये बड़ी जीत, जिसने बताया कि अब सरकारें कान में तेल डालकर नहीं बैठी रह सकती, इनको सुनना पड़ेगा। लेकिन जब जश्न पूरी रात रांची में मन चुका है, तब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, क्योंकि CBI जांच की मांग मुख्यमंत्री अब तक माने नहीं।
10: सरकार से ऑफिशियली नोटिफाई होने का वेट कर रहे हैं चीजों का। JSSC सीजल की अध्याचना वापस हुई है या नहीं, यह हमें अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। 11-13 को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है, हम यह भी जानना चाहते हैं।
11: अगर वो TDPL ने ऑर्गेनाइज किया तो वो भी कैंसिल हो गया,
10: जी उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, एज कटअप को लेकर के सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है, हम एज कटअप 2018 मांग रहे हैं। और चौथा, CBI जांच पे हमारा सरकार के साथ मतभेद है।
7: और तीसरा हिस्सा है उन युवाओं का जो अब झारखंड में JSSC CGL की भर्ती रद्द होने के बाद गुस्से में, क्योंकि इन्हें 8 महीने पहले ही लंबे संघर्ष के बाद नौकरी मिली थी। लेकिन जिस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचारियों ने बहुत से लोगों से 10 लाख से 40 लाख का रेट लगाकर भर्ती कराई, वहां ईमानदार युवा पूछता है कि भ्रष्टाचार की चक्की में इनकी ईमानदार कोशिश को क्यों पीस दिया गया। कुछ लोग कहते हैं 2000 तक फैमिली कहां जाएगा, आप ये बताइए। मंगलवार सुबह आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार को रोशन कुमार मिलते हैं, JSSC CGL पास करके जिन्हें नौकरी अपने राज्य में मिली, तो इन्होंने घर भर में ही नहीं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटा, जिसके लिए रेलवे की नौकरी छोड़कर ये झारखंड में काम करने आ गए, ये सोच कर कि ये इनका गृह राज्य है। वो रोशन कुमार अब रोने लगते, पूछते हैं कि इनकी गलती क्या है।
4: कल तक हमारे पास एक जॉब थी, हमारा सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कल एक शाम को एक ऐसा न्यूज वायरल होता है, न्यूज आता है कैबिनेट का कि JSSC CGL की प्रक्रिया को पूरा रद्द कर दिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए थे, तब सब कुछ बताया गया, सब कुछ सही है। हम लोग पहले भी जॉब में थे सर, हम लोग रेलवे में TT के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ, और यहाँ एक क्षण में हम लोग का सब कुछ खत्म कर दिया गया, ना वो वहाँ के रहे ना वो यहाँ के रहेंगे, ऐसी परिस्थिति में वो कहीं के नहीं रहेंगे।
0: कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे यही तो छात्रों की मांग थी कि JSSC CGL परीक्षा रद्द कर दी जाए, और जब रद्द हो गई तो सवाल क्यों? सवाल इस परीक्षा रद्द करने पर नहीं है, सवाल है झारखंड में सरकार की नीति पर और साथ ही नियत पर भी। और केवल सोरेन ही नहीं, उससे पहले BJP की भी सरकार झारखंड में रही है। BJP से JMM तक के राज में यही JSSC साथ ही CGL की परीक्षा पहले भी टलती रही है, और फिर जब हुई तो पहले पेपर लीक और उसके बाद में भर्ती में धांधली की वजह से चर्चाओं में रही। अब जाकर छात्रों के आंदोलन के बाद इसे रद्द किया गया है।
4: 2000 कैंडिडेट का कम से कम आप जांच करा लीजिए एक बार, जो भी गलत निकलता है आप उसको निकालिए, आप सबको किस आधार पे निकाल सकते हैं।
7: हेमंत सोरेन सरकार ने यही फैसला अगर पहले ले लिया होता तो एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ आंसू और गुस्सा न होता, न ही 2000 परिवारों में से ईमानदारी से नौकरी हासिल करने वालों पर एक झटके में आसमान टूटता। असल में ये उस भर्ती परीक्षा की खबर है जो भविष्य में इस आधार पर याद रखी जाएगी कि सत्ता किसी की भी रहे वो युवाओं को केवल रुलाती। JSSC CGL की नौकरी चाहने वाले युवा 11 साल बाद भी इंतजार करते रह गए। आपको यकीन नहीं होगा, 5 राज्यपाल झारखंड में बदल गए, 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 6 JSSC के चेयरमैन बदल गए, पर अब तक झारखंड के छात्रों के सपनों की नौकरी JSSC CGL ईमानदारी से एक बार नहीं हो पाई। पहले इसका इतिहास याद कर लीजिए। JSSC CGL पहली बार नवंबर 2015 में निकलती है, जिसमें 2,36,000 लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन 2015 में निकली इस भर्ती की मुख्य परीक्षा होने से 8 दिन पहले इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 2017 में फिर से वैकेंसी के लिए फॉर्म भरवाया गया, परीक्षा फरवरी मार्च 2018 में कराने की संभावित तारीख रखी गई, लेकिन एग्जाम ही नहीं हुआ। फिर कहा गया कि नवंबर दिसंबर 2019 में एग्जाम होगा, लेकिन चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, मामला फंस गया।

0: फिर 2021 आया, नए नियमों के साथ जेएसएससी सीजीएल कराने की चर्चा हुई, लेकिन नए नियम को दिसंबर 2021 में कोर्ट ने खारिज कर दिया। परीक्षा फिर लटक गई। फिर आया 21 अगस्त 2022 जब एक बार फिर निर्धारित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताकर स्थगित कर दिया जाता है। नाराजगी बढ़ी। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा फिर जनवरी 2024 में कराए जाने की बात हुई, जिसमें 6,60,000 बेरोजगार बच्चे 3 शिफ्ट में पेपर देने के लिए बैठे, लेकिन तीसरा पेपर लीक हो गया और फिर प्रदर्शन करके बाकी परीक्षा पूरी रद्द हो जाती। इसके बाद ये भर्ती परीक्षा सितंबर 2024 में कराई जाती, जहां आरोप लगा कि अभय तिवारी वाले रैकेट ने धांधली कराई, लेकिन तब सोरेन सरकार ने ये बात नहीं मानी। कोर्ट तक में मामला चला, लेकिन सोरेन सरकार ने 2025 पदों के लिए साल 2025 के आखिर में नियुक्ति दे दी। जब 24 दिन तक चले आंदोलन में भर्ती में धांधली को लेकर प्रदर्शनकारी इसी परीक्षा को रद्द करने की मांग करते रहे, तब सोरेन सरकार ने सोमवार को जाकर इस परीक्षा को रद्द कर दिया। झारखंड की राजधानी रांची में अब मंत्रालय के बाहर हेलमेट पहने इन शख्स को देखिए। ये वो भाई जिन्हें डर है कि इनका छोटा भाई कहीं टूट ना जाए, जिसने सीजीएल की परीक्षा ईमानदारी से पास करके नौकरी हासिल की थी।
1: सरकार को इस सब मामले में पहले सोचना चाहिए कि वैसे अभ्यर्थी जो पूरा जिंदगी, मतलब जब से वो तैयारी कर रहा है तैयारी करते हुए उस स्थिति से बढ़ते हुए इस स्टेज पे आए कि कम से कम उस परीक्षा कंडक्ट करके एग्जाम पास करके सारी समस्याओं को झेलते हुए इतना सिचुएशन, इतना क्वेश्चन पेपर लीक हो, ये हो वो हो, उसके बाद वो क्वालिटी अचीव करके तब जाके सिलेक्शन हुआ है। पूर्ण रूप से निराश है और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और अभी वो समझिए कि बच्चा, और अभी आगे का और स्थिति कितना होगा।
0: इसी जगह संजीत कुमार मिलते हैं, जिन्होंने घर के राज्य में नौकरी के सपने के लिए रेलवे की नौकरी छोड़ दी। अब उनके इस सपने पर चोट लगी। इनके बयान को आज ध्यान से सुनिए।
2: झारखंड में जॉब नहीं हो रहा था तो मैंने लॉकडाउन से रेलवे का तैयारी स्टार्ट किया और 2020 में फॉर्म भरा। 2020 में एग्जाम लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, वो एग्जाम जाके 2022 में हुआ और हम लोग का सिलेक्शन 2023 में रेलवे में हुआ। मैंने वहाँ या इस फॉर्म को भरा और इसके लिए बहुत जोर से तैयारी किया। 30 जनवरी को मेरा पहला एग्जाम सीजीएल का हुआ और उसमें भी धांधली। जब हम एग्जाम हॉल से निकले पता चला पेपर लीक हो गया और 30 जनवरी वाला हम लोग सब आए प्रोटेस्ट किए और ये पेपर रद्द कर दिया गया। सरकार के द्वारा बोला गया अपरिहार्य कारण से एग्जाम को रद्द किया जाता है। उसके बाद 21 और 22 सितंबर को एग्जाम हम लोग के आंदोलन के बल पे सरकार दोबारा से एग्जाम करवाई और उसके बाद एग्जाम करवाई तो मेरा 22 तारीख को एग्जाम पड़ा और उसके बाद हम लोग ने एग्जाम दिया। मैंने बहुत संघर्ष करके, मैं रेलवे में, आप लोग को पता नहीं होगा, रेलवे में 3 शिफ्ट होता 8-8 घंटा का, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह बिना खाना खाए तैयारी किया, फिर 2 बजे ड्यूटी जाना है। उस हालत में मैंने तैयारी किया और उसके बाद मैं इस एग्जाम के लिए, मुझे ये दिमाग में था कि मुझे घर जाना है।
3: अभी
2: मैं यहाँ पे एएसओ के पद पे हूँ। मैं पहले से रेलवे ग्रुप डी में पद पे था, पॉइंट्समैन के पद पे था मैं, और वहाँ से मैं रिजाइन करके आया हूँ। और मैं रिजाइन करके तब आया हूँ जब सरकार ने मुझे ये, मतलब हाईकोर्ट ने ये बोला है कि आप इस, मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जो भी कैंडिडेट फर्दर इस इन्वेस्टिगेशन में, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व पाए जाएंगे उसको, उसका कैंडिडेचर सरकार रद्द कर सकती है या सरकार उस पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बट हम लोग को किस बिना पे सरकार एकाएक जमीन के, मतलब जमीन हटा दी है सर के ऊपर से हम लोग का, मेरा भी फैमिली सर।
0: इस पूरी भर्ती में जो पैसा देकर नौकरी पाए उनका तो केवल पैसा डूबा, लेकिन जो मेहनत करके पसीना बहाकर नौकरी पाए और जो मेहनत के बावजूद भ्रष्टाचारियों की वजह से नौकरी नहीं पाए, वो दोनों युवा फिसेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में चला जाएगा, सुनवाई की तारीखें लगती रहेंगी और फिर 2015 से लटकी जेएसएससी सीजीएल की भर्ती एक बार फिर मृग मरीचिका बन जाएगी। वो मिराज जो दिख तो 11 साल से रहा है, बस मिल नहीं पा रहा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने को लेकर जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, बीपीएससी की तरफ से तुरंत भर्ती परीक्षा का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया। लेकिन इस बार प्री और मेंस परीक्षा होनी है तो छात्र विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल एक ही परीक्षा होनी चाहिए।

0: छात्रों के आंदोलन का तीसरा बड़ा गवाह क्या पटना बन रहा, जहां छात्रों की प्रदर्शन के 5 घंटे के भीतर मंगलवार को बिहार सरकार ने एक मांग तुरंत मान ली। जैसे ही पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक भर्ती की परीक्षा का विज्ञापन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी करने की मांग रखते हुए आंदोलन शुरू होता है, बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया जाता है।
1: जीते, बहुत बड़ी जीत है कि आज हम लोग शुरुआत किया और आज ही नोटिफिकेशन आ गया। आज डेट के साथ है कब से फॉर्म भराएगा, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है।
0: TRI 4 मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसकी परीक्षा की संभावित तारीख तो आ गई थी, विज्ञापन नहीं आया था। यूं तो धरने का ताजा कारण शिक्षा भर्ती परीक्षा में हो रही देरी और वादा खिलाफी थी, लेकिन शिकायतें और मांगे कई और भी। युवाओं का कहना है टीचर भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में आना था, जिसे टाल दिया गया। शिक्षा मंत्री ने जुलाई में विज्ञापन का वादा किया, अगस्त गुजरने वाला है। बीपीएससी ने 22-27 सितंबर को परीक्षा की तारीख तय कर रखी है, लेकिन अब तक विज्ञापन का पता नहीं था। 72वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्री 26 जुलाई को होनी थी, टालकर 25 अक्टूबर कर दी गई। 71वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। बीपीएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तारीख का पता नहीं।
2: पटना के गर्दनी बाग में आज से छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये छात्र न्याय सत्याग्रह, इसी बैनर तले आज से TRE 4 समेत तमाम अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जो रिफॉर्म है उसकी मांग को लेकर के छात्र अभ्यर्थी आज से धरना पर बैठे हैं।
0: असल में अभी आंदोलन शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी इसलिए जारी है, क्योंकि अब तक जहां केवल एक परीक्षा देकर युवा टीचर बन सकते थे, वहां अब की बार पहले पीटी परीक्षा होगी यानी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। पीटी परीक्षा पास करने वाले ही मेंस की परीक्षा में शामिल होंगे, नियुक्ति के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा।
1: अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, अभी हम अभ्यर्थियों से विचार करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन अभी आंदोलन जारी है। एक परीक्षा होनी चाहिए, दो परीक्षा मंजूर नहीं, सिर्फ एक परीक्षा होनी चाहिए।
3: अभी परीक्षा होगा तब मन,
1: अभी हम लोग बीपीएससी पे कोई भरोसा नहीं कर रहे।
4: छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं, छात्र पढ़ाई में जाकर के जुटे और कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना लें, अपनी तैयारी करें और तैयारी करके वो परीक्षा में पास आउट हों, उनका एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है।
5: झूठ नहीं चलेगा, अगर आपको दो परीक्षा करानी है TRE 5 से कराइए, हम लोग स्वागत करते हैं। TRE 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो चुकी, 2 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, 24 अगस्त 2024 को ही इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया और बार बार झूठ बोला गया, इसलिए इसमें आप देरी नहीं हो। 3 दिन तक हम लोग महाधरना दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर डिमांड पूरा नहीं होता है तो उसके बाद हम अमर अनशन पे बैठे कुछ नहीं खाएंगे।
0: 32,388 टीचर की पोस्ट पर बिहार में भर्ती परीक्षा भी कराई जानी है। छात्र कहते हैं कि ये सब 2-2 साल की देरी से परीक्षा करा रहे हैं, वो भी नियम बदल कर, ये परीक्षाएं भी लटक गईं, तो फिर आगे क्या होगा।
2: एकल परीक्षा की आप लोग मांग कर रहे हैं, वो क्या वजह है, वहाँ पर कहाँ है?
6: हम लोग एकल परीक्षा का मांग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग 2 साल से जो TR 1, 2, 3 जो हुआ उसी पैटर्न पर एग्जाम हुआ, और हम लोग अचानक से पीटी और मेंस ले लेना ये कहीं से वाकई अच्छा नहीं है। हम लोग वही पैटर्न पर तो अचानक से हम परीक्षा होगा 1 महीना में, तो 1 महीना में तैयारी कहां से हो पाएगा डबल एग्जाम का, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं एकल परीक्षा हो।
0: जिस बिहार में बेरोजगारी दर भले 3% हो, लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार 15% से अधिक है, वहाँ हालात ये है कि शिक्षा विभाग में 46,546, ग्रामीण विकास विभाग में 35,468, गृह विभाग में 35,000, स्वास्थ्य विभाग में 20,000, पंचायती राज विभाग में 9,540, ऊर्जा विभाग में 6,600, कृषि विभाग में 5,366, नगर विकास आवास विभाग में 5,100, समाज कल्याण विभाग में 4,549 और जल संसाधन विभाग में 4,014 पद खाली हैं। कुल मिलाकर 172,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, और इतने पद तो तब के खाली हैं जब बिहार की आबादी 10,41,00,000 थी, आज बिहार की आबादी 13,07,00,000 हो चुकी है, तो पदों का सृजन उनके हिसाब से हुआ ही नहीं। शशि भूषण, पटना आज तक।
7: यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है जेन जी पर। योगी जहां जाते हैं युवा पीढ़ी और उनके लिए योजनाओं की बात करते हैं। आपको ये भी बता दें कि जेन

0: फ्रेंजी आंदोलन के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में पूरी तरह से जुटी हुई है। सामने सबसे बड़ी चुनौती है 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव।
1: दिल्ली के जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। 36 दिन के आंदोलन से न सिर्फ शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी की सारी मांगे भी माननी पड़ी। इसी तरह रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 24 दिन तक चले छात्र आंदोलन ने हेमंत सोरेन सरकार को झुका दिया। छात्रों की एक दो मांगों को छोड़कर सरकार को बाकी की मांगे माननी पड़ी। पटना के गर्दनी बाग में तो गजब हो गया। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी TRE-4 का विज्ञापन जारी करने के लिए प्रदर्शन शुरू होता है। 5 घंटे के भीतर BPSC आवेदन का विज्ञापन जारी कर देता है। जेन जी के यही तेवर अब सरकारों के लिए चैलेंज बन रहे हैं। जंतर मंतर के आंदोलन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माइलेज लेने की कोशिश की और अखिलेश यादव ने यूपी के मुद्दों को जंतर मंतर से लेकर संसद तक सामने रखा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा और अब CM योगी जहां भी बोलते हैं उनके भाषणों में जेन जी का जिक्र जरूर आता है।
2: जब युवा
1: आपको बता दें कि CM योगी गोरखपुर में आयोजित पहलवानों का दंगल देखने पहुंचे तो वहां भी जेन जी यानी युवाओं को लेकर विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला।
2: उस समय की सरकारों के एजेंडे में खेल नहीं था, युवा नहीं था। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था। ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं आपके हितों के लिए। जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति। सबसे बड़ा दुश्मन है युवा शक्ति की माफिया प्रवृत्ति। वह शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो या फिर पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो या किसी भी फील्ड का माफिया, अगर वह माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी।
1: क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ा मुद्दा युवा वोटर बनकर उभरा है। ऐसा क्यों? इसे आप उत्तर प्रदेश में युवा वोटरों के आंकड़ों से समझिए। यूपी में कुल वोटर्स करीब 13 करोड़ हैं। इनमें जेन जी यानी 18 से 27 साल के वोटर्स 2.07 करोड़ हैं, यानी लगभग 15%। यूपी में जिन सीटों पर जेन जी वोटर्स का असर है वो यूपी विधानसभा की 403 में से लगभग 80 से 120 सीटें हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जेन जी को समझा रहे हैं कि यूपी सरकार जल्द नई युवा नीति लेकर आ रही है। इसके तहत युवाओं के लिए कई आयोजन और कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है हर जिले में एक एम्प्लॉयमेंट जोन हम बना रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जोन का मतलब स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन। एक छत के नीचे नौजवान की स्किलिंग भी होगी, उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी माफिया, वह नकल माफिया हो या किसी भी फील्ड का शिक्षा माफिया हो, अगर उसने किसी युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करते हुए हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अभ्युदय कोचिंग को हर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचाया जाएगा। इसकी सुविधा फिजिकल और वर्चुअल दोनों माध्यमों से मिलेगी। प्रदेश के हर जिले में स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन बनाया जा रहा है। यहां एक ही छत के नीचे युवाओं की स्किलिंग के साथ रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। खेल के किसी भी क्षेत्र में निजी क्षेत्र सहयोग करेगा तो राज्य सरकार की खेल नीति के तहत उसे पूरा सहयोग दिया जाएगा।
3: पुलिस भी खराब कर दी उन्होंने, पुलिस इतनी खराब कर दी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और पुलिस इतनी खराब है अगर आप थाने गए

0: पुलिस इतनी खराब कर दी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और पुलिस इतनी खराब है अगर आप थाने गए तो आपकी तरफ देख करके सबसे पहले जेब देखेंगे, जेब में क्या है। और यही हाल तहसील का हो गया है, पुलिस केवल पैसे देख रही है। और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम, एक ही कानून चल रहा है यहां पर कि हथेली गरम पुलिस नरम हो जा रही है।
1: सीएम योगी माफियाओं की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और यूपी पुलिस को लेकर तगड़ा प्रहार किया है।
2: शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं, हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है।
3: समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी। और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे।
1: चुनाव में वक्त कम है, लिहाजा योगी का मिशन जेन जी फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। कई मोर्चों पर युवाओं को साधने की कोशिशें जारी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक नई युवा नीति का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। योगी के मंत्री को अपने अपने क्षेत्र में जेन जी के साथ चौपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन की तरफ से स्कूल कॉलेजों में छात्रों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। हर विधानसभा सीट पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं से संवाद करेगी स्पेशल टीम। आला अफसरों को छात्रों से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान निकालने का आदेश। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब करीब 5 महीने का वक्त रह गया है, इसलिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इस पीढ़ी को क्या चीज प्रेरित करती है और उन तक कैसे पहुंच बनाई जाए। आज तक ब्यूरो।
4: सीएम योगी यूपी में सख्त कानून व्यवस्था का हवाला अक्सर मंचों से देते रहे हैं, लेकिन लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके में पुलिस टीम ही हमले का शिकार हो गई। नगर निगम के साथ अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर महिला पुरुषों की भीड़ ने जबरदस्त जानलेवा हमला बोला।
5: किसी ने गला दबाकर हत्या की कोशिश की, किसी ने लोहे की जंजीर से हमला बोला, खून खून हो गए पुलिस वाले। ये तस्वीरें लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके की हैं। इस इलाके में 148 भैंसों के साथ अवैध डेयरी चलाई जा रही थी। टीम जब यहां पहुंची तो भीड़ ने लाठी डंडे रॉड जंजीरों पत्थरों से पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। सरकारी गाड़ियां तोड़ डाली, एक सब इंस्पेक्टर की गला दबाकर हत्या की कोशिश हुई। अधिक संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंचती तब तक आरोपी फरार हो गए। 2 हमलावर महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
6: कल इन्होंने जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस के जवानों पे और पुलिस के एक इंस्पेक्टर पे कार्रवाई की है, मारा है, गला दबाया है, इनका गुस्सा देखिए आप।
7: मौके पर आज पुलिस पहुंची है, लगातार डेयरियों पर कार्रवाई हो रही है। अगर आप देखिए तो भैंसों को धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर इस नगर निगम के द्वारा जो गाड़ी है उसके पे सभी भैंसों को ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई अवैध डेयरियों के खिलाफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में
5: कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। अवैध डेयरी में रखी गई भैंसों को नगर निगम ने जब्त कर लिया है। पुलिस कर्मियों की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर में जिक्र है कि अवैध पशुओं को हटाने के दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला हुआ। हमले की गिरफ्तार आरोपी 2 महिलाएं खुशबून और आफरीन है। 10 से 12 आरोपी नामजद किए गए हैं। आरोपियों का अतीक अहमद के साथ कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अब पुलिस आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी कर रही है।

0: दूसरे मामले में जबरदस्त राजनीति हो रही है।
1: योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, पुलिस पर हमला किया है, बलवा करने का प्रयास किया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं।
2: भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक अजीब सा माहौल है, न पुलिस सुरक्षित है, न लोग सुरक्षित है, न पुलिस से लोग सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठते जा रहे हैं।
0: फिलहाल हालात को नियंत्रण में रखने के लिए 5 थाने की फोर्स मौके पर मौजूद है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज तक।

0: बीजेपी की नवीन टीम के अगले चुनावों पर नजर। तावड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की भी चर्चा। मोदी सरकार को राहुल गांधी की चेतावनी, जेनजी की तरह ओबीसी भी सड़क पर उतरा तो केंद्र को झुकना पड़ेगा। पूछा जाति जनगणना में एससी एसटी की तरह ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी का एक्शन भड़के। केजरीवाल पूछा आखिर कब तक चलती रहेगी बीजेपी की तानाशाही। यूजीसी नेट विवाद के बाद एनटीए में बड़े बदलाव के आदेश, 600 विशेषज्ञों को हटाया गया। परीक्षा और प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियों के बाद चार स्तरीय पेपर जांच व्यवस्था लागू। और बिहार के नालंदा में मिड डे मील खाने से करीब 40 छात्र बीमार, नमक की जगह सब्जी में डाल दिया वॉशिंग पाउडर। नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी मिडिल स्कूल की घटना। सरकारें जब छात्रों की बात सुनने में देरी करती हैं, मामला लटकाती हैं, तो इसका खामियाजा केवल और केवल लाखों छात्रों को ही उठाना पड़ता है। इसका सबूत झारखंड में मिलता है, जहां जेपीएससी से 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन फिर जेएसएससी और साथ ही सीजीएल भर्ती परीक्षा में हुई धांधली तक पहुंच गया। इसी बीच सीआईडी ने मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
1: हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं।
2: हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच के लिए जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात छात्र आप ही के बच्चे थे, बहुत देरी थी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी बात।
4: रेलवे में टीटी के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ और यहाँ एक क्षण में हम लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया गया।
5: बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार ने हमारी बात मानी। ये स्ट्रगल था तो काफी विपरीत स्थिति में थे बच्चे। यहाँ
6: सरकार ने 3 से 4 दल की हमारी मेहनत करते हुए और इस भीड़ के आगे उपद्रव के आगे घुटने टेकते हुए हमें हमारी रोटी, हमारा सम्मान, हमारे जीविका, हमारे जीवन से वंचित किया है।
7: सरकार और सरकारी व्यवस्था किस तरह युवाओं का भविष्य सरकारी नौकरी के नाम पर रौंद देते हैं, उसकी 3 तस्वीरें रांची में आज आपको देखनी है। एक तरफ छात्रों का जश्न है जो कहते हैं कि सोरेन सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री आखिरकार ऐलान करते हैं कि दागी कंपनी TDPL के तहत कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की भी घोषणा होती है। दूसरी तरफ अब भी JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, जो कहते हैं कि सरकार ने CBI जांच की मांग अब तक क्यों नहीं मानी। और तीसरी तरफ है रोते बिलखते गुस्सा करते सवाल करते वो युवा जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद JSSC CGL की परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की, जिन्हें लगता है कि उन्होंने तो ईमानदारी से परीक्षा देकर नौकरी पाई है तो उनकी नौकरी क्यों छीनी जा रही है। इन 3 तस्वीरों के साथ ये सबसे बड़ा सच है कि सरकारी व्यवस्था की चित और पट दोनों में पिसता केवल नौजवान है। और एक एक करके इसी सच को आज आप देखिए, जहां पहले जश्न, जहां भर्तियों में धांधली होने पर 24 दिन तक चले धरना प्रदर्शन के बाद सोरेन सरकार को मांगों पर झुकाकर जीत हासिल करने के बाद मनाया जाता है।
3: हेमंत सोरेन को बधाई हो,
8: हेमंत का हिम्मत है,
9: उनका बच्चा को
3: हेमंत का हिम्मत है। ये जीत 1-2 साल का नहीं है, ये 10-15 साल का जीत है। ये झारखंड की भविष्य की जीत है आज। और आज से जहाँ झारखंड की सूट से बता दिया कि वो गुलाम भी कर सकते, गांधी जी को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं।
10: तोहफा तो इतना बड़ा दिया है लेकिन दिया नहीं है, लड़के लिया गया है। ये तोहफा कभी नहीं दिया जाता,
3: हमेशा सत्य जीतता है। 24 दिन भले लग गया, 24 दिन में 2 साल लगा, लेकिन सत्य नहीं जीतेगा, हमेशा जीतता है।
7: जहां देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल टूटती है जब मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के बाद आकर यह ऐलान कर देते हैं कि ब्लैक लिस्टेड TDPL ने जो भी परीक्षाएं कराई वो सब रद्द होंगी। JSSC CGL की परीक्षा जो 9 साल बाद जाकर झारखंड में हो पाई थी वो भी रद्द की जाएगी।
11: TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट
8: और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
7: निश्चित तौर पर झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों की ये बड़ी जीत, जिसने बताया कि अब सरकारी कान में तेल डालकर नहीं बैठी रह सकती, इनको सुनना पड़ेगा। लेकिन जब जश्न पूरी रात रांची में मन चुका है, तब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, क्योंकि CBI जांच की मांग मुख्यमंत्री अब तक माने नहीं।
11: सरकार से ऑफिशियली नोटिफाई होने का वेट कर रहे हैं चीजों का। JSSC सीजल की अध्याचना वापस हुई है या नहीं, यह हमें अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। 11-13 को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है, हम यह भी जानना चाहते हैं।
12: अगर वो TDPL ने ऑर्गेनाइज किया तो वो भी कैंसिल हो गया,
11: जी उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, एज कट ऑफ को लेकर के सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है, हम एज कट ऑफ 2018 मांग रहे हैं। और चौथा, CBI जांच पे हमारा सरकार के साथ मतभेद है।
7: और तीसरा हिस्सा है उन युवाओं का जो अब झारखंड में JSSC CGL की भर्ती रद्द होने के बाद गुस्से में, क्योंकि इन्हें 8 महीने पहले ही लंबे संघर्ष के बाद नौकरी मिली थी। लेकिन जिस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचारियों ने बहुत से लोगों से 10 लाख से 40 लाख का रेट लगाकर भर्ती कराई, वहां ईमानदार युवा पूछता है कि भ्रष्टाचार की चक्की में इनकी ईमानदार कोशिश को क्यों पीस दिया गया।
13: कुछ लोग कहते हैं 2000 तक फैमिली कहां जाएगा, आप ये बताइए।
7: मंगलवार सुबह आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार को रोशन कुमार मिलते हैं, JSSC CGL पास करके जिन्हें नौकरी अपने राज्य में मिली, तो इन्होंने घर भर में ही नहीं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटा, जिसके लिए रेलवे की नौकरी छोड़कर ये झारखंड में काम करने आ गए, ये सोच कर कि ये इनका गृह राज्य है। वो रोशन कुमार अब रोने लगते, पूछते हैं कि इनकी गलती क्या है।
4: कल तक हमारे पास एक जॉब थी, हमारा सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कल एक शाम को एक ऐसा न्यूज वायरल होता है, न्यूज आता है कैबिनेट का कि JSSC CGL की प्रक्रिया को पूरा रद्द कर दिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए थे, तब सब कुछ बताया गया, सब कुछ सही है। हम लोग पहले भी जॉब में थे सर, हम लोग रेलवे में TT के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ, और यहाँ एक क्षण में हम लोग का सब कुछ खत्म कर दिया गया। ना वो वहाँ के रहे ना वो यहाँ के रहेंगे, ऐसी परिस्थिति में वो कहीं के नहीं रहेंगे।
0: कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे यही तो छात्रों की मांग थी कि JSSC CGL परीक्षा रद्द कर दी जाए, और जब रद्द हो गई तो सवाल क्यों? सवाल इस परीक्षा रद्द करने पर नहीं है, सवाल है झारखंड में सरकार की नीति पर और साथ ही नियत पर भी। और केवल सोरेन ही नहीं, उससे पहले BJP की भी सरकार झारखंड में रही है। BJP से JMM तक के राज में यही JSSC साथ ही CGL की परीक्षा पहले भी टलती रही है, और फिर जब हुई तो पहले पेपर लीक और उसके बाद में भर्ती में धांधली की वजह से चर्चाओं में रही। अब जाकर छात्रों के आंदोलन के बाद इसे रद्द किया गया है।
4: 2000 कैंडिडेट का कम से कम आप जांच करा लीजिए एक बार, जो भी गलत निकलता है आप उसको निकालिए, आप सबको किस आधार पे निकाल सकते हैं।
7: हेमंत सोरेन सरकार ने यही फैसला अगर पहले ले लिया होता तो एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ आंसू और गुस्सा न हो, न ही 2000 परिवारों में से ईमानदारी से नौकरी हासिल करने वालों पर एक झटके में आसमान टूटता। असल में ये उस भर्ती परीक्षा की खबर है जो भविष्य में इस आधार पर याद रखी जाएगी कि सत्ता किसी की भी रहे वो युवाओं को केवल रुलाती। JSSC CGL की नौकरी चाहने वाले युवा 11 साल बाद भी इंतजार करते रह गए। आपको यकीन नहीं होगा, 5 राज्यपाल झारखंड में बदल गए, 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 6 JSSC के चेयरमैन बदल गए, पर अब तक झारखंड के छात्रों के सपनों की नौकरी JSSC CGL ईमानदारी से एक बार नहीं हो पाई। पहले इसका इतिहास याद कर लीजिए। JSSC CGL पहली बार नवंबर 2015 में निकलती है, जिसमें 2,36,000 लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन 2015 में निकली इस भर्ती की मुख्य परीक्षा होने से 8 दिन पहले इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 2017 में फिर से वैकेंसी के लिए फॉर्म भरवाया गया। परीक्षा फरवरी मार्च 2018 में कराने की संभावित तारीख रखी गई, लेकिन एग्जाम ही नहीं हुआ। फिर कहा गया कि नवंबर दिसंबर 2019 में एग्जाम होगा, लेकिन चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, मामला फंस गया। फिर 2021 आया, नए नियमों के साथ JSSC CGL कराने की चर्चा हुई, लेकिन नए नियम को दिसंबर 2021 में कोर्ट ने खारिज कर दिया, परीक्षा फिर लटक गई। फिर आया 21 अगस्त 2022, जब एक बार फिर निर्धारित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताकर स्थगित कर दिया जाता है। नाराजगी बढ़ी, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा फिर जनवरी 2024 में कराए जाने की बात हुई, जिसमें 660,000 बेरोजगार बच्चे 3 शिफ्ट में पेपर देने के लिए बैठे, लेकिन तीसरा पेपर लीक हो गया और फिर प्रदर्शन करके बाकी परीक्षा पूरी रद्द हो जाती। इसके बाद ये भर्ती परीक्षा सितंबर 2024 में कराई जाती, जहां आरोप लगा कि अभय तिवारी वाले रैकेट ने धांधली कराई, लेकिन तब सोरेन सरकार ने ये बात नहीं मानी। कोर्ट तक में मामला चला, लेकिन सोरेन सरकार ने 2025 पदों के लिए साल 2025 के आखिर में नियुक्ति दे दी। जब 24 दिन तक चले आंदोलन में भर्ती में धांधली को लेकर प्रदर्शनकारी इसी परीक्षा को रद्द करने की मांग करते रहे, तब सोरेन सरकार ने सोमवार को जाकर इस परीक्षा को रद्द कर दिया। झारखंड की राजधानी रांची में अब मंत्रालय के बाहर हेलमेट पहने इन शख्स को देखिए। ये वो भाई जिन्हें डर है कि इनका छोटा भाई कहीं टूट ना जाए, जिसने सीजीएल की परीक्षा ईमानदारी से पास करके नौकरी हासिल की थी।
14: सरकार को इस सब मामले में पहले सोचना चाहिए कि वैसे अभ्यर्थी जो पूरा जिंदगी, मतलब जब से वो तैयारी कर रहा है, तैयारी करते हुए उस स्थिति से बढ़ते हुए इस स्टेज पे आए कि कम से कम उस परीक्षा कंडक्ट करके, एग्जाम पास करके, सारी समस्याओं को झेलते हुए इतना सिचुएशन, इतना क्वेश्चन पेपर लीक हो, ये हो, वो हो, उसके बाद वो क्वालिटी अचीव करके तब जाके सिलेक्शन हुआ है। पूर्ण रूप से निराश है और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और अभी वो समझिए कि बच्चा, और अभी आगे का और स्थिति कितना होगा।
7: इसी जगह संजीत कुमार मिलते हैं, जिन्होंने घर के राज्य में नौकरी के सपने के लिए रेलवे की नौकरी छोड़ दी। अब उनके इस सपने पर चोट लगी, इनके बयान को आज ध्यान से सुनिए।
15: झारखंड में जॉब नहीं हो रहा था तो मैंने लॉकडाउन से रेलवे का तैयारी स्टार्ट किया और 2020 में फॉर्म भरा। 2020 में एग्जाम लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, वो एग्जाम जाके 2022 में हुआ और हम लोग का सिलेक्शन 2023 में रेलवे में हुआ। मैंने वहाँ या इस फॉर्म को भरा और इसके लिए बहुत जोर से तैयारी किया। 30 जनवरी को मेरा पहला एग्जाम सीजीएल का हुआ और उसमें भी धांधली। जब हम एग्जाम हॉल से निकले पता चला पेपर लीक हो गया और 30 जनवरी वाला हम लोग सब आए प्रोटेस्ट किए और ये पेपर रद्द कर दिया गया। सरकार के द्वारा बोला गया अपरिहार्य कारण से एग्जाम को रद्द किया जाता है। उसके बाद 21 और 22 सितंबर को एग्जाम हम लोग के आंदोलन के बल पे सरकार दोबारा से एग्जाम करवाई और उसके बाद एग्जाम करवाई तो मेरा 22 तारीख को एग्जाम पड़ा और उसके बाद हम लोग ने एग्जाम दिया। मैंने बहुत संघर्ष करके, मैं रेलवे में, आप लोग को पता नहीं होगा, रेलवे में 3 शिफ्ट होता है 8-8 घंटा का, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह बिना खाना खाए तैयारी किया, फिर 2 बजे ड्यूटी जाना है। उस हालत में मैंने तैयारी किया और उसके बाद मैं इस एग्जाम के लिए, मुझे ये दिमाग में था कि मुझे घर जाना है।
14: अभी हाँ।
15: मैं यहाँ पे एएसओ के पद पे हूँ। मैं पहले से रेलवे ग्रुप डी में पद पे था, पॉइंट्समैन के पद पे था मैं, और वहाँ से मैं रिजाइन करके आया हूँ। और मैं रिजाइन करके तब आया हूँ जब सरकार ने मुझे ये, मतलब हाईकोर्ट ने ये बोला है कि आप इस, मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जो भी कैंडिडेट फर्दर इस इन्वेस्टिगेशन में, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व पाए जाएंगे, उसको उसका कैंडिडेचर सरकार रद्द कर सकती है या सरकार उस पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बट हम लोग को किस बिना पे सरकार एकाएक जमीन के, मतलब जमीन हटा दी है सर के ऊपर से हम लोग का, मेरा भी फैमिली है सर।
7: इस पूरी भर्ती में जो पैसा देकर नौकरी पाए उनका तो केवल पैसा डूबा, लेकिन जो मेहनत करके पसीना बहाकर नौकरी पाए और जो मेहनत के बावजूद भ्रष्टाचारियों की वजह से नौकरी नहीं पाए, वो दोनों युवा फिसेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में चला जाएगा, सुनवाई की तारीखें लगती रहेंगी और फिर 2015 से लटकी जेएसएससी सीजीएल की भर्ती एक बार फिर मृग मरीचिका बन जाएगी। वो मिराज जो दिख तो 11 साल से रहा है, बस मिल नहीं पा रहा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने को लेकर जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, बीपीएससी की तरफ से तुरंत भर्ती परीक्षा का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया, लेकिन इस बार प्री और मेंस परीक्षा होनी है तो छात्र विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल एक ही परीक्षा होनी चाहिए।
7: छात्रों के आंदोलन का तीसरा बड़ा गवाह क्या पटना बन रहा है? जहां छात्रों के प्रदर्शन के 5 घंटे के भीतर मंगलवार को बिहार सरकार ने एक मांग तुरंत मान ली। जैसे ही पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक भर्ती की परीक्षा का विज्ञापन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी करने की मांग रखते हुए आंदोलन शुरू होता है, बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया जाता है।
16: जीते, बहुत बड़ी जीत है कि आज हम लोग शुरुआत किया और आज ही नोटिफिकेशन आ गया। आज डेट के साथ ही कब से फॉर्म भराएगा, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है।
7: TRI 4 मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसकी परीक्षा की संभावित तारीख तो आ गई थी, विज्ञापन नहीं आया था। यूं तो धरने का ताजा कारण शिक्षा भर्ती परीक्षा में हो रही देरी और वादा खिलाफी थी, लेकिन शिकायतें और मांगे कई और भी। युवाओं का कहना है, टीचर भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में आना था जिसे टाल दिया गया। शिक्षा मंत्री ने जुलाई में विज्ञापन का वादा किया, अगस्त गुजरने वाला है। बीपीएससी ने 22-27 सितंबर को परीक्षा की तारीख तय कर रखी है, लेकिन अब तक विज्ञापन का पता नहीं था। 72वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्री 26 जुलाई को होनी थी, टालकर 25 अक्टूबर कर दी गई। 71वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। बीपीएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तारीख का पता नहीं।
17: पटना के गर्दनी बाग में आज से छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये छात्र न्याय सत्याग्रह, इसी बैनर तले आज से TRE 4 समेत तमाम अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जो रिफॉर्म है उसकी मांग को लेकर के छात्र अभ्यर्थी आज से धरना पर बैठे हैं।
7: असल में अब यह आंदोलन शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी इसलिए जारी है क्योंकि अब तक जहां केवल एक परीक्षा देकर युवा टीचर बन सकते थे, वहां अब की बार पहले पीटी परीक्षा होगी यानी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। पीटी परीक्षा पास करने वाले ही मेंस की परीक्षा में शामिल होंगे, नियुक्ति के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा।
16: अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, अभी हम अभ्यर्थियों से विचार करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन अभी आंदोलन जारी है। एक परीक्षा होनी चाहिए, दो परीक्षा मंजूर नहीं, सिर्फ एक परीक्षा होनी चाहिए।
18: अभी परीक्षा होगा तब मन,
16: अभी हम लोग बीपीएससी पे कोई भरोसा नहीं कर रहे।
19: छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? छात्र पढ़ाई में जाकर के जुटे हैं और कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना लें, अपनी तैयारी करें और तैयारी करके वो परीक्षा में पास आउट हों, उनका एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है।
16: झूठ नहीं चलेगा, अगर आपको दो परीक्षा करानी है TRE 5 से कराइए, हम लोग स्वागत करते हैं। TRE 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो चुकी, 2 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, 24 अगस्त 2024 को ही इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया और बार बार झूठ बोला गया, इसलिए इसमें आप देरी नहीं हो। 3 दिन तक हम लोग महाधरना दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर डिमांड पूरा नहीं होता है तो उसके बाद हम अमरनाथ अनशन पे बैठे कुछ नहीं खाएंगे।
7: 32,388 टीचर की पोस्ट पर बिहार में भर्ती परीक्षा भी कराई जानी है। छात्र कहते हैं कि ये सब 2-2 साल की देरी से परीक्षा करा रहे हैं, वो भी नियम बदल कर, ये परीक्षाएं भी लटक गईं, तो फिर आगे क्या होगा?
17: एकल परीक्षा की आप लोग मांग कर रहे हैं, वो क्या वजह है, वहाँ पर कहाँ है?
20: हम लोग एकल परीक्षा का मांग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग 2 साल से जो TR 1, 2, 3 जो हुआ उसी पैटर्न पर एग्जाम हुआ और हम लोग अचानक से पीटी और मेंस ले लेना ये कहीं से वाकई अच्छा नहीं है। हम लोग वही पैटर्न पर तो अचानक से परीक्षा होगा एक महीना में तैयारी कहां से हो पाएगा डबल एग्जाम का, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं एकल परीक्षा हो।
7: जिस बिहार में बेरोजगारी दर भले 3% हो लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार 15% से अधिक है, वहाँ हालात ये है कि शिक्षा विभाग में 46,546, ग्रामीण विकास विभाग में 35,468, गृह विभाग में 35,000, स्वास्थ्य विभाग में 20,000, पंचायती राज विभाग में 9,540, ऊर्जा विभाग में 6,600, कृषि विभाग में 5,366, नगर विकास आवास विभाग में 5,100, समाज कल्याण विभाग में 4,549 और जल संसाधन विभाग में 4,014 पद खाली हैं। कुल मिलाकर 1,72,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं और इतने पद तो तब के खाली हैं जब बिहार की आबादी 10,41,00,000 थी, आज बिहार की आबादी 13,07,00,000 हो चुकी है, तो पदों का सृजन उनके हिसाब से हुआ ही नहीं। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: सीएम योगी यूपी में सख्त कानून व्यवस्था का हवाला अक्सर मंचों से देते रहे हैं, लेकिन लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके में पुलिस टीम ही हमले का शिकार हो गई। नगर निगम के साथ अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर महिला पुरुषों की भीड़ ने जबरदस्त जानलेवा हमला बोला।
21: Oh.
1: किसी ने गला दबाकर हत्या की कोशिश की, किसी ने लोहे की जंजीर से हमला बोला, खून खून हो गए पुलिस वाले। ये तस्वीरें लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके की हैं। इस इलाके में 148 भैंसों के साथ अवैध डेयरी चलाई जा रही थी। टीम जब यहां पहुंची तो भीड़ ने लाठी डंडे रॉड जंजीरों पत्थरों से पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। सरकारी गाड़ियां तोड़ डाली। एक सब इंस्पेक्टर की गला दबाकर हत्या की कोशिश हुई। अधिक संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंचती, तब तक आरोपी फरार हो गए। दो हमलावर महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
21: कल इन्होंने जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस के जवानों पे और पुलिस के एक इंस्पेक्टर पे कार्रवाई की है, मारा है, गला दबाया है, इनका गुस्सा देखिए आप।
22: मौके पर आज पुलिस पहुंची है, लगातार डेयरियों पर कार्रवाई हो रही है। अगर आप देखिए तो भैंसों को धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर इस नगर निगम के द्वारा जो गाड़ी है उसके सभी भैंसों को ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई अवैध डेयरियों के खिलाफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में
1: कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। अवैध डेयरी में रखी गई भैंसों को नगर निगम ने जब्त कर लिया है। पुलिस कर्मियों की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ है। FIR में जिक्र है कि अवैध पशुओं को हटाने के दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला हुआ। हमले की गिरफ्तार आरोपी दो महिलाएं खुशबून और आफरीन है। 10 से 12 आरोपी नाम जब्त किए गए हैं। आरोपियों का अतीक अहमद के साथ कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अब पुलिस आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी कर रही है। अब इस पूरे मामले में जबरदस्त राजनीति हो रही है।
23: योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कल जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, पुलिस पर हमला किया है, बलवा करने का प्रयास किया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं।
24: भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक अजीब सा माहौल है। न पुलिस सुरक्षित है, न लोग सुरक्षित है, न पुलिस से लोग सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठते जा रहे हैं।
1: फिलहाल हालात को नियंत्रण में रखने के लिए 5 थाने की फोर्स मौके पर मौजूद है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: सियासी गलियारों में वंदे मातरम गीत नहीं, वंदे मातरम का मसला गूंज उठाए। वंदे मातरम के दो स्टैंजा को लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण का बीजेपी का आरोप बनाम बीजेपी पर नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप गंभीर होता जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि वो वंदे मातरम के सभी स्टैंजा नहीं गाएगी, जबकि संसद से कानून और केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियमों के मुताबिक संपूर्ण वंदे मातरम को सम्मान देना जरूरी है।
25: वंदे मातरम पर सियासत का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोवा विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए गए। यही नहीं, सारे नेता इसके बाद चलते बने। इससे पहले 15 अगस्त को एक वीडियो सामने आया, जिसमें कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में वंदे मातरम के सभी 6 पद गाए गए थे। लेकिन उसी दौरान सोनिया गांधी कुछ निर्देश देती नजर आई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी ने बीच में ही रुकने के लिए इशारा किया था। हालांकि कांग्रेस ने ये कहते हुए बचाव किया कि खड़गे काफी समय से खड़े थे, जिनके लिए कुर्सी मंगाने के लिए सोनिया गांधी इशारा कर रही थी। लेकिन इसके बाद गोवा में कांग्रेस के ही कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए जाने को बीजेपी राष्ट्रगीत का अपमान बता रही है। सोनिया गांधी जी का भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति अनादर सबके सामने है। यही वो गीत है जिसे कांग्रेस ने दशकों तक तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर सीमित कर दिया। और राहुल गांधी जी, वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा रखता है। क्या आपको लगता है कि आप इसकी गरिमा से ऊपर हैं? क्या आप राष्ट्रीय भावना से ऊपर हैं? या फिर उन संवैधानिक मूल्यों से भी ऊपर हैं, जिनका आप अक्सर दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं?
26: 3 तलाक का विरोध, शाहबानों का विरोध, अभी जनगणमन में वॉकआउट, आर्टिकल 370 में वॉकआउट। तो राष्ट्र हित के जितने सवाल होते हैं, अगर उसकी टकराहट वोट बैंक से हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी चली जाती है पीछे, और इसमें वो अपनी सारी परंपराओं का भी ध्यान नहीं रखती।
25: बीजेपी के इस आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे दलील दे रहे हैं कि उन्होंने वही वंदे मातरम गाया जो गांधी नेहरू गाते रहे हैं।
2: अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है, जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं, अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो।
25: वंदे मातरम का गायन नहीं हुआ, इसके बाद अब पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि वो पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, सरकार चाहे जो कर ले।
3: हम सिर्फ दो ही पंक्ति गाते हैं, चाहे बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह हमको पासी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे, हम दो ही लाइन गाते हैं।
5: मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैंने पहले भी गाया, अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें कौन नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।
25: संसद में कानून के जरिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान का दर्जा दिया जा चुका है। गृह मंत्रालय सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 पद गाने के निर्देश भी दे चुका है। इस बार 15 अगस्त पर लाल किले से पहली बार वंदे मातरम के सभी 6 पद गाए भी गए, लेकिन वंदे मातरम पर कांग्रेस का रुख नए और बड़े सियासी विवाद की वजह बनता जा रहा है।
6: इस तरह का कोई भी कृत्य वो गैर कानूनी भी है, कानून के तहत कार्रवाई करने के योग्य भी है। इस तरह की गतिविधियां हरकतें अगर कोई करता है, और पार्टी किसी नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, ऐसे पार्टी के मुखिया की उपस्थिति में अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति और देश के मान बिंदुओं के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, उनकी कितनी आस्था है, उनकी कितना उनके मन में पवित्रता का भाव है, देश के सामने प्रकट हो जाता है।
25: पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के बंटवारे को देश के बंटवारे से जोड़ा था, तो सोनिया गांधी के विवाद पर अमित शाह हमला कर चुके हैं।
8: 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे।
2: दुनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है, आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए।
25: संसद ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 को भी पारित किया है। इसके तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के गायन में बाधा डालना या उसे रोकने की कोशिश करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसे में गोवा में खड़गे के कार्यक्रम के दौरान सिर्फ 2 पद गाए जाने की घटना ने वंदे मातरम को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को और हवा दे दी है। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज तक।

0: बीजेपी की नवीन टीम के अगले चुनावों पर नजर। तावड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की भी चर्चा। मोदी सरकार को राहुल गांधी की चेतावनी, जेनजी की तरह ओबीसी भी सड़क पर उतरा तो केंद्र को झुकना पड़ेगा। पूछा जाति जनगणना में एससी एसटी की तरह ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी का एक्शन भड़के। केजरीवाल पूछा आखिर कब तक चलती रहेगी बीजेपी की तानाशाही। यूजीसी नेट विवाद के बाद एनटीए में बड़े बदलाव के आदेश, 600 विशेषज्ञों को हटाया गया। परीक्षा और प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियों के बाद चार स्तरीय पेपर जांच व्यवस्था लागू। और बिहार के नालंदा में मिड डे मील खाने से करीब 40 छात्र बीमार, नमक की जगह सब्जी में डाल दिया वॉशिंग पाउडर। नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी मिडिल स्कूल की घटना। सरकारें जब छात्रों की बात सुनने में देरी करती हैं, मामला लटकाती हैं, तो इसका खामियाजा केवल और केवल लाखों छात्रों को ही उठाना पड़ता है। इसका सबूत झारखंड में मिलता है, जहां जेपीएससी से 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन फिर जेएसएससी और साथ ही सीजीएल भर्ती परीक्षा में हुई धांधली तक पहुंच गया। इसी बीच सीआईडी ने मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
1: हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं।
2: हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच के लिए जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर।
3: बहुत धन्यवाद। हमारी बात छाते आप ही के बच्चे थे, बहुत देरी की, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी बात।
4: रेलवे में टीटी के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ और यहाँ एक क्षण में हम लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया गया।
5: बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार ने हमारी बात मानी। ये स्ट्रगल था तो काफी विपन्न स्थिति में थे बच्चे। यहाँ
6: सरकार ने 3 से 4 तक की हमारी मेहनत करते हुए और इस भीड़ के आगे उपद्रव के आगे घुटने टेकते हुए हमें हमारी रोटी, हमारा सम्मान, हमारे जीविका, हमारे जीवन से वंचित किया है।
7: सरकार और सरकारी व्यवस्था किस तरह युवाओं का भविष्य सरकारी नौकरी के नाम पर रौंद देते हैं, उसकी 3 तस्वीरें रांची में आज आपको देखनी है। एक तरफ छात्रों का जश्न है जो कहते हैं कि सोरेन सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री आखिरकार ऐलान करते हैं कि दागी कंपनी TDPL के तहत कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की भी घोषणा होती है। दूसरी तरफ अब भी JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, जो कहते हैं कि सरकार ने CBI जांच की मांग अब तक क्यों नहीं मानी। और तीसरी तरफ है रोते बिलखते गुस्सा करते सवाल करते वो युवा जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद JSSC CGL की परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की, जिन्हें लगता है कि उन्होंने तो ईमानदारी से परीक्षा देकर नौकरी पाई है तो उनकी नौकरी क्यों छीनी जा रही है। इन 3 तस्वीरों के साथ ये सबसे बड़ा सच कि सरकारी व्यवस्था की चित और पट दोनों में पिसता केवल नौजवान, और एक एक करके इसी सच को आज आप देखिए। जहां पहले जश्न, जहां भर्तियों में धांधली होने पर 24 दिन तक चले धरना प्रदर्शन के बाद सोरेन सरकार को मांगों पर झुकाकर जीत हासिल करने के बाद मनाया जाता है।
3: हेमंत सोरेन को बधाई हो, हिम्मत है
8: उनका, बच्चों को
3: जीत है। 1-2 साल का नहीं है ये, 10-15 साल का जीत है। ये झारखंड की भविष्य की जीत है आज, और आज से जहाँ झारखंड की सूट से बता दिया कि वो गुलाम भी कर सकते हैं, गांधी जी को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं।
9: तोहफा तो इतना बड़ा दिया है, लेकिन दिया नहीं है, लड़के लिया गया है। ये तोहफा कभी नहीं दिया जाता,
3: हमेशा सत्य जीता है। 24 दिन भले लग गया, 24 दिन में 2 साल लगा, लेकिन सत्य नहीं जीतेगा, हमेशा जीतता है।
7: जहां देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल टूटती है, जब मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के बाद आकर यह ऐलान कर देते हैं कि ब्लैक लिस्टेड TDPL ने जो भी परीक्षाएं कराई वो सब रद्द होंगी। JSSC CGL की परीक्षा जो 9 साल बाद जाकर झारखंड में हो पाई थी वो भी रद्द की जाएगी।
10: TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं वो उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
7: निश्चित तौर पर झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों की ये बड़ी जीत, जिसने बताया कि अब सरकारें कान में तेल डालकर नहीं बैठी रह सकती, इनको सुनना पड़ेगा। लेकिन जब जश्न पूरी रात रांची में मन चुका है, तब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, क्योंकि CBI जांच की मांग मुख्यमंत्री अब तक माने नहीं।
11: सरकार से ऑफिशियली नोटिफाई होने का वेट कर रहे हैं चीजों का। JSSC सीजल की अध्याचना वापस हुई है या नहीं, यह हमें अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। 11-13 को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है, हम यह भी जानना चाहते हैं।
12: अगर वो TDPL ने ऑर्गेनाइज किया तो वो भी कैंसिल हो गया,
11: जी उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, एज कट ऑफ को लेकर के सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है, हम एज कट ऑफ 2018 मांग रहे हैं। और चौथा, CBI जांच पे हमारा सरकार के साथ मतभेद है।
7: और तीसरा हिस्सा है उन युवाओं का जो अब झारखंड में JSSC CGL की भर्ती रद्द होने के बाद गुस्से में, क्योंकि इन्हें 8 महीने पहले ही लंबे संघर्ष के बाद नौकरी मिली थी, लेकिन जिस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचारियों ने बहुत से लोगों से 10 लाख से 40 लाख का रेट लगाकर भर्ती कराई, वहाँ ईमानदार युवा पूछता है कि भ्रष्टाचार की चक्की में इनकी ईमानदार कोशिश को क्यों पीस दिया गया।
13: कुछ लोग कहते हैं 2000
7: का फैमिली कहाँ जाएगा। आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार को रोशन कुमार मिलते हैं, JSSC CGL पास करके जिन्हें नौकरी अपने राज्य में मिली, तो इन्होंने घर भर में ही नहीं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटा था, जिसके लिए रेलवे की नौकरी छोड़कर ये झारखंड में काम करने आ गए, ये सोच कर कि ये इनका गृह राज्य है। वो रोशन कुमार अब रोने लगते, पूछते हैं कि इनकी गलती क्या है।
4: कल तक हमारे पास एक जॉब थी, हमारा सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कल एक शाम को एक ऐसा न्यूज वायरल होता है, न्यूज आता है कैबिनेट का कि JSSC CGL की प्रक्रिया को पूरा रद्द कर दिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए थे, तब सब कुछ बताया गया, सब कुछ सही है। हम लोग पहले भी जॉब में थे सर, हम लोग रेलवे में TT के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन दे के इस जॉब में आया हूँ, और यहाँ एक क्षण में हम लोग का सब कुछ खत्म कर दिया गया। ना वो वहाँ के रहे ना वो यहाँ के रहेंगे, ऐसी परिस्थिति में वो कहीं के नहीं रहेंगे।
0: कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे यही तो छात्रों की मांग थी कि JSSC CGL परीक्षा रद्द कर दी जाए, और जब रद्द हो गई तो सवाल क्यों? सवाल इस परीक्षा रद्द करने पर नहीं है, सवाल है झारखंड में सरकार की नीति पर और साथ ही नियत पर भी। और केवल सोरेन ही नहीं, उससे पहले BJP की भी सरकार झारखंड में रही है। BJP से JMM तक के राज में यही JSSC साथ ही CGL की परीक्षा पहले भी टलती रही है, और फिर जब हुई तो पहले पेपर लीक और उसके बाद में भर्ती में धांधली की वजह से चर्चाओं में रही। अब जाकर छात्रों के आंदोलन के बाद इसे रद्द किया गया है।
4: 2000 कैंडिडेट का कम से कम आप जांच करा लीजिए एक बार, जो भी गलत निकलता है आप उसको निकालिए, आप सबको किस आधार पे निकाल सकते हैं।
7: हेमंत सोरेन सरकार ने यही फैसला अगर पहले ले लिया होता तो एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ आंसू और गुस्सा न होता, न ही 2000 परिवारों में से ईमानदारी से नौकरी हासिल करने वालों पर एक झटके में आसमान टूटता। असल में ये उस भर्ती परीक्षा की खबर है जो भविष्य में इस आधार पर याद रखी जाएगी कि सत्ता किसी की भी रहे वो युवाओं को केवल रुलाती। JSSC CGL की नौकरी चाहने वाले युवा 11 साल बाद भी इंतजार करते रह गए। आपको यकीन नहीं होगा, 5 राज्यपाल झारखंड में बदल गए, 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 6 JSSC के चेयरमैन बदल गए, पर अब तक झारखंड के छात्रों के सपनों की नौकरी JSSC CGL ईमानदारी से एक बार नहीं हो पाई। पहले इसका इतिहास याद कर लीजिए। JSSC CGL पहली बार नवंबर 2015 में निकलती है, जिसमें 2,36,000 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन 2015 में निकली इस भर्ती की मुख्य परीक्षा होने से 8 दिन पहले इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 2017 में फिर से वैकेंसी के लिए फॉर्म भरवाया गया, परीक्षा फरवरी मार्च 2018 में कराने की संभावित तारीख रखी गई, लेकिन एग्जाम ही नहीं हुआ। फिर कहा गया कि नवंबर दिसंबर 2019 में एग्जाम होगा, लेकिन चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, मामला फंस गया। फिर 2021 आया, नए नियमों के साथ JSSC CGL कराने की चर्चा हुई, लेकिन नए नियम को दिसंबर 2021 में कोर्ट ने खारिज कर दिया, परीक्षा फिर लटक गई। फिर आया 21 अगस्त 2022, जब एक बार फिर निर्धारित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताकर स्थगित कर दिया जाता है। नाराजगी बढ़ी, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा फिर जनवरी 2024 में कराए जाने की बात हुई, जिसमें 660,000 बेरोजगार बच्चे 3 शिफ्ट में पेपर देने के लिए बैठे, लेकिन तीसरा पेपर लीक हो गया और फिर प्रदर्शन करके बाकी परीक्षा पूरी रद्द हो जाती। इसके बाद ये भर्ती परीक्षा सितंबर 2024 में कराई जाती, जहां आरोप लगा कि अभय तिवारी वाले रैकेट ने धांधली कराई, लेकिन तब सोरेन सरकार ने ये बात नहीं मानी। कोर्ट तक में मामला चला, लेकिन सोरेन सरकार ने 2025 पदों के लिए साल 2025 के आखिर में नियुक्ति दे दी। जब 24 दिन तक चले आंदोलन में भर्ती में धांधली को लेकर प्रदर्शनकारी इसी परीक्षा को रद्द करने की मांग करते रहे, तब सोरेन सरकार ने सोमवार को जाकर इस परीक्षा को रद्द कर दिया। झारखंड की राजधानी रांची में अब मंत्रालय के बाहर हेलमेट पहने इन शख्स को देखिए। ये वो भाई जिन्हें डर है कि इनका छोटा भाई कहीं टूट ना जाए, जिसने सीजीएल की परीक्षा ईमानदारी से पास करके नौकरी हासिल की थी।
14: सरकार को इस सब मामले में पहले सोचना चाहिए कि वैसे अभ्यर्थी जो पूरा जिंदगी, मतलब जब से वो तैयारी कर रहा है तैयारी करते हुए उस स्थिति से बढ़ते हुए इस स्टेज पे आए कि कम से कम उस परीक्षा कंडक्ट करके एग्जाम पास करके सारी समस्याओं को झेलते हुए इतना सिचुएशन, इतना क्वेश्चन पेपर लीक हो, ये हो वो हो, उसके बाद वो क्वालिटी अचीव करके तब जाके सिलेक्शन हुआ है। पूर्ण रूप से निराश है और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और अभी वो समझिए कि बच्चा, और अभी आगे का और स्थिति कितना होगा।
7: इसी जगह संजीत कुमार मिलते हैं, जिन्होंने घर के राज्य में नौकरी के सपने के लिए रेलवे की नौकरी छोड़ दी। अब उनके इस सपने पर चोट लगी, इनके बयान को आज ध्यान से सुनिए।
15: झारखंड में जॉब नहीं हो रहा था तो मैंने लॉकडाउन से रेलवे का तैयारी स्टार्ट किया और 2020 में फॉर्म भरा। 2020 में एग्जाम लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, वो एग्जाम जाके 2022 में हुआ और हम लोग का सिलेक्शन 2023 में रेलवे में हुआ। मैंने वहाँ या इस फॉर्म को भरा और इसके लिए बहुत जोर से तैयारी किया। 30 जनवरी को मेरा पहला एग्जाम सीजीएल का हुआ और उसमें भी धांधली, जब हम एग्जाम हॉल से निकले पता चला पेपर लीक हो गया और 30 जनवरी वाला हम लोग सब आए प्रोटेस्ट किए और ये पेपर रद्द कर दिया गया। सरकार के द्वारा बोला गया अपरिहार्य कारण से एग्जाम को रद्द किया जाता है। उसके बाद 21 और 22 सितंबर को एग्जाम, हम लोग के आंदोलन के बल पे सरकार दोबारा से एग्जाम करवाई और उसके बाद एग्जाम करवाई तो मेरा 22 तारीख को एग्जाम पड़ा और उसके बाद हम लोग ने एग्जाम दिया। मैंने बहुत संघर्ष करके, मैं रेलवे में, आप लोग को पता नहीं होगा, रेलवे में 3 शिफ्ट होता 8-8 घंटा का, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह बिना खाना खाए तैयारी किया, फिर 2 बजे ड्यूटी जाना है, उस हालत में मैंने तैयारी किया। और उसके बाद मैं इस एग्जाम के लिए, मुझे ये दिमाग में था कि मुझे घर जाना है।
14: अभी हाँ।
15: मैं यहाँ पे एएसओ के पद पे हूँ, मैं पहले से रेलवे ग्रुप डी में पद पे था, पॉइंट्समैन के पद पे था मैं, और वहाँ से मैं रिजाइन करके आया हूँ। और मैं रिजाइन करके तब आया हूँ जब सरकार ने मुझे ये, मतलब हाईकोर्ट ने ये बोला है कि आप इस, मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जो भी कैंडिडेट फर्दर इस इन्वेस्टिगेशन में, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व पाए जाएंगे, उसको उसका कैंडिडेचर सरकार रद्द कर सकती है या सरकार उस पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बट हम लोग को किस बिना पे सरकार एकाएक जमीन के, मतलब जमीन हटा दी है सर के ऊपर से हम लोग का, मेरा भी फैमिली है सर।
7: इस पूरी भर्ती में जो पैसा देकर नौकरी पाए उनका तो केवल पैसा डूबा, लेकिन जो मेहनत करके पसीना बहाकर नौकरी पाए और जो मेहनत के बावजूद भ्रष्टाचारियों की वजह से नौकरी नहीं पाए, वो दोनों युवा फिसेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में चला जाएगा, सुनवाई की तारीखें लगती रहेंगी और फिर 2015 से लटकी जेएसएससी सीजीएल की भर्ती एक बार फिर मृग मरीचिका बन जाएगी। वो मिराज जो दिख तो 11 साल से रहा है, बस मिल नहीं पा रहा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने को लेकर जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, बीपीएससी की तरफ से तुरंत भर्ती परीक्षा का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया, लेकिन इस बार प्री और मेंस परीक्षा होनी है तो छात्र विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल एक ही परीक्षा होनी चाहिए।
7: छात्रों के आंदोलन का तीसरा बड़ा गवाह क्या पटना बन रहा है? जहां छात्रों के प्रदर्शन के 5 घंटे के भीतर मंगलवार को बिहार सरकार ने एक मांग तुरंत मान ली। जैसे ही पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक भर्ती की परीक्षा का विज्ञापन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी करने की मांग रखते हुए आंदोलन शुरू होता है, बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया जाता है।
16: जीते, बहुत बड़ी जीत है कि आज हम लोग शुरुआत किया और आज ही नोटिफिकेशन आ गया। आज डेट के साथ कब से फॉर्म भराएगा, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है।
7: TRI 4 मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसकी परीक्षा की संभावित तारीख तो आ गई थी, विज्ञापन नहीं आया था। यूं तो धरने का ताजा कारण शिक्षा भर्ती परीक्षा में हो रही देरी और वादा खिलाफी थी, लेकिन शिकायतें और मांगे कई और भी। युवाओं का कहना है टीचर भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में आना था जिसे टाल दिया गया। शिक्षा मंत्री ने जुलाई में विज्ञापन का वादा किया, अगस्त गुजरने वाला है। बीपीएससी ने 22-27 सितंबर को परीक्षा की तारीख तय कर रखी है, लेकिन अब तक विज्ञापन का पता नहीं था। 72वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्री 26 जुलाई को होनी थी, टालकर 25 अक्टूबर कर दी गई। 71वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। बीपीएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तारीख का पता नहीं।
17: पटना के गर्दनी बाग में आज से छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये छात्र न्याय सत्याग्रह, इसी बैनर तले आज से TRE 4 समेत तमाम अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जो रिफॉर्म है उसकी मांग को लेकर के छात्र अभ्यर्थी आज से धरना पर बैठे हैं।
7: असल में अब यह आंदोलन शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी इसलिए जारी है क्योंकि अब तक जहां केवल एक परीक्षा देकर युवा टीचर बन सकते थे, वहां अब की बार पहले पीटी परीक्षा होगी यानी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। पीटी परीक्षा पास करने वाले ही मेंस की परीक्षा में शामिल होंगे, नियुक्ति के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा।
16: अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, अभी हम अभ्यर्थियों से विचार करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन अभी आंदोलन जारी है। एक परीक्षा होनी चाहिए, दो परीक्षा मंजूर नहीं, सिर्फ एक परीक्षा होनी चाहिए। अभी हम लोग बीपीएससी पे कोई भरोसा नहीं कर रहे।
18: छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? छात्र पढ़ाई में जाकर के जुटे और कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना ले, अपनी तैयारी करें और तैयारी करके वो परीक्षा में पास आउट हो, उनका एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है।
16: झूठ नहीं चलेगा, अगर आपको दो परीक्षा करानी है TRE 5 से कराइए, हम लोग स्वागत करते हैं। TRE 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो चुकी, 2 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, 2 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 24 अगस्त 2024 को ही इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया और बार बार झूठ बोला गया, इसलिए इसमें आप देरी नहीं हो। 3 दिन तक हम लोग महाधरना दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर डिमांड पूरा नहीं होता है तो उसके बाद हम अमर अनशन पे बैठे, कुछ नहीं खाएंगे।
7: 32,388 टीचर की पोस्ट पर बिहार में भर्ती परीक्षा भी कराई जानी है। छात्र कहते हैं कि ये सब 2-2 साल की देरी से परीक्षा करा रहे हैं, वो भी नियम बदल कर। ये परीक्षाएं भी लटक गईं तो फिर आगे क्या होगा?
17: एकल परीक्षा की आप लोग मांग कर रहे हैं, वो क्या वजह है, वहाँ पर कहाँ है?
19: हम लोग एकल परीक्षा का मांग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग 2 साल से जो TR 1, 2, 3 जो हुआ उसी पैटर्न पर एग्जाम हुआ और हम लोग अचानक से पीटी और मेंस ले लेना ये कहीं से वाकई अच्छा नहीं है। हम लोग वही पैटर्न पर तो अचानक से हम परीक्षा होगा एक महीना में तैयारी कहां से हो पाएगा डबल एग्जाम का, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं एकल परीक्षा हो।
7: जिस बिहार में बेरोजगारी दर भले 3% हो, लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार 15% से अधिक है। वहाँ हालात ये है कि शिक्षा विभाग में 46,546, ग्रामीण विकास विभाग में 35,468, गृह विभाग में 35,000, स्वास्थ्य विभाग में 20,000, पंचायती राज विभाग में 9,540, ऊर्जा विभाग में 6,600, कृषि विभाग में 5,366, नगर विकास आवास विभाग में 5,100, समाज कल्याण विभाग में 4,549 और जल संसाधन विभाग में 4,014 पद खाली हैं। कुल मिलाकर 1,72,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं और इतने पद तो तब के खाली हैं जब बिहार की आबादी 10,41,00,000 थी। आज बिहार की आबादी 13,07,00,000 हो चुकी है, तो पदों का सृजन उनके हिसाब से हुआ ही नहीं। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है जेनजी पर। योगी जहां जाते हैं युवा पीढ़ी और उनके लिए योजनाओं की बात करते हैं। आपको ये भी बता दें कि जेनजी आंदोलन के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में पूरी तरह से जुटी हुई है। सामने सबसे बड़ी चुनौती है 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव।
20: दिल्ली के जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। 36 दिन के आंदोलन से न सिर्फ शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी की सारी मांगे भी माननी पड़ी। इसी तरह रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 24 दिन तक चले छात्र आंदोलन ने हेमंत सोरेन सरकार को झुका दिया। छात्रों की एक दो मांगों को छोड़कर सरकार को बाकी की मांगे माननी पड़ी। पटना के गर्दनी बाग में तो गजब हो गया। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी TRE-4 का विज्ञापन जारी करने के लिए प्रदर्शन शुरू होता है। 5 घंटे के भीतर BPSC आवेदन का विज्ञापन जारी कर देता है। जेन जी के यही तेवर अब सरकारों के लिए चैलेंज बन रहे हैं। जंतर मंतर के आंदोलन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माइलेज लेने की कोशिश की और अखिलेश यादव ने यूपी के मुद्दों को जंतर मंतर से लेकर संसद तक सामने रखा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा और अब CM योगी जहां भी बोलते हैं उनके भाषणों में जेन जी का जिक्र जरूर आता है।
21: जब युवा
20: आपको बता दें कि CM योगी गोरखपुर में आयोजित पहलवानों का दंगल देखने पहुंचे तो वहां भी जेन जी यानी युवाओं को लेकर विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला।
22: उस समय की सरकारों के एजेंडे में खेल नहीं था, युवा नहीं था। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था। ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं आपके हितों के लिए। जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति। सबसे बड़ा दुश्मन है युवा शक्ति की माफिया प्रवृत्ति। वह शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो या फिर पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो या किसी भी फील्ड का माफिया, अगर वह माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी।
20: क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ा मुद्दा युवा वोटर बनकर उभरा है। ऐसा क्यों? इसे आप उत्तर प्रदेश में युवा वोटरों के आंकड़ों से समझिए। यूपी में कुल वोटर्स करीब 13 करोड़ हैं। इनमें जेन जी यानी 18 से 27 साल के वोटर्स 2.07 करोड़ हैं, यानी लगभग 15%। यूपी में जिन सीटों पर जेन जी वोटर्स का असर है वो यूपी विधानसभा की 403 में से लगभग 80 से 120 सीटें हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जेन जी को समझा रहे हैं कि यूपी सरकार जल्द नई युवा नीति लेकर आ

0: एम्प्लॉयमेंट जोन का मतलब स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन। एक छत के नीचे नौजवान की स्किलिंग भी होगी, उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी माफिया, वह नकल माफिया हो या किसी भी फील्ड का शिक्षा माफिया हो, अगर उसने किसी युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करते हुए हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अभ्युदय कोचिंग को हर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचाया जाएगा। इसकी सुविधा फिजिकल और वर्चुअल दोनों माध्यमों से मिलेगी। प्रदेश के हर जिले में स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन बनाया जा रहा है। यहाँ एक ही छत के नीचे युवाओं की स्किलिंग के साथ रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। खेल के किसी भी क्षेत्र में निजी क्षेत्र सहयोग करेगा तो राज्य सरकार की खेल नीति के तहत उसे पूरा सहयोग दिया जाएगा।
2: पुलिस भी खराब कर दी उन्होंने, पुलिस इतनी खराब कर दी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और पुलिस इतनी खराब है अगर आप थाने गए तो आपकी तरफ देख करके सबसे पहले जेब देखेंगे, जेब में क्या है। और यही हाल तहसील का हो गया है, पुलिस केवल पैसे देख रही है। और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम, एक ही कानून चल रहा है यहां पर कि हथेली गरम पुलिस नरम हो जा रही है।
1: सीएम योगी माफियाओं की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और यूपी पुलिस को लेकर तगड़ा प्रहार किया है।
0: बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं, हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है।
3: समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेताजी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे।
1: चुनाव में वक्त कम है, लिहाजा योगी का मिशन जेन जी फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। कई मोर्चों पर युवाओं को साधने की कोशिशें जारी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक नई युवा नीति का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। योगी के मंत्री को अपने अपने क्षेत्र में जेन जी के साथ चौपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन की तरफ से स्कूल कॉलेजों में छात्रों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। हर विधानसभा सीट पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं से संवाद करेगी स्पेशल टीम। आला अफसरों को छात्रों से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान निकालने का आदेश। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब करीब 5 महीने का वक्त रह गया है, इसलिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इस पीढ़ी को क्या चीज प्रेरित करती है और उन तक कैसे पहुंच बनाई जाए। आज तक ब्यूरो।
4: सीएम योगी यूपी में सख्त कानून व्यवस्था का हवाला अक्सर मंचों से देते रहे हैं, लेकिन लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके में पुलिस टीम ही हमले का शिकार हो गई। नगर निगम के साथ अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर महिला पुरुषों की भीड़ ने जबरदस्त जानलेवा हमला बोला।
5: किसी ने गला दबाकर हत्या की कोशिश की, किसी ने लोहे की जंजीर से हमला बोला, खून खून हो गए पुलिस वाले। ये तस्वीरें लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके की हैं। इस इलाके में 148 भैंसों के साथ अवैध डेयरी चलाई जा रही थी। टीम जब यहां पहुंची तो भीड़ ने लाठी, डंडे, रॉड, जंजीरों, पत्थरों से पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। सरकारी गाड़ियां तोड़ डाली, एक सब इंस्पेक्टर की गला दबाकर हत्या की कोशिश हुई। अधिक संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंचती तब तक आरोपी फरार हो गए। दो हमलावर महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

0: कल इन्होंने जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी पुलिस के जवानों पे और पुलिस के एक इंस्पेक्टर पे कार्रवाई की है, मारा है, गला दबाया है, इनका गुस्सा देखिए आप।
1: मौके पर आज पुलिस पहुंची है, लगातार डेरियों पर कार्रवाई हो रही है। अगर आप देखिए तो भैंसों को धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर इस नगर निगम के द्वारा जो गाड़ी है उसके सभी भैंसों को ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई अवैध डेरियों के खिलाफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में
2: कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। अवैध डेयरी में रखी गई भैंसों को नगर निगम ने जब्त कर लिया है। पुलिस कर्मियों की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर में जिक्र है कि अवैध पशुओं को हटाने के दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला हुआ। हमले की गिरफ्तार आरोपी दो महिलाएं खुशबून और आफरीन है। 10 से 12 आरोपी नामजद किए गए हैं। आरोपियों का अतीक अहमद के साथ कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अब पुलिस आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी कर रही है। अब इस पूरे मामले में जबरदस्त राजनीति हो रही है।
3: योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, पुलिस पर हमला किया है, बलवा करने का प्रयास किया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं।
4: भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक अजीब सा माहौल है। न पुलिस सुरक्षित है, न लोग सुरक्षित है, न पुलिस से लोग सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठते जा रहे हैं।
2: फिलहाल हालात को नियंत्रण में रखने के लिए 5 थाने की फोर्स मौके पर मौजूद है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज तक।

0: बीजेपी की नवीन टीम के अगले चुनावों पर नजर। तावड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की भी चर्चा। मोदी सरकार को राहुल गांधी की चेतावनी, जेनजी की तरह ओबीसी भी सड़क पर उतरा तो केंद्र को झुकना पड़ेगा। पूछा जाति जनगणना में एससी एसटी की तरह ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी का एक्शन भड़के। केजरीवाल पूछा आखिर कब तक चलती रहेगी बीजेपी की तानाशाही। यूजीसी नेट विवाद के बाद एनटीए में बड़े बदलाव के आदेश, 600 विशेषज्ञों को हटाया गया। परीक्षा और प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियों के बाद चार स्तरीय पेपर जांच व्यवस्था लागू। और बिहार के नालंदा में मिड डे मील खाने से करीब 40 छात्र बीमार, नमक की जगह सब्जी में डाल दिया वॉशिंग पाउडर। नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी मिडिल स्कूल की घटना। सरकारें जब छात्रों की बात सुनने में देरी करती हैं, मामला लटकाती हैं, तो इसका खामियाजा केवल और केवल लाखों छात्रों को ही उठाना पड़ता है। इसका सबूत झारखंड में मिलता है, जहां जेपीएससी से 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन फिर जेएसएससी और साथ ही सीजीएल भर्ती परीक्षा में हुई धांधली तक पहुंच गया। इसी बीच सीआईडी ने मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
1: हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं।
2: हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच के लिए जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात छात्र आप ही के बच्चे थे, बहुत देरी थी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी बात।
4: रेलवे में टीटी के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ और यहाँ एक क्षण में हम लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया गया।
5: बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार ने हमारी बात मानी। ये स्ट्रगल था तो काफी विपन्न स्थिति में थे बच्चे। यहाँ
6: सरकार ने 3 से 4 दल की हमारी मेहनत करते हुए और इस भीड़ के आगे उपद्रव के आगे घुटने टेकते हुए हमें हमारी रोटी, हमारा सम्मान, हमारे जीविका, हमारे जीवन से वंचित किया है।
7: सरकार और सरकारी व्यवस्था किस तरह युवाओं का भविष्य सरकारी नौकरी के नाम पर रौंद देते हैं, उसकी 3 तस्वीरें रांची में आज आपको देखनी है। एक तरफ छात्रों का जश्न है, जो कहते हैं कि सोरेन सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री आखिरकार ऐलान करते हैं कि दागी कंपनी TDPL के तहत कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की भी घोषणा होती है। दूसरी तरफ अब भी JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, जो कहते हैं कि सरकार ने CBI जांच की मांग अब तक क्यों नहीं मानी। और तीसरी तरफ है रोते बिलखते गुस्सा करते सवाल करते वो युवा, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद JSSC CGL की परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की, जिन्हें लगता है कि उन्होंने तो ईमानदारी से परीक्षा देकर नौकरी पाई है, तो उनकी नौकरी क्यों छीनी जा रही है। इन 3 तस्वीरों के साथ ये सबसे बड़ा सच कि सरकारी व्यवस्था की चित और पट दोनों में पिसता केवल नौजवान, और एक एक करके इसी सच को आज आप देखिए। जहां पहले जश्न, जहां भर्तियों में धांधली होने पर 24 दिन तक चले धरना प्रदर्शन के बाद सोरेन सरकार को मांगों पर झुकाकर जीत हासिल करने के बाद मनाया जाता है।
3: हेमंत सोरेन को बधाई हो,
8: हेमंत का हिम्मत है,
9: उनका बच्चा को
3: हेमंत का हिम्मत है। ये जीत 1-2 साल का नहीं है, ये 10-15 साल का जीत है। ये झारखंड की भविष्य की जीत है आज, और आज से जहाँ झारखंड की स्टूडेंट ने बता दिया कि वो गुलाम भी कर सकता है, गांधी जी को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं।
10: तोहफा तो इतना बड़ा दिया है, लेकिन दिया नहीं है, लड़के लिया गया है। ये तोहफा कभी नहीं दिया जाता,
3: हमेशा सत्य जीतता है। 24 दिन भले लग गया, 24 दिन में 2 साल लगा, लेकिन सत्य नहीं जीतेगा, हमेशा जीतता है।
7: जहां देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल टूटती है, जब मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के बाद आकर यह ऐलान कर देते हैं कि ब्लैक लिस्टेड TDPL ने जो भी परीक्षाएं कराई वो सब रद्द होंगी। JSSC CGL की परीक्षा जो 9 साल बाद जाकर झारखंड में हो पाई थी, वो भी रद्द की जाएगी।
11: TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट
8: और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
7: निश्चित तौर पर झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों की ये बड़ी जीत, जिसने बताया कि अब सरकारी कान में तेल डालकर नहीं बैठी रह सकती, इनको सुनना पड़ेगा। लेकिन जब जश्न पूरी रात रांची में मन चुका है, तब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, क्योंकि CBI जांच की मांग मुख्यमंत्री अब तक माने नहीं।
11: सरकार से ऑफिशियली नोटिफाई होने का वेट कर रहे हैं चीजों का। JSSC सीजल की अध्याचना वापस हुई है या नहीं, यह हमें अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। 11-13 को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है, हम यह भी जानना चाहते हैं।
12: अगर वो TDPL ने ऑर्गेनाइज किया तो वो भी कैंसिल हो गया,
11: जी उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, एज कट ऑफ को लेकर के सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है, हम एज कट ऑफ 2018 मांग रहे हैं। और चौथा, CBI जांच पे हमारा सरकार के साथ मतभेद है।
7: और तीसरा हिस्सा है उन युवाओं का जो अब झारखंड में JSSC CGL की भर्ती रद्द होने के बाद गुस्से में, क्योंकि इन्हें 8 महीने पहले ही लंबे संघर्ष के बाद नौकरी मिली थी। लेकिन जिस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचारियों ने बहुत से लोगों से 10 लाख से 40 लाख का रेट लगाकर भर्ती कराई, वहां ईमानदार युवा पूछता है कि भ्रष्टाचार की चक्की में इनकी ईमानदार कोशिश को क्यों पीस दिया गया।
13: कुछ लोग कहते हैं 2000 का फैमिली कहां जाएगा, आप ये बताइए।
7: मंगलवार सुबह आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार को रोशन कुमार मिलते हैं, JSSC CGL पास करके जिन्हें नौकरी अपने राज्य में मिली, तो इन्होंने घर भर में ही नहीं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटा, जिसके लिए रेलवे की नौकरी छोड़कर ये झारखंड में काम करने आ गए, ये सोच कर कि ये इनका गृह राज्य है। वो रोशन कुमार अब रोने लगते, पूछते हैं कि इनकी गलती क्या है।
4: कल तक हमारे पास एक जॉब थी, हमारा सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कल एक शाम को एक ऐसा न्यूज वायरल होता है, न्यूज आता है कैबिनेट का कि JSSC CGL की प्रक्रिया को पूरा रद्द कर दिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए थे, तब सब कुछ बताया गया, सब कुछ सही है। हम लोग पहले भी जॉब में थे सर, हम लोग रेलवे में TT के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ, और यहाँ एक क्षण में हम लोग का सब कुछ खत्म कर दिया गया। ना वो वहाँ के रहे ना वो यहाँ के रहेंगे, ऐसी परिस्थिति में वो कहीं के नहीं रहेंगे।
0: कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे यही तो छात्रों की मांग थी कि JSSC CGL परीक्षा रद्द कर दी जाए, और जब रद्द हो गई तो सवाल क्यों? सवाल इस परीक्षा रद्द करने पर नहीं है, सवाल है झारखंड में सरकार की नीति पर और साथ ही नियत पर भी। और केवल सोरेन ही नहीं, उससे पहले BJP की भी सरकार झारखंड में रही है। BJP से JMM तक के राज में यही JSSC साथ ही CGL की परीक्षा पहले भी टलती रही है, और फिर जब हुई तो पहले पेपर लीक और उसके बाद में भर्ती में धांधली की वजह से चर्चाओं में रही। अब जाकर छात्रों के आंदोलन के बाद इसे रद्द किया गया है।
4: 2000 कैंडिडेट का कम से कम आप जांच करा लीजिए एक बार, जो भी गलत निकलता है आप उसको निकालिए, आप सबको किस आधार पे निकाल सकते हैं।
7: हेमंत सोरेन सरकार ने यही फैसला अगर पहले ले लिया होता तो एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ आंसू और गुस्सा न होता, न ही 2000 परिवारों में से ईमानदारी से नौकरी हासिल करने वालों पर एक झटके में आसमान टूटता। असल में ये उस भर्ती परीक्षा की खबर है जो भविष्य में इस आधार पर याद रखी जाएगी कि सत्ता किसी की भी रहे वो युवाओं को केवल रुलाती। JSSC CGL की नौकरी चाहने वाले युवा 11 साल बाद भी इंतजार करते रह गए। आपको यकीन नहीं होगा, 5 राज्यपाल झारखंड में बदल गए, 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 6 JSSC के चेयरमैन बदल गए, पर अब तक झारखंड के छात्रों के सपनों की नौकरी JSSC CGL ईमानदारी से एक बार नहीं हो पाई। पहले इसका इतिहास याद कर लीजिए। JSSC CGL पहली बार नवंबर 2015 में निकलती है, जिसमें 2,36,000 लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन 2015 में निकली इस भर्ती की मुख्य परीक्षा होने से 8 दिन पहले इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 2017 में फिर से वैकेंसी के लिए फॉर्म भरवाया गया। परीक्षा फरवरी मार्च 2018 में कराने की संभावित तारीख रखी गई, लेकिन एग्जाम ही नहीं हुआ। फिर कहा गया कि नवंबर दिसंबर 2019 में एग्जाम होगा, लेकिन चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, मामला फंस गया। फिर 2021 आया, नए नियमों के साथ JSSC CGL कराने की चर्चा हुई, लेकिन नए नियम को दिसंबर 2021 में कोर्ट ने खारिज कर दिया, परीक्षा फिर लटक गई। फिर आया 21 अगस्त 2022, जब एक बार फिर निर्धारित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताकर स्थगित कर दिया जाता है। नाराजगी बढ़ी, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा फिर जनवरी 2024 में कराए जाने की बात, जिसमें 660,000 बेरोजगार बच्चे तीन शिफ्ट में पेपर देने के लिए बैठे, लेकिन तीसरा पेपर लीक हो गया और फिर प्रदर्शन करके बाकी परीक्षा पूरी रद्द हो जाती। इसके बाद ये भर्ती परीक्षा सितंबर 2024 में कराई जाती, जहां आरोप लगा कि अभय तिवारी वाले रैकेट ने धांधली कराई, लेकिन तब सोरेन सरकार ने ये बात नहीं मानी। कोर्ट तक में मामला चला, लेकिन सोरेन सरकार ने 2025 पदों के लिए साल 2025 के आखिर में नियुक्ति दे दी। जब 24 दिन तक चले आंदोलन में भर्ती में धांधली को लेकर प्रदर्शनकारी इसी परीक्षा को रद्द करने की मांग करते रहे, तब सोरेन सरकार ने सोमवार को जाकर इस परीक्षा को रद्द कर दिया। झारखंड की राजधानी रांची में अब मंत्रालय के बाहर हेलमेट पहने इन शख्स को देखिए। ये वो भाई जिन्हें डर है कि इनका छोटा भाई कहीं टूट ना जाए, जिसने सीजीएल की परीक्षा ईमानदारी से पास करके नौकरी हासिल की थी।
14: सरकार को इस सब मामले में पहले सोचना चाहिए कि वैसे अभ्यर्थी जो पूरा जिंदगी, मतलब जब से वो तैयारी कर रहा है तैयारी करते हुए उस स्थिति से बढ़ते हुए इस स्टेज पे आए कि कम से कम उस परीक्षा कंडक्ट करके एग्जाम पास करके सारी समस्याओं को झेलते हुए इतना सिचुएशन, इतना क्वेश्चन पेपर लीक हो, ये हो वो हो, उसके बाद वो क्वालिटी अचीव करके तब जाके सिलेक्शन हुआ है। पूर्ण रूप से निराश है और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और अभी वो समझिए कि बच्चा, और अभी आगे का और स्थिति कितना होगा।
7: इसी जगह संजीत कुमार मिलते हैं, जिन्होंने घर के राज्य में नौकरी के सपने के लिए रेलवे की नौकरी छोड़ दी। अब उनके इस सपने पर चोट लगी, इनके बयान को आज ध्यान से सुनिए।
15: झारखंड में जॉब नहीं हो रहा था तो मैंने लॉकडाउन से रेलवे का तैयारी स्टार्ट किया और 2020 में फॉर्म भरा। 2020 में एग्जाम लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, वो एग्जाम जाके 2022 में हुआ और हम लोग का सिलेक्शन 2023 में रेलवे में हुआ। मैंने वहाँ या इस फॉर्म को भरा और इसके लिए बहुत जोर से तैयारी किया। 30 जनवरी को मेरा पहला एग्जाम सीजीएल का हुआ और उसमें भी धांधली। जब हम एग्जाम हॉल से निकले पता चला पेपर लीक हो गया और 30 जनवरी वाला हम लोग सब आए प्रोटेस्ट किए और ये पेपर रद्द कर दिया गया। सरकार के द्वारा बोला गया अपरिहार्य कारण से एग्जाम को रद्द किया जाता है। उसके बाद 21 और 22 सितंबर को एग्जाम हम लोग के आंदोलन के बल पे सरकार दोबारा से एग्जाम करवाई और उसके बाद एग्जाम करवाई तो मेरा 22 तारीख को एग्जाम पड़ा और उसके बाद हम लोग ने एग्जाम दिया। मैंने बहुत संघर्ष करके, मैं रेलवे में, आप लोग को पता नहीं होगा, रेलवे में 3 शिफ्ट होता है 8-8 घंटा का, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह बिना खाना खाए तैयारी किया, फिर 2 बजे ड्यूटी जाना है। उस हालत में मैंने तैयारी किया और उसके बाद मैं इस एग्जाम के लिए, मुझे ये दिमाग में था कि मुझे घर जाना है।
14: अभी हाँ।
15: मैं यहाँ पे एएसओ के पद पे हूँ। मैं पहले से रेलवे ग्रुप डी में पद पे था, पॉइंट्समैन के पद पे था मैं, और वहाँ से मैं रिजाइन करके आया हूँ। और मैं रिजाइन करके तब आया हूँ जब सरकार ने मुझे ये, मतलब हाईकोर्ट ने ये बोला है कि आप इस, मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जो भी कैंडिडेट फर्दर इस इन्वेस्टिगेशन में, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व पाए जाएंगे, उसको उसका कैंडिडेचर सरकार रद्द कर सकती है या सरकार उस पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बट हम लोग को किस बिना पे सरकार एकाएक जमीन के, मतलब जमीन हटा दी है सर के ऊपर से हम लोग का, मेरा भी फैमिली है सर।
7: इस पूरी भर्ती में जो पैसा देकर नौकरी पाए उनका तो केवल पैसा डूबा, लेकिन जो मेहनत करके पसीना बहाकर नौकरी पाए और जो मेहनत के बावजूद भ्रष्टाचारियों की वजह से नौकरी नहीं पाए, वो दोनों युवा फिसेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में चला जाएगा, सुनवाई की तारीखें लगती रहेंगी और फिर 2015 से लटकी जेएसएससी सीजीएल की भर्ती एक बार फिर मृग मरीचिका बन जाएगी। वो मिराज जो दिख तो 11 साल से रहा है, बस मिल नहीं पा रहा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने को लेकर जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, बीपीएससी की तरफ से तुरंत भर्ती परीक्षा का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया, लेकिन इस बार प्री और मेंस परीक्षा होनी है तो छात्र विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल एक ही परीक्षा होनी चाहिए।
7: छात्रों के आंदोलन का तीसरा बड़ा गवाह क्या पटना बन रहा है? जहां छात्रों के प्रदर्शन के 5 घंटे के भीतर मंगलवार को बिहार सरकार ने एक मांग तुरंत मान ली। जैसे ही पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक भर्ती की परीक्षा का विज्ञापन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी करने की मांग रखते हुए आंदोलन शुरू होता है, बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया जाता है।
16: जीते, बहुत बड़ी जीत है कि आज हम लोग शुरुआत किया और आज ही नोटिफिकेशन आ गया। आज डेट के साथ ही कब से फॉर्म भराएगा, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है।
7: TRI 4 मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसकी परीक्षा की संभावित तारीख तो आ गई थी, विज्ञापन नहीं आया था। यूं तो धरने का ताजा कारण शिक्षा भर्ती परीक्षा में हो रही देरी और वादा खिलाफी थी, लेकिन शिकायतें और मांगे कई और भी। युवाओं का कहना है, टीचर भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में आना था जिसे टाल दिया गया। शिक्षा मंत्री ने जुलाई में विज्ञापन का वादा किया, अगस्त गुजरने वाला है। बीपीएससी ने 22-27 सितंबर को परीक्षा की तारीख तय कर रखी है, लेकिन अब तक विज्ञापन का पता नहीं था। 72वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्री 26 जुलाई को होनी थी, टालकर 25 अक्टूबर कर दी गई। 71वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। बीपीएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तारीख का पता नहीं।
17: पटना के गर्दनी बाग में आज से छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये छात्र न्याय सत्याग्रह, इसी बैनर तले आज से TRE 4 समेत तमाम अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जो रिफॉर्म है उसकी मांग को लेकर के छात्र अभ्यर्थी आज से धरना पर बैठे हैं।
7: असल में अब यह आंदोलन शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी इसलिए जारी है क्योंकि अब तक जहां केवल एक परीक्षा देकर युवा टीचर बन सकते थे, वहां अब की बार पहले पीटी परीक्षा होगी यानी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। पीटी परीक्षा पास करने वाले ही मेंस की परीक्षा में शामिल होंगे, नियुक्ति के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा।
16: अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, अभी हम अभ्यर्थियों से विचार करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन अभी आंदोलन जारी है। एक परीक्षा होनी चाहिए, दो परीक्षा मंजूर नहीं, सिर्फ एक परीक्षा होनी चाहिए।
18: अभी परीक्षा होगा तब मन,
16: अभी हम लोग बीपीएससी पे कोई भरोसा नहीं कर रहे।
19: छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? छात्र पढ़ाई में जाकर के जुटे और कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना लें, अपनी तैयारी करें और तैयारी करके वो परीक्षा में पास आउट हो, उनका एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है।
16: झूठ नहीं चलेगा, अगर आपको दो परीक्षा करानी है TRE 5 से कराइए, हम लोग स्वागत करते हैं। TRE 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो चुकी, 2 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, 24 अगस्त 2024 को ही इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया और बार बार झूठ बोला गया, इसलिए इसमें आप देरी नहीं हो। 3 दिन तक हम लोग महाधरना दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर डिमांड पूरा नहीं होता है तो उसके बाद हम अमरनाथ अनशन पे बैठे, कुछ नहीं खाएंगे।
7: 32,388 टीचर की पोस्ट पर बिहार में भर्ती परीक्षा भी कराई जानी है। छात्र कहते हैं कि ये सब 2-2 साल की देरी से परीक्षा करा रहे हैं, वो भी नियम बदल कर, ये परीक्षाएं भी लटक गईं, तो फिर आगे क्या होगा?
17: एकल परीक्षा की आप लोग मांग कर रहे हैं, वो क्या वजह है, वहाँ पर कहाँ है?
20: हम लोग एकल परीक्षा का मांग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग 2 साल से जो TR 1, 2, 3 जो हुआ उसी पैटर्न पर एग्जाम हुआ और हम लोग अचानक से पीटी और मेंस ले लेना ये कहीं से वाकई अच्छा नहीं है। हम लोग वही पैटर्न पर तो अचानक से परीक्षा होगा एक महीना में तैयारी कहां से हो पाएगा डबल एग्जाम का, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं एकल परीक्षा हो।
7: जिस बिहार में बेरोजगारी दर भले 3% हो, लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार 15% से अधिक है। वहाँ हालात ये है कि शिक्षा विभाग में 46,546, ग्रामीण विकास विभाग में 35,468, गृह विभाग में 35,000, स्वास्थ्य विभाग में 20,000, पंचायती राज विभाग में 9,540, ऊर्जा विभाग में 6,600, कृषि विभाग में 5,366, नगर विकास आवास विभाग में 5,100, समाज कल्याण विभाग में 4,549 और जल संसाधन विभाग में 4,014 पद खाली हैं। कुल मिलाकर 1,72,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं और इतने पद तो तब के खाली हैं जब बिहार की आबादी 10,41,00,000 थी। आज बिहार की आबादी 13,07,00,000 हो चुकी है, तो पदों का सृजन उनके हिसाब से हुआ ही नहीं। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है जेनजी पर। योगी जहां जाते हैं युवा पीढ़ी और उनके लिए योजनाओं की बात करते हैं। आपको यह भी बता दें कि जेनजी आंदोलन के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में पूरी तरह से जुटी हुई है। सामने सबसे बड़ी चुनौती है 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव।
1: दिल्ली के जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। 36 दिन के आंदोलन से न सिर्फ शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी की सारी मांगे भी माननी पड़ी। इसी तरह रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 24 दिन तक चले छात्र आंदोलन ने हेमंत सोरेन सरकार को झुका दिया। छात्रों की एक दो मांगों को छोड़कर सरकार को बाकी की मांगे माननी पड़ी। पटना के गर्दनी बाग में तो गजब हो गया। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी TRE-4 का विज्ञापन जारी करने के लिए प्रदर्शन शुरू होता है। 5 घंटे के भीतर BPSC आवेदन का विज्ञापन जारी कर देता है। जेन जी के यही तेवर अब सरकारों के लिए चैलेंज बन रहे हैं। जंतर मंतर के आंदोलन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माइलेज लेने की कोशिश की और अखिलेश यादव ने यूपी के मुद्दों को जंतर मंतर से लेकर संसद तक सामने रखा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा और अब CM योगी जहां भी बोलते हैं उनके भाषणों में जेन जी का जिक्र जरूर आता है।
21: जब युवा
1: आपको बता दें कि CM योगी गोरखपुर में आयोजित पहलवानों का दंगल देखने पहुंचे तो वहां भी जेन जी यानी युवाओं को लेकर विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला।
22: उस समय की सरकारों के एजेंडे में खेल नहीं था, युवा नहीं था। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था। ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं आपके हितों के लिए। जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति। सबसे बड़ा दुश्मन है युवा शक्ति की माफिया प्रवृत्ति। वह शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो या फिर पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो या किसी भी फील्ड का माफिया, अगर वह माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी।
1: क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ा मुद्दा युवा वोटर बनकर उभरा है। ऐसा क्यों? इसे आप उत्तर प्रदेश में युवा वोटरों के आंकड़ों से समझिए। यूपी में कुल वोटर्स करीब 13 करोड़ हैं। इनमें जेन जी यानी 18 से 27 साल के वोटर्स 2.07 करोड़ हैं, यानी लगभग 15%। यूपी में जिन सीटों पर जेन जी वोटर्स का असर है वो यूपी विधानसभा की 403 में से लगभग 80 से 120 सीटें हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जेन जी को समझा रहे हैं कि यूपी सरकार जल्द नई युवा नीति लेकर आ रही है। इसके तहत युवाओं के लिए कई आयोजन और कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
22: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है हर जिले में एक एम्प्लॉयमेंट जोन हम बना रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जोन का मतलब स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन। एक छत के नीचे नौजवान की स्किलिंग भी होगी, उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी माफिया, वह नकल माफिया हो या किसी भी फील्ड का शिक्षा माफिया हो, अगर उसने किसी युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करते हुए हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अभ्युदय कोचिंग को हर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचाया जाएगा। इसकी सुविधा फिजिकल और वर्चुअल दोनों माध्यमों से मिलेगी। प्रदेश के हर जिले में स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन बनाया जा रहा है। यहाँ एक ही छत के नीचे युवाओं की स्किलिंग के साथ रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। खेल के किसी भी क्षेत्र में निजी क्षेत्र सहयोग करेगा तो राज्य सरकार की खेल नीति के तहत उसे पूरा सहयोग दिया जाएगा।
23: पुलिस भी खराब कर दी उन्होंने, पुलिस इतनी खराब कर दी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और पुलिस इतनी खराब है अगर आप थाने गए तो आपकी तरफ देख करके सबसे पहले जेब देखेंगे, जेब में क्या है। और यही हाल तहसील का हो गया है। पुलिस केवल पैसे देख रही है और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम। एक ही कानून चल रहा है यहां पर कि हथेली गरम पुलिस नरम हो जाएगी।
1: सीएम योगी माफियाओं की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और यूपी पुलिस को लेकर तगड़ा प्रहार किया है।
22: बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं, हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है।
2: समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे।
1: चुनाव में वक्त कम है, लिहाजा योगी का मिशन जेन जी फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। कई मोर्चों पर युवाओं को साधने की कोशिशें जारी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक नई युवा नीति का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। योगी के मंत्री को अपने अपने क्षेत्र में जेन जी के साथ चौपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन की तरफ से स्कूल कॉलेजों में छात्रों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। हर विधानसभा सीट पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं से संवाद करेगी स्पेशल टीम। आला अफसरों को छात्रों से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान निकालने का आदेश। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब करीब 5 महीने का वक्त रह गया है, इसलिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इस पीढ़ी को क्या चीज प्रेरित करती है और उन तक कैसे पहुंच बनाई जाए। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश में 27 के समर के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी की ओर से जहां जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बूथ मैनेजमेंट का काम तेज कर दिया गया है।
5: सत्ताईस के समर के लिए यूपी में राजनीतिक दलों में रस्साकसी तेज हो गई है। बीजेपी ने 3 राज्यों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें बिहार के चुनाव प्रभारी रह चुके विनोद तावड़े को यूपी का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। साथ ही जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ओबीसी मोर्चे की कमान अमरपाल मौर्य को सौंपी गई है। ओबीसी के कुर्मी समुदाय से आने वाली रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। दलित वोटों के लिए पश्चिम यूपी के भोला सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, तो प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कुंवर बासित अली राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है।
6: और मोदी जी ने जो योजनाओं का लाभ लगभग 30% के आसपास अल्पसंख्यक समाज को दिया है, उसको लोगों तक पहुंचाना और उनको विश्वास दिलाना कि देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी है और मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है।
5: समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पर 5 एक्स्ट्रा परिवार जोड़ने के फॉर्मूले का टारगेट फिक्स किया है।
21: चुनाव के 6 महीने से भी कम समय बचा है तो समाजवादी पार्टी बूथ पर, सेक्टरों पर, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर सभी नौजवान काम कर रहे हैं, बूथ कमेटियां ठीक की जा रही हैं।
5: दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर बीतते दिन के साथ ये तैयारी और तेज हो रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज तक।

0: बीजेपी की नवीन टीम के अगले चुनावों पर नजर। तावड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की भी चर्चा। मोदी सरकार को राहुल गांधी की चेतावनी, जेनजी की तरह ओबीसी भी सड़क पर उतरा तो केंद्र को झुकना पड़ेगा। पूछा जाति जनगणना में एससी एसटी की तरह ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी का एक्शन भड़के। केजरीवाल पूछा आखिर कब तक चलती रहेगी बीजेपी की तानाशाही। यूजीसी नेट विवाद के बाद एनटीए में बड़े बदलाव के आदेश, 600 विशेषज्ञों को हटाया गया। परीक्षा और प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियों के बाद 4 स्तरीय पेपर जांच व्यवस्था लागू। और बिहार के नालंदा में मिड डे मील खाने से करीब 40 छात्र बीमार, नमक की जगह सब्जी में डाल दिया वॉशिंग पाउडर। नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी मिडिल स्कूल की घटना। सरकारें जब छात्रों की बात सुनने में देरी करती हैं, मामला लटकाती हैं, तो इसका खामियाजा केवल और केवल लाखों छात्रों को ही उठाना पड़ता है। इसका सबूत झारखंड में मिलता है, जहां जेपीएससी से 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन फिर जेएसएससी और साथ ही सीजीएल भर्ती परीक्षा में भी धांधली तक पहुंच गया। इसी बीच सीआईडी ने मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
1: हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं।
2: हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच के लिए जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात हमारे छाते आप ही के बच्चे थे, बहुत देरी की कोई बात थी, अच्छी बात है, लेकिन हमारी बात मान पूरी।
4: रेलवे में टीटी के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ और यहाँ एक क्षण में हम लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया गया।
5: बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार ने हमारी बात मानी। ये स्ट्रगल था तो काफी विपरीत स्थिति में थे बच्चे। यहाँ
6: सरकार ने 3 से 4 दल की हमारी मेहनत करते हुए और इस भीड़ के आगे उपद्रव के आगे घुटने टेकते हुए हमें हमारी रोटी, हमारा सम्मान, हमारे जीविका, हमारे जीवन से वंचित किया है।
7: सरकार और सरकारी व्यवस्था किस तरह युवाओं का भविष्य सरकारी नौकरी के नाम पर रौंद देते हैं, उसकी 3 तस्वीरें रांची में आज आपको देखनी है। एक तरफ छात्रों का जश्न है, जो कहते हैं कि सोरेन्द्र सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री आखिरकार ऐलान करते हैं कि दागी कंपनी TDPL के तहत कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की भी घोषणा होती है। दूसरी तरफ अब भी JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी है, जो कहते हैं कि सरकार ने CBI जांच की मांग अब तक क्यों नहीं मानी। और तीसरी तरफ है रोते बिलखते गुस्सा करते सवाल करते वो युवा, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद JSSC CGL की परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की, जिन्हें लगता है कि उन्होंने तो ईमानदारी से परीक्षा देकर नौकरी पाई है, तो उनकी नौकरी क्यों छीनी जा रही है। इन 3 तस्वीरों के साथ ये सबसे बड़ा सच कि सरकारी व्यवस्था की चित और पट दोनों में पिसता केवल नौजवान है। और एक एक करके इसी सच को आज आप देखिए, जहां पहले जश्न, जहां भर्तियों में धांधली होने पर 24 दिन तक चले धरना प्रदर्शन के बाद सोरेन्द्र सरकार को मांगों पर झुकाकर जीत हासिल करने के बाद मनाया जाता है।
3: हेमंत सोरेन को बधाई हो,
8: उनका बच्चा तो
3: ये जीत 1-2 साल का नहीं है, ये 10-15 साल का जीत है। झारखंड की भविष्य की जीत है आज, और आज से जहाँ झारखंड की सूट से बता दिया कि वो गुलाम भी कर सकता, गांधी जी को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं।
9: तोहफा तो इतना बड़ा दिया है, लेकिन दिया नहीं है, लड़ के लिया गया है। ये तोहफा कभी नहीं दिया जाता।
3: हमेशा सत्य जीता है, 24 दिन बड़ा लग गया, 24 दिन में 2 साल लगा, लेकिन सत्य नहीं जीतेगा, हमेशा जीतता है।
7: जहाँ देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल टूटती है, जब मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के बाद आकर यह ऐलान कर देते हैं कि ब्लैक लिस्टेड TDPL ने जो भी परीक्षाएं कराई वो सब रद्द होंगी। JSSC CGL की परीक्षा जो 9 साल बाद जाकर झारखंड में हो पाई थी, वो भी रद्द की जाएगी।
10: TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट
8: और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
7: निश्चित तौर पर झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों की ये बड़ी जीत, जिसने बताया कि अब सरकारें कान में तेल डालकर नहीं बैठी रह सकती, इनको सुनना पड़ेगा। लेकिन जब जश्न पूरी रात रांची में मन चुका है, तब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, क्योंकि CBI जाँच की मांग मुख्यमंत्री अब तक माने नहीं।
10: सरकार से ऑफिशियली नोटिफाई होने का वेट कर रहे हैं चीजों का। JSSC सीजल की अध्याचना वापस हुई है या नहीं, यह हमें अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। 11-13 को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है, हम यह भी जानना चाहते हैं।
11: अगर वो TDPL ने ऑर्गेनाइज किया तो वो भी कैंसिल हो गया,
10: जी उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, एज कट ऑफ को लेकर के सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है, हम एज कट ऑफ 2018 मांग रहे हैं। और चौथा, CBI जांच पे हमारा सरकार के साथ मतभेद है।
7: और तीसरा हिस्सा है उन युवाओं का जो अब झारखंड में JSSC CGL की भर्ती रद्द होने के बाद गुस्से में, क्योंकि इन्हें 8 महीने पहले ही लंबे संघर्ष के बाद नौकरी मिली थी, लेकिन जिस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचारियों ने बहुत से लोगों से 10 लाख से 40 लाख का रेट लगाकर भर्ती कराई, वहां ईमानदार युवा पूछता है कि भ्रष्टाचार की चक्की में इनकी ईमानदार कोशिश को क्यों पीस दिया गया। कुछ लोग कहते हैं 2000 तक फैमिली कहां जाएगा, आप ये बताइए। मंगलवार सुबह आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार को रोशन कुमार मिलते हैं, JSSC CGL पास करके जिन्हें नौकरी अपने राज्य में मिली, तो इन्होंने घर भर में ही नहीं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटा था, जिसके लिए रेलवे की नौकरी छोड़कर ये झारखंड में काम करने आ गए, ये सोच कर कि ये इनका गृह राज्य है। वो रोशन कुमार अब रोने लगते, पूछते हैं कि इनकी गलती क्या है।
4: कल तक हमारे पास एक जॉब थी, हमारा सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कल एक शाम को एक ऐसा न्यूज वायरल होता है, न्यूज आता है कैबिनेट का कि JSSC CGL की प्रक्रिया को पूरा रद्द कर दिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए थे, तब सब कुछ बताया गया, सब कुछ सही है। हम लोग पहले भी जॉब में थे सर, हम लोग रेलवे में TT के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ, और यहाँ एक क्षण में हम लोग का सब कुछ खत्म कर दिया गया, ना वो वहाँ के रहे ना वो यहाँ के रहेंगे, ऐसी परिस्थिति में अब वो कहीं के नहीं रहेंगे।
0: कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे यही तो छात्रों की मांग थी कि JSSC CGL परीक्षा रद्द कर दी जाए, और जब रद्द हो गई तो सवाल क्यों? सवाल इस परीक्षा रद्द करने पर नहीं है, सवाल है झारखंड में सरकार की नीति पर और साथ ही नियत पर भी। और केवल सोरेन ही नहीं, उससे पहले BJP की भी सरकार झारखंड में रही है। BJP से JMM तक के राज में यही JSSC साथ ही CGL की परीक्षा पहले भी टलती रही है, और फिर जब हुई तो पहले पेपर लीक और उसके बाद में भर्ती में धांधली की वजह से चर्चाओं में रही। अब जाकर छात्रों के आंदोलन के बाद इसे रद्द किया गया है।
4: 2000 कैंडिडेट का कम से कम आप जांच करा लीजिए एक बार, जो भी गलत निकलता है आप उसको निकालिए, आप सबको किस आधार पे निकाल सकते हैं।
7: हेमंत सोरेन सरकार ने यही फैसला अगर पहले ले लिया होता तो एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ आंसू और गुस्सा ना हो, न ही 2000 परिवारों में से ईमानदारी से नौकरी हासिल करने वालों पर एक झटके में आसमान टूटता। असल में ये उस भर्ती परीक्षा की खबर है जो भविष्य में इस आधार पर याद रखी जाएगी कि सत्ता किसी की भी रहे वो युवाओं को केवल रुलाती। JSSC CGL की नौकरी चाहने वाले युवा 11 साल बाद भी इंतजार करते रह गए। आपको यकीन नहीं होगा, 5 राज्यपाल झारखंड में बदल गए, 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 6 JSSC के चेयरमैन बदल गए, पर अब तक झारखंड के छात्रों के सपनों की नौकरी JSSC CGL ईमानदारी से एक बार नहीं हो पाई। पहले इसका इतिहास याद कर लीजिए। JSSC CGL पहली बार नवंबर 2015 में निकलती है, जिसमें 2,36,000 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन 2015 में निकली इस भर्ती की मुख्य परीक्षा होने से 8 दिन पहले इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 2017 में फिर से वैकेंसी के लिए फॉर्म भरवाया गया, परीक्षा फरवरी मार्च 2018 में कराने की संभावित तारीख रखी गई, लेकिन एग्जाम ही नहीं हुआ। फिर कहा गया कि नवंबर दिसंबर 2019 में एग्जाम होगा, लेकिन चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, मामला फंस गया। फिर 2021 आया, नए नियमों के साथ JSSC CGL कराने की चर्चा हुई, लेकिन नए नियम को दिसंबर 2021 में कोर्ट ने खारिज कर दिया, परीक्षा फिर लटक गई। फिर आया 21 अगस्त 2022, जब एक बार फिर निर्धारित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताकर स्थगित कर दिया जाता है। नाराजगी बढ़ी, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा फिर जनवरी 2024 में कराए जाने की बात, जिसमें 660,000 बेरोजगार बच्चे 3 शिफ्ट में पेपर देने के लिए बैठे, लेकिन तीसरा पेपर लीक हो गया और फिर प्रदर्शन करके बाकी परीक्षा पूरी रद्द हो जाती। इसके बाद ये भर्ती परीक्षा सितंबर 2024 में कराई जाती, जहां आरोप लगा कि अभय तिवारी वाले रैकेट ने धांधली कराई, लेकिन तब सोरेन सरकार ने ये बात नहीं मानी, कोर्ट तक में मामला चला। लेकिन सोरेन सरकार ने 2025 पदों के लिए साल 2025 के आखिर में नियुक्ति दे दी। जब 24 दिन तक चले आंदोलन में भर्ती में धांधली को लेकर प्रदर्शनकारी इसी परीक्षा को रद्द करने की मांग करते रहे, तब सोरेन सरकार ने सोमवार को जाकर इस परीक्षा को रद्द कर दिया। झारखंड की राजधानी रांची में अब मंत्रालय के बाहर हेलमेट पहने इन शख्स को देखिए। ये वो भाई जिन्हें डर है कि इनका छोटा भाई कहीं टूट ना जाए, जिसने सीजीएल की परीक्षा ईमानदारी से पास करके नौकरी हासिल की थी।
12: सरकार को इस सब मामले में पहले सोचना चाहिए कि वैसे अभ्यर्थी जो पूरा जिंदगी, मतलब जब से वो तैयारी करते हुए उस स्थिति से बढ़ते हुए इस स्टेज पे आए कि कम से कम उस परीक्षा कंडक्ट करके एग्जाम पास करके सारी समस्याओं को झेलते हुए इतना सिचुएशन, इतना क्वेश्चन पेपर लीक हो, ये हो वो हो, उसके बाद वो क्वालिटी अचीव करके तब जाके सिलेक्शन हुआ है, पूर्ण रूप से निराश है। और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और अभी वो समझिए कि बच्चा, और अभी आगे का और स्थिति कितना होगा।
7: इसी जगह संजीत कुमार मिलते हैं, जिन्होंने घर के राज्य में नौकरी के सपने के लिए रेलवे की नौकरी छोड़ दी। अब उनके इस सपने पर चोट लगी, इनके बयान को आज ध्यान से सुनिए।
13: झारखंड में जॉब नहीं हो रहा था, तो मैंने लॉकडाउन से रेलवे का तैयारी स्टार्ट किया और 2020 में फॉर्म भरा। 2020 में एग्जाम लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, वो एग्जाम जाके 2022 में हुआ और हम लोग का सिलेक्शन 2023 में रेलवे में हुआ। मैंने वहाँ या इस फॉर्म को भरा और इसके लिए बहुत जोर से तैयारी किया। 30 जनवरी को मेरा पहला एग्जाम सीजीएल का हुआ और उसमें भी धांधली, जब हम एग्जाम हॉल से निकले पता चला पेपर लीक हो गया और 30 जनवरी वाला हम लोग सब आए प्रोटेस्ट किए और ये पेपर रद्द कर दिया गया। सरकार के द्वारा बोला गया अपरिहार्य कारण से एग्जाम को रद्द किया जाता है। उसके बाद 21 और 22 सितंबर को एग्जाम, हम लोग के आंदोलन के बल पे सरकार दोबारा से एग्जाम करवाई और उसके बाद एग्जाम करवाई तो मेरा 22 तारीख को एग्जाम पड़ा और उसके बाद हम लोग ने एग्जाम दिया। मैंने बहुत संघर्ष करके, मैं रेलवे में, आप लोग को पता नहीं होगा, रेलवे में 3 शिफ्ट होता है 8-8 घंटा का, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह, नाइट ड्यूटी करने के बाद बिना खाना खाए तैयारी किया, फिर 2 बजे ड्यूटी जाना है, उस हालत में मैंने तैयारी किया। और उसके बाद मैं इस एग्जाम के लिए, मुझे ये दिमाग में था कि मुझे घर जाना है।
12: अभी हाँ।
13: मैं यहाँ पे एएसओ के पद पे हूँ, मैं पहले से रेलवे ग्रुप डी में पद पे था, पॉइंट्समैन के पद पे था मैं, और वहाँ से मैं रिजाइन करके आया हूँ। और मैं रिजाइन करके तब आया हूँ जब सरकार ने मुझे ये, मतलब हाईकोर्ट ने ये बोला है कि आप इस, मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जो भी कैंडिडेट फर्दर इस इन्वेस्टिगेशन में, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व पाए जाएंगे, उसको उसका कैंडिडेचर सरकार रद्द कर सकती है या सरकार उस पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बट हम लोग को किस बिना पे सरकार एकाएक जमीन के, मतलब जमीन हटा दी है सर के ऊपर से हम लोग का, हम, मेरा भी फैमिली है सर।
7: इस पूरी भर्ती में जो पैसा देकर नौकरी पाए उनका तो केवल पैसा डूबा, लेकिन जो मेहनत करके पसीना बहाकर नौकरी पाए और जो मेहनत के बावजूद भ्रष्टाचारियों की वजह से नौकरी नहीं पाए, वो दोनों युवा फिसेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में चला जाएगा, सुनवाई की तारीखें लगती रहेंगी और फिर 2015 से लटकी जेएसएससी सीजीएल की भर्ती एक बार फिर मृग मरीचिका बन जाएगी। वो मिराज जो दिख तो 11 साल से रहा है, बस मिल नहीं पा रहा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने को लेकर जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, बीपीएससी की तरफ से तुरंत भर्ती परीक्षा का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया, लेकिन इस बार प्री और मेंस परीक्षा होनी है तो छात्र विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल एक ही परीक्षा होनी चाहिए।
7: छात्रों के आंदोलन का तीसरा बड़ा गवाह क्या पटना बन रहा है? जहां छात्रों के प्रदर्शन के 5 घंटे के भीतर मंगलवार को बिहार सरकार ने एक मांग तुरंत मान ली। जैसे ही पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक भर्ती की परीक्षा का विज्ञापन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी करने की मांग रखते हुए आंदोलन शुरू होता है, बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया जाता है।
14: जीते, बहुत बड़ी जीत है कि आज हम लोग शुरुआत किया और आज ही नोटिफिकेशन आ गया। आज डेट के साथ है कि कब से फॉर्म भराएगा, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है।
7: TRI 4 मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसकी परीक्षा की संभावित तारीख तो आ गई थी, विज्ञापन नहीं आया था। यूं तो धरने का ताजा कारण शिक्षा भर्ती परीक्षा में हो रही देरी और वादा खिलाफी थी, लेकिन शिकायतें और मांगे कई और भी। युवाओं का कहना है टीचर भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में आना था, जिसे टाल दिया गया। शिक्षा मंत्री ने जुलाई में विज्ञापन का वादा किया, अगस्त गुजरने वाला है। बीपीएससी ने 22-27 सितंबर को परीक्षा की तारीख तय कर रखी है, लेकिन अब तक विज्ञापन का पता नहीं था। 72वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्री 26 जुलाई को होनी थी, टालकर 25 अक्टूबर कर दी गई। 71वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा अब तक नहीं हो पाई। बीपीएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तारीख का पता नहीं।
15: पटना के गर्दनी बाग में आज से छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये छात्र न्याय सत्याग्रह, इसी बैनर तले आज से TRE 4 समेत तमाम अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जो रिफॉर्म है उसकी मांग को लेकर के छात्र अभ्यर्थी आज से धरना पर बैठे हैं।
7: असल में अभी आंदोलन शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी इसलिए जारी है, क्योंकि अब तक जहां केवल एक परीक्षा देकर युवा टीचर बन सकते थे, वहां अब की बार पहले PT परीक्षा होगी यानी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। PT परीक्षा पास करने वाले ही मेंस की परीक्षा में शामिल होंगे, नियुक्ति के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा।
14: अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, अभी हम अभ्यर्थियों से विचार करेंगे कि आगे क्या करना, लेकिन अभी आंदोलन जारी है। एक परीक्षा होनी चाहिए, 2 परीक्षा मंजूर नहीं, सिर्फ एक परीक्षा होनी चाहिए।
16: अभी परीक्षा होगा तब मंजूर,
14: अभी हम लोग बीपीएससी पे कोई भरोसा नहीं कर रहे।
17: छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? छात्र पढ़ाई में जाकर के जुटे और कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना लें, अपनी तैयारी करें और तैयारी करके वो परीक्षा में पास आउट हो, उनका एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है।
14: झूठ नहीं चलेगा, अगर आपको 2 परीक्षा करानी है TRE 5 से कराइए, हम लोग स्वागत करते हैं। TRE 4 में सिर्फ 1 परीक्षा हो चुकी, 2 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, 24 अगस्त 2024 को ही इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया और बार बार झूठ बोला गया, इसलिए इसमें आप देरी नहीं हो। 3 दिन तक हम लोग महाधरना दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर डिमांड पूरा नहीं होता है तो उसके बाद हम अमरनाथ अनशन पे बैठे, कुछ नहीं खाएंगे।
7: 32,388 टीचर की पोस्ट पर बिहार में भर्ती परीक्षा भी कराई जानी है। छात्र कहते हैं कि ये सब 2-2 साल की देरी से परीक्षा करा रहे हैं, वो भी नियम बदलकर, ये परीक्षाएं भी लटक गईं, तो फिर आगे क्या होगा?
15: एकल परीक्षा की आप लोग मांग कर रहे हैं, वो क्या वजह है, वहाँ पर कहाँ?
18: हम लोग एकल परीक्षा का मांग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग 2 साल से जो TR 1, 2, 3 जो हुआ उसी पैटर्न पर एग्जाम हुआ, और हम लोग अचानक से PT और मेंस ले लेना ये कहीं से वाकई अच्छा नहीं है। हम लोग वही पैटर्न पर तो अचानक से हम परीक्षा होगा 1 महीना में, तो 1 महीना में तैयारी कहां से हो पाएगा डबल एग्जाम का, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं एकल परीक्षा हो।
7: जिस बिहार में बेरोजगारी दर भले 3% हो, लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार 15% से अधिक है, वहाँ हालात ये है कि शिक्षा विभाग में 46,546, ग्रामीण विकास विभाग में 35,468, गृह विभाग में 35,000, स्वास्थ्य विभाग में 20,000, पंचायती राज विभाग में 9,540, ऊर्जा विभाग में 6,600, कृषि विभाग में 5,366, नगर विकास आवास विभाग में 5,100, समाज कल्याण विभाग में 4,549 और जल संसाधन विभाग में 4,014 पद खाली हैं। कुल मिलाकर 1,72,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, और इतने पद तो तब के खाली हैं जब बिहार की आबादी 10,41,00,000 थी, आज बिहार की आबादी 13,07,00,000 हो चुकी है, तो पदों का सृजन उनके हिसाब से हुआ ही नहीं। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: सियासी गलियारों में वंदे मातरम गीत नहीं, वंदे मातरम का मसला गूंज उठाए। वंदे मातरम के 2 स्टैंजा को लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण का बीजेपी का आरोप बनाम बीजेपी पर नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप गंभीर होता जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि वो वंदे मातरम के सभी स्टेंजा नहीं गाएगी, जबकि संसद से कानून और केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियमों के मुताबिक संपूर्ण वंदे मातरम को सम्मान देना जरूरी है।
19: वंदे मातरम पर सियासत का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोवा विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। यही नहीं, सारे नेता इसके बाद चलते बने। इससे पहले 15 अगस्त को एक वीडियो सामने आया जिसमें कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में वंदे मातरम के सभी 6 पद गाए गए थे, लेकिन उसी दौरान सोनिया गांधी कुछ निर्देश देती नजर आई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी ने बीच में ही रुकने के लिए इशारा किया था। हालांकि कांग्रेस ने ये कहते हुए बचाव किया कि खड़गे काफी समय से खड़े थे, जिनके लिए कुर्सी मंगाने के लिए सोनिया गांधी इशारा कर रही थी। लेकिन इसके बाद गोवा में कांग्रेस के ही कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए जाने को बीजेपी राष्ट्रगीत का अपमान बता रही है। सोनिया गांधी जी का भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति अनादर सबके सामने है। यही वो गीत है जिसे कांग्रेस ने दशकों तक तुष्टिकरण की राजनीति के नाम पर सीमित कर दिया, और राहुल गांधी जी वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा रखता है। क्या आपको लगता है कि आप इसकी गरिमा से ऊपर हैं? क्या आप राष्ट्रीय भावना से ऊपर हैं, या फिर उन संवैधानिक मूल्यों से भी ऊपर हैं जिनका आप अक्सर दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं?
20: 3 तलाक का विरोध, शाबानों का विरोध, अभी जनगणमन में वॉकआउट, आर्टिकल 370 में वॉकआउट, तो राष्ट्र हित के जितने सवाल होते हैं अगर उसकी टकराहट वोट बैंक से हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी चली जाती है पीछे, और इसमें वो अपनी सारी परंपराओं का भी ध्यान नहीं रखती।
19: बीजेपी के इस आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे दलील दे रहे हैं कि उन्होंने वही वंदे मातरम गाया जो गांधी नेहरू गाते रहे हैं।
21: अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है, जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस

0: इसके बाद अब पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि वो पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, सरकार चाहे जो कर ले।
1: हम सिर्फ दो ही पंक्ति गाते हैं, चाहे बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह हमको पासी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे, हम दो ही लाइन गाते हैं।
2: मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैंने पहले भी नहीं, अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें कौन नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।
0: संसद में कानून के जरिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान का दर्जा दिया जा चुका है। गृह मंत्रालय सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 पद गाने के निर्देश भी दे चुका है। इस बार 15 अगस्त पर लाल किले से पहली बार वंदे मातरम के सभी 6 पद गाए भी गए, लेकिन वंदे मातरम पर कांग्रेस का रुख नए और बड़े सियासी विवाद की वजह बनता जा रहा है।
3: इस तरह का कोई भी कृत्य वो गैर कानूनी भी है, कानून के तहत कार्रवाई करने के योग्य भी है। इस तरह की गतिविधियां हरकतें अगर कोई करता है, और पार्टी किसी नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, ऐसे पार्टी के मुखिया की उपस्थिति में अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति और देश के मानबिंदुओं के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, उनकी कितनी आस्था है, उनकी कितना उनके मन में पवित्रता का भाव है, देश के सामने प्रकट हो जाता है।
0: पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के बंटवारे को देश के बंटवारे से जोड़ा था, तो सोनिया गांधी के विवाद पर अमित शाह हमला कर चुके हैं।
4: 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे।
5: दुनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है, आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए।
0: संसद ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 को भी पारित किया है। इसके तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के गायन में बाधा डालना या उसे रोकने की कोशिश करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसे में गोवा में खड़गे के कार्यक्रम के दौरान सिर्फ 2 पद गाए जाने की घटना ने वंदे मातरम को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को और हवा दे दी है। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज तक।

0: भी चर्चा। मोदी सरकार को राहुल गांधी की चेतावनी, जेनजी की तरह ओबीसी भी सड़क पर उतरा तो केंद्र को झुकना पड़ेगा। पूछा जाति जनगणना में एससी एसटी की तरह ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी का एक्शन भड़के। केजरीवाल पूछा आखिर कब तक चलती रहेगी बीजेपी की तानाशाही। यूजीसी नेट विवाद के बाद एनटीए में बड़े बदलाव के आदेश, 600 विशेषज्ञों को हटाया गया। परीक्षा और प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियों के बाद चार स्तरीय पेपर जांच व्यवस्था लागू। और बिहार के नालंदा में मिड डे मील खाने से करीब 40 छात्र बीमार, नमक की जगह सब्जी में डाल दिया वॉशिंग पाउडर। नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी मिडिल स्कूल की घटना। सरकारें जब छात्रों की बात सुनने में देरी करती हैं, मामला लटकाती हैं, तो इसका खामियाजा केवल और केवल लाखों छात्रों को ही उठाना पड़ता है। इसका सबूत झारखंड में मिलता है, जहां जेपीएससी से 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन फिर जेएसएससी और साथ ही सीजीएल भर्ती परीक्षा में हुई धांधली तक पहुंच गया। इसी बीच सीआईडी ने मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
1: हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं।
2: हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच के लिए जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात छाते आप ही के बच्चे थे, बहुत देरी की कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी बात।
4: रेलवे में टीटी के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ और यहाँ एक क्षण में हम लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया गया।
5: बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार ने हमारी बात मानी। ये स्ट्रगल था तो काफी विपन्न हो रहे स्थिति में थे बच्चे। यहाँ
6: सरकार ने 3 से 4 दल की हमारी मेहनत करते हुए और इस भीड़ के आगे उपद्रव के आगे घुटने टेकते हुए हमें हमारी रोटी, हमारा सम्मान, हमारे जीविका, हमारे जीवन से वंचित किया है।
7: सरकार और सरकारी व्यवस्था किस तरह युवाओं का भविष्य सरकारी नौकरी के नाम पर रौंद देते हैं, उसकी 3 तस्वीरें रांची में आज आपको देखनी है। एक तरफ छात्रों का जश्न है जो कहते हैं कि सोरेन सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री आखिरकार ऐलान करते हैं कि दागी कंपनी TDPL के तहत कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की भी घोषणा होती है। दूसरी तरफ अब भी जेपीएससी रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, जो कहते हैं कि सरकार ने सीबीआई जांच की मांग अब तक क्यों नहीं मानी। और तीसरी तरफ है रोते बिलखते गुस्सा करते सवाल करते वो युवा जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की, जिन्हें लगता है कि उन्होंने तो ईमानदारी से परीक्षा देकर नौकरी पाई है तो उनकी नौकरी क्यों छीनी जा रही है। इन 3 तस्वीरों के साथ ये सबसे बड़ा सच कि सरकारी व्यवस्था की चित और पट दोनों में पिसता केवल नौजवान, और एक एक करके इसी सच को आज आप देखिए। जहां पहले जश्न, जहां भर्तियों में धांधली होने पर 24 दिन तक चले धरना प्रदर्शन के बाद सोरेन सरकार को मांगों पर झुकाकर जीत हासिल करने के बाद मनाया जाता है।
3: हेमंत सोरेन को बधाई हो,
8: उनका बच्चा को
3: ये जीत 1-2 साल का नहीं है, ये 10-15 साल का जीत है। ये झारखंड की भविष्य की जीत है आज, और आज से जहाँ झारखंड की सूट से बता दिया कि वो गुलाम भी कर सकता है, गांधी जी को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं।
9: तोहफा तो इतना बड़ा दिया है लेकिन दिया नहीं है, लड़के लिया गया है। ये तोहफा कभी नहीं दिया जाता,
3: हमेशा सत्य जीतता है। 24 दिन बड़ा लग गया, 24 दिन में 2 साल लगा, लेकिन सत्य नहीं जीतेगा, हमेशा जीतता है।
7: जहां देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल टूटती है जब मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के बाद आकर यह ऐलान कर देते हैं कि ब्लैक लिस्टेड TDPL ने जो भी परीक्षाएं कराई वो सब रद्द होंगी। JSSC CGL की परीक्षा जो 9 साल बाद जाकर झारखंड में हो पाई थी वो भी रद्द की जाएगी।
10: TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
7: निश्चित तौर पर झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों की ये बड़ी जीत, जिसने बताया कि अब सरकारें कान में तेल डालकर नहीं बैठी रह सकती, इनको सुनना पड़ेगा। लेकिन जब जश्न पूरी रात रांची में मन चुका है, तब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC रिफॉर्म्स मंच का आंदोलन जारी, क्योंकि CBI जांच की मांग मुख्यमंत्री अब तक माने नहीं।
8: सरकार से ऑफिशियली नोटिफाई होने का वेट कर रहे हैं चीजों का। JSSC सीजल की अध्याचना वापस हुई है या नहीं, यह हमें अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। 11-13 को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है, हम यह भी जानना चाहते हैं।
11: अगर वो TDPL ने ऑर्गेनाइज किया तो वो भी कैंसिल हो गया,
8: जी उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, एज कट ऑफ को लेकर के सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है, हम एज कट ऑफ 2018 मांग रहे हैं। और चौथा, CBI जांच पे हमारा सरकार के साथ मतभेद है।
7: और तीसरा हिस्सा है उन युवाओं का जो अब झारखंड में JSSC CGL की भर्ती रद्द होने के बाद गुस्से में, क्योंकि इन्हें 8 महीने पहले ही लंबे संघर्ष के बाद नौकरी मिली थी। लेकिन जिस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचारियों ने बहुत से लोगों से 10 लाख से 40 लाख का रेट लगाकर भर्ती कराई, वहाँ ईमानदार युवा पूछता है कि भ्रष्टाचार की चक्की में इनकी ईमानदार कोशिश को क्यों पीस दिया गया।
12: कुछ लोग कहते हैं 2000 तक फैमिली कहाँ जाएगा, आप ये बताइए।
7: मंगलवार सुबह आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार को रोशन कुमार मिलते हैं, JSSC CGL पास करके जिन्हें नौकरी अपने राज्य में मिली, तो इन्होंने घर भर में ही नहीं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटा था, जिसके लिए रेलवे की नौकरी छोड़कर ये झारखंड में काम करने आ गए, ये सोच कर कि ये इनका गृह राज्य है। वो रोशन कुमार अब रोने लगते, पूछते हैं कि इनकी गलती क्या है।
4: कल तक हमारे पास एक जॉब थी, हमारा सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कल एक शाम को एक ऐसा न्यूज वायरल होता है, न्यूज आता है कैबिनेट का कि JSSC CGL की प्रक्रिया को पूरा रद्द कर दिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए थे, तब सब कुछ बताया गया, सब कुछ सही है। हम लोग पहले भी जॉब में थे सर, हम लोग रेलवे में TT के पद पर मैं कार्यरत था, वहाँ से रेजिग्नेशन देके इस जॉब में आया हूँ, और यहाँ एक क्षण में हम लोग का सब कुछ खत्म कर दिया गया, ना वो वहाँ के रहे ना वो यहाँ के रहेंगे, ऐसी परिस्थिति में वो कहीं के नहीं रहेंगे।
0: कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे यही तो छात्रों की मांग थी कि JSSC CGL परीक्षा रद्द कर दी जाए, और जब रद्द हो गई तो सवाल क्यों? सवाल इस परीक्षा रद्द करने पर नहीं है, सवाल है झारखंड में सरकार की नीति पर और साथ ही नियत पर भी। और केवल सोरेन ही नहीं, उससे पहले BJP की भी सरकार झारखंड में रही है। BJP से JMM तक के राज में यही JSSC साथ ही CGL की परीक्षा पहले भी टलती रही है, और फिर जब हुई तो पहले पेपर लीक और उसके बाद में भर्ती में धांधली की वजह से चर्चाओं में रही। अब जाकर छात्रों के आंदोलन के बाद इसे रद्द किया गया है।
4: 2000 कैंडिडेट का कम से कम आप जांच करा लीजिए एक बार, जो भी गलत निकलता है आप उसको निकालिए, आप सबको किस आधार पे निकाल सकते हैं।
7: हेमंत सोरेन सरकार ने यही फैसला अगर पहले ले लिया होता तो एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ आंसू और गुस्सा न हो, न ही 2000 परिवारों में से ईमानदारी से नौकरी हासिल करने वालों पर एक झटके में आसमान टूटता। असल में ये उस भर्ती परीक्षा की खबर है जो भविष्य में इस आधार पर याद रखी जाएगी कि सत्ता किसी की भी रहे वो युवाओं को केवल रुलाती। JSSC CGL की नौकरी चाहने वाले युवा 11 साल बाद भी इंतजार करते रह गए। आपको यकीन नहीं होगा, 5 राज्यपाल झारखंड में बदल गए, 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 6 JSSC के चेयरमैन बदल गए, पर अब तक झारखंड के छात्रों के सपनों की नौकरी JSSC CGL ईमानदारी से एक बार नहीं हो पाई। पहले इसका इतिहास याद कर लीजिए। JSSC CGL पहली बार नवंबर 2015 में निकलती है, जिसमें 2,36,000 लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन 2015 में निकली इस भर्ती की मुख्य परीक्षा होने से 8 दिन पहले इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 2017 में फिर से वैकेंसी के लिए फॉर्म भरवाया गया, परीक्षा फरवरी मार्च 2018 में कराने की संभावित तारीख रखी गई, लेकिन एग्जाम ही नहीं हुआ। फिर कहा गया कि नवंबर दिसंबर 2019 में एग्जाम होगा, लेकिन चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, मामला फंस गया। फिर 2021 आया, नए नियमों के साथ JSSC CGL कराने की चर्चा हुई, लेकिन नए नियम को दिसंबर 2021 में कोर्ट ने खारिज कर दिया, परीक्षा फिर लटक गई। फिर आया 21 अगस्त 2022, जब एक बार फिर निर्धारित JSSC CGL की परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताकर स्थगित कर दिया जाता है। नाराजगी बढ़ी, JSSC CGL की परीक्षा फिर जनवरी 2024 में कराए जाने की बात हुई, जिसमें 6,60,000 बेरोजगार बच्चे 3 शिफ्ट में पेपर देने के लिए बैठे, लेकिन तीसरा पेपर लीक हो गया और फिर प्रदर्शन करके बाकी परीक्षा पूरी रद्द हो जाती। इसके बाद ये भर्ती परीक्षा सितंबर 2024 में कराई जाती, जहां आरोप लगा कि अभय तिवारी वाले रैकेट ने धांधली कराई, लेकिन तब सोरेन सरकार ने ये बात नहीं मानी। कोर्ट तक में मामला चला, लेकिन सोरेन सरकार ने 2025 पदों के लिए साल 2025 के आखिर में नियुक्ति दे दी। जब 24 दिन तक चले आंदोलन में भर्ती में धांधली को लेकर प्रदर्शनकारी इसी परीक्षा को रद्द करने की मांग करते रहे, तब सोरेन सरकार ने सोमवार को जाकर इस परीक्षा को रद्द कर दिया। झारखंड की राजधानी रांची में अब मंत्रालय के बाहर हेलमेट पहने इन शख्स को देखिए। ये वो भाई जिन्हें डर है कि इनका छोटा भाई कहीं टूट ना जाए, जिसने CGL की परीक्षा ईमानदारी से पास करके नौकरी हासिल की थी।
13: सरकार को इस सब मामले में पहले सोचना चाहिए कि वैसे अभ्यर्थी जो पूरा जिंदगी, मतलब जब से वो तैयारी कर रहा है तैयारी करते हुए उस स्थिति से बढ़ते हुए इस स्टेज पे आए कि कम से कम उस परीक्षा कंडक्ट करके एग्जाम पास करके सारी समस्याओं को झेलते हुए इतना सिचुएशन, इतना क्वेश्चन पेपर लीक हो, ये हो वो हो, उसके बाद वो क्वालिटी अचीव करके तब जाके सिलेक्शन हुआ है। पूर्ण रूप से निराश है और समझ सकते हैं कि रात से अंदर में उस स्थिति में पड़ा हुआ है कि हम लोग को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और अभी वो समझिए कि बच्चा, और अभी आगे का और स्थिति कितना होगा।
7: इसी जगह संजीत कुमार मिलते हैं, जिन्होंने घर के राज्य में नौकरी के सपने के लिए रेलवे की नौकरी छोड़ दी। अब उनके इस सपने पर चोट लगी, इनके बयान को आज ध्यान से सुनिए।
14: झारखंड में जॉब नहीं हो रहा था तो मैंने लॉकडाउन से रेलवे का तैयारी स्टार्ट किया और 2020 में फॉर्म भरा। 2020 में एग्जाम लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, वो एग्जाम जाके 2022 में हुआ और हम लोग का सिलेक्शन 2023 में रेलवे में हुआ। मैंने वहाँ या इस फॉर्म को भरा और इसके लिए बहुत जोर से तैयारी किया। 30 जनवरी को मेरा पहला एग्जाम CGL का हुआ और उसमें भी धांधली। जब हम एग्जाम हॉल से निकले पता चला पेपर लीक हो गया और 30 जनवरी वाला हम लोग सब आए प्रोटेस्ट किए और ये पेपर रद्द कर दिया गया। सरकार के द्वारा बोला गया अपरिहार्य कारण से एग्जाम को रद्द किया जाता है। उसके बाद 21 और 22 सितंबर को एग्जाम हम लोग के आंदोलन के बल पे सरकार दोबारा से एग्जाम करवाई और उसके बाद एग्जाम करवाई तो मेरा 22 तारीख को एग्जाम पड़ा और उसके बाद हम लोग ने एग्जाम दिया। मैंने बहुत संघर्ष करके, मैं रेलवे में, आप लोग को पता नहीं होगा, रेलवे में 3 शिफ्ट होता 8-8 घंटा का, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। नाइट ड्यूटी करने के बाद बिना खाना खाए तैयारी किया, फिर 2 बजे ड्यूटी जाना है। उस हालत में मैंने तैयारी किया और उसके बाद मैं इस एग्जाम के लिए, मुझे ये दिमाग में था कि मुझे घर जाना है।
15: अभी हाँ।
14: मैं यहाँ पे ASO के पद पे हूँ। मैं पहले से रेलवे ग्रुप डी में पद पे था, पॉइंट्समैन के पद पे था मैं, और वहाँ से मैं रिजाइन करके आया हूँ। और मैं रिजाइन करके तब आया हूँ जब सरकार ने मुझे ये, मतलब हाईकोर्ट ने ये बोला है कि आप इस, मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जो भी कैंडिडेट फर्दर इस इन्वेस्टिगेशन में, CID के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व पाए जाएंगे उसको, उसका कैंडिडेचर सरकार रद्द कर सकती है या सरकार उस पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बट हम लोग को,
0: बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने को लेकर जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, BPSC की तरफ से तुरंत भर्ती परीक्षा का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया, लेकिन इस बार प्री और मेंस परीक्षा होनी है तो छात्र विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल एक ही परीक्षा होनी चाहिए।
7: छात्रों के आंदोलन का तीसरा बड़ा गवाह क्या पटना बन रहा है, जहां छात्रों के प्रदर्शन के 5 घंटे के भीतर मंगलवार को बिहार सरकार ने एक मांग तुरंत मान ली। जैसे ही पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक भर्ती की परीक्षा का विज्ञापन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी करने की मांग रखते हुए आंदोलन शुरू होता है, BPSC की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया जाता है।
16: जीते, बहुत बड़ी जीत है। आज हम लोग शुरुआत किया और आज ही नोटिफिकेशन आ गया, आज डेट के साथ है कब से फॉर्म भराएगा, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है।
7: TRI 4, मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसकी परीक्षा की संभावित तारीख तो आ गई थी, विज्ञापन नहीं आया था। यूं तो धरने का ताजा कारण शिक्षा भर्ती परीक्षा में हो रही देरी और वादा खिलाफी थी, लेकिन शिकायतें और मांगे कई और भी। युवाओं का कहना है, टीचर भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में आना था जिसे टाल दिया गया। शिक्षा मंत्री ने जुलाई में विज्ञापन का वादा किया, अगस्त गुजरने वाला है। बीपीएससी ने 22-27 सितंबर को परीक्षा की तारीख तय कर रखी है, लेकिन अब तक विज्ञापन का पता नहीं था। 72वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्री 26 जुलाई को होनी थी, टालकर 25 अक्टूबर कर दी गई। 71वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। बीपीएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तारीख का पता नहीं।
15: पटना के गर्दनी बाग में आज से छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये छात्र न्याय सत्याग्रह, इसी बैनर तले आज से TRE4 समेत तमाम अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जो रिफॉर्म है उसकी मांग को लेकर के छात्र अभ्यर्थी आज से धरना पर बैठे हैं।
7: असल में अब यह आंदोलन शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी इसलिए जारी है क्योंकि अब तक जहां केवल एक परीक्षा देकर युवा टीचर बन सकते थे, वहां अब की बार पहले पीटी परीक्षा होगी, यानी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। पीटी परीक्षा पास करने वाले ही मेंस की परीक्षा में शामिल होंगे, नियुक्ति के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा।
16: अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, अभी हम अभ्यर्थियों से विचार करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन अभी आंदोलन जारी है। एक परीक्षा होनी चाहिए, दो परीक्षा मंजूर नहीं, सिर्फ एक परीक्षा होनी चाहिए।
17: अभी परीक्षा होगा तब मन,
16: अभी हम लोग बीपीएससी पे कोई भरोसा नहीं कर रहे।
18: छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? छात्र पढ़ाई में जाकर के जुटे और कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना लें, अपनी तैयारी करें और तैयारी करके वो परीक्षा में पास आउट हो, उनका एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है।
16: झूठ नहीं चलेगा, अगर आपको दो परीक्षा करानी है TRE5 से कराइए, हम लोग स्वागत करते हैं। TRE4 में सिर्फ एक परीक्षा हो चुकी, दो वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 24 अगस्त 2024 को ही इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक TRE4 का विज्ञापन नहीं आया और बार बार झूठ बोला गया, इसलिए इसमें आप देरी नहीं हो। 3 दिन तक हम लोग महाधरना दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर डिमांड पूरा नहीं होता है तो उसके बाद हम अमरनाथ अनशन पे बैठे, कुछ नहीं खाएंगे।
7: 32,388 टीचर की पोस्ट पर बिहार में भर्ती परीक्षा भी कराई जानी है। छात्र कहते हैं कि ये सब दो दो साल की देरी से परीक्षा करा रहे हैं, वो भी नियम बदल कर, ये परीक्षाएं भी लटक गईं, तो फिर आगे क्या होगा?
15: एकल परीक्षा की आप लोग मांग कर रहे हैं, वो क्या वजह है, वहाँ पर कहाँ है?
19: हम लोग एकल परीक्षा का मांग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग 2 साल से जो TR 1, 2, 3 जो हुआ उसी पैटर्न पर एग्जाम हुआ और हम लोग अचानक से पीटी और मेंस ले लेना ये कहीं से वाकई अच्छा नहीं है। हम लोग वही पैटर्न पर तो अचानक से हम परीक्षा होगा एक महीना में तैयारी कहां से हो पाएगा डबल एग्जाम का, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं एकल परीक्षा हो।
7: जिस बिहार में बेरोजगारी दर भले 3% हो लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार 15% से अधिक है, वहाँ हालात ये है कि शिक्षा विभाग में 46,546, ग्रामीण विकास विभाग में 35,468, गृह विभाग में 35,000, स्वास्थ्य विभाग में 20,000, पंचायती राज विभाग में 9,540, ऊर्जा विभाग में 6,600, कृषि विभाग में 5,366, नगर विकास आवास विभाग में 5,100, समाज कल्याण विभाग में 4,549 और जल संसाधन विभाग में 4,014 पद खाली हैं। कुल मिलाकर 1,72,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं और इतने पद तो तब के खाली हैं जब बिहार की आबादी 10,41,00,000 थी। आज बिहार की आबादी 13,07,00,000 हो चुकी है, तो पदों का सृजन उनके हिसाब से हुआ ही नहीं। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है जेनजी पर। योगी जहां जाते हैं युवा पीढ़ी और उनके लिए योजनाओं की बात करते हैं। आपको यह भी बता दें कि जेनजी आंदोलन के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में पूरी तरह से जुटी हुई है। सामने सबसे बड़ी चुनौती है 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव।
20: दिल्ली के जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। 36 दिन के आंदोलन से न सिर्फ शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी की सारी मांगे भी माननी पड़ी। इसी तरह रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 24 दिन तक चले छात्र आंदोलन ने हेमंत सोरेन सरकार को झुका दिया। छात्रों की एक दो मांगों को छोड़कर सरकार को बाकी की मांगे माननी पड़ी। पटना के गर्दनी बाग में तो गजब हो गया। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी TRE4 का विज्ञापन जारी करने के लिए प्रदर्शन शुरू होता है। 5 घंटे के भीतर बीपीएससी आवेदन का विज्ञापन जारी कर देता है। जेन जी के यही तेवर अब सरकारों के लिए चैलेंज बन रहे हैं। जंतर मंतर के आंदोलन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माइलेज लेने की कोशिश की और अखिलेश यादव ने यूपी के मुद्दों को जंतर मंतर से लेकर संसद तक सामने रखा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा और अब सीएम योगी जहां भी बोलते हैं उनके भाषणों में जेन जी का जिक्र जरूर आता है।
1: जब युवा
20: आपको बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर में आयोजित पहलवानों का दंगल देखने पहुंचे तो वहां भी जेन जी यानी युवाओं को लेकर विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला।
21: उस समय की सरकारों के एजेंडे में खेल नहीं था, युवा नहीं था। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था। ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं आपके हितों के लिए। जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति। सबसे बड़ा दुश्मन है युवा शक्ति की माफिया प्रवृत्ति। वह शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो या फिर पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो या किसी भी फील्ड का माफिया, अगर वह माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी।
20: क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ा मुद्दा युवा वोटर बनकर उभरा है। ऐसा क्यों, इसे आप उत्तर प्रदेश में युवा वोटरों के आंकड़ों से समझिए। यूपी में कुल वोटर्स करीब 13 करोड़ हैं। इनमें जेन जी यानी 18 से 27 साल के वोटर्स 2.07 करोड़ हैं, यानी लगभग 15%। यूपी में जिन सीटों पर जेन जी वोटर्स का असर है वो यूपी विधानसभा की 403 में से लगभग 80 से 120 सीटें हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जेन जी को समझा रहे हैं कि यूपी सरकार जल्द नई युवा नीति लेकर आ रही है। इसके तहत युवाओं के लिए कई आयोजन और कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
21: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है हर जिले में एक एम्प्लॉयमेंट जोन हम बना रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जोन का मतलब स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन। एक छत के नीचे नौजवान की स्किलिंग भी होगी, उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी माफिया, वह नकल माफिया हो या किसी भी फील्ड का शिक्षा माफिया हो, अगर उसने किसी युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करते हुए हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।
20: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अभ्युदय कोचिंग को हर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचाया जाएगा। इसकी सुविधा फिजिकल और वर्चुअल दोनों माध्यमों से मिलेगी। प्रदेश के हर जिले में स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन बनाया जा रहा है। यहाँ एक ही छत के नीचे युवाओं की स्किलिंग के साथ रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। खेल के किसी भी क्षेत्र में निजी क्षेत्र सहयोग करेगा तो राज्य सरकार की खेल नीति के तहत उसे पूरा सहयोग दिया जाएगा।
22: पुलिस भी खराब कर दी उन्होंने, पुलिस इतनी खराब कर दी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और पुलिस इतनी खराब है अगर आप थाने गए तो आपकी तरफ देख करके सबसे पहले जेब देखेंगे, जेब में क्या है। और यही हाल तहसील का हो गया है, पुलिस केवल पैसे देख रही है। और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम, एक ही कानून चल रहा है यहां पर कि हथेली गरम पुलिस नरम हो जा रही है।
20: सीएम योगी माफियाओं की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और यूपी पुलिस को लेकर तगड़ा प्रहार किया है।
21: बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं, हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे, पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है।
1: समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे।
20: चुनाव में वक्त कम है, लिहाजा योगी का मिशन जेन जी फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। कई मोर्चों पर युवाओं को साधने की कोशिशें जारी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक नई युवा नीति का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। योगी के मंत्री को अपने अपने क्षेत्र में जेन जी के साथ चौपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन की तरफ से स्कूल कॉलेजों में छात्रों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। हर विधानसभा सीट पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं से संवाद करेगी स्पेशल टीम। आला अफसरों को छात्रों से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान निकालने का आदेश। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब करीब 5 महीने का वक्त रह गया है, इसलिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इस पीढ़ी को क्या चीज प्रेरित करती है और उन तक कैसे पहुंच बनाई जाए। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज तक।

बीजेपी की नवीन टीम के अगले चुनावों पर नजर। तावड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की

आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

क्या बेलपत्र के प्रयोग से विवाह जल्दी हो सकता है? क्या बेलपत्र का प्रयोग करके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है? क्या है बेलपत्र की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

बीजेपी की नवीन टीम के अगले चुनावों पर नजर। तांवड़े को बनाया गया यूपी का प्रभारी, सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की भी चर्चा। मोदी सरकार को राहुल गांधी की चेतावनी, जेनजी की तरह ओबीसी भी सड़क पर उतरा तो केंद्र को झुकना पड़ेगा। पूछा जाति जनगणना में एससी एसटी की तरह ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी का एक्शन भड़के केजरीवाल। पूछा आखिर कब तक चलती रहेगी बीजेपी की तानाशाही। यूजीसी नेट विवाद के बाद एनटीए में बड़े बदलाव के आदेश, 600 विशेषज्ञों को हटाया गया। परीक्षा और प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियों के बाद 4 स्तरीय पेपर जांच व्यवस्था लागू। और बिहार के नालंदा में मिड डे मील खाने से करीब 40 छात्र बीमार, नमक की जगह सब्जी में डाल दिया वॉशिंग पाउडर। नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी मिडिल स्कूल की घटना। सरकारें जब छात्रों की बात सुनने में देरी करती हैं, मामला लटकाती हैं, तो इसका खामियाजा केवल और केवल लाखों छात्रों को ही उठाना पड़ता है। इसका सबूत झारखंड में मिलता है, जहां जेपीएससी से 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ।